ओम शांति। संगम युग पर भाग्यवान आत्माओं को प्रभु मिलन हुआ है, और जो इस अनमोल समय को यूं ही गंवा देते हैं उनको तो कोई भी बुद्धिमान नहीं कहेगा। विचार कर लें, भगवान भाग्य बांटने आया है, वो हमें अपने सर्व खजाने देने आया है, शक्तियों से भरपूर करने आया है। जो जो हमने भक्ति मार्ग में मांगा था वो सभी कुछ देने आ गया है, क्योंकि उसे पता है हमने क्या मांगा था। तो बुद्धिमानी और समझदारी इसी में है कि हम स्वयं को चारों ओर से समेट कर व्यर्थ से मुक्त करके बाबा की याद में मग्न होकर उससे सर्वस्व प्राप्त कर लें। व्यर्थ में तो कोई आनंद नहीं है, व्यर्थ तो मनुष्य को भटका देता है, उसके मन को विचलित कर देता है। इस संसार में समस्याएं तो पहले ही बहुत हैं, मनुष्य का मन तो पहले ही बहुत परेशान रहता है। अब भी भगवान को पाकर भी यदि हम साक्षी ना हुए, यदि हमने दूसरों की चिंताएं करना न छोड़ा, तो भला हमारा कल्याण कैसे होगा। बहुत अच्छी तरह इस गुह्य रहस्य को जान लें, यदि हम स्वयं की चिंता करेंगे, अर्थात अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने की चिंता करेंगे, अर्थात जो कुछ बाबा ने हमें कहा है उसे संपूर्ण रूप से करने की चिंता करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे, तो हमारी सभी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी और आपके परिवार की, कामधंधों की चिंता स्वयं भगवान को होगी। लेकिन जब आप उनकी चिंता में लगे रहते हैं तो बाबा सोचता है फिर इन्हें लगे रहने दो, मैं इनकी चिंता क्यों करूं, उसका ध्यान किसी और की ओर चला जाता है। तो आइए हम सभी बाबा की याद में मग्न होकर इस संगम युग के अनमोल काल को आनंदों में व्यतीत करें। कितना बड़ा भाग्य है हमारा, सम्मुख भगवान बैठकर हमें पढ़ाते हैं, वो हमें घर ले जाने के लिए आ गए हैं। कितनी बड़ी चीज है, रोज सवेरे हमसे मिलन करने आ जाते हैं, हमें जगाने आ जाते हैं, हमें बहुत सुख देने, हमारे दुखों को हरने, हमारे दुखों के आंसू पोंछने के लिए आ जाते हैं। फील करें उनके इस परम पवित्र प्यार को जो वो हमें दे रहे हैं। तो अपने को चेक कर लें, ऐसे सुंदर समय पर हम कहीं भटक तो नहीं गए हैं, हम कहीं अटक तो नहीं गए हैं, या कहीं लटक तो नहीं गए हैं। इन सब से हमें मुक्त होना है। देहधारियों से प्यार तो हम जन्म जन्म करते आए हैं, अब यदि देहधारियों से प्यार करते रहेंगे तो वास्तव में रहस्य तो यही है, द्वापर युग के बाद किसी भी जन्म में हमें सच्चा प्यार देहधारियों से प्राप्त नहीं होगा। और जो इस समय स्वयं को प्रभु प्रेम में मग्न कर देंगे, उन्हें जन्म जन्म देहधारियों का भी निस्वार्थ प्यार मिलता रहेगा। इसलिए समय के

महत्व को समझते हुए अपने संपूर्ण प्यार को एक में डाइवर्ट कर दें। जितना प्यार हम देहधारियों से करते हैं उतना प्यार यदि परमपिता से करें तो कमाल हो जाए। तो आइए हम चेक करें हम कहाँ चले गए हैं, हमारा इनर वर्ल्ड कैसा है, हमारे मन में क्या क्या चलता है, हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं, हमारे एटीट्यूड्स कैसे हैं, उसको शुद्ध करें, पॉजिटिव करें, प्रेम से भरपूर करें, तो ये जीवन की यात्रा बहुत ही सुखद हो जाएगी। अपने से बात करें, हम जो बुद्धिमान हैं हम यदि जीवन का सुख प्राप्त नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा। जिनको भगवान साथ दे रहा है वही यदि सुखी नहीं होंगे तो भला कौन होगा। तो आइए आज हम सभी सारा दिन इस स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं जहान का नूर हूँ, सृष्टि का आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हूँ। हमारे एक एक संकल्प का प्रभाव समस्त संसार में फैलता है, हमारी स्थिति का प्रभाव समस्त संसार तक जाता है। हम आधार मूर्त हैं और योग की बहुत अच्छी ड्रिल करेंगे। मैं आत्मा इस देह से निकलकर चली परम धाम, बाबा को टच किया, उसे शक्तियां भरी और वापिस इस देह में आ गई वाइब्रेशंस चार ओर फैलाने के लिए। ये ड्रिल बार बार करते रहेंगे। ओम शांति।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो दोस्तों। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अमृतधारा प्रोग्राम में मैं भक्ति आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागतम सुस्वागतम। सुबह के सुंदर समय पर हम सुनते हैं सुविचार। सुबह का जो समय है उसमें बहुत सारे लोग जो है वो भगवान का नाम स्मरण करते हैं, नाम का जाप करते हैं, और कई सारे जो है वो आजकल की लाइफस्टाइल के अनुसार कसरत करने भी जाते हैं, क्योंकि सेहत का भी ख्याल रखना है। तो दोस्तों, आज का जो सुविचार है बहुत ही सुंदर है। कुछ इसी सिलसिले में सवाल था कि अगर वेट बढ़ जाए, वजन बढ़ जाए तो क्या करें? तो भगवान का उत्तर आया, अगर शरीर का बढ़ जाए तो कसरत करो, अगर मन का बढ़ जाए तो ध्यान करो, और अगर धन का बढ़ जाए तो दान करो। दोस्तों, कितनी सुंदर बात है। आज मन का वजन कई बार बढ़ता रहता है, अर्थात मन बोझिल हो जाता है, मन पर स्ट्रेस आता है, और फिर ऐसे समय पर आजकल की जो न्यू जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो भी मेडिटेशन सीखते हैं। दोस्तों, सच बात है, मन का वजन बढ़ता ही क्यों है? क्योंकि हम अच्छे विचार नहीं कर पाते, या एक ही साथ कई सारे नकारात्मक विचार, व्यर्थ विचार करते रहते हैं, और फिर कुछ समय के बाद पता चलता है, अरे मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ। दोस्तों, इसीलिए ही सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम मन का अगर वेट बढ़ जाए तो ध्यान करें, मेडिटेशन करें, और अमृत धारा जरूर सुने, क्योंकि अमृत धारा प्रोग्राम सुनने से भी आप सबको बहुत खुशी होती है, दिन जो है वो बहुत ही सुंदर रीति से बीतता है। चलिए दोस्तों, शास्त्रों की बात उस पर चिंतन करने के लिए हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में उपस्थित है ज्ञानेश्वर जी। सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे। आपका स्वागत है ज्ञानेश्वर जी।
1: धन्यवाद भक्ति जी, और आपको और हमारे रेडियो मधुबन के सभी श्रोतागण को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्ति जी, बहुत ही सुंदर सुविचार, वजन, वेट। आजकल हर कोई वेट कॉन्शियस हो गया है। शरीर का अगर वेट बढ़ता है, वजन बढ़ता है, बहुत प्रकार की ट्रीटमेंट वो लोग करते हैं। कोई डाइट फॉलो करता है, कोई मेडिसिन लेता है, कोई और कुछ करता है, और उसे तोलते रहता है। रोज सुबह उठने के बाद वो वेइंग स्केल के ऊपर खड़े रहेंगे और देखेंगे कि मेरा वजन कितना है। लेकिन दूसरा जो है, मन का वजन जो है, वो तोलने के लिए उसका कोई स्केल ही नहीं है। अगर रोज हम, जैसे शरीर का वजन चेक करने के लिए स्केल है, वैसे यहाँ कोई स्केल नहीं है। लेकिन इसलिए क्या करना है, मन का वजन तोलने के लिए खुद को देखना है, अंदर झांकना है, और जब अंदर झांकते हैं तो चेक करना है, क्या मेरी जिंदगी में हमेशा खुशी रहती है? क्या मेरी मुस्कान देख के क्या लोग मुस्कुराते हैं? क्या मुझे दुआएं मिलती है और मैं दुआएं लोगों को देता हूँ? ये अगर चेक करेंगे तो मन का वजन भी चेक कर सकते हैं, और बढ़ा है या नहीं भी बढ़ा है तो भी ध्यान करना, मेडिटेशन करना, वो तो बहुत जरूरी है, अच्छा ही है, और वो करते रहेंगे। जैसे डाइट है, रोग होने के बाद दवा करने के बजाय रोग ना हो इसके लिए अगर प्रयास करे तो बहुत अच्छा है। वैसे मन का वजन बढ़ने के बाद उसको घटाने की कोशिश करने के बजाय मन का वजन ही ना बढ़े तो मन की भी कसरत होती है। मन में अच्छे विचार अगर हम पैदा करते हैं, निर्माण करते हैं, तो भी मन का वजन घटने के लिए बहुत आसान हो जाता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, सचमुच। और दान करने की जो बात है वो भी कितनी अच्छी है। ज्ञान धन भी हमारे पास बहुत होता है। अमृत धारा में तो आप सब अनुभवी हो, बहुत सुंदर सुंदर विचारों का हमारा आपस में चिंतन चलता है। आप उसमें हर प्रकार से शामिल भी होते हो, और ज्ञान का दान करना अर्थात एक दूसरे के साथ शेयर करना, ये भी कितनी अच्छी बात है, ताकि उन्हें भी कुछ न कुछ हमने उस दिन के लिए अच्छा मन का भोजन दिया। चलिए दोस्तों, हमारा अब समय हो गया है एक सुंदर प्रेरक कथा सुनने का, तो सुनते हैं आज की कथा। एक गरीब आदमी था, वो हर रोज अपने गुरु के आश्रम में जाकर वहां सफाई करता था और फिर अपने काम पर चला जाता था। अक्सर करके वो अपने गुरु से कहता कि गुरुजी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरे पास ढेर सारा धन दौलत आ जाए। रोज यही कहता था। एक दिन क्या हुआ, गुरुजी ने उसे पूछ ही लिया, अरे क्या तुम आश्रम में इसके लिए काम करने आते हो ताकि तुम्हें आशीर्वाद मिले और भगवान से धन दौलत मिले? तो दोस्तों, उसने पूरी ईमानदारी से कहा कि हाँ, मेरा उद्देश्य तो यही है कि मेरे पास ढेर सारा धन आ जाए और गुरुजी, इसके लिए ही मैं आपके दर्शन करने आता हूँ, यहाँ की सेवा करता हूँ, क्योंकि पटरी पर सामान लगाकर बेचने का मेरा धंधा है। पता नहीं गुरुजी, मेरे सुख के दिन कब आएंगे? गुरुजी ने कहा, तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारे सामने अवसर आएगा तब ऊपर वाला तुम्हें आवाज थोड़े ही लगाएगा। दोस्तों, चलिए देखते हैं कि उसके पास अवसर आता भी है या नहीं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, आइए सुनते हैं कि आगे क्या होता है। तो दोस्तों, गुरुजी ने उसको कहा कि जब तुम्हारे सामने अवसर आएगा तो ऊपर वाला तुम्हें आवाज थोड़े ही लगाएगा, बस चुपचाप तुम्हारे सामने अवसर खोलता जाएगा। युवक चला गया, समय ने पलटा खाया और वो अधिक धन कमाने लगा। इतना व्यस्त हो गया कि आश्रम में जाना ही छूट गया। कई वर्ष बीत गए। एक दिन सुबह ही वो आश्रम में पहुंचा और सफाई हमेशा की तरह करने लगा, जैसे पहले करता था। गुरुजी ने उसको बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या बात है जी, इतने बरसों के बाद आए हो? सुना है तुम तो बहुत बड़े सेठ बन गए हो। तो उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, बहुत धन कमाया, अच्छे घरों में बच्चों की शादियां की, पैसों की कोई कमी नहीं है, परंतु दिल में चैन नहीं है। ऐसा लगता था रोज सेवा करने आता रहो, क्या करूं गुरुजी, पर आ नहीं सका, इतना व्यस्त था। गुरुजी, आपने सब कुछ दिया पर जिंदगी का चैन नहीं दिया। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, तुमने मांगा ही कब था? जो तुमने मांगा वो तुम्हें मिल गया ना, फिर आज यहाँ क्या करने आए हो? कुछ ही पल में उसकी आंखों में आंसू भर आए, गुरु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, गुरुजी, अब कुछ भी मांगने के लिए सेवा नहीं करूंगा, बस दिल को शांति मिल जाए। गुरुजी ने उसको पूछा, पहले तय कर लो, अब कुछ मांगने के लिए आश्रम की सेवा नहीं करोगे, बस मन की शांति के लिए ही आओगे, ठीक है? गुरु ने समझाया, अरे भाई, चाहे मांगने से कुछ भी मिल जाए, पर ध्यान रखो, दिल का चैन कभी नहीं मिलता, इसलिए सेवा करने के बदले कभी भी कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। वो व्यक्ति बड़ा ही उदास होकर गुरु को देखता रहा और बोला, गुरुजी, बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जिंदगी भर सेवा करने दीजिए। उसने कहा, सच बात है गुरुजी, मन की शांति अनमोल है। दोस्तों, कितनी सुंदर बात है, इस दुनिया में धन से सब कुछ पा सकते हैं हम। करोड़ों रुपए देकर जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, लेकिन क्या करोड़ों रुपए देकर मन की शांति कभी किसी ने दी है? और इसीलिए मन की शांति भगवान की सच्ची सेवा में है।
1: बिल्कुल भक्ति जी, मन की शांति हर कोई चाहता है। मन शांत रहता है तो खुशी भी रहती है, सेहत भी अच्छी रहती है। लेकिन जब धन नहीं होता तब हर कोई धन के पीछे भागते रहता है, कहाँ रुकना है वो समझ में नहीं आता, और जैसे रेस का घोड़ा दौड़ता है वैसे वो दौड़ते रहते हैं, थक जाते हैं, और थकने के बाद पता चलता है कि मन की शांति वहाँ नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि यह धन कमाने के लिए हम कोशिश ना करें, क्योंकि धन जो है वो जिंदगी बिताने के लिए जरूरी भी है। लेकिन धन में आसक्ति रहते हुए हम कोई भी कार्य करें, धन की लालच अगर आती है तो फिर मन को शांत नहीं रहने देती। तो इसलिए ये बैलेंस होना जरूरी है कि धन कमाना है, किसके लिए कमाना है, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन इतना भी नहीं कमाना है कि वो लालच में आकर हम कुछ बुरा काम करें। मन की शांति खत्म कब होती है? जब हम कुछ ना कुछ बुरा काम करते हैं तो क्या होता है, मन अंदर ही अंदर खाते रहता है और फिर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि धन कम हो तो भी चलेगा, लेकिन मन की शांति हमें नहीं खोनी है। धन भी कमाना है लेकिन मन की शांति के साथ। और इसीलिए आज जो हमने सुविचार सुना कि मन की शांति के लिए, मन का वजन अगर बढ़ गया, मन का वेट बढ़ गया, तो ध्यान की जरूरत है, मेडिटेशन की जरूरत है। वो अगर हम करते रहेंगे तो मन शांत भी रहेगा और धन भी आता रहेगा और धन की खुशी मिलेगी। और धन जो है वो सिर्फ खुद के लिए नहीं, उसका थोड़ा बहुत भाग जो है वो हम अगर दान में लगाए, अच्छे कार्य के लिए लगाए, तो फिर क्या होगा, मन की शांति और बढ़ेगी, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, आपने सही कहा। और मुझे लगता है कि आज के जमाने में हर कोई मन की चैन, मन की शांति जरूर चाहता है। दोस्तों, कितनी सुंदर बात आज कथा में हमने सुनी, चलिए उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: भक्ति जी, श्रीमद् भागवत को महाकाव्य भी कहते हैं, और जब महाकाव्य की बात होती है तो जैसे कवि अपनी कल्पना विलास के साथ श्रोताओं के सामने अपना बहुत सुनहरा दृश्य खड़ा कर देता है, वैसे ही श्रीमद् भागवत कथा में भागवतकारों ने बहुत ही अच्छा अच्छा वर्णन किया है। मुझे लगता है कि ये वर्णन भी अगर हम श्रोताओं को सुनाएंगे तो पता चलेगा कि ये महाकाव्य उसे क्यों कहते हैं
0: जी।
1: क्योंकि बाकी जो अध्याय है, बाकी जो स्कंध है, उसमें दशम स्कंध में ही ऐसा वर्णन है, लेकिन बाकी अध्याय में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, दानवों का और असुरों का कैसा निर्दलन किया उसका वर्णन है, लेकिन यहाँ जो वर्णन है दशम स्कंध के 20वें अध्याय में वो बहुत ही अद्भुत है। वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन बहुत ही सुंदर शब्दों में उन्होंने किया भागवतकारों ने। भागवतकार कहते हैं कि जैसे वर्षा ऋतु के पहले बादल आकाश में गिरे हुए रहते हैं, तो उसका वर्णन देखिए कैसे करते हैं कि समय आने पर वो अपनी किरण करों से फिर उसे बांटने लगे। कौन? सूरज। कैसे बांटने लगे? उसकी उपमा उन्होंने दी है कि जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, तब वे दया परवश होकर अपने जीवन प्राण तक निछावर कर देते हैं, वैसे ही बिजली की चमक से शोभायमान घनघोर बादल तेज हवा की प्रेरणा से प्राणियों के कल्याण के लिए अपने जीवन रूप जल को बरसाने लगे।
0: बहुत सुंदर
1: ये जो वर्णन है वो देखने के बाद लगता है कि वर्षा ऋतु आ गया है, और ये वर्षा ऋतु जो है वो बहुत ही सुंदर है। हर कोई चाहता है, जैसे अभी धरती तपती है, ग्रीष्म ऋतु आता है और शरीर की और मन की बहुत तलखी होती है, और हर कोई चाहता है कि उसे ठंडक मिले, आराम मिले।

0: तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे धीरे बादल आने लगते हैं। वो बादल काले हैं, काले जरूर है, बिजली भी कड़कती है, लेकिन फिर भी वो सुख देने वाली है। जिंदगी में भी ऐसे हम कहते हैं कि बादल छाए हैं, घने काले बादल अगर आते हैं तो जिंदगी में हम दुखी होते हैं, लेकिन जब प्रकृति में घने काले बादल आते हैं तो धरती खुश होती है और हमारा मन भी नाचने लगता है।
1: ज्ञानेश्वर जी, मुझे लगता है कि धरती भी या प्रकृति के ये पांचों तत्व भी हमें सदैव कुछ न कुछ सीख देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे
0: बिल्कुल।
1: आपने कहा कि जिंदगी में काले बादल छा जाते हैं, अर्थात चिंताएं आती है, कुछ न कुछ निगेटिविटी आती है, मन चाहे जैसी बातें नहीं होती, लेकिन जैसे उसमें भी बिजली का कड़कना, अर्थात जब ऐसा एक प्रकाश आता है, प्रकाश की एक लकीर आती है, तब कितना सुंदर लगता है। हमें भी प्रकृति ने जैसे कि यह संदेश दिया है, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए भागवतकार आगे कहते हैं कि ज्येष्ठ आषाढ़ की गर्मी से पृथ्वी सूख गई थी, अब वर्षा के जल से सींच कर वह फिर हरी भरी हो गई। जैसे सकाम भाव से तपस्या करते समय पहले तो शरीर दुर्बल हो जाता है, परंतु जब उसका फल मिलता है तब हष्ट पुष्ट हो जाता है। ये पढ़ने के बाद, ये देखने के बाद मुझे एक चीज याद आई। आजकल जैसे आपने आज सुविचार सुनाया और शरीर का वजन, शरीर का वेट, उसके बारे में हमने बातें की, तो आजकल क्या है, बहुत सारे लोग डाइट करते हैं, प्राकृतिक आहार जो है उसके ऊपर जोर देते हैं, पका हुआ भोजन खाना उसके बजाय प्राकृतिक आहार करना इसके ऊपर जोर देते हैं, और उससे क्या होता है, उपवास जब करते हैं तब क्या होता है, खाने पीने के ऊपर बड़ा कंट्रोल होता है। समझो किसी ने ब्रेकफास्ट किया ही नहीं, किसी ने लंच भी छोड़ दिया, एक रात का ही भोजन किया, या दिन में तीन बार खाने के बजाय एक ही बार खाया, तो शुरुआत में जैसे यहाँ बताया गया कि शुरुआत में शरीर दुर्बल होता है और फिर लगता है पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे धीरे जैसे शरीर को भी आदत हो जाती है और डाइट जो है अपना काम करते रहता है, टॉक्सिन्स जो है वो निकल जाते हैं, बॉडी डिटॉक्स होती है और फिर शरीर नॉर्मल वेट पे आ जाता है। ऐसे बहुत सारे लोगों का अनुभव है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें जो है हम भागवत कथा से सिर्फ शब्दों का वर्णन लेके ना सीखे, लेकिन उनका पीछे का भाव क्या है वो भी जानेंगे तो और अच्छा रहेगा। और देखिए आगे क्या कहते हैं, वर्षा के सायंकाल में बादलों से घना अंधेरा छा जाने पर ग्रह और तारों का प्रकाश तो नहीं दिखलाई पड़ता, परंतु जुगनू चमकने लगते हैं। जैसे अभी देखिए, बहुत अच्छी उपमा दी, कलयुग में पाप की प्रबलता हो जाने से पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है और वैदिक संप्रदाय लुप्त हो जाते हैं।
1: जी,
0: यह भागवत कथा बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी, उसके ऊपर बहुत सारी बातें होती है, लेकिन पुरानी है ये तो जरूर है। और इतने साल पहले, हजारों साल पहले ये भागवत कथा लिखी, लेकिन उन्होंने उसकी जो उपमा दी वो कितनी अच्छी है, क्योंकि कलयुग में बहुत सारे प्रचार होते हैं, अपप्रचार होते हैं, मतमतांतर होते हैं, और फिर क्या कहते हैं, पाप की प्रबलता होती है और पाखंड मतों का प्रचार होता है। पाखंड मत क्या है, कोई कहता है कि भगवान है ही नहीं, कोई कहता है भगवान है, कोई कहता है मैं ही भगवान हूँ, ऐसे बहुत सारे प्रचार होते हैं और लोग मूंझ जाते हैं, क्या सच है क्या झूठ है उसका पता नहीं चलता, और वैदिक संप्रदाय लुप्त हो जाता है। जो सच्चा ज्ञान है, जो ज्ञान पहले हमें मिलता था, वो लुप्त हो जाता है और फिर हम संभ्रमित होते हैं, भ्रमित होते हैं और चित्त शांत नहीं होता, क्या सच है क्या झूठ है वो पता नहीं चलता। तो जो मेंढक पहले चुपचाप सो रहे थे, अब वे बादलों की गरज सुनकर टराम टराम करने लगे। जैसे नित्य नियम से निवृत्त होने पर गुरु के आदेश अनुसार ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ करने लगे। हर कोई जो प्रसंग है उसकी उपमा, उसकी भेंट में उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है, और इसलिए मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा महाकाव्य है, और जब हम पढ़ेंगे तब उसका आनंद कुछ अलग ही है, ऐसा मुझे लगता है।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर जो मिसाल भागवतकारों ने दी है। दोस्तों, जैसे कहते हैं कि महर्षि वेद व्यास या यहाँ जो शुकदेव राजा परीक्षित के साथ संवाद कर रहे हैं, हर बात जो है वो बात हमारे जीवन के लिए तो उपयोगी है ही, लेकिन देखो उनका दृष्टापन कितना है, उनकी त्रिकालदर्शी स्थिति कितनी है। उन्होंने बहुत साल पहले यह जान लिया था कि कलयुग में किस प्रकार का माहौल रहेगा। चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना है, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना है, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चले, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: भक्ति जी, हम भागवत महाकाव्य उसमें बहुत ही सुंदर शब्दों का जो वर्णन है उसके बारे में बात कर रहे थे। वर्षा ऋतु जब शुरू होता है तब धरती हरी भरी हो जाती है, शुद्ध जल जो है बादलों से निकलता है और वो धरती पर आता है, और जैसे प्यासा जो है वो जल पीने के बाद तृप्त होता है वैसे धरती भी तृप्त हो जाती है, और फिर क्या होता है, हरी भरी घास जो धरती से बाहर निकलती है, बहुत अच्छी फसल धरती से बाहर निकलती है और धरती मनुष्य को दान करते रहती है। अभी इसमें देखिए कितना अच्छा वर्णन है। वर्षा ऋतु में हवा के झोंकों से समुद्र एक तो यो ही उत्ताल तरंगों से युक्त हो रहा था, अभी समुद्र की बात है, अब नदियों के संयोग से वह और भी क्षुब्ध हो उठा। ठीक वैसे ही, अभी जैसी मिसाल कितनी अच्छी दी है, ठीक वैसे ही जैसे वासना युक्त योगी का चित्त विषयों का संपर्क होने पर कामनाओं के उभार से भर जाता है। छोटे छोटे शब्द है, छोटे छोटे प्रसंग है, लेकिन भागवतकार हर मिसाल में कुछ ना कुछ सीख देने का प्रयास करते हैं।
2: बिल्कुल।
3: समुन्दर सागर सबको मालूम है कि सब नदियां जो है वो सागर को मिलती है। अभी जब नदियां उफान पे रहती है तब जितना भी जल है नदियों में वो सब सागर को जाके मिलता है, लेकिन कमाल की चीज ये है कि नदियों का जब उफान आता है तब गांव गांव डूब जाते हैं, लेकिन ये अधिक जल जो है वो जब समुन्दर में मिलता है तब समुन्दर को बाढ़ नहीं आती। उफान होता है, लहरें आती है, लेकिन बाढ़ नहीं आती। अगर समुन्दर को बाढ़ आए तो क्या होगा, सारी धरती को निगल देगा। तो ये चीजें जो है वो एक दर्शाते हैं कि समुन्दर कितना कंट्रोल में है। हम भी कितनी भी परिस्थिति आए हमें क्या करना है, हमें अटल और अचल रहना है समुन्दर की तरह। और उन्होंने क्या किया, जैसे योगी है तपस्वी है लेकिन विषयों के संपर्क में आने के बाद हलचल पैदा होती, और ये मिसाल जो है बहुत ही अच्छी है और हर किसी को इसके ऊपर सोचना है। भागवत कथा में ही नहीं, महाभारत कहिए, और भी बहुत सारे शास्त्रों में कथाएं हैं, पुराणों में कथा है, उसमें हमने ये देखा है कि ऋषि मुनि, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि, बहुत बड़ी तपस्या की, अच्छी तपस्या की, सालों तक तपस्या की, लेकिन क्या हो गया, कहीं ना कहीं कई मत्स्यगंधा को देखा या मेनका को देखा और बड़े ऋषि जो है वो भ्रष्ट हो गए, उनके मन में कामना जागृत हो गई। तो ये जो कामना जागृत होना है ये बहुत बार लोगों को लगता है कि इतने बड़े ऋषि मुनि अगर कामना से व्यस्त और ग्रस्त हो गए, हम हो गए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सामने वाला अगर गड्ढे में गिरता है और वो देखने के बाद मैं सोचूं कि वो गड्ढे में गिरा तो मैं भी गिरा तो क्या फर्क पड़ता है। तो उससे हमें क्या करना है, हमें सीख लेनी है कि वो गिर गया है, मुझे सावधानी बरतनी है, ऐसा मुझे लगता है।
2: बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, आपने ठीक कहा। मुझे भी वही लगता है कि हम नकारात्मकता से अगर शास्त्रों को देखें तो फिर हमारे में कुछ सुधार ही नहीं आ सकता। लेकिन क्या ये बात भी तो है कि कभी कभी कोई मिसाल इसलिए दी जाती है ताकि हमें सावधान किया जाए। दोस्तों, कई ऐसी बातें हैं, जैसे आपने गणेश्वर जी कहा, महाभारत की बात हो या कुछ शास्त्रों की बातें हो, जिसमें ऐसी बात बताई है। लेकिन जैसे घर में भी अनुभवी लोग जो है वो हमें कुछ बातें बताते हैं ताकि हमसे कुछ भूल ना हो जाए। तो दोस्तों, हम इस बात को अगर पॉजिटिवली लेंगे, सकारात्मक लेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारा नजरिया चेंज हो जाएगा, उसमें बहुत अच्छा परिवर्तन आ जाएगा।
3: बिल्कुल। और देखिए, बहुत सारा वर्णन है, हम समय की सीमा देखते हुए इतना वर्णन हम नहीं सुनाते, लेकिन भागवतकार अभी वृंदावन की तरफ आते हैं और वृंदावन में ये बारिश होने के बाद प्राकृतिक सौंदर्य कैसे बढ़ गया इसके बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि वर्षा ऋतु में वृंदावन इसी प्रकार शोभायमान और पके हुए खजूर तथा जामुनों से भर रहा था।

0: उसी वन में विहार करने के लिए श्याम और बलराम ने ग्वालबाल और गौवें के साथ प्रवेश किया। गौवे कैसे जाती थी, फिर वो श्री कृष्ण और बलराम उन्हें कैसे पुकारते थे, वो भी बहुत अच्छा वर्णन उन्होंने किया है। और फिर क्या गया है, शरद ऋतु में कमलों की उत्पत्ति से जलाशयों के जल ने अपनी सहज स्वच्छता प्राप्त कर ली। जलाशय क्या हो गए, स्वच्छ हो गए, कमल खिल गए। ठीक वैसे ही जैसे योग भ्रष्ट पुरुषों का चित्त फिर से योग का सेवन करने से निर्मल हो जाता है। देखिए यहाँ क्या किया हमने, जो योगी है तपस्वी है उसके मन में कामना आ गई, वो योग भ्रष्ट हो गया। लेकिन हमें दिल छोटा नहीं करना है, हिम्मत नहीं हारनी है। हम भी तपस्या करते हैं, हम भी मेडिटेशन करते हैं, और कभी कभी मन में ऊपर नीचे होता है, कभी बुरे विचार भी आ सकते हैं, नकारात्मक संकल्प भी आ सकते हैं। लेकिन उस समय अगर हम दिल छोटा करें तो क्या होगा, हमें जो मेडिटेशन करना है उसके प्रति रुचि जो है वो कम होती जाएगी। और इसलिए यहाँ बहुत अच्छा वर्णन किया है, जैसे योग भ्रष्ट पुरुषों का चित्त फिर से योग का सेवन करने से निर्मल हो जाता है। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है, प्रयास करते रहना है, यही संदेश मुझे लगता है भगवतकार दे रहे हैं।
1: बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी आपने ठीक कहा, क्योंकि मन की भी ऐसी स्थिति है जो सदा समान नहीं रहती, और हम सब इसके बहुत अच्छे अनुभवी है। लेकिन ना तो हम मायूस हो जाएं और ना तो हम अहंकारी बन जाएं, लेकिन जैसे प्रकृति का भी इस प्रकार का परिवर्तन होता रहता है, वैसे भी हमारे मन में भी ये होता है। इन सब बातों को हम अच्छी तरह से अगर इस रीति से सोचे तो मुझे लगता है कि हमें श्रीमद् भागवत कथा का जो संदेश है वो पल पल कुछ न कुछ बहुत अच्छा परिवर्तन देता रहेगा और मन को एक टॉनिक मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ समय को देखते हुए मैं भक्ति अपने वाणी को विराम देती हूँ। फिर से मिलेंगे अमृत धारा में। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। स्वागत है समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का। एक बार एक लुहार के बेटे ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, मनुष्य की कीमत क्या है। पिता ने कहा कि बेटा, मनुष्य तो बहुत बेशकीमती है, उसका कोई मूल्य नहीं है, मतलब वो बहुत कीमती है। बेटे ने कहा, पिताजी फिर ऐसा क्यों है कि किसी को ज्यादा सम्मान मिलता है और किसी को कम सम्मान मिलता है, कोई अमीर है कोई गरीब है, ऐसा क्यों है। पिताजी ने बच्चे से कहा कि तुम अंदर से एक रॉड ले आओ। वो अंदर से एक लोहे का रॉड लेके आ गया। पिताजी ने पूछा, बताओ इसकी कीमत क्या होगी। बेटे ने कहा, लगभग 100 रुपए होगी। पिताजी ने कहा कि यदि मैं इस लोहे के रॉड से छोटी छोटे कीले बना दूं तो इसकी कीमत क्या होगी। बेटे ने कहा कि इसकी कीमत तब लगभग 1000 रुपए होनी चाहिए। पिताजी ने फिर कहा कि यदि मैं इससे यदि घड़ी की छोटी छोटी स्प्रिंग बना दूं तो इसकी कीमत क्या होगी। बेटा गणना करने लगा और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा कि लगभग 10,000 से भी ज्यादा कीमत हो सकता है इसकी। पिताजी ने कहा कि ठीक यही बात मनुष्य के साथ है। यदि मनुष्य अपनी कीमत को सही तरह से आंके, अपने वर्तमान स्टेटस को ना देखे, अपने वर्तमान में ना उलझा रहे और सुंदर भविष्य की ओर बढ़ता रहे, तो उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। कितनी सुंदर बात है मित्रों। कई बार हम अपनी वर्तमान को देखकर अपना मूल्य बहुत कम आंकते हैं। हम ईश्वर की रचना है और ईश्वर कभी भी गार्बेज अर्थात कचरे पैदा नहीं करता। ईश्वर की रचना अमूल्य है, सर्वोत्तम है, लेकिन कई बार हम ही अपनी नकारात्मक वृत्तियों के कारण या अपनी कमी कमजोरियों के कारण अपने आप को बहुत कम आंकते हैं। वास्तव में हमें अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाते रहना चाहिए और निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। अपनी सही कीमत खुद आंकनी चाहिए, तभी संसार भी हमारी सही कीमत आंकेगा। यदि हम ही अपने आप को मूल्य नहीं देंगे तो संसार हमें मूल्य कैसे देगा। तो आज के समाधान में इन्हीं सुंदर विचारों के साथ कि हम निरंतर आगे बढ़ते रहें, इम्प्रूवमेंट करते रहें और साथ साथ जमाने को दिखा दें कि हम यूनिक हैं, हम बेस्ट हैं। इन्हीं विचारों के साथ आइए आज के समाधान की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: भ्राता जी, जैसे कहा गया है हमेशा कि ईश्वर ने हर एक को बहुत सारी खूबियों से नवाजा है, लेकिन कई बार व्यक्ति अपनी उन खूबियों को, अपनी उन विशेषताओं को नहीं पहचान पाता, अपनी कमियों को देखता है या गरीबी के वातावरण में है तो उस परिवेश में अपने आप को देखता है और सोचता है कि शायद मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं है।
1: इसी ज्ञान की मनुष्य को आजकल बहुत आवश्यकता है कि वो ये पहचान ले कि जब हम इस धरा पर आए थे तो हम संपूर्ण थे। भगवान की रचना संपूर्ण ही होती है। ये लिखा भी हुआ है कि भगवान ने मनुष्य को अपने स्वरूप में गढ़ा था, यानी जैसा वो स्वयं है वैसा ही बनाया था। बिल्कुल सीधी बात है, कोई व्यक्ति कुछ भी बनाता है वो परफेक्ट बनाता है जितनी उसको नॉलेज है, और किसी व्यक्ति के बच्चे में उस व्यक्ति के कई गुण योग्यताएं समाहित रहती ही हैं। भगवान ने संसार रचा, हम सभी को बनाया, हमें देवत्व डाला था। तो अगर हम अपने उस स्वरूप को याद करें, देव स्वरूप जो हमारा आदि स्वरूप था बिल्कुल प्रारंभ का, तो ये वर्तमान में जो हम अपनी कमियों को देखते हैं, किसी के अंदर बहुत विकार भर गए हैं, किसी के अंदर जीवन में निराशा आ गई है, बहुत असफलता देखी है, अपमान देखा है, तो मनुष्य सोचने लगा जी कर भी क्या करूँगा, तो मनुष्य को मरने की इच्छा होती है। परंतु यदि स्पिरिचुअल नॉलेज उसके पास आ जाए, वो एक आत्मा है और वो भगवान की संतान है, तो सचमुच उसे अपनी वैल्यू का पता चल जाएगा। मैं एक सुंदर सा अनुभव सुनाना चाहता हूँ। कल ही मैं पांडव भवन में क्लास कराने गया, एक व्यक्ति मेरे से मिलने आया, हो गया होगा 45 साल का। कहा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने कहा, क्यों भाई, क्लास का? मैंने कहा, तो हम रोज ही कराते रहते हैं, इसमें धन्यवाद की क्या बात। कि नहीं, मेरा सारा परिवार एक्सीडेंट में मर गया था और मैंने भी 3 बार सुसाइड करने का प्रयास किया, लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत बेचैन था, सब तो मर गए, मैं भी जीकर क्या करूंगा। लेकिन बाबा को मुझे अपने पास लाना था, तो बाबा के पास मैं आया, लेकिन मेरा चित्त शांत नहीं हुआ। उसके बाद भी मैंने सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया, तो बहनों ने मेरी ये दशा देखकर कहा आपकी एक सीडी दे दी मुझे, और मैं वो सुन के जी गया हूँ। अब मैं यहाँ आया हूँ पहली बार बाबा के पास
0: जी, जी।
1: तो मैंने उसे समझाया तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें अनेक लोग जिनको मरने की इच्छा हो रही है उसे जीवन दान देना है, अब जियो आनंद पूर्वक जियो। तो देखिए ये ऐसी चीज है, मनुष्य के विचार बदल जाए, उसको अपनी जीवन की कीमत का पता चलता है। नहीं तो सोच रहा था मैं तो मूल्यहीन हो गया, क्या करूंगा जीकर, मर जाऊं बस वही अच्छा है। तो सचमुच अपने जीवन की सुंदरता को हर मनुष्य को आंकना चाहिए, और इसे सुंदर बनाने का जैसे आपने कहा निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, और मनुष्य को ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए निरंतर आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, अपने मन को स्वच्छ करो, बुद्धि में जो गंदगी भर ली है उसको हटा दो, जो निराशा के काले बादल बुद्धि में समा लिए हैं उसको छिन्न भिन्न कर डालो
0: जी।
1: अपने मन में एक नया उमंग उत्साह भरो, मन को सुंदर विचारों से ओतप्रोत करो, और ये स्पिरिचुअलिटी से ही होगा, क्योंकि आज संसार में किसी को ये चीजें सिखाने वाला कोई है नहीं, किसी को पता ही नहीं कि बुद्धि क्यों किसी की अच्छी नहीं चल रही, क्यों किसी को सफलता नहीं मिल रही। लोग सोचते हैं भाग्य खराब है बेचारे का, जी, इतना ही कह के छोड़ देते हैं। छोड़ देने से तो काम नहीं चलेगा, भाग्य का तो निर्माण करना होगा ना, भाग्य का निर्माता तो मनुष्य स्वयं है। तो निरंतर आगे बढ़ने के लिए मनुष्य को चाहिए वो अपनी बुद्धि को साफ करे, और अपने मन में सुंदर विचारों का सृजन करे, और परमात्मा से योग लगाए, राजयोग करे, कनेक्शन जोड़े, उसकी शक्तियां, उसकी शांति, उसकी प्योरिटी, उसका प्रेम आत्मा पर आएगा, और जीवन में एक नई उमंग उत्साह आएगी, स्फूर्ति आएगी, एक नई दिशा मिलेगी जीवन को। मनुष्य के पास सब कुछ है, लेकिन इन काले बादलों ने उसके मन को इतना मलिन किया होता है, उसकी बुद्धि को ढक लिया होता है कि उसको सुंदर विचार आते नहीं है। तो ये इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज मनुष्य के लिए इस समय तो खास परम आवश्यक है, निरंतर आगे बढ़ने के लिए, अपनी कीमत को पहचानने के लिए, और बहुत अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए।
0: बिल्कुल ब्रदर जी, वो जो सीडी सुन करके उन्होंने अपना विचार बदला, हम चाहेंगे कि वो सीडी हमें भी अर्पित की जाए, ताकि यदि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मन में निराशा आ गई है तो हम जरूर उन तक पहुंचाएं।
1: बहुत सारी ऐसी क्लासेज हैं, क्या होता है कि मनुष्य को वही, जैसे मैंने कहा कि कोई अच्छी चीज सिखाने वाला नहीं होता, तो सीडी से उसने क्या सुना और कौन सी बात उसको लग गई, कौन सी बात उसके लिए प्रेरणा बन गई, कौन सी बात ने उसके जीवन की सोई हुई चेतना को जगा दिया, ये तो उसको भी शायद याद नहीं होगा, लेकिन यही होता है जब मनुष्य अच्छी बातें सुनता है तो उसके अंदर में ही जो बहुत अच्छाइयां छुपी हुई है जगत तो भरा हुआ, वो जागृत होता है और वो जग जाता है,
0: और वो आशा की एक किरण भी मिलती है कि नहीं वास्तव में कुछ और किया जा सकता है। प्रताप जी आपने एक खुशी की बात सुनाई है, तो मैं भी एक खुशी की बात सुना देना चाहूंगा। आज सुबह सुबह ही फोन कॉल आया, ये प्रोग्राम देख करके हमारे जो एक बैंगलोर के बंधु हैं उन्होंने अभ्यास किया, उनको हार्ट में बहुत ज्यादा तकलीफ थी, दर्द रहा करता था, और उन्होंने पूछा था प्रश्न कि कैसे मेरे ये हृदय का दर्द दूर हो सकता है। आपने बहुत सुंदर उनको उपाय बताए थे, उपचार बताए थे कि आप ऐसे ऐसे अभ्यास करें, तो सुबह उन्होंने कॉल करके कहा कि मेरा जो दर्द है पूरी तरह से दूर हो गया है। ये भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है,
1: उसको कांग्रेचुलेशन, और उसको और अच्छे पुण्य कर देने चाहिए ये जानकर के शिव बाबा ने, भगवान ने उसे नया दिल दिया है, अब ये किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, सबको दिल देंगे, प्यार देंगे।
0: बिल्कुल, और दिल में भी उस परमेश्वर को बिठा करके रखेंगे। भ्राता जी, ये हमारे पास जो फोन कॉल आए थे उनमें से एक मैं ले रहा हूँ। ये आगरा से हमारे पास उषा जी ने किया था, और ये कहती है कि एक पुरानी फैक्ट्री की जगह लेकर हमने 3 मंजिला मकान बनवाया है, लेकिन जब से वहां गए हैं तब से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम शुरू हो गई है। मुझे शारीरिक तकलीफ बनी रहती है और तीनों बेटों के बिजनेस में बरकत नहीं हो रही है, कृपया मार्गदर्शन दें कि हम क्या करें, स्थान परिवर्तित करें या वहां ही रहते हुए कुछ किया जा सकता है।
1: देखिए मकान पुराना था, और जब कोई भी जगह बहुत पुरानी होती है
0: जी,
1: लंबा समय पड़ी रहती है, तो उसमें बैड एनर्जी प्रवेश कर लेती है, भटकती आत्माएं आके वास कर लेती हैं। मनुष्य को ये पता नहीं चलता, इन्होंने तो मकान बना दिया और अच्छी भावना से बनाया, लेकिन या तो बैड इफेक्ट किसी आत्माओं का वहां पर है, बैड एनर्जी वहां पर है, या वास्तु दोष इनके मकान में है कुछ, तो किसी फेंग सुई वाले को बुलाकर या वास्तुकला शास्त्री को बुलाकर इन्हें उसे चेक भी करा लेना चाहिए। और अगर कोई बैड इफेक्ट वहाँ है, कुछ भटकती आत्माओं ने वहाँ डेरा जमाया हुआ है, तो उन्हें कहीं जगह की जरूरत होती है, क्योंकि उनके अंदर संस्कार होता है ना, वो कभी जीवित मनुष्य थे तो अपना घर हो उसमें हम रहें आराम से। तो जब वो बॉडीलेस हो जाते हैं, जब भटकने लगते हैं, वही इच्छाएं उनके अंदर फिर रहती हैं, तो या तो किसी के तन में आ जाते हैं या कोई खाली पड़ा मकान चुन लेते हैं। तो इनको किसी को दिखा देना चाहिए वो चीज भी। और अगर ये राजयोग बहुत अच्छा करते हैं तो वहाँ राजयोग का बहुत अच्छा अभ्यास करें, बाबा का 5 बार वहाँ आह्वान करें रोज, बाबा को भोग लगवाएं। और एक बहुत अच्छी चीज है कि इन आत्माओं की मुक्ति के लिए यदि ये योग अभ्यास कर लें तो इनका भी कल्याण और उन आत्माओं का भी कल्याण, चाहे वो कितनी भी हैं। देखिए, इस योग की विधि ये है कि 21 दिन तक 1 घंटा रोज बहुत अच्छा योग करना है, कोई भी टाइम दिन में शाम को ये चुन लें, और 2 स्वमान के अभ्यास के साथ ये योग शुरू करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मास्टर मुक्ति दाता हूँ, ये 2 स्वमान 5 बार याद करें, फिर 1 घंटा योग करें, तो क्या होगा कि ये जो योग की शक्ति है उन आत्माओं के उन विकर्मों को नष्ट कर देगी जिनके कारण उन्हें देह नहीं मिल रहा है। अति विकर्म हो जाते हैं ना, तो मानव देह उन्हें मिलता नहीं है।
0: कई बार बताते जी, वो ऐसे में नाराज तो नहीं हो जाते कि इन आत्माओं के लिए यदि हम कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया
1: कर रहे हैं? नहीं, वो प्रसन्न होंगी, क्योंकि वो अपने इस भटकते हुए काल से अति दुखी हो जाती हैं, बहुत दुखी हो जाती हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे बातें आती हैं प्रैक्टिकल में, मैं सुना भी नहीं सकता, पर वंडरफुल बातें कि जिसे पता चलता है ये आत्माएं पाप कर कर के पाप से थक जाती हैं, चाहती हैं उन्हें शांति मिल जाए, उन्हें कोई मुक्त कर दे इस योनि से, पुनर्जन्म उनका हो जाए। तो ये जो योग करेंगी और जो 2 स्वमान ले लिए मास्टर मुक्तिदाता का, तो ये योग की शक्ति इनके उन विकर्मों को नष्ट कर देगी और इनको पुनर्जन्म मिल जाएगा। तो इनको बहुत तत्परता से सिंसियरली 21 दिन के योग का प्रोग्राम बना देना चाहिए वहाँ, इससे इनका मार्ग क्लियर हो जाएगा।
0: बिल्कुल, कभी हमने किसी वास्तु शास्त्री को बुलाया तो वो कहीं तोड़ फोड़ करवा देते हैं, ये वो रहता है, तो कई प्रकार के विचार आते हैं। तो यदि राजयोग में यदि ऐसी संभावना है कि इस प्रकार की नेगेटिविटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, फिर तो शायद किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
1: देखिए, इसमें राजयोग तत्काल तो तुरंत अपना प्रभाव दिखाएगा, पर मान लो उनका दरवाजा ही गलत दिशा में है और वहां से बैड एनर्जी आ रही है, तो दरवाजा तो खुला रहेगा, बैड एनर्जी आती रहेगी। इनको भी निरंतर पावरफुल योग करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा मनुष्य सदा कर नहीं पाता। अगर हम उन्हें कहते हैं 21 दिन तक तुम कर लो तो मनुष्य बड़ी लगन से कर लेता है, अगर हम उन्हें कहें कि जीवन भर करना तो वो ऐसा संभव हर एक के लिए नहीं होता। इसलिए वास्तु शास्त्री को दिखाने से आजकल तोड़ फोड़ के बिना कुछ चीजें सेट करके लोग वास्तु दोष को समाप्त कर देते हैं, जिसमें कुछ भी तोड़ना नहीं होता। हाँ, कोई इंपॉर्टेंट चीज है, भाई किचन गलत जगह बना हुआ या एक बाथरूम गलत जगह है, देखिए 2 छोटी चीजें होती हैं, इनको तो मनुष्य को बदल ही लेना चाहिए, नहीं तो बीमारियां बढ़ती रहेंगे। बाथरूम कई लोग गेट पर ही बना देते हैं, प्रवेश कर रहे तो बाथरूम के दर्शन होंगे, तो वो गंदा है
0: जी।
1: क्योंकि इसमें रहस्य यही है, एक सिंपल बात सभी को जान लेनी चाहिए, किसी भी चीज को देखते ही अगर हमें बहुत खुशी हो, आनंद आए, मान लो हम जा रहे हैं और गेट पर बहुत अच्छे अच्छे फूल उगाए हुए हैं, तो मन प्रसन्न होगा ना, तो गुड एनर्जी वहां प्रवेश करती है
0: जी।
1: और जाते ही देखा कि किचरे का डब्बा रखा गेट पे ही, तो मनुष्य कैसे करेगा, निगेटिव एनर्जी बहेगी। इसलिए बस इस सिद्धांत को ख्याल में रखते हुए किसी का बाथरूम ही गेट पर हो तो जाते ही मनुष्य की दृष्टि उस पर पड़ेगी, तो एक बैड चीज होगी, मनुष्य को बैड फीलिंग होगी। तो जिन चीजों से अच्छी फीलिंग्स होती हो उस जगह पर वही चीजें होनी चाहिए। और वास्तु शास्त्र का अपना महत्व है, विशेष कलाज के परिवेश में तो बिना तोड़ फोड़ के भी इसमें संशोधन कर देते हैं लोग और इसका गुड रिजल्ट होता ही है।
0: ठीक है, तो थोड़ा परिवर्तन कर लें और साथ ही राज्यों का अभ्यास कर लें, तो ये जो इनकी समस्या है जो वहां रहते हुए इन्हें महसूस हो रही है वो दूर हो जाएगी। प्रति जी, हमारे पास एक मेल आया है, ये मेल जयपुर से है और बहुत ही विस्तार में है, ये मेल सार में मैं इसे आपके सामने रखना चाहूंगा। ये कहती हैं कि हमारी सगाई और शादी के बीच 4 साल का गैप था, और जब हमारी शादी होने वाली थी उससे ठीक 8 मास पहले मेरे पति का शुरू हो गया वो संबंध। तो ये जो है शादी इनके परिवार वालों के कारण इन्होंने दबाव में कर तो लिया, लेकिन पति पत्नी की तरह नहीं रहते। अभी भी उनका जो विचार है उस लड़की की तरफ ही लगा रहता है, और वो चाहते हैं कि मैं उस लड़की के साथ ही रहूं, उससे ही शादी करूं। अब ये लड़की जो शादी होके आई है वो बहुत परेशान है, अपने घर वालों को भी नहीं बता सकती, और सोचती है कि अपने पति में थोड़ा परिवर्तन लाऊं। लेकिन पति किसी भी प्रकार से परिवर्तित होने के मूड में नहीं है। कई बार वो महसूस भी करते हैं कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन फिर से उनकी वही स्थिति हो जाती है। अच्छा, जिस लड़की से उनका प्यार है वो लड़की भी समझ गई है कि उसने मुझसे बहुत झूठ बोला है, और अब वो उसकी भी शादी कहीं होने वाली है, लेकिन ये उसकी शादी नहीं होने दे रहे हैं, उसे डराते धमकाते हैं और बहुत प्रकार की बातें करते हैं। तो ये एक विकट स्थिति मेरे सामने आ गई है कि पति को मैं छोड़ भी नहीं सकती हूँ, पति पति जैसे भी नहीं है, वो लड़की भी उससे परेशान है, घर वाले भी इससे परेशान हैं।
1: इस व्यक्ति की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जिससे प्यार कर रहा वो सफल नहीं होगा, इनका बिल्कुल सफल नहीं होगा, क्योंकि जिस काम के करने से पहले ही निगेटिविटी प्रारंभ हो जाए, जिस काम के करने से पहले ही मन मुटाव चालू हो जाए, समझ ले वो रिश्ता 1-2 साल में ही ब्रेक होने वाला है। ये सभी युवकों को समझ लेना चाहिए, और ये तब डिप्रेशन में आएगा व्यक्ति। तो ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन इसको समझदारी पूर्वक अपने माँ बाप को ये बात अवश्य बतानी चाहिए। मैं ये इनको राय दूंगा, नहीं तो वो कहेंगे तुमने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई। दूसरी बात है, अगर ये योग करती हैं तो अपने पति को योगदान करें थोड़ा। सवेरे उठकर 5 बजे उनके मन के विचारों को बदलने के लिए उन्हें 10-15 मिनट योगदान दें, जो विधि हमारे आश्रमों पे सिखाई जाती है, और माइंड टू माइंड उनसे बात करें, कुछ अच्छी बात करें। तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, जिसे तुम प्यार करते हो उसका तुमसे सच्चा प्यार नहीं है, तुम उसके जीवन में विघ्न डाल रहे हो, उसके माँ बाप भी ऐसा नहीं चाहते, तुम्हारा भी पारिवारिक जीवन बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, तुम्हें अच्छा नहीं रहेगा, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत समझदार हो, अब तुम अपने गृहस्थ जीवन का आनंद लो, अच्छे अच्छे विचार दें रोज सेम टाइम, तो उसके विचार बदलेंगे, क्योंकि बात उसके विचारों को बदलने की है। ये प्यार आजकल बहुत ब्लाइंड मनुष्य को कर रहा है, और भारत में ये बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकेगा, न कानून, न माँ बाप, न वो व्यक्ति खुद,
0: जैसे ये बता भी नहीं है कि ये जैसे बिल्कुल वश में है, और कई बार महसूस भी करते हैं कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, मेरी शादी हो गई है, तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन फिर भी अपने विचारों से उसे नहीं निकाल पा रहा है, और अपने
1: तो इसमें दूसरे की मदद ही इसको मदद कर सकती है। तो इनको ये सब प्रयोग करने चाहिए, और थोड़ा शांति से इस समस्या को टैकल करना चाहिए, तो ठीक हो जाएगा।
0: बिल्कुल प्रथा जी, ऐसे में जबकि व्यक्ति पूरी तरह से असहाय अपने आप को महसूस कर रहा है इस कंडीशन में, क्या उसके लिए भी एक तो योग का अभ्यास इनकी पत्नी करें ही, उस व्यक्ति को भी क्या अपनी तरफ से कुछ ऐसे राजयोग के अभ्यास करने से कुछ मदद मिल सकती है कि इस स्थिति से अपने आप को बाहर निकाल सके?
1: बिल्कुल, ऐसे लाखों केस होंगे संसार में जी, बिल्कुल ऐसे ही 20-20 साल शादी का मैरिड लाइफ बिता के भी किसी और से शादी करते हैं लोग, अपना घर बर्बाद करते हैं, वो फिर बर्बाद होते हैं, उधर का बर्बाद किया, इधर का भी किया, और फिर खुद भी बर्बाद होते हैं, क्योंकि वो चलता नहीं है, लव इज ब्लाइंड, वो ब्लाइंडली कुछ भी कर लेते हैं, वो सफल होते ही नहीं, क्योंकि लव में बहुत एक्सपेक्टेशंस मनुष्य को होती हैं, और जब तक लव है तब तक ठीक है, जब एक्सपेक्टेशन सामने आ जाती हैं तो फिर मनुष्य को पता चलता है कि इस प्यार में तो स्वार्थ बहुत भरा हुआ है। तो अगर हमारा संपूर्ण समाधान ग्रुप, जो हमने 10-10 मिनट योग की बात कही है, बस संकल्प कर ले कि ऐसे जो लोग हैं जो वासनाओं के वश हैं, उनके विचार सुंदर हो, उनके अंदर प्योरिटी इमर्ज हो, इस संकल्प को रख के अगर योगदान करेंगे तो ऐसी बहुत आत्माओं को बल मिल जाएगा।
0: बिल्कुल प्रथा जी, इन्होंने एक बात और कही है कि जब मैं अपने पति की ऐसी स्थिति देखती हूँ, बार बार समझाने के बाद भी वो नहीं मानते हैं, फिर से उसी दिशा में जाते हैं, कई बार मेरे मन में भी बहुत निगेटिविटी आती है कि मैं इन्हें छोड़ के चली जाऊँ या मैं कुछ और कर लूँ, तो मेरे मन में भी एक नकारात्मक भाव पैदा हो जाते हैं, ऐसे में नहीं।
1: देखिए, इन्हें अब शिव बाबा से प्यार तो करना ही चाहिए, शिव बाबा की तरफ पूरी तरह चलना चाहिए, हो सकता है इनके लिए ये बहुत कल्याणकारी हो जाए, इन्हें प्रभु प्राप्ति हो जाए इस जीवन में, तो लेकिन जैसा मैंने कहा, इन्हें ये बात अपने माँ बाप को अवश्य बतानी चाहिए
0: जी,
1: और राजयोग का अभ्यास बहुत अच्छी तरह करना चाहिए।
0: बिल्कुल, चलिए हम उम्मीद करते हैं भ्राता जी, जयपुर से इन्होंने, नाम तो खैर मैंने नहीं बताया है, लेकिन जिनकी भी ये समस्या है अवश्य समाधान हो जाए, समाधान परिवार की बहुत सारी शुभकामनाएं इनके साथ है, क्योंकि ऐसी कंडीशन है इनकी कि क्या करें, जिसको खाते भी नहीं बन रहा है
1: और उगलते
0: भी नहीं बन रहा है कहते हैं, लेकिन इनकी समस्या दूर हो जाए ऐसी हमारी कामना रहेगी। भ्राता जी, ये हमारे पास अगला आया है हैदराबाद से मेल, व्यंकटेश जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि मैं विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इस कार्य में मेरी जो धर्म पत्नी है उनका सहयोग मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, वो मुझे योग के लिए भी नहीं जाने देते हैं और मुरली क्लास के लिए भी नहीं जाने देते हैं, मुझे क्या करना चाहिए?
1: गाड़ी के दो पहिए हैं स्त्री पुरुष, और एक पहिया टूटा फूटा हो तो दूसरे पहिए को सारा तो प्रेशर वो झेल नहीं सकता, और ये जीवन की गाड़ी इसमें अच्छी नहीं चलती है। ये समस्या राजयोग के पथ पर चलने वालों को आती है, क्योंकि मार्ग प्योरिटी का है
0: जी।
1: मुझे याद है महात्मा गांधी के पास भी कुछ लोग ये समस्या लेकर आते थे, जब वो ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाते थे सबको, तो वो कहते थे मेरी पत्नी तो इसमें सहयोग नहीं देती मुझे, तो महात्मा गांधी बड़े पावरफुल होके उन्हें कहते थे, तुम अगर पत्नी के सहयोग से पवित्रता को अपनाना चाहते हो और इसमें निर्बल बने हुए हो, तो तुम देश को स्वतंत्र कराने में कैसे योगदान करोगे, तुम कमजोर हो, शक्तिशाली नहीं हो। शक्तिशाली वो व्यक्ति होता है जो करना चाहता है अच्छा कार्य, उसे दृढ़ता पूर्वक करता है, तो लोगों में ताकत आ जाती थी
0: जी।
1: तो मैं इन्हें कहूंगा कि पवित्रता इन्होंने भगवान की आज्ञा के अनुरूप अपनाई है, किसी के कहने से नहीं, किसी के बहकावे से नहीं, अपनी पत्नी को कष्ट देने के लिए नहीं, तो ये अपनी पवित्रता की धारणा में बहुत स्ट्रांग रहें, क्योंकि ये ईश्वरीय आज्ञा है, और अब आत्माओं को अपनी संपूर्ण पवित्र स्थिति की ओर जाना ही है। मैं तो इस संसार का भविष्य देख रहा हूँ, अगले 5-7 सालों में संसार का हर व्यक्ति एक चीज महसूस करेगा, विकारों से उसे वैराग्य हो जाएगा और वो पवित्र बनने का इच्छुक हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य आत्मा के जो ओरिजिनल प्योर संस्कार हैं वो उसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए इन्हें अपनी पत्नी को कन्विंस करना चाहिए बहुत प्यार से कि चलो तुम भी इस मार्ग पे चलो, देखो कितना अच्छा मार्ग है, इसमें जोर जबरदस्ती का तो ये सौदा है नहीं, लेकिन प्यार सम्मान और सुभावनाओं का प्रयोग करके उनको भी एक बार आश्रम पढ़ लाएं और अच्छा राजयोग के लेसन दिलाएं, और वो रोज न भी आए तो घर में रह के करें, और ये एक डिसिप्लिन्ड लाइफ है, एक पवित्र जीवन है, थोड़े दिनों में ये हर एक को पसंद आने ही लगता है। शुरू में पड़ोसी माँ बाप उनके और फ्रेंड सर्किल वाले कुछ कुछ कहते रहते हैं, तुम्हारा ये जीवन इसलिए थोड़ा ही है, जब बूढ़े हो जाओगे तब पवित्र रहना, ये सब क्या है, ये सब गलत है, लेकिन ये भगवान की आज्ञा है। अभी इन्हें बूढ़े होने का मौका नहीं मिलेगा, अभी इनके लिए समय है
0: जी।
1: अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, अपना जन्म जन्म का भाग्य बनाएं और प्रभु मिलन का संपूर्ण आनंद लें।
0: बिल्कुल भ्राता जी, एक जैसे इनका केस था कि इनकी पत्नी सहयोग नहीं दे रही है, दूसरा आया है हमारे पास बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से, और ये कहती है कि ज्ञान में आने के पश्चात मुझे पवित्रता का ज्ञान मिला, मैं अब संपूर्ण पवित्र रहना चाहती हूँ, लेकिन जब भी अपने पति से इस विषय में बात करती हूँ तो वो नाराज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि जैसा मैं कहता हूं वैसा करो या घर से निकल जाओ। तो ये एक आर पार वाली बात हो जाती है, तो इस समस्या का इन्होंने भी समाधान पूछा है।
1: हाँ देखिए, ना तो इसमें घर से निकलने की बात है, लेकिन इन्हें अपने जीवन को पवित्र भी बनाना है, क्योंकि पवित्रता के द्वारा ही ये प्रभु मिलन का सुखद अनुभव कर पाएगी। तो जैसे मैंने कहा कि पति पत्नी के बीच में अगर इस तरह का आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो प्योरिटी के मार्ग में ये बड़ी बाधा आती है। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये केस आते ही रहते हैं, इसलिए माताओं को भी काफ़ी कष्ट होता है और लंबे काल के बाद वो पवित्रता को अपना पाती हैं, लेकिन ये उनको कन्विंस करना जारी रखे, लेकिन अपने विचारों को शुद्ध करती चले, अपने अंदर स्वमान का और योग का बल भरती चले, ताकि इसके बोल में बहुत शक्ति आ जाए, और जब ये अपने पति को कहे तो कन्विंस हो, वो इसे सहयोग दे, क्योंकि जो योगी होता है उसे सभी का सहयोग मिलता है, जो अशरीरीपन में स्थित हो जाते हैं उन्हें सभी का सहयोग मिलता है, जो स्वमान में स्थित हो जाते हैं उन्हें सबका सम्मान मिलने लगता है, इसलिए ये अपने स्वमान को बढ़ाएं, विशेष रूप से मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ, मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और अपने पति के प्रति भी यही दृष्टि रखे, ये बहुत अच्छी आत्मा है, मेरी सहयोगी आत्मा है। रोज सवेरे उठकर 7 बार इनको अवश्य याद करना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मेरा पति आत्मा मेरी बहुत सहयोगी है। इस तरह जब वो उनसे प्यार से बात करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो वो इन्हें पूर्ण सहयोग देंगे।
0: चलिए, हमारी कामना रहेगी भ्राता जी, क्योंकि मुझे लगता है कि समाधान में हमने सबसे ज्यादा चर्चा यदि किसी विषय पे की है तो ये पवित्रता का ही विषय रहा है, ब्रह्मचर्य का विषय रहा है, क्योंकि एक नया विषय है तो लोगों को थोड़ा समझने में डाइजेस्ट करने में समय तो लगेगा, लेकिन खैर समय भले लगे लेकिन अच्छी चीज तो अच्छी चीज ही है। कामना रहेगी हमारी कि इसे वो जरूर स्वीकार करें। आज की तमाम चर्चाओं के लिए भ्राता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, पवित्रता, जैसे मैं अभी भ्राता जी से भी कह रहा था, ब्रह्मचर्य एक महान शक्ति है। यदि हम किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा लें तो उसमें इसकी महत्ता को हम सीधे सीधे तौर पे देख सकते हैं। क्या धर्म ग्रंथ केवल पढ़ने के लिए ही हैं? उसे आचरण में भी तो लाना चाहिए हमें। यदि एक बार हमने उसे आचरण में ला के देखा तब उसकी शक्ति को हम अवश्य अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए हम तो ये चाहेंगे कि आप भी अपने जीवन में पवित्रता को अवश्य अपना कर देखें। चलिए, जीवन भर की बात नहीं है, कई बार हम ये सोचते हैं कि जीवन भर क्या ऐसे रहना होगा, 1 मास के लिए, 1 वर्ष के लिए आप इस पवित्रता को अपने जीवन में ला के देखें। यदि आपको महसूस होता है कि सचमुच आपके अंदर की अशांति दूर हो गई है, आपके जीवन की असफलता दूर हो गई है, आपकी तमाम जो शुभ मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होने लगे हैं, जीवन सुख शांति से भरपूर होने लगा है, तो आप इसे कंटिन्यू करें, अन्यथा ये तो आपका जीवन है, आप इसके मालिक हैं। केवल हम अनुरोध कर सकते हैं इस ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय के तमाम भाई बहनों के अनुभव के आधार पे कि आप भी एक बार इसे अवश्य अनुभव करके देखें। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके जीवन में सुंदर चमत्कार शुरू हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: वो पहाड़ देख रहे हो?
1: हाँ, कितना सुंदर है।
0: और उनको देख रहे हो?
1: वो तो रतन मोहिनी दादी है ना।
0: वो इस पर्वत से भी ज्यादा अपने नियमों पे अडिग, उसकी चोटी से भी उच्च स्थिति वाली है। उस पर्वत से जैसे सूर्य दिखाई देता है ना, ऐसे ही दादी जी ज्ञान सूर्य यानी परमात्मा से मिलवाती है।
2: ऐसी असीम शक्ति जिन्होंने समाज कल्याण में समर्पित कर दिया अपना जीवन, आइए सुने उनकी कहानी। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हर शुक्रवार रात 9:30 बजे कार्यक्रम शक्ति वंदन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रुक, ओ भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पकाए चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: अभी बजे हैं सुबह के 8। स्वयं के प्रति एक मिनट का समय दें।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है, गुड मॉर्निंग। अब इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं तो आइए बातें करते हैं आज के दिन विशेष के बारे में, और आशा करूंगा कि आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। तो आइए आज के दिन विशेष की अगर मैं बात करूं तो खास आज शनिवार है, और शनिवार के दिन आप गुड मॉर्निंग आबू इस कार्यक्रम को सुनते हैं, जहां पर आपको आज के दिन विशेष की कुछ खास बातें शेयर करते हैं। और ख़ास जिस तरह से हम लोग करंट सिनेरियो में जी रहे हैं, जहां पर बातें जो हैं कुछ अच्छी भी है और कुछ थोड़ा अस्त व्यस्त भी है। तो आइए, 1 अगस्त 2026 आज का तारीख है, और पहली तारीख है भाई, पहली तारीख है, पहली तारीख की ढेर सारी खुशी आप सभी को। और देखा जाए तो आज विश्व स्तनपान सप्ताह का जो शुरुआत है वो आज से शुरू हो जाता है पूरे 7 दिन तक, और ये खास आंगनवाड़ी में विशेष रूप से ये चीज़ें चलती हैं। और आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता आपके आसपास में गली मोहल्ले में आते हैं और विशेष रूप से इस बात के बारे में बताते हैं। तो ये भी एक खास मुहिम है जिसमें हम सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। अपने घर के जो विशेष महिलाएं हैं उन सभी को इसमें सहभागिता में अनुमति दे और उनके साथ जुड़े, तो ये एक अच्छा सफल आयोजन हो सकता है। तो पूरे हफ्ते भर के लिए हमें जो है इस कार्यक्रम में साथ देना है, ताकि हर गांव की महिला जो है इस बात से अवेयर रहे, जागरूक हो जाए कि स्तनपान कितना इम्पॉर्टेंट है एक बच्चे के लिए, माँ और बच्चे का कनेक्शन कितना सुंदर बनता है अगर हम इस चीज़ को सही तरीके से समझ लेते हैं। जब तक हम लोग इस बात को ठीक से नहीं समझेंगे या फिर इसका उपयोग नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पे हमारे जीवन में जो मुश्किलें हैं, कड़वाहट है बच्चे के और माता पिता के बीच में, वो बनी रहती है। तो इस कड़वाहट को ख़त्म करने का भी एक बीज रूप जो कहते हैं वो विश्व स्तनपान दिवस के रूप में विशेष मुहिम अभियान जो है सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें ये सारी बातें बताई जाती है। तो चलिए, सोच बदलो तो ज़िंदगी बदले, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और आप सभी को 1 अगस्त है आज और शनिवार का दिन है, तो चलिए मैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ आपको ले चलता हूँ। गुरु चरण कमल में मेरा जन्म जन्म विश्राम। तो आइए इस खूबसूरत गीत का आनंद उठाते हैं, उसके बाद फिर हम बातें करेंगे। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। गुरु चरणों में मिलते हैं चारों धाम, ये खूबसूरत गीत आपने सुना। तो गुरु चरणों का मतलब ये है कि आप इतना झुक जाए कि फिर आप पर गुरु की मेहर हो जाए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके आप चारों धाम का दर्शन कर ले, ये भाव है। तो भाव को समझें, और हम लोग कभी कभी भावनाओं को समझे बिना ही कृत्य करते हैं कई बार, तो ऐसी चीज़ें ना हो। पहले भावनाओं को समझे, उसको मन से समझे कि इसका मतलब क्या है, है ना। नहीं तो गुरु के चरणों में अगर आप बैठे रहेंगे तो गुरु अपना काम कैसे करेंगे, गुरु अन्य शिष्यों से कैसे मिलेंगे, है ना। और आप भी कितने देर वहाँ बैठे रहेंगे, गुरु का गुरु करके हम अपने जीवन को उसकी उन्नति करते हैं। गुरु समान बन के अन्य लोगों का कल्याण कर सकते हैं, इसके लिए गुरु आशीष देते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं। तो यहाँ इसका भाव बहुत ज़रूरी है समझना। और जब आप इतना चरणों में बैठने का मतलब, इतना आपको क्या कहते हैं, देही अभिमानी हो जाना है, इतने भावयुक्त होके आप उसमें समर्पण हो जाना है, जिससे आपको चारों धाम का दर्शन हो जाए और आप अपने जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर ले, ताकि आप जो गुरु के पद चिन्हों पर चल के गुरु जैसे ही कार्य कर सके। तो चलिए, गुरु चरण कमल में ये गीत के साथ ये ज्ञान की बातें भी आपको शेयर किया है। तो आइए आज विशेष, जैसे मीना कुमारी और भगवान दादा, इनका जन्मदिन है। भगवान दादा एक ऐसे पुराने एक्टर रहे हैं जिनकी कहानी भी फिल्मी जैसा ही रहा है। तो आइए उस फिल्मी कहानी को सुनेंगे, उसके बाद मीना कुमारी की भी कहानी मैं सुनाने वाला हूँ, और साथ ही साथ विश्व स्तनपान सप्ताह के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि ये एक जागरूकता सप्ताह है, और इसका मतलब यही था कि अगस्त महीने के पहले प्रथम सप्ताह में पूरे विश्व में स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाए, और ये सप्ताह के दौरान माँ के दूध के महत्व की जानकारी सबको दिया जाना चाहिए। जैसे नवजात शिशुओं के लिए माँ का दूध ही अमृत के समान है, माँ का दूध शिशुओं को कुपोषण व अस्थिर जैसे बीमारियों से बचाता है। स्तनपान को बढ़ावा देकर शिशु मृत्यु दर में कमी लाया जा सकता है। शिशुओं को जन्म से 6 महीने तक केवल माँ का दूध पिलाने के लिए महिलाओं को इस सप्ताह के दौरान विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। तो कई बार क्या हो जाता है, बच्चा माँ का जन्म होते ही बच्चे को हम बहुत जल्दी बड़ा करना चाहते हैं इंस्टेंटली, और इसलिए हम अलग अलग चीज़ों को पिलाना शुरू कर देते हैं, जबकि वो गलत है, क्योंकि पूरे 6 महीने तक बच्चा जो है माँ के सानिध्य में रहेगा, माँ के आंचल से दूध पीता रहेगा, तो उसकी विकास जो है वो सर्वांगीण विकास होगा। अगर हम माँ का दूध, जो मेन उसका पोषण अमृत है, उससे दूर करके अगर हम दूसरी चीज़ों में बच्चे को डाल देते हैं, तो बच्चे का कमज़ोर होना या फिर उसमें दिक्कतें होना या मृत्यु दर भी बढ़ सकता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसके साथ माँ और बच्चे का जो प्यार है वो बना रहता है। अगर बच्चा दूध पीता है तो बहुत सारी जो है कंपैशन हमारे जीवन में, हमारे जीवन में मूल्य इसमें निर्माण होते हैं, और एक पारिवारिक भावना जो है बनी रहती है। लेकिन हम अगर बच्चे को 1 महीना दूध पिलाए और दूसरे महीने से हमने सोचा कि हम बहुत सारे विटामिन के एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं, टीवी में देखते हैं, हम सोचते हैं कि ये खिलाने से बच्चा जल्दी हष्ट पुष्ट और दुष्ट होगा, लेकिन ये मान्यता बिल्कुल गलत है। माँ के दूध के बिना और कोई चीज़ बच्चे के लिए सबसे अच्छा सर्वोत्तम नहीं है, तो इसीलिए माँ का दूध सर्वोत्तम है, उसे ही पिलाना चाहिए। तो आइए मैं आप सभी को ले चलता हूँ, भगवान दादा की कहानी आपको सुनाते हैं जिनका जन्मदिन आज है। जी हाँ, 1 अगस्त को जन्मे भगवान दादा की कहानी आपके नाम। अभी सुनते रहो, मुस्कराते रहो।
1: बॉलीवुड का भगवान, सबसे अनोखा, एकदम अलबेला, पूरा नाम भगवान अभाजी पालव।
2: बैठिए, तशरीफ रखिए, मैं अभी गद्दी पर नहीं बैठा हूँ, इसलिए आपको भी उठने की कोई जरूरत नहीं, मगर हाँ, सब एक्टर मौजूद है। विलन कहाँ है? विलन कौन आनी जा? वो विलन जिसे तुम लोग मैनेजर साहब कहते हो, कहाँ है वो?
1: भगवान दादा का जन्म 1 अगस्त सन 1913 में हुआ। ये बात हैरान करती है कि जिस आदमी ने आगे जाकर डांस का सबसे मशहूर स्टाइल बनाया वो दरअसल एक मिल मजदूर का लड़का था, पर जुनून की हद तक ये फिल्मों से मोहब्बत करता था। बतौर मजदूर इसने काम भी किया पर सपने फिल्मों के ही थे।
2: अब मैं बहुत जल्दी अपने समय का बड़ा आदमी, यानी हिंदी में कलाकार, उर्दू में अदाकार, अंग्रेजी में आर्टिस्ट होने वाला।
1: ये वो वक्त भी था जब मूक फिल्मों का दौर था और ऐसी ही एक साइलेंट फिल्म में इन्हें ब्रेक भी मिला। इन्होंने फिल्म मेकिंग सीखी और कुछ लो बजट फिल्में भी बनाने की सोची। इन्होंने पहली बार एक फिल्म को डायरेक्ट करी जिसका नाम बहादुर किसान था, जिसमें इनके को डायरेक्टर थे पवार। ये 1938 की फिल्म थी। 1938 से लेकर सन 1949 तक ये छोटी मोटी बजट की फिल्में बनाते रहे।
2: नाटक का शौक मेरे दिमाग को है, आप सजा मेरे पेट को दे रहे हैं। मैं जरा ड्रामे के मूड में था, अब फिर कभी नहीं गाऊंगा।
1: हर बार इनका किरदार एक बड़े ही सिंपल इंसान का होता था। इन्होंने एक तमिल फिल्म भी बनाई जिसका नाम था वर्ण मोहिनी, जिसमें एम के राधा और श्रीलंका की अभिनेत्री थावामनी देवी भी थी। ये बात भी हैरान करेगी कि भगवान दादा दरअसल कुश्ती से भी बेहद प्यार करते थे और इसी वजह से साइलेंट फिल्म क्रिमिनल में इन्हें एक रोल मिला था और वहीं से हुई थी शुरुआत। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान इन्होंने उस वक्त की मशहूर अभिनेत्री और हीरोइन ललिता पवार को ऐसा थप्पड़ मारा कि वो फिल्मी थप्पड़ ना होकर असली थप्पड़ बन गया और ललिता पवार की आँख की एक नस फट गई। 3 साल के लंबे इलाज के बाद भी वो आँख ठीक ना हो पाई और ललिता पवार हीरोइन से बनी चरित्र अभिनेत्री। दरअसल 1942 में ही जागृति पिक्चर्स के साथ इन्होंने प्रोडक्शन का काम शुरू कर दिया। जागृति स्टूडियोज जो कि मुंबई के चेंबूर इलाके में रहे वहाँ पर ये काम करते थे और तभी महान फिल्म मेकर राज कपूर से इनकी मुलाकात हुई। राज कपूर साहब ने इन्हें सुझाव दिया कि क्यों नहीं तुम एक सामाजिक मुद्दे पे फिल्म बनाते हो। भगवान दादा को बात समझ में आई, फिल्म बनाई अलबेला, जिसमें हीरोइन थी इनकी गीता बाली और संगीत दिया था इनके बड़े ही अनोखे दोस्त और महान संगीतकार सी रामचंद्र ने। शोला जो भड़के ये गाना इतना मकबूल हुआ कि गणपति उत्सव के दौरान जब गणपति विसर्जन के लिए जुलूस निकलता कुछ देर के लिए वो भगवान दादा की चाली के बाहर रोका जाता और ये बाहर आते और शोला जो भड़के इस गाने पर ये डांस करते। जब तक ये डांस न होता तब तक गणपति का जुलूस आगे नहीं निकलता था। अलबेला इतनी बड़ी हिट हुई कि भगवान दादा ने बंगला भी खरीद लिया और गाड़ियां भी। लोगों को लगा कि ये रंग से राजा बन गया और सभी ने इन्हें सलाम किया। 1953 में फिल्म बनाई इन्होंने गीता बाली के साथ ही झमेला और उसके बाद बनाई लाबेला, पर ये दोनों फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई।
2: तो जिंदगी के साज पर दुख और सुख का चढ़ाव उतार, घटना बढ़ना और चलक मालूम होने लगती है।
1: सारा पैसा इन्होंने लगा दिया था और फिर वो हुआ जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। वो इंसान जो रंक से राजा बना वो फिर राजा से रंक बन गया। भगवान दादा का डांसिंग स्टाइल भले ही बड़े बड़े एक्टर्स ने कॉपी किया हो, महानायक अमिताभ बच्चन भगवान दादा के ही डांसिंग स्टाइल पे आगे निकलते हुए सुपरस्टार बने, पर भगवान की मर्जी के आगे किसकी चली है। भगवान दादा को अपना 25 रूम का बंगलो बेचना पड़ा, एक से बढ़कर एक साथ गाड़ियां थी इनके पास वो बेचनी पड़ी और फिर आ गए एक छोटी सी चाली में।
2: आप जो कुछ कहेंगे वो मैं करूंगा। मैं गाड़ी धो सकता हूँ, बर्तन धो सकता हूँ, जमीन साफ कर सकता हूँ, यानी कि कपड़े धो सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ।
1: ये छोटे छोटे रोल निभाते रहे और किसी तरह गुजारा चलता रहा। इनके सारे दोस्त इन्हें छोड़कर चले गए, सिर्फ सी रामचंद्र, ओम प्रकाश और गीतकार राजेंद्र किशन ने इनसे दोस्ती न तोड़ी। भगवान दादा ने गरीबी में अपने आखिरी दिन जरूर काटे लेकिन उन्हें इसका ज्यादा मलाल ना था।
3: कहिए आपका क्या हाल है?
2: अजी साहब, हम भी गाना गाने के शौक में बर्तन धोने के लिए हाजिर हो गए।
1: भगवान दादा की जिंदगी में बनी एक बड़ी अनोखी फिल्म बनाई गई, नाम रखा एक अलबेला। भगवान दादा को ईश्वर ने लंबी उम्र दी। 79 बरस की उम्र में भगवान दादा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था, पर तब तक इनके बाकी सारे दोस्त भी गुजर चुके थे। किस्मत से पिटने के बावजूद भगवान दादा ने वो छाप छोड़ी जो वक्त के साथ और गहरी होती गई।
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए, भगवान दादा की कहानी इसलिए सुनाए क्योंकि ये कहानी, जैसे कि मैंने कहा, राजा और रंक, रंक से फिर राजा, रंक से राजा बने, राजा से फिर रंक बने, है ना। तो कई बार ऐसा होता है ज़िंदगी में, तो ऐसे में घबराने की कोई बात नहीं है ना, लेकिन ऐसे मौके पर आपको अपने आप को स्टेबल रख के अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीना है, जो भगवान दादा अपनी डांसिंग और अपनी जो कला है उससे सिखाते गए। तो वही उनका एक बहुत ही खूबसूरत गाना, वो गाना जो है जिसके लिए सभी लोग डांस करते हैं, वो गाना मैं आपको सुनाने वाला हूँ अभी। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। 8:26 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ। सुनिए नाम बड़े दर्शन खोटे अलबेला फिल्म से रंग से राजा बने भगवान दादा, लेकिन फिर कहानी में ऐसा ट्विस्ट आया जो आपने सुना कि उनके जीवन में फिर दूसरी फिल्म तीसरी फिल्म जो उन्होंने बनाई, एक फिल्म हिट होने से इनको बहुत सारा पैसा मिल गया, लेकिन दूसरा फिल्म जो है चौपट हो गया जिसके कारण इनको नुकसान हुआ, और फिर तीसरी फिल्म भी चौपट हो गया जिसके कारण फिर से वो राजा से रंक बन गए और इनके जितने भी दोस्त थे वो छोड़कर चले गए। तो ये है किस्मत की हवा। तो ये गाना जो अब अगले वाला सुनाने वाला हूँ, ये इनके जीवन को बिल्कुल सार्थक करता है भगवान दादा के। सुनते रहो, मुस्कराते रहो। हेलो जी, नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग, ओम शांति।
0: ओम शांति जी, ओम शांति।
1: कैसे हो?
0: बढ़िया बढ़िया, बताओ आप कैसे हैं?
1: आप आ गए, बाहर आ गई और अच्छा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और आपको रेडियो मधुबन परिवार सभी श्रोते भाई बहने हमारे सभी दोस्तों को नाम सहित शांति नमस्कार। सुभाष भाई का जलगांव महाराष्ट्र से सभी को नमस्कार। मजा आ रही है रमेश जी, और इधर बहुत दो दिन से
0: बारिश
1: बहुत हो रही, और इसी कारण से दो चार दिन से इंटरनेट इशू आ रहा है। बीच में इंटरनेट इशू के

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। चलिए, सुभाष जी ने आप सभी को बड़े प्यार से याद किया और भगवान दादा की कहानी हम लोग सुन रहे थे। और इनकी कहानी जिस तरह से हमने कहा, कभी नरम कभी गरम लेकिन एक बार इनकी किस्मत गरम हुई थी और चमक गई थी, उसके बाद फिर नरम पड़ गई, तो ज़िंदगी भर वो कभी फिर से उभरे नहीं, क्योंकि उसके बाद उनको काफ़ी नुकसान हुआ। तो आइए एक और कहानी मैं बताऊँगा, सुनाऊँगा आपको, मीना कुमारी का। इनके जीवन में ये तो शोहरत की बुलंदियों पर थी, लेकिन दुखों का पहाड़ हमेशा इनको ज़िंदगी भर, बचपन से लेकर अंत तक दुख हमेशा इनके जीवन में बने रहे। तो क्या कारण है, कैसी इनकी कहानी है, लीजिए आपको डायरेक्ट सुना देता हूँ अभी, मीना कुमारी की कहानी आपके नाम।

माँ बाप ने नाम रखा महाजबी बानो। फिल्म इंडस्ट्री ने बना दिया इन्हें ट्रेजेडी क्वीन और इनके चाहने वाले इन्हें मीना कुमारी के नाम से जानते हैं।

जन्म 1 अगस्त सन 1932 में हुआ। मीना कुमारी का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, इस वजह से बचपन से ही इन्हें फिल्मों में काम करना शुरू करना पड़ा। ये बात मशहूर रही कि मीना कुमारी बचपन में रोया करती थी कि मुझे एक्टिंग नहीं करनी, मुझे स्कूल जाना है, पर परिवार की माली हालत ऐसी थी मीना कुमारी अगर काम ना करती तो परिवार का खर्च ना चलता।

ये बात भी मशहूर है कि जब मीना कुमारी का जन्म हुआ था तब इनके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि ये डॉक्टर की फीस चुका सकें, इसीलिए कुछ वक्त के लिए मीना कुमारी को एक अनाथालय में रख दिया गया था। हालांकि इनके पिता भी कलाकार थे और पारसी थिएटर से इनका गहरा नाता था, पर इनका काम कुछ खास बनता नहीं था।

उनके माता पिता दोनों ही कलाकार थे। पिता अली बख्श पारसी थिएटर से जुड़े हुए थे और माँ कामनी नाम से स्टेज पर डांस किया करती थीं। 7 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री ने महाजबी बानो का नाम रख दिया बेबी मीना। और जब बेबी मीना बड़ी हुई और बतौर हीरोइन काम करने लगी तो इनका नाम मीना कुमारी ही रख दिया गया।

शुरुआती दौर में इन्होंने धार्मिक फिल्मों में काम किया, जैसे वीर घटोत्कच और श्री गणेश महिमा। पर धीरे धीरे वो वक्त आ गया जब इन्हें विजय भट्ट की फिल्म बैजू बावरा में बतौर मेन हीरोइन रोल मिला। उनका काम बहुत सराहा गया। सन 1953 में इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा भी गया था। उसके बाद तो मीना कुमारी ने पलट के नहीं देखा। सन 1953 में परिणीता, 1956 में एक ही रास्ता, 1957 में शारदा, 1960 की दिल अपना और प्रीत

0: ये फिल्म गुरुदत्त साहब ने बनाई थी और मीना कुमारी ने इसमें छोटी बहू का रोल निभाया था, वही छोटी बहू जिसे इस फिल्म के अंदर शराब की लत लग जाती है। ये वो साल था जब तीन फिल्मों के लिए मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड के लिए नॉमिनेट करा गया था, यानी कि किसी और हीरोइन का कोई चांस ही नहीं था। ये फिल्में थी आरती, मैं चुप रहूंगी और साहिब बीबी और गुलाम।
1: दिखता है आपको नशे की लत लग चुकी है।
2: मुझे नशे की लत नहीं लगी रे, बल्कि
1: बल्कि क्या?
2: मेरे स्वामी, उन्हीं के नशे में चूर रहती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं पीऊं, पीती हूँ।
0: अगर हम मीना कुमारी के निजी जीवन की तरफ रुख करें तो हमें पता चलता है कि सन 1952 में मीना कुमारी को डायरेक्टर कमाल अमरोही से प्यार हो गया। कमाल साहब मीना जी से उम्र में 15 साल बड़े थे और पहले से ही शादीशुदा थे। मीना कुमारी जो खुद एक शायरा रहीं, उन्होंने कमाल अमरोही के लिए ये शेर लिखे थे कि दिल सा जब साथी पाया, बेचैनी भी वो साथ ले आया। आलम ये था कि इन दोनों ने फैसला किया कि ये अब शादी कर लेंगे और शादी के एकदम बाद सन 1953 में फिल्म दायरा बनाई गई, जिसकी बुनियाद कमाल अमरोही और मीना कुमारी की जिंदगी थी। और सन 1956 तक आते आते इन दोनों के रिश्ते में कड़वाहट बढ़ने लगी। सन 1956 में फिल्म पाकिजा की शुरुआत हुई, पर क्योंकि मीना कुमारी और कमाल अमरोही के बीच दूरियां बढ़ रही थी, इस वजह से फिल्म पाकिजा को रोक दिया गया। बाद में सुनील दत्त साहब और नरगिस दत्त ने इन दोनों से कहा कि इतनी अच्छी फिल्म है, इसे मत रोको और इस फिल्म को बनाओ। तब इन दोनों ने इस फिल्म में दोबारा काम शुरू किया, इसी वजह से पाकिजा को 16 साल लगे पूरा होने में। कमाल अमरोही से अलग हो जाने के बाद मीना कुमारी शराब की लत में डूब गईं। लोगों को ऐसा लगा कि साहिब बीबी और गुलाम का वो चरित्र जो वो निभा रही थीं, अब असल जिंदगी में भी जी रही हैं। इस बीच ये बातें भी रहीं कि मीना कुमारी साहब के प्रेम संबंध उस जमाने के नए एक्टर धर्मेंद्र के साथ रहे, जो आगे जाकर एक सुपरस्टार बने।

मीना कुमारी जी की दोस्ती गुलजार साहब के साथ भी खूब रही और मीना जी के गुजर जाने के बाद गुलजार साहब ने एक किताब पब्लिश की जिसमें मीना कुमारी की शायरी थी। धीरे धीरे अकेलेपन ने मीना कुमारी को इस कदर घेर लिया कि वो असल जिंदगी में भी ट्रेजेडी क्वीन बन गईं। शराब उनके शरीर को तोड़ रही थी और प्यार उनके दिल को। इन्ही लम्हों में मीना कुमारी ने कहा था, तुम क्या करोगे सुनकर मुझसे मेरी कहानी, बेलुत्फ जिंदगी के किस्से हैं फीके फीके। और जब मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से तलाक लिया तब इस संजीदा अभिनेत्री ने कहा था, तलाक तो दे रहे हो नजरे कहर के साथ, जवानी भी मेरी लौटा दो मेहर के साथ।

सन 1971 में बीमार हालत में ही गुलजार साहब की फिल्म मेरे अपने में ये नजर आईं, एक अलग ही भूमिका करती हुई। सन 1972 तक इनकी तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी कि बचने की उम्मीद तकरीबन खत्म हो गई थी, पर जैसे तैसे फिल्म पाकीज़ा को रिलीज किया गया और मीना कुमारी इस बात से खुश थीं कि वो इस फिल्म को देखने भी जाएंगी। पर पाकीज़ा की रिलीज के 3 हफ्ते बाद ही इनकी तबीयत इतनी खराब हुई कि इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और 31 मार्च सन 1972 को मीना कुमारी ने आखिरी सांसें ली।

ये भी अजीब इत्तफाक है, जब इनका जन्म हुआ था तब इनके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो डॉक्टर की फीस चुका सकें, और जब इनकी मौत हुई तब भी यही हालात थे। पर एक प्रोड्यूसर ने इनके कुछ पुराने पैसे लौटाने थे, वो इनकी मौत के वक्त काम आए।

मीना कुमारी एक ऐसी अभिनेत्री रही जिन्होंने 30 बरस फिल्मों में काम किया, एक से बढ़कर एक किरदार निभाए और बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गईं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में मीना कुमारी जी का नाम हमेशा अमर रहेगा।

0: बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरें और गॉसिप।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। 8:42 हो रहे हैं, आप हो मेरे साथ। तो चलिए, दो विशेष दिग्गजों का जन्मदिन, दादा भगवान दादा और मीना कुमारी, दोनों के जिंदगी में कहीं ना कहीं जो है एक समानता थी कि एक चीज़ उनसे छूटी नहीं रही थी। दोपहर भगवान दादा के जीवन में कुछ पल के लिए अमीरी आ गई थी, बाद में उसकी गरीबी उनके साथ थी। और मीना कुमारी के जीवन में पैसे तो बहुत थे, नाम भी बहुत था, लेकिन प्यार नहीं मिला। उन्हें दुख बहुत आते रहे, कोई भी चीज़ उन्हें पूरी तरह से मिल नहीं पाई। इवन जन्म से लेकर अंत तक दुख ही दुख उन्होंने झेल। तो चलिए, ये थी कहानी दो दिग्गजों की। और एक और शख्सियत के बारे में बातें करूँगा, दामोदर माओ जो। जी हाँ साथियों, ये भारतीय राज्य गोवा के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, आलोचक और निबंधकार हैं। और कोंकणी में अपने प्रतिभाशाली लेखन और ख़ास तौर पर कर्मलिन उपन्यास के लिए जाने जाते हैं। दामोदर माउजो को उनके उपन्यास कर्मलिन के लिए 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कोंकणी में विशेष सम्मानित किया गया और 2021 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो ये जो कुछ खास बात है दामोदर माओ जो के बारे में। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। गुड मॉर्निंग आबो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। और तब तक आप एंजॉय कीजिए समाचारों का। समाचारों के बाद फिर आपको वापस जो है नए कार्यक्रम सुनने को मिलेंगे। तो चलिए, इसी के साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा। और जाते जाते सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार, ये गीत छोड़े जा रहा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर, वे वहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। भारत ने ईरान से किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक बृहस्पतिवार को संसद से पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंड का प्रावधान करने और फास्ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्टैग अदालत स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूर सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कुर्नूल 4 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण के लिए 4.5 गीगावाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसे पावर ग्रिड द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा लगभग 5,550 करोड़ रुपए के निवेश निवेश से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 3,550 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित कुरनूल पवन ऊर्जा क्षेत्र और सौर ऊर्जा क्षेत्र भाग ए और भाग बी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। वे अनंतपुरम में 2,500 मेगावाट और कुरनूल में 1,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पावर ग्रिड द्वारा 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्यान्वित ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
3: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहां शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया दो चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसंख्या के आंकड़े एकत्र करना है। दो चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
4: पहले चरण में नागरिक आज से 15 अगस्त तक आधिकारिक जनगणना पोर्टल se.census.gov.in पर अपनी जानकारी देकर सेल्फ इन्यूमरेशन करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस चरण का दूसरा भाग 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जनगणना अधिकारी मकान सूचीकरण और शुरुआती गिनती के लिए घरों का दौरा करेंगे। आखिरी चरण अगले साल फरवरी में होगा, जब जनगणना करने वाले कर्मचारी वास्तविक जनसंख्या गणना के लिए प्रत्येक घर के हर सदस्य के नाम, उम्र, लिंग, जाति और धर्म के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि POJK में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है।
5: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह जाना चाहिए।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। जैगथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
6: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता, जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के साथ साथ कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर एथलीट तेजस्विन शंकर को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
7: धन्यवाद कनक। जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के लिए श्री मोदी का बयान अनेक अखबारों की हेडलाइन है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर कहा, हमें इन गुमराह बच्चों को माफ करना चाहिए। पत्र ने अंदर के पृष्ठ पर आप बीती शीर्षक से छात्रों के प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों का वक्तव्य दिया है, वर्दी के पीछे भी एक परिवार होता है। दैनिक भास्कर ने परिजनों की पीड़ा का उल्लेख किया है, पिता को भीड़ ने खींचा, खून से सनी वर्दी में घर लौटी। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 को उम्र कैद की सजा की खबर भी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, अदालत ने कहा, अंकित शर्मा की हत्या इतनी क्रूर और बर्बर कि समाज की अंतर आत्मा को झकझोर देती है। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीदें बंधी। दंगों में धर्म के नाम पर आम लोगों को निशाना बनाया गया, जिसके जख्म आज भी हरे हैं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार तो है, पर इसकी आड़ में उपद्रव फैलाने की छूट किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। कुलगांव में आतंकी हमला, मजदूर की मौत, नवभारत टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला लिखता है, कश्मीर में आतंकियों के नाम पूछकर बरसाई गोलियां, प्रवासी की मौत, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल को जूडो में पदक मिलने की अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, जूडो में अस्मिता हर्ष की स्वर्ण गाथा, जीते 2 गोल्ड मेडल। अमर उजाला ने हर्ष सिंह और अस्मिता का चित्र देते हुए लिखा है, 92 साल में पहली बार देश को जूडो में स्वर्ण, पहली बार जिंदा दिल लेकर दौड़ी वंदे भारत, लोक सत्य में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: अभी बजे हैं सुबह के 9। एक मिनट का समय स्वयं को दे।

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है अशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर युक्ति से चलते हैं तो समस्या से मुक्ति मिल ही जाती है। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ भाई, दीपावली जल्दी ही आने वाली है और घरों में साफ सफाई का काम चल रहा है, तो पित्तल और तांबे के बर्तनों को कैसे साफ करेंगे, ये टिप्स आपको जरूर देंगे, ठीक है। और आज की युवा पीढ़ी शादी तो कर लेती है परंतु रिश्ते टिका नहीं पाते। इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार हो ना आप सभी, तो जरूर तैयार रहिएगा और बनाएंगे गर्मा गर्म कुछ खास। वो क्या, वो सस्पेंस रहेगा भाई, आप आशियाना सुनिए, सब कुछ जान जाएंगे और प्रश्न भी पूछने वाली हूँ, तो तैयार रहिएगा आशियाना में प्रश्न का जवाब देने के लिए। तो अभी सुन लेते हैं गीत, पुनः लौट करके आ रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sancharsathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
1: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है कि कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर युक्ति से चलते हैं तो समस्या से मुक्ति मिल ही जाती है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर युक्ति से चलते हैं तो समस्या से मुक्ति मिल ही जाती है। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार एक कहानी के साथ करना चाहूँगी। स्पष्ट कि एक समय एक गाँव में एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठ शास्त्र अध्ययन में बहुत ही निपुण था। उसकी पत्नी बहुत ही सुशील और सौम्य थी। घर में सिर्फ ब्राह्मण और उनकी पत्नी ही रहते थे। इस कारण घर के पूरे काम का बोझ उसके पत्नी पर पड़ता था। कुछ समय बाद काम करते करते पत्नी थकने लगी और काम से तंग आने लगी। काम के बोझ को कम करने के लिए वह उपाय सोचने लगी। उसने अपने पति से कहा, आप वेदों शास्त्रों में पंडित है, कोई ऐसा यज्ञ रचिए जिससे एक काम करने वाला व्यक्ति उस यज्ञ से उत्पन्न हो। यदि कोई नौकर रखेंगे तो पूरा समय उसके पीछे रह करके काम कराना पड़ेगा, परंतु यदि अपनी ही रचना का कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो सारा दिन हमारे साथ रहे, सब काम करे और आज्ञाकारी भी हो तो अच्छा होगा। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पसंद आई और उसने इस बारे में सोचना शुरू किया। ब्राह्मण ने अपने घर में पड़े हुए पुराने ताल पत्रों का अध्ययन करना शुरू किया। अचानक एक पत्र में उसे जिन्न को तैयार करने की यज्ञ प्रक्रिया मिली। ब्राह्मण ने खुश होकर के यज्ञ आरंभ किया। कुछ समय बाद यज्ञ की अग्नि से एक जिन्न प्रकट हुआ। काम करने के लिए जिन्न को पैदा किया था, इसलिए उसका नाम काम का जिन्न पड़ा। जिन्न ने ब्राह्मण और उसकी पत्नी को आदर सहित प्रणाम किया और उन दोनों को अपना मालिक माना, परंतु साथ ही साथ जिन्न ने एक शर्त रखी कि उसको सदा कुछ न कुछ काम मिलते ही रहना चाहिए। यदि एक क्षण के लिए भी काम नहीं मिला तो जिन्न ब्राह्मण को खा जाएगा। ब्राह्मण ने जिन्न की ये शर्त मान ली और सोचा कि करने के लिए काम तो बहुत है, इसलिए इसको सदा काम में व्यस्त रखने में उसे कोई परेशानी नहीं होगी। उसी क्षण से जिन्न ने मालिक का काम करना शुरू किया तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी तो बड़े प्रसन्न हुए, पर यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। जिन्न को चाहे जितना भी बड़ा काम दो, एक पल में उसे पूरा करके वह ब्राह्मण के पास पुनः आकर के खड़ा हो जाता और कहता कि और कोई काम है, कोई काम चाहिए, कोई काम चाहिए। ब्राह्मण ने जिन्न को बड़े बड़े पतीले, बर्तन, पुराने सामान सब साफ करने के लिए कहा। ब्राह्मण ने सोचा कि ये काम करने के लिए जिन्न को एक दिन तो लगेगा और कम से कम एक दिन के लिए तो वह जिन्न से छुटकारा पा सकेगा। लेकिन जिन्न ने सारा काम एक पल में ही पूरा कर लिया और फिर कहने लगा कि काम चाहिए, कोई काम दो। ब्राह्मण का घर बड़ा था, बहुत ही बड़ा था, सो घर का पूरा काम करके झाड़ू और पोछा करने के लिए कहा गया। ये काम भी जिन्न ने एक पल में पूरा कर लिया और फिर बोलने लगा कि काम चाहिए, काम चाहिए। इस बार ब्राह्मण ने सुराख वाले घड़े दिए और कुएं से पानी भरने के लिए कहा। ब्राह्मण को मालूम था कि ये काम भी जिन्न एक पल में कर लेगा, इसलिए होशियार ब्राह्मण ने एक युक्ति रची। जब जिन्न अपना काम पूरा करके फिर से ब्राह्मण के पास आया तो उसने उसे सीढ़ी उतरने और चढ़ने की आज्ञा दी। अब जिन्न सीढ़ी चढ़ने और उतरने में व्यस्त हो गया। जब तक ब्राह्मण बुलाएगा नहीं तब तक जिन्न वही काम करता रहेगा। जब जरूरत पड़ेगी तब उसे बुलाया जाएगा और काम करने की आज्ञा दी जाएगी। इस तरह से ब्राह्मण ने युक्ति से मुक्ति पा ली और जिन्न को व्यस्त कर दिया। इसलिए प्यारे श्रोता बंधुओं, कहने का भाव यही है कि कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर युक्ति से चलते हैं तो समस्या से मुक्ति जरूर मिलती है। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे। और आइए सुनेंगे एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

0: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूं, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूं। मैया मोरी मैं नहीं माखने खायू, ये भजन मुझे बहुत प्रिय है, आप भी सुनिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर टिप्स। देखिए, दीपावली के दिन चल रहे हैं भाई, दीपावली बहुत ही जल्दी आने वाली है और घरों में साफ सफाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि पहले हम साफ सफाई करेंगे, घर हमारा चमकेगा, तभी तो दीपावली पर हम माता लक्ष्मी जी का आह्वान कर पाएंगे ना। तो स्वाभाविक है कि घर की साफ सफाई में हम बर्तनों को तो मांजते ही हैं, सब कुछ पूरे घर को हम अच्छे से स्वच्छता से साफ करते हैं, सारे ही सामान को उथल पुथल करके वहाँ से हटा के साफ करके उस जगह को साफ करके फिर वहाँ पर वापिस व्यवस्थित रखते हैं। तो भाई, पित्तल के बर्तन की तो वैल्यू बहुत है, स्टील के बर्तन तो अभी चले हैं, पहले के समय में पित्तल के बर्तन ही चलते थे और हमारे दादी नानी के ज़माने में पित्तल के बर्तन में ही भोजन पकाया जाता था, खाया जाता था। पित्तल के, तांबे के ये बर्तन सबसे ज़्यादा चलते थे। आप पनियारे पर देख लीजिए, तांबे के घड़े रखे जाते थे पानी भर के, वो भी कुएं से ला करके। तो अभी समय के साथ परिवर्तन हुआ है, माताएं बहनें थोड़े काम धंधे में नौकरी में व्यस्त हो गई है, भाई लोग भी, तो पित्तल और तांबे के बर्तन को हटा ही दिया गया, क्योंकि उसमें मांजने की मेहनत है ना, स्टील के बर्तन में कोई मेहनत ही नहीं है और मेहनती काम आजकल कोई करना नहीं चाहते। सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, ऐसा मत सोचना है कि मैं सभी के लिए कह रही हूँ। आज भी बहुत झने पित्तल और तांबे के बर्तन रखते हैं और बड़े ही उसको प्यार से साफ करते हैं। तो आपको बहुत ही सरल टिप्स देती हूँ ताकि तांबे और पित्तल के बर्तनों को फिर से चमका सको। देखिए, मैंने तो देखा है बहुत जगह पर, विशेष करके गुजरात में, कि पित्तल के बर्तन और तांबे के बर्तन को बहुत ही अच्छी तरह सजा करके रखते हैं दीपावली के दिनों में। वो मांज मांज के थक जाते हैं, बोलते कि बहन जी क्या करे, लेकिन जब ये चमकते तो बड़े अच्छे लगते हैं, मेहनत तो करनी पड़ती है। तो सही कहा है कि भाई मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आज मैं आपको ऐसी टिप्स देने वाली हूँ कि उसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपके बर्तन ऐसे चमकेंगे कि बस आने वाले देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। मैं आपको टिप्स दे रही हूँ बहुत ही सुंदर की। देखिए, बाजार में पीताम्बरी पाउडर आता है बर्तन मांजने के लिए, जो पित्तल और तांबे के बर्तन है उसमें आप पीताम्बरी पाउडर को यूज़ करेंगे तो बर्तन बहुत ही अच्छी तरह चमकेंगे। इसमें खास मेहनत नहीं है, आपको क्या करना है, पीताम्बरी पाउडर लाना है और जो अपने बर्तन मांजने का स्क्रब होता है ना, जिसको हम देसी भाषा में कुच्चा कहते हैं, लोखन वाला, ठीक है, तो उस कुच्चे से आप उस पीताम्बरी पाउडर को लगाइए और साफ करिए। ज़्यादा आपको रगड़ने की ज़रूरत नहीं, आप हल्के हल्के हाथों से पित्तल और तांबे के बर्तन को रगड़ेंगे ना, घिसेंगे तो भी बर्तन चमक उठेंगे, ठीक है। तो ये टिप्स आपको मिल गई है। पीताम्बरी पाउडर का पैकेट आता है मार्केट में और आप इससे आसानी से पित्तल और तांबे के बर्तन को मांज सकते हैं। अब मैं दूसरी टिप्स आपको दे रही हूँ। नींबू तो देखिए सभी लाते हैं, नींबू का रस निचोड़ दीजिए, इसमें नमक मिला दीजिए, फिर कुच्चे से इस कुच्चे को पूरा भिगो दीजिए अच्छी तरह और फिर तांबे और पित्तल के बर्तन को हल्के हल्के हाथों से रगड़िए। 5 मिनट के बाद फिर से घिसिए साफ, ना आपको पाउडर ना लिक्विड लगाने की ज़रूरत है, बस नींबू में नमक डाल दीजिए नींबू के रस में और कुच्चे से इसको अच्छी तरह घिस दीजिए, तो पित्तल और तांबे के बर्तन चमक उठेंगे और बर्तन चमकेंगे तो हमारे चेहरे के मुस्कुराहट भी बढ़ेगी, क्योंकि इतने सरल तरीके से साफ हो गए। पहले तो हम बहुत घिसते थे, घंटों घंटों लग जाते थे और एक 5 मिनट में बर्तन चमक उठे तो खुशी तो होती है ना। और लास्ट टिप्स ये कि अगर आप नींबू यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो विनेगार और नमक ये आप यूज़ करिए। विनेगार और नमक को मिक्स करके कुच्चे से फिर आप मांजिए बर्तन को, तो इससे भी बर्तन तांबे और पित्तल के चमक उठेंगे। तो ये टिप्स आपको मिली है, ज़रूर ध्यान दीजिएगा और इसको आजमा सकते हैं। अब मैं आज का प्रश्न पूछने जा रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। चूंढावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। बस इससे आगे नहीं बोलूँगी, चुंडावत ने जब अपनी पत्नी से निशानी मांगी युद्ध पर जाते समय, तो क्षत्राणी ने सिर ही काट के दे दिया। तो उस क्षत्राणी का नाम आपको बताना है, ठीक है? रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए बढ़ते हैं गीत की ओर, बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

किसी ने कुछ ठीक ही लिखा है कि मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूँ कि मांग पूरी करते करते मांग के खा रहा हूँ। तो ये विषय आपको दिया है, आप चर्चा में राय अपनी व्यक्त कर सकते हैं कि शादी ब्याह, आज की पीढ़ी शादी ब्याह तो करने के लिए उत्सुक रहती है परंतु रिश्ते टिका नहीं पाती है। देखते हैं कि समाज में ज़्यादातर रिश्ते टूट रहे हैं, सहन शक्ति कम होती जा रही है और डिमांड बढ़ती जा रही है। बहुत कुछ देखते हैं आजकल शादी ब्याह में। लड़की वाले तो इतना कुछ देखते हैं कि लड़के के घर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, भले अपने घर में कुछ हो ना हो लेकिन मेरे अपनी बेटी की शादी जहाँ करूँ वहाँ पर सब कुछ होना चाहिए, और फिर भी करते भी हैं लेकिन उसके बाद भी रिश्ते टूट जाते हैं, उसके बाद भी लड़कियाँ टिक नहीं पाती अपने ससुराल में और तलाक ले लेती हैं। तलाक के पीछे बहुत सारे बातें भी होती है, वो आप सभी जानते हो कि

0: उनकी पत्नी ने सिर काट करके दे दिया। तो ऐसी क्षत्रानी का आपको नाम बताना है, ऐसी रानी का नाम आपको बताना है। नंबर 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब भी आपको देना है और विषय में भी आप भाग ले सकते हो। हेलो,
1: जय माता दी, जय श्री हरि।
0: जय श्री हरि, नमस्कार, स्वागत आपका।
1: सुनने वाले और सुनाने वाले सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार
0: जी।
1: और टॉपिक तो बहुत ही सुंदर लेके आई है। सबसे पहले तो मैं एक विश करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ?
0: हाँ जी,
1: आपकी इजाजत हो तो।
0: जी जी, कहिए।
1: मेरे पति का जन्मदिन है तो उनके जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं।
0: जी जी, हम भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं आपके भतीजे के जन्मदिन पर। बहुत बहुत खुश रहे वो, पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे बढ़े और हमेशा स्वस्थ रहे।
1: भाई नाम है उसका। और आज का टॉपिक है तो देखिए, अभी जो कुछ हो रहा है ना उसी पे आपने टॉपिक लिया, बहुत सुंदर टॉपिक है
0: जी।
1: कि शादियां हो जाती है फिर मतलब तलाक भी लेना नहीं चाहती है और उनको खर्चा भी चाहिए
0: जी।
1: ऐसे भी मैटर देखे है
0: जी।
1: तो मैं कहना चाहूंगा अगर वो ज्यादा सैलरी कमा रहा है तो चलो दे सकता है, मगर कोई बंदा ऐसा भी होते है जो 10-15 हजार महीने के कमाता है
0: जी,
1: और वहाँ वो खर्चा पहुँचाएगा तो वो खुद पर घर कैसे चलाएगा, खाएगा क्या
0: जी।
1: तो मैं जो भी जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच गई है उन सभी बहनों से यही मेरी गुजारिश है कि आप अगर शादी कर रहे हो आपको पसंद नहीं है तो तलाक करके छुट्टी कर सकते हैं
0: जी।
1: केशबाजी में भी कोई बेनिफिट नहीं है और ऐसे मतलब गरीब परिवारों को दुखी करने में भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि परमात्मा देख रहा है
0: जी।
1: अगर वो कोई मतलब उनकी गलती है तो आप उनको सजा दे सकते हो, मगर कोई उसमें गलती नहीं है, वो राजी खुशी रखना चाह रहे हैं, उसके बावजूद भी ये गलत फहमियां कुछ हो जाती है तो ये गलत है ना कि किसी को बिना कसूर के फिर दर्द दुख देखना पड़े
0: जी।
1: तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, और रही बात की शादी करे तो देख के मतलब थोड़ा बहुत देख के मतलब कुछ समय के बाद में जल्दबाजी में शादी भी जाना
0: जी
1: तो सही रहेगा। और रही बात दूसरी, तो मैं सभी बहनों और भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मतलब कई ऐसे कुछ वहम वगैरह भी हो जाए ना तो उसका सही मुजारा करना चाहिए, उसकी सही जांच करनी चाहिए, उसके बाद ही कोई कदम उठाए
0: जी जी।
1: तो दूरियां बनी मतलब नजदीकियां बनी रहेगी, नहीं तो दूरियां आ सकती है। और बस कुछ बहनों मेरे देखने की भी बात हुई है तो यही मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे कदम उठाने से पहले लाखों बात सोचिए। थैंक यू
0: जी जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो बहुत ही सुंदर आपने स्पष्ट किया है। देखिए, शादी ब्याह तो होते हैं, उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और एक दूसरे को देख करके परख करके समझ करके ही शादी करते हैं, क्योंकि पहले के समय में तो ऐसा होता था कि एक दूसरे को देखते नहीं थे, परिवार वाले ही फाइनल करते थे कि भाई आपकी लड़की हमें पसंद है और शादी फाइनल हो जाती थी। लेकिन लड़के लड़के आपस में मिलते नहीं थे, एक दूसरे को देखते नहीं थे, फिर भी रिश्ते टिकते थे। कभी पहले के समय में सुना आपने कि भाई वो छोड़ के चली गई या उनका तलाक हो गया, अब वो मायके जा कर के बैठ गई? बिल्कुल नहीं, वो 100-200 में एक आध केस ऐसे होते थे तो ये समस्या आती थी। और आज तो आप देख लीजिए, 100 में से कुछ ऐसे है जहाँ पर रिश्ते टिके रहते, बाकी अधिकतर लड़ाई

0: पकड़े और फिर तंग आकर के घर परिवार छोड़ देते हैं। तो ये बहुत ही बढ़ता जा रहा है। और ये भी है कि देखिए, हम एक बार बात करेंगे अपने श्रोता बंधु से। हेलो
1: दीदी, नमस्कार।
0: हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में सुरेश भाई।
1: जी दीदी, बहुत अच्छी बात हो रही है जी। और अभी अभी जो आपने दीदी बताया कि बिल्कुल सही बात है कि पहले जमाना में कोई देखता ही नहीं था, लड़की लड़का नहीं देखता, माँ बाप करते वो सही हो जाता था
0: जी।
1: और कभी भी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता था
0: जी।
1: तो पूरी जिंदगी तक सबर सीखते थे
0: जी।
1: लेकिन आज नहीं, पता नहीं, आज इतने सब कुछ देखते हैं, सब कुछ तय होने के बाद ही शादी करते हैं, बाद में भी ऐसा होता है। तो इसका मतलब तो देती यही है कि अभी लोग को सहन शक्ति भी बिल्कुल नहीं है। कुछ बात हो जाती है तो तुरंत बोल देते हैं हमको रिश्ता नहीं रखना है, हमको ये नहीं करना है
0: जी।
1: तो और दूसरी बात कि आप कितना ही दो लड़के वाले को, फिर भी वो बस यही बात करता है ये हमारे पास नहीं है तो ये दे दो, ये हमारे पास नहीं है तो ये दे दो, हरदम मांगने की ही बात करते हैं
0: जी।
1: तो माँ बाप भी कई ऐसी प्रॉब्लम होते थे, माँ बाप का आंसर दे सकते हैं
0: जी।
1: तो ये मांग भी सही नहीं है, इसीलिए भी रिश्ता टूट जाता है, क्योंकि माँ बाप के पास कुछ नहीं होता है तो
0: जी जी जी
1: सामने वाला मांगता है, तो बेटी को दुख तो होता है कि मेरे घर को पास कुछ नहीं है, फिर भी ये मांग करता है तो
0: जी जी
1: सही नहीं है,
0: बिल्कुल सही कहा।
1: माँ बाप भी कई बार माँ बाप भी कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है तो सामने वाले को हम तो इतना बेटी को वो हमारी बेटी को ये चाहिए, हमारी बेटी को ये चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, ये भी एक बात सही है। इसी कई बार क्या होता है हमारे घर में कुछ नहीं होता, वो सामने वाले को हम सब कुछ बोलते हैं, उसके पास गाड़ी नहीं है, उसके पास बंगला नहीं है, उसके पास कोई अच्छा टैलेंट नहीं है, जॉब नहीं है
0: जी।
1: लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि सामने वाले पास कुछ ना हो लेकिन इसके पास रिश्तेदारी हो, खानदानी हो, उसका लड़का अच्छा हो, अच्छी तरह से वो करका जो पूरा कर सकते हो, और लड़का सीधा साधा हो तो शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है
0: जी।
1: हम कई बार क्या होता है ज्यादातर बहुत बड़े लोग भी शादी करते हो तो यही भी प्रॉब्लम रहता है
0: जी जी।
1: तो हम बराबरी का रिश्ता करें तो यही रिश्ता सीख सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत आभार आपका।
1: मैं तो यही कहूँगा बस बराबरी में रिश्ता करिए और सब चीजें पे सब कुछ देख के करिए तो अच्छा रहेगा
0: जी जी जी। बहुत सुंदर जी, नमस्कार, बहुत बहुत आभार। तो बहुत ही सुंदर स्पष्ट किया आपने। अब यहाँ पर एक गीत सुनेंगे, उसके बाद इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आप जरूर जुड़िएगा, प्रश्न का जवाब भी दीजिएगा। चूंडा वत्त मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। तो ऐसी कौन सी क्षत्राणी है जिसने निशानी के तौर पर अपना सिर ही काट करके दे दिया? तो प्रश्न का जवाब भी दीजिए और विषय में भी जरूर भाग लीजिए। नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और रेडियो मधुबन से आप जुड़ सकते हो। आइए सुनेंगे एक गीत, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: चूंढावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो क्षत्राणी। बहुत सुंदर ये प्रश्न है, इस पर आपको जवाब देना है कि ऐसी कौन सी क्षत्राणी है जिसने निशानी के तौर पर अपने पति को सिर काट करके ही दे दिया। ऐसी क्षत्राणी का नाम आपको बताना है। भाई आप सभी देखिए राजस्थान के रहने वाले हैं और राजस्थान का ही ये इतिहास है और ये इतिहास तो आपने पढ़ा ही होगा। तो आप जो भी आशियाना सुन रहे हैं ज़रूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि इतिहास की बातें हैं तो इतिहास में तो अगर हम बात करते हैं तो और हमारे देश के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होती है ज़्यादा, क्योंकि वैसे तो होती है लेकिन कुछ ऐसे हम टॉपिक को लेकर आते हैं या फिर अच्छे अच्छे से गीत सुनते हैं तो उससे और भी हमारे मन में देश के प्रति प्रेम बढ़ता है। और ये राजस्थान का इतिहास है कि ऐसी कौन सी क्षत्राणी है जिसने अपने पति को निशानी के तौर पर सिर काट करके दे दिया है। तो जिन्होंने भी पढ़ाई की हो ज़रूर आप जवाब दे सकते हैं, और पढ़ाई नहीं की है तो ठीक है, फिर तो आपको हम बताएंगे, जवाब देंगे ताकि आप इतिहास को जान सको। तो देखते हैं अब किन्होंने पढ़ाई की है, जवाब आएगा, फ़ोन कॉल्स आएंगे तो पता चल जाएगा। और विषय भी बहुत सुंदर है कि भाई शादी ब्याह तो कर लेते हैं लेकिन रिश्ते नहीं टिक पा रहे हैं, क्या करें। बहुत से पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि बच्चों को इतना उमंग उत्साह से शादी करवाते हैं, इतना खर्चा करते हैं, माता पिता बेचारे पूरे कहते हैं ना जिंदगी भर की कमाई लुटा देते हैं, उसके बाद रिश्ते नहीं टिकते और इस तरह लड़कियां घर छोड़ करके चली जाती है, बेटा वापिस कुंवारा। बेटी के भी माता पिता को कोई कम दिक्कतें नहीं आती है, दोनों ही परिवार को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है, फिर वो दूसरी जगह देखते हैं कि कहीं अच्छा मिल जाए। तो देखिए जीवन में थोड़ा बहुत तो सबके जीवन में तकलीफ होती ही है, और कहते हैं कि कुछ समस्याएं आती है तो हमें भी उस समस्याओं का सामना करने का अवसर मिलता है। अगर समस्या नहीं आती है तो कैसे जिंदगी का आभास होगा कि जीवन में उतार चढ़ाव भी है, एक रस जीवन सभी के जीवन में नहीं होता है। तो कहते हैं कि रिश्ता टूटे उससे अच्छा है कि थोड़ा बहुत वही सहन कर लो, और सहन शक्ति अगर हाँ वो कहते हैं ना कि लिमिट से बाहर हो जाती है तो स्वाभाविक है एक रबड़ को आप कितना खींचेंगे, ज़्यादा खींचेंगे तो वो टूटेगा ही। तो रिश्ते भी ऐसे हैं कि अगर मजबूरी से निभाए जाए तो फिर वो टिकेंगे नहीं, टूट जाते हैं। लेकिन आजकल ज़्यादातर देखिए अलग अलग समाज की अलग अलग बातें हैं, जैसे सुरेश भाई ने कहा कि भाई दहेज बहुत मांगते हैं और डिमांड पूरी नहीं होती है तो भी इस तरह रिश्ते टूट रहे हैं, तो इस तरह भी होता है। हेलो
2: हेलो नमस्कार जी।
1: हाँ जी नमस्कार नमस्कार, कैसे हो आप भूरीलाल जी? जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या बात है, आप तो हमेशा मुस्कुराहट के साथ ही आते हैं, बहुत अच्छा है। तो आज के विषय के बारे में आप क्या कहेंगे? आज के विषय
2: सवाल भी बहुत अच्छा है, प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है
1: जी।
2: तो क्या है कि रिश्ते में तो टिकते ही नहीं है ज्यादातर,
1: क्यों नहीं टिकते?
2: लोगों में एक चीज जो सहनशीलता है ही नहीं
1: जी,
2: इसलिए रहते ही नहीं है
1: जी, जी, जी।
2: इसलिए कह रहा हूँ कि विषय दो ही पार्टी को बराबर रहना चाहिए, समानता का अधिकार रखना चाहिए और ज्यादा दहेज वहेज के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ना चाहिए
1: जी जी।
2: ये मेरा कहने का है
1: जी जी, बहुत सुंदर बात है।
2: वो पद्मावती होनी चाहिए मेरे ख्याल से।
1: अच्छा ठीक है,
2: ये मेरा सवाल तो
1: ठीक है। तो भूरीलाल जी आप आशियाना कार्यक्रम सुनिए, हम जवाब जरूर देंगे आपका, ठीक है?
2: ठीक है ठीक है ठीक है, टाइम मिलेगा मैं रुकूंगा
1: जी जी,
2: बाकी चला जाऊंगा।
1: नहीं नहीं जाना नहीं है आपको, रुकना है।
2: धंधा करना ही पड़ता है सर।
1: नहीं नहीं धंधा तो देखिए बिजनेस तो पहले वो करिए आप, लेकिन आप ईयरफोन लगा के रखिएगा और सुनते भी रहिए कार्यक्रम, ठीक है? बीच बीच में समय मिले तो जी। बहुत बहुत आभार आपका। तो बहुत ही सुंदर बात कही है कि देखिए सहनशीलता होना जरूरी है, लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं कि लड़कियां भी, एक हमारे ही लिसनर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन उनके साथ भी इस तरह की परेशानी हुई है और उन्होंने कहा है कि लड़कियां शादी कर तो लेती है लेकिन फिर वो स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है, इसलिए थोड़े से अनबन करके घर से चली जाती है और पैसे ऐंठती है पति से, और रहना नहीं है साथ में सास ससुर की सेवा। अरे सास ससुर की सेवा क्या, देखे आजकल तो बूढ़े बूढ़े माता पिता भी अपना काम खुद कर रहे हैं, अपना ही नहीं पूरे घर परिवार का काम कर रहे हैं, तो कौन से हम उनकी सेवा कर रहे हैं। और जरूरत पड़ने पर हम भी तो बीमार हो जाते हैं ना, तो हमारी भी सभी मदद करते हैं, ऐसे वो भी बीमार होते तो उनकी मदद, उनकी सेवा करना बहुत जरूरी है। हेलो
2: जी नमस्कार, ओम शांति।
1: हाँ जी नमस्कार कुपाराम जी, ओम शांति, कैसे हो आप?
2: बस बहुत अच्छे कार्यक्रम सुन रहे
1: जी।
2: पहले तो वो आपका प्रश्न बता देता, वो तो हांडी रानी है
1: जी,
2: और एक बटालियन भी बनी हुई है हांडी बटालियन
1: जी,
2: इसके नाम से हांडा परिवार में हुई है
1: जी।
2: की स्टोरी तो बहुत लंबी है, फिर आप भी बताना
1: जी जी जी।
2: और ये विषय चल रहा है मेरे हिसाब से क्या नए नए होते हैं ना।
1: हाँ जी,
2: ये उनको अभी ये मालूम नहीं, लेकिन तो पूरी दुनिया में ऐसा होता रहा है, खटपट वाली बात, तो छोड़ना नहीं है, उसके साथ संघर्ष करना है
1: जी।
2: जैसे कोई भी गाड़ी आती है तो ड्राइवर होशियार होगा ना
1: जी,
2: उनको ठिकाना लाता है वो, और रिश्ते तोड़ के वो फिर दूसरी जगह जाएगी भी कहाँ
1: जी,
2: वहाँ भी परेशानी तो वो भी वो खड़ी होगी
1: जी। लेकिन वो कहते हैं कि बहुत ही

0: परेशानी होती है घर में, तो फिर क्या करना चाहिए? बहुत जैसे कोई समझने को तैयार नहीं, लड़ाई झगड़े ताने मारना, तो फिर क्या होगा?
1: वो तो ऐसे करना पड़ता है थोड़ा सा
0: संघर्ष।
1: हाँ, संगत तो करना ही पड़ेगा। वो तो ऐसे थोड़े दिन एक बार पियर रूट के जाते हैं
0: जी
1: तो उनकी आदत होती है, वो तो वहाँ भी पिए, उनको वो भी वो परेशानी रहती है।
0: जी
1: फिर या तो उसको मजबूर करेंगे दूसरी जगह जाओ, तो नहीं मुझे तो दूसरी जगह से वही जाना है, तो फिर वो वापस आके तो सीधी होने वाली है।
0: जी चलिए, बहुत बहुत आभार आपका।
1: देखो एक बहन जी बात करेगी मेरी,
0: जी
1: आदमी आदमी ज्ञाति लेके दो काम करता है ना,
0: जी
1: तो भी घर को नहीं सुधार दे सकता, और महिला बहन है जो एक सुई लेके काम पे लगे ना
0: जी
1: तो भी घर को सुधार देती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: महिला में वो ताकत है
0: जी,
1: लेकिन
0: जी,
1: वो
0: जी।
1: उसके उसको सोचना है कि मेरे घर को बिगाड़ना है कि सुधारना है, वो उसके ऊपर है।
0: जी जी जी,
1: इसलिए समय तो निकल जाएगा, थोड़े दिन उधर गए ना, थोड़े दिन उधर गए ना, फिर कह हम तो पीछे रह गए
0: जी,
1: ऐसे तो वो पीछे ही रहेंगे।
0: जी जी जी, बहुत बहुत आभार
1: जी,
0: आपका।
1: नमस्कार नमस्कार
0: नमस्कार, बहुत सुंदर बात आपने कही है, आभार आपका। और देखिए, ये टॉपिक ऐसा है कि जितनी बात करे उतनी कम है, हर प्रकार के पहलू हुए इसमें। कहीं पर दहेज की डिमांड है, तो कहीं पर पति की ज्यादती है, कहीं पर नशे में ग्रत रहते हैं वो भी, पत्नी के साथ अत्याचार करते हैं, और कहीं कहीं पर पत्नियां भी कम नहीं होती है, वो भी पैसे ऐड करके चली जाती है। कोई पैसे मतलब ऐटने के लिए आती है तो फिर वो ऐट के चली जाती है, लेके चली जाती है। मतलब जैसे कि कहते हैं ना कि तलाक तो लेती नहीं है भाई, साइन नहीं करूंगी लेकिन मैं रहूंगी नहीं तुम्हारे घर में, और फिर भरण पोषण देना ही पड़ेगा। तो ये भी हर प्रकार के पहलू है, ऐसा नहीं है कि एक तरह की समस्या है, लेकिन सभी का तोड़ यही है कि थोड़ा सा सहन कर लीजिए और समझाने की कोशिश करिए। अगर नहीं समझते हैं, बेसिर पैर की बातें होती है और बिल्कुल समझते नहीं है, देख लेते हैं कि साल दो साल तीन साल या पाँच साल में भी अगर ससुराल वाले नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप डिसीजन ले सकते हो। और मैं तो हर माता पिता से भी यही कहना चाहूँगी कि बेटी को अगर आप विदा करते हैं तो उनको यही शिक्षा दीजिए कि भाई आप घर में शांति से और प्यार से रहिए, क्योंकि अगर बेटी की शादी होती है तो वो सिर्फ पति ही उसका सब कुछ नहीं होता है, पति का जो पूरा परिवार होता है वहाँ पर, सास ससुर ननंद भाई देवर जेठ जो भी होते हैं, सभी को सम्मान देना बहुत ज़रूरी होता है, तो ही रिश्ते टिकते हैं। बाकी ठीक है, मैं तो पति का कहना मानूंगी, बाकी सभी का कुछ भी नहीं करूंगी, सामने बोलूंगी जबान लड़ाऊंगी, वो नहीं चलता है। इसलिए परिवार में अगर रहना है, परिवार को टिका के रखना है, तो सभी के साथ प्यार से रहना होगा, और सभी का सम्मान करेंगे तो सभी का प्यार भी मिलेगा। इसलिए पति के घर वालों को भी कहना चाहूंगी कि वो भी आने वाली बहू का दिल से स्वागत करें और उसको एक बेटी की तरह प्यार देवे। मैं जानती हूं कि बहू बहू ही रहेगी, बेटी नहीं बन सकती, लेकिन बेटी का प्यार तो दे सकते ना। कहीं कहीं पर तो देखने को मिलता है कि बेटियों से भी बढ़कर के बहुएं होती है, और पूरे ही अपने पूरे ससुराल वालक जो परिवार का पूरा ही ध्यान रखते हैं, तो हर तरह की बातें आती है इसमें। लेकिन बस थोड़ा सा सहन कर लीजिए, थोड़ा सा एक दूसरे को पहचानिए, एक दूसरे को समझिए, तो ये रिश्ते टिकेंगे और बहुत ही अच्छा भी लगेगा। बाकी तो कहते हैं कि रिश्ते टूटने में तो कोई देरी नहीं लगती, भड़काने वाले कितने ही आ जाते हैं, लेकिन स्वयं को सोचना होता है कि हमें क्या करना है। हमें अपने परिवार को टिका के रखना है, अपने घर गृहस्थी की गाड़ी को टिकाए रखनी है या तोड़नी है। ठीक है, तो चलिए मैं फिर से प्रश्न पूछ रही हूँ। चूंडावत मांगी सेनाणी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी, तो ऐसी कौन सी क्षत्राणी है जिसने निशानी के तौर पर अपना सिर काट करके दे दिया? जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए बढ़ते हैं गीत की ओर, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 90.4।

आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो भाई, इतने बड़े बड़े त्योहार आ रहे हैं, कल शरद पूर्णिमा है, फिर दीपावली, दीपावली के आसपास तो कितने सारे त्योहार होते हैं, और त्योहारों की तैयारी तो पहले ही कर लेते हैं, इसमें मिठाइयाँ वगैरह भी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना करके रखते हैं। कहते हैं ना कि भाई दीपावली का त्यौहार ऐसा है कि बहुत सारे टू मच मिठाइयाँ, नमकीन आइटम बना बना करके रखते हैं, ताकि मेहमान जब दीपावली पर आना शुरू करे तो उनको हम मिठाइयों और नमकीन आइटम के साथ उनका वेलकम करते हैं, है ना। आते हैं तो बहुत प्यार से उनको बिठाते हैं, खिलाते हैं। तो सोचा कि क्यों ना आपको मैं इमरती सिखा दूँ, ताकि आप ऐसे बड़े त्यौहार पर आप इमरती बना सको और अपने गेस्ट को खिला सको। तो सामग्री आपको लिखवा रही हूँ, जलेबी की तरह ही होती है इमरती, लेकिन फिर भी टेस्ट में फ़र्क है, क्योंकि जलेबी बनाते हैं मैदे की और ये बनाएंगे हम उड़द की दाल की इमरती, और ये भी बहुत टेस्टी लगती है। जलेबी टेस्टी लगती है, इसी तरह इमरती भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो सामग्री आप सभी को लिखवा रही हूँ, 250 ग्राम लेंगे आप उड़द की दाल, ठीक है। फिर आप लीजिए 1 किलो चीनी। अब आप 50 ग्राम दूध ले लीजिए और 25 ग्राम लेना है मैदा। फिर आप आवश्यकता के अनुसार घी लीजिए और खाने का मीठा रंग लेना है, ठीक है, जिसको नारंगी रंग भी कहते हैं। तो बस सामग्री फिर से दोहरा रही हूँ, इतनी सी ही सामग्री है, 250 ग्राम उड़द की दाल, 1 किलो चीनी, फिर आप लीजिए 25 ग्राम मैदा, आवश्यकता के अनुसार घी और 50 ग्राम दूध, फिर आप खाने का ले लीजिए मीठा रंग, ठीक है। अब बनाने का तरीका भी आपको साथ ही साथ सिखा रही हूँ कि इमरती कैसे बनाई जाती है। आप क्या करेंगे, दाल को अच्छी तरह धो करके भिगो दीजिए, ठीक है। दाल कम से कम 4 घंटे भीगी रहने दीजिए, ताकि वह अच्छी तरह से फूल जाए। इसके बाद दाल का छिलका निकालिए, उसे खूब बारीक पीस लीजिए। अगर मोगर है तो आप मोगर को गलाइए, ठीक है। इस तरह आप कपड़े में पानी डाल करके गला कर रखिए, और अगर मोगर नहीं है तो फिर छिलके वाली दाल को भी आप भिगो सकते हैं। 4 घंटे में तो सारे छिलके निकल जाएंगे, तो इन छिलकों को निकाल दीजिए, फिर बारीक पीसना है, ठीक है। पीसी हुई दाल में मैदा और रंग मिला करके परात में आप डालिए, जिसको गुजराती में कचरोट कहते हैं। तो कचरोट में डाल करके काफ़ी देर तक अच्छी तरह उसको फेंटिए। इतना फेंटना है कि फेंटते फेंटते दाल का हल्कापन आ जाए। पहले जब हम फेंटेंगे ना तो हमको भारी भारी लगेगा, लेकिन अच्छी तरह जब फेंटेंगे, फेंटते ही जाएंगे, तो फिर हल्कापन आ जाएगा। इतनी देर तक आपको फेंटना है। फिर एक तवी लीजिए, समतल कढ़ाई भी कहते हैं इसको, तवी जिसमें मालपुआ भी बनाते हैं, तो ऐसी तवी आपको लेनी है, ठीक है। तवी में ही हम ये बना सकते हैं इमरती। तो फेंटी हुई दाल को एक कपड़े में रखिए, स्वच्छ कपड़ा लीजिए, उसमें भरिए फेंटी हुई दाल, ठीक है। इतना लीजिए कपड़े के आवश्यकता के अनुसार, भाई कपड़ा छोटा और दाल का खीरा ज़्यादा भर देंगे ना तो ऊपर से निकलेंगे, जब आप दबाएंगे तो ऊपर से निकल जाएगा सारा खीरा, इसलिए आप कपड़ा ऐसा लीजिए और उसमें आवश्यकता के अनुसार ही इस खीरे को भरना है, ठीक है। और नीचे से काना कर दीजिए, काना बोले तो खड्डा, ठीक है। और फिर ऐसे छोटा सा छेद कर लिया। अब आप तवी में घी डाल दिया, घी गर्म हो जाए तो फिर आप बस कपड़े को चारों तरफ से अच्छी तरह पकड़ लीजिए ऊपर से, और थोड़ा सा प्रेशर दे करके एक अपन चूड़ी कैसे पहनते हैं ऐसे गोल गोल गोल गोल आप डालिए तवी में, ठीक है। जो साइज आपको पसंद है उस साइज में डाल करके फिर आप दूसरी डालिए, फिर तीसरी डालिए, फिर चौथी डालिए, घी के अनुसार, तवी के अनुसार, जो साइज है उसके अनुसार आप इस तरह इमरती डालिए, फिर इसको आप पलटी लगाइए अच्छी तरह, एक तरफ से सिक जाए तो दूसरी तरफ से पलटी लगाइए। पलटी लगाने के बाद इधर आपने जो शक्कर ली है ना, तो उसके आप चाशनी बना लीजिए, ठीक है। चाशनी बनानी है, फिर इस चाशनी ज़्यादा देखिए कड़क नहीं करनी है चाशनी को, एक तार की चाशनी बनानी है, जैसे कि गुलाब जामुन की बनाते ऐसी, ठीक है। और फिर इस चाशनी में आप इमरती को डालते जाइए, तो इस तरह सारी इमरती बना लीजिए। बहुत सरल तरीका है ना, हाँ ज़रूर आप बना करके देख सकते हो, बहुत अच्छी लगेगी। और एक नई आइटम बनाते हैं अक्सर हम, क्या करते हैं, गुलाब जामुन नहीं, इमरती और
जलेबी हम बाजार से लाते हैं, घर पर बनाते नहीं है। लेकिन घर पर अभी दीपावली का त्यौहार है, बाजार से कितना लाएंगे? घर पर बनाएंगे तो अच्छा है ना, थोड़े से क्वांटिटी में बनेगी वही चीज़, और क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, क्योंकि हम अब खुद अपने हाथ से बना रहे हैं, ईश्वर की याद में, प्रभु की याद में बनाते हैं, स्वच्छता से बनाते हैं, तो वो क्वालिटी वाली भी हो जाती है और क्वांटिटी तो बढ़ती ही है। 1 किलो आप बाजार से लाइए और 1 किलो ही आप घर पर बनाइए, देखो कितना बैठती है, तो सस्ती पड़ती है घर पर, ठीक है। तो इस तरह इमरती बनाई जाती है। फिर से मैं तरीका समझा रही हूँ ताकि आप अच्छी तरह बना सको, तो आप ध्यान से सुनना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो उड़द की दाल ली है ना, उसको आप पानी में डाल करके भिगोइए। अगर मोगर है तो मोगर भिगोइए, नहीं है तो छिलके वाली दाल भी भिगोइए। 4 घंटे तक पानी में भिगो के रखना है, ठीक है, ताकि अच्छी तरह ये दाल फूल जाए। 4 घंटे के बाद जो छिलके हैं ऊपर आ जाते हैं, सारे हटा दीजिए, निकाल दीजिए, और फिर इसको बारीक पीस लीजिए, ठीक है। पीसी हुई दाल में फिर आप मैदा और रंग डालिए, खाने का जो रंग लिया है ना वो डालिए, और एक परात में, चौड़े बर्तन में, जिसको कचरोट भी कहते हैं, परात कहते हैं राजस्थान में, हिंदी भाषा में भी परात कहते हैं, गुजराती में कचरोट कहते हैं, चौड़े बर्तन में आप निकालिए और अच्छी तरह इसको फेंटिए। फेंटते समय थोड़ा भारीपन महसूस होगा, जब फेंटते जाएंगे तो हल्कापन आ ही जाएगा, तो इतनी देर तक आपको फेंटना है, ठीक है। अब फेंटने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसको अच्छा से इकट्ठा कर लीजिए, और कढ़ाई नहीं तभी रखनी है आपको गैस में, और इसमें घी डालिए आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। और इस खीरे को आप क्या करेंगे, एक स्वच्छ कपड़ा लीजिए, वाइट सूती, ठीक है, इसमें आप भरिए, और भर करके चारों ही कोनों को लपेट करके हाथ से पकड़ लीजिए मुट्ठी में, ठीक है, नीचे से एक छेद कर लीजिए, और फिर थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर देते हुए तवी में जब घी गर्म हो जाए तो मध्यम आँच पर आप चूड़ी की तरह गोल गोल गोल गोल गोल गोल डालते जाइए। तो जो आपने घी डाला है, तवी की साइज है, उस अनुसार इमरती आप बनाइए, 3, 4, 5 डालिए, ठीक है। फिर आप जाले से इसको पलटी मारिए, जब दोनों तरफ से अच्छी तरह लाल लाल हो जाए तो फिर आप एक तरफ चाशनी बना दीजिए, एक तार वाली, और उस चाशनी में फिर आप इन इमरती को डालते जाइए। तो ये इमरती तैयार है। फिर चाशनी जब पी ले वे इमरती, तो फिर आपको निकाल देना है, चाशनी में ही नहीं रखना है। गुलाब जामुन को हम चाशनी में रखते हैं, लेकिन इमरती को चाशनी में नहीं रखते हैं। अच्छी तरह वो जब चाशनी पी लेवे तो आप निकालते जाइए, दूसरी इमरती डालते जाइए, उनको निकालिए, फिर तीसरा पाया डालिए, इस तरह इमरती आपको बनानी है, ठीक है। तो चलिए इमरती बन चुकी है हमारी। अब भाई मीठा सिखाया है तो कुछ नमकीन तो ज़रूर बनाना पड़ेगा, परंतु एक ब्रेक के बाद, ठीक है। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो।

0: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ अब तो बस करो।
0: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है।
3: कोख को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।
4: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बना रहे थे इमरती। अब बना देते हैं भाई नमकीन आइटम में चीज की पकौड़िया। बहुत तरह की आपको पकौड़िया सिखा चुकी हूँ, तरह तरह की। देखिए पकौड़िए तो ऐसी है कि बहुत अलग अलग तरीके से हम बना सकते हैं और हर जिस भी तरीके से हम बनाते हैं सभी स्वादिष्ट ही लगती हैं। तो आपको रतालू की, कच्चे केले की, न जाने कौन कौन सी आपको पकौड़ियाँ सिखा चुकी हूँ। आज सोचा कि चीज़ की पकौड़ी आपको सिखाऊँ। तो इसके लिए सामग्री ले लेंगे आप 25 ग्राम मक्खन, 50 ग्राम मैदा, आधी कटोरी पानी ले लीजिए और 1/4 छोटा चम्मच लेना है लाल मिर्च, चुटकी भर स्वाद के अनुसार नमक और 40 ग्राम के आसपास बारीक कसा हुआ चीज़। फिर से दोहरा रही हूँ, सामग्री ध्यान दीजिएगा, 25 ग्राम मक्खन, 50 ग्राम मैदा, आधा प्याला माने आधी कटोरी पानी, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च, चुटकी भर नमक या फिर नमक और मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डालिए, क्योंकि कोई तीखा पसंद करते हैं, कोई मोरा पसंद करते हैं, तो आप पर छोड़ा। फिर 40 ग्राम के आसपास लीजिए बारीक कसा हुआ चीज़। ठीक है, ये तो हो गई सामग्री। बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ कि पानी में मक्खन डाल दीजिए और पकने के लिए रख दीजिए। जैसे ही उबाल आने लगे एकदम से सारा मैदा डाल दीजिए और लगातार घुमाते जाइए जब तक कि, देखिए आंच को तो आपको स्लो करना है, ठीक है, मध्यम आंच पर ही आपको बनाना है, बिल्कुल बराबर मुलायम न हो जाए तब तक आपको चम्मच से हिलाते रहना है। उसके बाद गैस बंद कर दीजिए और इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। लगातार हिलाते हुए एक एक करके कसा हुआ चीज़ और नमक मिर्च मिला दीजिए इसमें। फिर ना अच्छी तरह खीरा तैयार हो गया है। अब आप कढ़ाई में तेल गरम करिए, फिर मैदे और चीज़ के मिश्रण को एक छोटे चम्मच से गिराते जाइए, ठीक है, और पकौड़ियाँ सुनहरे रंग की तल लीजिए। निकालने के बाद ऊपर से कसा हुआ चीज़ बुरक दीजिए और गरम पेश करिए। तो ये बन गई चीज़ की पकौड़ियाँ। फिर से दोहरा रही हूँ विधि को, ध्यान से सुनिएगा। पानी में मक्खन डाल दीजिए और पकने के लिए रख दीजिए। जैसे ही उबाला आने लगे एकदम से सारा मैदा डाल दीजिए और लगातार घुमाते जाइए जब तक कि बिल्कुल बराबर मुलायम न हो जाए तब तक इसको हिलाते रहना है। फिर गैस बंद करके इसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने तो देना है लेकिन फिर भी लगातार हिलाते रहना है और एक एक करके कसा हुआ चीज़ और नमक मिर्च मैदा सब इसमें मिला दीजिए। ठीक है, मैदा तो ऑलरेडी हम इसमें गरम कर चुके हैं और अब आप सभी, अच्छा मिश्रण ये तैयार हो गया, मसाला इसमें डाल दिया, नमक मिर्च वगैरह। तो फिर आप कढ़ाई में तेल गरम करिए। तेल गरम हो जाए तो मैदे और चीज़ के मिश्रण को एक छोटे चम्मच से पकौड़े की तरह डालिए अगर हाथ से पसंद करते हो तो हाथ से डालिए, तो पकौड़िया सुनहरे रंग की तल लीजिए और निकाल दीजिए। निकालने के बाद ऊपर से और भी आप किसा हुआ चीज़ बुरक सकते हैं। तो ये बन गई गर्मा गर्म पकौड़िया। तरह तरह के स्वाद की, अलग अलग प्रकार की पकौड़ियाँ आपको सिखाते रहते हैं, तो चीज़ की पकौड़ी भी आप बना करके ज़रूर खाइएगा, बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट है। तो चलिए, इमरती और पकौड़ियाँ तैयार है, तो देर किस बात की, लीजिए एक स्वच्छ थाली। थाली में आप ये एक प्लेट में इमरती रखिए, एक प्लेट में चीज़ पकौड़ी रखिए और जो भी कुछ आपने बनाया है रखिए। तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास पर कई भी रखिएगा। ऊपर से थाल पोश ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद अब आप पूरे परिवार सहित आनंद ले सकते हो चीज पकौड़िया का, ठीक है। और आज का प्रश्न बड़ा सुंदर था, लेकिन हमारे श्रोता बंधु लगते हैं कि या तो शरद पूर्णिमा की तैयारी कर रहे हैं या फिर दीपावली की साफ सफाई में खोए हुए हैं। इसलिए देखे, हमारी बहनें तो जुड़ी नहीं पाती है क्योंकि वो साफ सफाई कर रही है घर की, चलिए वो भी बहुत जरूरी है। प्रश्न था कि चूंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो क्षत्राणी। ये राजस्थान का बहुत अच्छा इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत ही बड़ी बात है कि चूंडावत ने जब सेनानी के तौर पर, निशानी के तौर पर अपनी पत्नी से मांगा, युद्ध में जा रहे थे और युद्ध में जाते जाते याद आ गई पत्नी की, तो फिर से लौट आए और लौट करके पत्नी से निशानी मांगी। और पत्नी ने सोचा कि अगर ये मेरे ही याद में खोए रहेंगे तो युद्ध को क्या खाक जीत पाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि न रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, और उन्होंने अपना सिर काट करके दे दिया। ऐसी क्षत्राणी का नाम है हाड़ी रानी, जो आप सभी ने सही जवाब दिया है। सिर्फ एक भूरी लाल जी का जवाब गलत है, उन्होंने पद्मावती कहा है। पद्मावती ने जौहर किया है, उन्होंने शीश को नहीं काटा है, ये हाड़ी रानी ने करके दिखाया है। तो सबसे पहले जवाब दिया है सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, फिर सुरेश भाई छोटाना से और फिर कुपाराम जी ने। आप सभी ने सही जवाब दिया है, बोरीलाल जी का जवाब गलत है। तो आप सभी के लिए, जिन्होंने सही जवाब दिया है, आप सभी के लिए ढेर सारी तालियां। और अब मैं दहेज प्रथा पर एक सुंदर कविता सुनाऊंगी, आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन। नारी का न करो व्यापार, नारी का न करो व्यापार, स्वयं जिसे कहते तुम लक्ष्मी क्यों कर रहे फिर उस पर तुम अत्याचार। स्वयं जिसे कहते तुम लक्ष्मी क्यों कर रहे फिर उस पर तुम अत्याचार। दौलत के तराजू पर तोल के, दौलत के तराजू पर तोल के छीना तुमने उसका अधिकार। नारी बिन जीवन है सुना, नारी बिन जीवन है सुना, थोड़ा तो करो विचार। कभी संगिनी कभी भगिनी बन, उसने लुटाया तुम पर प्यार। कभी संगिनी कभी भगिनी बन, उसने लुटाया तुम पर प्यार। दौलत के नशे में डूबे ए मानव, लूट लिया तुमने उसकी खुशियों का संसार। अब भी समय शेष है देखो, अब भी समय शेष है देखो, करो स्वयं में जागरूकता का संचार। कुरुतियों से ग्रसित समाज का, कुरुतियों से ग्रसित समाज का तुम करो अब बहिष्कार। त्यागो कुंठित सोच को अपनी ए मानव, त्यागो कुंठित सोच को अपनी ए मानव, करो परिवर्तित अपना व्यवहार। हो सके जिससे समाज में, हो सके जिससे समाज में स्वस्थ मानसिकता का निर्माण। बंद करो दहेज प्रथा, नारी का न करो व्यापार, बंद करो दहेज प्रथा, नारी का न करो व्यापार। स्वयं जिसे कहते तुम लक्ष्मी, स्वयं जिसे कहते तुम लक्ष्मी, क्यों कर रहे फिर उस पर अत्याचार, क्यों कर रहे फिर उस पर तुम अत्याचार।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के महाराष्ट्र मध्य भारत में बसे रामोशी आदिवासी समुदाय द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए संघर्ष के मुखिया थे। फड़के का मानना था कि ब्रिटिश शासन से आमने सामने के युद्धों में पार पाना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने छापामार प्रणाली अपनाई और अंग्रेजों के खजानों और शस्त्रागारों को लूटने लगे। शस्त्रार्जन के लिए पैसे की समस्या हल करने के लिए वे कभी कभी बड़े बड़े रईसों और सेठ साहूकारों के यहाँ डाके डालते थे। अमीरों का धन लूटकर वे गरीबों में बांटते और समाजवाद का व्यवहारिक रूप जीवन में अपनाते। फड़के के आतंक से अंग्रेजी हुकूमत की नींद हराम हो गई। सन 1857 में उन्हें पकड़ने के लिए जाल डाले जाने लगे। मुंबई के गवर्नर सर रिचर्ड टेपल ने घोषित किया कि फड़के को पकड़ने या मारने वाले व्यक्ति को 5,000 रूपए पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। वीर फड़के कब चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी घोषणा कर दी कि कोई मुंबई के

0: यार मैं नहीं मानता इस बात को, ये तो सरासर बेवकूफी है।
1: हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं भी तुम्हारी बात से सहमत हूँ।
2: क्या बेवकूफी इसमें बताओ, तुम इसको अपनी परिस्थितियों के हिसाब से सोच रहे हो, पर जरा उसके हिसाब से तो सोचो।
0: इसमें सोचने की कुछ बात ही नहीं है।
3: क्या बात है बेटा, आज किस बात पर बहस हो रही है तुम लोगों में? शायद मैं कुछ मदद कर सकूं?
2: कुछ नहीं काका, ये बोल रहा है कि इसके पड़ोस में एक आंटी रहती हैं। उनके लड़के ने 35,000 की नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ दी कि कंपनी उसे दूसरे शहर भेज रही थी।
3: हाँ तो उस लड़के को बाहर नहीं जाना होगा।
1: अरे पागल है वो।
4: ओए चुप कर काका, मैं बताता हूँ पूरी बात। उस लड़के के पिता नहीं है और वो इकलौता है घर में, इसलिए उसने अपनी माँ के लिए यहीं रहकर 12,000 की नौकरी ही ज्वाइन कर ली है। अब वो माँ को किसके भरोसे छोड़कर जाएगा?
3: फिर तो उसने सही किया।
2: पर काका,
3: बिल्कुल सही, जैसा महान क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था।
2: वासुदेव बलवंत फड़के,
0: ये कौन थे काका?
1: अरे क्रांतिकारी थे, अभी अभी काका ने कहा था, सुना नहीं क्या तूने?
4: ओए कितनी बार कहा है कि कम बोला कर। हाँ काका प्लीज हमें कुछ बताइए इनके बारे में।
2: पर काका पहले कुछ चाय और खाने के लिए बुलवा दीजिए, बहुत भूख लगी है।
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे गंजू चाय और समोसे लेते आना। हाँ तो भाई सुनो, वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म 4 नवंबर 1845 को शिरडोन में हुआ था। वासुदेव पूना में फौज के वित्तीय विभाग कार्यालय में काम किया करते थे। अरे उस समय पूना में अंग्रेजी फौज का भारी दबदबा था। हाँ एक दिन वासुदेव जी फाइलों को अपने अंग्रेजी साहब के सामने प्रस्तुत करने के लिए तैयार कर रहे थे। ये काम उन्हें नित्य ही करना पड़ता था, जिस कारण उन्हें हमेशा देर हो जाती थी। तो एक दिन
5: भाई दिन भर इन फाइलों के बीच में रहते रहते तो मेरे सिर में दर्द होने लगा है।
2: तो आप नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते, कोई बिना फाइल वाली नौकरी कर लीजिए।
5: अरे नहीं भाई, दूसरी बार इस तरह का जोखिम नहीं उठा सकता मैं।
2: दूसरी बार? पहली बार कब उठाया आपने?
5: पहली बार शादी करके।
4: अरे फड़के जी क्या बात है, आप तो अपना काम इतनी तेजी से कर रहे हैं और इतना ध्यान मग्न होकर कर रहे हैं जैसे यहाँ कोई और है ही नहीं।
5: नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आज दफ्तर से जल्दी जाना चाहता हूँ, क्योंकि नगर में आज सार्वजनिक सभा स्थल पर देशभक्त न्यायमूर्ति रानाडे जी का भाषण होने वाला है और मैं इस भाषण से वंचित नहीं होना चाहता।
6: हाँ मैंने आपसे उनके बारे में काफी कुछ सुना है, लगता है आप उनके विशेष भक्त हैं।
5: जी हाँ, उनके उत्तेजक भाषण से मेरे मन को प्रेरणा मिलती, ये यूं कहिए कि जीवन धारा का प्रवाह। मगर अभी तो इन फाइलों का प्रवाह खत्म हुआ, अब बस साहब को ये दे दूं फिर फ्री।
7: वासु दादा।
5: क्या बात है, तुम यहाँ?
7: दादा तुम्हारी माँ गंभीर रूप से बीमार हो गई है और वो तुम्हारे नाम की रट लगाए हुए है, जल्दी करो दादा, जल्दी गांव जाओ।
5: अच्छा मैं साहब से कहकर अभी आता हूं। सर मैं अंदर आ सकता हूं?

0: यस
1: सर, ये मेरी सारी फाइलें कंप्लीट हो गई।
0: ओके, वहां टेबल पर रख दो। क्या बात है, कुछ कहना है?
1: सर, गांव में मेरी माताजी गंभीर रूप से बीमार हो गई, मुझे शीघ्र ही बुलाया है, मुझे कुछ दिन की छुट्टी दे दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी।
0: नो नो नो नो नो नो, एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलेगी।
1: सर, मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा?
0: ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी माँ मर ही जाएगी। यदि माँ का ही मौत था तो नौकरी करने क्यों आए?
1: सर, मेरी माँ बीमार है, मुझे जाना ही होगा।
0: बट आई कांट हेल्प यू, दिस इज नॉट ए जोक, द जॉब इज जॉब मिस्टर फड़के, अंडरस्टैंड?
1: तो ठीक है सर, मैं अपनी माँ के लिए नौकरी का मोह छोड़ रहा हूँ, मैं अपना त्याग पत्र लिखकर आपको दिए जाता हूँ, मेरी माँ मुझे पुकार रही है।
2: देश के नौजवानों को अंग्रेजों द्वारा दी गई चुनौती को स्वीकार करना चाहिए, वो तारुण्य ही कैसा जो कुछ करके ना दिखा सके, अपने देश की स्वाधीनता के लिए आज के नौजवानों को फिर से महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी बनके दिखाने की जरूरत है।
3: तो ये थे वासुदेव बलवंत फड़के जी, जिन्होंने अपनी माँ के लिए अपनी नौकरी को त्याग दिया। यही तो है जीवन बेटा, जहां आपको कभी कभी किसी और के लिए अपने आप को या अपना कुछ महत्वपूर्ण त्याग करना पड़ता है।
4: आप सही कह रहे हैं काका, हम इस बात को समझ ना सके थे।
5: काका, ये तो उनका अपनी माँ के प्रति प्रेम था, सो उन्होंने वो त्याग किया। अब आप उनके क्रांतिकारी जीवन के बारे में बताइए ना।
6: हाँ काका, हम उनके बारे में और जानना चाहते हैं।
3: जरूर जरूर बच्चों, फड़के जी के मन में उस राजनेता के वो अंतिम वाक्य बार बार गूंजते रहे कि अपने देश की स्वाधीनता के लिए आज के नौजवानों को महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी बनकर दिखाने की जरूरत है। फड़के अपने गांव शिरडोन जहां पहुंचे, उनकी मां तो बच नहीं सकी, पर उन्हें संतोष था कि वो उनके अंतिम समय में उनके पास थे और वो उनकी सेवा कर सके। अपनी मां की मृत्यु के पश्चात एक विचार उनके मन में बार बार कोंधने लगा।
1: क्या हुआ जब मेरी मां मर गई? देर सवेर सभी की माताएं मरती हैं, कौन बचा सका है अपनी मां को? पर एक मां और है जिसे हमें मिलकर बचाना चाहिए, वो मां हम सबकी मां है, भारत माता है। हमारी भारत माता को अंग्रेजों ने दासता के बंधनों में जकड़ रखा है, हम सबको मिलकर अपनी भारत माता को विदेशी दासता के चुंगल से मुक्त कराना चाहिए।
3: फड़के जी ने परिस्थितियों का अच्छी तरह से अध्ययन किया और निश्चित किया कि ब्रिटिश शासन का पंजा भारत की भूमि पर दृढ़ता से जम चुका है और अब आमने सामने के युद्धों में उससे पार पाना बहुत मुश्किल है। अतः केवल छापामार युद्ध प्रणाली से ही अंग्रेजी शासन के पंजों को कुछ ढीला किया जा सकता है। उन्होंने वन्य जातियों को सैन्य रूप में संगठित किया और रामोशी, नाइक और भील जातियों की सेनाएं संगठित की। इस अभियान में उनके साथ शामिल हुए दौलत राव रामोशी और गोविंद राव दावरे, जिन्हें जनरल दावरे कहा जाता था, और फड़के जी को शिवाजी द्वितीय।
1: साथियों, हमारी भारत माता को इन अंग्रेजों ने गुलामी की बेड़ियों में जकड़ रखा है, ऐसे में हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकते। क्या हमारी रगों में बहने वाला खून ठंडा पड़ गया है? क्या हमारी तलवारों में वो धार नहीं बची कि हम गुलामी के अंधकार को चीरकर स्वतंत्रता का सूर्य देखें? हम इतने कायर नहीं कि अपनी माँ को लहूलुहान देखकर मुंह फेर कर बैठ जाएं? क्या हम इस लायक भी नहीं कि अपनी, अपने परिवार की, अपनी धरती माता की रक्षा कर सकें? याद रखो, जो अपने परिवार को, अपनी जन्मभूमि को, अपनी मातृभूमि को बचा ना सके, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। यदि आज हमने अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब ना दिया तो आने वाली पीढ़ियां हमें धिक्कारेगी। इसलिए बांध लो सर पर कफन और निकल पड़ो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, और ये प्रतिज्ञा लो कि जब तक हम अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र नहीं करा देते, हम चैन की नींद नहीं सोएंगे और दिखा देंगे इन गोरे फिरंगियों को कि इस पवित्र भूमि के एक एक सपूत का खून अब लावा बन चुका है और ये उमड़ता हुआ सैलाब उन्हें नेस्तनाबूद कर देगा।
7: और हम मुट्ठी भर लोग इतनी विशाल अंग्रेज सेना का मुकाबला कैसे करेंगे?
1: हाँ, मुझे पता है हम मुट्ठी भर हैं, मगर ये मत भूलो कि युद्ध में विजय सैनिकों की भीड़ से नहीं बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति और सही रणनीति से मिलती है। सवाल ये नहीं कि युद्ध कितने सैनिकों से लड़ा जाए, बल्कि ये है कि कैसे लड़ा जाए। क्योंकि युद्ध कोई दो दलों के बीच खेला जाने वाला मनोरंजक खेल नहीं है कि जिसमें दोनों दलों के खिलाड़ी नियमबद्ध एवं अनुशासित तरीके से अपना प्रदर्शन करें। ये तो अस्तित्व की लड़ाई है और इसे जीतना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हाँ, और हम उनसे आमने सामने की लड़ाई नहीं कर सकते, मगर हम छापा मार युद्ध तो कर सकते हैं।
7: मगर फड़के जी, उसके लिए भी तो हमें और साथियों की आवश्यकता पड़ेगी।
1: हाँ, इसके लिए हमें सेना संगठित करनी होगी। जाओ, वन जातियों, मजदूर, किसान, आम नागरिक, जो कोई भी हमारे साथ इस संग्राम में जुड़ना चाहे उसे जोड़ो और अपनी सेना तैयार करो और इन फिरंगियों के विरुद्ध इस निर्णायक युद्ध का शंखनाद कर दो। हाँ, और रानाडे महाशय ने भी तो यही कहा था कि आज देश के नौजवानों को छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप बनकर दिखाना है।
4: फड़के जी, मैंने अपने सभी दल बल को आपकी सेना में सम्मिलित तो कर लिया है, पर हम इनको प्रशिक्षण देंगे कहाँ?
1: ये तो मैं भी सोच रहा हूँ।
8: मेरे विचार से अगर हम अपनी सेना को गुल टेकड़ी और कम्यूर्सन की पहाड़ियों पर ट्रेनिंग दें तो कैसा रहेगा? हम सबकी सुरक्षा की दृष्टि से भी वो जगह ठीक रहेगी।
4: ये तो बहुत अच्छा विचार है, वो जगह अंग्रेजों की पहुंच से बहुत दूर है।
1: मैं भी आप लोगों की बातों से सहमत हूँ, तो फिर वहां कल से ही प्रशिक्षण शुरू कर देना चाहिए।
8: ये तो ठीक रहा, पर हमारे काम काज के लिए धन कहां से आएगा?
1: मैंने इसका हल पहले ही ढूंढ लिया है। हम अंग्रेजों के खजानों और शास्त्रागारों में छापा मारकर धन और शस्त्र लूट लेंगे। कभी कभी हम बड़े रईसों और सेठ साहूकारों के यहां भी डाके डालेंगे। बचे हुए धन को गरीबों में बांट दिया जाएगा। लूटे हुए सारे धन का पहले पंचनामा करेंगे और फिर मालिक को रसीद देंगे। देश के स्वाधीन होने पर लूटा हुआ धन ब्याज सहित वापस कर देंगे।
4: फिर तो काम हमें जल्द ही शुरू कर देना चाहिए।
9: यही शाबाश, लगन लगा,
10: पकड़ पकड़, गर्दन
9: साफ
10: कर, गर्दन पकड़,
9: टकड़ी लगा, टकड़ी टकड़ी टकड़ी,
10: अरे दे, चलो
9: भाभी पछाड़ मार, भाभी पछाड़
10: जोर से,
9: कमर पे ले, कमर पे ले,
10: ये बात, शाबाश शाबाश शाबाश, मजबूती से जमे रहो।
9: अरे कमजोर आदमी क्या अंग्रेजों से लड़ेगा, जरा जोर लगा।
10: नहीं भाई, तलवार ऐसे नहीं, ये यहाँ से पकड़ो मजबूती से, और सामने वाला वार करे ऐसे।
11: पिछले कुछ समय से फाड़के की सेना का आकार और आतंक बढ़ने लगा है।
12: पर मुझे समझ नहीं आता कि सिर्फ वन्य जातियों को संगठित कर उसने इतनी बड़ी सेना कैसे बना ली।
11: उसने हैदराबाद के निजाम के राज्य में से पठानों और रुहेलों को भी अपनी सेना में भर्ती कर लिया है, इसलिए उसकी मजबूती तीनों तीन बढ़ती जा रही है।
12: हमें जल्द ही कुछ करना होगा सर, वरना इस फड़के की सेना ने तो अभी हमारी सिर्फ जड़ ही हिलाई है, अगर खोज न किया तो ये हमें ही उखाड़ फेंकेंगे।
3: अठारह सौ 76-77 में महाराष्ट्र में भयंकर अकाल पड़ा। भूख की पीड़ा से हजारों व्यक्ति काल के गाल में समा गए। फड़के जी से यह देखा नहीं गया, उनकी आत्मा विद्रोह कर उठी। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था,

मेरे देशवासी उसी भारत माता के पुत्र हैं जिनका मैं हूं। वे भूखे मरे और मैं उनके लिए कुछ ना कर पाऊं। हम अपने ही देश में जानवरों का जीवन व्यतीत करें, ये विचार भी मेरे लिए असंभव है। मैं इसी बात पर दिन रात विचार किया करता हूं। सैकड़ों कष्ट देकर मेरे हृदय ने निश्चय कर लिया है कि ब्रिटिश सत्ता का खात्मा करूंगा। अब और कोई विचार मेरे मन में नहीं आते और ना रातों को नींद आती है। देशवासियों की सहायता करने और उन्हें स्वतंत्र कराने के प्रयत्न में मेरे प्राण निछावर कर देना कहीं अच्छा है।

0: बच्चों अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए फड़ के छुट गए। अंग्रेजों के खजाने लूट लूट कर वो गरीबों के पेट भरने लगे। सरकारी अफसर थर थर कांपने लगे। अंग्रेज भक्त अफसर बौखला गए। उनको खबर मिली कि गांवों और छोटे छोटे नगरों में रहने वाले अंग्रेज भाग भाग कर पुणे पहुंचने लगे। लेकिन वो तो अपनी बात पर अटल थे। उन्होंने फैसला किया कि
1: तो ठीक है, पुणे चलो, हम पुणे में छापे मारेंगे, वहां के सरकारी भवन जला दो और अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दो, सतारा जिले को रौंद डालो, ब्रिटिश जेलों पर थावा बोलकर कैदियों को मुक्त करा दो। मुक्त होने के बाद जो कैदी चाहे तो अपने अपने घर जा सकते हैं, या चाहे तो हमारे साथ रहकर देश को स्वाधीन कराने में हमारी सहायता कर सकते हैं।
2: हार के आतंक ने हमारी नींद हराम कर दी। यदि हमने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो वो जल्द ही सारे महाराष्ट्र से हमें बाहर कर देंगे।
3: ठीक है, अंग्रेज अफसरों से कहो कि जितने भी क्रांतिकारी विद्रोही दिखे उन्हें गोली मार दी जाए, फांसी के फांदों पर लटका दो, जिंदा जला दो, घोड़ों की छापों से कुचलवा दो या संगीनों से छेद दो।
2: फिर तो कोई भी इंडियन फिर से सिर उठाने का साहस नहीं करेगा और ना ही देश की आजादी की बात सोचेगा।
4: फाके साहब, आपने सुना वो अंग्रेजों का क्रूरतापूर्ण कदम?
1: हां सुना और महसूस भी किया, लेकिन उन्हें क्या पता कि भारतीय क्रांतिकारी रक्त बीज होते हैं। एक शहीद के खून से सैकड़ों क्रांतिकारी पैदा होकर शहीदों की पंक्तियों में पहुंचने के लिए बेचैन हो उठते हैं।
4: अब हमें आगे क्या करना चाहिए?
1: ब्रिटिशों पर हमारा आक्रमण और अधिक तेज कर दो। और आप सुनाए रामोशी जी, क्या खबर लाए?
5: जी, बंबई के गवर्नर सर रिचर्ड टेम्पल ने घोषित किया है कि आपको पकड़ने या मारने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे।
1: तो ठीक है, हमारी तरफ से भी ये घोषित कर दो कि जो कोई बंबई के गवर्नर का सर लाकर मुझे देगा मैं उसे 10,000 रुपए का इनाम दूंगा।
0: अंग्रेजी सरकार ने अपने प्रयत्न और तेज कर दिए। फड़के को पकड़ने के लिए निजाम तथा अंग्रेजों की फौजें पीछा कर रही थी। मेजर डेनियल और मिस्टर स्टीफेंसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेनाओं ने उसका पीछा किया। फड़के निजाम के राज्य में जा निकला। निरंतर भागते रहने के कारण एक दिन वो बहुत थक गया। बुखार ने भी उस पर आक्रमण कर दिया। आश्रय पाने के लिए वो हैदराबाद के कलादगी जिले के एक गांव में पहुंचा और देवी के मंदिर में विश्राम करने लगा। बुखार व थकान के कारण वो मूर्छित जैसा हो गया। तभी पीछा करती हुई ब्रिटिश सेना वहां पहुंच गई। मेजर डेनियल उसकी छाती पर खड़ा हो गया और बूट पहने हुए उसने अपना एक पैर फड़के के गले पर रख दिया और बोला,
6: कहो मिस्टर फड़के, आप क्या चाहते हो?
1: तुमसे तलवार के दो दो हाथ करना चाहता हूं।
6: दो दो हाथ? तुम अभी इस हालत में नहीं हो फड़के, इसे हथकड़ी पहनाकर पुणे ले चलो। तुम पर पुणे में राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा।

0: रावण के पर लूट, डकैती, चोरी एवं हत्याओं के आरोप सिद्ध हो चुके हैं। इन्हें आजन कारावास का दंड सुनाया जाता है। परंतु फड़के जैसे महाभयंकर कैदी को भारत की किसी जेल या अंडमान में रखना उचित नहीं, इसीलिए फड़के को अदन की जेल में रखा जाए।
1: फड़के को अदन की जेल में रखा गया। वीर फड़के ने वहां भी अपना पराक्रम दिखाया और वो अदन की जेल तोड़कर भाग निकला। यदि वो भारत के किसी जेल से भागा होता तो ब्रिटिश सरकार उसकी छाया भी नहीं छू सकती थी। परंतु वो विदेश में था। जेल से निकलकर वो जंगलों में भूखा प्यासा भटकता रहा, गंतव्य नहीं समझ सका। दोबारा पकड़कर वो फिर से जेल में ठूस दिया गया। अदन की जेल में ही वीर वासुदेव फड़के ने 17 फरवरी 1883 को जीवन की अंतिम सांस ली। भारत की भूमि से तो वो वीर विदा हो ही चुका था, वो अब दुनिया से भी विदा हो गया। हम उससे अलविदा भी नहीं कह पाए।

निर्देशन मॉरिस लाजरस, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम सा। और शनिवार की सुप्रभाता हूँ। आज तो मन कह रहा है कि गीत गाएं। सावन का महीना पावन करे शोर, जेरर झूमे ऐसन जैसे बन माना चेमो। सावन का महीना आ गया है, आप सबको श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आज 1 अगस्त नया महीना शुरू हो रहा है, तो देखे भाई सबको हम श्रावण मास की, श्रावण मास में आने वाले सभी त्योहारों की एडवांस में बहुत बहुत दिल से बधाई देते हैं। और शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। कल दोस्त दिवस रहा, उसके बारे में भी बताएंगे, सुनाएंगे, लेकिन पहले शुरू करते हैं एक कहानी से, बुढ़ापे की लाठी। रामलाल जी 75 वर्ष की आयु के हो चुके थे। अब तक उनका शरीर काम कर रहा था, तो वो छुटपुट बाहर के काम कर लिया करते थे, पर अब उनका शरीर बिल्कुल ही चलना बंद हो गया रहा, अतः वो घर पर ही रहा करते थे। रामलाल जी के कमरे से लगातार खांसने की आवाज़ आ रही थी। बाहर से बेटे वो बहू दोनों आपस में धीरे धीरे बतिया रहे थे। बहू बोली, अलका का करें, पिताजी तो दिन भर खांसते ही रहते हैं, सारा काम करके बैठती हूँ, उसके बाद उनकी सेवा में लगे रहो। तुम कोई वृद्धाश्रम क्यों नहीं छोड़ाते? मेरी सहेली विभा ने भी अपने ससुर को वृद्धाश्रम भेज दिया, तब से वो दोनों बहुत सुखी हो गए। बेटा रमेश बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना कि नहीं, बिना सोचे कुछ भी बोलती रहती हो। बहू बोली, इसमें मेरा दिमाग काहे खराब है? तुम तो दिन भर काम पर चले जाते हो, मुझे दिक्कत होती है। कल भी विभा के यहाँ किटी में जाना सकी, और मेरी माँ 2 दिन से मुझे बुला रही है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बेचारी बूढ़ी है, अपनी बेटी का इंतजार करती है। बेटा बोला, क्यों नहीं जा पा रही हो? कोई बाबूजी रोकते थोड़े हैं, उनका काम करके चली जाओ, फिर घर में बबलू भी तो है, वो देख लेगा। बहू बोली, बबलू अब ये 12 साल का है, और उसकी कोई ये उम्र है नहीं है कि वो बुढ़े लोगों की सेवा करता रहे, उसके पढ़ाई भी रहती है, फिर यार दोस्तों में खेलता भी है, उसका बचपन छीन लूँ का? बेटा बोला, ज़्यादा परेशानी है तो सारा सामान बाबूजी के कमरे में रख जाया करो, फिर तुम आराम से चली जाया करो, कोई प्रॉब्लम आएगी तो बाबूजी मुझे फ़ोन कर देंगे। बहू बोली, तुम्हें साई याद नहीं है, पिछली बार जब मैं बाजार घर का सामान लेने गई थी, तब बाबूजी को पलंग से गिर पड़े थे, और तुमने ही आकर मुझे कहा था कि उनको अकेला छोड़कर जाना नहीं है। बेटा बोला, तो बताओ क्या करूँ? जौन दिन तुम्हें जाना हो मैं दुकान की छुट्टी ले लूँगा, पर बाबूजी जब तक हैं तब तक तो हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। रामलाल जी बेटे और बहू दोनों की बात सुन रहे थे। उन्हें लगा कि चलो, बहू तो बुढ़ापे में सेवा नहीं करना चाहती, पर बेटा मेरा अपना है, उसे मेरे लिए बुरा लग रहा है। वो बहू बेटे की पुनः बातचीत रामलाल जी सुनने लगे। बहू बोली, हाँ हाँ, तुम्हारी दुकान तो बहुत करोड़पतियों की दुकान है, कि एक दिन बंद कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़े। एक दिन दुकान बंद करने का मतलब है 1,000 रुपये की कमाई जाना। इसका तो एक ही उपाय है कि बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज दो। मैं भी विभा की तरह स्वतंत्र होकर जी लूँगी। बेटा बोला, अलका तुम बिल्कुल समझदार नहीं हो, बाबूजी और विभा के ससुर में कोई तो अंतर है। विभा के ससुर की कोई पेंशन थोड़ी थी, उनके तो प्राइवेट नौकरी थी, उन्हें जो रिटायरमेंट के बाद पैसा मिला वो उन्होंने अपने बेटे और बेटी को बांट दिया, इसलिए विभा ने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया। फिर रमेश बेटा बोला, थोड़ा ठहर कर अपनी पत्नी अलका से कहता है, अलका मेरे पिताजी की तो पेंशन से हमारा घर चलता है, मेरी छोटी सी दुकान से का होता है? देखो, उससे जो कमाई होती है वो तो सारी बबलू के भविष्य के लिए रख रहे हैं। बबलू जब कॉलेज जाएगा तब उसके लिए भारी भरकम डोनेशन देना होगा, जब जाकर कॉलेज में एडमिशन लेगा। अब जब तक पिताजी हैं थोड़ा निभा लो, अगर हम पिताजी का वृद्धाश्रम छोड़ आए तो बैंक वाले हमें पेंशन नहीं देंगे, हम यही सोचकर पिताजी की थोड़ी सेवा कर लेते हैं कि उनकी सेवा के बदले हमें उनकी पेंशन घर के लिए मिल रही है। पिताजी अंदर बैठे सब सुन रहे थे। उनके दिल को गहरा धक्का लगा। वो सोच रहे थे कि उनका बेटा उनके लिए बहू से लड़ाई कर रहा है, पर वो तो बहू से भी बड़ा स्वार्थी निकला। उसे पिता से ज़्यादा उनके पेंशन प्यारी है। आजकल दुनिया में यही सब तो हो रहा है कि नहीं? तो उनको लगा कि पिताजी समझ गए कि इसको हमसे ज़्यादा प्यारा हमारी पेंशन है। देखिए भाई, बात तो हम करते हैं छोटी सी कोई भी, लेकिन उसमें बहुत गहरा राज होता है। वो गहरा राज कैसा होता है, आप समझ गए होंगे कि आज की दुनिया में लोग माँ बाप का संबंध नहीं देखते, लेकिन देखते हैं कि उनका पैसा आ रहा है। कहीं ना कहीं दिल से पिता के प्रति, माता के प्रति भावनाएं ख़त्म होती जा रही है, और क्या होते जा रहा है, स्वार्थ। इस स्वार्थ अगर अपनों के साथ भी किया तो ऊपर वाला ही जिम्मेदार है। आप सोच सकते हैं कि क्या बीती होंगी वो पिता के ऊपर, जो समझ गया कि बेटा मेरे को इसलिए नहीं रख रहा, इसलिए नहीं वृद्धाश्रम भेज रहा कि वो मुझसे प्यार करता है, बल्कि वो तो मेरी पेंशन के लिए रख रहा है। आज कहीं ना कहीं घर घर की ही कहानी है। कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? अपने आप से पूछिए, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो सोच लीजिए कभी हम भी बूढ़े होंगे, कभी हमारे बच्चे भी हमारे लिए कुछ न कुछ ऐसा ही करेंगे, तब हम पर क्या बीतेगी। कहीं ना कहीं आज भावनाएं सूख रही हैं, कहीं ना कहीं दिल का प्रेम ख़त्म हो रहा है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को समझें कि जिन्होंने पाला पोसा, हमको इस दुनिया में लाया, उनके लिए अगर हम उनके नहीं हो सके तो हम किसी के भी नहीं हो सकते। कहने का मतलब यही है कि आज की जनरेशन कहीं ना कहीं बुज़ुर्गों को, बड़ों को बोझ समझ रही। अगर उनसे कुछ मिल रहा है तो हाँ भाई देखभाल कर लेंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो वो बोझ हो जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के ऊपर बहुत बड़ी चोट है। काहे कि हमारी संस्कृति तो दूसरे को भी संभालने वाली थी। दूसरे के घर में भी कुछ हो जाए तो उनको कहते थे कोई बात नहीं, आप हमारे यहाँ आके रह जाओ। लेकिन आज तो आपको बताया, आपने सुना कि क्या हालत हो रही है। आज आवश्यकता है ये सोचने की कि बड़े बूढ़े हैं, भले ही वो कमा नहीं रहे हैं, लेकिन आपके बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं। वो एक ऐसी झाड़ है जो आपको कहीं ना कहीं छांव दे रही है, वो है तो आपको उनकी दुआएं मिल रही है। और अगर ये बात पर हमने जोर नहीं दिया तो आने वाली जनरेशन इससे बुरा हमारे साथ करेगी, तब हम पे काबीतेगी। हम तो ऐसे ही कह देते हैं, सबके लिए नहीं, हम तो बहुत सारे हमारे सुनने वाले श्रोताओं में से भाई बहन ऐसे हैं जो बहुत अपने माता पिता की देखभाल करते हैं और उनको बहुत प्यार से रखते हैं, लेकिन हम उन लोगों को कह रहे हैं जो इस बात को नहीं समझते। अद्भुत कलाकारी मेरा अहंकार ही मेरा बोझ है। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य समझ आ गया, उस दिन के बाद किसी की प्रशंसा या निंदा तुम्हें हिला नहीं पाएगी। मन का झुकना बहुत जरूरी है, मात्र सर झुकाने से परब्रह्म परमेश्वर नहीं मिलते। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। सही कार्य वो नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, सही कार्य वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। मन ही संसार है, जब मन शांत होता है संसार भी शांत हो जाता है। खुशी पाने का सबसे सरल तरीका है दूसरों को खुशी देना। परमात्मा कहते हैं, मेरे लाडली बच्चों, जिंदगी का पहिया लगातार घूमता रहता है। न तो कोई खुशियों को हमेशा पकड़ कर रख सकता है और न ही दुख हमेशा के लिए ठहर सकता है, क्योंकि ये सब परिवर्तनशील है। हमेशा इसलिए हमेशा बेफिक्र रहो। समझ गए होंगे हम का कहना चाहते हैं, समझदार तो हैं। सफल वही होता है जो हार मानने के बजाय सीखना चुनता है। जब भगवान पर भरोसा बढ़ता है तो चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि फिर मन को मालूम है अब जो होगा अच्छा ही होगा। कभी भी उम्मीद मत खोना अच्छे इरादे के साथ। अगर आप लगातार कोशिश करते रहेंगे तो ईश्वरीय शक्ति और ब्रह्मांड।
1: गुड मॉर्निंग दीदी।
0: गुड मॉर्निंग भैया, कैसे हो?
1: बहुत ही बढ़िया हूँ दीदी, बहुत खुशी से प्रोग्राम सुन रहा हूँ, दिल गदगद हो रहा है। और आपको रेडियो मधुबन परिवार और सभी श्रोते भाई बहनों को सुभाष भाई का नमस्कार। और दीदी सावन का गीत बहुत ही अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा लगा। इधर भी आपके गीतों की बार छा गई। और सभी को नमस्कार। ओम शांति
0: शांति। सुभाष भाई को भी पूरा रेडियो मधुबन की टीम की तरफ से नमस्कार। तो देखो भाई, महाराष्ट्र से भैया बात करते हैं, तबीयत ठीक नहीं है, ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हर बार प्रोग्राम करके ज़रूर बता देते हैं कि सुन रहे हैं। कभी भी उम्मीद मत खोना अच्छे इरादे के साथ। अगर आप लगातार कोशिश करते रहेंगे तो ईश्वरीय शक्ति और ब्रह्मांड की शक्तियाँ मिलकर आपके उद्देश्य को पूरा करेगी। खुद को ऊँचा उठाने के लिए दूसरों को नीचे गिराने की जरूरत नहीं है, ये असली नेतृत्व है। शांत मन में ही समस्याओं का हल जन्म लेता है। अपनी खराब आदतों पर विजय हासिल करने से ज़्यादा आनंद इस जीवन में और कुछ नहीं होता। हर एक को मालूम होता है हमारी कमी का है, हमारी विशेषता का है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास है। जब स्वयं पर विश्वास होता है तो कठिन से कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। विश्वास सफलता का पहला कदम है। चलिए ये बात पर एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बतियाएंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। सुनिएगा ये गीत।

देखिए भाई, आज शनिवार का दिन है और शनिवार का दिन किसका माना जाता है? हनुमान जी का। तो चलिए एक बहुत सुंदर घटना, एक बहुत सुंदर हनुमान जी के बारे में बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो सुना रहे हैं। महादेव जी ने क्यों लिया हनुमान जी का अवतार? दुनिया मानती है कि पवन पुत्र हनुमान का अवतार केवल रावण के वध में भगवान श्री राम की सहायता करने के लिए हुआ था, लेकिन क्या वास्तव में यही उनके जन्म का एकमात्र उद्देश्य रहा?

यदि हनुमान जी चाहते तो अपनी अपार शक्ति से अकेले ही लंका को धूल में मिला सकते थे, वो पर्वत उठा सकते थे, समुद्र लांग सकते थे, काल को भी चुनौती दे सकते थे। फिर उन्होंने स्वयं रावण का वध क्यों नहीं किया? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य रहा जेके केवल भगवान शिव और माता पार्वती ही जानते थे? कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर स्वयं कैलाश पर्वत पर एक दिव्य संवाद में प्रकट हुआ था, जहां महादेव ने माता पार्वती को उस रहस्य से अवगत कराया जिसने आगे चलकर पूरी रामकथा की दिशा ही बदल दी। ये कथा उस समय की है जब रावण अपने पराक्रम, ज्ञान और तपस्या के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया रहा। वेदों का ज्ञाता था, संगीत का महान विद्वान था और भगवान शिव का अनन्य उपासक भी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने उनको अनेक दिव्य वरदान प्रदान किए थे, लेकिन समय के साथ उनके भीतर का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने धर्म और अधर्म का अंतर ही मिटा दिया। उनको अपनी शक्ति पर इतना अभिमान हो गया कि उस स्वयं को अजय समझने लगा। उसके लिए स्त्री, ऋषि, देवता और साधारण प्रजा सब केवल उसकी इच्छा के अधून वस्तुएं बनकर रह गए। एक दिन स्वर्ग लोक में अप्सरा रंभा अपने पति से मिलने जा रही थी। वो अत्यंत पवित्र उद्देश्य से निकली थी, लेकिन मार्ग में रावण की दृष्टि उस पर पड़ गई। रंभा ने हाथ जोड़कर कहा, लंकेश्वर, मैं आपके ही कुल की पुत्र वधु सम्मान हूँ, मुझे अपनी पुत्री या बहू समझकर जाने दीजिए। लेकिन अहंकार में अंधे रावण ने उसके शब्दों का सम्मान नहीं किया, उसने उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया। ये घटना केवल एक स्त्री का अपमान नहीं थी, बल्कि धर्म की मर्यादा पर सीधा आघात था। उस दिन से रावण के पापों का घड़ा और भी भरे लगा। समय बीतता गया, रावण की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि उसने केवल स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार करने का ही नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव की दिव्य शक्ति को भी प्राप्त करने का विचार कर लिया। उसने हिमालय की गुफाओं में बैठकर कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उसने अपनी भक्ति से महादेव को प्रसन्न किया। जब भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा, तब रावण ने ऐसी इच्छा प्रकट की जिसे सुनकर स्वयं देवता भी स्तब्ध रह गए। उसने महादेव से माता पार्वती को ही अपने साथ ले जाने का वर मांग लिया। क्षण भर के लिए कैलाश का वातावरण मौन हो गया। माता पार्वती का तेज प्रचंड हो उठा, उनके नेत्रों में क्रोध की अग्नि जलने लगी। उन्होंने महाकाली का स्वरूप धारण कर लिया। ऐसा प्रतीत होने लगा कि अगले ही क्षण रावण का अंत निश्चित है, लेकिन तभी भगवान शिव ने उन्हें शांत कर दिया। उन्होंने कहा, देवी समय आने दो, इस अधर्मी का अंत केवल उसके शरीर का विनाश नहीं होगा, बल्कि उसके अहंकार का भी पूर्ण अंत होगा। उसका दंड ऐसा होगा जिसे युगों तक संसार याद रखेगा। माता पार्वती ने शांत होकर महादेव की ओर देखा, तब भगवान शिव बोले, मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना में सहभागी बनूंगा। जब समय आएगा तब मेरा अंत एक ऐसे दिव्य रूप में जन्म लेगा, जो शक्ति, भक्ति और सेवा का सर्वोच्च प्रतीक होगा। यही वो क्षण था जब भविष्य में हनुमान अवतार का संकल्प लिया गया। कुछ समय बाद धरती पर माता अंजना ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपना रुद्रांश उन्हें प्रदान किया। पवन देव उस दिव्य तेज को माता अंजना तक लेकर पहुँचे और उसी दिव्य शक्ति से पवन पुत्र हनुमान का जन्म हुआ। उनके जन्म के साथ ही देवताओं ने अनुभव कर लिया, ये कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं रुद्र का अंश है। उनके भीतर अपार बल था, लेकिन उससे भी अधिक विनम्रता थी। वो जितने पराक्रमी थे उतने ही महान भक्त भी थे। समय आने पर भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। महादेव का अंश हनुमान उनके चरणों में पहुँच गया। यहीं से उस दिव्य योजना का दूसरा अध्याय प्रारंभ हुआ। हनुमान जी जानते थे
कि यदि वे चाहें तो अकेले ही रावण और पूरी लंका का अंत कर सकते हैं। लेकिन उनका उद्देश्य केवल रावण का वध नहीं था, उनका उद्देश्य था श्री राम की मर्यादा, धर्म और आदर्श को पूरे संसार में स्थापित करना। यदि वो स्वयं सब कुछ कर देते तो राम अवतार का उद्देश्य अधूरा रह जाता। इसलिए उन्होंने हर स्थान पर स्वयं को सेवक बनाकर रखा और अपने प्रभु के ही विजय को श्रेय दिलाया। जब माता सीता का हरण हुआ और हनुमान पहली बार लंका पहुँचे, तब उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को प्रभु का संदेश दिया। उसके बाद उन्होंने अकेले ही पूरी लंका की सेना को चुनौती दी। असंख्य राक्षस उनके सामने टिक नहीं सके। अंततः उन्हें बांध कर रावण की सभा में लाया गया। रावण ने क्रोध में उनकी पूंछ में अग्नि लगाने का आदेश दिया। उससे का पता रहा कि यही निर्णय उसकी स्वर्ग नगरी के विनाश का कारण बनने वाला है। कहा जाता है कि उसी समय माता पार्वती ने अदृश्य रूप से हनुमान की पूंछ में अपनी दिव्य शक्ति का संचार किया। अग्नि उनके लिए दाहक नहीं बल्कि धर्म का अस्त्र बन गई। हनुमान ने एक ही छलांग में महलों से महलों तक उड़ान भरी और देखते ही देखते पूरी लंका अग्नि की लपटों में घिर गई। स्वर्ण से बनी वो नगरी जिस पर रावण को सबसे अधिक गर्व था, उसी के सामने जले लगी। केवल एक नगर का दहन नहीं था बल्कि अधर्म और अहंकार के अंत की घोषणा थी। इसके बाद रामायण का महान युद्ध हुआ। श्री राम ने धर्म की स्थापना के लिए रावण का वध किया और संसार को यह संदेश दिया कि चाहे अधर्म कितना भी शक्तिशाली काहे ना हो, उसका अंत निश्चित है। हनुमान जी हर क्षण अपने प्रभु के साथ रहे, लेकिन उन्होंने कभी स्वयं को नायक नहीं बनाया। उनका सबसे बड़ा गौरव यही रहा कि वो स्वयं को केवल श्री राम का सेवक कहते रहे। इसलिए हनुमान जी का अवतार केवल युद्ध करे के लिए नहीं रहा, उनका जन्म भक्ति, सेवा, विनम्रता, शक्ति और धर्म की रक्षा का शाश्वत संदेश दे के लिए हुआ रहा। उन्होंने संसार को सिखाया कि सबसे बड़ा बल वही है जो अपने अहंकार के लिए नहीं बल्कि धर्म और प्रभु की सेवा के लिए समर्पित हो। यही कारण है कि आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से जय श्री राम और जय हनुमान का स्मरण करता है, तो विश्वास किया जाता है कि पवन पुत्र अदृश्य रूप से उसकी रक्षा के लिए उपस्थित हो जाते हैं। हम समझते हैं आप ये कहानी पहले नहीं सुने होंगे, हमें लगा कि आपको ये बता दें। कहे कि किसी भी महान पुरुष का या किसी भी दिव्य शक्ति का अवतरण होता है कोई एक कारण से नहीं, वो कई कारण होते हैं उसके लिए, और वो कहीं ना कहीं परमात्मा की सेवा के लिए, और वो अभिमान से नहीं, अभिमान को तोड़ने के लिए होता है। आशा करते हैं आप ये बात से सहमत होंगे और अच्छा लगा होगा। नई बार सुनी है तो है कि नहीं, नई बात सुने तो अच्छा लगता है ना, फिर आप दूसरे को भी सुनाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, उन लोग का भी ज्ञान वर्धन होगा। यही तो अपने प्रोग्राम का कहीं ना कहीं लक्ष्य है कि अच्छी बातें सुनाएं, अच्छे ऐसे जिससे जीवन आगे बढ़े। अगर आप कोशिश करके असफल भी हो जाएं तो वो गलती नहीं है, लेकिन अगर आप कोई कोशिश ही नहीं करते तो वही सबसे बड़ी गलती। जीवन में कुछ ना कुछ तो करते रहिए। घमंड किस बात का है जनाब, ऊपर से लेमिनेशन हटा दो तो अंदर से सब इतने ही खूबसूरत है। जो देखते हैं ना पिंजरा हड्डियों का, वही है। तो घमंड किस बात का है जनाब, ऊपर से लेमिनेशन हटा दो तो अंदर से सब इतने ही खूबसूरत है। सब कुछ खत्म हो गया ऐसा सोचकर कभी निराश मत होइए। इंसान की सीमाओं से परे कई चीज़ें ईश्वर के नियंत्रण में हैं, उस पर पूरा भरोसा रखिए। हर दिन को एक नई शुरुआत समझिए, बीती हुई गलतियों से सीख लीजिए, लेकिन उन्हें अपने आज पर हावी मत होने दीजिए। सुनहरा भविष्य आज के कर्मों से बनता है। अगर आप कोशिश करके असफल भी हो जाएं तो गलती नहीं है, लेकिन अगर आप कोई कोशिश ही नहीं करते तो वही सबसे बड़ी गलती है। चलिए भाई, इसी बात पर और एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बताएंगे। सुनिएगा ये फोन, आप सब तो समझ ही गए होंगे, फोनवा भी सुने कि हम लाइव कर रहे हैं, तो सुनिएगा गीत।

चल जिंदगी आज थोड़ी बात करते हैं, चल जिंदगी आज थोड़ी बात करते हैं, जो भी छूट गया है पीछे अब उसी से मुलाकात करते हैं, जो भी छूट गया है पीछे अब उसी से मुलाकात करते हैं। ख्वाहिशों का जो सिरा पल्लू में बांध लिया था, ख्वाहिशों का जो सिरा पल्लू में बांध लिया था, अब खोल गांठ उसकी उन्हें आबाद करते हैं, अब खोल गांठ उसकी उन्हें आबाद करते हैं। सब कुछ तो बटोर नहीं पाएंगे इन कांपते हाथों में, सब कुछ तो बटोर नहीं पाएंगे इन कांपते हाथों में, अब मगर चंद खुशियों को थामने की शुरुआत करते हैं। माना ढलती हुई उम्र और याददाश्त के झड़ते हुए पत्ते हैं, माना ढलती हुई उम्र और याददाश्त के झड़ते हुए पत्ते हैं, चलो इन्हीं के संग अपनी तमन्नाओं से मुलाकात करते हैं, अपनी तमन्ना

नाव से मुलाकात करते हैं। देखिए भाई, कहा है ना कि कई बार कुछ चीज़ें हम बोल नहीं पाते, कर नहीं पाते, जीवन में वो रहती है कि अगर ये कर लेते वो कर लेते, नहीं कर पाते कोनो बात नहीं ना भाई, अपने आप को सांत्वना दे दीजिए, बस ये आपकी लिमिट है और इससे ज़्यादा अपेक्षा कहीं से नहीं करना। और कल दोस्ती दिवस रहा, हम कहे ना सुनाएंगे, तो दोस्ती दिवस के आप सबको शुभकामनाएं। जिसके साथ खून का संबंध नहीं होता फिर भी प्रिय लगे वो है दोस्त। जिसके साथ खून का संबंध नहीं होता फिर भी लगे प्रिय वो है दोस्त। जिसके साथ दुनिया भर की बातें करके भी थकान न लगे वो है दोस्त। जिसके साथ छोटी सी बात पर भी खुलकर हंस लेते हैं वो है दोस्त। जिसके कंधे पर माथा रख कर रो सकते हैं वो है दोस्त। जिसके साथ ठंडी चाय भी एकदम गर्म लगे वो है दोस्त। जिसके साथ खिचड़ी भी खाने में दावत जैसी लगे वो है दोस्त। जिसको आधी रात को भी उठाकर दिल की बात कर सके वो है दोस्त। जिसके साथ बिताए गए पलों को याद करने भर से चेहरे पर मुस्कान आ जाए वो है दोस्त। जिसके साथ कोई भूमिका बनाए बिना खुलकर बात करें और वो स्वीकार करे वो है दोस्त। एक अरसे के बाद भी जिसको मिलते ही दिल झूम उठे वो है दोस्त। दूर रहते हुए भी जिसके साथ दिल के तार जुड़े हो वो है दोस्त। दोस्ती तो वो है मेरे दोस्त जो बेजान जिंदगी में भी जान डाल दे वो है दोस्त। संक्षेप में, दोस्त वो है जो हर मुसीबत में हर तरह से साथ निभाए। मित्रता दिवस की शुभकामनाएं। दूसरा, जो आपको आत्मा समझकर देखे वही सच्चा मित्र है। जो आपकी कमजोरियां पर नहीं विशेषताओं पर दृष्टि रखे वही सच्चा मित्र है। जो गिरने पर आलोचना नहीं हिम्मत दे वही सच्चा मित्र है। जो आपको बाबा की याद दिलाए वही सच्चा मित्र है। जो स्वयं भी श्रेय मार्ग पर चले और आपको भी साथ चलाए वही सच्चा मित्र है। सच्ची मित्रता स्वार्थ से नहीं, शुभ भावना, रहम दिल और निस्वार्थ प्रेम से निपटती है। और सबसे बड़ा सौभाग्य जब परम पिता शिव बाबा स्वयं हमारे सदा के सच्चे मित्र बन जाए, यही है सच्ची और अविनाशी मित्रता। तो देखिए भाई, हम दोनों हिसाब से बता दिए कि मित्रता का होती है। आप अपने आप से पूछे कि आपकी जिससे मित्रता है उससे का ये सब है, ये सब मिलता है? अगर नहीं तो भाई कौन बात नहीं, जिंदगी है, सभी प्रकार के लोग मिलेंगे, हम जैसा चाहते वैसे ही हो ये तो हो ही नहीं सकता ना, है कि नहीं? हर इंसान अपने अपने ही हिसाब से, अपने अपने स्वभाव से निभाता है अपने जो संबंध होते हैं। लेकिन हम अपेक्षा ज़्यादा ना रखें। अपेक्षा जब टूटती है तो बहुत तकलीफ होती है। कल का क्या भरोसा? किसी की ज़िंदगी छोटी तो किसी की बड़ी होती है, किसी की ज़िंदगी छोटी तो किसी की बड़ी होती है, मौत किसी के दरवाजे पर तो किसी के सिर पर खड़ी होती है। कौन जाने किसी के हिस्से में कल का सूरज आएगा कि नहीं, जिससे मुंह फुलाकर बैठे हो आज वो क्या पता कल मिल पाएगा कि नहीं। दिल से जुड़े रिश्तों को यूं ना गलत फहमियों का शिकार बनाइए। दिल से जुड़े रिश्तों को यूं ना गलत फहमियों का शिकार बनाइए। मन मुटाव की इस गांठ को इतना कस करना लगाइए। ये वक्त की रेत हाथों से पल में फिसल जाएगी। तुम आवाज़ लगाते रहोगे और वो बहुत दूर निकल जाएगी, वो बहुत दूर निकल जाएगी। है सही की बात नहीं? छोटी छोटी बात में घमंड हो जाता, छोटी छोटी बात में रिश्तों को हम तोड़ देते हैं। लेकिन सही में सही इंसान वही है जो सिर्फ स्वार्थ से नहीं लेकिन ईश्वरीय शक्ति और आत्मिक दृष्टि से देखे।
एक गुरुकुल में गुरुजी ने अपने दो शिष्यों को बुलाकर गुरुजी ने कहा, पहाड़ की चोटी पर मेरे मित्र का आश्रम है, तुम दोनों वहाँ जाओ और उनका हालचाल लेकर वापस आओ। जाते समय ये दो बैग भी साथ ले जाओ। चालक शिष्य ने तुरंत खाली बैग उठा लिया, जबकि दूसरे सरल स्वभाव के शिष्य ने भरा हुआ बैग उठा लिया। गुरुजी ने भरे हुए बैग वाले शिष्य से कहा, रास्ते में जो भी ज़रूरतमंद मिले उन्हें इस बैग का सामान बांटते जाना। खाली बैग वाले शिष्य बोले, रास्ते में जो भी अच्छी वस्तु मिले इसे अपने बैग में रख लेना। यात्रा शुरू हुई। पहला शुरू शिष्य जरूरतमंदों की मदद करता गया। सामान बांटते बांटते उसका बैग हल्का होता गया और वो आसानी से आश्रम पहुंच गया। दूसरी ओर लालच में पड़े शिष्य ने रास्ते में मिले चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के और सोने की ईंटें अपने बैग में भर ली। बैग इतना भारी हो गया कि वो रास्ते में ही गिरकर बेहोश हो गया। लौटते समय पहले शिष्य ने उसे संभाला और आश्रम ले आया। गुरुजी ने समझाया, जो दूसरों के साथ बांटता है उसका जीवन हल्का और सुखी रहता है, लेकिन जो केवल जमा करता है वो अपने ही बोझ से दब जाता है। सीख का मिली, सच्ची खुशी संग्रह में नहीं बल्कि बांटने और दूसरों के काम आने में है। उस सोचा कि हल्का बैग हम उठा लें, वजन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उठा के लेके भी जाना था और ले के भी आना था। और इस भाई सोचा, जो गुरु की आज्ञा तो ठीक है, बैग भारी है तो भारी है, लेकिन बांटते बांटते वो खाली हो गया, वो हल्का हो गया, चढ़ भी गया और खाली हाथ खाली बैग लेके नीचे भी आ गया। कई बार जब हम चालाकी करते हैं तो वो चालाकी हमारे ही सामने आ जाती है। हम सोचेंगे ये जली रोटी है इसको दे दे, नहीं, घूम फिर के वो आपकी थाली में आ जाएगी। इस दुनिया की रीत है भाई, जैसा आप सोचते हैं उही प्रकार से बात आपके हिस्से में आ जाती है। आप अच्छा सोचते हैं तो आपके पास अच्छी अच्छी चीज़ें आती है, अगर आप गलत सोचते हैं तो ऑब्वियसली बात तो यही है कि वही आएगी, जो आपने दिया है वही आपके पास रिटर्न आएगा। तो क्या करिएगा, आप तो समझदार है कि नहीं। जो कुछ है बांटते जाइए, अपेक्षा किसी से मत रखिए। अपेक्षा रखने से जब अपेक्षा टूटती है तो बहुत दुख होता है। आपको बताया, किसी की ज़िंदगी छोटी तो किसी की बड़ी होती है, मौत किसी के दरवाजे पर तो किसी के सिर पर खड़ी होती है। तो ये बात को समझिएगा, ऐसे ही नहीं बात करते हैं, वो बात में बहुत गहराई होती है। अगर उन गहराइयों को आप समझिएगा तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छा होगा। मौन होकर एकाग्रता के साथ पढ़ें, हे प्रभु जब सब साथ छोड़ देते हैं, जब कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, तब आपकी उपस्थिति ही मुझे संभालती है, क्योंकि आपके बिना जीवन की राहें अधूरी और डरावनी लगती है। आप ही मेरी शक्ति हैं, आप ही मेरा विश्वास हैं, आपके बिना ये जीवन कुछ भी नहीं है। जब मन थक जाता है और लोगों पर से भरोसा उठने लगता है, तब आपकी एक झलक ही नया साहस दे जाती है। अगर सच्चे दिल से आप भी भगवान पर भरोसा करते तो इस संदेश को, इस बात को औरों के साथ जरूर शेयर करिए, किसी अपने तक जरूर पहुंचाइए। प्रभु आपकी हर परेशानी को आसान कर देंगे। अगर आप विश्वास रखते हैं तो अपने जीवन में उतारिए, दूसरों के जीवन में भी उतारिए। नहीं तो बाकी तो सब जानते ही करते हैं कि भाई हर इंसान अपने हिसाब से जिएगा, अपने हिसाब से ही करेगा, लेकिन जीवन का मतलब बांटना है, ना कि हर चीज़ इकट्ठा करें इकट्ठा करें। अरे करके भी क्या करिएगा, कितना बार कहें और आप सब भी जानते हैं, हमारे हाथ से तो इस दुनिया से उस दुनिया में एक सुई भी नहीं जाएगी। जब कुछ नहीं जाएगा तो इतना जोड़ जोड़ के काहे अपने आप को बोझिल करते हैं, और फिर उसमें मोह हो जाएगा, बुद्धि उसी में भटका करेगी, और जब प्राण निकलेंगे तो उस चीज़ में बुद्धि जाएगी, अरे ये रह गया, अरे वो रह गया। कहने का मतलब, जीवन में जितने सरल रहें उतना अच्छा है। चलिए भाई, ये बात पर एक गीत सुन लेते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहें मुस्कुराते रहें, सुनिएगा।

0: आप हो रेडिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो
1: देखिए भाई, आपको कहा कि कल दोस्ती दिवस रहा, लेकिन दोस्ती दिवस के साथ साथ दोस्ती कैसी हुई ये भी सुनाया, जैसे कि कृष्ण सुदामा की। ये नहीं कि भाई जब मतलब पड़े तब दोस्त, कहते ना गालों में गोश्त तो गली गली दोस्त। अगर आपके जेब में पैसा रुपया है, आप खिला पिला रहे हैं, तो आपके बहुत दोस्त हैं, नहीं तो कोई नहीं। ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए जीवन में। सच्चा दोस्त एक भी हो वो भी बहुत है, 10 ऐसे हों जो कि मन के काले हो। ठीक, हेलो।
2: हाँ जी नमस्कार, मदन भाई बोल रहा हूँ।
1: नमस्कार मदन भाई जी, कैसे हैं?
2: बहुत बढ़िया से बढ़िया हूँ, मस्त मजे में हूँ, और बस याद की यात्रा बढ़ा रहा हूँ, और आप सबको याद कर रहा हूँ। रेडियो मदन को आज सुबह फोन नहीं किया था
1: जी,
2: बारिश के हिसाब से और चारों तरफ थोड़ी बारिश आई थी, इतनी नहीं आई है
1: जी,
2: इतनी आ गई है, इतनी नहीं आई है
1: जी,
2: और इस तरफ पड़ी है, बड़ोदरा है, इस तरफ सूरत है।
1: हाँ, उधर गुजरात में बहुत ज्यादा है।
2: हाँ, हमारे मेहसाणा तरफ इतनी भी नहीं है।
1: हाँ, हाँ।
2: कल शाम को आई थी, हाँ। और बस रात को थोड़े आए थे, फिर उसके बाद में नहीं आई। अभी तो गर्मी पड़ रही है और चारों तरफ बादल छाए हैं, ठंडा मौसम है, और बस आपको नमस्कार करते हैं और हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार करते हैं, और बस अभी समय भी कम है और चलते हैं, फिर कल करेंगे रविवार को। नमस्कार,
1: नमस्कार, ओम शांति, थैंक यू, थैंक यू। देखिए भाई, मदन भाई भले रेडियो नहीं सुनते, कहे कि इस समय उनकी ड्यूटी रहती है, लेकिन रात को 11 बजे सुनते हैं और फुनवा तो जरूर करते हैं। ये प्रेम है, सच्चा प्रेम, कहते हैं आत्मी प्रेम। जीवन में हर चीज़ तेज दौड़ने से नहीं मिलती, बहुत पते की बात है। जीवन में हर चीज़ तेज दौड़ने से नहीं मिलती, कुछ अनमोल चीज़ें ठहर कर भी हासिल होती है, जैसे सुख, शांति और सुकून। है कि नहीं सही बात? धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, दया, सेवा और प्रेम, यही सच्चा धर्म है। सच्चे साथ देने वालों की बस एक ही निशानी है कि वो जिक्र नहीं करते, हमेशा फिक्र किया करते हैं। ऐसे दोस्त मिल जाए तो जीवन संवर जाए। जब दिल साफ होता है तो दुआएं खुद ब खुद साथ चली हैं। जब दिल साफ होता है तो दुआएं खुद ब खुद साथ चली हैं। किसी के लिए अच्छा सोचिए, क्योंकि वही अच्छाई किसी दिन लौट कर आपके पास आती है। ये तो कितनी बार हम आप लोगों को सुना चुके कि जो हम देंगे वही हमारे पास लौटेगा, तो काहे ना हम अच्छा अच्छा सोचे, अच्छा अच्छा दें। सच्चे लोगों पर उतना ही भरोसा रखिए जितना दवाइयों पर रखते हैं। वे भले ही थोड़े कड़वे लगे, लेकिन जीवन में सबसे अधिक फायदेमंद वही साबित होते हैं। सबसे कठिन आसन है आश्वासन, सबसे लंबा श्वास है विश्वास, सबसे कठिन योग है वियोग, और सबसे अच्छा योग है सहयोग। अपने आप से पूछिए, हम क्या करते हैं? सहयोग करते हैं, विश्वास रखते हैं, और अगर ये सब करते हैं तो आप सच्चे इंसान हैं। जीवन में हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि सर्टिफिकेट से नहीं, स्किल से जिंदगी चलती है। डिग्री दीवारों पर लगती है, हुनर दिलों पर राज करता है। काहे कि आपके व्यवहार से ही आप समझे जाते हैं कि आप कैसे हैं। तो क्या करिएगा, ये तो आप जानते हैं। बाकी माँ की वो प्यारी बीमारी, नानी मैं कुल्फी और ले लूँ प्लीज, चीकू ने फ्रिज खोलते हुए पूछा। चीकू तुम खा चुके हो ना? गलत बात है, वो कुल्फी नानी की है, हटो वहां से। मैंने अपने 6 साल के बेटे को आंखें तरेरी, लेकिन तब तक चीकू की नानी कुल्फी उसके हाथ में थमा चुकी थी। कहा माँ, मैं खास आपके लिए रघुरजी वाली कुल्फी लाई थी, ये तो खा चुका था ना। अरे बेटा, जब से घुटनों में दर्द बढ़ गया है ना, डॉक्टर ने ठंडी चीजें खाने से मना कर दिया है। मैंने सिर पकड़ लिया। माँ की वही पुरानी बीमारी झूठ बोले की, बचपन से ही ऐसा होता आया है। बस माँ को ये पता चल जाए कि हमें का अच्छा लगा तो अपने हिस्से की चीज़ देने के लिए कोई ना कोई बहाना निकाल लेती थी, अपने हिस्से की चीज़ देने के लिए कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती थी। इतना बुरा बता देती है कि सामने वाला मजबूर होकर वही चीज़ ले ले। माँ मटर पनीर और है का बहुत अच्छी बनी, हाँ मेरी कटोरी से ले लो, मुझसे तो खाई नहीं जा रही, मिर्च बहुत है। एक बार पापा कितने मन से गुलाबी कढ़ाई वाला शॉल लाए थे, बड़ी बुआ को बहुत भा गया और माँ का फिर वही नाटक, अरे रख लो जीजी, मुझे तो ये का रंग ही बहुत खराब लग रहा है। उसके बाद 2 दिनों तक मैंने माँ से बात नहीं की थी। पापा ने समझाया था, बेटा तुम्हारी माँ ने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, ऐसी ही है वो। चीकू की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी, 1-2 दिन में वापस जाना था, मन अजीब सा हो रहा था। शाम को कुछ साड़ियां खरीदी, उनमें से हरी बंदेज की साड़ी माँ को बहुत पसंद आई, बार बार उलट पलट कर देखती रही। माँ ये आप रख लीजिए, मैं दूसरी ले लूँगी। अरे नहीं रे, ये हरा रंग ना बाबा, बहुत चटक है। सुबह निकलना था, सारी पैकिंग हो चुकी थी, मैं परेशान थी। क्या हुआ बेटा, क्या ढूंढ रही हो, माँ ने पूछा। कुछ नहीं माँ, वो रसीद नहीं मिल रही, बिना रसीद साड़ी वापस नहीं होगी, मैंने पर्स रटोलते हुए कहा। लेकिन वापस काहे करनी है, तुम तो अपनी पसंद से लाई थी। हाँ माँ, लेकिन चीकू के पापा को हरी वाली बिल्कुल पसंद नहीं आई, फोटो भेजी थी, बोले तुरंत वापस करो, लेकिन बिना रसीद। अगर वापस ही करनी है तो मैं रख लेती हूँ। माँ साड़ी लेकर अंदर चली गई, दरवाजे पर पापा खड़े मुस्कुरा रहे थे, मेरी चोरी पकड़ी जा चुकी थी, लग गई माँ की बीमारी तुम्हें भी। पापा ने सिर पर हाथ फेरा, सदा खुश रहो। मैं भी यही सोच रही थी, माँ को उनकी पसंद की चीज़ देने के लिए मुझे उन्हीं का तरीका अपनाना पड़ा और वो कारगर भी हुआ। आज ये भी समझ में आया कि माँ ऐसा क्यों करती है, जब कोई अपना हमारी चीज़ लेता है तो जो सुकून मिलता है वो ऐसा होता है जैसे वो चीज़ हम खुद ही इस्तेमाल कर रहे हों, बल्कि उससे भी ज़्यादा। अब मुझे बस इंतज़ार था माँ को वो साड़ी पहनते हुए देखने का। देखिए भाई कितना प्रेम होता है, माँ के गुण बेटी अपना ही लेती है, ये है प्रेम। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, समय हो गया है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।
3: अभी बजे हैं 12:00, 1 मिनट का हो आत्मचिंतन।

0: बरसत झरझत सावन आयो रे।
1: का बात है रतन, तू तो सावन का गीत गाए रही है।
0: कंचन आओ भाई आओ, राम राम
1: राम राम राम राम, राम, राम थने ही राम राम है।
0: हाँ भाई देख, सावन महीनो लाग गयो है। और सावन महीना लाग्या नहीं अत्रा दन वे गयो, मैं तो सावन को पूरा ही आनंद ले रही हूँ, अपना श्रोता बंधु भी लेता भी।
1: हाँ।
0: तो अपना श्रोता बंधु को स्वागत करा हाँ घावरी बातें कार्यक्रम में।
1: सुनता रहो
0: मुस्कुराता रहो,
1: रेडियो मधुबन
0: 107.8 FM। तो कंचन, सावन महीना की मजा तो पड़ रही ना?
1: हाँ खूब मजा पड़ रही है, मजो आ रही है। सोमवार चालू वेरिया है हमें, तू सोमवार करेगे कोनी?
0: हाँ सोमवार करा ना, सोमवार ने तो मंदिरा में मेलो लागे, आराम हाँ। दर्शन करवाई जावा और आरती सत्संग कीर्तन सब कर रहे हो। जिस तो मैंने तो गीत याद आ रहा है, और मैंने एक गीत और याद आ गयो, जो वो शायद पिक्चर को है पर याद आ गयो तो सुना दूं।
1: हाँ सुना दे सुना दे।
0: सावन के झूले ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापिस आया, मैं परदेसी घर वापिस आया। तो देख भाई, सावन महीनो तो एड़ो त्योहार है कि लोग बाने ग्योड़ाई अपना घरे पधारे है।
1: सही बात कह रही है, सावन आए हुए जोने हरियाली हरियाली वे गई है एक तरफ हर पर, हर सोमवार ने मनक व्रत राके चामके, तो 5 सोमवार है नहीं?
0: हाँ शायद 5 सोमवार आ रहा,
1: 5 सोमवार है। हर सोमवार ने मनक मंदिर जाए, जल्दी उठे, जल चढ़ावे, काचो दूध चढ़ावे, छोटा छोटा बच्चों ने शौक आवे व्रत करवा रो, मैं ही व्रत करा मैं ही व्रत करा। तो सोमवार रो ने श्रावण रो खूब अच्छो, श्रावण तीस हर त्योहार चालू हुई है पर आज ओपरे श्रावण ती। हाँ रक्षाबंधन आवी, रक्षाबंधन ती पहला तन दियो ने वे दशा मारा व्रत चालू वे जाई।
0: हाँ दशा माँ का व्रत ही चालू हुई। और सावन महीना तो आखो ही तू समझ ले त्योहार को ही है,
1: त्योहार को ही है,
0: हर सावन का सोमवार त्योहार है। हरियाली अमावस्या, लोहड़ी तीज, रक्षाबंधन, 15 अगस्त।
1: 15 अगस्त सही बात कह रही है, मतलब खुशियाली खुशियाली
0: हाँ,
1: हर जगह
0: हरियाली और खुशियाली। जटा हरियाली है बटे खुशियाली है।
1: हाँ जरिश तो तू कटे सोमवार ने कोई अच्छा मंदिर, मतलब बड़ा मंदिर में कोई जावारो होशी है के?
0: देख आपने सावन महीना में शिव भोलेनाथ की पूजा भक्तजन खूब करे, शिव जी का मंदिर में खूब ठाट बाट रहे, बाकी तो हर एक मंदिर में रहे क्योंकि झूला तो लाग ही गया।
1: हाँ।
0: तो ठाकुर जी ने झूलावे, पर शिव जी का मंदिर में तो तू पूछ मत कंचन, कतरी भीड़ रहे।
1: हाँ।
0: और मैं तो हर सोमवार जाऊं।
1: सही बात है, पर मारी ओ है कि ओ पे पाड़े मुँह तो देखो कटई दूर नहीं जाती, पाड़े मंदिर भी है वटेश पर जाऊं। हाँ कदी कण यू भी है के सब प्रोग्राम करे के हाँ बार दूर मंदिर जानो तो जाओ, बाकी रोज तो श्रावण में पाड़े मंदिर वे वटे जल पर चढ़ाऊ।
0: सही बात है, सुबह तो देखो आपने जो घर का पास में पड़ता है वटे ही जानो पड़े।
1: हाँ।
0: सुबह तो काम अतरो वे भाग दौड़ भाग दौड़, पर शाम का समय में पछे अपनी इच्छा वे जटे जावा।
1: सही बात है, सही बात
0: शाम
1: है।
0: का समय में दूर दूर भी जावा।
1: हाँ।
0: क्योंकि हर सोमवार मेला की न्यान भीड़ पड़े
1: भीड़
0: भक्ता की। तो शाम को थोड़ा दूर दूर जावा, कभी ऋषिकेश जावा।
1: हाँ, तो ऋषिकेश झरना चाले ना,
0: कभी गुप्तेश्वर जावा, कभी कुंडेश्वर, कुंडेश्वर महादेव देखे?
1: हाँ।
0: मस्त स्थान है।
1: तो वही तो हर सोमवार अलग अलग जगह जावान मले, बन टाइम कोई रोके ही नहीं, घर वालों ने के हको के सोमवार चाले रही है, तो घर वाला ही कोई नहीं केवे, घर वाला ही के मन ही लेन जाओ हाथे
0: आने। सब साथ में ही जावा। सही है, टाबर टोली सब ने अड़ोस पड़ोस सब साथ में जावा, मजा आवे,
1: मजा आवे।
0: आपा एक समय हो बचपन में आपा साथ में जाता है।
1: ने सोमवार ने हर मतलब हर इंसान हर महिला रे मूर्ति ओई सोबलू, सोमवार आ रही है जर सोमवार चालू वेवा वाला था श्रावण महीना रा जर लोगों रे मुड़ाती वही सोबलती, हमें सोमवार चालू वही हमें सब, कोई कोई तो श्रावण पाले तो बाल ही कटावना दाढ़ी भी कटावनी बंद करे पूरा सोमवार।
0: हाँ, हाँ, पूरा सावन महीना जो व्रत रखे ना।
1: हाँ।
0: वे बस सावन लागवा का पहली जो करावे जो करा
1: करावे,
0: पछे आख सावन महीना में बाल भी नहीं कटावे, सेविंग भी नहीं करावे, भले बढ़ जावे,
1: कोई कोई तो चप्पल ही नहीं पहरे
0: भाई। वो कहवे आप आपकी आस्था वे जैसे
1: हाँ, हाँ
0: नहीं मन्नत ही नहीं आस्था श्रद्धा सही भक्ति। तो कोई कसान करे, कोई अबे आख महीना चप्पल नहीं पहने, कोई आखा महीना हरी सब्जियां नहीं खावे।
1: हाँ, और मन्ने टाय रतन एक चीज देखो यू वीए हसनू भी आवे ने एक तरफ ती यू वीए की मनक यू तो दारू मांस पूरा वर्ष खाई श्रावण महीनो आवी जर के मोरे श्रावण महीना में नहीं चालतो ओ तरीको कतरो अलग लागे नहीं।
0: पर श्रावण महीना में भी शराब जो पीवा वाला है वे कटे छोड़े,
1: वे तो नहीं छोड़ता, पर तो भी मैं ऐड़ा लोगों ने देखिया है जो यू कही श्रावण श्रावण तो छोड़ दी दो, श्रावण आयो है तो श्रावण महीना रो तो पूरा वर्ष ही छोड़ो ने।
0: हाँ, तामसिक खान पीन श्रावण महीनो के अधक मास वही तो कही कही भाई नहीं अबानु काम नहीं आवे।
1: हाँ, अबानु काम नहीं आवे तो वही चीज
0: तो पछे क्या काम आवे भाई, जो अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
1: हाँ,
0: वो तो जिंदगी भर छोड़ना चाहिए ना।
1: पर मैं आ चीज खूब देखी है श्रावण श्रावण ना हमें अबे नशो नहीं करो श्रावण महीनो लागो है तो छोड़ो ने जिंदगी भर रे लिए छोड़ो छो हष्ट पुष्ट खानो खाओ खावारी अतरी अच्छी अच्छी चीजो है तामसिक चीजो नहीं खानी जो अच्छू है फ्रूट वगैरह ये खाओ।
0: अरे ये तो देखो भाई फ्रूट दूध आपा कतरी बार बात करा तो सोचा ये कि भाई अणी का पाछे पैसा बर्बाद करो तामसिक चीजा का पाछे अणी करता तो या का ऊपर पैसो खर्चो स्वास्थ्य भी बढ़िया रही और फल फ्रूट।
1: आप रतन थारे बच में बात करूं वो तू कह रही है कि शराब पीवा वाला शराब पिए तो वे तो बोले नात्रा भक्त है, वे तो ये के बोले नाती तो बोले नशा करता तो मैं ही तो करे ही हूं। और
0: ये वाकई गलत फहमी है, खुद की बात ने ढाकवा का लिए एडे
1: भगवान
0: तर्क करे।
1: माते, हाँ।
0: एडा तर्क करे अगर आप माने समझता वो ने के भगवान ने समझना चाहो तो अध्यात्म में उतरनो पड़े।
1: सही बात है
0: के भगवान कोई शराब गांजा भांग धतूरा या के पाछे नहीं पड़िया वे इको अर्थ है विकार ने हरवा वाला।
1: सही बात,
0: जैसे समुद्र मंथन व्यो समुद्र मंथन में यदि विष निकलो
1: तो विष
0: हाँ तो विष ने कुण पी दो वेस पी दो ने क्योंकि सब मना कर दी दो नहीं भाई मैं तो नहीं पी सका, सांप के मैं थोड़ोक ले सकू तो वो थोड़ोक ले दो, बिच्छू के मारा डंक में दे दो मैं थोड़ोक ले सकू पर बचोड़ो कुण ले वे
1: जयंती
0: तो बचे भोलेनाथ क्यों चलो मने दे दो। तो इको अर्थ यो है कि वे विकार रूपी जो विष है विने हरे नहीं कि वे भांग धतूरा खावे।
1: पर हमें मानव जीवन में अणो इंसानों ने कुण समझावे अणो ने तो जो वे करे वो सही।
0: देख कंचन अगर मैं गलत रास्ते जाऊं ठीक है थाने ठा पड़ गई कि मैं गलत काम कर रही हूँ अबे तू मैंने कह दी दो तू यो गलत काम कर रही तो मारी बात ने ढाकवा कर लिए मैं दस झूठ बोलू मैं उदाहरण दियो वो भी हसो वो भी हसो जबकि मैंने तो मारा खुद के देखनो ने कि वे केड़ा भी वो मारे सुधरनो और मारे चेंज भेणो है और जो चेंज वे वाला है वे उदाहरण नहीं रखी वे बात ने मान ले ठीक है भाई आगे नहीं करा।
1: सही बात है
0: बाकी जैसे तू कह रही भांग धतूरा शराब का लिए महादेव जी पे इल्जाम लगावे वशानी श्री कृष्ण जी का लिए नहीं कहे अरे वे तो 16108 राजकुमारिया ने मतलब वाका लारे विवाह की दो।
1: हाँ।
0: अरे वाको अर्थ तो समझो भोला मन
1: पूरी कहानी तो हटा नहीं है ने पाजा वण कृष्ण हाँ। भगवान माते इल्जाम लगावे
0: तो बस वही है कि जो नी सुधर वो छावे वाके 10 बहाना समझदार का लिए इशारो ही काफी है।
1: सही बात कह रही चल जावा दे ओपे तो ओपे सावन रा सोमवार रा आनंद ले यो मस्त भजन कीर्तन करे यो मंदिरों में जाइयो घूमबा जाइयो हरियाला बगीचा में घूमे यो तो तू चाल जे हमके मारे हाथे। हाँ
0: हाँ हाँ बिल्कुल चाला ना आपा तो देखो सोमवार सोमवार तो जावा ही जाओ आको सावन महीनो जावा तो तू जटे ले जाई बेटे मैं आवा तैयार हूँ मैं ले जाऊँ बेटे तू भी आ जाए
1: जरूर आवो मैं सुबह
0: वो के आखो संगठन बना जावा तो ही मजा आवे
1: सही बात के
0: एकला दोकला का ही मजा आवे
1: ना ना सब बच्चा बच्चा सब हाथे वे तो हाँ। अच्छो लागे
0: और देखो भाई आपा बच्चा नहीं हो के वा अरे वाके धोग लाग वाके धोग लाग पर वे बच्चा जी प्रैक्टिकल में देखे माना माँ बाप ही लाग रहा
1: तो बच्चे सीखे
0: हाँ वे सीखे और वे लागे पचे माने केवा की जरूरत नहीं पड़े।
1: सही बात है
0: आने वास्ते मंदिर महादेव सत्संग कीर्तन में बच्चा ने भी ले जानो छावा
1: सही है
0: तो वे बच्चा में संस्कार उतरेगा अच्छा सत्संग अच्छा वे यूं करनो पचे माने केणो नहीं पड़ी तू मंदिर जा अरे तू सत्संग में जा
1: वे देखी तो अपने आप करी
0: अपने आप सीखी। पर कंचन चलो सत्संग भी कह रहा सब कह रहा पर मैं गर्मा गर्म नाश्तो बना रखे वो तो खाला ठंडो वे जाए
1: चल चल खा लेता है।
0: तो एक आछू गीत भी सुना था अपना श्रोता बंधु ने
1: हाँ सुना दे
0: सुनता रहो
1: मुस्कुराता रहो
0: रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: सावन सुरंगो आयो साहिबो नहीं आयो, सावन सुरंगो आयो साहिबो नहीं आयो, तीजरड़ी मन लू भायो बादरड़ी बरसो बरसो, पिया जीरा देश बिजरड़ी चमको चमको, पिया जीरा देश आ हो। तो आ भाई कंचन पाछा आप गावरी बातें कार्यक्रम में सगला श्रोता बंधुरो स्वागत करा हाँ। और देख भाई सावन महीना में एड़ा एड़ा गीत बोले कि मन तो अपने आप ही याद आवे, एड़ा एड़ा गीत भी गावे।
2: जरिस मुई हो सो रही हूँ के रतन हर बार कठाती गीत एक ती एक लेन आवे।
1: पर सावन में एड़ा गीत गावे तो याद हो जावे, क्योंकि तीज त्योहार तो आवी है। तीज त्योहार पे अपने जमाई भाई है, बेटिया की शादी कराया बाद पहली तीज वेवे तो जमाई भाई ने भी बुलानो पड़े, बेटिया अपना घरे हुए तो अपने आप ही पचे वाके लिए कई बोला तो गीत याद आई जावे। आपने भी देखो भाई राजस्थान रा मायने एडी एडी परंपरा है कंचन कि आपने जमाई भाई आवे पहली बार त्योहार पे तो एक अतरो सम्मान करा।
2: पहली बार तो खूब सम्मान हुई है।
1: मन तो परंपरा अच्छी लागे,
2: अच्छी लागे, सही बात है।
1: और आपने सावन महीना की बात चल रही, सावन में त्योहार भी खूब आवे तो सावन महीना में सत्संग भी खूब आवे। आप सत्संग की भी बात कर रहे हैं। देख भाई थंठाए आपने ये 16 सोमवार जो करा ना मनसा महादेव का, वे भी चतुर्थी चालू हो जावे हाँ, जो ठेठ कार्तिक महीना तक रहे, दीपावली का बाद जो चौथ आवे ने, पर चार महीना को चौमासो के वहाँ चौमासा का स्टार्टिंग में या चतुर्थी आवे जदि मनसा महादेव का व्रत चालू हुए वो पाछे चौमासो खत्म वेवा आवे जदि चौथ आवे ने जदि पाछे संपन्न वेवे। अवैणी में भी देखो भक्ति कड़क है हो, सुबह वेगा उठ नाप स्नान ध्यान करो, ठेठ माता का केसु लगा नेड़ी तक कई भी आपको धुलिया बगैर बाकी नहीं रहना छावे, माथो धोनो पड़े
2: रोज हर सोमवार।
1: हर सोमवार पहली चतुर्थी आपा चालू कर दा ठीक है, तो चौथ का दिन आपने सब पूजा की सामग्री ले जानी पड़े, चूरमो बनावे ही में हर सोमवार चूरमो बनावे, चौथ का दिन आपा स्टार्ट करा तो चौथ का दिन नू ये चालू हो जावे चूरमो। तो अबे इमें अलग अलग भाई मान्यता है, 2.5 किलो बनावे चूरमा जी का चार भाग करे, एक भाग पहली तो ठाकुर जी के सारो भोग लगाई, पचे भी को चार भाग करी, एक भाग गाय के, एक भाग बेन बेटी के, एक भाग खुद व्रत करा जो खावा को, और एक प्रसाद वितरण करवा को, चार भाग करे। तो कोई सवा शेर को करे तो कोई 2.5 किलो को करे और असान चार भाग करन बाटे। और सुबह पहले स्नान ध्यान करन स्वच्छ कपड़ा, जो कपड़ा धुलिया सका वेना छावे के पचे कोरा कपड़ा
2: आउट द कपड़ा
1: हाँ। पर इमें यू है के आपके कोरा कपड़ा तो कोई भारी वेसन ये पेरवा की जरूरत नहीं है,
2: सिंपल
1: हाँ सिंपल अनिवार्य धुलुड़ा होना चाहिए। और सुबह पहले आप स्नान ध्यान करते हैं तुरंत ही आप पूजा के लिए निकल जाओ, कहवे भाई अटिनो अटिने बैठा पाछे कपड़ा पे दाग लागे, पाछे अपन नाया ने गणे घे पे जाओ तो वॉशरूम भी जानो पड़े,
2: वॉशरूम भी जानो हाँ पड़े।
1: तो कहवे के पूरी स्वच्छता का साथ में पूजा हुए तो आप नाता ही बस पचे कपड़ा पहनता ही माँ तो पूछता ही आप निकल जाओ पूजा करवा का लिए, ताकि बनी टाइम पे तो पाछे न तो बाथरूम को प्रेशर बने न आप अटिनो अटिने बैठा थाल अपने सजाई पूजा की रवाना हो जाओ
2: सही है।
1: और चूरमो तो बनानो ही पड़े तो चूरमो पहली बना दो, पछे इमें दो बार स्नान वेवे, पहली नहा लो पछे आप चूरमो बनाओ पछे पाछो नहाओ। पर हाँ ये चतुर्थी शुरू हुए जो चतुर्थी का दिन खत्म वेवे पहले और लास्ट में, बीच में सोमवार ने तो आप पूजा पाठ करो और पूजा करें आप कई भी प्रसाद चढ़ाओ, फ्रूट भी मिले केला लाओ आप इच्छा वे जो फ्रूट लान चढ़ाओ तो चाले। पर चौथ शुरू हुए चौथ का दिन ही समाप्ति हुए दो ही चौथ पे चूरमो छाई जाए।
2: अच्छा तो थे का की दोड़ा है सोमवार
1: हाँ मैं की दरे
2: इस तन पूरो ध्यान है चलो तो, जन्ने करना भी बनो नहीं ठाबो पड़ी के वो सोमवार की गण करना है
1: हाँ
2: सही बात है ना
1: सही बात है। तो ये मनसा महादेव के वे जहाँ 16 सोमवार वे 16 सोमवार जैसे 16 शुक्रवार करा ना वैसे 16 सोमवार
2: सही है।
1: हाँ गुजरात में भी खूब करे तो राजस्थान में भी खूब करे और भी अन्य राज्य में भी करता भी भाई बहन क्योंकि शिव जी की पूजा ही सब ज्यादा हो सावन महीना और झटी ने भी देखा सब शिवमय हो जावे।
2: शिव जी रा तो सब भक्त है बोले बाबा सब भगत भगत सबरा मोबाइल माते स्टेटस ही देखो तो सबरा शिव जी रा इस लागोड़ा वे
1: शिव जी का इस लागोड़ा वे। मैं एक बच्चा हूँ बात वेरी ही तो बच्चा भगवान का सामने भोलेनाथ की मंदिर में भोलेनाथ का सामने कह रहे आख्या बंद कर भगवान को प्रार्थना कर रहे हे भगवान अनी बार तो मारे 90% तो मनाना ही पड़ी हो अगर 90% मन जाए तो मैं एक नारियल चढ़ाऊ। मैं क्या अच्छा मैं सुन रही ही मैंने हंसी आई छोटो बच्चो 7-8 साल को वो असान कह रहे पछे दी वो भक्ति कर काढ़ी निकलो लागे तो मैं क्यों लाला हटाओ तो क्या हाँ कही के वो आप तो मैं क्यों अच्छा ये प्रार्थना की क्यों कर रहे हो कि भगवान ने कह रहे हो ठाकुर जी ने मारे 90% छावे क्योंकि भोलेनाथ के लिए सुनियो सको भोलेनाथ हर प्रार्थना पूरी करे। मैं क्यों कठे सुने थू तो क्या हमारे दादाजी कहानी सुनावे ना तो भोलेनाथ की सुनावे भोलेनाथ वरदान देवे पछे मुश्किल पड़ जावे तो वहां में श्री विष्णु जी मदद करे तो मैं भोलेनाथ ने कह दी तो 90% बना दीजो अबे वाको नहीं बनानी आई तो वे विष्णु जी बात कर रही।
2: देखो बच्चा ही केड़ी केड़ी बात करे है
1: तो मन अतरी हंसी आई वे क्या देखो बच्चा भी बुद्धि में बिठा रह गयो।
2: देखो बच्चो नहीं पर वो दादाजी बतायू दादाजी माते विश्वास तो दादाजी झूठ नहीं बोले तो सही में मतलब बच्चों तो यूज भी
1: हाँ कि भाई दादाजी कहानी क्यों जदी तो सही है
2: सही है।
1: वे क्यों बच्चा भगवान तो अपना साथ में है पर मेहनत तो कर जाए तो 90% भी बन जाए पर मेहनत सही जाए
2: मेहनत तो करनी पड़ी।
1: हाँ यू है कि देखो कतरा भाव शुद्ध हो जावे बच्चा का भी भाव केड़ा शुद्ध हो गया मानी वास्ते वो कहे आपने अध्यात्म का प्रति तो रुझान वेणो ही छाई जाए आपनो भले छोटा वो बड़ा वो बच्चा ने ले जाओ आप तो यहाँ का में संस्कार आई
2: बच्चों तो देखी फेस सीखी बच्चों ने ओपे मंदिर लेन जाइयो सुबह ओपे अगरबत्ती दिया धूप करे यो सबरा आदर करे यो भगवान ने मंदिर जाओ तो बच्चा ही सीखे
1: सही है
2: नहीं तो बच्चों ने कोई अनुभव नहीं रहता
1: बिल्कुल। और सावन महीना को देखो खाली जरूरी नहीं कि कोई 4 महीना व्रत करे घना जना चौमासो नावे तो 4 महीना का व्रत करे और झाको नींद नानी आवे तो वे सावन महीना का व्रत करे आको सावन महीना का तो कोई नियम करे तो हरी सब्जियां नहीं खावे हाँ। पचे दाल भाजी बेसन सूखी सागा चना कठोर ये ऐसी चीजा खावे पर हरी सब्जी नहीं खावे
2: तो सब अलग अलग तरह की करे।
1: हाँ और घना जना आजकल मैं तो देखियो हूँ कंचन के महिला सब ग्रुप बना अन अभी ये स्नान पे जावे कोई पुष्कर का स्नान लेवे कोई हरिद्वार का स्नान लेवे।
2: हाँ
1: हरिद्वार हर पूनम के हर अमावस्या
2: तू बोले रही है तो मने धीरे धीरे याद आवे रही हूँ। हाँ मैं देखी हुए
1: मारे फोन आयो मारी एक और सहेली है जिको हर अमावस्या पे स्नान करवा जहाँ तू आवे गई मैं क्यों यार हर अमावस्या में बंधू नहीं मैंने टाइम मिली तो मैं आऊ नहीं तो नहीं आऊ अगर हाँ कर दू मैं बंद जाऊँ तो हर अमावस्या जरूरी नहीं है मारो आनी आवे बोले ठीक है जत्रा करने आप उतरे कर जे मैं हाँ ठीक है। मैं पचे मैंने पूछो भाई तू डिटेल बता था क्या करो तो बोले कि मैं तो 4 महीना चौमासा का मतलब हर अमावस्या पूरा साल भर का हर अमावस्या पे स्नान करवा जानो।
2: अच्छा
1: कोई कह माँ पूनम पे जावा हर पूनम और कोई पुष्कर जी जावे कोई कोई तो हरिद्वार जावे तो क्या हरिद्वार और अच्छा मतलब पूरा ग्रुप पे जावे तो आराम हो आप जाओ आओ एंजॉय भी चलो अणी बहाने एक नारी शक्ति बहाने तो निकले घर का बहाने
2: सही बात है
1: नहीं तो आखो दन घर का काम कर का वाणी कमटाना ऊंची नहीं आवे
2: टालो तो ऊंची नहीं आवे सही बात है अण बहाने बाहर जावन मले।
1: हां बहाने जावा पचार जने मिला माइंड भी फ्रेश होवे तो घर में भी वा पाछा आवा तो आराम आपनो एक चेंज वे ना आवे तो एक अच्छो मूड वे जावे
2: सबरे सबरे साथ घूमे सबरे साथ मिले बारे मलवाती एक माइंड फ्रेश होवे
1: माहौल चेंज वे जावे कि चलो और छूट भी देने चाहिए परिवार वाला ने और क्योंकि घना परिवार वाला बांधन रहा के आहा नहीं नहीं नहीं नहीं था चले जाओ घर को काम कौन करी अरे भाई घर को काम आकी जिंदगी करी से रहा ने अरे 2-4 दिन की छुट्टी लेने जा रहे तो आपको परमिशन लेने जा रहे बहुत बढ़िया बात है तो वहां छूट देनी चाहिए क्योंकि अपन भाई लोग आके जाना हुए तो फोन कर दे भाई मैं आज हाँ, नहीं आऊं
2: दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूं हाँ, तो बस सही बात है
1: हाँ, घरे भी केवा की जरूरत नहीं है फोन हाँ, करे नहीं कह दे भाई हमारे तो बनो आवा को टाइम नहीं है मैं जा रही हूं
2: बनोरी जिंदगी अच्छी है बनो के बार टेंशन कने नहीं
1: ओए तो पछे एक महिला कई बिगाड़ियो महिलाओं महिला साथ में जा रहे तो अच्छी बात है मैंने भी बढ़िया लाग्यो पर मैं क्यों हर अमावस्या नहीं बंधु आऊं जरूर
2: जानो जुजे कदी कदार जाओ महिला यू ही बारे नहीं जाती वे ऐड़ा फंस मौका मातिस बारे जाए
1: और ये देखो एक धार्मिक प्रवृत्ति कई महिलाओं ने लागे भाई हरिद्वार जावा हर अमावस्या अमावस्या या पुनम उपनम तो परमात्मा मानी इच्छा पूरी करी घर परिवार में सुख शांति रही भाई महिला सोचे तो पूरा परिवार के लिए
2: परिवार के लिए वह मन्नत मांगी तो पूरा परिवार के लिए
1: पूरा परिवार के लिए टाबर के लिए मांगे तो चलो भाई कंचन टाइम भी हो गया अपना झावा को मन्नत तो मांग ले वहाँ पर पाचा टाइम पे तू जाए तो जीजा सा तन पाचा आवा दे
2: हाँ सही बात कह रही है मन तो ध्यानी नहीं पड़ी हो समय वेगियो है चल बाय मुझ जाओ हाँ
1: आओ जी राम राम
2: राम राम

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। सफलता का आधार मूल्य शिक्षा, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आज फिर से हम लोग जुड़े हैं एक नए विषय को लेकर। जैसे कल हमने संस्कार बनाने की विधि को समझने की कोशिश की थी, तो आज एक और थोड़ा सा हम लोग अपने आप को अपग्रेड करेंगे। एक ऐसे विषय को लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं जिसमें खास हम लोग बात करेंगे अपने और दूसरों के संस्कारों की समझ। तो ये पूरा जो विषय है ये बहुत ही गहरा विषय है, अगर आप इसको ठीक से समझ लें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप जीवन जीने का जो कला है वो समझ जाएंगे। क्योंकि जब तक आपको अपने संस्कार और दूसरों के संस्कारों का या स्वभाव का पता नहीं होगा तो आप डील ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप बिजनेस डील करना चाहते हैं या किसी से रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं या फिर आप किसी के साथ चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो व्यक्ति के संस्कार, आपके खुद के भी और दूसरों के भी। तो इन दोनों की अगर गहरी समझ हो जाए आपको तो आप प्रॉपरली हर चीज़ को कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं इस बात को। तो हमेशा की तरह आज हमारे साथ फिर से राजेश सर जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है राजेश भाई।
1: बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया, शुक्रिया।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए आज इस विषय पर, जैसे कि संस्कारों की बात चल रही थी, तो अपने और दूसरों के संस्कारों की समझ, ये विषय क्यों चुना आपने? आपको क्या लगता है इस विषय पर क्यों बोलना चाहिए?
1: हाँ, इस विषय पर हमें इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य जो है वो अकेला नहीं रहता, वो समाज में रहता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: चाहे हम परिवार में हैं, समाज में हैं, और जब हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं तो हमारा व्यवहार जो है, हमारा जो बिहेवियर है, वो हमारे संस्कारों से, हमारी आदतों के ऊपर निर्भर करता है। और

0: अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमारे आपसी संबंध भी बहुत अच्छे होने चाहिए। लेकिन टकराव वहाँ पैदा होता है जब हमारी एक दूसरे से आते नहीं मिलती हैं, या जिसे हम भारतीय कल्चर के अकॉर्डिंग कहें गुण नहीं मिलते एक दूसरे से। क्योंकि इंडिया में कल्चर है, अगर शादी भी करानी हो तो पहले पंडित जी को टेवा दिखाया जाता है और कहते हैं कि दो लोगों को सारी उम्र साथ में रहना है ताकि उनका जीवन जो है वो शांतमय हो, खुशमय हो, एक दूसरे को समझकर साथ में चल सके। लेकिन उन कहते हैं इनके टेवे को या उनकी कुंडली को कहते हैं हॉरोस्कोप को मिलाया जाना चाहिए ताकि अगर इनके गुण मिलते हों और ये जीवन जो है इनका अच्छा बीते, कल को जाके तलाक ना हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो, और जिस काम के लिए वो दो आत्माएं इकट्ठी रहना शुरू कर रही थी जीवन को खुशी खुशी व्यतीत करने के लिए, उसके लिए उल्टा ना हो जाए, इसके लिए बहुत बहुत बहुत ज़रूरी विषय है।
1: राजेश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आज के समय में क्यों ज़रूरी है इस विषय पर आपने बोलना चाहा। तो मैं चाहूँगा कि अब कैसे समझे कि दूसरे का स्वभाव और संस्कारों को कैसे समझें।
0: दूसरे के स्वभाव संस्कार को समझने से पहले मैं समझता हूँ पहले हम ये समझें कि कौन से संस्कार अच्छे हैं या कौन से संस्कार बुरे हैं। इसके ऊपर ही बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, एक बहुत बड़ी बहस हो सकती है। तो उसके कुछ हमने खुद ही चिंतन कर करके अगर आपको पसंद आए तो भई ये कह सकते हैं कि ठीक है ये संस्कार अच्छा है या ये संस्कार या ये आदत जो है वो अच्छी है, ये आदत जो है वो अच्छी नहीं है, इसको हमें बदलने की आवश्यकता है। कैसे कहेंगे? तो पहला मापदंड तो ये है कि अगर मुझे वो पसंद है, आई लाइक इट, और मुझे उससे फ़ायदा हो रहा है, और दूसरा न केवल मुझे फ़ायदा हो रहा है बल्कि मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोग, मेरे परिवार में रहने वाले लोग, जो मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे समाज में रहने वाले लोग हैं, मेरे संबंधी हैं, उनको भी उनसे लाभ हो रहा है। और दूसरा मापदंड कहेंगे कि जिनको बुद्धिजीवी ये कहें कि हाँ ये सही है, क्योंकि कई बार समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जैसे मान लीजिए समाज में 100 में से 90% लोग हैं शराब पीने वाले हैं, और अगर वो 90% लोग ये कहें कि हाँ शराब पीना अच्छा है तो सही बात नहीं है, क्योंकि बुद्धिजीवी जो लोग हैं इसको वो नकार देंगे, वो कहेंगे शराब हमारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसको समझा है, पढ़ा है, पढ़े लिखे लोग हैं। तो जब बुद्धिजीवी लोग इसको मानते हैं हम कहेंगे ये संस्कार अच्छे हैं। और तीसरे संस्कार हमारी आदतें ऐसी होनी चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी हों, हमारी सेहत के लिए भी अच्छी हों, और वो हमारी सेहत को अच्छा करें। जैसे हमने अभी बताया कि शराब पीना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, लेकिन डेमोक्रेसी जहाँ बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा लोग पीते होंगे तो वो कहेंगे तो बहुत अच्छी है, इसको तो पीना चाहिए, बल्कि सबको ही क्या होना चाहिए, पिलाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये मापदंड लेकर के हम चल सकते हैं कि ये वाले संस्कार जो हैं ये अच्छे हैं और ये वाले संस्कार जो हैं वो बुरे हैं। और जहाँ तक बात है कि हम कैसे समझें, तो इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं संस्कारों को समझने के लिए। जैसे हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में बात की कि कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो हमें बचपन से ही बाय बर्थ हमें मिले होते हैं, वो हमें किसी ने सिखाए नहीं या किसी ने बताए नहीं, लेकिन बचपन में से ही हमारे में आ जाते हैं। ऐसे भी संस्कार जैसे हमारी, हम कहेंगे हमारी बुद्धिमत्ता, जिसको हम इंग्लिश में हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं, कि हमारे सीखने की विधि क्या है या हम कैसे लोग हैं। जैसे हम बताते हैं कि 8 तरह की मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है, 8 तरह की बुद्धिमत्ता होती है। जैसे कई लोग होते हैं उनमें वर्बल इंटेलिजेंस होती है कि वो पढ़ने से सीखते हैं, सुनने से सीखते हैं, और उनको सुनना या पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। दूसरे लोग होते हैं उनमें विजुअल इंटेलिजेंस होती है, ऐसे लोग जो होते हैं उनको देखना बहुत अच्छा लगता है, जैसे हम आजकल मूवीज़ देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, या अगर वो क्लास में बैठे होंगे स्टूडेंट तो उनको टीचर को देखना बड़ा अच्छा लगता है कि टीचर कैसा लग रहा है, और वो कोई डायग्राम बना रहा है तो वो डायग्राम बनाने से समझ जाएंगे। और ऐसे लोग जो हैं इस विधि से सीखते हैं, और ऐसे ही अगर वो अपने प्रोफेशन में जाएंगे, जैसे वो फोटोग्राफी में चले जाएं या पेंटर बन जाएं या ग्राफिक्स में चले जाएं, तो ऐसे लोग जो हैं वो जिस विधि से सीखते हैं उसी प्रोफेशन में जाना उनको जो है अच्छा लगता है, और ये बाय बर्थ होता है। ऐसे कोई लॉजिक लोग होते हैं वो हर एक चीज़ में कारण ढूंढते हैं कि ये अगर अच्छी है या बुरी है तो क्यों है, मुझे इसको सीखना है या नहीं सीखना है तो क्यों है। मतलब हर एक किसी चीज़ को स्वीकार करने से पहले उनके मन में एक प्रश्न होता है। ऐसे लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं, इंजीनियर्स बन जाते हैं, डॉक्टर्स बन जाते हैं। इस तरह इंट्रापर्सनल पर्सनैलिटीज़ होती है, बड़े शांत रहते हैं। जैसे देखा होगा कई स्टूडेंट्स क्लास में चाहे आगे बैठी हूँ पीछे बैठी हूँ हमेशा शांत रहते, चुप रहते, किससे ज़्यादा बात नहीं करते। ऐसे लोग जो हैं उनमें स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होता है और वो भी साइंटिस्ट बन जाते हैं और वो साधु संत बन जाते हैं, महान आत्माएं बन जाती हैं। कुछ होते हैं जिनको हम कहते हैं इंटरपर्सनल पर्सनैलिटीज़, ऐसे लोग वो होते हैं जिनको बातें करना बहुत अच्छा लगता है। आप उनको जो भी कहो वो एक जगह बैठ नहीं सकते हैं। जैसे कई क्लास में स्टूडेंट्स हो गए, चाहे उनको आप आगे वाले टेबल पे बिठाओ चाहे पीछे बिठाओ, वो हमेशा बातें करते रहेंगे। ऐसे लोग जो हैं लीडर्स बन जाते हैं, वो समाज सेवी बन जाते हैं, वो काउंसलर्स बन जाते हैं। और उनको अगर हमने कुछ सिखाना है तो उनसे बातें करके, उनसे बातचीत करके हम उनको बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। लेकिन जो इंट्रापर्सनल पर्सनैलिटी होती है वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, वो खुद का खुद ही सीखते हैं, खुद ही पढ़ेंगे, खुद ही कोशिश करेंगे। और ऐसे 6 तरह की पर्सनैलिटी होती है जिनको हम कहते हैं वो म्यूज़िक इंटेलिजेंस होती है। उनको गाना बजाना बहुत अच्छा लगता है, गीत गाएंगे, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे, और उनका ये शौक़ होता है। आप उनको नहीं भी सिखाएं तो भी वो उनको कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, अपने आप सीख जाएंगे, ज़्यादा उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे कई लोग बचपन से ही गीत गाते हैं, उनको आपको ज़्यादा कैसे हम गीत गाते हैं सिखाना नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा रिफॉर्म करना पड़ता है ताकि वो बहुत प्रोफेशनल जो है वो सिंगर बन जाए ना। तो ऐसे कई तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं। ऐसे हमारे पास एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी होती है कि ये लोग बचपन से आध्यात्मिक होते हैं और सत्संग में जाना, ध्यान करना, मंदिर में जाना, गुरुद्वारे में जाना, चर्च में जाना, मस्जिद में जाना उनको बहुत अच्छा लगता है, और आध्यात्मिक किताबें पढ़ना ना और भगवान को याद करना, पूजा पाठ करना उनको बचपन से ही अच्छा लगता है। उनको सिखाना नहीं पड़ता कि आपको जो है ये करना पड़ता है। और एक और पर्सनैलिटी जिसको हम काइनेस्थेटिक कहते हैं, ये लोग करने से सीखते हैं। अच्छा, इसलिए स्कूल में, कॉलेजेस में जो है वो लैब्स बनी होती हैं, लेबॉरेटरीज बनी होती हैं। जैसे थ्योरी तो पढ़ाते हैं लेकिन ये लोग थ्योरी से नहीं सीखते, लेकिन जो वर्बल पर्सनैलिटी होती है वो थ्योरी से सीख जाती है, विजुअल पर्सनैलिटी देखने से सीख जाती है। उनको आप करके बताओ उनको उनसे कोई मतलब, लेकिन काइनेस्थेटिक पर्सनैलिटी कोई भी चीज़ अगर सीखना चाहती है तो हाथों से करना चाहती है, जिसको हम कहते हैं हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, वो प्रैक्टिकल से सीखती हैं। जब लेबॉरेटरी में जाएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब उन्हें समझ लगेगी हाँ ऐसे करना पड़ता है। आपने देखा होगा कई बच्चे होते हैं वो खिलौनों से खेलते नहीं हैं, लेकिन उनको तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, फिर उनको जोड़ देंगे। जैसे हमारे एक्टर्स हैं वो अपनी बॉडी से जो हैं एक्शंस करते हैं, हमारे डांसर्स जो हैं, प्लेयर्स जो हैं हमारे सारे, ये काइनेस्थेटिक पर्सनैलिटी में आते हैं, जिसमें कि बॉडी की मूवमेंट ज़रूरी है, जिसमें कि कोई ना कोई कार्य करना, ये लोग कार्य करने से जो है वो सीखते हैं। ऐसी हमारे पास जो है ये अलग अलग तरह की वैरायटीज़ होती हैं, लोग होते हैं, हम उनको समझ पाते हैं। कई बार हमें लगता है कि ये व्यक्ति गाना ही क्यों गाता है, जैसे माँ बाप समझते हैं कि ये मेरा बच्चा ये गाना ही क्यों गाता है, इसको मैथ पढ़ना क्यों नहीं अच्छा लगता, मैं चाहता हूँ ये इंजीनियर बने लेकिन ये सिंगर बनना चाहता है। माँ बाप को समझ नहीं लगती कि दूसरों के बच्चे जो हैं वो साइंस में क्यों होशियार और मेरा बच्चा क्यों नहीं, उनको लगता है शायद ये पढ़ता ही नहीं। लेकिन उनको ये समझ नहीं आती इनके ये जो गुण हैं, ये जो संस्कार हैं, ये जो आत्मी ये बाय बर्थ उनमें होती हैं, और अगर वो उनको उस फील्ड में जाने में सपोर्ट करें जो बाय बर्थ उनमें संस्कार या आदत होती है, तो ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन केवल केवल उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। तो ये एक तरह की क्लासिफिकेशन है किसी व्यक्ति के संस्कारों को समझने की। दूसरा होता है जैसे रिश्तों में, जैसे पति पत्नी का रिश्ता है, या घर में एक परिवार में कुछ लोग रहते हैं, एक दूसरे के संस्कारों को समझना। कई लोग होते हैं वो बाय बर्थ बहुत इमोशनल होते हैं, इमोशनल माना कि जिनका जो है वो राइट ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, माना कि उनका माइंड बहुत इमोशनल होता है, और अगर कोई व्यक्ति उनसे अच्छी तरह बात नहीं करे तो जैसे छुई मुई होता है ना, पत्ते को हाथ लगाएंगे तो मुरझा जाते हैं, तो अगर आप उनसे प्यार से बात नहीं करेंगे, अच्छे शब्दों में बात नहीं करेंगे, उन्हें अच्छी तरह अटेंड नहीं करेंगे तो उनका चेहरा उतर जाता है, बहुत उदास हो जाते हैं। भले आप उनका काम नहीं करो, फॉर एग्जांपल वो किसी ऑफिस में जाएंगे, किसी ऑफिसर से मिलते हैं, ऑफिसर कहता है कि नहीं भैया आपका काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो रूड से बोलेगा तो भले काम नहीं किया रूडली भी बोला तो उदास हो जाएंगे, दो दो तीन तीन दिन उदास रहेंगे, किससे बात नहीं करेंगे, अपसेट हो जाएंगे। लेकिन अगर वही ऑफिसर उसको बड़े प्यार से अटेंड करता है, उनको चाय पिलाता है, पानी पिलाता है, बड़े प्यार से बोलता है कि मजबूरी है मैं ऐसा, तो वो समझते हैं उस व्यक्ति को, उदास नहीं होंगे, और इसलिए भी उदास नहीं होंगे कि उस व्यक्ति ने उसका काम नहीं किया, लेकिन वो चाहते हैं कि हर कोई उनसे प्यार से बात करे। और ऐसे लोग प्यार से ही बात करते हैं, बहुत केयर करते हैं, संभाल करते हैं। आपने देखा होगा आपके परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे एक माँ में ये नेचुरल गुण होता है अपने बच्चे की केयर करने का, वो तो बात अलग है कि माँ में नेचुरल गुण होता ही है, लेकिन बहुत सारे जैसे बड़े भाई बहन होते हैं, कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं अपने छोटे भाई बहनों का बड़ा अच्छे तरह ध्यान रखते हैं, या फादर जो है वो हर एक बच्चे का पूछेगा, अपने रिश्तेदारों को भी पूछेंगे, न केवल अपने परिवार को बल्कि दूसरों को भी पूछेंगे, और उनका ध्यान देंगे, उनकी केयर करेंगे, कोई बीमार हो जाएगा तो उनको पानी ला के देंगे, खाना खिलाएंगे, उनके लिए दवाई लेके आएंगे। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं इमोशनल पर्सनैलिटीज़। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट एक और पर्सनैलिटी होती है जिसको हम कहते हैं काइनेस्थेटिक पर्सनैलिटी। ये लोग होते हैं, इनको काम से मतलब होता है, ये शब्द अच्छे नहीं बोलेंगे लेकिन अगर इनका काम हो गया तो ये कहेंगे सब ठीक है, और इनको काम से मतलब होता है, और ये अपने प्यार को कैसे जाहिर करते हैं, शब्दों से जाहिर नहीं करते, किसी को छुएंगे नहीं, टच नहीं करेंगे, हाथ से हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन उनके प्यार जाहिर करने का तरीका होता है वो दूसरे व्यक्ति का काम कर देंगे। और खुद भी वो वर्क ओरिएंटेड पर्सनैलिटीज होती हैं, और अगर एक ही परिवार में जो वाइफ एंड हस्बैंड है उन दोनों की पर्सनैलिटीज अलग अलग हैं तो उन दोनों को एक दूसरे की समझ नहीं आती, एक व्यक्ति चाहता है काम होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति कहता नहीं अच्छे शब्द बोलो उसको अच्छे शब्दों से मतलब है, उसको काम से मतलब है, तो दोनों को ये समझ नहीं आती अगर उनके कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो क्या कारण है। तो ये पर्सनैलिटीज भी बाय बर्थ होती हैं, तो एक दूसरे को समझना कि ये जो गुण हैं, ये जो आदतें हैं, ये जो संस्कार हैं उनसे बचपन में ही हैं। और भी बहुत सारे मापदंड हैं, जैसे हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, उन्होंने दवाई के हिसाब से व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डिफाइन किया होता है। वो कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम आर्सेनिक पर्सनैलिटी बोलते हैं, इसको हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो टाइप ए पर्सनैलिटी भी बोलते हैं, इसको कहते हैं पर्सनैलिटी विद ए गोल्डन स्टिक इन दी हैंड। ये वो लोग होते हैं जो अपने जिनको काम भी पसंद होता है, लेकिन वो लोग होते हैं जिनको हर एक चीज़ टाइम पर होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं हरी वरी एंड करी, अपने काम से बहुत ज़्यादा मतलब रखेंगे, टाइम से उनको पहुंचना अच्छा रहता है, और बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं कि हर काम उनका जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, अगर परफेक्ट नहीं होगा तो वो थोड़ा सा उनका मूड ऑफ हो जाता है, और दूसरों से भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे भी ऐसे ही हों, उनको हम कहते हैं आर्सेनिक पर्सनैलिटीज़ या टाइप ए पर्सनैलिटीज़। इसके अपोजिट होता है होम्योपैथी में, उनको कहते हैं सल्फर पर्सनैलिटी। ये वो लोग होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं होता कि हम टाइम से पहुँचें या हमारा काम परफेक्शन से हो, कहते जैसा है चलते रहने दो। और जो आर्सेनिक पर्सनैलिटी होती है बड़ी सफाई पसंद होती है, बचपन में हमने सफाई का गुण होता है, लेकिन सर्फर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैले हैं, कुचैले हैं, कमरे में गंद पड़ा है, उनके लिए सब ठीक है, आराम से चल रहा है, उनको ये पता नहीं लगता कि दूसरा व्यक्ति ऐसा क्यों बोल रहा है, क्यों उसने मुझे ऐसे बोल दिया, अरे सब कुछ ठीक ही तो है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसको सफाई पसंद है उसको ये समझ नहीं आता कि ये व्यक्ति रह कैसे रहा है, इतने गंद में कैसे रह रहा है, इसको खिन नहीं आती, इसको बुरा नहीं लगता, वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। तो ये बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे तरीके हैं एक दूसरे को समझने के, तो ऐसे हम एक दूसरे को समझ सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत ही अच्छा विस्तार से आपने बताया कि कैसे हम एक दूसरे के नेचर को समझ सकते हैं, और अलग अलग पर्सनालिटी के बारे में आपने जिक्र किया और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन आपने दिया, बहुत ही अच्छा आपने विस्तार से बताया। तो चलिए, मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को समझ में आ गया होगा, अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। किसी को देखने से सीखना अच्छा लगता है, किसी को सुनने से समझ जाते हैं, किसी को बोलने से अच्छा लगता है और किसी को करके दिखाने से अच्छा लगता है। तो वैरायटी ऑफ चीज़ें हैं, वैरायटी ऑफ अलग अलग पैरामीटर्स हैं, अलग अलग व्यक्ति की क्षमता है। तो उन सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा स्टडी करते रहना चाहिए और जिस व्यक्ति को जिस तरह से अच्छा लगता है, जिस भाषा में वो समझ पाता है, जिस भावना से वो समझ पाता है, जिस तरीके से, जिस स्टाइल से वो, जिस स्टाइल को वो पसंद करता है, उन्हीं चीज़ों को आपको उसी तरह से लोगों के साथ डील करना आना चाहिए। अभी बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, सबको सब एक्टर्स पसंद नहीं आएंगे, किसका फेवरेट को ये है, किसका फेवरेट को ये है, तो ये भी हमारी जो है चॉइसेस भी अलग है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हर व्यक्ति की हॉबीज़, उसके नेचर, उसके स्वभाव, संस्कारों को थोड़ा सा ज़रूर समझ ले और फिर उसके अनुसार आप डील करते हैं तो उन्हें बेहद खुशी होती है और आपको दोस्ती करना या उनके साथ कुछ भी कार्य को करना होगा या सामाजिक सेवा करना होगा तो काफ़ी आसान हो जाता है। चलिए राजेश जी, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा विस्तार से आपने बताया संस्कारों के बारे में और बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या कोट करना चाहेंगे।
0: मैसेज फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना चाहेंगे कि हम सबको स्वीकार करना सीखें।
1: हाँ,
0: क्योंकि जैसे आपने अभी समझा कि हर एक की आदतें, हर एक के संस्कार अलग हैं।
1: बिल्कुल।
0: और बाय बर्थ ही होते हैं, जैसे वैरायटी होती है नेचर में। नेचर में एक तरह के फूल नहीं होते हैं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: एक तरह के फल नहीं होते हैं, एक तरह के पेड़ पौधे नहीं होते हैं, नेचर में वैरायटी है। इस तरह इंसान भी जो है, जैसे उनकी शक्लें एक जैसी नहीं होती बल्कि वो एक ही परिवार में जन्मे होते हैं, इस तरह की कई जुड़वा बच्चे भी होते हैं लेकिन उनकी शक्लें अलग अलग हैं, इस तरह हमारे संस्कार अलग हैं। लेकिन हमें क्षमता डेवलप करनी चाहिए, अपने में आदत डेवलप करनी चाहिए कि हम एक दूसरे को स्वीकार करना सीख लें, कि दूसरों के आदतों को, दूसरों को संस्कारों को हम रिस्पेक्ट करें। जब हम उनको स्वीकार कर पाएंगे, उनकी रिस्पेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि नॉर्मली हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है जैसा मैं हूँ वैसा अगला बन जाए, लेकिन बदलना बड़ा मुश्किल। अगर मैं आपको कहूं कि आप अपनी आत्मों को बदल लीजिए, आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि दूसरा भी मेरे जैसा बन जाए, जैसा मैं हूं सामने वाला भी वैसा ही होना चाहिए, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो वैरायटी हो सकती है, अलग हो सकता है और अलग चीज़ भी अच्छी हो सकती है। जैसे रंग जो हैं, सात रंग कुदरत में बने हैं, किसी को ब्लैक कलर अच्छा लगता है तो किसी को वाइट अच्छा लगता है, जिसको वाइट अच्छा लगता है उसको समझ नहीं आती इसको ब्लैक क्यों अच्छा लगता है और जिसको ब्लैक अच्छा लगता है उसको ये समझ नहीं आती इसको वाइट क्यों अच्छा लगता है, कि रंग तो सारे ही अच्छे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया और आशा करूंगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को अच्छा लग रहा है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही और अपना और अपनों का ख्याल रखें, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते खम्मा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: 107.8 FM सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है बच्चों की दुनिया। और बच्चों की दुनिया होती है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि उनके माइंड में लर्न करने की बहुत ज़्यादा शक्ति भी होती है, वो सीखते भी रहते हैं और बहुत कुछ इमेजिन भी करते हैं। तो उसी इमेजिनेशन के अंदर जाएंगे और आज बच्चों की दुनिया में एक अलग स्टोरी बनाएंगे हम सब मिलके। तो स्टोरी में एडवेंचर होने वाला है, डर होने वाला है, क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। लेकिन उससे पहले ये तो पता कर लें कि है कौन कौन आज स्टूडियो में हमारे साथ। तो एक बार आपके नाम और क्लास तो बता दीजिए सब लोग।
1: मेरा नाम है हर्षिता, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ।
2: मेरा नाम शिक्षा है, मैं क्लास 10th में हूँ।
3: मेरा नाम है शिवन्या, मैं 2nd क्लास में हूँ।
4: मेरा नाम है आराध्या, मैं 2nd क्लास में।
5: मेरा नाम सक्षम है, मैं 6th क्लास में हूँ।
6: मेरा नाम राघव है, मैं 6th क्लास में हूँ।
0: ओके, तो एक काम करते हैं, ये एक गेम है, इसमें हमें अपनी स्टोरी बनानी है और वो स्टोरी कैसी भी हो सकती है, आपको जो मन में आए, मतलब वो आसमान पे, ज़मीन पे, एनिमल्स पे, लोगों पे, कुछ भी आ सकता है उस स्टोरी में। स्टोरी तो सबने सुनी है ना, स्टोरी तो अच्छी लगती है। तो यहाँ आपको अपनी स्टोरी बनानी है, लेकिन नई स्टोरी नहीं बनानी है, जो फर्स्ट पहले जैसे राघव बोलेगा वो जो स्टोरी जहाँ छोड़ेगा वहाँ से आपको उसको आगे बढ़ाना है, ठीक है? ओके, सब लोग समझ गए? तो चलो राघव।
7: Yes. इसके बाद से।
0: हाँ, उसके बाद से आपको बोलना है, राघव स्टार्ट करो।
6: एक 10 साल का बच्चा था, उसके मतलब उसके पास एक मीटरॉइड गिरा।
0: उसका नाम क्या था?
6: उसका नाम राहुल।
5: वो मीटरॉइड से बचने के लिए भागा।
0: ओके,
4: और वो भागते रहे और रहे।
0: भागते रहा, भागते रहा, फिर क्या हुआ?
4: फिर क्या हुआ, उसको एक वो लायन दिख लिया और वो बोला, वो जो लायन था रॉयल से बोला,
0: लायन जल्दी से घुर्राया, फिर क्या हुआ?
6: फिर राहुल भागा और लायन से उसने बोला कि मुझे छोड़ दो, उस मीटरॉइड के पास चले जाओ। फिर लायन तो उसके पीछे ही पड़ गया, फिर वो भागते भागते बच गया लायन से, पर वो एक अंधेरी जगह पे पहुंच गया। उस अंधेरी जगह पे बहुत सारे लायन थे और वो एक लायन के ऊपर सैडल लगा के उसके ऊपर राइड करने लगा।
0: वाह, लायन पे राइड करने लगा।
5: वो लायन उसको काट गया।
4: उसके बाद उसको एक गुफा मिली, फिर उस राहुल के पास पावर आ गया तो उसको एक जाल था, वहीं पे उसको ऐसे बंद कर,
0: लायन को बंद कर दिया जाल में।
6: उसके बाद राहुल बड़ी शांति से अपने कमरे पे गया, उसने कमरा खोला और जाके लेट के सो गया।
0: लाइन के काटने के बाद सो गया जाके? बड़ा ब्रेव राहुल है। और ये क्या किया उसने, तो अपना इलाज भी नहीं कराया। अच्छा बताओ आगे क्या हुआ? काटा था। चलो आगे क्या हुआ, सो गया राहुल, फिर क्या हुआ?
6: दीदी जब वो सो गए थोड़ी देर के बाद, इतने में बहुत सारा खून बह गया था, तो भी उसको कुछ नहीं हुआ। और फिर वो वापस, क्योंकि उधर उसके घर पे तो कोई नहीं था, फिर वो भागे भागे भागे भागे बाहर गया। और बाहर जाने के बाद उसको ऐसे लगा कि मेरे सामने ऐसे सारे भूत खड़े हैं।
0: फिर क्या हुआ
6: दीदी, जब उसको लगने लगा कि भूत उसके सामने खड़े हैं, तो उसने अपनी कटाना उठाई और उसने भूत को काट के रख दिया।
0: भूत काट दिया। ओके,
5: फिर वो वापस घर पे गया और सोने लगा, तो उसने देखा कि उसके बेड पे चींटियां हैं बहुत सारी।
0: ओके, भूत गए तो चींटियां आ गई, फिर क्या हुआ?
4: फिर वो सुबह तक सोते रहा,
0: सुबह तक सोता रहा,
4: और वो खुद भूल गया कि वो रोबोट है।
0: अच्छा, तो असल में राहुल एक रोबोट था। बताओ
6: दीदी, फिर राहुल जब उठा ना सोके, तो उसे पता चला ये पूरा सपना था। तो फिर वो अपने जो भी वो उसका मीटरॉइड तो सच में गिरा हुआ था, तो उसकी जो लैब टीचर, वो साइंटिस्ट के साथ काम करता था, वो लैब टूट गई थी, तो इसलिए वो फिर कहीं और ढूंढ रहा था कि कोई साइंटिस्ट मिल जाए अमेरिका में, इजिप्ट में।
0: तो मतलब सपना था ये सब कुछ, तो लैब भी टूट गई और सपना भी खुल गया। तो सपने में राहुल रोबोट भी बन गया था और उसने भूतों से लड़ाई भी कर ली थी, पावर भी आ गई थी स्पेशल राहुल में, क्या बात है।
6: और फिर इजिप्ट और अमेरिका भी ढूंढ रहा था साइंटिस्ट।
0: तो राहुल को तो बड़ी सारी कंट्रीज ढूंढ रही थी, क्या कहानी बनाई आप लोगों ने, वाह वाह। एक और बनाएंगे कहानी?
4: हाँ, भूत वाली।
0: कौन शुरू करेगा इस बार?
6: दीदी मैं करूँ।
4: दीदी भूत वाली। लेकिन
0: इसमें एक से ज्यादा जो मर्जी बना सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं।
5: मैंने तो बस ये बोला था कि मीठी और इंडिया।
0: अच्छा मेरी बात सुन लो, आप लोगों को स्टोरी बढ़ानी है आगे, ठीक है? लेकिन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स होने चाहिए, दो तीन चीजें होनी चाहिए उसमें, ठीक है? तो अभी स्टोरी आप स्टार्ट करो।
4: दीदी आप भूत वाला बोले।
0: कुछ भी आप बना सकते हो स्टोरी, जो आपको मन में आए, बस जोड़ना चाहिए, पीछे वाली स्टोरी से जुड़ना जरूरी है। माइक नहीं भी लाओगे तो चलेगा।
5: करनाल में एक गांव था जो बहुत पुराना था।
0: उस गांव में क्या था, कुछ तो बताओ, इंट्रो दो।
4: उस गांव में तीन लड़के थे।
0: ओके।
4: वहाँ पे एक बुढ़िया रहती थी और वो जब रात में सोने गई अपने बच्चों के साथ, तब उसके साथ फिर उसको आवाज आया कि छन छन की। फिर बाहर जाके देखी कोई नहीं है। फिर बाहर आके देखी कि इधर उसको आवाज आया, इधर आ। जब बाहर गई तो उस चुड़ैल ने अपना फेस ही बदल लिया, तो उसकी फ्रेंड बन गई। वो चुड़ैल बोली कि तुम मेरी दोस्त बन सकती हो? हाँ। तो वो बुढ़िया बोल रही हाँ। तो फिर उसके घर में सो गई वो चुड़ैल। फिर
0: तो तीन लड़के थे वहाँ पे और एक
6: दीदी। वो तीन लड़के दोस्त थे। वो बुढ़िया है ना, उनके बगल में पड़ोस में रहती थी। हाँ। तो उनको लगा कि है ना किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई, तो वो अपने कमरे से तीनों बाहर आए और उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक है ना, एक जो भूत था वो है ना उसकी दोस्त के रूप में था। तो उन्हें भी समझ नहीं आया, तो वो तीनों है ना वापस कमरे में चले गए। उनको बुढ़िया ही नहीं दिखी थी।
0: ओके।
6: दीदी फिर उसके बाद वो जब कमरे में गए सुबह उठ गए, उठने के बाद उनके साथ बहुत अजीबोगरीब चीजें हुई, जैसे कि अब वो रोज ऐसे ही मतलब उनके पास जो गाय थी उनको मतलब छोड़ते थे लैंड में ऐसे चारा खिलाने के लिए। तो फिर उस टाइम में ना उनको ऐसे आवाजें आ रही थी कि मैं नहीं छोड़ूंगी तुमको, ऐसा वैसे।
0: फिर क्या हुआ?
5: फिर उसके बाद है ना
0: बोलो
5: दीदी, उसके बाद है ना किसी मतलब एक है ना काली जादू वाली बुढ़िया है ना, वो काला जादू कर रही थी, तो वो उसने बुढ़िया को जिंदा कर दिया, वो जो मरी थी। और फिर उसने बोला तुम कौन हो? तो उसने बोला कि हाँ मेरे को मेरी दोस्त ने मार दिया था। पर फिर उसने बोला कि ना वो तुम्हारी दोस्त नहीं थी, वो चुड़ैल थी, वो तुम्हारा दोस्त का रूप लेके आई थी। तो उसने बोला उस चुड़ैल को तो मैं मार दूंगी।
0: ओके।
5: और सबसे खास बात, जो वो तीन लड़के थे वो भूत एक्सप्लोरर थे, वो रात को भूत को ढूंढने के लिए निकले थे उसी।
0: अच्छा, भूत ढूंढने
4: के लिए। उनमें से एक लड़के को तीर चलाना आता था।
0: तीर चलाना आता था।
4: और जो एक लड़का था उसका नाम था राहुल, वो भूत ही नहीं था।
0: वो भूत नहीं था और बाकी दोनों भूत थे।
6: वो भूत थे और वो दूसरे भूतों को एक्सप्लोर करते थे।
0: ओके।
6: दीदी वो दोनों भूत थे और उन्होंने एक साथ राहुल को मार दिया। फिर वो जो राहुल था उसकी आत्मा निकली और वो भी एक भूत बन गया और वो उनको छोड़ने नहीं वाला।
5: दीदी फिर है ना, और राहुल ने उठ के देखा तो वो तो उसका सपना था। फिर वो अपने उन दोनों दोस्तों के पास गया। फिर उन दोनों दोस्तों को उसने बोला कि क्या तुम भूत हो? तो उसने बोला नहीं, हम तो तुम्हारे दोस्त ही हैं। तो उसको पक्का पता चल गया था कि उसके वो दोस्त ही हैं, ना एक भूत। वो बस उसको सपने में आया था और ना उनके पास वाली कोई बुढ़िया मरी थी।
0: कुछ हुआ ही नहीं था, सब कुछ सपना। हाँ, था
5: सब कुछ सपना था।
6: उसने उठ के सब कुछ देख लिया कि हाँ ये सपना था, कन्फर्म करा और बस वो अपने खुशी खुशी फिर काम पे चला गया।
5: हाँ।
0: ओके। अच्छा तो इतनी भूत वाली स्टोरी सुनाई आप लोगों ने, ये आपको लगता है सच में भूत होते हैं कि नहीं होते?
4: नहीं होते।
5: एनर्जीज होती हैं।
0: नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। ओके।
4: लेकिन मेरे को तो डर लगता है भूत।
0: डर लगता है भूत से?
4: मैं पढ़ती भी नहीं हनुमान चालीसा।
0: हनुमान चालीसा पढ़ते हो?
4: आता हनुमान चालीसा लेकिन मैं पढ़ती नहीं।
0: क्यों नहीं पढ़ते? आती है तो पढ़नी चाहिए ना, है ना? थोड़ी थोड़ी आती है क्या, है ना? अभी आप छोटे हो ना इसलिए पूरी नहीं आती होगी आपको, है ना? कोई बात नहीं, सीख लेना।
8: दी मैं ये बोल रहा था कि वह पूरा उसका सपना था और उसने उसने सपने में कुछ किया ही नहीं था। और जो ये भूत भूत होते हैं वो रियल में नहीं होते हैं, मतलब अगर आप सोचेंगे कि हाँ भूत रियल में होते तो अपने आसपास नेगेटिव एनर्जी घूमती रहे, पर हमको ऑलवेज पॉजिटिव सोचना चाहिए।
4: लेकिन भगवान रियल में होते हैं।
0: भगवान रियल में होते हैं।
6: दीदी बोलते ना अगर मतलब पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा।
0: लेकिन भूतों से डर लगता है क्या? किसको लगता है डर? लगता है, लगता है।
4: मुझे रात को लगता है।
0: रात को लगता है ना? हाँ मुझे भी लगता है कभी कभी। लग सकता है डर?
4: कभी
9: डर जल्दी थोड़ा मुझे भी कह जाता है अंदर।
6: थोड़ा बहुत जो डर होता है ना सोचते हैं हमें तो डर नहीं लगता, बिल्कुल ब्रेव, पर कहीं ना कहीं डर थोड़ा बहुत तो होता ही।
0: थोड़ा बहुत होता है ना। राघव लगता है?
5: नहीं दीदी।
6: दीदी पहले लगता था अब नहीं लगता, अब तो ऐसा लगता है कि भूत को पकड़ के उसको पूरा कूट के फेंक दूंगा।
0: ऐसा लगता है? ओके आपको
5: पहले लगता था अब इतना नहीं लगता, अब लगता ही नहीं।
0: पहले कब लगता था मतलब?
5: पहले जैसे जब मैं थोड़ा छोटा था तब लगता था।
0: कितने छोटे थे आप?
5: 7 या 7 से नीचे
0: तब लगता था ना। तो क्यों लगता था? आप लोगों ने क्या भूत वाले वीडियोस या मूवीज देखे हैं?
4: मैं तो खाली भूत वाले वीडियो देखती रहती हूं।
0: खाली भूत वाले वीडियो देखते हो? और आप?
4: मैंने भूल भुलैया मूवी देख रखी है।
0: हाँ उसमें भूत होता है ना।
6: दीदी मैंने भूल भुलैया 1 से लेके 3 तक सारी देखी है।
8: दीदी मैंने भी देखी है।
0: अच्छा यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो आप लोग?
8: नहीं दीदी टीवी पे भी आती है। हाँ या फिर हम चला लेते हैं।
0: चला लेते हो? तो जैसे भूत के वीडियोस वैसे तो देखो ना, अगर वीडियोस तो जो हम देखते हैं वैसा हमको लगने लगता है, मालूम है? अगर हम जो जैसे आप कोई ऐसे पोएम वाले वीडियो देखोगे, गाने वाले वीडियो देखोगे तो गाना सीख लोगे ना, वीडियो देख के याद हो जाता है ना।
4: स्कूल में म्यूजिक सिखाया जाता
0: है ना, तो याद हो जाता है ना फिर। तो ऐसे अगर क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है ना, तो अगर आप भूत वाले वीडियोस देखोगे ना तो वो ब्रेन को याद हो जाता है, तो वो हर जगह फिर हमको भूत दिखाता है और डराता है। तो इसलिए
4: मेरे को ऐसा लगता है इस घर में कोई आत्मा भटकती है,
0: है ना। तो अगर हम वीडियोस देखते हैं ना तो फिर हमको और डर लगता है, क्योंकि हमारा ब्रेन ना ऐसे हमको डरा देता है, क्योंकि उसको याद हो जाता है वो भूत वाला वीडियो। तो अगर हमको थोड़ा डर कम करना है ना तो हमको वो वीडियो नहीं देखने हैं। हमको ना और कोई ऐसा वीडियो है जिसमें आपको बहुत मजा आता है देखने में भूत के अलावा, जिसमें बहुत मजा आता है?
4: सोसो सासा।
0: उसमें क्या होता है?
4: उसमें दो बहन होती है।
0: दो बहनें होती हैं। कार्टून है क्या?
4: बस ऐसे थोड़ा बहुत कार्टून है।
0: थोड़ा बहुत है।
8: यूट्यूब चैनल
0: है। ओके और आपको क्या अच्छा लगता है?
4: कार्टून
0: अच्छे लगते है ना आपको?
4: मेरे को वीर वाला
0: कार्टून अच्छा लगता है।
4: मुझे ब्लू विंग वाला।
0: ओके और आपको?
5: कार्टून। ब्लू लॉक।
0: ओके और आपको? हाँ एनिमे भी अच्छा लग सकता है। और आपको?
6: दीदी मैं इतना कार्टून देखती नहीं, मुझे टाइम नहीं मिलता। वैसे तो मैं फिर यूट्यूब चैनल में IUPU का एक चैनल है वो देखती
4: हूँ। मैं भोजपुरी देखती हूँ पिक्चर।
6: तो वो जो उसके अंदर वो ऐसे चैलेंजेस करवाते हैं।
0: हाँ उसमें मजा आता है ना, चैलेंजेस करते हैं, गेम्स करते हैं। शिक्षा आप तो सबसे बड़े, आपको क्या अच्छा लगता है?
6: दीदी सिंचैन और डोरेमोन।
4: दीदी आपने वही कभी चाली चाली खेला है?
0: नहीं मैंने तो नहीं खेला। मैं आप लोगों से सीख लूंगी अभी इसके बाद, ठीक है? तो इसलिए जो भूत वाला है
6: और कभी कभी ऐसे वीडियो में दिखाते हैं कि वो एकदम पेंसिल अगर चलती है ना तो भूत से चलते ऐसे होता है वो।
4: तो अगर खुद हो जाता है, अगर यस पे हो जाता है तो, अगर सच्चे में भूत हो तो वो यस पे ऐसे हो जाता है,
0: पेंसिल घूम जाती है। तो आपने खेला है? वो नहीं खेला है ना, देखा है उसके बारे में वीडियो।
5: दीदी जब राघव और मैं तो शाम में थे तो हमने राघव के दोस्त के घर पे जाके कुछ भूतिया वीडियो देखी थी।
0: अच्छा
5: रात को बहुत डरे थे,
0: बहुत डर लग रहा था।
8: तो अपने घर चला गया था उसी टाइम भी चला गया था।
0: डर तो लगता है ना देख के।
8: दीदी फिर मेरे को बाद में फोन करके बोल रहा था यार कुछ होता नहीं है, चल मैं रह ही जाता
0: है ना। लेकिन डर लगने लगता है उस वक्त, तो डर लगने तो मन करता है घर भाग जाओ फटाफट।
8: दीदी वो ऐसे बोलते थे कि हेल में किसी बंदे ने बनाई है, उसके मतलब एक डॉग था उसके साइड में हाथ, मतलब वो हेल के हाथ भी थे खून के।
0: अरे बाप रे।
8: और उसके मतलब वो ना डॉग इकलौता था जो हंस रहा था, हंसता हुआ डॉग किसी को नहीं दिखता,
0: डरावना हंसता हुआ डॉग। ओके
4: दीदी, मैं किशनगंज में एक रात सो रही थी तो मेरे को रात में ऐसे आवाज आया बहुत जोर से।
0: आवाजें सुनाई दी। ओके तो जैसा हम बात कर रहे थे, जब हम वीडियोस देखते हैं ना, तो आप ना वीडियोस देख के फिर भूल जाओगे, कुछ और करने लगोगे, है ना। लेकिन हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसमें सबकॉन्शियस, वो आप बाद में पढ़ोगे जब बड़े हो जाओगे ना, एक ऐसा ब्रेन होता है जिसको सब कुछ याद होता है, छप जाता है। तो अगर आप भूत वाले वीडियोस या गेम्स खेलोगे ना, तो आपको डराएगा, वो रात को डराएगा, है ना, अलग अलग टाइम पे डर लगेगा। तो ऐसे वाले गेम्स या वीडियोस की जगह आपने जो और कार्टून्स बताए ना, वो अच्छी अच्छी चीज़ें देखो, क्योंकि डरना किसी को अच्छा लगता है क्या?
8: नहीं,
0: नहीं लगता है ना,
4: देखने का मन करता है लेकिन
0: डर लगता है ना। तो डर जब लगता है तो मजा आता है क्या? आज तो बड़ा अच्छा लगा डरने में, ऐसा होता है? नहीं ना, तब तो लगता है घर भाग जाओ, डर लगता है ना बहुत, अकेले जाने में भी डर लगता है।
4: हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते
0: हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। तो डर ना लगे उसके लिए हमको क्या करना है, ऐसे वाले वीडियोस की जगह
4: और कुछ देखना है।
0: कितना अच्छा आंसर दिया आपने, वाओ।
8: दीदी क्या हुआ था, जब मैं 6 में थी और मेरे गली में ना मेरे थोड़े फ्रेंड्स थे और एक दो रिलेटिव्स भी थे, तो उस टाइम में ना वो एक लाइट होती है ना लेजर लाइट करके, वो छोटे बच्चे से घुमाते हैं, तो ना हम ऐसे वो मतलब इधर से घुमा रहे थे, मेरे जो छत थे ना उधर से हम वो घुमा रहे थे, और फिर कल परसों ना लिटरली हमको ऊपर आसमान में ना ऐसे लेजर लाइट, कोई नहीं घुमा रहा, ऐसे दिखता तो है, सब तरफ देख के आ जाता है, कोई नहीं घुमा रहा, पर वो कहीं ना कहीं से तो वो आता ही है लेजर लाइट, और हम पे ही गिरता है वो लेजर लाइट, ऐसे होता है। और फिर रात को मतलब एकदम से ये होता है, फिर मेरे वो जो रिलेटिव्स होते हैं ना वो बोलते हैं कि हमारे घर पे आवाज़ें आ रही थी, वैसे वो उस टाइम पे बहुत डर लग रहा था, वो सबसे मेरा एकदम डरावना सीन था।
0: तो अभी हमें ये समझ में आया कि अगर हमें डर लगता है, एक तो किसी बड़े को बताना है अगर ज़्यादा डर लगे तो, है ना, बताना ज़रूरी है, फिर ऐसे नहीं तो आपको अकेले और डर लगेगा। और दूसरा, जैसा आपने बताया कि और दूसरे तरह के वीडियोस देखने हैं, है ना, नहीं तो हमारा ब्रेन फिर वो याद करके, हो सकता है आज डराए कल डराए, और फिर बाद में भी डरा सकता है हमको, और डरते हैं तो फिर वीक लगता है, अच्छा नहीं लगता है ना, फिर हमको कभी कभी ऐसे घबराहट होने लगती है ना, और भागने का मन करता है, यहाँ से भाग जाओ फटाफट कहीं पे, है ना। अकेले जाने में तो बहुत ही डर लगता है, पानी पीने या वॉशरूम जाने में भी डर लगता है ना, अकेले रात को अंधेरे में।
4: हाँ, मैं पापा जब सोते हैं मेरे को वॉशरूम लगता है, तो मैं पापा के साथ भी जाती हूँ।
0: हाँ, तो इसलिए कौन से वीडियोस देखने हैं, अच्छे वाले, ठीक है, पक्का। और अच्छे अच्छे वीडियोस देखेंगे जिसमें मजा आए, जिसको हम एंजॉय करें, है ना। ओके
8: दीदी, मेरा एक दोस्त है, उसका एक और दोस्त है, वो है ना मतलब उसके साथ बहुत ज्यादा होरन चीज हुई थी, मतलब है ना मैं आपको बता नहीं सकता।
0: कोई बात नहीं,
8: वो बहुत ज्यादा,
0: कोई बात।
4: दीदी एक भूत के बारे में बताऊं?
0: बताओ।
4: तो एक लड़का था, वो रात में सो रहा ही नहीं था, और जब वो बाहर पानी पीने गया तो उसको बहुत अजीब सा लगा डरने के।
0: उसने भी कोई हॉरर स्टोरी देख ली होगी इसलिए। आराध्या तो नहीं देखती है भूत वाले वीडियोस? नहीं ना। हाँ, अच्छी बात है, अच्छे अच्छे वीडियोस देखना, ठीक है।
4: डेडी जब मुझे रात में वॉशरूम आते मैं अकेले चली जाती हूँ।
0: हाँ, क्यों? क्योंकि आप भूत वाले वीडियोस नहीं देखते ना, इसलिए आपको डर नहीं लगता। बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए अगर आपको लगता भी है ना डर लगने लगा है, कोई बात नहीं, जैसे ब्रेन में वो वाले वीडियोस छप गए थे, दूसरा कुछ अच्छा देखोगे तो वो भी छप जाएगा, तो इसलिए अच्छा अच्छा देखो, है ना। आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, भगवान को दोस्त बना के उनको साथ लेकर जा सकते हो, थोड़ा थोड़ा सा मेडिटेशन सीख सकते हो, तो उससे डर फिर छू मंतर हो जाएगा, गिली गिली छू हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
10: गिली गिली छू।
0: चलो डर को करते हैं गिली गिली छू, और हमारे दोस्तों को करते हैं बाय बाय।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वयं से जुड़े प्रश्न पूछें। मैं कौन हूं? मुझे क्या चाहिए? मैंने जीवन में अब तक क्या पाया है? ये आत्मा चिंतन की पहली सीढ़ी है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हैं जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी।

0: उन दिनों सिंध में यह रिवाज था कि किसी निकट संबंधी की मृत्यु हो जाने पर माताएं मिट्टी से सने हुए मैले कुचैले कपड़े पहनती थीं। वे स्यापा करती थीं और रोती रहती थीं। मेरी लौकिक माता का भी यही हाल था। वे भी मैले कुचैले कपड़े पहने रहती और रोती रहती थीं। परंतु बाबा का ज्ञान सुनने से उनके मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि लोकलाज और आसुरी मर्यादा अथवा कुरीति को तोड़कर अब उन्होंने मैले कुचैले कपड़े पहनना छोड़ दिया और वह आत्मिक सुख में रहने लगी। ओम मंडली में आने वाली अनेकानेक माताओं के जीवन में इस प्रकार के कई सुधार हुए। उन दिनों सिंध में बहुत से घरों की बहु बेटियां पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण फैशन किया करती थीं। कई तो जेवरों से लदी रहती थीं और अन्य बहुत सी जीभा के स्वाद के वशीभूत थीं। धनाढ्य लोगों के घर में नौकर ही खाना बनाते थे और बाकी के सारे काम भी किया करते थे। परंतु अब जो कन्याएं माताएं ओम मंडली के संपर्क में आई थीं, उन्होंने फैशन करना तथा स्वयं को स्वर्ण आभूषणों से सजाना छोड़ दिया और वे घर का सारा कामकाज भी अपने हाथों से करने लगी। अब उनके जीवन में सहज ही सादगी आ गई और खान पान पर भी उनका कंट्रोल हो गया, क्योंकि ओम मंडली में उन्हें कर्मेंद्रियों को वश करने की शिक्षा मिलती थी। इस सत्संग में आने वाली माताओं का मन अब दहेज प्रथा से तथा बनाव श्रृंगार से उठ गया। अतः उनके जीवन में ये सुधार देखकर सिंध में, विशेष तौर पर हैदराबाद में, लोगों के मन में ओम मंडली के लिए एक आदर भावना थी, क्योंकि वे सोचते थे कि शताब्दियों से चली आई कुप्रथाओं और कुरीतियों को, जिन्हें कि अन्य कोई तोड़ ना सका, ओम मंडली ने और ओम बाबा ने उनसे माताओं को मुक्त किया है। ओम मंडली की यह ख्याति सुनकर और बहुत से कुटुंबी अपनी बहु बेटियों और माताओं कन्याओं को सत्संग में भेजने लगे। इस प्रकार हैदराबाद के लोग इस ज्ञान से लाभ उठा रहे थे। ऐसे सुंदर सत्संग में आने वाली माताओं बहनों में एक विशिष्ट कुमारी भी थी, जिनका नाम था राधे। वे बाद में ओम राधे के नाम से प्रसिद्ध हुई। वे अपनी लौकिक माता के साथ ही सत्संग में और बाबा से मिलने आती थीं। वो अपनी शोभा और गुणों से देवी सी लगती थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि वे किसी दिव्य लोक से उतरकर इस धरा पर आकर साकार हुई हैं। वे बहुत ही शिष्ट, प्रतिभाशालिनी एवं चमत्कारी बुद्धि वाली थीं। वे अपने स्कूल में सदैव प्रथम श्रेणी प्राप्त किया करती थीं। वे वीणा वादन में भी कुशल हस्त थीं और गायन कला में भी अलौकिक थीं। उनके स्वर में एक अनुपम दिव्यता थी। जब उन्होंने बाबा के मुख कमल से सच्चा गीता ज्ञान सुना तो उनका चित्त बहुत ही आनंदित हुआ। उस आनंद की तुलना में उन्हें संसारिक सुख तुच्छ प्रतीत हुए। उन्होंने शीघ्र ही यह निर्णय किया कि वे आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करेंगी और स्वयं को संपूर्ण रीति से ज्ञान अमृत पीने और पिलाने का उच्च कार्य करने में लगा देंगी। उन्होंने मन में यह निश्चय किया कि यह ज्ञान सर्वोत्तम है। दादाजी से मिलकर उन्होंने अनुभव किया कि ये कोई निराले व्यक्ति हैं, जिनका मस्तक मणि की तरह चमक रहा है, जिनके नैनों में एक अलौकिक मस्ती है और जिनकी ओम ध्वनि में एक ऐसा अनुपम आकर्षण है कि सुनने वाले देह की सुध भूलकर आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार का दिव्य अनुभव करते ही राधा जी ने सिंधी भाषा में अपने अनुभव का एक गीत बनाया, जिसकी कुछ पंक्तियां आप सुनिए।
1: ओ मंडलीय माँ वन्नी होते मु छा डिठो, सखियों मु वन्नी छा डिठो, ओम संदे शुद्ध मंत्र जो तीर संदो आलाप आहे, बुधंदे मन शीतल थियो, वाटो मींजो गम जो चिठो, सखियों मु वन्नी छा डिठो।
0: इसका भावार्थ यह है, ऐ सखियों मैं आपको क्या बताऊं और कैसे बताऊं कि ओम मंडली में जाकर मैंने क्या देखा। सखियों उस सुख का भी मैं कैसे वर्णन करूं। वहां ओम का जो अलौकिक आलाप हो रहा था वह ऐसे तीर की तरह मेरे मन में लगा कि मेरा मन शीतल हो गया और मेरे गम के चिट्ठों का अंत हो गया। इस प्रकार उन्होंने जो गीत बनाकर अनुभव स्थित होकर मधुर स्वर में गाया उसे

लक्ष्मी पद प्राप्त करेंगे। और ऐसा ही हुआ। वह बाबा द्वारा जो ईश्वरीय ज्ञान सुनती उसे धारण करके वह ऐसी अच्छी तरह से समझाती कि सभी को बहुत हर्ष होता। कुछ ही समय के बाद सबके मन से ये बोल निकलने लगे थे, योगिन प्यारी ऋषि कुमारी ज्ञान की बंसी बजाए, ओम राधे विदेह मुक्त बनाए, सरस्वती प्यारी ब्रह्मा कुमारी गीता की मुरली बजाए, महतारी ओम के अर्थ टिकाए, मोह ममता की फांसी से अब जिया मेरा घबराए, पांच विकारों की आग लगी है स्वास व्यर्था जाए, माता गंगा जल बरसाए, अम्बा प्यारी ज्ञान भंडारी ज्ञाना अमृत पिलाए, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती माता विदेह मुक्त बनाए। अब जैसे लोग ईश्वरीय ज्ञान से लाभान्वित हो रहे थे, वैसे ही दादा अपने लौकिक संबंधियों को भी ज्ञान के रंग में रंगने के लिए प्रयत्नशील थे। क्योंकि दादा को इस कहावत में विश्वास था कि खैरात घर से शुरू होनी चाहिए, यानी चैरिटी बिगिंस एट होम। दादा की धर्मपत्नी और बहू तो पहले से ही धर्म परायण और भक्ति भाव से भरपूर थीं। वे दोनों ईश्वरीय ज्ञान द्वारा स्वयं को आत्मनिष्ठ बनाने के पुरुषार्थ में तत्पर थीं। इसलिए अब दादा का ध्यान विशेष तौर पर अपनी बड़ी पुत्री की ओर गया। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होने से पहले वाले जीवन काल में दादा ने उस पुत्री की शादी सिंध में एक बहुत ही नामवार और धनाढ्य मुखी घराने में की थी। अब ज्ञान प्राप्ति और दिव्य साक्षात्कारों के बाद दादा को सदा यह ख्याल आता कि मैंने ही अज्ञान काल में उसे काम वासना के संबंध में बांध दिया था, गोया इस जीवन में मैं ही उसके पतन के निमित्त बना था। अतः मेरा ही यह कर्तव्य है कि मैं उसे भी पवित्रता के मार्ग पर ले आऊं। आखिर दादा का यह शुभ संकल्प पूरा हुआ। उसके बारे में दादा की उसी बड़ी पुत्री, जो कि निर्मल शांता के नाम से प्रसिद्ध थी और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संयुक्त मुख्य प्रशासिका थी, उन्होंने उसके विषय में बताया है। ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति से पहले भी बाबा अथवा पिताश्री का जीवन सचमुच राजाई ठाट और भक्ति से पूर्ण था। इसलिए बाबा ने मेरा विवाह बहुत ही धूमधाम से मुखियों के घर कराया। मेरे ससुराल में संसारिक सुखों की कोई कमी नहीं थी, मैं उन्हीं सुखों में ही मस्त रहती थी। मुझे भक्ति पूजा की ओर कोई विशेष खिंचाव नहीं होता था। जब मैं कन्या थी और बाबा के पास रहती थी, तब भी बहुत ही सुखी जीवन था। बाबा किसी भी चीज की कमी नहीं रखते थे और बहुत ही प्यार से पालते थे। परंतु जब पिताश्री में परमपिता परमात्मा शिव की प्रवेशता हुई, तो मैंने देखा कि अब बाबा का हमारी ओर पहले जैसा लगाव और ध्यान नहीं था। मुझे ऐसा लगता कि अब हमारे बाबा एक अलौकिक मस्ती में मस्त रहते हैं और हमारे लिए तो एक विरक्त साधु ही बन गए हैं। अब मैं जब भी अपने लौकिक माता पिता से मिलती, तो वे दोनों मुझे ज्ञान ही सुनाते थे। उनके मन में मेरे कल्याण की भावना थी। वे सोचते थे कि यह भी ईश्वरीय मार्ग पर चल पड़े, यह क्यों ईश्वरीय आनंद से वंचित रहे। आखिर एक दिन उनकी इस शुभ भावना की विजय हुई। उस दिन कोई त्योहार था और बाबा ने मुझे भोजन के लिए घर बुलाया था। जब मैं वहां पहुंची, तो मैंने देखा कि कुछ माताएं कन्याएं ज्ञान सुना रही थी और उनमें से कुछ एक ध्यानावस्था में रास कर रही थी। वह रास पहले तो मुझे अच्छा नहीं लगा, परंतु मैंने देखा कि जो महिलाएं रास कर रही थी, उन सभी से मैं अच्छी तरह परिचित थी। रास करने वाली माताओं को और उनकी अद्भुत रास को देखकर मेरे मन में यह संकल्प आया कि जिस प्रकार की दिव्य रास ये इस समय कर रही हैं, यह तो इस कला का कोई विशेषज्ञ भी शायद नहीं कर सकेगा। ये माताएं जिन्होंने कभी ऐसा ढंग रंग सीखा ही नहीं, इसे इस अलौकिक रीति से कैसे कर पा रही हैं? हो ना हो, इस समय ये इस संसार के भान में नहीं है और दिव्य चक्षु द्वारा श्री कृष्ण और देवलोक की कोई रास देखते हुए ही उसी तन्मयता से रास कर रही हैं। उनकी मुद्राएं और हाव भाव ऐसे थे कि जिन्हें वे संसारिक स्थिति में हजार मिन्नते किए जाने पर भी नहीं कर सकती थी। उनके मुख पर शांति, प्रभु प्रेम तथा सात्विकता की ऐसी रेखाएं दिख रही थी जिन पर मेरी दृष्टि पड़ने से मेरा मन बोल उठा कि ये अवश्य ही प्रभु मिलन का सुख लूट कर कृतार्थ हो रही हैं। जब वे ध्यानावस्था से कुछ नीचे उतरी, तो मैंने अनुभव सुनने की इच्छा प्रकट की। उनमें से एक को मैंने निवेदन किया तो देखा
कि अभी तक वह उसी मस्ती

में थी और उस सुख का रसा स्वादन करते हुए वाणी तक में नहीं लौटना चाह रही थी। उन्होंने धीमी सी आवाज में केवल इतना ही कहा, कल बताऊंगी। मुझे उसका अनुभव सुनने की इच्छा थी, इसलिए जाते समय मैंने बाबा को कहा, बाबा कल कार भेज देना, मैं फिर से आऊंगी। बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, कल देखा जाएगा। मुझे यह उत्तर अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, बाबा आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बाबा ने कहा, बच्ची अपना विचार तो कार भेजने का ही है, परंतु बच्ची कल देखो क्या होता है। मैं बहुत नाजों से पली थी, कभी मैंने बाबा के मुख से ऐसा उत्तर नहीं सुना था। अज्ञानता के नशे में मुझे बहुत क्रोध आया, मुझे लगा कि मेरा अपमान हुआ है। पहले मैं बाबा से यदि आकाश के तारे भी मांगती तो बाबा उन्हें भी ले आते, वे मना नहीं करते, और आज मैं सिर्फ कार भेजने के लिए कह रही हूं तो बाबा ऐसा उत्तर दे रहे हैं। मैं कार में बैठकर ससुराल जा रही थी, बाबा भी मेरे साथ बैठे थे, वे मुझे छोड़ने जा रहे थे। उतरते समय मैंने उसी क्रोध की लहर में कहा, बाबा आप कार मत भेजिएगा, मैं कल नहीं आऊंगी। मुझे याद है तब बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा था, बच्ची क्या तुम यह जान सकती हो कि कल क्या होगा? मैंने कहा, आखिर कल क्या होगा, ये कल देखेंगे। ससुराल में पहुंचकर मैं रात्रि को सो गई। कोई 2-2.5 बजे होंगे कि मैंने अचानक ही देखा कि बहुत तेज लाइट है और बाबा सामने खड़े हैं। दोस्तों उसके बाद क्या हुआ यह आगे सुनिए।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रेडियो मधुबन पर अक्सर हम जानते हैं बात होती है बदलाव की, बात होती है उन्नति की, और कुछ ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व हमारे भारत में जन्मे हैं जिन्होंने न सिर्फ अपना जीवन भारत माँ को समर्पण कर दिया बल्कि समाज सेवा में दूसरों का जीवन खुशनुमा और उन्नति की ओर अग्रसर करने के लिए अपना हर एक क्षण लगा दिया। उन्हीं में से एक ऐसी महान विभूति आज हमारे समक्ष है जिनका नाम है भिखू रामजी इदाते, या उनको सब दादा इदाते के नाम से भी जानते हैं। पद्मश्री जैसे सम्मान से सम्मानित है और भारत की एक जानी मानी हस्ती है, और उनके बारे में उनका परिचय मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो के।
1: नमस्कार।
0: दोस्तों, मैं आपको बता दूं, श्री भिखू रामजी इदाते यानी दादा इदाते विमुक्त घूमतू एवं अर्ध घूमतू समुदायों के लिए केंद्रीय विकास एवं कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष, एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता तथा कई जातियों के विकास में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान किया है। 2 जून 1949 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के छोटे से गांव में वे जन्मे। एक शिक्षक के रूप में अपना करियर उन्होंने शुरू किया और कैसे कैसे उनका जीवन, जो कहें कि 55 वर्षों से भी अधिक उन्होंने सिर्फ अपने समाज सेवा को अर्पित कर दिया, लोगों को अर्पित कर दिया, इस देश को अर्पित कर दिया। आगे की जर्नी उन्हीं से सुनेंगे, आपसे ही जानना चाहेंगे, आपकी जुबानी आपकी कहानी।
1: ने बताया कि नाम है भिखू राम जी इदाते
0: जी,
1: दादा इदाते इस नाम से परिचित हो
0: जी।
1: महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले में दापोली तहसील है, तहसील में चेटोली नाम का एक गांव है
0: जी।
1: उस गांव में मेरा जन्म, एक नॉमेडिक ट्राइब जिसको हम कहते हैं
0: जी,
1: ऐसे सरोदे नाम की एक कम्युनिटी वहाँ है, उस कम्युनिटी में वो जन्म हुआ। उस कम्युनिटी में कोई शिक्षा नहीं थी
0: जी,
1: कोई विशिष्ट व्यक्ति बहुत बड़ी हुई ऐसा नहीं था। ज्यादा से ज्यादा 7वीं कक्षा तक कोई 2-3 लोग पढ़े थे, और पहली बार मैं 8वीं कक्षा में गया
0: जी। कौन से साल की बात है
1: ये? सामान्यतः 1964 की बात है।
0: ओके।
1: जब मैं उस समय 8वीं में जाना, 8वीं कक्षा में जाना तय हुआ था
0: जी,
1: क्योंकि उस समय मेरे स्कूल में गोपाल विट्ठल भागवत करके हमारे एक शिक्षक थे
0: जी,
1: मुख्याध्यापक, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी। उन्होंने हमारे गांव में एक संघ की शाखा शुरू की और उन्होंने मुझे वहां लाया। वो काम मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें बहुत मैं लिप्त हो गया। तो उन्होंने एक बार मुझे बताया कि अभी 7वीं के आगे थोड़ा शिक्षा तो करनी चाहिए। मैंने कहा कैसा करेंगे, घर की स्थिति तो कुछ नहीं है, देखो हम कहीं ना कहीं व्यवस्था करेंगे, लेकिन आपको शिक्षा करनी है। इसलिए मैं मेरे घर में बताया कि मुझे शिक्षा करनी है। मेरे माता पिता जी ने कहा कि अच्छी बात है, लेकिन हम तो आपकी शिक्षा नहीं कर सकते। मैंने कहा वो तो मुझे मालूम है, अभी क्या करेंगे। मैंने कहा अभी ऐसा करो, आप अपना देखो, मैं मेरा देखता हूँ। इतनी बात हो गई, मैं वहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पर विद्यार्थी आश्रम था, वहाँ मामा महाजन करके आर्य संघ के प्रचारक भी रहे थे। उस गांव में एक उन्होंने विद्यार्थी आश्रम खोला था।
0: अच्छा।
1: उस विद्यार्थी आश्रम में मैं दाखिल हो गया। मेरे माता पिता ने मेरे 3 उस समय बहने थी, उनको ले लिया और दोनों मुंबई में एक फुटपाथ पर रहने। और फुटपाथ पर रहकर धीरे धीरे मेरे मामा थे वहाँ, उन्होंने कहीं ना कहीं छोटी झोपड़ी उनको कहीं ना कहीं मिला दी, उसमें रहने। लेकिन काम तो कुछ नहीं था, बहुत परेशानी में थे
0: जी।
1: तो किसी ने बताया यहाँ सिद्धि विनायक मंदिर है, एक छोटा था उस समय मंदिर है, वहाँ दुर्वा फूल जो है
0: जी,
1: वो उसकी वो बेचो, बहुत लोग करते हैं काम। वहाँ मेरे माता पिता लगे, वो काम करने लगे। मैं यहाँ आठवीं कक्षा में आ गया, क्रमशः नौवीं तक दो बरस में वहाँ था
0: जी।
1: उस समय मुझे नाइन्थ क्लास में 92% मार्क्स मिले।
0: वाह क्या बात है।
1: वार्षिक परीक्षा में, एनुअल में
0: जी।
1: वहाँ के लोगों ने, मामा माजन वगैरह बैठे, उन्होंने कहा अरे आप जरा वो तहसील की जो स्कूल है वहाँ जाओ, हमारे आपके आपकी कोई कुछ बातें हुई है नहीं लगता है मुझे। मैं ठीक है, तो मैं दापोली शहर में आ गया, एजी हाई स्कूल नाम का स्कूल था, उस स्कूल में मैं दाखिल हो गया
0: जी।
1: इस तरह चलते चलते एक बार मैं मुंबई गया माता पिता को मिलने के लिए, देखा तो फूल माला बेच रहे हैं, माता जी रात को दूर दूर तक जा रही थी, वहां से वो दुर्वा वो लाके, गणेश जी को तो बहुत मालूम है
0: जी,
1: वो लाते थे, उसका वो जुड़ी करते हैं छोटे उसकी फूल और माला करके। तो मेरे तीन बहनें माता पिता जी ये बेचते थे, मैं जब गया तो मैंने देखा तो मैंने भी जो तीन दो तीन दिन था तो मैंने भी फूल वगैरह बेचते उनके साथ करना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए, उन्होंने कहा जरा यहाँ एक सिनेमा लगा है, ये लोग बोलते हैं बहुत अच्छा सिनेमा है,
0: अच्छा
1: तो आप देख के आ जाओ। तो मैंने कहा मैं सिनेमा नहीं देखू, देखियो लोग तो क्या क्या करते हैं सिनेमा देखने के लिए। मैंने कहा नहीं मुझे ना किताबें चाहिए थी पढ़ने के लिए, जो पैसे दिया है उसके मैं फुटपाथ पर कुछ किताबें देखता हूँ। तो उन्होंने कहा देखो, मैं गया, चार आठ आने तो थे, उसमें से दो तीन छोटी छोटी किताबें फुटपाथ पर
0: जी
1: लेके मैं आ गया। मेरे माता पिता को बहुत दर्द हुआ कि बेटे ने किताबें मांगी थी लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, बोले कुछ नहीं। फिर से जब मैं दो चार महीने के बाद आ गया था, उन्होंने दो बॉक्स मेरे सामने रखे, 10 पैसे 5 पैसे 25 पैसे ऐसे रखकर उन्होंने मेरे हवाले कर दी। मुझे कहा अब कुछ पैसे चाहिए थे ना, कुछ किताबें चाहिए ना, ले दीजिए। 400 रुपये मिले उसे।
0: अच्छा।
1: अभी उस समय 228 रुपये तोला सोना था, 400 रुपये ने लगभग 2 तोले का सोने की कीमत हो सकती थी। पूरे दिन में मैंने मुंबई में जेकब सर्कल किंग सर्कल वहां जाके मन चाहे किताबें पद पर ले गए। तो आगे चलकर मुझे छंद ही लगा उसका, और आगे बहुत आगे चलकर
0: जी
1: महाराष्ट्र में कोकण मराठी साहित्य परिषद का निर्माण हुआ था
0: जी,
1: मधु मंगेशकर ने करके बहुत बड़े साहित्य उसके अध्यक्ष थे, तो उन्होंने एक पुरस्कार जाहिर किया था उत्तम ग्रंथ संग्राहक और वाचक।
0: अच्छा।
1: तो उन्होंने मुझे दिए, तो उस समय मेरे पास 10,000 किताबें
0: 10,000
1: उस समय हुई थी मेरे पास। साहित्य सम्मेलन उन्होंने मुझे पुरस्कार दिया, मैंने मेरे माता पिता को समर्पित किया था कि जो तो नहीं पढ़ते रहे लेकिन मुझे चाहिए थे इसलिए उन्होंने क्रेडिट गोज टू दे। इस तरह होने लगा, संघ में लिप्त उस कार्यक्रम में जाने लगा, संघ का प्रथम द्वितीय तृतीय शिक्षा वर्ग होता है, तीसरा नागपुर में होता है। तो 8वीं 9वीं और 10वीं 3 बरस में मैंने पूरा कर दिया। उस समय 11th SSC थी उस समय, इस हिस्से में जब था मैं, तो एक शिक्षक करके संग शिक्षा वर्ग पर आया इतने बहुत एज में। लेकिन जब मैं उल्तरी में गया था
0: जी,
1: तो मेरे ध्यान में आ गया तो मैं अकेला आया हूँ यहाँ, मैं पढ़कर क्या करूँगा, आपके साथी कहाँ पढ़ेंगे, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। इसलिए मैंने वहाँ एक संगठन शुरू कर दिया एट द एज ऑफ 14।
0: अच्छा,
1: जब मैं 8वीं कक्षा में था
0: जी,
1: सर्वोदय समाज शिक्षण सुधार मंडल।
0: अच्छा,
1: आगे 15 बरस उसमें मैंने बहुत प्रयास किया। अभी 100% शिक्षा है उस कम्युनिटी में, 100% शिक्षा।
0: क्या बात है,
1: पहला 8वीं कक्षा वाला मैं था, अभी 10-20 डॉक्टर्स है, 10-20 इंजीनियर्स है, 50 से ऊपर कोई नर्सेस है, 200 करीबन टीचर्स है
0: जी,
1: कोई अभी मामलेदार हो गए हैं, कोई हर क्षेत्र में अभी वह नेतृत्व कर रहे हैं वो कम्युनिटी, जिले के हर क्षेत्र में, राजनीति से लेकर शिक्षा संस्थान तक। किसी ने शिक्षा संस्थान खोला, किसी ने हॉस्पिटल्स खोले, इस तरह का डेवलपमेंट आपको देखा आपके सामने
0: जी।
1: हम जो परिवर्तन जिसको कहते हैं, जिसका जहाँ उनका बहुत ही तुच्छता से उनका उल्लेख करते थे कम्युनिटी की
0: जी,
1: भिखारी जिनको कहते हैं सामान्यतः, वो अभी वो श्रीमंत वाड़ा हो गए।
0: क्या बात है सर,
1: तो इस तरह का एक परिवर्तन उस कम्युनिटी में देखने मिला, वैसा संघ का काम मेरे सामने आ गया
0: जी।
1: तो धीरे धीरे वो गाँव, तहसील, जिला, विभाग, प्रांत और अखिल भारतीय
0: जी,
1: सलग 50 बरस ये काम करता रहा। और समरसता का जो विषय है
0: जी,
1: उसका अखिल भारतीय पहला प्रमुख मैं था।
0: अच्छा, क्या बात,
1: और वो पूरे देश में मैंने वो संगठन के लिए बहुत काम किया था
0: जी।
1: तो इस तरह का एक छोटे शॉर्ट जिसको कहते हैं, तो भूमि से लेकर रहने के लिए भी ठीक जगह नहीं थी। मेरा बहुत अच्छा मकान था उस समय
0: जी,
1: मेरी माता जी ने बनाया था कष्ट से, उसकी कीमत उस समय 88 रुपये थी, 28 रुपये में वो मकान बनाया था, ऐसी स्थिति थी। आज आप वहाँ जाएंगे तो बहुत बड़े बंगले हुए हैं। मुझे एक साइकिल लेने के लिए हरक्यूलस की 300 रुपये नहीं थे मेरे पास, तो 30-30 रुपये देके 10 महीने में मैंने एक साइकिल ले दी। अभी से 100-200 फोर व्हीलर्स उस कम्युनिटी में, तो भौतिक में भी, शिक्षा में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी उन्नति एक छोटे रूप में, और इसका भी बड़ा रूप आगे चलकर पूरे देश में एक काम करने के लिए मुझे सौभाग्य मिला
0: जी।
1: इन शॉर्ट इतना। ठीक है सर,
0: मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन आप जो बता रहे हैं, हर क्षेत्र में, सामाजिक रूप से, भौतिक रूप से, हर रूप से हुआ है, और इसकी शुरुआत शिक्षा से हुई
1: जी।
0: जी,
1: शिक्षा के जो है कोई अन्य चारा नहीं है,
0: कोई परिवर्तन लाना है तो शिक्षा,
1: शिक्षा
0: सबसे पहले। दोस्तों, हम अभी बहुत जो ये कहानी सुन रहे थे दादाई दादी जी की, वो एक एग्जाम्पल है कि क्या संभव नहीं है जीवन में उसका। और अगर उनके पुरस्कारों की बात करें तो बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है। 2005 में स्वामी विवेकानंद सेवा सम्मान सामाजिक पुरस्कार, 2006 में कर्मवीर, 2010 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रबोधन पुरस्कार, राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार, भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड, और ऐसे न जाने कितने पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी दादा दादी जी, कि जो भी आपने ये बदलाव लाया, और मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने कहा विमुक्त जातियों के प्रति हमारी मानसिकता स्वतंत्र नहीं है, हम विमुक्त जातियों को, उनकी संस्कृति को भारतीय दृष्टिकोण से ना देखकर पाश्चात्य दृष्टिकोण से देखते हैं, तो इसका अर्थ मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूंगी।
1: सामान्यतः हमारे देश में तो बहुत बड़ा संघर्ष
0: जी,
1: जो मुगल आए थे उस समय से, अंग्रेज आने के बाद डच, फ्रेंच, पुर्तगीज वो भी आए थे, शक गुण कुषाण वो भी आए थे। उन्होंने पूरा हमारा जनजीवन उद्ध्वस्त किया। लॉर्ड मैकॉले ने 1835 में एक नई शिक्षा पद्धति थी उसके बारे में उन्होंने अपने एक खत लिखा था घर में, उसमें लिखा था मैं यह इस तरह की एक शिक्षा पद्धति लाना चाहता हूँ, यह इससे पढ़ाई करने वाले लोग रंग और रक्त से भारतीय रहेंगे, आचार विचार उच्चार संस्कार अंग्रेजों जैसा होगा और उनके आधार पर हम इस देश पर राज करेंगे, उन लोगों के आधार। ये उन्होंने तो सिद्ध करके दिया और 1837 में उन्होंने इस देश में जो शिक्षा पद्धति चल रही थी वो एक जार निकल कर रद्द कर दी, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लाई
0: जी
1: और हमारी शिक्षा पद्धति नष्ट कर दी। तो उस समय ब्यूटीफुल ट्री नाम का धर्मपाल जी का एक किताब है, महात्मा गांधी के बहुत बड़े अनुयायी थे, 10 खंडों में उन्होंने लिखा है हमारे देश की एक हिस्ट्री, उसमें शिक्षा के बारे में उन्होंने लिखा है ब्यूटीफुल ट्री नाम का एक किताब,
0: ब्यूटीफुल ट्री
1: जी। उसमें उन्होंने लिखा है कि हर गांव में पाठशाला थी, सब प्रकार के लोग आते थे, ये नहीं आता वो, ऐसे कोई बात नहीं थी, विद प्रूफ्स विद संदर्भ रेफरेंसेस उन्होंने दिए हैं। लेकिन मैकॉले आने के बाद, वो शिक्षा पद्धति आने के बाद हमारा पूरा माइंडसेट ही बदल गया। ऐसे क्यों है? क्योंकि ये हमारे पूर्वज ठीक नहीं थे, हमारी संस्कृति ठीक नहीं थी, अंग्रेज आ गए इसलिए हम सुधर गए।
0: ये बात कहते हैं कि
1: ये जो उन्होंने बिठाया मन में एक बात हो गई। तो भी उस समय जब मुगल आ गए हमारे मंदिर उद्ध्वस्त कर दिए
0: जी,
1: दो बातें उन्होंने की, हमारे देश के दो श्रद्धा स्थान उद्ध्वस्त किए, उद्ध्वस्त किए उन्होंने, एक मंदिर दूसरे स्त्री। मंदिर तो उद्ध्वस्त कर दे
0: जी,
1: तोड़ फोड़ कर दी, और स्त्रियां कुछ भी किया उन्होंने, बोल भी नहीं सकते इस तरह का सब उन्होंने किया
0: जी।
1: जैसे वायुमंडल में जो बचा खुचा था वो मंदिर नहीं तो जाएगा था, नहीं जा सकता था, यदि यदि टूटा फूटा कोई है और जाना ही है तो जिजिया कर लगाया था, और जिजिया कर गरीब लोगों को ज्यादा था, श्रीमान लोग को कम था, क्योंकि यदि जिजिया कर नहीं देते तो उनका धर्मांतरण कर दे, तो गरीब लोग धर्मांतरण में आ गए थे, थोड़ा ही दिया उन्होंने। उस समय हमारे देश में जो कम्युनिटी
0: जी
1: विविध प्रकार की सामने आ गई, उन्होंने मंदिर जो है नहीं है, ऑल राइट, मंदिर में कौन है, कौन सा देव है, कौन सी देवी है, वो उन्होंने लोगों के घर तक जाकर उनको बताया।
0: अच्छा,
1: मानो मरिया वाले नाम का एक कम्युनिटी है
0: जी,
1: चाबुक के फटके ऐसे मारते हैं, लेकिन उनकी जो महिला रहती थी उनके माथे पर एक बहुत एक पेटारा रहता था।
0: ओके।
1: वो तो नाचते वगैरह सब होता है, अंत में क्या करते थे, वो नीचे रखते थे और धीरे धीरे बाजू करते थे अगले सामने वाले दरवाजे, और उसमें सब देव देवी था, हमारे दैवत हमारी देवी वो सब दिखते थे, तो सब बहुत खुश होते थे।
0: अच्छा,
1: तो उनको देव धर्म किसी ने सिखाया? आज जिनको हम विमुक्त घुमंत बोलते हैं उनको, मेरे पिताजी अपने काग में एक भवानी देवी की मूर्ति रखकर, उनका जो गांव एक सातारा जिले में था, वहां जाते थे मल्लारपेट नाम के स्थान पर, और वहां 9 दिन नवरात्र में 9 दिन रहते थे। कोई मंदिर, अभी मंदिर हुए थे बाद में
0: जी,
1: उसमें कोई कीर्तन मनन वगैरह करते थे, और बाद में अपने काक में जो रखी हुई जो देवी है वो सामने उनके रखते थे, यह हमारी देवी है, यह हमारा धर्म है, इसका गीत गाना है, इसका भजन करना है, ये करके आते थे। आराधी गोंदड़ी गुते गोपे सरोदे दोषी, इस तरह के जो लोग हैं, मरिया वाले अभी मैंने बताया, ये लोगों ने हमारा धर्म और संस्कृति जीवित रहे। कल्चर सेवर्स,
0: कल्चर सेवर्स हैं बिल्कुल,
1: हम उनको करते हैं भिखारी, घुमंतु। और दूसरी ओर जो आक्रमण आया था
0: जी,
1: उसका संघर्ष जिन्होंने किया
0: जी,
1: वो 1034 में राजा सुहेल देव, राजभर नाम के कम्युनिटी है विमुक्त में
0: जी,
1: वो राजा थे,
0: राजा सुहेल देव,
1: राजा सुहेल देव, बहुत बड़ा पराक्रम उन्होंने किया। वहां से इतने लोग संघर्ष करते रहे, यूपी में हम जाएंगे तो हरदेसाई करके 1940 में उन्होंने संघर्ष शुरू किया, 1826 में महाराष्ट्र में उमाजी नाईक
0: जी,
1: तो रामोशी कम्युनिटी युक्त तो आज हम कहते हैं उनको, उनमें से आज आ जाए, लेकिन उन्होंने संघर्ष शुरू किया और स्वातंत्र का जाहिरनामा लोगों के सामने रखा। आज हम उनको एक क्रिमिनल कहते हैं, स्वतंत्र का जाहिरनामा रखा और उन्होंने अंग्रेजों को इतना परेशान किया, परेशान हो गए सब, करेंगे क्या इसका, वो मिलता ही नहीं है, कहाँ से आता है मालूम नहीं। तो आप ध्यान रखने लायक एक बात है
0: जी,
1: तो उन्होंने क्या किया, मैसूर, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, पुणे, मुंबई, यहाँ से पुलिस प्रमुखों को बुलाया,
0: अच्छा जी,
1: देश में से, और उनको बताया क्या करें इसका,
0: को समझ ही नहीं आ रहा था,
1: कुछ समझ, आप कल्पना करें कि कितना बलशाली होगा वो। अभी वहाँ हमारा मल्लारी मारुतकर्ण करके जेजुरी में स्थान है
0: जी,
1: वहाँ वो आते थे, अभी उनके तलवार जो है जिससे वो लड़ते थे
0: जी,
1: वो रखी है
0: जी,
1: इसका वजन 65 कीजिए,
0: 65 किलो,
1: मैं दो हाथ से भी उसको उचल नहीं पाया, हाथ में लेकर लड़ते थे, ऐसा था। अभी अभी वो को हो गया तो गुनहगार हो गया, उसकी बता दो मैं
0: जी,
1: लेकिन है कौन हो, वो स्वातंत्र सैनिक, वो फ्रीडम फाइटर,
0: फ्रीडम फाइटर,
1: राजा रणजीत सिंह, आपने सुना है, शेरे पंजाब लाहौर के थे
0: जी,
1: बाद में जम्मू कश्मीर में जम्मू तावी नदी का जो संगम है
0: जी,
1: बहुत बड़े टिकड़े है वहाँ, वहाँ उनका एक बंगला था ऊपर, वहाँ बैठते थे और सब देखते थे, समझ आने आया, जो लोग आते थे उनका न्याय करते, कुछ कुछ समस्या जो सुलझाते
0: थे जी।
1: उस सोने का उनका वो जो बैठने का जो सब साहो सुवर्ण का था, अभी केवल लोड जो है वो सुवर्ण का है, मैं देख के आया हूँ, जाके आया हूँ, एक आग नहीं था उनका,
0: अच्छा,
1: लेकिन उन्होंने वहां से क्या किया, उस समय देखो अभी 350 बरस के पहले की बात मैं बता रहा हूँ
0: जी,
1: तो उन्होंने वहां से तो सुवर्ण मंदिर जो है पंजाब में वो उन्होंने बनाया, हमारा जो काशी विश्वेश्वर है
0: जी,
1: वहाँ अहिल्यादेवी होलकर ने मंदिर बनाया था
0: जी जी,
1: लेकिन उस पर सोना नहीं था, कलर सोने का नहीं था, वो उन्होंने भेज दिया, पूरे देश में ऐसा उनको ध्यान में आता था, वो तो करते थे। अभी वो जो समुदाय है
0: जी,
1: जो आज हम देखते हैं सासी समाज कहते हैं, सासी समाज
0: जी,
1: तो विमुक्त में है,
0: विमुक्त में,
1: एक क्रिमिनल मानते हैं, आज बहुत चोरी करने वाले, डकैत निकालने वाले ऐसे लोगों को लगते हैं, लेकिन कौन थे, राजा थे,
0: वो इतिहास,
1: वो इतिहास है
0: जी,
1: और उनका पराक्रम शेरे पंजाब था उस समय, अहिल्यादेवी होलकर महाराष्ट्र में
0: जी,
1: तो धनगर कम्युनिटी में थे, शेफर्ड कम्युनिटी में थे, वो इंदौर की रानी थी
0: जी जी,
1: और उन्होंने क्या किया, बाकी तो उनकी बहुत बड़ी कहानी है
0: जी जी,
1: ये विषय के संदर्भ में केवल बता दूं
0: जी,
1: उस समय का जो खजीना था 16 करोड़ का था
0: उस समय जी,
1: 350 बरस पहले, वो जो गवर्नमेंट का था उसको उन्होंने हाथ नहीं लगाया, तो उनका स्वयं का था
0: जी,
1: उसमें से उन्होंने सब प्रकार के मंदिर का जीर्णोद्धार किया, काशी विश्वेश्वर
0: जी,
1: सोमनाथ, नीचे रामेश्वरम तक जहाँ जहाँ मंदिर है उसका पुनर्जीवित किया, जहाँ नदी है वहाँ घाट बनाए लोगों को जाने के लिए आने के लिए
0: जी।
1: तो एक दृष्टि से देखे पुण्य श्लोक हम कहते हैं उनको, पुण्य श्लोक ही थी, इसी राज्य करती थी हमारे देश में, इस तुलना में और कोई राज्य
0: कोई नहीं।
1: लेकिन वो कौन है, नॉमिनल ट्राइब में, कुछ राज्य में कुछ शेड्यूल ट्राइब में है, लेकिन है कौन, वो राज्य करते।
0: ये बड़ी आश्चर्य की बात है सच में।
1: तो ये है फ्रीडम फाइटर्स
0: जी।
1: अभी इनका प्रॉब्लम हो गया अंग्रेजों
0: जी,
1: तो उन्होंने क्या किया, वैसे 57 का जो युद्ध हुआ
0: जी,
1: उन्होंने बंड कहा सिपाहियों का बंड, लेकिन वो तो स्वातंत्र सावरकर ने 1857 का स्वातंत्र युद्ध
0: जी,
1: ये 1910 में उन्होंने इंग्लैंड में एक किताब लिखा और उसके आधार पर यह हमारा स्वातंत्र युद्ध था, पहली बार उन्होंने कहा है, पर बंड वगैरह नहीं था और पूरे देश व्यापी वो संघर्ष था,
0: तो पहला फ्रीडम स्ट्रगल माना जाता है,
1: माना जाता है
0: जी।
1: लेकिन उसमें जो अनुभव आ गया अंग्रेजों को, उन्होंने एक बात की, सबको शस्त्र विहीन किए, जिनके हाथ में शस्त्र था वो उन्होंने निकाल दिया, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने जाति जाति में संघर्ष शुरू किया
0: आपस में,
1: बड़ा श्रेष्ठ ये वो इस तरह का, उन्होंने ब्राह्मण द्वेष वो निर्माण किया हमारे देश में, पूरे देश में उन्होंने जिस तरह के लोगों का निर्माण करने का प्रयास किया, आगे कुछ बताएंगे नहीं उनका, सवार करेंगे हम, इस तरह की स्थिति आ गई
0: जो उन्होंने डिवाइड एंड रूल,
1: डिवाइड एंड रूल कर दिया। लेकिन आगे चलकर उनके ध्यान में आ गया तो भी लोग कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ नाम आपको बताए, अवंतिका बाई लोधी, झांसी की रानी जैसी उनका वर्ताव है, झलकारी बाई
0: जी
1: जो यूपी में से, वैसा सोचे आज, आज सोचे तो सी बिलोंग्स टू SC कम्युनिटी, उस कम्युनिटी में से रामनाथ कोविंद जी जो हमारे राष्ट्रपति, लेकिन हम अभी उनको क्या बताते, मैंने बताया आपको
0: जी जी जी बिल्कुल,
1: इस तरह संथाल जो विद्रोह हमारे देश,
0: संथाल
1: आदिवासियों का विद्रोह, संथाल जो है वो एक आप बिहार से लेकर उड़ीसा तक पूरा एरिया हाँ उन्होंने संघर्ष में डाल दिया संथाल लोगों
0: जी।
1: आज हम देखते हैं उसी संथाल में से हमारे हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, और जिनका बहुत जब संघर्ष कर रही थी
0: जी,
1: उस समय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी से उनका संपर्क आया था
0: जी,
1: उसमें से उनको शांति मिली, गया पुत्र गया स्नुषा गई
0: जी,
1: इस तरह के बहुत बातें हो गई
0: जी।
1: लेकिन मैं संदर्भ इसलिए बता रहा हूँ कि कितना संघर्ष करते थे, आज भी उसमें से एक राष्ट्रपति,
0: बिल्कुल
1: दो राष्ट्रपति तो ऐसे हो गए,
0: ऐसे है।
1: तो ये कम्युनिटी दे आर फ्रीडम फाइटर्स, तो अंग्रेजों ने क्या किया 1871 में CTA Act, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 उन्होंने निकाला, और उसके आधार पर जो जो इस तरह के जो लोग थे
0: जी,
1: उनको आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई किया
0: जिनके लिए खतरा हो सकते थे,
1: हाँ दूसरा शब्द है उसको नोटिफाई किया, और नोटिफाई करके उनको 52 सेटलमेंट पूरे देश में लगाकर उस जेल में उनको डाल दिया, कहा यदि सेटलमेंट नहीं होती तो तार का कुंपल होता है ना, तीन के फेजिस रहते थे के अंदर वो रहते थे लोग, दिन में 3 बार उनको हाजिरी देना पड़ता था, अटेंडेंस रात 2 को भी देना पड़ता था, और उनको बताया कि आप कौन है, आप गुनहगार है, आप क्रिमिनल है, आप क्रिमिनल है, 140 बरस उनको लोग कहते हैं कि आप क्रिमिनल है, उनकी पीढ़ी आ गई अगली, उन्होंने कहा कि आपकी जो अगली आ जाएगी, नहीं नहीं अच्छा। आपका बच्चा हो जाएगा वो क्रिमिनल ही पैदा हो जाएगा, बॉर्न क्रिमिनल। दुनिया में है ऐसा कोई?
0: बिल्कुल, बॉर्न क्रिमिनल कह दिया पहले से,
1: कर दिया,
0: घोषित कर दिया।
1: और 100-150 बरस यही मानसिकता रही तो लोगों में हम ही क्रिमिनल है ऐसा ही आ गया,
0: ये मानसिकता ही बन गई, सब
1: बन गई
0: जी।
1: लोगों ने संघर्ष किया
0: जी।
1: अभी वो एक उनका जेल एक्ट आया था 1915 में
0: जी,
1: एक जेल कमीशन बैठा था
0: जी,
1: उसमें कुछ बातें कर दिया उन्होंने
0: जी।
1: 1924 में और एक रिपील किया था उन्होंने एक्ट, 1930 में एक स्टार्ट कमेटी उसके लिए बिठाई थी
0: जी।
1: स्टार्ट कमेटी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी एक सदस्य थे।
0: ओके,
1: आगे चलकर हर एक तरह की संबंध आ जाएगा तो मैं बताऊंगा
0: जी।
1: तो ये इस तरह का संघर्ष करते करते क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल। अभी स्वतंत्र भारत हो गया
0: जी,
1: भारत स्वतंत्र हो गया 1947 में, लेकिन ये नहीं हुए,
0: सोच वही रहे,
1: वैसे ही रहे। तो 1952 में 31 अगस्त 1952 में
0: जी
1: एक लोकसभा में बिल लाकर

0: जो देशभक्त थे, फ्रीडम फाइटर थे, हो गए। जो संस्कृति रक्षक थे, कल्चर सेवर थे, वो तो भिखारी बन गए। इस तरह की मानसिकता उनकी हो गई, समाज की हो गई। अभी आजीविका लिए तो कुछ नहीं था, वो करेंगे क्या? काम कोई देता नहीं था
1: जी।
0: एक क्रिमिनल है, वो खुद चोरी करने लगे, डकैती लगाने लगे, तो एक अलग रास्ते में जाना जाने के लिए बाध्य कर दिया लोगों ने। और वही ढब्बा उनको लगने के कारण पूरे देश में स्थिति ऐसी है
1: जी।
0: मैं महाराष्ट्र में 1997
1: जी
0: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री
1: जी
0: हमारे मुंडे जी, गोपीनाथ जी मुंडे, उन्होंने एक खास और संशोधन कमेटी बनाई, उसका मुझे अध्यक्ष कर दिया
1: जी।
0: तो मैंने पूरे महाराष्ट्र का सर्वे किया, जेल में गया, 7 जेल में गया।
1: अच्छा।
0: तो वहाँ इतने कच्चे कैदी जो है सब विमुक्त घुमंत दो, कुछ रिकॉर्ड नहीं, कुछ FIR नहीं, वैसे ही लाया वैसे ही रखा, काम कर,
1: उनका कोई डेटा नहीं, कुछ
0: डेटा नहीं, कुछ भी नहीं। ये तो मैंने सामने लाया। करीबन हमारे महाराष्ट्र में, पूरे देश में आज करीबन 20 करोड़ लोग है विमुक्त घुमंत, 1658 जनजाति है पूरे देश में
1: जी।
0: वो है, कोई अपवाद है जैसा लक्षद्वीप जैसा कोई है वहाँ, ऐसा कोई अपवाद तो है। अंडमान निकोबार में है वो तो प्रिमेटिव आदिवासी, ऐसा उनको कहते हैं, ये तो बात है। ऐसा कुछ स्टेट है जिसमें केवल आदिवासी है
1: जी,
0: जैसा हम सिक्किम की ओर जाएंगे
1: जी,
0: तो इस तरह मैं गया हूँ सिक्किम में
1: जी।
0: मैंने 36 out of 36 स्टेट का मेरे कमीशन ने प्रत्यक्ष प्रवास किया, हर स्टेट में जाकर 3 वर्ष में एक भी छुट्टी नहीं ली। तो भारत सरकार ने, मोदी जी ने मुझे बनाया था नेशनल कमीशन चेयरमैन
1: जी,
0: और वो रिपोर्ट मैंने विद इन 3 इयर्स 100% काम करके दिया था, एक भी छुट्टी मैंने नहीं ली थी, नॉट इवन सैटरडे संडे,
1: संडे भी नहीं।
0: 3 वर्ष में हो गया। तो हमारे जो मोदी जी है तो बहुत ही अभ्यास है, संवेदनशील है, वंचित पीड़ित के लिए तो उनके मन में अपार करुणा है। तो उन्होंने एक कमीशन बिठाया, उसके पहले अटल जी ने शुरुअत की इसकी।
1: अच्छा जी।
0: अटल जी जाने के बाद एक बीच में रेणके कमीशन भी हो गया, मोतीलाल नाम का न्यायमूर्ति मोतीलाल नायक, 1 बरस था, 2 बरस का कमीशन रेणके का था, 3 बरस का मेरा था
1: जी।
0: रेणके का 8 बरस उन्होंने लेन देन कर दिया, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। और बाद में एक नए कमीशन की आवश्यकता बताया, इसलिए नए कमीशन इदाते कमीशन आ
1: जी।
0: उसके आधार पर नरेंद्र भाई मोदी ने केवल 7 महीने में उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी, वो लागू करने पहली बार हमारे देश में हुआ
1: जी।
0: लोगों को ध्यान में भी नहीं आता क्योंकि उसकी चर्चा भी नहीं हुई, उन्होंने रिपोर्ट पढ़ा और वो इम्प्लीमेंट के लिए दिया। मेरे 20 सिफारिशें थी, उस 20 सिफारिश में से उन्होंने 12 सिफारिशें थी रिकमेंडेशन, वो कल्याण और विकास के लिए संदर्भ थे
1: जी।
0: उसके आधार पर उन्होंने विकास और कल्याण बोर्ड बनाया, DWBDNC
1: जी,
0: डेवलपमेंट। उसका चेयरमैन फिर से मुझे बुलाया, उसका भी 3 वर्ष में
1: चेयरमैन रहे आप
0: जी। और वो समाप्त करते करते इनके विकास और कल्याण के लिए एक बजट हेड आ गया
1: जी,
0: करीबन उन्होंने 200 करोड़ रुपए तो दिए थे, लेकिन मैंने 10,000 करोड़ रुपए मांगे थे उनको
1: जी।
0: लेकिन पहले स्टेप में तो ऐसा होता है कभी कभी। और तो उसके लिए उन्होंने एक गूगल पर एक पोर्टल बनाया
1: जी,
0: पोर्टल के आधार पर उसकी जानकारी आ जाए, इसके आधार पर उनको 4 स्कीम दे दिया। एक शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए क्या कि कोई स्पर्धा परीक्षा में जाना चाहता
1: जी,
0: जा ही नहीं सकते, फीस भी नहीं दे सकते। तो हमने एक प्रस्ताव दिया था गवर्नमेंट, वो अप्रूव हो गया कि ऐसे जो लोग हैं वो जहाँ कोई शिक्षा करेंगे उसका सब पैसा भारत सरकार दे देगी, ये पहला
1: जी।
0: दूसरा, उसमें जो

0: और हाथ को काम जो कहते हैं
1: जी,
0: विशेषता महिलाओं के लिए तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है
1: जी,
0: तो उनके लिए भी देना है। मकान के लिए आ गए प्राइम मिनिस्टर आवास योजना तो है अलग
1: जी जी जी,
0: फिर वो डीएनटी के लिए एक अलग
1: अलग
0: योजना भी उन्होंने बनाया और वो पोर्टल पर उनकी जानकारी आ जाए तो उसके आधार पर वो
1: उनको मिलता है बेनिफिट।
0: और चौथा था उसमें
1: जी
0: हेल्थ के बारे में
1: जी,
0: कि इन लोगों को कोई बीमारी होती है कहाँ जाएंगे, पैसा ही नहीं है हॉस्पिटल में कौन लेगा। भारत सरकार ने ऐसा किया है कि इस तरह की कोई भी बीमारी हो तो उनका हर कुटुंब का यदि संभव हो तो 5 लाख रुपए का खर्चा भारत सरकार करे। ये 4 स्कीम्स लाई है और इतने में मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया। अभी इम्प्लीमेंटेशन का अभी शुरू होना थोड़ा
1: अच्छा बाकी
0: बाकी।
1: मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आपने शुरू किया एक बहुत बड़ा परिवर्तन एक बड़े रूप में एक देश में पूरा, जैसा आपने बताया 20 करोड़ लोग हैं और वो पॉलिसीज बन रही हैं, लेकिन क्या क्योंकि ऐसी मानसिकता बन गई थी और क्रिमिनल या फिर इस तरह की बातें कही जाने लगी, विमुक्त जातियां घुमंतू कहा गया, तो आपको कुछ उस समय अगर ये बदलाव लाने में क्या कुछ चैलेंजेस महसूस हुए, किस तरह के महसूस हुए, या आपने शिक्षा पे तो काम किया साथ में और कौन सी चीजें थी जिन पे आपने काम किया?
0: नहीं नहीं केवल शिक्षा में, शिक्षा ये बेसिक आधार है
1: जी जी,
0: कहा भी कुछ करना है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एजुकेट एजुकेट एजुकेट ऑर्गेनाइज यही बताया, तो एजुकेशन पहले
1: जी,
0: सावित्री बाई फुले ने
1: जी,
0: अभी यदि शिक्षा नहीं है तो आप पशु ही है, शिक्षा ही इसके लिए चाहिए
1: जी।
0: कोई भी जो आता है, महात्मा फुले ने शिक्षा के लिए प्रयास लड़कियों के शिक्षा के लिए किया
1: जी,
0: तो जिसको कुछ करना है तो वहाँ से शुरुआत करनी पड़ती है
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जो सामाजिक प्रश्न उत्पन्न होते हैं रहने का, अभी जो घुमंत लोग हैं एक जगह पर रहते नहीं, कुछ लोग रहते हैं जिसको शिक्षा मिली
1: वरना तो नहीं रहते हैं,
0: वो तो काम में लगे, नौकरी करने लगे, उद्योग करने लगे, अपना अपना मकान गाड़ी सब भौतिक सुविधाएं वो आ गई
1: जी।
0: उन्होंने शिक्षा में प्रयास किया था, हमारे महाराष्ट्र में वंजारी कम्युनिटी है
1: जी,
0: गोपीनाथ मुंडे जिस कम्युनिटी में से है
1: जी जी,
0: उस कम्युनिटी में वसंतराव नाईक जो चीफ मिनिस्टर थे वो नहीं, उस कम्युनिटी में के वसंतराव नाईक 1936 में वो एमएलए थे, वहां से उन्होंने तो शिक्षा संस्थान शुरू कर दिया मराठवाड़ा में, इतना बड़ा गोपीनाथ मुंडे वहां पड़े है।
1: अच्छा
0: अभी देखो पिछली बार 50 यूपीएससी के नंबर आ गए, उसमें 15 नंबर केवल एक कम्युनिटी के थे, वंजारी कम्युनिटी। आज भी 2-3 अपॉइंटमेंट इस सप्ताह में हुए है पूरे देश व्यापी, क्यों, क्योंकि तो शिक्षा से शुरुआत हुई थी ठीक ढंग से हुई थी वो आगे चले, जो उस समय जिन्होंने शिक्षा ली वसंतराव राय का हमारे चीफ मिनिस्टर
1: जी
0: महाराष्ट्र के, वो बंजारा समाज में से 11 बरस चीफ मिनिस्टर कोई नहीं रहा महाराष्ट्र में
1: सिर्फ
0: उनके सिवाय, बाद में उनका जो भतीजा वो 2 बरस था चीफ मिनिस्टर, तो जिन्होंने शिक्षा ली और आंदोलन में आ गए उसका कुछ तो कुछ तो हो गया
1: जी।
0: तो इस तरह करना पड़ता है, तो एक कोई मानसिकता सामाजिक एक रहती है वो हम अलग है, हमारे आइडेंटिटी अलग है
1: जी।
0: हम एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते, छुआछूत का तो इसमें नहीं है कुछ, लेकिन वो अलग है हम अलग है, तो हमें एक ऐसा करना पड़ा कि हम संपूर्ण समाज एक है, लेकिन आपको यही भाषा समझते हैं तो जितने उपयुक्त तो घुमंतु जो है वो सब मिलकर एक उनका अपना वर्ग क्या करना चाहिए। अच्छा। एक यूनिट करना चाहिए
1: जी।
0: इसलिए मैंने 2015 में जब मैं कमीशन का चेयरमैन था उस समय विमुक्त घुमंतु जनजाति विकास परिषद नाम की एक संस्था मैंने शुरू कर दी।
1: अच्छा।
0: रजिस्टर्ड है मुंबई में, रजिस्टर्ड ऑफिस है
1: जी,
0: और उसके अभी देश में करीबन 20 स्टेट में उनका कार्यकलाप शुरू हुआ है। और वहाँ ये जो विमुक्त घुमंतों के जो जो निर्णय होते हैं केंद्र स्तर पर होते हैं
1: जी,
0: तो सबको समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए। तो हम इमीडिएट कोई बजट पेश होता है वो बजट में वंचित लोगों के लिए क्या क्या रखा है, उसमें विमुक्त घुमंतों के क्या मिल सकता है, कौन सा कैटेगरी आता है, कितने पैसे आवंटित, इमीडिएट हम उस पत्र पूरे देश में फैलाते हैं,
1: कम्युनिकेट करते हैं,
0: कम्युनिकेट करते हैं। कोई आता केंद्र सरकार है मिनिस्टर बनते हैं, मिनिस्टर में इस लोग विलंब करने वाले कितने मिनिस्टर है, तब हमने 8 मिनिस्टर की लिस्ट दी थी कितने मिनिस्टर है मोदी गवर्नमेंट में। ऐसा जहां जहां चलता है
1: जी,
0: तो एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए करते हैं
1: करते हैं।
0: एक महत्व की एक बात हमने की मेरे कमीशन के कालखंड में कि कोई जाति का दाखला नहीं मिलता, जहाँ रहते हैं वो एक तो जंगल में रहते हैं
1: जी,
0: लेकिन जहाँ रहते हैं उनकी जगह नहीं रहते, कभी भी कोई 10-15-20 बरस में आता है अरे मेरी जगह है उठो यहाँ से, वहां से कान करते हैं, इस तरह के जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं
1: जी,
0: तो कैसा सॉल्व करेंगे। इसलिए हमारे उस समय के मेरे MS थे
1: जी,
0: मेंबर सेक्रेटरी अग्निहोत्री मैडम, तो उन्होंने पूरे देश के चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा था
1: जी,
0: कि ये जो प्रश्न है विमुक्त घुमंतों के बहुत क्रिटिकल है
1: जी,
0: कहाँ घूमते मालूम नहीं रहता ऐसी स्थिति है, तो इसके लिए कलेक्टर के अध्यक्षता में एक रिड्रेसल कमेटी बना।
1: ओके।
0: वो अंतिम अध्यक्ष रहता है, इसको दाखला देना है, जमीन का कुछ करना है, वही करते थे, तो वो हमने पहुंचा है, लेकिन इसका अवेयरनेस अभी तक नहीं हुआ है जी। मैं बोल रहा हूँ हर जगह ऐसा हुआ है, महाराष्ट्र में हमने वर्धा जिले में ये प्रयोग किया अभी, वो प्रयोग करते करते अभी उन्होंने रिड्रेसल कमेटी बनाई, इसका कारण इसके लिए ऐसा हो गया कि उस रिड्रेसल कमेटी ने कलेक्टर ने हर तहसील में उनको दाखला लेने का प्रयास शुरू कर दिया, एक मेला बनाना, लोगों को साथ लगाना, अधिकारियों को बुलाना, उनका सर्टिफिकेट देना,
1: ये जागरूक भी करना पड़ेगा सबको,
0: करना पड़ता है,
1: कार्य हो रहा है,
0: नहीं तो इसलिए वो तो संगठन बनाया ना,
1: इसीलिए संगठन है वो,
0: और इसलिए ये सब बात वहां तक जाते हैं ना
1: जी
0: सबकी। तो इस तरह के बहुत प्रश्न जो है एक्चुअल उसका कुछ तो कुछ करना पड़ता है
1: जी।
0: जनगणना हमारे अभी शुरू हो गई
1: जी,
0: इसके पहले 11 में हुई थी जनगणना, तो विमुक्त घुमंतों की नहीं थी ऐसा उनका कहना है, हमारी जानकारी ऐसे है कि हुई है उस समय अच्छा। भी लेकिन गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं किए, तो मानो नहीं ऐसा मानो
1: जी,
0: अगर 21 की होने वाली थी तो मैं तो उस समय बोर्ड का चेयरमैन गया था, तो मैंने जो कमिश्नर रहते हैं हमारे उनको मैंने बुलाया, जनगणना आप करने वाले हैं तो इनका क्या करे, इनका तो अभी नहीं होने वाला, करेंगे क्या, इनको आप स्कीम कैसे देंगे यदि आपको उनकी पॉपुलेशन मालूम नहीं, तो स्कीम कैसे देंगे,
1: बिल्कुल
0: वो क्या करे। तो उन्होंने कहा एक कर सकते हैं समाज कल्याण विभाग
1: जी,
0: ये कर सकते हैं, तो ये यदि करेंगे तो उसका सब खर्चा भारत सरकार दे, वो दिया है
1: जी।
0: लेकिन अभी तो वो शुरू नहीं हुआ है,
1: वो होना बाकी है,
0: ओके है
1: जी।
0: ऐसे जो जो प्रॉब्लम मुझे लगते थे
1: जी,
0: उसका सोल्यूशन निकालने का प्रयास किया है, लेकिन एक लोगों की एक मानसिकता, एक संगठन चलाना, इसका लीडर बनना, भाषण करना, हम मैं लीडर हुए करना, इसलिए उनका जो मूल प्रश्न है इसके लिए जो करना चाहिए वो करने में जरा
1: देरी लगती
0: है, डिले लगता है
1: जी,
0: इसलिए कुछ प्रश्न आगे नहीं आ रहे
1: जी।
0: तो मेरा आह्वान पूरे देश के इस विषय में काम करने वाले लोगों को है, संगठन को है, कि इदाते कमीशन के कारण 20 में से 14 उसकी सिफारिशें जो है वो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करने के लिए लिए थी, मैंने पहले 12 का उल्लेख किया था, 13 था, मैं 265 कम्युनिटी का एक लिस्ट दिया है भारत सरकार को और बताया कि ये कम्युनिटी
1: जी
0: है, लेकिन उस राज्य में उनका कोई नाम नहीं है, तो उनका आइडेंटिफिकेशन करो और क्लासिफिकेशन करो इसका, जो मैंने बताया था, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष के अध्यक्षता में उसकी कमेटी बनाई है, उसका मैं एक मेंबर भी हूँ
1: okay.
0: और करीबन उन्होंने सब लोगों का आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट करने के लाया है। और 14वां था उसमें हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट
1: okay.
0: जो 60 जो आया था क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1952 में
1: जी.
0: उसमें से उन्होंने हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट बनाया और वो निरस्त कर दिया, यानी जो क्रिमिनलिटी में हैबिचुअल है
1: जी.
0: तो उसको लगेगा इस तरह का, लेकिन गवर्नमेंट प्रशासन पुलिस ये सबको इतनी आदत पड़ी थी
1: जी.
0: कि उनके मन में कोई बदलाव नहीं हुआ, वो तो सिटी एक्ट ही मानते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट
1: अच्छा.
0: इस तरह का वर्तन आज भी करते हैं, इसलिए मैंने बताया था कि यह निरस्त करना चाहिए हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट, तो वो उन्होंने गृह मंत्रालय को भेजा है
1: जी.
0: अभी उसका क्या हुआ है अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है जी. और जो कॉन्स्टिट्यूशनल 6 बातें हैं, 6 सिफारिशें, वो अलग रखी है
1: जी.
0: उसमें से तो पहला मेरा कहना था कि इनके लिए एक परमानेंट कमीशन चाहिए
1: जी,
0: कि जो कोई भी समस्या आ जाए इसके लिए वो बातें बताएंगे, और इसका उनको अधिकार भी रहते हैं, कलेक्टर भी बुला सकते हैं क्यों नहीं हुआ क्या, इस तरह का अधिकार भी आना चाहिए. नीति आयोग ने भी वो सपोर्ट किया इसके लिए, इदाते कमीशन की सिफारिश लागू करने चाहिए, और वो जो विशेष मैंने कमीशन जो बताया था
1: जी.
0: वो भी करना चाहिए
1: जी.
0: 22 डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट ने बताया था, उसमें केवल शेड्यूल ट्राइब डिपार्टमेंट ने एक अलग भूमिका ली, उनको ऐसा लगने लगा कि हमारे में आ जाएंगे, हमारे में से कुछ जाएगा, उन्होंने विरोध किया, बाकी किसी ने विरोध नहीं किया. तो मेरा कहना है कि माननीय पंतप्रधान जी को कि उन्होंने इतने संवेदनशीलता से इन लोगों के लिए किया है, जब वो चीफ मिनिस्टर थे
1: जी.
0: तब उन्होंने गुजरात में 2,00,000 मकाने विमुक्त घुमंतुओं के लिए बनाई
1: बनाई, क्या बात. और ये बहुत बड़ा कार्य है और बहुत लंबे समय तक, जैसा आपने कहा कि एक कमीशन होनी ही चाहिए उनके लिए लगातार, तभी और हर तरह के मामले जहाँ आ सके एड्रेस हो सके. दादाजी दादी जी, एक बहुत लंबी जर्नी है, 55 वर्षों से भी अधिक आपकी, और जो एक स्कूल से शुरू होती है और धीरे धीरे वो देश के 20 करोड़ लोगों से भी अधिक, जैसा आपने कहा, उनको उनका सम्मान भी, उनका जीवन भी, सब कुछ वो वापस मिलने का पूरा अधिकार है, और उस पर आपने बहुत बहुत बड़ा काम किया है. मैं अंत में आपसे संक्षिप्त में एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि पद्मश्री अवार्ड की बात होती है, हम जानते हैं बहुत बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ा सम्मान है. उस समय आपकी क्या महसूसता थी या क्या फीलिंग थी जब इसकी घोषणा हुई या जब आपको प्राप्ति हुई?
0: जब मैंने मेरा कमीशन का रिपोर्ट गया था
1: जी,
0: तो माननीय पंतप्रधान जी ने वो डिटेल से देखा था, इसलिए उनके मन में भी कुछ बातें थी
1: जी.
0: तो 2021 को मुझे पद्मश्री मिली, लेकिन 2022 को
1: जी
0: उन्होंने मुझे पद्मश्री के सिलेक्शन कमेटी का सदस्य बनाया.
1: अच्छा जी, क्या बात.
0: इसलिए मुझे तो जानकारी थी
1: जी,
0: कैसे 1,000 लोगों का एनालिसिस मैंने किया था
1: जी,
0: उसमें वो जानकारी तो थी जिस तरह के थे. और ये गवर्नमेंट का विशेषता और नरेंद्र भाई मोदी का जो विजन है वो पुराना जो है ये हटके अलग
1: जी,
0: कि वही ढूंढते हैं कहाँ है लोग, वो ढूंढ कर लाते हैं और उनको पद्मश्री देते हैं. वे अपने जगह पर 30-40 भर काम करता है, उनको ढूंढ कर देते हैं. कोई केवल शहर का सुशोभीकरण, कोई चित्र उसको निकालते हैं, बोलना नहीं आता, चर्चा नहीं करते, ये चित्र निकालते हैं. ऐसे एक महिला को उन्होंने बुलाकर उनको भी सम्मानित किया था
1: जी.
0: तो ये मुझे मालूम था. तो 2023 को
1: जी
0: एक्चुअल मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं किया
1: जी. अच्छा,
0: अन्य लोगों ने किया, कोई मित्रों ने किया, और उसके आधार पर उन्होंने सिलेक्शन किया. 2023 को उन्होंने मुझे दे दिया, लेकिन उसकी प्रक्रिया मुझे मालूम थी
1: जी,
0: कि कितना सूक्ष्म विचार कर है, हम एनालिसिस करते हैं कोई आरजे का, एप्लीकेशन का, कितनी बातें उसमें करनी पड़ती है. तो मैंने उसका देखा था
1: जी जी,
0: जी। परीक्षक मैंने
1: हजार से भी ज्यादा
0: देखा था
1: जी।
0: इसलिए पहले तो भावना थी ठीक है
1: जी,
0: हमने जिसको दिया था ऐसे लोग थे, तो जो काम था ऐसा काम था उनको देना चाहिए था
1: जी।
0: ये काम भी ऐसा है कि एक काम करने वाले को देना चाहिए था, तो उन्होंने मुझे जो सोशल वर्क के लिए दिया है
1: जी,
0: लेकिन उसमें भी उन्होंने विमुक्त घुमंतों के काम के लिए ये पद्मश्री दिए
1: जी।
0: तो इसलिए बहुत अच्छा लगा कि जिस काम के लिए गत 50 बरस सोशल एक्टिविटीज में मैं 50 बरस हूँ, केवल विमुक्त घुमंतों नहीं, एससी एसटी ओबीसी वंचित कोई भी इनका काम के 50 बरस में कर रहा हूँ, तो इनमें किसी को कोई राहत मिलती है
1: जी,
0: तो बहुत आनंद भी होता है। और पहली बार
1: जी
0: विमुक्त घुमंतों में काम करने के कारण मुझे वो मिला है, ये तो विशेष बात है
1: बहुत,
0: तो इसके लिए बहुत आनंद हो गया। जो काम हमने किया, जो कमीशन में चलाया, जो बोर्ड का मैं अध्यक्ष था, ये सब ध्यान में लेकर
1: जी
0: तो ठीक है, उन्होंने तो दिया, इसका बहुत आनंद भी हुआ
1: जी।
0: और आश्चर्य तो नहीं लगा क्योंकि
1: तो
0: मुझे इसकी जानकारी किस तरह का है विषय तो मालूम थी
1: जी,
0: इसलिए आश्चर्य तो नहीं हुआ
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंत में अगर मैं आपका ही नाम लूं, ये भीकू राम जी दाते जी, तो आप कौन है या आप अपने बारे में कौन से दो शब्द कहेंगे जो हम आप...
0: एक थोड़ा इसका एक्सप्लेन में करता हूँ
1: जी।
0: मेरे माता पिता को मेरे पहले 5 संतान नहीं रहे, तो एक अलग गांव में रहते थे हम, हमारे जो इधर थे घराने के जो लोग थे उन्होंने वापस हमें लाया टेटोले हमारे मूल गांव में, और वहाँ मेरा जन्म हुआ। तो मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता ने परमेश्वर का ऐसे प्रार्थना की थी कि अभी ऐसा करो हमें एक भीख दे दीजिए, भीख डालो हमारे क्योंकि हम कोई संतान नहीं है
1: जी।
0: अब मेरा जन्म होने के बाद उन्होंने मेरा नाम भिक्खू रखा क्योंकि परमेश्वर ने दी हुई भीख है, इसलिए इस नाम से मैं किसी को छेड़छाड़ करना नहीं देता। मेरे माता पिता की जो भावना है वो इससे जुड़ी हुई है, लेकिन माता पिता शिक्षित तो नहीं थे, लेकिन वो उनके उन्होंने जो संस्कार दिए, जो कष्ट उन्होंने झेले मैंने आंखों से देखे है, तो वही मेरे जीवन की एक प्रेरणा रहती है। और संघ में आने के कारण
1: जी
0: पूरा जीवन मेरा बदल गया
1: जी।
0: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण पूरे देश में मैं इस विषय के आधार पर गया, पूरा देश देखा, असित हिमाचल मैंने प्रवास किया है
1: जी,
0: 6 बार देश का प्रवास मैंने किया है। जो एक गांव में एक छोटे से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, वहाँ छोटे छोटे लोगों के साथ खेलने बागड़ने वाला एक छोटा लड़का, केवल एक संस्कार के कारण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार के कारण, हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए, ये मेरा देश है, ये भावना मन में आ गई और धीरे धीरे उन्नत हो गई और आज मैं इस पायदान पर आया हूँ, ये मेरा मैं उल्लेख कर सकता हूँ
1: जी। ऐसे माता पिता को भी हम नमन करते हैं
0: जी,
1: और क्योंकि जैसा आपने कहा उनका जीवन, उन्होंने बहुत कष्ट देखे, परंतु जो शिक्षा के प्रति आपने जैसे कुछ इंसिडेंट सुनाए और बहुत भावुक करने वाली बातें हैं कि आपके लिए जो किताबें उन्होंने कहा कि आप खरीदिए, ऐसे माता पिता का बहुत बड़ा रोल है। और जो भी ये कार्य हुआ है संपूर्ण भारत में आज, उसके लिए आपका और उनका भी मुझे लगता है पूरा भारत आभार मानेगा और मानता ही है। सभी को धन्यवाद करते हुए, नमन करते हुए आज हम इस एपिसोड को समाप्त करेंगे। और आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमें जो भी इतिहास आपने बताया, जो भी बातें बताई, बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो शायद हमें संक्षिप्त में मालूम है लेकिन उसकी गहराइयां नहीं पता, और आज हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। तभी वो उन्नति की ओर हम भी अपना योगदान दे पाएंगे एक भारतीय होने के नाते। तो आपका हृदय से आभार यहाँ आने के लिए।
0: आपका भी धन्यवाद क्योंकि आपने बुलाया और व्यक्त होने का एक एक संज्ञा आपने दे दी, इसलिए आपका भी आभार।
1: धन्यवाद। तो दोस्तों फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत, जुड़े रहिए रेडियो मधुबन के साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।

0: मैं हूं वजाहत हबीबुल्ला और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी संगीत प्रेमी मित्रों का स्वागत है। संगीत को प्यार करने के लिए उसकी गहराई के साथ साथ एकांत भी आवश्यक है, क्योंकि वहां सप्त सुरों का प्रकाश अविरत चलता रहता है, जैसे सात समंदर, सात रंग, सात दिन और उसके साथ साथ आत्मा रूपी शक्ति के भी सात गुण, जैसे सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। वैसे ही संगीत के सात सुर को भी हम कभी भी बंधन में बांध नहीं सकते। एक संगीत शिल्पी इसी माधुर्य से अपनी कला प्रदर्शित करता है, इसलिए सात सुरों को जानना, सुनना और परिवेशन करना भी दायित्व हो जाता है। कैसे हो सकता है उनका ये दायित्व एक संगीतकार के लिए, ये हम सुनते हैं हर बार की तरह। श्यामली जी हमारे साथ मौजूद है। श्यामली जी, संगीत की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: मैं भी सबको नमस्कार करती हूँ।
1: श्यामली जी, संगीतकार के दायित्व के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो क्या वो संगीत शिल्पी जो इतनी मेहनत करता है, संगीत को अपनाता है, उसकी गहराई में जाकर उसके लिए सब कुछ अर्पण कर देता है अपना?
2: हाँ जी, वो तो ये है ही,
1: क्योंकि उसके बिना तो वो पॉसिबल ही नहीं है।
2: हाँ।
1: संगीत को जानना, सुनना,
2: अपने से ही किया है।
1: तो सुनने के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए कि संगीत कला, इसको अगर अपनाना है, सीखना है, तो सुनना कितना महत्वपूर्ण होता है?
2: हाँ, सुनना तो अगर 80% सुनना है,
1: अच्छा
2: 20% हमको प्रवेशन करना है।
1: ओके।
2: देखिए, पिछले जमाने अगर हम मीराबाई की कहानी सुनते हैं, मीराबाई जैसे एक संगीत जो है झरना जैसी है, झरना को कभी आप रोक नहीं सकते हो।
1: जी,
2: अगर संगीत प्रेमी है जो संगीत को जिंदगी बना लिया, उसको कभी आप बंद नहीं कर सकते हो। जैसे आपने बताया ना कि सात स्वर को हम बंद नहीं सकते, क्योंकि मीराबाई के अंदर सात स्वर की जो है सप्तक की जो रचनाई था अंदर की, उसके अंदर में तो कभी बांध नहीं सके।
1: सात सुरों का रस जो उनके अंदर था,
2: तो वही निकल आए थे ना, योगिनी बन गए थे बाद में, राजा की राज दुलारी बाद में योगिनी बन गए। ऐसे बहुत सारे कहानियां हैं कि संगीत एक प्रेमी जो होता है ना, सात स्वर के अंदर ही वो रहते हैं सारा दिन, इसलिए ज्यादा सुनते हैं। किसी के वो होता है अंदर में छुपा रहते हैं, पिछले संस्कार होते हैं, लेकिन अगर जो प्रेमी होता है जितना गहरे में जा रहे हैं, तब भी उसका जो प्यास नहीं बुझते हैं।
1: जी जी।
2: तो इसलिए ज्यादा सुनना है। अगर कोई अच्छे कलाकार बनना चाहते हैं, मैं यही टिप्स देना चाहती हूँ, कोई अच्छा कलाकार बनना चाहते हैं, उसको पहले सुनना है।
1: पावर टू लिसन।
2: यस, पावर टू लिसन, श्रुति, इसलिए इसका नाम श्रुति भी है संगीत का नाम, क्योंकि सुनना है। सुनने के बाद उसको अपनाना है, सात सुर का, सारे गामा पाधानी, ये तो सुनने का चीज है, सुन कर अपनाना है।
1: okay.
2: अगर नहीं तो बेसुरा कहते हैं ना। तो इसलिए जो पिछले हम जितने सारे उस्ताद जी ने हमारे सामने दायित्व पेश किए हैं, तो हमारा भी दायित्व है ऐसे कि सुनने के बाद पेश करना है।
1: जी।
2: सुनने के बाद जानना, उसके बाद सुनाना।
1: ओके।
2: okay. है ना, पहले हमको सुनना है, जानना है, समझना है, उसके बाद सुनना है, तब जाके एक संगीत प्रेमी सफल होते हैं।
1: अच्छा श्यामली जी, लास्ट एपिसोड में हमने तिलक कामोद के स्वर लिपि देखी।
2: हाँ जी।
1: और उसकी बंदिश भी छोटी सी देख ली थी। आज आप हमें उसमें क्या सिखाने वाले?
2: स्वर लिपि हमने दे दिया, तो अभी बंदिश बाकी है
1: जी,
2: तान बाकी है, वो आज हम दिखा देंगे। ठीक है
1: जी।
2: तो बंदिश अगर लिख लेते हैं लिसनर, बहुत अच्छा है, तीन तल के ऊपर है। नीर भरने कैसे जाऊ सखी अब।
1: अच्छा।
2: राधा कह रहे हैं। आपको बताया ना, प्रकृति थोड़ा चंचल है। नीर भरने कैसे जाऊ सखी अब, डगर चलते मुसे करते रार में। किशन जी तो रार करते हैं हर टाइम राधा के साथ, तो इसका भाव जो है नीर भरन कैसे जाऊ सखी अब डगर चलते मुसे करते रार मैं नीर भरन कैसे जाऊ अब। अंतरा है ऐसो चंचल चपल हट नट खट मन, ऐसो चंचल चपल हट नट खट मन तन्ने काहू की बात बिनती करते मैं गैर हार, ऐसो चंचल चपल हट नट खट मन तन्ने काहू की बात बिनती करते मैं गैर हार नीर भरन कैसे जाऊ सखी अब मैं नीर भरन कैसे जाऊ करके सुनाती हूँ।

0: तिलक कमोद की जो बंदिश आपने सुनाई,
1: हाँ जी,
0: इसी के साथ हम भी अपने श्रोता मित्रों को इसी राग का एक सुंदर सा गीत सुनाना चाहेंगे। ब्रेक में हम पुनः लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: पुनः आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक में आप सभी ने तिलक कमोद राग से संबंधित गीत का आनंद लिया। श्यामली जी से ब्रेक से पहले हमने बंदिश सीखी, अब श्यामली जी हमें आगे क्या सिखाएंगे?
1: हाँ, बंदिश सिखा दिया तो अभी क्या करेंगे, थोड़ा बिस्तर सिखाएंगे, थोड़ा तान वगैरह सिखाएंगे, तो करके सुनाती हूँ।

0: बहुत प्रैक्टिस के बाद ही ये कर सकते
1: हैं। हाँ, इसमें थोड़ा इधर उधर थोड़ा है ना
0: जी,
1: स्वर जी हमने प्रयोग किया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है, करना है, शिक्षा लेना है गुरु के पास
0: जी,
1: ठीक है, मेहनत करना है थोड़ा।
0: ओके, जाते जाते श्यामली जी, आज आप हमारे लिए क्या लेकर आए?
1: आज तो बहुत सुंदर एक गीत हम लाए हैं आशा जी का
0: जी,
1: सारंग फिल्म का गीत है, सारंगा
0: सारंगा
1: हाँ, फिल्म का गीत आशा जी का, कोशिश कर रही हूँ, ठीक है।
0: ओके

0: गीत के साथ साथ हमको भी चलना पड़ेगा
1: जी।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
1: आशा
0: चलने से पहले बहुत सुंदर गीत।
1: आशा जी ने बहुत अच्छा निभाया है
0: जी। श्यामली जी, इसी के साथ आज लेते हैं हम इजाजत। पुनः मिलेंगे अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं संगीत के विषय में या कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप हमें तुरंत कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 94-1415-1415। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4।

0: This is Uma Shankar Mishra, former director CBI, and you are listening to Brahma Kumari's community radio station. Radio Madhuban, keep listening, keep smiling.
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप. कार्यक्रम है लव यू जिंदगी. दोस्तों, कभी कभी ना जब हम पढ़ाई करते हैं तो कुछ सब्जेक्ट टफ लगते हैं, कुछ आसान लगते हैं, पर फिर भी जिंदगी का सब्जेक्ट सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है. कभी कभी कभी कभी अपनी भावनाओं को समझना ही आसान नहीं लगता, और लगता है बाकी चीजें तो समझ में आ रही है पर खुद को कैसे समझे. तो अगर सवाल आपके दिल में भी है तो जवाब हमारे पास है, क्योंकि ये कार्यक्रम ही ऐसा है. दोस्तों, हमारे साथ जुड़ जाते हैं हमारे एक्सपर्ट. सबसे पहले हम स्वागत कर रहे हैं कल्पना जी का. सीधा ग्लोबल अस्पताल से आप हमारे साथ जुड़ गए हैं. आप एक साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं, और बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं रेडियो के माध्यम से भी. आपके साथ जुड़ते रहते हैं हम. दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: शुक्रिया आरुषि जी. बहुत अच्छा लगता है अपने श्रोताओं से मिलकर, उनसे बातें करके, और खास कर अपने इमोशंस को उनके साथ शेयर करके. जो हल्कापन, जो रिलैक्सेशन फील होता है, वो किसी और ही लेवल का होता है.
1: बिल्कुल, और वो हम समझ रहे हैं धीरे धीरे, बहुत इजीली समझ रहे हैं, आसान भाषा में समझ रहे हैं. हमारे साथ जुड़ गए हमारे दूसरे एक्सपर्ट श्रीनिधि जी, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है, साथ साथ जाने माने एंकर और आरजे भी है. श्रीनिधि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है.
3: बहुत बहुत शुक्रिया आरुषि जी. कल्पना जी नमस्कार, हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार. और एक और लव यू जिंदगी के एपिसोड में आते हैं तो कुछ और सीखने की तैयारी के साथ में वापस आ गए.
1: और हम बात कर रहे थे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी अपनी भावनाओं, यानी इमोशंस के बारे में. पिछले एपिसोड में भी बातें हुई थी, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे. और सबसे पहले एक सवाल आया था जो मैं आप दोनों से ही जानना चाहूंगी, वो ये, किसी ने पूछा कि बहुत अच्छा चल रहा होता है सब कुछ, कुछ चेंज भी नहीं हुआ होता है, लेकिन अचानक से बुरा लगने लगता है या डाउन लगने लगता है, लो फील होने लगता है, और कुछ हुआ भी नहीं होता है, तो ये अंदर क्या बदल जाता है कि ऐसा होता है कि अंदर उदासी लगने लगती है विदाउट एनीथिंग हैपनिंग, कैसा होता है, ऐसे क्या समझे?
2: जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है. हमारी लाइफ एक, जैसे बोलते हैं ना, हार्ट का ये होता है, स्कैनिंग होती है, एनालिसिस होता है, तो हमारी लाइफ सीधी सीधी रेखा में नहीं है, तो हमारा ग्राफ कभी ऊपर कभी नीचे मूड का हो सकता है. इसमें बहुत ज्यादा हाथ होता है हमारे ब्रेन के केमिकल्स का. कई बार हमारी ब्रेन में कुछ ऐसी गड़बड़ियां उत्पन्न होती है कुछ समय के लिए, जिससे हमारा मूड, हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्टेड होती है. और इसके लिए जब इस बात की समझ आती है कि ब्रेन के केमिकल्स का कुछ अप डाउन है, तब डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है. किसी काउंसलर या किसी गाइड या साइकोथेरेपिस्ट को मिलकर इसके बारे में पूछताछ करना जरूरी है. परंतु ये हमारा जो सिम्टम है, ये 3 हफ्तों से ज्यादा अगर चले तभी हमें डॉक्टर की सलाह की जरूरत. अदरवाइज तो 24 घंटे में भी 3

0: है तो हो सकता है मैंने नींद नहीं अच्छे से की है, तो मैं अच्छी नींद ले लूं। मूड ठीक नहीं है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, हो सकता है मैंने खाना ठीक से नहीं खाया है या मुझे समय पर खाना नहीं मिला है, नींद नहीं हुई है। दूसरा, हो सकता है मैंने बाहर थोड़ा एक्सपोजर नहीं किया, बहुत लंबा समय तक अंदर ही अंदर बैठ के काम किया है, जैसे कई लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं और घर में बैठे रहते हैं, बाहर जाते नहीं है, तो बाहर की खुली हवा का, नेचर के सानिध्य का एक्सपोजर नहीं हुआ है, तो बंद बंद वातावरण में हो सकता है मेरा मूड खराब। तो सबसे पहली बात है अपने पैटर्न्स को पहचानना, और दूसरी बात है उस उदासी भरे मूड से अपने आप को बाहर निकालने की स्ट्रैटेजी बनाना। तो स्ट्रैटेजीज में हम क्या बना सकते हैं कि म्यूजिक सुन लिया, शॉर्ट ब्रेक ले लिया, 10 मिनट का एक्सरसाइज कर लिया, पानी पी के बाहर घूम के आ गए, खुली हवा में चले गए, किसी दोस्त से बात कर ली। ज्यादातर समय पर हमें जिस जगह पर हम हैं वहां से दूर किसी नेचुरल जगह पर जाकर खुली हवा में सांस लेने की आवश्यकता होती है। सो इस तरह से हम अपनी स्ट्रैटेजीज को बना सकते।
1: ओके इंटरेस्टिंग। तो पहले मतलब फिगर आउट करें या पहले उससे बाहर निकलने की स्ट्रैटेजी बनाएं, पहले क्या करें?
0: नहीं, पहले फिगर आउट करना जरूरी है, अपने पैटर्न को पहचानना जरूरी है। जैसे कि महिलाएं होती हैं, उनमें मूड स्विंग्स तब होते हैं जब उनको पीरियड्स आने वाले होते हैं या पीरियड्स जा रहे होते हैं, या पीरियड्स के पहले 3-4 दिन और उसके बाद 1-2 दिन उनका मूड डिस्टर्ब रहता है। तो ये पैटर्न है, इस पैटर्न के लिए हम स्ट्रैटेजी बना सकते।
1: तो हमें समझना है और फिर उसको स्ट्रैटेजी बनानी है। उसके लिए परेशान होने की बहुत जरूरत नहीं है कि क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्या हो गया। मतलब वो हम कभी कभी सिनारियोज इमेजिन करने लगते हैं, इसकी बात बुरी लगी, उसकी बात बुरी लगी, बुरा लग रहा है, और फिर ढूंढने लगते हैं कि किस बात से बुरा लगा। तो उस पर ज्यादा ओवर थिंक ना करें, पैटर्न को समझें और स्ट्रैटेजी बनाएं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच है। श्रीनिधि जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें?
2: मैं समझता हूँ जो कल्पना जी बात कह रहे थे, हम अक्सर ये अपने आप को रीड करने के बारे में सोचते नहीं। जब मूड खराब है तो ये समझने की जरूरत है कि क्यों खराब है। कभी कभार जैसे रिपीटेडली मूड खराब होता है, या समझ लीजिए एक पैटर्न बना हुआ है कि ये चीजें होती है तो मेरा मूड खराब होता है। जैसे कल्पना जी कह रहे थे, समझो आपको भूख लगी है, आपको खाना नहीं मिला है, तो चिड़चिड़ा होना स्वाभाविक है। बहुत सारे लोगों को, मैं भी होता हूँ, कि अगर मैं भूखा हूं और मुझे खाना खाने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि कोई मेरे को खाना खाने से रोक रहा है, बट मैं काम एक के बाद एक काम आता जा रहा है, कोई मिलने आ रहा है, फिर मतलब मैं मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही है, या मैं थोड़ा अपने आप को स्पेस देना चाहता हूँ, एक काम से दूसरे काम के बीच में मैं थोड़ा सा गैप रख पाना चाहता हूँ और वो नहीं हो पा रहा है, तो मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। मैं समझता हूँ इस बात को और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर जब ऐसी सिचुएशंस हो रही होती है तो मैं जानबूझ के उसके बीच में स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करता। तो कोई व्यक्ति मेरे ऊपर हावी हो रहा होता है और बोलते नहीं हमको अभी टाइम चाहिए, तो अब मैंने ना कहना सीखा है, मैंने कहा है कि नहीं अभी मैं नहीं दे सकता, 10 मिनट बाद आप मेरे से मिल सकते हैं। तो मैं इस तरीके से अपने लाइफ स्टाइल के बीच में मैं ऐसे मोमेंट्स चुरा रहा हूँ, अपने लिए स्पेसेस क्रिएट कर रहा हूँ, जिससे मैं अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से मैनेज करता हूँ। और खाने की बात तो है कि मैं खाने के टाइम पे किसी और चीज को टाइम नहीं देता। मैं कहता हूँ भाई मैं खाना खा के बाद में बात करूँ, अभी नहीं बात करूँ। तो बहुत बार ये ओवरवेलमिंग हो जाता है, तो इन चीजों को जानना जरूरी है कि क्या चीजें आपको ट्रिगर करती हैं, क्या चीजें आपको ऐसे जोन्स में पुश करती हैं जो आपको इरिटेट करती हैं, या आपको गुस्सा दिलाती हैं, या आपको सैड फील कराती हैं, या आपको एंग्शियस बनाती हैं, अनेक इमोशंस हैं। तो इन चीजों के बारे में खुद अपनी परख करना जरूरी है, और जब मैं अपने आप को ऐसे समझ लेता हूँ, जानता हूँ कि मैं इन चीजों से ट्रिगर होता हूँ, ये चीजें मेरे ट्रिगर्स हैं, तो फिर आपको उन ट्रिगर्स के सॉल्यूशंस भी पता होते हैं। अगर यही ना पता हो कि भाई चाकू से कट सकता है हाथ, तो फिर आप चाकू के साथ खेलते रहेंगे। जब आपको पता चल जाए कि हाँ ये मैं प्रोन हूँ इस चीज के लिए, जैसे कुछ लोगों के लिए हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि कुछ लोग कुछ इन्फेक्शन के लिए प्रोन होते हैं, उनके बॉडी में कुछ फिजिकल सिस्टम्स वीक होते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको सर्दी खांसी जल्दी हो जाती है, कुछ लोग होते हैं जो लाउड म्यूजिक या कुछ ऐसा हवा में बदलाव होने की वजह से उनको हेडेक होने लगता है। तो हम सबको पता होना चाहिए कि क्या चीजें हैं जो हम प्रोन हैं, किन चीजों के लिए हम प्रोन हैं, क्या चीजें हमें तकलीफ में डाल। तो अगर वो समझ जाते हैं तो फिर शायद उन्हें बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है।
1: ओके।

0: यानी हमें कुछ बाउंड्रीज भी सेट करनी जरूरी है जो हमें लगता है कि हमें ट्रिगर कर रही है या हमें परेशान कर रही है, जिसके कारण हमारी मूड चेंज हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, तो बाउंड्री सेट करें और ना कहना भी सीखें। ये भी समझ में आया, कई बार ना कहना नहीं आता है और मुश्किल लगता है। निधि, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि हम बाउंड्रीज क्यों नहीं बिल्ड कर पाते, या बाउंड्रीज एक्चुअली होती क्या है, क्या हमारी भावनाओं से लिंक्ड है, इसका कोई कनेक्शन है?
1: मैं बिल्कुल सहमत हूँ श्री जी से कि अपनी बाउंड्रीज को सेट करना और ना कहना सीखना बहुत जरूरी है। मैं कल का ही एग्जाम्पल बताती हूँ। कोई मुझे शेयर कर रहे थे कि अरे मैंने इनको इतना गाइड किया, कदम कदम पर इनको किया, लास्ट मोमेंट पर भी ये मुझे से पूछ रहे हैं बात, इतना डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो जब हम लोगों को अपना टाइम देते हैं और उस टाइम की हम कदर नहीं करते हैं तो लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो हमारे टाइम की भी कदर नहीं करते हैं और छोटी छोटी बात के लिए वो हमसे ही सपोर्ट लेना चाहते। तो ऐसे समय पर कोई भी व्यक्ति आपके पास आए या आपसे कुछ फेवर ले या कुछ मांगे तो आपको आपकी बाउंड्रीज सेट करने आना चाहिए कि भाई इतना तक मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ और इससे आगे आपको खुद को हेल्प करनी होगी।
0: ओके,
1: क्योंकि मेरी लिमिटेशंस ये है, इस टाइम में ही मैं आपसे मिल सकता हूँ क्योंकि इसके अलावा जो मेरा टाइम है वो मेरा मेरे लिए टाइम, मैं उसमें अवेलेबल नहीं हूँ। सो नो कहना आना चाहिए। कई प्रिय प्रेशर में आ जाते हैं कि चलो यार पार्टी में चल रहे हैं, बर्थडे पार्टी है, सब कुछ फ्री ही है, खाना पीना सब कुछ मिल जाएगा, चलो फोर्स करते आप अपनी पढ़ाई का, अपने इम्पोर्टेंट काम छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर आप पार्टीज में शामिल हो जाते। जब एक बार आप पार्टीज में गए, उनके साथ समय बिताया, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए भी वो आपको समझते हैं कि हाँ इनका टाइम तो हमारे साथ गुजारने के लिए अवेलेबल है,
0: तो ग्रांटेड ले लेते हैं जैसे आपको।
1: बिल्कुल, कई आपके काम रह जाते हैं और आपको इन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। अच्छा, इसके पीछे साइकोलॉजी ये है कि मैं सबको खुश करना चाहती, किसी को ना नहीं कहना चाहती, कोई नाराज हो गया तो, मेरे से बात करना छोड़ दिया तो, या मेरे बारे में कुछ बुरा सोच लिया तो, इसलिए हम उसको कहते पीपल प्लीजिंग पर्सनैलिटी, सबको संतुष्ट करना चाहते। लेकिन हम सबको हर समय संतुष्ट करते करते खुद की टाइम, खुद की एनर्जी, खुद का हेल्थ, खुद की नींद, खुद का कंफर्ट सब कुछ गवा चुके हो, और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं। घर की मदर्स का ऐसे ही होता है, सबको खुश करने के हाँ सिलसिले में वो खुद पर ध्यान देना ही छोड़ देती।
0: ओके, तो मतलब अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत जरूरी है और पीपल प्लीजिंग ये एक बहुत बड़ा विषय है, मुझे लगता है इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि कई बार हम इसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि खुद की पर्सनालिटी भी दूसरों की तरह बनती जाती है। या हमने पिछले एपिसोड्स में भी बात की थी कि चेंज किसके लिए होना चाहते हैं, आपने भी वो कहा था कि आप चेंज पॉजिटिवली हो रहे हैं या फिर किसी को देख के हो रहे हैं, वहां भी डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है। श्रीनिधि जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, बाउंड्रीज क्या होती है, थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें इसे।
2: बाउंड्रीज मैं समझता हूँ एक हर व्यक्ति का एक कंफर्ट का दायरा होता है, अलग शब्दों में लोग इसे कंफर्ट जोन भी कहते हैं।
0: ओके,
2: कंफर्ट जोन को आप अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो। कभी कभार हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने की भी जरूरत होती है जब हम कुछ अचीव करना चाहते हैं या फिर हम कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं या ग्रो करना चाहते हैं। मगर कंफर्ट जोन और बाउंड्री के बीच में अंतर ये है कि हम सबकी हदें हैं कि हम कुछ चीजें अपनी कैपेसिटी तक मैं इतना कर सकता हूँ, इसके बियॉन्ड कर पाना मैं अपने आप को टैक्स कर रहा हूँ, यानी मैं अपने आप को स्ट्रेच कर रहा हूँ कि मैं कंफर्टेबल तो नहीं हूँ बट मैं फिर भी मतलब अपने आप को खींच रहा हूँ कि भाई चलो ठीक है इनके लिए तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जब आप अपने आप को खींच करते हो, स्ट्रेच करते हो, तो आपको बाउंस बैक करने का भी मौका मिलना चाहिए। वो आपने स्ट्रेच किया है उसको वापस रिलैक्स होने का भी मौका मिलना चाहिए। तो ये हम सबको पता होना चाहिए कि मैं अपने आप को कितना स्ट्रेच कर सकता हूँ, क्या मेरी बाउंड्रीज हैं, क्या मेरी लिमिट्स हैं। और कभी कभार जब हम जैसे कल्पना जी अभी कह रहे थे कि पीपल प्लीजिंग पर्सनैलिटी की जब हम बात करते हैं तो हम हर चीज के लिए हाँ कह देते हैं। अक्सर अंग्रेजी में इसको यस मैन सिंड्रोम कहा जाता है कि हर चीज के लिए यस कहते हैं, और आजकल प्रोफेशनल वर्ल्ड में हम इसको कहते हैं कि यस बॉस, हर चीज के लिए यस बॉस कहना। जरूरी नहीं है कि बॉस आपसे कोई चीज कह रहे हैं, आपका काम आपसे कोई रिक्वायरमेंट दे रहा है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस चीज को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप नई चीजें करने के बारे में सोचे नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप नवीनता के बारे में, इनोवेशन के बारे में, अपने आप को ग्रो करने के बारे में सोचे नहीं। इसका मतलब ये है कि जस्ट बिकॉज आप अपने बॉस को खुश करना चाहते हैं, इसलिए आप सारा काम अपने ऊपर ले लेना चाहते हैं। आप ऑलरेडी ओवरवर्क्ड हैं, आपके पास ऑलरेडी 10 काम है करने के लिए, तो जस्ट बिकॉज आपको दिया जा रहा है, आप बोल रहे हैं हाँ हाँ ये भी दे दो कोई बात नहीं, और आपको 10 बजे 11 बजे 12 1 बजे तक लोग बैठ के काम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ना नहीं कर पाए, और इसकी वजह से उनके पारिवारिक संबंध खराब होते हैं, बच्चों के लिए टाइम नहीं दे पाते, या हस्बैंड वाइफ के लिए, या घर में पेरेंट्स रहते हैं, या जो भी रहते हैं उनके लिए हम टाइम न देकर अपने आप को ओवरवर्क्ड महसूस करते हैं। तो ये अलग अलग फील्ड्स में लागू होता है, ऐसा नहीं है कि बाउंड्रीज सिर्फ हमारे पर्सनल वेलबींग के स्पेस में है, हमारे प्रोफेशनल स्पेसेस में भी होता है। हम दोस्तों के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमारे फ्रेंडशिप्स हैं तो वहां पर हम अक्सर दोस्तों को कहते ही हैं कि भाई तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। ये कहने वाली बात तो शायराना लग सकती है कि जान हाजिर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सामने वाला मुझसे जान मांगेगा और न ही मैं जान देने वाला हूँ उसके लिए। कहने का भाव ये है कि मैं तुम्हारे लिए अपने लिमिट्स को पार करके करने के लिए तैयार हूँ, मगर क्या ऐसा आप हर किसी के लिए करना पसंद करेंगे?
0: संभव भी नहीं है, शायद
2: संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ उस रिलेशनशिप में वो गिव एंड टेक है, वहाँ पर एक कंफर्ट जोन है, हम दोनों एक दूसरे से कुछ चीजों के प्रति कंफर्टेबल हैं, परिवार में भी हम लोगों के लिए करते हैं, मगर
0: नहीं करना चाहते तो सेल्फिश फील करते हैं कि अरे मैं
2: मैंने किया नहीं,
0: मेरे दोस्त है, मेरा परिवार है और मेरी बाउंड्रीज इसमें कैसे बीच में आ सकती है, हैव टू गिव।
2: जैसे अभी कल्पना जी होम मेकर्स का उदाहरण दे रहे थे, ऐसे महिलाएं जो घर का काम सारा देखती हैं, घर संभालती हैं, वो अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है घर संभालना, तो वहां पर भी उनको अपना स्पेस चाहिए। जब कोविड का समय था, कोरोना काल था, उस समय पर हमने देखा कि बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज्यादा स्ट्रेस फेस करना पड़ा, क्योंकि बच्चे भी घर पे हैं, हस्बैंड भी घर पे हैं, और जो लोग घर से बाहर चले जाते थे तो सुबह उनके लिए नाश्ता बना के दे दिया, टिफिन बॉक्स पैक करके दे दिया, आप शाम को आएंगे बच्चे को उनको देखा जाएगा, हस्बैंड रात को आएंगे तो उनको देखा जाएगा, तब तक उनके पास एक ब्रीदिंग स्पेस था, वो अपने लिए कुछ करना चाहते थे तो वो सब कुछ कर सकते थे, अपना टाइम टेबल था। अब अचानक वो टाइम टेबल मेसअप हो गया, ये सारे टाइम घर पे हैं और घड़ी घड़ी पूछ रहे मम्मी मेरे को ये दो ऐसा करो वैसा करो, तो उसकी वजह से स्ट्रेस लेवल्स बाउंस हो गए। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि उस समय पर एक नेचुरल बाउंड्री एग्जिस्ट करती थी कि बच्चे घर पे नहीं है, हस्बैंड घर पे नहीं और मैं अपना काम कर रहा हूँ, बट जब वो बाउंड्रीज हट गई तो सब कुछ मिक्स हो गया, तो मैनेज करना मुश्किल हो गया।
0: इसलिए कहीं ना कहीं पर्सनल बाउंड्रीज भी जरूरी है। दीदी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कुछ ऐसी भावनाएं हैं जैसे हमें लगता है कि वो प्यार है, लेकिन उस प्यार में जब हम कुछ चीजें लिमिट लगा देते हैं या बाउंड्री सेट करते हैं तो गिल्टी या सेल्फिश फील करता है, बुरा फील करता है, तो क्या ये फील करना चाहिए या नहीं चाहिए?
1: बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। गिल्टी फील करना ये सबसे बड़ी सजा है इंसान के लिए, चाहे आप गलती करो या ना करो। कई लोग ऐसे हैं जिनकी आदत होती है कि वो हमेशा गिल्टी फील करते रहते हैं। गिल्टी फील करने का कारण है लो सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ लव की कमी। खुद के महत्व को, खुद की स्ट्रेंथ को न जानकर, उसकी परवाह न करना, उसको इम्पोर्टेंस न देना, इस वजह से सेल्फ वर्थ को न जानने की वजह से गिल्टी फील करते हैं। दूसरा सेल्फ लव नहीं, खुद से प्यार नहीं करते हैं, खुद को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, इसलिए छोटी छोटी बात में जब दूसरों को हम प्रसन्न नहीं कर पाते, संतुष्ट नहीं कर पाते, तो हमें गिल्टी फील होता है। जैसे मदर का भी ही मैं एग्जांपल दूंगी, जो होम मेकर्स है उनका, कि समझो फॉर एग्जांपल एक घटना बताती हूँ, बच्चा आया स्कूल से, है ना, मैं मेरी ही लाइफ का उदाहरण देती हूँ, बच्चे को चावल पसंद है लेकिन माँ ने आज चावल किसी कारण से नहीं बनाए, रोटी सब्जी ही बना के रखी। बच्चा स्कूल से आया, उसने बोला मम्मी चावल कहाँ है, तो कहा बेटा आज तो नहीं बने हैं, आज तुम रोटी सब्जी ही खाओ। तो बच्चे ने रोना धोना शुरू कर दिया कि तुम्हें तो पता है ना मुझे चावल ही पसंद है, फिर तुमने चावल क्यों नहीं बनाए और अभी मुझे तो चावल ही चाहिए। तो माँ को गिल्टी फील होता है कि अरे मेरे बच्चे को ये चाहिए था और मैंने ये नहीं बनाया, नहीं बना पाई, अभी है नहीं घर में उस स्टॉक में। तो उसे गिल्टी फील होता है। अब बताइए, क्या उस माँ को गिल्टी फील होना चाहिए या उसे बच्चे को ऐसा ट्रेन करना चाहिए कि बच्चा जब कुछ चीज नहीं है तो उसके लिए जिद करने की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, बच्चे ने तो जिद किया, लेकिन मुझे गिल्टी फील नहीं करना है, मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, जो उसके लिए जरूरी था मैंने किया है और किसी कारण की वजह से मैं उसकी पसंदीदा चीज नहीं बना पाई। तो यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ को जानना, अरे मैंने सुबह से लेकर दिन भर इनके लिए सब कुछ करती हूँ मैं, अब छोटी सी चीज अगर मैं नहीं कर पाई तो उसके लिए मुझे गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं बच्चे के साथ बात करूंगी, उसको एंटरटेन करूंगी, उसको अच्छे से समझाऊंगी, वो समझेगा, नहीं समझा तो थोड़ी देर के लिए रो लेगा और चुप हो जाएगा, भूख लगेगी तो खा लेगा। सो ये है बच्चों का अपने माँ बाप को मैनिपुलेट करने का तरीका। अब वो हमारी भावनाओं से खेल रहे
3: हैं
1: और हम गिल्ट में चले जा रहे
3: हैं। ओके,
0: तो फील नहीं होना चाहिए मतलब। लेकिन दीदी, जैसे ये आपने एक मदर के कॉन्टेक्स्ट में बताया, क्या मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी, कुछ यूथ के कॉन्टेक्स्ट में भी हम इससे समझ सकते हैं क्या कि कब वो गिल्टी फील करते हैं या मतलब नहीं जहां उन्हें करना चाहिए? कई चीजें तो ऐसी भी हैं जो समझनी चाहिए, लेकिन कई चीजें क्या ऐसी हैं जो गिल्ट में ले जाती हैं पर नहीं होना चाहिए? लाइक हम मॉडर्न रिलेशनशिप्स में भी देखते हैं, फ्रेंडशिप में भी देखते हैं, क्या ये वहां पे भी कुछ इस तरह की चीजें आती हैं जो हमें लगता है हम इसे नाम दे देते हैं दोस्ती का या प्यार का, लेकिन फिर हम खुद ही गिल्ट में जाते जाते हैं या फिर बुरा फील करते जाते हैं? क्या ऐसा उस कॉन्टेक्स्ट में भी क्या हम थोड़ा और समझ सकते हैं इस बात को? श्रीनिधि जी या दीदी, आप में से कोई?
2: मैं समझता हूँ ये एक ऐसा चीज है जहाँ पर रिलेशनशिप्स की जब हम बात करते हैं, ये जरूरी नहीं कि ये फैमिली के रिलेशनशिप्स हो, बच्चे या माँ के बीच में हो, मगर ये सारे ही रिलेशनशिप्स पे लागू करता है। आपने फ्रेंडशिप्स की बात कही, मैं वर्क प्लेस रिलेशनशिप्स की भी बात करता हूँ। अगर आप कोलीग्स के साथ काम करते हैं तब आप कुछ ऐसा कह सकते हैं या कर सकते हैं जिससे सामने वाले व्यक्ति को आप गिल्ट फील करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि मैं हर दिन किसी के काम में मदद करता हूँ, ठीक है, और क्योंकि मैं हर दिन ही कर रहा हूँ, इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि मतलब मैं जब भी मदद मांगूंगा ये व्यक्ति मेरे लिए अवेलेबल, ऑफिस का ही काम है, समझ ले कि मैं किसी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मदद कर रहा हूँ, मगर आज मेरा कुछ और काम निकल आया जिसकी वजह से मुझे बैंक जाना पड़ रहा है और उसी समय उस व्यक्ति ने मुझे बुलाया और कहा कि भाई आप आओ, ये काम अभी करना है अर्जेंट, और मैंने कहा कि नहीं मैं अभी बैंक जा रहा हूँ, कोई और मेरा इंतजार कर रहा है मुझे उसके जाना है। तो अब उन्होंने कहा अरे मेरी जरूरत नहीं होती तो मैं आपको क्यों बुलाती, जरूरत के समय पर तो दोस्तों की मदद की जरूरत होती है ना, आप तो बैंक चले जाना चाहते हो। तो अब मुझे ये गिल्ट फील होता रहेगा कि भाई ये जरूरत के टाइम पे मदद नहीं की, क्योंकि हमने ये चीज सुनी हुई भी है कि भाई जरूरत के समय पर तो मदद हमेशा देने की जरूरत है। अब मैं इस चीज को कैरी फॉरवर्ड करके चल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, जरूरत के समय पर उनके काम नहीं आया। बिल्कुल, हम अंग्रेजी में ये कहावत सुनते हैं, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, पर सही अर्थों में अब मैं दोस्त ही नहीं रहा।
0: ये फील होता है मैं अच्छा दोस्त ही नहीं हूँ।
2: हाँ, और आप अपने आप को उस लेवल के साथ अब चला के चल रहे हो कि भाई मैं तो ऐसा हूँ, बट एक्चुअल रियलिटी में ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति हमेशा मौजूद हो, अवेलेबल हो, हर चीज को कर सके, ऐसा संभव नहीं होता। हर एक व्यक्ति के अपने लिमिटेशंस हैं, हर एक व्यक्ति अनेक चीजों से घिरा हुआ है, हर एक के अपने अपने रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो इन चीजों को समझ कर चलना शायद आवश्यक होता है। और दोस्तों में जब ये खास चीज होता है तो तब हम अक्सर समझाने का प्रयास नहीं करते। जब ऐसे कोई लेबल्स पास किए जाते हैं, आपको गिल्टी फील करा दिया जाता है, तो आप उस गिल्ट को कैरी करते हैं, और उस समय पर ये आवश्यक होता है कि हम कैसे इस चीज को प्रोसेस करें। ऐसी घटनाएं होती हैं, बट उन घटनाओं को प्रोसेस करने के तरीकों के बारे में समझना
0: होता है।
2: कल्पना जी बता सकते हैं कि भाई ऐसे अनेक घटनाओं को लोग संजो कर रखते हैं जिसमें वो उन्हें अपने आप को गिल्टी फील कराया और गिल्ट लेके चल।
0: भारीपन वो गिल्ट।
1: जैसे ऑफिस में जब हम काम करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जो भी काम आता है उसको पेंडिंग में रखते जाते हैं, है ना, फाइल के ऊपर फाइल, फाइल के ऊपर फाइल पेंडिंग रह जाती, और फिर हमें स्ट्रेस आता है उन पेंडिंग फाइल्स को देखकर कि अरे इतनी ज्यादा हो गई। इमोशंस का भी ऐसे ही, इमोशन को भी अगर हम पाइल अप करते जाएंगे, जैसे गिल्ट को, बचपन से लेके बड़े होने तक मैं गिल्ट को कैरी कर रही, बचपन में मैंने कुछ गलत किया उसका गिल्ट कैरी किया, मेरे से कुछ गलत हुआ बचपन में उसका गिल्ट कैरी कर लिया, तो वो आदत बन जाती है गिल्टी फील करने की। और हर छोटे बड़े जिसमें मुझे गिल्टी फील करने की जरूरत भी नहीं है, मैंने कोई गलती नहीं भी की, उसमें भी मुझे गिल्टी फील होता है, सेल्फ ब्लेम शुरू हो जाता है, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, मेरे कारण सबको तकलीफ हो रही, इस तरह से खुद को विक्टिम बना लेते। तो अब क्या करना है, जो फाइल्स हम पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग में डाल रहे हैं ना, उसको उसी समय क्लियर करना है। समझो कि फॉर एग्जांपल किसी के साथ आपकी कोई बात हो गई, आपसे कुछ गलती हो गई या आपको गिल्टी फील हुआ, अब वो गिल्टी कॉन्शियस को हम कैसे रिलीज करें? तो सबसे पहले है जिसके साथ आपको गिल्टी फील होता है उनके साथ जाकर बात करें, तुरंत जाके सॉरी भी कहने की जरूरत नहीं, बात करें, एक नॉर्मल बात करें, एक्सेप्ट करें कि मेरे से गलती हो गई, इस बार ये छोटी सी गलती थी, कई बार मेरे से बड़ी भी गलतियां हो जाती है, इसी कोई बात नहीं है, और इंसान अगर जिंदा है तो उसे गलती ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, तो गिल्ट फीलिंग को उसी समय रिजॉल्व करना है, जाकर बात करो सामने वाले से, सॉरी कह दो एक बार, बार बार सॉरी कहना भी आपकी लाचारी को दर्शाता है, और उस बात को भूल जाओ, सामने वाले से फिर नॉर्मल व्यवहार में आ जाओ, फिर उस बात को बार बार याद नहीं करो, तो मैं बार बार उसी बात को सोचती रहूंगी, वो मेरा ऑब्सेशन हो जाएगा, फिर वो गलत बात मेरे दिमाग से नहीं निकले। सो गिल्टी फील करने की जो फाइल्स है उसको पाइल अप ना करे, उसी समय उसे रिजॉल्व कर दे।
0: रिजॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। दीदी, क्या हम जाते जाते कुछ ऐसा मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं जो हमने अभी तक जो पाइल अप करके रखा है उसको कहीं ना कहीं हम रिजॉल्व कर सकें?
1: बिल्कुल। सो अपनी गिल्ट को, अपने नेगेटिव इमोशंस को ओवरकम करने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस की बहुत आवश्यकता है, और पॉजिटिव अफर्मेशंस हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ाते हैं। हर एक इंसान के अंदर कुछ न कुछ गुण और शक्तियां होती है, उन शक्तियों को हम याद करें, उन स्ट्रेंथ्स को याद करें और अपने आप को याद दिलाएं, आई एम वर्थ टू लिव, मुझे जीने का हक है और मुझे खुशी से जीने का हक है। तो आइए चलिए कुछ मिनटों के लिए एक निश्चित स्थान पर आराम से बैठ जाएं, गहरी और लंबी सांस लें, अपने सांसों को ऑब्जर्व करें, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर एकाग्र करें, अपने मन के विचारों को सांसों की लयबद्धता के साथ ट्यून करें। जैसे ही मैं गहरी और लंबी सांस ले रही हूं, मेरा मन और शरीर शांत शांत शांत और रिलैक्स हो रहा, अनुभव करें उस शांति और रिलैक्सेशन का, अपने आप को याद दिलाएं, मैं एक मनुष्य के रूप में एक महत्वपूर्ण इंसान हूं, सृष्टि नाटक का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हूं, मैं अपने लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हूं, अपनी स्ट्रेंथ्स को याद करें, मुझ में ये गुण विशेषताएं हैं, अपनी काइंडनेस को, अपनी अच्छाई को याद करें, गहरी और लंबी सांस लेते हुए अपने आप से बात करें, मैं जो हूं जैसी हूं खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करती, मुझ में बहुत सारी अच्छाइयां हैं और कुछ कमियां भी, उन कमियों के साथ मैं खुद का स्वीकार करती, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई केयर माई सेल्फ। कई बार मुझसे गलतियां होती हैं, लेकिन मैं खुद के साथ कंपैशनेट रहकर उन गलतियों को आगे के लिए सुधारने में प्रयासरत रहती, मेरी गलतियों के लिए गिल्टी फील करने की बजाय मैं उसके लिए सॉरी कहकर उसके बोझ से अपने आप को मुक्त करती हूँ। हर बार मेरी ही गलती हो ऐसा जरूरी नहीं, जैसे मैं खुद की गलती को माफ करती हूँ वैसे मैं दूसरों की गलती, मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं एकाग्र हूँ, मैं खुश हूँ। धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच दीदी। एक्चुअली बहुत लाइट फील हुआ ये एक्सपीरियंस करके, और ऐसा लग रहा है सच में 5 मिनट एक्सपीरियंस करके बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, शिफ्ट आ जाता है। तो डेली अगर हम कर लें तो कितना फायदा होने वाला है हमें, सिर्फ 5 मिनट और फायदा 24 घंटे का और उससे भी ज्यादा, बल्कि फायदा ही फायदा है। थैंक यू सो मच इस एक्सपीरियंस के लिए। और फिलहाल वक्त हो गया है हमारे दोस्तों से इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, अपनी भावनाओं से भी और इस कार्यक्रम से भी। तब तक आइए जिंदगी को मिलकर कहते हैं कि लव यू जिंदगी। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
4: अभी बचे हैं दोपहर के 4 मिनट, प्रभु की याद से मन में लाए अच्छे विचार।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM और मैं हूँ आरजे शुभा। स्वागत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम नई दुनिया में, जहाँ हम मिलते हैं उन लोगों से जो अपने कार्यों से समाज में सकारात्मक बदलाव लेकर आते हैं। दोस्तों, कहते हैं प्रकृति हमारी जरूरत पूरी कर सकती है, लेकिन हमारा लालच नहीं। आज के दौरे में जब मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है, तो ऐसे समय में कुछ लोग अपने साहस, सेवा और संवेदनशीलता से प्रकृति और वन्य जीवों के लिए आशा की नई किरण बनकर सामने आते हैं। तो आज नई दुनिया नया जमाना इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गौरव चौधरी जी। आप एक सफल होम्योपैथिक चिकित्सक होने के साथ साथ पिछले 15 वर्षों से वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय हैं, और इसके साथ साथ वर्ष 2010 से अब तक 3000 से अधिक सांपों, मगरमच्छों और लकड़बगों और अन्य वन्य जीवों का सफल रेस्क्यू कर चुके हैं। साथ ही आपने इको रेस्क्यूअर्स फाउंडेशन की स्थापना कर पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव जागरूकता, प्रशिक्षण और सामुदायिक सहभागिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। डॉक्टर गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन पर।
1: धन्यवाद मैम
0: जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप एक सफल होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, लेकिन वन्य जीव संरक्षक बनने तक आपका जो सफर है, ये प्रेरणादायक सफर के बारे में हमें बताइए कि कैसे स्टार्ट हुआ इसका।
1: एक्चुअली मैम, मेरा बचपन से ही मुझे है ना नेचर से बहुत प्यार रहा है, और मैं जयपुर में जिस जगह पे रहता हूँ उसके पास में यहाँ पे जंगल है, जयपुर का झराना बहुत फेमस है। मैं बचपन से, मेरे पेरेंट्स मुझे वहाँ लेकर जाते रहे हैं और फिर मैं खुद वहाँ जाता रहा हूँ। अभी मेरी स्टडीज जो हुई है वो अलवर से हुई है, मेडिकल की स्टडी, तो मेरे अलवर भी चारों तरफ से प्रकृति से घिरा हुआ है, तो मैं रेगुलर प्रकृति में विजिट करता रहता था और मुझे प्रकृति अपनी ओर बहुत खींचती थी। और मेरा बचपन से ही मन था कि मैं प्रकृति के लिए कुछ करूं। डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक जैसे चैनल तो देखते ही थे कि जानवरों की दुनिया टीवी में ही देखने को मिलती थी, बट पास जाकर उसको देखना था कि इस दुनिया में प्रैक्टिकली कैसा होता है, तो बहुत मुझे ये चुंबक की तरह खींचती थी। तो वहां
0: जी
1: मैंने जंगलों में जाना स्टार्ट किया और इसी तरीके से मेरा सफर स्टार्ट हुआ। फिर कोई मुझे एक गुरु मिला जिसके अंदर मैंने चीजें सीखी, रेस्क्यू सीखे और ट्रेनिंग लिए, आगे इसकी स्टडी की, तो ऐसे में मेरा ये सफर चलता रहा और आज 15-16 साल हो गए इस सफर को करते हुए।
0: जी सर, जानना चाहेंगे आपके गुरुजी के बारे में, कौन गुरुजी थे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, सिखाया?
1: मैम अलवर सी थे, चिन्मय मकमसी नाम के थे, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी सन 2010 में अगस्त में, मुझे आज भी ध्यान है, अगस्त में मेरी मुलाकात हुई थी और मेरा सफर वहीं से स्टार्ट हुआ था। और उससे पहले अगर मैं बात करूं तो इस लाइन में लाने के लिए जो मेरे को जिन्होंने प्रेरणा दी, क्योंकि ये नहीं पता था कि इस लाइन में जाना कैसे है, बस मन था कि जाना है, कुछ करना है, बट जिन्होंने प्रेरणा दी कि इस लाइन में जाना है वो डॉक्टर स्वरूपानंद सरकार है, जो मेरे कॉलेज सीनियर ही है, तो उन्होंने मुझे बताया कि चैनलाइज तरीके से तू कैसे जा सकता है, आगे बढ़ सकता है, किन किन लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकता है। और आज भी वो मेरे को बहुत गाइडेंस देते हैं, मेरे जो सीनियर है डॉक्टर सरकार, काम करने के लिए इस लाइन के अंदर।
0: जी, तो डॉक्टर सरकार जी को हम यहाँ से सलाम करना चाहेंगे कि जिन्होंने आपको इंस्पायर किया और चैनलाइज तरीका बताया, तो उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे जानना चाहेंगे कि इको रेस्क्यूअर्स फाउंडेशन की स्थापना भी आपने किया, तो इसके पीछे क्या प्रेरणा थी, इसका विजन और मिशन भी हमारे साथ शेयर करें।
1: हम इको रेस्क्यू फाउंडेशन की स्थापना 2018 से हुई, इससे पहले मैं कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने वर्क किया, बट मेरा ये था कि जो मुझे करना था तो वो मैं नहीं कर पा रहा था दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्योंकि उनके भी अपने विजन मिशन थे। और तो अब इतना साल हो गए थे, लोगों से कॉन्टेक्ट हो गए थे, लोगों से जान पहचान होने लग गई थी, काफी लोग यही कहते थे कि और तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करो, और फिर धीरे धीरे यही आया कि अब अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करके जो अपने विजन है उसको लेके चले। 18 में हम लोगों ने इसकी स्थापना की और आज 2026 में हम दो सिटीज वर्क कर रहे हैं, जयपुर और अलवर के अंदर हम वर्क कर रहे हैं, और हमारा मिशन और विजन वही है, हम प्रकृति को बचाना है और सबका साथ, प्रकृति का विकास हमारा एक मिशन है कि सब लोग सब साथ आएंगे तभी प्रकृति बच पाएगी, अदरवाइज एक गौरव, एक इको रेस्क्यू फाउंडेशन कुछ नहीं कर सकती है। ये तो एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है लोगों को लाने के लिए कि आप सब आए साथ में और प्रकृति के लिए कुछ करें।
0: जी सर, सर जब आपने शुरुआत की, आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आया होगा, तो उसमें से सबसे पसंदीदा तो नहीं कहूंगी, लेकिन सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मोमेंट आपके लिए क्या था?
1: चैलेंजिंग मोमेंट की बात तो आपने बहुत गहराई वाली कर दी है, तो हिंदुस्तान के अगर बात करूँ तो चैलेंजेस यहाँ ये आते हैं कि आज भी वाइल्ड लाइफ तो और एक वाइल्ड लाइफ तो जल्दी से सोसाइटी में फैमिली में एक्सेप्टेंस बहुत इजीली नहीं मिलती है, क्योंकि ये कि थोड़ा सा खतरनाक काम है क्रोकोडाइल सांप ये पकड़ना। और एक डॉक्टर हो के कि जब तू एक डॉक्टर बन चुका है तुझे अपना क्लिनिक देखना है तुझे कमाना है तू यहाँ पे कहाँ जा रहा है, तो वो फाइट सोसाइटी के अंदर फैमिली के अंदर मतलब फैमिली का मैं फिर भी कहूंगा तो बहुत लंबी फाइट नहीं करनी पड़ी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि इसको प्रकृति के लिए ही कुछ करना है। और आज की डेट में मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं उनका धन्यवाद भी देता हूँ कि मैं उनकी वजह से आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो ये मैम कुछ हमारे चैलेंजेस रहते हैं और काफी सारी चीजें होती है सोसाइटी में। कुछ लोग सपेरा भी बोल देते हैं हम लोगों को कि उनको ये नहीं पता कि सांपों की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी प्रकृति के अंदर, अगर वो नहीं बचेंगे तो हमारी मेडिसिन हमारे जंगल मतलब सब कुछ रिलेटेड है एक दूसरे से ही है, नेचर से ही, इंसान से रिलेटेड कुछ नहीं है। इंसान नहीं है तो प्रकृति को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर जानवर नहीं है तो प्रकृति के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
0: बिल्कुल। तो अभी जैसे सर, जैसे जानवर है और मनुष्य है, तो हम आए दिन सुनते हैं कि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट के बारे में, तो इससे सरल तरीके से आप हमारे श्रोताओं को कैसे समझाएंगे? आज डॉक्टर आप इसे बेहतर समझ पाए होंगे, और क्योंकि आपने साइंस में पढ़ाई की है, और इसलिए हम
1: तो
0: आपसे पूछना चाहते हैं ये सवाल।
1: अगर एक सिंपल लाइन में बोलूं तो यही बोलूंगा कि जियो और जीने दो। हम भी जीना चाहते हैं वो भी जीना चाहते हैं, वो हमसे कोई लड़ना नहीं चाहते हैं, उनका कोई हमारे से कोई बैर नहीं है कि वो हमसे लड़ना है। वो तो इतना डरते हैं कि अगर हम उनके पास भी चले जाएं तो आप कभी आपने जंगल विजिट किया होगा तो देखिएगा कि हम जैसे उनके क्लोज जाएंगे इतना डरते हैं कि वो तो खुद भाग जाते हैं अंदर इंटीरियर की तरफ। वैसे
0: जी
1: हमारे घरों में सांप निकलते हैं तो लोग डरते हैं मार देते हैं, वो खुद छुपना चाहते हैं बचना चाहते हैं क्योंकि हमने उनके घरों में अपने घर बना लिए इसलिए वो हमारे घरों में आ रहे हैं। अदरवाइज उनका हमारे से कोई ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है कि जियो और जीने दो, हम भी जियो उनको भी जीने दें।
0: राइट सर जी, आगे आपसे जानते जाएंगे कि कैसे हम जिए और उनको जीने दें। उससे पहले एक सवाल कि 2010 से अब तक आपने 3,000 से ज्यादा वन्य जीवों का रेस्क्यू किया है, तो उस दौरान कभी आपकी जान भी खतरे में पड़ी, या कौन सा ऐसे रेस्क्यू है जो आपकी स्मृतियों में आज भी है?
1: मैम जान मेरी कभी भी है ना प्रॉब्लम में नहीं आई, क्योंकि जिन जो मेरे टीचर थे उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से सिखाया था कि पहले अपनी जान है, अगर अपनी जान बचेगी तो जानवर की जान बच पाएगी। हाँ बाकी हमने रिस्क बहुत लिए हैं बट कभी जान का ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। अगर थोड़ा सा अगर जैसे आपने कहा है कि आपकी स्मृति में, तो मेरे लाइफ का फर्स्ट रेस्क्यू जो था वो क्रोकोडाइल रेस्क्यू था माउंट आबू में नक्की लेक में था। तो जब हम रात में रेस्क्यू कर रहे थे क्योंकि क्रोकोडाइल का जो रेस्क्यू होना था नाइट में होना था क्योंकि पानी में था और पानी में डे में दिखता नहीं है और नाइट में टॉर्च डालते हैं तो उसकी आईज चमकती है, तो वो शिफ्ट करना था एक जगह से दूसरी जगह पर। तो हम जब रेस्क्यू करने के लिए वो एक कॉर्नर पे आ गया था, तो हम उसको रेस्क्यू करने के लिए बहुत स्लोली स्लोली बोट से उसके क्लोज जा रहे थे। तो हम जैसे उसके पास में पहुंचे तो तीन चार भालू, क्योंकि माउंट आबू में क्या इश्यू है कि भालू नाइट में बहुत एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि ह्यूमन वेस्ट वहां पे बहुत मिलता है आउटस्कर्ट्स में या फिर होटल्स के बाहर, तो उनको खाने के लिए बहुत आते हैं। तो हमें दूर से दिखे नहीं क्योंकि उनका रंग भी काला होता है रात भी काली थी। तो हम जैसे पास में पहुंचे तो हमें तीन चार भालू खाते हुए मिल गए, तो हमने क्रोकोडाइल को तो छोड़ा और बहुत जल्दी अपनी बोट को भगाना स्टार्ट किया और वो पैडल बोट थी अपने बहुत स्पीड से भगाई और जब हम रुके भागते भागते भी तो हमने देखा तो 15-20 फीट ही दूर गई थी। तो ये एक हमारा थोड़ा सा डर भी था और एक थ्रिलिंग भी था बट ऐसा कोई रिस्क नहीं लगा उसमें।
0: जी, मतलब सबसे पहला रेस्क्यू हमारे ही अंचल में हुआ है, माउंट आबू में। तो
1: हाँ
0: हमारे
1: बिल्कुल मैम,
0: श्रोताओं को ये सुन के इंस्पिरेशन भी मिल रही होगी, और अच्छा भी लग रहा है कि माउंट आबू में सबसे मजेदार और डेंजरस अनुभव रहा होगा आपका ये, लेकिन
1: हाँ
0: क्योंकि नेक इरादे हैं तो फिर सफलता मिलती है, और कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को बचा पाते हैं, ऐसा मुझे लगता है।
1: बिल्कुल मैम,
0: जी सर, तो आपसे पूछना चाहेंगे कि आप सांपों के बारे में बात कर रहे थे, तो ये बरसात का मौसम है, तो अक्सर सांप घरों में निकल आते हैं, तो ऐसे समय पर लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: सबसे पहले तो मैम डरे नहीं, क्योंकि हमारा डर ही है जो हमारे को प्रॉब्लम में लेकर आता है। हम लोग रेगुलर इस सीजन के अंदर है ना लोगों को अवेयर करते हैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू कि आपके घर में कभी भी कोई भी जंगली जानवर आता है बारिशों के मौसम में, क्योंकि सांप दोर्रे और नेवले जैसे जानवर काफी एक्टिव रहते हैं। तो आप डरे नहीं, उसको मारे नहीं, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करें। हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेल्पलाइन नंबर है, या फिर आपको कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं मिल रहा है सबसे इजी हेल्पलाइन नंबर है पुलिस का, पुलिस के थ्रू सारी हेल्पलाइंस पे कॉल चले जाएंगे। और हमारे पास जब कॉल पहुंचेगा तो हमारा रेस्क्यूअर आएगा और रेस्क्यू करके रिलीज कर देगा जंगल के अंदर।
0: बिल्कुल ओके। और सबसे पहले तो डरे नहीं, ओके।
1: डरे
0: तो
1: नहीं,
0: और क्या कर सकते हैं, मतलब जो नहीं करना चाहिए सबसे पहले, मतलब
1: प्रॉब्लम
0: टेम्पो के लिए।
1: एक तो पब्लिक की क्या है ना, उनकी हीरो बनने की भी आदत कुछ ज्यादा रहती है। एक भीड़ के अंदर दो चार हीरो जरूर होते हैं जो एनकाउंटर करने जाते हैं एनिमल के पास में, तब उनको यही कहते हैं कि आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि आप जब वो जानवर ऑलरेडी आप लोगों से डरा हुआ कि इतनी भीड़ आ गई कि आज कुछ ना कुछ मेरे साथ होगा, तो वो ऑलरेडी डरा हुआ तो डर में आपको अटैक करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। आपके घर में, आपके कमरे में कहीं भी आपको कोई भी सांप दिखाए, तुरंत आप लोग सब जल्दी से कमरे से बाहर आ जाए, उस कमरे का कुंडा लगा दें। अगर गेट के नीचे कोई ओपनिंग है तो वहाँ चादर या कुछ भी आप लगा सकते हैं, लगा दीजिए। और हमारे को हेल्पलाइन पे, वन विभाग की हेल्पलाइन पे या कहीं पे भी आप कॉल करिए, आपकी हेल्प जरूर होगी। और मारने की कोशिश, छेड़ने की कोशिश और वीडियोस बनाने के लिए, फोटोज बनाने की कोशिश नहीं करें, वीडियो बनाने की उतना ही कोशिश करें जो आगे आप ट्रांसफर कर सके कि ये जानवर हमारे घर में घुसा। तो ऐसे क्लोज जाने का कोई जरूरत नहीं है, वीडियो नहीं भी बन रहा तो भी चलेगा, क्योंकि तो जितना आप क्लोज जाएंगे वो भी अपने बचाव में ही काटता है, ऐसे कभी कोई जानवर नहीं काटता।
0: जी सर, तो ये सारी बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: और सांप मगरमच्छ के बारे में और लकड़बग जैसे जीव हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, ये थोड़ा सा हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करें।
1: मैम ये सभी फूड चेन का पार्ट है। अगर एक भी इसमें से जाता है तो फूड चेन पूरी डिस्टर्ब होगी, और आज आप देखेंगे फूड चेन बहुत बड़े लेवल पर डिस्टर्ब हो चुकी है, क्योंकि ह्यूमन एनक्रोचमेंट जितना बढ़ता जा रहा है, कंक्रीट का जंगल बढ़ता जा रहा है, फूड चेन बहुत डिस्टर्ब होती जा रही है। जैसे कि हमारे चूहे बहुत बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि चूहों को खाने के लिए मेजर इनके शिकारी हैं सांप, हम सांपों
0: जी
1: को मारते जा रहे हैं, चूहे बढ़ते जा रहे हैं। वैसे ही पानी की बात करें तो मगरमच्छ एक पानी का जानवर है, पानी से अगर मगरमच्छ निकालते जाएंगे तो पानी की गंदगी कौन क्लीन करेगा, जो भी उसमें जानवर मर रहे हैं उनको कौन खाएगा, वो सड़ते जा रहे हैं, पानी गंदा और सड़ जा रहा है। ऐसे अगर लकड़बग्घा बात करें जिसको हम हाइना भी कहते हैं, तो ये एक स्कैवेंजर होते हैं, मोस्टली स्कैवेंजर होते हैं जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, जंगल को क्लीन करते हैं, क्लीनर्स होता है ये सारे, तो वो
0: ओके
1: कम होते जा रहे हैं। तो इनका जंगलों के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है कि मरे हुए जानवरों को कौन खाएगा, तो ये पूरा फूड चेन को हम डिस्टर्ब करते जा रहे हैं।
0: ओके तो मनुष्य इन सभी जानवरों के साथ तालमेल बना के कैसे रख सकता है, आपको क्या लगता है?
1: मैम अगर प्रैक्टिकली बात करूँ तो मनुष्य इन जानवरों का कभी तालमेल बना के नहीं रह सकता,
0: ओके जी
1: क्योंकि तालमेल बनाएगा कैसे, क्योंकि उसकी इच्छाएं इतनी ज्यादा है कि वो तालमेल बना ही नहीं सकता। उसको घर चाहिए, उसको सड़क चाहिए, उसको लाइट पानी बिजली सारी सुविधाएं चाहिए, तो तालमेल कैसे बनाएगा इनके साथ।
0: तो फिर क्या कदम हम उठाए कि पारिस्थितिक तंत्र भी हार्म न हो और हमें भी सुख सुविधाएं मिले?
1: देखो जीना तो दोनों को एक साथ ही है, तो इसके लिए सोचना भी जरूरी है, और सोचने के साथ साथ उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट भी करना है, तभी जाके कुछ होगा। सोचते तो हमने बहुत कुछ है बट इम्प्लीमेंटेशन हमारे बहुत कम है। अगर आज भी हम चाहते हैं कि हम कुछ बचा सके तो हमें जमीनी लेवल पे काम करना पड़ेगा। जितना हम अर्बनाइजेशन करते जा रहे हैं, शहरीकरण जो हमारा हो रहा है, हमारी खेती, हमारे जंगल खत्म होते जा रहे हैं, अगर ऐसी स्पीड से ही चलते रहे तो फिर पारिस्थितिक तंत्र खराब होता रहेगा। इसलिए ही जरूरी है कि हमारा जो शहरीकरण है इसको हम, इसकी स्पीड को बहुत कम करें, और जो जंगलों की जमीनें हैं, जंगलों के एरिया है, उनको वैसे ही रहने दें, वहां पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं करें, तो ही हम जाके इनके साथ रह पाएंगे। और कोई ये कि जीव और जीव तो इनको परेशान नहीं करें हर लेवल पे जाके, जैसे इनके फोटोज खींचना, इनके क्लोज जाना, इनको खिलाना। बहुत सारे लोग जंगलों में जाके जानवरों को खाना पीना खिलाते हैं, जो कि बहुत नुकसानदायक चीज है। आप तो खुद माउंट आबू से वहां पे अपने भालू को, बंदरों को खिलाते हुए देखा होगा, तो ऐसे
0: जी
1: डॉक्टर भी बताना चाहूंगा कि जो इनको काफी सारी बीमारियां लाते हैं ऐसा भोजन, जो हमें बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि ये इनको पूरी प्रकृति पे छोड़ देना चाहिए, प्रकृति अपने आप इनको भोजन दे रही है। तो डॉक्टर जब हमें ही मना करता है कि आपको तला भुना और रोटी नहीं खानी, तो जब हमारे लिए नुकसानदायक है तो इनके लिए तो कितने ज्यादा नुकसानदायक चीज है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सर, जो श्रोता मित्र अभी सुन रहे हैं खुद तो जागरूक होंगे ही, और साथ साथ जो टूरिस्ट आते हैं उन्हें भी जागरूक करने में मदद करेंगे कि हम रास्ते में बंदरों को खाना ना खिलाए स्पेशली, और फिर बाकी जानवरों को भी हम तले हुए भुने हुए या फिर मिर्च मसाला नमक और जो मीठा है वो ना खिलाएं स्पेशली। जी सर, सर आपकी जो संस्था है वो सिर्फ रेस्क्यू ही नहीं लेकिन नेचर गाइड ट्रेनिंग, वन्य जीव गणना, पर्यावरण शिक्षा और क्षमता विकास आदि पर भी काम करती है। तो क्या कार्य होता है और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और हमारे सरकार को, हमारे समाज को इससे क्या लाभ मिल रहा है?
1: मैम हमारी संस्था जो है अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पे काम कर रही है। जैसे कि आपने बताया रेस्क्यूज है, रिहैबिलिटेशन है, हमारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर है जयपुर में। जो भी घायल पक्षी या जानवर हमारे को मिलता है वहाँ पे उसको लेके जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं और ठीक होने का पुनः उसको खुले आसमान में या फिर जो जंगल का जानवर है मैमल्स हैं तो वहाँ पे रिलीज कर दिया जाता है। और ऐसे ही हम कई एक्टिविटीज करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे रहते हैं। अभी कल ही संडे को ही हमारा एक नेशनल लेवल का रेप्टाइल अवेयरनेस वर्कशॉप हुआ है जयपुर के अंदर, जहाँ पे पूरे इंडिया से काफी सारे लोग आए थे, उसको ज्वाइन किया, जहाँ उनको नॉलेज मिली स्नेक रेस्क्यूज की, कॉमन स्नेक्स और मॉडल लिजर्ड राजस्थान के कौन कौन से हैं, रेस्क्यू टेक्निक्स के बारे में बताया, और स्नेक बाइट, मॉडल लिजर्ड बाइट और स्कॉर्पियन बाइट में आपको प्राइमरी मैनेजमेंट क्या करना है, और जंगल में आप लोग कभी काम कर रहे हो या इंटीरियर्स में हो तो किसी को हार्ट अटैक जैसी एक मेजर कहूँ या इम्पोर्टेंट चीज का भी कुछ हो जाए तो आपको कैसे उनको बचाना है, ये सारी ट्रेनिंग हम लोगों ने दी है। तो ऐसे ही रेगुलर काफी सारी हम एक्टिविटीज करते हैं और उस डिपार्टमेंट को, सरकार को हम सपोर्ट करते हैं रेस्क्यूज के अंदर, उनको ट्रेनिंग देते हैं, इसलिए स्किल डेवलपमेंट में हम लोग काम करते हैं कि जो फॉरेस्ट का फ्रंट लाइन स्टाफ है उनको हम लोग इन्वाइट करते हैं अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर, कि जो सबसे आगे रहता है रेस्क्यू के अंदर, जिनकी जान सबसे ज्यादा है ना डेंजर में रहती है, कि आपको सेफ रेस्क्यूज कैसे करने, क्योंकि आप बचोगे तो आप जानवर को बचा पाओगे। तो ऐसे रेगुलर ट्रेनिंग हम डिपार्टमेंट में जाके भी देते हैं, अपने प्रोग्राम से उनको इन्वाइट करते हैं, ये सरकार को ऑर्गेनाइजेशन से काफी बेनिफिट होता है।
0: जी सर, बिल्कुल। तो ये कोई भी चाहे तो वे ट्रेनिंग ले सकते हैं, युवा चाहे तो रजिस्टर करके फिर ट्रेनिंग ले सकते हैं।
1: हाँ मैम, कोई युवा चाहे तो ट्रेनिंग ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद।
0: ओके जी सर। सर जैसे आपने बोला नेचर गाइड ट्रेनिंग, तो ये क्या होता है, थोड़ा डिटेल्स में बताएं हमें।
1: हम इसमें गवर्नमेंट ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमें इनवाइट करता है नेचर गाइड ट्रेनिंग, जिससे हमारे सरिस्का हो गया है और रणथंबोर हो गए, तो यहाँ पे गाइड्स हैं हमारे, जो टूरिस्ट आता है हमको गाइड करने के लिए नेचर गाइड्स हैं, तो उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारे को डिपार्टमेंट इन्वाइट करता है, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं कि आपको टूरिस्ट के साथ कैसे बिहेव करना है, आपको क्या क्या स्किल्स अपने डेवलप करने हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए हैं, और वही जस्ट लाइक किसी को अगर टूरिस्ट को कोई फाइट हो जाए तो आपको क्या इमरजेंसी स्टेप उठाने हैं, और सीपीआर जैसी चीजें, तो इस ट्रेनिंग का बहुत उनको लाभ मिलता है वहाँ पे हमें जाने पे, उनको सिखाने पे, ऐसे प्रोग्राम हम लोग करते रहते डिपार्टमेंट के साथ।
0: ओके सर। सर आपने घायल वन्य जीवों के उपचार में होम्योपैथी का सफल प्रयोग किया है, तो ये विचार कैसे आया कि और इसका क्या रिजल्ट रहा, इसके बारे में जानना चाहेंगे।
1: मैम सन 2010 की बात है, बस कुछ टाइम बाद मैं डॉक्टर बनने ही वाला था, और 2010 में मैंने वाइल्ड लाइफ ज्वाइन ही किया था जो मेरा इंटरेस्ट था, और मुझे इसी फील्ड में जाना था। तो मेरे अंदर एक विचार आया एक बार कि मैं एक बार एक डॉग रोड से एक डॉग को बच्चे को अपने ना जहाँ मैं अलबर में रूम में रहता था वहाँ लेकर आया ट्रीटमेंट के लिए, उसको कुछ इंजेक्शन दिलवाया, ट्रीटमेंट करवाया मैंने, तो वो ठीक हो गया था, फिर उसको रिलीज कर दिया। तो ऐसे ही मेरे विचार आया कि जब होम्योपैथिक से इंसान ठीक हो सकते हैं तो जानवर क्यों नहीं हो सकते, तो ट्राई करके देखते हैं। तो एज ए डॉक्टर मेरे पास कभी कभी लोग आते थे, पूछ रहे थे अपने एनिमल के लिए, तो मैंने देना स्टार्ट किया, मुझे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुए, मैंने डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर दिया उस चीज को, और आज बहुत सारे जानवरों का ट्रीटमेंट किया और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, तो मेरे इंटरनेशनल आर्टिकल्स भी आ चुके हैं इसको लेके,
0: जी
1: और होम्योपैथिक वेटनरी से मैम पेट पेरेंट्स को कहूँ या एनिमल लोगों से बहुत बेनिफिट्स मिले हैं मैम इस।
0: जी तो सर अभी तक लोगों को लगता था कि हम अगर प्रकृति के लिए काम कर रहे हैं तो इसे हम करियर नहीं बना सकते, लेकिन अगर युवा चाहे तो प्रकृति के लिए भी काम कर सकते हैं और करियर भी बना सकता है।
1: बिल्कुल मैम, प्रकृति में सब कुछ है।
0: जी, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। होम्योपैथी के बारे में आपने रिसर्च भी किया एज ए डॉक्टर कि कैसे हैं जानवरों के ऊपर हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए आप सफल भी रहे। तो अगर कोई चाहे तो इसके लिए भी गाइडेंस आपसे ले सकता है, मार्गदर्शन ले सकता है।
1: बिल्कुल मैम,
0: जी तो सर आपकी जैसे सबका साथ प्रकृति का विकास है, इको रेस्क्यूअर्स फाउंडेशन, तो सिर्फ वाइल्ड लाइफ में जो जानवर है उन्हें नहीं बचाता, लेकिन कई अभियानों के साथ भी आप लोग जुड़े हुए हैं, जैसे सीड बॉल है, वृक्षारोपण है और बर्ड रेस्क्यू भी है, तो इन कार्यक्रमों के बारे में भी हमें बताएं।
1: मैम हम लोग सन 2019 से सीड बॉल्स डालने का काम कर रहे हैं जयपुर के जंगलों में, जयपुर झालाना आमागढ़ रिजर्व हो गया और सरिस्का पेरिफेरी भी पूरा जयपुर तक लगता है, तो हम लोग वहाँ पे डाल रहे हैं। तो ये मेरा एक मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन नहीं खुली थी एक ड्रीम चाहिए था कि यार ये जो बैरन लैंड सी है यहाँ पे कोई पेड़ नहीं है, तो इस पर कैसे काम किया जाए, कैसे किया जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन हमने ओपन किया था, हमारे टीम के बोर्ड मेंबर थे, रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर है महेश सर, तो उन्होंने हमारे को सीड बॉल्स बनाना सिखाया है कि गौरव अपन सीड बॉल्स के थ्रू यहाँ पे जो भी बैरन लैंड से हो रही है, जहाँ पे कोई भी प्लांटेशन नहीं है और यहाँ डालेंगे तो यहाँ पे अपन जंगल उगा सकते हैं। तो हमने इसे बनाना स्टार्ट किया, हमने डालना स्टार्ट किया, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट किए हुए। और आज की डेट में हम एक बहुत लार्ज लेवल पे ये सीड बॉल्स वाला काम करते हैं, और जयपुर के जालाना जैसे जंगल, नामागढ़ जैसे जंगल में हर साल हम लोग ग्रास लैंड पे वर्क कर रहे हैं, और काफी बड़े ग्रास लैंड हमने यहाँ पे उगा चुके हैं, जिससे जानवरों को छुपने की और खाने की जगह मिलती है। अगर छुपने और खाने के लिए व्यवस्था जंगल में नहीं होगी तो बाहर शहरों की तरफ आते हैं, इसी रीजन से हम इन चीजों पर काम कर रहे हैं, जिसमें हम फिर साथ साथ प्लांटेशन पे भी वर्क करते हैं, जैसे कि नेटिव प्लांट्स जो भी हो गए हमारे यहाँ के, वो भी हम लोग काफी लार्ज लेवल पे हर साल बारिशों के टाइम पे करते हैं, जिसमें काफी वॉलंटियर्स हमारे साथ वर्क करते हैं।
0: जी सर, सीड बॉल्स बनाना आसान है या थोड़ा डिफिकल्ट है?
1: बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं, सीड बॉल्स बनाने के लिए आराम से कोई बना सकता है, जिसमें कि मिट्टी आती है अलग सी इनकी, और गाय का गोबर होता है जिसके थ्रू ये सीड बॉल्स बनाई जाती है, और एक साथ आप बहुत सारी सीड बॉल्स बना सकते हैं, और बहुत सारे लोग आजकल सीड बॉल्स पे काम कर रहे हैं, बना रहे हैं। बट इस
0: बिल्कुल
1: कोई मैम बनाना सीखने के साथ साथ मतलब ये नहीं कि आप जो भी इसमें काम करेंगे वो सक्सेस होगा, वो एक टेक्निकल चीज है सारी की सारी, कि आपको सीड कौन सा डालना है, कहाँ पे कौन से सीड का नीड है, क्योंकि हमारे यहाँ रेनफॉल बहुत कम है, तो जर्मिनेशन तो हो जाएगा आपने सीड बॉल डाल लिया, पर रेगुलर पानी नहीं मिलेगा तो वो आपका जो अंकुरित होगा ना जो सीड, वो कुछ टाइम बाद खराब हो जाएगा। तो हमें इसलिए ये देखना है कि कौन सा सीड कम पानी में उग सकता है, उसको डालने की नीड है आप।
0: जी, तो राजस्थान में कौन सा सीड कम पानी में उग सकता है, आप अगर बताना चाहें तो?
1: जैसे मैम हम लोग यहाँ पे दामन ग्रास पे काफी काम कर रहे हैं, दामन ग्रास जो है ग्रासलैंड के लिए काम आती है, वो बहुत कम पानी में बहुत इजीली सर्वाइव करती है और अच्छा ग्रासलैंड डेवलप करती है, और यहाँ के जो नेटिव है बबूल है रोहिड़ा है, तो इनके सीड बॉल्स हम लोग डालते हैं जंगलों के अंदर, जो कम पानी के अंदर उग जाते हैं, अच्छा सर्वाइव करते हैं।
0: जी, तो रोहिड़ा को हम ले सकते हैं।
1: रॉन्च है
0: जी ओके, तो ये सब सीड बॉल्स दोस्तों हम बना के डाल सकते हैं। अगर आप ये कार्य कर रहे हैं, हमारे आबू रोड के आसपास, माउंट आबू के आसपास भी बहुत सारे कार्यकर्ता ये कार्य कर रहे हैं, तो अगर आप ये सुन रहे हैं तो ये टिप्स आप ले सकते हैं। सर, अगर कोई युवा वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहता है, जैसे आपको डॉक्टर सरकार जी ने गाइड किया था, तो वैसे आप उन्हें कैसे गाइड करना चाहेंगे कि शुरुआत कहाँ से करें?
1: तो वन्य जीवों के करियर के लिए आजकल काफी सारे कोर्सेज हो रहे हैं, कि आपको अगर साइंस बैकग्राउंड से तो आपके लिए काफी इजी रहता है, बायोलॉजी बैकग्राउंड से अगर आप हैं तो 12th के बाद आप BSc और अदरवाइज तो आप गवर्नमेंट जॉब में भी आप ट्राई कर सकते हैं, फॉरेस्टर्स, रेंजर, IFS, ACF, फॉरेस्ट गार्ड्स, तो ये मल्टीपल एरियाज हैं जहाँ पे आप इसमें वर्क कर सकते हैं और आपको अच्छी जॉब प्रोवाइड हो जाएंगी।
0: जी ओके, तो इस प्रकार से आप अपने करियर चुन सकते हैं। और आम नागरिक अपने दैनिक
1: बिल्कुल
0: जीवन में ऐसे कौन से छोटे छोटे कदम अपना सकते हैं, एटलीस्ट 5 छोटे छोटे कदम, जिनसे वन्य जीवों और पर्यावरण संरक्षण में वास्तविक योगदान दिया जा सके?
1: सबसे पहला तो मैं सभी लोगों से एक निवेदन करूंगा कि जीवन में हो सके तो सिंगल यूज प्लास्टिक को आप यूज करना बंद करें, क्योंकि तो सिंगल यूज प्लास्टिक हम उससे बोलते हैं जो तो एक बार यूज किया और फेंक दिया, जैसे कि पॉलिथिन हो गई, प्लास्टिक प्लेट, चम्मच, ग्लासेस हो गए, क्योंकि तो ये हमारी नालियों में जाकर अटक जाता है, उसके बाद हमारे ड्रेनेज को खराब करता है, अगर ये हमारी मिट्टी में जाता है तो मिट्टी में एक लेयर बना देता है जिससे पानी जो है ग्राउंड लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं हो पाता है, वो भी पानी ऊपर के ऊपर ही सतह पर रह जाता है, वो उड़ जाता है, और ये बहुत खतरनाक जहर है जो हमारी धरती में मिलता जा रहा है, हमारे पानी में मिलता जा रहा है, जहां भी मिलता जा रहा है वहां पे उसको खराब कर रहा है, और इसको खत्म होने में भी बहुत साल लग जाते हैं। एक तो ये करें, और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अगर आप आसपास का काम करने जा रहे हैं तो या तो पैदल जाएं या फिर आप साइकिल रख सकते हैं, जिससे हम अपने फिजिकली भी फिट रहेंगे और पॉल्यूशन भी हमारा बहुत कम होगा, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों के लिए गाड़ियों का यूज बहुत करते हैं, जिससे पॉल्यूशन भी हमारे इंक्रीज होते जा रहे हैं, और आप पानी का यूज, जो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अब हमारी धरती पे पीने का पानी की कमी होती जा रही है, क्योंकि बारिश इस साल रेनफॉल बहुत कम होना बताया जा रहा है, और इसलिए अब महीना भर निकल रहा है जुलाई का, इस बार बारिश बहुत कम हुई है, तो हम पानी को हमारे बचाए जितना नीड हो उतना यूज करें, गाड़ियों को धोने में इसको वेस्ट नहीं करें, या फिर अदर बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हम लोग पानी को वेस्ट नहीं करें, और दैनिक जीवन में हमारे हमारे घर के अंदर हम बिजली का यूज जो करते हैं वो अननेसेसरी बिजली का यूज नहीं करें। अगर आपको एसी का नीड है तो ही आप एसी चलाएं, अदरवाइज अगर आपका काम पंखे से चल सकता है तो पंखे से ही आप करें। क्योंकि मैं आपको ये वो चीजें बता रहा हूँ जो अपनी लाइफ के अंदर मैं करता हूँ
0: जी
1: लोगों को जगाने के लिए डेली के डेली बेसिस।
0: बिल्कुल, तो सिंगल यूज प्लास्टिक आप यूज कम करें, फिर आपने कहा कि अगर आप कहीं दूर नहीं कहीं पास जा रहे हो तो आप साइकिल का यूज कर सकते हो, पैदल जा सकते हो आप। पानी यूज करने के समय ध्यान रखें, गाड़ियों को धोने के लिए पानी का इस्तेमाल जितना हो सके कम करें, और इलेक्ट्रिसिटी का भी ध्यान रखें। तो इन सब बातों के बारे में अगर हम ध्यान देते हैं तो हम पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में योगदान दे सकते हैं। जी सर, जैसे आपकी संस्था वृक्षारोपण के बारे में तो आप काम करते ही हैं, लेकिन आप प्राकृतिक जो आवास है उसके सुधार के क्षेत्र में भी कार्य करते हैं, तो ये प्राकृतिक आवास सुधार में क्या मनुष्य योगदान दे सकता है, हम दे सकते हैं कैसे?
1: मैं प्रकृति की आवाज के लिए बिल्कुल आप हम लोग योगदान दे सकते हैं। जैसे कि नेटिव प्लांटेशन करना, जो मैंने अभी पहले बताया था कि हमारे यहाँ के जानवर का भोजन क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। तो वो पहले चीजें हमारे को सीखनी पड़ेगी उसकी आवाज के लिए। हमें जाके कोई भी पेड़ लगा देना वो प्रकृति की आवाज को बचाना नहीं होगा, उल्टा जो आवाज है वो और खराब होगा जाके। तो हमारे को बुक्स पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारे यहाँ के नेटिव ट्रीज कौन से हैं, ग्रासलैंड कौन सा है। और बचाने के लिए मैंने बताया कि अगर आप जानवरों के लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो उनको केले और ये पूड़ियाँ जो खिला रहे हैं वो ना खिला के आप उनके लिए उनका जो आवास है उसको संरक्षित करें। जैसे कि उनके पेड़ लगाए, उनके ग्रासन डेवलप करें, उनकी जो चीजें हैं वो करें। उनके लिए पीने का पानी, आप पीने का पानी बिल्कुल रख सकते हैं जो रेगुलर सोर्स नहीं है हमारे जंगलों के अंदर। अगर आप जा रहे हैं अदरवाइज जिस रूट पर आप जा रहे हैं, जैसे हम लोग धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं तो वहाँ पानी आप रखना चाहे तो रख सकते हैं उनके पीने के लिए। बाकी आप खाने पीने की चीजें नहीं रखें उनके लिए, वो प्राकृतिक आवाज को डिस्टर्ब करती।
0: ओके जी, क्योंकि प्रकृति उनके लिए खाना बनाती ही है, तो उन्हें छोड़ दे कि उस खाने का प्रयोग वो करे अपनी डे टू डे लाइफ में।
1: मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि कई लोगों को लगता है कि बंदर केले खाते हैं, बंदर फ्रूट्स खाते हैं, बट मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जंगलों में, राजस्थान के जंगलों में केले नहीं उगते, तो यहाँ के
0: जी
1: बंदर केले नहीं खाते थे, हमने खिलाना स्टार्ट किया उनको। अगर हम जंगल जाते तो कभी देखेंगे यहाँ तो केला यहाँ उगता ही नहीं, यहाँ से आता ही नहीं है। तो यहाँ का उनका जो फूड है, यहाँ की लीव्स है, जो पत्तियां हैं, वो मोस्टली उस पर डिपेंडेंसी उनकी ज्यादा रहती है।
0: जी राइट राइट बिल्कुल, तो जो दोस्त इस वक्त सुन रहे हैं जरूर इस बात का ध्यान रखें, और जो टूरिस्ट इस वक्त सुन रहे हैं तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप बंदरों को खाना नहीं खिलाएं जब आप माउंट के रास्ते ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं या नीचे आ रहे हैं, जहां पर भी आपको बंदर मिल रहे हैं तो आप इन्हें खाना नहीं खिलाएं।
1: तो आपने कोविड टाइम देखा होगा तो कोविड में सारे इंसान के घरों में बंद थे, तो जंगलों
0: जी
1: की तरफ या बाहर की तरफ कोई जा नहीं रहा था इनको कुछ भी खिलाने के लिए, क्योंकि अब ये आदतन हो चुके हैं हमारे पे। तो ये बंदर क्या हो रहा है, शहरों की तरफ ज्यादा मूव करने लग गए वो केले पूड़ियाँ रोटियां खाने के लिए। तो बहुत परेशानी इंसानों को भी देखनी पड़ी और जानवरों को भी देखनी पड़ी। अगर यही हम चीज समझ जाए कि इनको खिलाए नहीं जा सके अपना अननेचुरल फूड, तो ये हमारे शहरों की तरफ नहीं आए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर। सर वैसे कई बार कुत्तों को भी हम पार्ले जी बिस्किट खिला देते हैं, रोटियां खिला देते हैं जिसमें नमक, और कई बार यहाँ गुजरात और राजस्थान साइड में हम थोड़ा मीठा भी डालते हैं, तो ये भी नहीं खिलाना चाहिए।
1: आप रोटी खिला सकते हैं बिना नमक की, बट मीठा नहीं खिलाए रोटी के, तो ये यूज होते हैं कि बॉडी को, जो हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं उनको कोई इश्यू नहीं हो सकता। आप रोटी खिलाएं, अगर आप बिस्किट भी डाल रहे तो आटे वाले बिस्किट खिलाएं, और बहुत
0: जी
1: कम मीठे वाले जो बिस्किट होते हैं आप उसको वो दे सकते हैं उनके इन डॉग्स
0: ओके
1: को आप।
0: जी, थैंक यू सर। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप घायल पक्षियों का भी उपचार करते हैं, तो इसका सही तरीका क्या है, क्योंकि कई बार यहाँ जो लोकल कार्यकर्ता हैं वो घायल पक्षियों का भी उपचार करते हैं, वो सांपों को भी बचाते हैं, लेकिन सही तरीका क्या होता है?
1: मैम हर साल जनवरी के अंदर जयपुर में काइट फ्लाइंग फेस्टिवल होता है जिसको मकर संक्रांति कहते हैं। तो काफी बड़े लेवल पे राजस्थान में जयपुर में पतंगबाजी होती है। तो हर साल हमारा जनवरी में फ्री बर्ड ट्रीटमेंट कैंप हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से वॉलंटियर्स और डॉक्टर, मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर्स इसमें काम करने के लिए आते हैं। पूरा ऐसा ऑपरेशन थिएटर बनाया जाता है जहाँ से इंसानों के लिए एक सुविधा मिलती है, वैसे ही जानवरों को सुविधा हम लोग देते हैं कि कोई पक्षी घायल हो हमारा वॉलंटियर जाता है उसको लेकर आता है। तो उसका विंग कट गया है, पंख कट गया है, तो पूरा सूचरिंग जैसे कि टाके लगते हैं पूरा वैसे लगता है। उनको ऑक्सीजन दिया जाता है, मेडिसिन दी जाती है, ये सब वेटनरी डॉक्टर के अंडर में होता है। तो मैं उसे ये कहूँगा कि अगर आप लोग किसी को भी इस तरह की ट्रेनिंग लेनी है, सीखना है, क्योंकि बिना सीखे आप किसी को अगर कुछ करने जाएंगे तो हो सकता है आप उसको बचाने तो जा रहे हैं पर वो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है कि उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको पकड़ना है। अगर आपने एक
0: राइट
1: पक्षी, एक बहुत छोटा सा जानवर होता है, अगर आपने उसको सही हैंडलिंग नहीं किया, वो तो भी मर जाएगा स्ट्रेस में आके। तो ये सारी ट्रेनिंग हम अपने कैंप में देते हैं कि कैसे रेस्क्यूज करने हैं, आपको हैंडल कैसे करना है, फर्स्ट एड कैसे कर देना, उसके बाद का प्रोसेस, रिहैबिलिटेशन, वापस जंगल में छोड़ना, रिलीज करना। तो आप ट्रेनिंग लेके आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं उसके बाद।
0: जी सर। सर आपकी संस्था कॉरपोरेट एनवायरमेंटल एंगेजमेंट ट्रेनिंग्स भी देती है, तो कोई भी चाहे तो वेबसाइट में जाकर के इंफॉर्मेशन ले सकता है।
1: बिल्कुल मैम, बिल्कुल ले सकते हैं। हम रेगुलर कॉर्पोरेट सर वर्क करते हैं, उनको ट्रेनिंग देना, तो बहुत सारी चीजें हम लोग उनको अंडरस्टैंड कराते हैं, नेचर से रिलेटेड कैपेसिटी बिल्डिंग सब कुछ रहता है।
0: जी सर, बहुत खूब। तो अभी समय है रैपिड फायर राउंड का, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं
1: सबसे
0: जी। सबसे चैलेंजिंग रेस्क्यू आपके लिए क्या है, सांप, मगरमच्छ या फिर लकड़बग्घा?
1: मगरमच्छ
0: ओके। आपका सबसे प्रिय वन्य जीव?
1: मगरमच्छ
0: एक ऐसी आदत जिसे हर व्यक्ति को प्रकृति के लिए अपनाना चाहिए।
1: सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़ देना चाहिए।
0: ओके। एक शब्द में प्रकृति।
1: भगवान
0: ग्रेट। आपका जीवन मंत्र?
1: सबका साथ, प्रकृति का विकास,
0: ओके। जंगल या शहर?
1: जंगल।
0: सूर्योदय या सूर्यास्त? दोनों
1: वैसे तो दोनों ही कहूंगा मैं, दोनों का इम्पोर्टेंस है।
0: का इम्पोर्टेंस। ओके। होम्योपैथी या वाइल्ड लाइफ?
1: बोथ्स
0: ओके। तो अगर वन्य जीव बोल पाते हैं तो वो इंसानों से क्या कहते सर?
1: जी और जीने तो।
0: जी और जीने दो। ओके ठीक है सर। अगर पांच एलिमेंट्स से सबसे पहले बचाना चाहते हैं आप, तो किसको बचाएंगे?
1: हम पांचों एलिमेंट्स की बात करें तो एक भी एलिमेंट अगर नहीं बचा पाए तो चारों बाकी जो बचे चार एलिमेंट्स है ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं है।
0: सबसे पहले किसको बचाएंगे? पानी बचाएंगे, हवा बचाएंगे, मिट्टी को, या फिर एयर? किसको बचाएंगे?
1: मैम हवा को ही बचाएंगे जिससे हमारा जीवन है, सबसे पहला, सबसे जल्दी हवा के बिना हम मरेंगे।
0: ओके। सबसे पहले हवा को बचाएंगे। ओके सर, अभी तो इस कार्यक्रम से अलविदा कहने का वक्त है। आप क्या और ऐड करना चाहते हैं, कुछ और सूचनाएं हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहते हैं?
1: मैम बस मैं यही ऐड करना चाहूंगा कि सारे श्रोताओं से यही निवेदन करना चाहूंगी, हमारे पास अब बहुत कम समय बचा है इस प्रकृति के लिए। प्रकृति नहीं कह रही कि मुझे बचाओ, उसको कोई जरूरत नहीं है, हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति को बचाना है। अगर अभी भी नहीं जागे तो हम कभी नहीं जाग पाए, यह एक मैसेज है।
0: जी। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद है कि आज भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे और
1: थैंक यू, थैंक
0: आपकी एक्सपीरियंसेस साझा करते रहेंगे।
1: यू, थैंक यू वेरी मच।
0: शुक्रिया। तो दोस्तों, डॉक्टर गौरव जी ने अपने अनुभवों और विचारों के माध्यम से न केवल वन्य जीव संरक्षण की महत्व समझाई, बल्कि ये भी बताया कि प्रकृति की रक्षा केवल सरकार या किसी संस्था की नहीं, हमने जाना उनकी बातों से, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी भी है। जब हम प्रकृति की रक्षा करते हैं तो वास्तव में हम अपने आप की रक्षा करते हैं।

0: मधुबन सुनने वालों को सुरेश ओबरॉय का नमस्कार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप, और नई दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी दुनिया बनाने का हम सब सपना देखते हैं जहां प्रकृति और मानव दोनों हाथ में हाथ लिए एक साथ आगे बढ़ें, दोहन ना हो लेकिन खुशी भरपूर हो। और आज हम बहुत लकी हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री गोपाल भाई सतारिया जी, जो कि फाउंडर हैं बंसी गिर गौशाला के। और उनके बारे में बता दें आपको कि वो मेंबर हैं नेशनल एडवाइजरी कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साथ साथ केंद्रीय प्रशिक्षण प्रमुख भारतीय गौवंश रक्षण संवर्धन परिषद के एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हैं, श्री श्री इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इनवाइटी मेंबर हैं, गुजरात एसोसिएशन फॉर एग्रीकल्चर साइंसेज इनवाइटी ट्रस्टी हैं शिवानंद आश्रम अहमदाबाद के, एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हैं ग्लोबल विकास ट्रस्ट महाराष्ट्र के, साथ साथ मेंबर हैं गुजरात आयुर्वेद अनुषद मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि गौशाला में उनके सारे काम एक आधुनिक तरीके से भी किए जाते हैं, लेकिन वो पालन करते हैं बहुत ही प्रेम से। और उनकी अगर आप तस्वीरों को देखेंगे इंटरनेट पे तो आपको ये महसूसता होगी। और उनकी गौशाला को भारत की श्रेष्ठ गौशाला का अवार्ड भी मिल चुका है। कई विशेषताएं हैं, आपको धीरे धीरे कार्यक्रम के माध्यम से मैं उनके बारे में बताती रहूंगी, लेकिन पहले स्वागत करते हैं। गोपाल भाई, आपको बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद बहन।
1: सबसे पहले एक बार हमारे श्रोताओं के लिए अगर आप कुछ, आपके जीवन की जो शुरुआत हुई और जो ये आपने नया, क्योंकि एक बिजनेस भी आप करते थे और एक बहुत बड़ा, उसे छोड़कर आपने इस रास्ते को चुना, तो कुछ अपने जीवन के बारे में बताएं।
2: जी बिल्कुल। बहुत पहले तो मैं बहुत धन्यवाद कहूंगा कि आपने मुझे मौका दिया किसानों के साथ में ये वार्तालाप का। तो बचपन से, मैं जब 8वीं कक्षा में था, मेरे गुरु महाराज जी ने बोला था कि गौ माता किसान दुखी रहेंगे तो देश खुश नहीं रहेगा। तो उस समय के वो शब्द हमारे हृदय में बसते हैं और उनको साक्षी मान के हमने प्रयत्न किए। तो FYJC करने के बाद 10 साल डायमंड का बिजनेस किया
1: जी।
2: 17 साल पहले मुंबई छोड़ के अहमदाबाद आके प्रयोग शुरू किए। प्रयोग करके किसी को बोल सकते हैं, तो हमने आकर के प्रयोग किए। कोई भी प्रयोग में, वैज्ञानिक पक्ष, आयुर्वेदिक पक्ष, आर्थिक पक्ष और प्राकृतिक पक्ष, वो सारा अभ्यास करके जब ठीक लगता है तब प्रचार करते हैं। तो 17 साल पहले मुंबई छोड़ के अहमदाबाद गौशाला शुरू करी, लेकिन सबसे पक्ष था कि किसी का शोषण ना करके प्रगति जो करना वो सही है, उसी हिसाब से हमने सारे प्रयोग किए
1: जी। आपने जैसा बताया प्रकृति के और नजदीक आप गए, लेकिन इतने बड़े बिजनेस को जब आपने छोड़ा या फिर आपने सोचा कि नहीं अभी मुझे अपने जीवन को ही पूरा बदल देना है, तो लोगों ने आपको कुछ कहा तो होगा या चैलेंजेस तो आए होंगे उस वक्त?
2: देखिए, हमेशा लोग तो कहते ही है, चैलेंजेस भी बहुत आते हैं
1: जी,
2: आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सभी प्रकार से
1: जी।
2: लेकिन उसको हम एक हमारी परीक्षा ही समझते हैं
1: जी।
2: और परीक्षा का सबसे अच्छा उत्तर हम मानते हैं कि हमारा कार्य बोलेगा
1: जी।
2: तो किसी को नम्रता पूर्वक हम उत्तर देते थे कि हम ये प्रयत्न करने जा रहे
1: जी,
2: ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करे, ऐसा प्रार्थना कीजिए
1: जी, जी।
2: और हम करते रहे और फिर जैसे परिणाम मिलता है तो वही लोग हम फिर प्यार से हमसे वापस जुड़ते भी
1: जी। आपने जो प्राकृतिक और आयुर्वेदिक और साथ साथ संगीत का भी आपने वो चयन किया, सब माध्यमों का इस्तेमाल किया, तो कुछ आप बताएं कि किस प्रकार से पालना होती है गाय की?
2: जैसे वहां पे मैं किसान मित्रों को और सभी मित्रों को बताना चाहता हूँ कि हमने गाय और किसान को एक दूसरे के साथ जोड़ा है
1: जी।
2: तो खाली किसानी करेंगे तो भी फेल हो जाएंगे, खाली गाय रखेंगे किसानी नहीं करेंगे तो भी फेल हो जाएंगे। लेकिन गाय रखना था तब हमने ऐसे जोड़ा कि कोई गाय को बांधा नहीं जाएगा, वो अपनी मर्जी से खाना खाती है, अपनी मर्जी से पानी पीती है। फिर दोहने के समय जिसको नाम बोलते हैं वो दूध देने के लिए बाहर आ जाती है। 10 दिन का बच्चा भी नाम सुन के वही बाहर आता है।
1: अच्छा,
2: तो ये ईश्वरी तत्व है, 10 दिन के बच्चे को हम क्या ट्रेनिंग देंगे
1: जी।
2: तो आधा दूध ही हम लेते, आधा बच्चे को पिलाते
1: जी।
2: तो उसका शोषण नहीं करना, जो हमारे यहाँ पे कार्य करते उनका भी शोषण नहीं करना और धरती माता का भी। फिर जो आया वो प्रसाद है
1: जी।
2: और 18 पेडिग्री की गौ माता है हमारे पास, भावनगर राजा, मोरबी राजा, जूनागढ़ नवाब। तो 18 बच्चे देने के बाद भी 25 लीटर तक जाने वाली कुछ गौ माताएं हैं। तो ऐसी अच्छी गौ माताओं के बछड़े जिस गांव में 100 गाय होती हम निशुल्क देते हैं, ताकि अगली पीढ़ी गांव में ऐसी पैदा हो कि लोग रख पाए
1: जी।
2: उनके घर पे तंदुरुस्त गाय हो, अच्छा दूध की क्षमता वाली हो। और फिर भी हमने दूध को बाय प्रोडक्ट बनाया, क्योंकि दूध ऊंचा नीचा होगा सबकी नजर ऊंची नीची होगी। हमने गोबर और गौमूत्र को मुख्य प्रोडक्ट खेत के अंदर बनाया।
1: अच्छा,
2: और वो उसको अवेलेबल फॉर्म करने के लिए हमने एक बैक्टीरिया तैयार किया है वो पंचगव्य में से आइसोलेट किया है। तो मैं आपके माध्यम से सबको कहूंगा कि वो बैक्टीरिया डालने से 7 दिन में ही यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड बंद हो जाएगा और उत्पादन केमिकल जितना उससे डबल और 3 गुना भी हमने लिया है
1: जी।
2: तो बिल्कुल यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज में माननीय चंद्रेश भाई और यहाँ की जो भी टीम है और हमारी गौशाला में दोनों जगह पे आकर के इस चीज का निःशुल्क प्रशिक्षण पा सकते हैं कि वो कैसे कर सकता है किसान। जैसे आप किसान भाइयों को मैं की बात बोलूंगा, बहनों को, कि आप अगर 10 एकड़ भूमि है तो पहले 20x20 या 50x50 फीट में करके देखिए और परिणाम मिले तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि गौ माता क्या है। तो देशी गाय के गोबर का एनालिसिस हमने करा है तो 1200 कंपाउंड निकले जो पूरे विश्व में किसी के मल में नहीं है। देशी गाय के मूत्र में हमने एनालिसिस करा है 5100 कंपाउंड निकले जो किसी के भी मूत्र में नहीं है। महा औषधि है वो
1: जी।
2: लेकिन वो अवेलेबल फॉर्म में जब हमने पौधे को दिया
1: जी।
2: तो पौधा अनमैच रिस्पॉन्ड कर रहा है, अतुलनीय परिणाम मिल रहा है। खाली उसको पाच्य स्वरूप में देना जरूरी था, वो हमने पद्धति तैयार करी है गौ कृपा अमृतम माध्यम से। तो बिल्कुल बहन, मैं आपके माध्यम से बात कहूंगा कि किसान मित्रों, ये मैं जो बोल रहा हूँ वो महसूस करने के लिए आप यहाँ पे आइए ब्रह्मा कुमारीज में भी और हमारी गौशाला में। तो दोनों जगह से मिलके हम लोग टीम वर्क करके आपके घर पे वो सुखाकारी कैसे आए, क्योंकि आप जो किसानी काम कर रहे हो दुनिया का श्रेष्ठ कर रहे हैं। शहर जितना आर्थिक व्यवस्था आपके खेत में कैसे हो जाए, ये वो पद्धति है
1: जी। आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं या वो ट्रेनिंग की प्रक्रिया अगर आप कुछ और बताएं जो किसान सुन रहे हैं।
2: जी बिल्कुल, किसान मित्रों बिल्कुल आसान प्रक्रिया है, 1 दिन का ही प्रशिक्षण है। 1 दिन में तो आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। एक कल्चर आता है उसके अंदर 100 बैक्टीरिया होते हैं, वो कोई 24 है जो नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, डायरेक्ट हवा में से नाइट्रोजन दे देंगे तो मतलब यूरिया आपको मिल गया। फॉस्फोरस देने वाले अलग है, यही बैक्टीरिया आपको स्प्रे करना है तो पेस्टिसाइड का काम करेगा, अपने शरीर में से रस छोड़ता है कि नए काम के कीटक दूर रहेंगे। तो ये सारा प्रशिक्षण हमारा, आप एक वीडियो चैनल है यूट्यूब गोपाल भाई सुतरिया उस पे देख सकते हैं और एक मॉड्यूल यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज में चंद्रेश भाई और यहाँ की जो कृषि की जो टीम है, बहन और भाई जो संभालते हैं, उनसे आकर के वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और अहमदाबाद में हमारी बंसी गिर गौशाला है, वहां पर भी आप नोंदणी करके या फोन नंबर प्राप्त करके वहां पे फोन करके, पूरा निःशुल्क योजना है, इसमें किसी भी प्रकार के पैसे का कोई व्यवहार ही नहीं है। तो सिखाते भी फ्री है, वो कल्चर भी हम निःशुल्क देते हैं। तो बिल्कुल किसान मित्रों इसका जरूर लाभ लीजिएगा, आपकी जमीन में बिकनी चाहिए, आपकी गाय बिकनी नहीं चाहिए और स्वाभिमान से आप कैसे खड़े हो जाए और वापिस शहर से ज्यादा आमदनी आप कृषि के द्वारा कैसे कर पाए। आने वाला समय कृषि का है तो बिल्कुल मेरी दो हाथ जोड़ के विनती है, इसको समझिए और थोड़ा सा प्रयोग करिए, आपका पौधा और आपकी मिट्टी आपसे बात करेंगे
1: जी। क्या बात है। नहीं जी, आपकी दिनचर्या क्या होती है?
2: जी जब से ये कार्य लिया तो दिनचर्या का अता पता लगभग रहा नहीं है
1: जी।
2: लेकिन सवेरे लगभग 4-5 बजे उठना
1: जी।
2: और गुरु जी को याद करना, ईश्वर को याद करना और नित्य क्रम करके जो 28 साल से गुरु जी ने जो दिया है वो पूजा अर्चन करके फिर बस यही गाय का कार्य में लगे जाते हैं। तो पिछले 5 सालों में तो लगभग हमने 22 राज्यों में 500 शिविर करी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो कभी कभी तो हफ्ते में 2-2 घंटा ही एवरेज सोने को मिलता है, तो कभी आगे पीछे जो होता है। लेकिन गौ माता आधारित जो औषधि है
1: जी।
2: वो पा करके ये कार्य अभी भी कर पा रहे हैं, नहीं तो शरीर खराब हो जाए
1: जी।
2: तो 10 रोग है जिन्हों में हम मतलब नी रिप्लेसमेंट बोला हो, हेयर फॉल हो, पेट की समस्या, पेट में से सभी रोग खड़े होते
1: जी।
2: हैं, स्किन डिजीज हो, चमड़ी का रोग हो, रेस्पिरेटिव, तो ये सारे रोगों में लगभग 90% सक्सेस रेशियो हमने गौ आधारित पूरी जीएमपी लाइसेंस के साथ फार्मेसी बनाई है
1: जी। क्या
2: उसी का उपयोग हम करके जी। तो गाय का उपयोग जैसे मैं किसान मित्रों एक ही बोलूंगा, जैसे दूध आपके घर पे वो अमृत है, आप दूध को खाने का सही तरीका भूल चुके हैं। दूध को किसी सब्जी के साथ नहीं जमता है, विरुद्धार हो जाएगा, खाली परवल वो भी घी में बनाए तो। दूध को कोई फल के साथ नहीं जमता है, सिर्फ मीठा आम, तो हम खाते हैं गलत तरीके से और फिर हमें सोचा उतना परिणाम नहीं मिलेगा। तो तंदुरुस्त गाय का कच्चा दूध जैसा दुनिया में कुछ भी नहीं है। लेकिन वो खाना कैसे, वो भी हम जब संजोग मिलेगा तो और भी डिटेल में आपको बताएंगे। पर आपके घर पे ही स्वर्ग कैसे बना सकते गौ आधारित, वही परंपरा को वापिस हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं
1: जी। बहुत बड़ा प्रयत्न है और एक तरीके से हमारी जो भारतीय पद्धति आयुर्वेद का भी आपने प्रयोग किया, कुछ उसके बारे में बता सकते हैं?
2: बिल्कुल, जैसे गौमूत्र का एनालिसिस कराया, 5100 कंपाउंड निकले
1: जी।
2: उसके अंदर आज तक जितनी एलोपैथी दवाएं निकली, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, स्टीरोइड, वो सारा कुदरती स्वरूप में निकला। उसका पीएच 8 से ज्यादा है तो अल्कलाइन रखता है बॉडी को, और उसी प्रकार उसके अंदर नेचुरल फॉर्म में स्टीरोइड भी निकले, गोल्ड के पार्टिकल्स निकले, जो सुवर्ण धातु बताते हैं सुवर्ण भस्म आयुर्वेद में, वो भी निकला, और नैनो पम्य और पाच्य स्वरूप में। घी, जैसे मैं घी हर महीने 2 किलो खाता हूँ अकेला, हर रोज मिठाई खाता हूँ, लेकिन ये बाहर का खाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे, बट घी खाने की परंपरा ये बनाने की परंपरा
1: जी।
2: तो वो जो सारा सिस्टम समझ लिया ना तो कभी दिक्कत नहीं आएगा। किसान मित्रों, 25,000 रुपए लीटर ओमेगा 3 ओमेगा 6 की कैप्सूल मछली के तेल से मार्केट में बिकती है, वो 2 चम्मच देशी गाय के बिलोने के घी में है। 1,00,000 रुपए बेटारेट बिकता है पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, वो 2 चम्मच देशी गाय के घी में है, बट वो खाना कैसे
1: जी।
2: तो बहुत सिंपल तरीके हमने तैयार करे हैं और बहुत कम बजट में हमने कुछ औषधियां निकाली है, उसका भी अगर आप किसी को लाभ लेना चाहते हैं तो निशुल्क निदान होता है, तो भी आप कभी भी हमारी गौशाला में आ सकते हैं। और हम कैसे आपके घर पे ही आप काफी चीजों से अच्छे रह सकते हैं, जैसे मैं महिलाओं के लिए, बहनों के लिए एक बात बताऊंगा कि मासिक धर्म के आपको कोई भी इश्यू, हार्मोन इम्बेलेंस हो, तो दुर्वा जो श्री गणेश भगवान को माथे चढ़ती है वो 200 ग्राम लीजिए, पानी में मिक्सी बना के चटनी बनाइए, कपड़ा छान कीजिए और सवेरे खाली पेट पी लीजिए और 2 घंटा उसके बाद खाना नहीं, है ना। इसको करिए, 2 महीने में आपको ठीक होना ही होना है। तो ऐसी बहुत सरल चीजें जो खेत किनारे और आपके रसोई घर में है और गौ आधारित, वो कैसे आप श्रेष्ठतम जीवन जी सकते हैं, अगर आपने ठान लिया तो पूरा घर परिवार आपका तंदुरुस्त रह सकता है
1: जी।
2: धन्यवाद
1: जी। आपके पास समय कम है, 2 सवाल और थे कि अगर अभी किसानों को कुछ बदलाव करना है पहला स्टेप क्या होता है?
2: पहला स्टेप किसानों को एक ही है कि जो भी करे ठीक करे। जैसे आपके पास भले 10 एकड़ भूमि हो, हमारे पास आएंगे तो हम बोलेंगे 50x50 फीट, लेकिन एग्जैक्ट प्रोटोकॉल फॉलो करना जरूरी है। आधा अधूरा किसान मित्र मत कीजिएगा, नहीं तो अच्छी चीज का बाल मृत्यु हो सकता है। तो एकदम भरोसा रखिए, समझिए, पहली एक ही सीजन में आपको पता चल जाएगा, 7 दिन में आपका पौधा आपसे बात करना शुरू कर देगा। तो जितना करे सही करे और उसको विश्वास और श्रद्धा पूर्वक करिए और एग्जैक्ट प्रोटोकॉल के साथ करिए, बस वही मेरी विनती रहेगी।
1: ये नंदीगिर योजना के बारे में हमने पढ़ा था, वो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं?
2: जी, नंदीगिर ऐसा है कि देखिए, अच्छा नंदी बहुत कीमत बढ़ा दी है ब्रीडर्स ने
1: जी।
2: तो हम लोग ने क्या किया कि जिस गांव में 100 गाय है उधर हमारा एक नंदी निशुल्क जाता है
1: अच्छा।
2: और 25 सेंटर में उसका खाने पीने का खर्चा भी कभी कभी हमारे यहाँ से जाता है
1: जी।
2: तो एक नंदी 100 गाय को फॉलो कर सकते, और नंदी के ऊपर आधार रहता है, 80-90% गुण नंदी खींचता है। तो अगली जनरेशन कि तंदुरुस्त कैसे होना, नंदी का गुण क्या होना, लक्षण क्या होना, गाय के लक्षण क्या होना, तो हमारे YouTube के ऊपर वीडियो है गोपाल भाई सुतरिया नंदी के लक्षण, वो आप जरूर देखना किसान मित्रों। तो बिल्कुल वो नंदी कैसे चयन करें और नंदी के द्वारा पूरी अगली जनरेशन कैसे बदल सकती है। दूसरा, जो भी स्थानीय नस्ल है उसी को सम्मान पूर्वक कैसे तुरंत एक ही साल में दूध बढ़ाया जा सकता है। हमें 2x-3x तक लेके गए हैं, तो 1.5 लीटर वाली डांगी को भी 4 लीटर पे लेके गए, वो कैसे करना वो इम्पोर्टेंट है। किसान मित्रों, आपको गोबर देख के पता चलना चाहिए कि आज गाय माता का पाचन कैसा है। तो बस ठीक तरीके से रखना सीखिए, अपने आप सब ठीक होने लगेगा
1: जी। क्या बात है तरीका सीख जाए तो बहुत बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं
2: जी।
1: कोई और संदेश जो आप गांव में जो भी है, बच्चे भी रहते हैं, बहुत से बच्चे हैं और बकरी चराने भी जाते हैं और बचपन से ही प्रकृति के बहुत नजदीक रहते हैं, तो उनके लिए कुछ संदेश या आप लोगों के लिए?
2: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया। उत्तम खेती मध्यम व्यापार कनिष्ठ नौकरी कहा गया है, क्योंकि सच में किसान सबको खिलाता है और गौ माता सबको बाद में 100 साल दूध पिलाती सगी माँ के बाद में। तो किसान मित्रों, आप सही में प्रोडक्टिव काम कर तो आपको सम्मान मिलना चाहिए, और सभी को मैं कहूंगा कि किसान जहां मिले उसको 2 हाथ जोड़ के धन्यवाद कहना चाहिए। और सभी भाई बंधुओं को और बहनों को मेरी विनती है कि माता पिता और आचार्य हर रोज अपने बच्चों को संस्कार डालने का एक प्रैक्टिस शुरू कीजिए, उसके मन में आदर्श उनके हीरोज बदलिए, उनका कर्म निष्ठा और धर्म निष्ठा बढ़ाइए। वो जहां पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई डिग्री मायने नहीं रखता है, कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ आपने बच्चा बना दिया और पल पल ईश्वर जो भी आप पंथ में मानते हैं पल पल अपने हृदय में महसूस करने का प्रयत्न कीजिए, और सच में हृदय पूर्वक काम करेंगे ईश्वर देने के लिए बैठा है, बस आप उसके पात्रतावान बनाइए, अपने बच्चों को ईश्वर दे देगा। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपने मुझे जिस प्रकार मौका दिया किसानों के साथ बात करने
1: जी,
2: और सबको मैं आमंत्रित करता हूँ एक बार पधारिए गौशाला
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल भाई जी आपका, और बहुत बहुत हृदय से आभार, आपने जो शेयर किया वो एक एक जो शब्द है वो हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकता है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत, आपको कोई सवाल है आप हमें रेडियो मधुबन पर मैसेज कीजिए 94-14-15-14-15 पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: है रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, जहां पर हम लोग जीवन विकास इस नाम से कार्यक्रम को शुरू करते हैं, और ये करियर ऑप्शन भी बोलते हैं अंग्रेजी में हम लोग, तो जहां पर हम बच्चों के जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है या फिर कॉलेज में है, उन सभी के लिए एक मार्गदर्शन मिले, एक मोटिवेशन मिले, इसके लिए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि किसी भी करियर को कैसे हम लोग उसमें क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, कैसे हम लोग कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, इस विषय को समझने के लिए हम लोग अभी किसी ऐसे एक्सपर्ट से जो है बात करते हैं, जिन्होंने अपना करियर किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में किया है, उनसे बात करते हैं और उनकी यात्रा जो है बचपन की, और फिर कैसे उन्होंने करियर को चूज किया, किस तरह से वो चीजें बनी और वर्तमान में वो चीजें कैसी हैं, वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं, ताकि आप करियर को अच्छे से फ्रेम कर सके। तो आइए आज के इस शो में हमारे साथ करियर ऑप्शन कार्यक्रम में जीवन विकास के संदर्भ प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं यशवंत, ये बांसवाड़ा से बिलोंग करते हैं और जर्नलिस्ट हैं वर्तमान में, तो उनसे बात करेंगे जर्नलिज्म के बारे में, लेकिन सबसे पहले उनका बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं यशवंत जी?
2: हाँ, ओम शांति।
1: ओम शांति, कैसे हैं आप?
2: जी बढ़िया हूँ। आज के कार्यक्रम में मुझे आपने जो अवसर दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और मैं चाहूंगा थोड़ा अपना बचपन के बारे में, आपका जो बचपन है वो कहाँ बीता और किस तरह से आपकी पढ़ाई, एजुकेशन, शिक्षा, दीक्षा क्या हुई, वो बताइए हमें।
2: जी, बचपन से तो मेरा बांसवाड़ा में ही है बचपन से, और मैं थोड़ा सा विद्या भारती
1: जी,
2: विद्या भारती संस्था है पोल इंडिया में, जो आरएसएस से रिलेटेड है, उससे मैं जुड़ा हूँ। और फिर मैंने संघ की शाखा वगैरह वो भी बहुत मैंने चलाई है, और बचपन से ही मुझे पढ़ने का और विशेष वो था कि भाई मैं कुछ अच्छे लेख पढ़ूं, तो मैं लाइब्रेरी वगैरह भी जाते रहता था और अखबारों वगैरह को टटोलता रहता, उसमें से जो लेख आते हैं जैसे नरेंद्र कोहली है, जो ऐसे ऐसे जो भी थे, या विवेकानंद जी, विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित रहा मैं, और उनकी आध्यात्मिक, और उनको उन्होंने 40 वर्ष की उम्र में बहुत बड़ा काम किया देश में, अपना नाम किया मात्र 40 वर्ष की उम्र में, तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि इतनी मतलब इतना दिमाग उनमें कैसे था, तो ये मेरी हमेशा खोज रहती थी, बड़े बड़े महापुरुषों के ऐसे क्या गुण थे, उनको आत्मसात करने के लिए मुझे बहुत ललक थी, तो मैं हमेशा यही ढूंढता रहता था, तो ये मेरा बचपन से ही था, उस कारण मैंने
1: आध्यात्मिक किताबें पढ़ी आपने।
2: जी जी।
1: अच्छा, जो स्कूल में आप पढ़ाई किया वो गवर्नमेंट था या प्राइवेट था?
2: नहीं, मैंने पूरा अध्ययन मैंने गवर्नमेंट स्कूल में ही किया।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
2: जी।
1: और कॉलेज वगैरह आप फिर?
2: कॉलेज भी गया, गोविंद गुरु कॉलेज है।
1: अच्छा जी।
2: जी, तो उसमें भी मैंने ग्रेजुएशन किया।
1: अच्छा, जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपके माता पिता क्या करते थे?
2: मेरे पिताजी तो व्यवसायी थे, अपना राशन का दुकान था। अच्छा। और माता जी गृहिणी थी, वो ज्यादा पढ़े हुए नहीं थे, और हमारा मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई में हमारा एक चाय का दुकान था वहाँ पे।
1: अच्छा अच्छा
2: जी। और उसके बाद वहाँ से छोड़ के आए, लगभग हमारे तीन पार्टनर थे हम पिताजी के, तो चार चार महीना तीनों चलाते थे, चार महीने में वो कमा के आते, फिर यहाँ पे आके फिर यहाँ व्यवसाय करते थे, ऐसा था। तो हाँ, तो हमारे आर्थिक स्थिति तो बहुत कम थी, कमजोर थी, मतलब पहले हम एक गांव में रहते थे, गांव से फिर यहाँ शहर में आ गए, बांसवाड़ा शहर में।
1: अच्छा।
2: फिर यहाँ पे आके हम दो भाई थे, बड़े भाई ने पढ़ाई पे पूरा ध्यान दिया, तो उन्होंने बैंक में सर्विस बैंक मैनेजर बन गए वो।
1: अच्छा।
2: और मैं मेरे को दुकान के साथ मैं पढ़ाई भी करता रहा, ऐसा मैं उनका सहयोग करता था दुकान में भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा गांव के बारे में बताइए, जहां गांव से आप आए तो उस गांव की क्या विशेषता रही और वहां उसका।
2: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पूछा आपने। मेरा गांव बहुत बढ़िया गांव है, मेरा गांव साबला है, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये। बांसवाड़ा से उदयपुर जाते हैं, बीच में 60 किलोमीटर के पास, 60 किलोमीटर बांसवाड़ा से पड़ता है वो, और बहुत पवित्र स्थान है वो। मतलब वहाँ पे हमारे गांव के 5 किलोमीटर ही बेनेश्वर धाम है, तो बहुत बड़ा, मतलब यहाँ पे साल में एक बार बहुत बड़ा मेला लगता है, और लाखों लोग यहाँ जो जनजाति समाज है,
1: अच्छा,
2: यहाँ आदिवासी जी बांसवाड़ा डूंगरपुर इलाका और प्रतापगढ़, ये जनजाति बहुत इलाका है, भील आदिवासी जो बहुत, और उनमें कृष्ण पति भगवान के प्रति बहुत आस्था है, बहुत भले भले इंसान है ये, और भगवान के प्रति आस्था है, पूरी रात मेला चलता है यहाँ पे बेनेश्वर धाम 5 किलोमीटर दूर है।
1: अच्छा।
2: और मेरा गांव साबला में हरि मंदिर है, वहीं यहाँ के जो अभी पीठाधीश्वर है अच्युतानंद जी महाराज, वो वहीं विराजते हैं, और उनके नजदीक ही मेरा मकान है, तो उनका भी सानिध्य रहता है। मेरे पूरा परिवार, मेरे काका वगैरह जितना भी परिवार थे, और मेरे पिताजी वगैरह, बहुत उनका सानिध्य रहा है, और उनके पहले जो भी रहे हैं गुरु, उनका भी सबका आशीर्वाद हमारे परिवार पे रहा है जी। तो मेला भरता है, बहुत अच्छा मेला लगता है, यहाँ से मध्य प्रदेश गुजरात सभी मेले में वहाँ मेलार्थी आते हैं, और वहाँ पे दुकानें भी सस्ती है, बहुत पवित्र स्थान है, बहुत नाम है बेनेश्वर धाम का जी।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
2: जी।
1: तो साल में एक ही बार मेला भरता है या 2-3 बार होता है?
2: नहीं, माह में एक बार। अच्छा, साल में एक बार,
1: साल में एक बार,
2: साल में एक बार, साल में एक बार, और पूरी रात पूनम जी, माघ माघ महीने की पूर्णिमा को।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
2: माघ माह की पूर्णिमा को, जो मतलब वहाँ पे कहते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण रास लीला करने आते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो पूरी रात इसलिए मेला भरता है वहाँ पे, और चांदनी रहती है पूनम की चांदनी।
1: बिल्कुल।
2: और वहाँ कृष्ण का बहुत बढ़िया मंदिर है, और वहाँ इसलिए वो, और फिर वहाँ पे त्रिवेणी संगम है ये।
1: अच्छा अच्छा।
2: यानी कि माई, सोम और जाखम, ये तीन नदियों का संगम है, और वहाँ पे त्रिवेणी संगम है, तो यहाँ की जो आप त्रिवेणी संगम में, मतलब यहाँ के जो लोग स्थानीय, तो गंगा ही मानते हैं इनको, कि हम वो अस्थिया विसर्जन भी यही करते हैं, हमने तो हरिद्वार में अस्थिया विसर्जन के कर दी, इस प्रकार मानते हैं इनको यहाँ पे। जी जी जी।
1: यशवंत जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने गांव के बारे में, और आपने गवर्नमेंट स्कूल से ही अपनी पढ़ाई पूरी की, कॉलेज भी गवर्नमेंट का ही था, और अपने पिताजी को आप हेल्प करते थे पढ़ाई के साथ साथ में, और बहुत ही अच्छा लगा सुनकर, आपका जो बचपन है बड़ा ही प्यारा सा बीता है। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं और बात करेंगे कि अब बाद में कॉलेज के बाद आपने कैसे अपना करियर शुरू किया, इसके बारे में जानेंगे आपसे। आप सुना रेडियो मधुबन 107.FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बातें हो रही हैं करियर ऑप्शन इस प्रोग्राम में। यशवंत जी हमारे साथ हैं, बांसवाड़ा से जुड़े हुए हैं, जर्नलिस्ट हैं और हम लोग बात कर रहे थे उनके बचपन की कुछ बातें हमें उन्होंने ताजा कराई हैं। अब मैं चाहूंगा यशवंत जी, आप अपना स्कूलिंग पूरा हो गया, कॉलेज पूरा हो गया, तो उसके बाद आप क्या सोच रहे थे, क्या बनना चाहते थे, या पिताजी का ही बिजनेस आप कंटिन्यू करना चाहते थे, क्या सिचुएशन रहा कॉलेज के बाद, या कॉलेज के कुछ ऐसे यादगार लम्हों को जरूर बताइए ताकि हमें आपके कॉलेज के लाइफ के बारे में भी पता चल सके।
1: कॉलेज में कॉलेज तो जाते ही थे हम। साथ साथ मेरी क्या थी कि लाइब्रेरी में जाने का बहुत शौक था मेरे। तो
0: अच्छा
1: हाँ, तो कॉलेज की भी लाइब्रेरी में किताबें टटोलता रहता था। और बांसवाड़ा के जिला का जो पुस्तकालय है यहाँ पे, सूचना केंद्र,
0: अच्छा।
1: पीआर ऑफिस, वहाँ भी एक दो दो घंटा रोज जाता रहता था। तो वो पीआरओ में जो पीआरओ साहब थे वहाँ पे, दीपक जी आचार्य नाम है उनका, अभी निदेशक है वो, जैसलमेर में बैठते हैं वो। तो वो हाँ, उनका परिचय भी था और रोज मैं जाता रहता था तो अखबार वगैरह पढ़ता था, पत्र पत्रिका है। तो फिर जा निकलते वक्त तो उनसे मिलता हुआ ही निकलता था हमेशा। तो मुझे एक बार बोला उन्होंने कि अरे यार यशवंत जी, आपको अखबार वगैरह बहुत रुचि है और मेरे पास एक अखबार का काम है, एक अखबार है, तो आप क्या कुछ उसको हैंडल करना होगी क्या, आपको संपादक बना देता हूँ बांसवाड़ा का। मैंने कहा हाँ। तो भाई जी, मेरे को क्या एक्चुअल तो क्रिमिनल जो रहते हैं उसमें थोड़ा इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने बोला कि मैं ये जो क्रिमिनल है ये वगैरह उनकी खबरें मैं नहीं कर सकता हूँ। धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं बांसवाड़ा में, उनको तो मैं बिल्कुल अच्छी तरह से कवरेज करूंगा और बहुत अच्छा भी मैं लिख सकता हूँ और भेज भी सकता हूँ, उसके अलावा भी कुछ और कर सकता हूँ। पर क्रिमिनल, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप जो आपको रुचि हो वो करो। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मेरे को बांसवाड़ा संपादक बना दिया उस अखबार का और मैं यहाँ से खबरें भेजता था। और फिर मैंने एक संगति पत्रिका है पांचजन्य, तो पांचजन्य में भी मैंने अपना लेख, यहाँ का मानगढ़ धाम है, बहुत प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ पे जलियांवाला बाग से भी बड़ा यहाँ पे नरसंहार हुआ है, तो मेरे को उसमें उसका मैंने डिटेल निकाला और पूरा मैंने लेख भेजा। तो वहां से मेरा फोन आया पांचजन्य से कि आपका लेख अच्छा लगा और हम उसको प्रकाशित कर रहे हैं। तो मेरा वहां पे लेख भी प्रकाशित हुआ और बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि पूरे भारत में ये बहुत बड़ी मात्रा में समाचार पत्रिका ये निकलती है।
0: तो पत्रकारिता में आप जब जुड़े तो क्या उसके लिए कुछ आपने, किस तरह से आपका अपॉइंटमेंट हुआ, क्या पेमेंट वगैरह कुछ देते थे या फिर ऐसा कुछ नहीं था?
1: नहीं, पत्रकारिता में तो मेरे स्वयं के मैंने पैसों से पहले तो मैंने कैमरा खरीदा भाई जी। और मैंने ये ही नहीं देखा कि उनको पूछा भी मेरे को कितना मिलेगा क्या मिलेगा, कुछ नहीं, बस यही था कि नहीं कि मैं बांसवाड़ा से अच्छी अच्छी आध्यात्मिक जो अपनी मतलब भागवत कथा है ये उनका प्रचार, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गीता में यही कहा है कि आप गीता का जितना प्रचार करोगे तो आप मुझसे जुड़े हुए, मतलब जितना धर्म का प्रचार करता है व्यक्ति तो वो एक तरह से अच्छा ही काम है ना। तो मेरा यही रुचि रहती है कि जितना जितना लोगों से हुआ। फिर मैंने स्वयं की भी खुद की मैंने पत्रिका अखबार शुरू किया भाई जी।
0: अच्छा
1: हाँ जी, तो मैं राम स्नेही संप्रदाय से भी जुड़ा हुआ हूँ,
0: हाँ
1: अपना बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ये है राम स्नेही संप्रदाय। तो यहाँ के जो महाराज जी है वो हमारे गुरु है, तो उनका सानिध्य मिला मुझे। और मैंने जी, तो मैंने एक दरिया और दर्पण करके खुद मेरा एक अखबार निकाला मैंने ये कर। महाराज जी जो भी दरिया जो संप्रदाय है उनकी जो भी जितने भी जो भी आश्रम है उनकी जो गतिविधियां होती है उनको मैं उसमें प्रकाशित कर पाऊँ जी। और मेरा जो अखबार का विमोचन है वो मुलक मुलक पीठाधीश्वर है, राजेंद्र जी जी है, जो जो मेरे को मेड़ता, जो मेड़ता भूमि है मीरा की जन्मस्थली, वहां पर मेरे को वहां बुलाया और उन्होंने मंच पे मेरा अखबार का विमोचन किया, फर्स्ट पहली बार।
0: तो
1: जी।
0: फिर
1: और
0: आपका
1: मैं
0: पत्रकारिता के साथ आप एज ए आपकी रुचि से जुड़े, आप रुचि से खर्चा कर रहे हैं, तो फिर आपको
1: जी
0: कैसे, आपका आजीविका कैसे चल रहा है,
1: जी
0: आजीविका कैसे चलता है, फिर
1: कैसे चलता है, मतलब
0: आपका जीवन यापन कैसे करते हैं आप?
1: जीवन यापन, मतलब अर्निंग सोर्स मेरा
0: हाँ,
1: यही है।
0: अर्निंग
1: हाँ
0: सोर्स।
1: हाँ हाँ अर्निंग सोर्स तो क्या है कि यहाँ मैं एक और सेवा में ही लगा हुआ हूँ, तो मैं एक सेवा कार्य देखता हूँ। यहाँ पे उत्तम स्वामी जी महाराज हैं, महामंडलेश्वर है, तो उनकी गांव गांव में, और अकाउंट्स में मैं रहा, मेरा सब्जेक्ट अकाउंट रहा है। तो जी, तो मैं अकाउंटेंट रहा, विद्या भारती में भी मैं अकाउंट पद पे काम करता था, उसको तो छोड़ दिया मैंने। उसके बाद मेरे को उत्तम स्वामी सेवा संस्थान है यहाँ पे, उत्तम स्वामी जी की, उनकी गांव में इंटरनल स्कूलें चलती है,
0: अच्छा,
1: जहाँ गवर्नमेंट स्कूलें भी नहीं, वहाँ पे वहाँ स्कूलें चलती है उनकी। तो
0: संस्थान
1: जी,
0: स्कूलें चलती
1: तो
0: हैं।
1: जी, तो वहां पे मेरे को उनका अकाउंट, मतलब उनको पेमेंट देना वगैरह और उनको मेंटेन करने का, तो वो सब मैं देखता हूँ। और जी, तो ये वहां से, और उसके साथ जो वहां की व्यवस्था देखते हैं वहां पे स्वामी जी की, तो एक पर्सन, वो उनकी क्या रियल एस्टेट का काम है पूरा, प्लॉटिंग वगैरह का, तो वो उन्होंने मेरे को साथ में रखा है कि भाई कभी कोई जगह में लॉन्च करता हूँ तो वहां पे किसी को लाके बताना वगैरह नहीं, तो वहां
0: अच्छा,
1: से मेरे
0: वो
1: को
0: आपका
1: थोड़ा सा
0: साइड बिजनेस है।
1: जी, वो साइड बिजनेस है। बाकी पत्रकारिता के बारे में आपको मैं बताऊं, तो पत्रकारिता में ओनली अगर ईमानदारी से व्यवस्था अगर करे तो बहुत बढ़िया। बाकी पत्रकारिता में जैसे खबरें छपती है और जो मतलब पत्रकारिता को व्यवसाय बना दिया है पत्रकारों ने, बहुत से पत्रकारों से मेरी इसके बारे में बहुत वो है, होती है कि भाई कोई खबरें आप दबा देते हैं, कभी कोई खबरों को नहीं छापते हैं, तो ये गलत है। मतलब कहने का मतलब, ईमानदारी से पत्रकारिता करो, जो रियलिटी है उसको लोगों के सामने ले जाना, ये तो अपना धर्म बनता है। ये तो पत्रकारिता में कहते हैं कि नारद मुनि जी थे, उनको आराध्य नारद, जो नारद जी है उनका हम जयंती भी मनाते हैं, पत्रकार और पत्रकारों को सम्मानित भी करते हैं उस अवसर पे। तो जो वास्तविक पत्रकार है, जो डरते नहीं है, निष्पक्ष भाव से बिना राजनीति के जो करते हैं, उनको सम्मानित भी करते हैं कि नहीं
0: बिल्कुल
1: इन्होंने
0: बिल्कुल,
1: गलत। जी, तो मेरा सभी पत्रकार बंधुओं से भी मेरा
0: क्योंकि
1: निवेदन।
0: अभी जो है समय
1: जी
0: ऐसा चल रहा है जहां पर हमको इनकम सोर्स, जैसे आपका खुद का, चलो आप अकाउंटिंग का काम करते हैं और हॉबी से आप पत्रकारिता को कर रहे हैं, तो आपकी बात
1: जी
0: अलग है, लेकिन जिनका कोई दूसरा कार्य नहीं है और पत्रकारिता ही इनका फुल फ्लेज हो, तो वो कैसे क्या सरवाइव करेंगे?
1: नहीं, तो उनको तो वेतन मिलता ही है, वहाँ वेतन के अलावा वेतन मिलता ही है उनको, पर वहाँ वेतन मिलता है वो, उसके अलावा अगर वो सोचे कि नहीं मैं वेतन के अलावा कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यानी कि मतलब कुछ किसको किसकी खबरें छापना, किसकी नहीं छापना, और वहां से कुछ अर्निंग कर लेना, मतलब कैसे आपको बताऊं कि
0: अच्छा, समझ गया मैं। हाँ,
1: बस, तो ये
0: दो
1: जो
0: चीजें
1: है
0: नहीं होना चाहिए,
1: नहीं
0: पत्रकारिता
1: होना
0: में
1: चाहिए,
0: पारदर्शिता
1: बिल्कुल
0: होना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: सत्यवान होना
1: पारदर्शिता होनी
0: चाहिए,
1: चाहिए।
0: सबकी खबरें
1: जी
0: जानी
1: जी
0: चाहिए, ये आपका कहना
1: हाँ
0: है।
1: बिल्कुल
0: और एक
1: बिल्कुल
0: अच्छे
1: सर,
0: पत्रकार को जो है अपना जो कंपनी से या
1: धर्म
0: पत्रकार जो संस्थान है उससे जो पेमेंट मिलता है उससे उनको अपना जीवन यापन करना चाहिए, ना कि अलग
1: जी।
0: अलग खबरें जो बिना मतलब के खबरें छाप के अपना इनकम जनरेट करना, ये सब करना
1: हाँ
0: अच्छा नहीं है, ये आप बता रहे।
1: बिल्कुल
0: बहुत ही अच्छी बात
1: जी
0: आपने बताया। और पत्रकारिता का जो रुचि कैसे बढ़ा आपको एक्चुअली में, क्या लाइब्रेरी से आप पुस्तक पढ़ रहे थे या फिर पेपर्स पढ़ते थे, न्यूज़ के प्रति आकर्षण था इसलिए आप इसमें जुड़े, शौक से या फिर कुछ और भी था?
1: वास्तविक तो यही कि मैं जो लाइब्रेरी वगैरह जाता था, वहां पे पढ़ता था तो, और फिर एक पत्रकार का दबदबा अलग अलग रहता है, वो कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, किसी से मिल सकता है, एक और उनसे बातचीत कर सकता है, तो एक एक जरिया रहता है कि कहीं भी जाके अपन एक बार जाके न अपनी बात रख सकते हैं, उसको गलत हुआ तो गलत तो बोल भी सकते हैं, तो इस कारण मेरे को रुचि थोड़ी हुई इसमें।
0: अच्छा, चलिए,
1: जी
0: बहुत अच्छी बात आपने बताया। और आपकी पत्रकारिता में जो है निष्पक्ष स्वभाव है और सत्य के प्रति प्रेम है आपका। और निश्चित तौर पे आप दूसरी पहलू भी आप देख रहे हैं कि पत्रकार होने से समाज में कहीं ना कहीं हम अहम भूमिका निभा सकते हैं, और जहाँ पर गलत हो रहा है उस बात को भी हम उठा सकते हैं और उस बात को लोगों के बीच में पत्रकारिता के माध्यम से रख सकते हैं। इसीलिए आपने इसको एज ए हॉबी इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ आप अपना प्रोफेशन के तौर पे वेतन के रूप में आप अकाउंटिंग का काम जो है स्कूलों का करते रहे हैं, और उसके
1: जी
0: साथ में आप एज ए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप एज ए सेल्स का काम भी देखते रहे हैं, जहाँ
1: जी
0: जैसे जरूरत हो उन चीजों को भी आप करते रहे हैं।
1: जी
0: तो ये बहुत ही अच्छी बात
1: जी
0: आपने बताया। चलिए, हमारे विद्यार्थी मित्रों को शायद अभी पता चल गया होगा कि कैसे हमें पत्रकारिता के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप फुल फ्लेज पत्रकारिता ही करना चाहते हैं तो आप जर्नलिज्म में मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या छोटे कोर्सेस भी होते हैं, कई कई एनजीओ भी इस तरह के जो हैं 6 महीना या 3 महीने के कोर्सेस करा के आपको पत्रकारिता का जो है सर्टिफाइड कोर्स भी होता है। लेकिन आप डायरेक्टली आफ्टर 12th जो है जर्नलिज्म का 3 साल या 4 साल का जो डिग्री कोर्स होता है उसको करके भी आप जो है इस फील्ड में अच्छा खासा अपना एक चैनल बना सकते हैं, न्यूज़पेपर चला सकते हैं, इसमें भी अच्छी
1: बिल्कुल
0: कमाई है। और साथ ही साथ आप जो है समाज का जो है एक दायित्व जिम्मेवारी आपको मिलता है, तो इस फील्ड
1: जी
0: में आप स्काई इज द लिमिट है, बस यही है। लेकिन जैसे यशवंत जी जो बता रहे हैं उनकी अपनी एक अलग सोच है और अपनी एक भावना है, वो भी अपनी जगह पे सही है, और आप भी अपनी जगह पे जर्नलिज्म करने के बाद, ऐसा नहीं कि भाई अभी न्यूज़पेपर में ही काम करना है, लेकिन आज इसका दायरा बढ़ गया है। आप बहुत सारे चैनल्स देखते हैं, न्यूज़ चैनल 24 चलता रहता है, 24/7 कंटिन्यू कवरेज जो है चलती रहती है। तो एज ए न्यूज़ एंकर आप बन सकते हैं, या न्यूज़ रीडर आप बन सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, या खुद का अपना एक चैनल बनाकर आप जो है उसको रन कर सकते हैं, तो उससे भी काफी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। या आप अपना खुद का पत्रिका भी निकाल सकते हैं, या मैगजीन आप निकाल सकते हैं। बुक की तो बहुत सारी लिस्ट है, आप एक बार जर्नलिज्म का मास्टर डिग्री आपके पास आ जाता है तो फिर आप कंपनीज में काम भी कर सकते हैं, या फिर किसी एनजीओ में काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी मीडिया के माध्यम से वो भी अपना प्रचार माध्यम चाहते हैं, तो वो सारी चीजें जुड़ी रहती हैं। और कोई बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी है उनको भी एक पीआरओ जर्नलिज्म वाला चाहिए रहता है, ताकि वो कंपनी के पहलुओं को लोगों के बीच में अच्छी तरह से रखें, और कहीं कुछ डिस्प्यूट हो तो जर्नलिज्म के क्षेत्र में रहने वाले उसको ठीक ढंग से लोगों के बीच में रख सकते हैं, अपना बात रख सकते हैं। तो इसीलिए भी वो कंपनी वाले भी आपको जो है बुलाते हैं, तो वहां पर भी काम कर सकते हैं। तो स्काई इज द लिमिट, यहाँ पर आपको बहुत सारे रास्ते हैं, आप किस तरह से जुड़ना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए एक और ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद फिर हम यशवंत जी से वापस जुड़ेंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

गुजर रहा है तेजी से, वक्त गुजर रहा है तेजी से, अब वक्त नहीं है खोने को, जागो और जगाओ सभी को, अब वक्त नहीं है सोने को, अब वक्त नहीं है सोने को।

0: नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है जीवन विकास करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में, जहां पर हम लोग आज पत्रकारिता के बारे में बातें कर रहे हैं। और यशवंत जी जो है जर्नलिस्ट होने के साथ साथ जो है अपनी रुचि से पत्रकारिता में अपना खुद का पेपर भी चलाते हैं और दूसरे पेपरों में अपना धार्मिक जो चीजें हैं, धार्मिक स्थल है या धार्मिक जो बातें हैं उसका उस चीज उन चीजों का प्रचार प्रसार करने में अपनी रुचि रखते हैं। तो उन चीजों के लिए उन्होंने काम भी किया है और उसके लिए उन्हें सम्मान भी प्राप्त है। तो आइए फिर से मैं जोड़ना चाहूंगा यशवंत जी से। तो पत्रकारिता में क्या क्या हमारे जो है अचीवमेंट्स हैं या क्या क्या हम अचीव कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमारे विद्यार्थी मित्रों को बताइए, ताकि वो इस फील्ड में आने के लिए अपनी रुचि बढ़ा सकें। जी यशवंत जी।
1: जी जी, बहुत बढ़िया प्रश्न आपका। पत्रकारिता में जैसे आपने बताया कि सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, और जैसे कि आप देखते हैं न्यूज चैनल, बड़े बड़े न्यूज चैनल, सुधीर चौधरी डीएनए, आपने देखा होगा आज तक पर सुधीर चौधरी आते हैं डीएनए, 9 बजे आते हैं रात को, बहुत अच्छा डीएनए उसमें करते हैं। सभी को उनको देखना चाहिए किस प्रकार उन्होंने किस विषय को समेट कर किस प्रकार लोगों को प्रस्तुत करते हैं रियलिटी। ऐसे ही पत्रकारिता से आप बहुत से एनजीओ है संस्था उसपे जाके मंचों पे बोलना, एंकरिंग, उससे अपने को एंकरिंग भी अच्छी हो जाती है। मतलब कोई एंकरिंग सब ले तो जैसे सोनू शर्मा है, विवेक बिंद्रा है, आज उनको सुनने के लिए बहुत लोग ललचित रहते हैं। मतलब उनके टिकट नहीं मिलती है, उनके कार्यक्रमों में जाने के लिए टिकट नहीं मिलती है। ऐसे ही अपने कन्या कुमारी की भी दीदी है, शिवानी दीदी है, ऐसे ऐसे लोगों को सुनने के लिए, और बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जिनको विश्व पे कमांड रहता है। तो मैं कहता हूँ कि अगर पत्रकारिता से अगर बहुत सी चीजें अगर अपन प्राप्त कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ा करियर, बहुत बड़ा करियर।
0: जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और इसमें चैलेंजेस क्या है यशवंत जी, क्योंकि एक तो अचीवमेंट ये है कि आपका जो कार्ड है वो आपको पहचान देता है, और प्लस आप कहीं भी किसी भी जगह पे जा सकते हैं, ये एक है अचीवमेंट। लेकिन इसके साथ में चैलेंजेस क्या है वो थोड़ा सा बताएं।
1: चैलेंजेस तो निर्भयता, सबसे बड़ा निर्भयता, आप निर्भय होके काम करें। अगर आपने सोच लिया कि नहीं ये मैं छापूंगा, और ये जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके बारे में अगर मैंने इसके बारे में ये कर दिया, कल उठा के मेरे पे हमला हो जाए, मेरे पे FIR हो जाए, मेरे को कहीं जेल हो जाए, अगर ये सोच के करोगे तो फिर वो सक्सेस नहीं हो पाता। निर्भयता, अगर अपनी सच्ची बात है उस पर अड़ी हो गए, आप पत्रकारिता करते हैं या कोई भी बात हो जीवन में कोई भी हो, अगर निर्भयता रखेंगे, भय नहीं रखेंगे, बिना भेदभाव के कुछ भी करेंगे, तो आप जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि पत्रकारिता में स्काई इज द लिमिट, माना बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, आप नाम, शान और पैसे सब कुछ आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको निर्भय होना बहुत जरूरी है। कहीं भी आप जो है सच्चाई बताने के लिए आप अगर आगे रहते हैं और उसके लिए आप थोड़ा सा धाड़स करते हो, थोड़ा सा डेयरिंग करते हो, हिम्मत करते हो, तो निश्चित तौर पे आपके लिए ये जो है करियर बहुत बढ़िया है। और युवा साथी, अगर इसमें आप जो है सिर्फ टीवी में जो क्लाइमेक्स है या जो चकाचौंध है फेम और देखकर अगर आप आना चाहते हैं तो वो एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू यहाँ पर आपके लिए करियर को बहुत अच्छी तरह से अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको निर्भय होना बहुत जरूरी है, जो यशवंत जी ने बताया। अगर आप निर्भय हैं तो निश्चित तौर पे फिर आप यहाँ पर पत्रकारिता में बहुत अच्छा कर सकते हैं। जर्नलिज्म में बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ पर आगे बढ़ने का आपको चांसेस काफी है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं यशवंत जी से चाहूंगा कि

0: हाल ही में जो चीजें देख रहे हैं, क्योंकि 24/7 न्यूज चल रहे हैं, तो सच्चाई क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है। कई बार फेक न्यूज भी बहुत ज्यादा वायरल हो जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
1: जो विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि अभी 57 से मैं जो मैं देख रहा हूं और मीडिया चैनल भी बहुत कह रहे हैं कि आज के जो युवा वर्ग के, जैसे आज 12 वर्ष से 18 वर्ष 20 वर्ष के, उनको सोशल मीडिया पे ज्यादा रहते हैं और सोशल मीडिया पे बहुत फेक चीजें अभी आती है, बहुत फेक चीजें आती है। तो जो वास्तविक है उसको एक बार तो टटोलो, आप उसको फॉरवर्ड मत करो, एक बार देखो कि सच्चाई क्या है
0: बिल्कुल
1: और क्या ये अपने भारत देश में, अपने जो अपन अपने जन्म लिया है, अपना जन्म सिद्ध अधिकार है अपना, कि भाई गलत चीजों को क्यों प्रकाशित क्यों करना, उनका विरोध भी करना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और उस फेक को आप अगर विरोध करके अपन लिख सकते कि नहीं ये फेक है, उसमें
0: हाँ
1: फैक्ट नहीं है, तो बहुत बड़ा संदेश जाता है ये। और मैं कहता हूँ कि अभी फिलहाल जो भी युवा है या बच्चे हैं, आजकल वीडियो गेम्स बहुत देखते हैं और वीडियो गेमों में छुट्टियों में या जैसे भी समय मिला तुरंत घर वाले मोबाइल मोबाइल दे देते हैं और वो मोबाइल पे लगे रहते हैं और वीडियो गेम्स पे ऐसा उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, जैसे कि शूट करना शूट करना शूट शूट करते करते करते वो कोई कोई अचीव कर लेते हैं, तो उनके दिमाग में दिन भर ये शूटिंग, जैसे आपने विदेशों में देखा हो बच्चे स्कूलों में निकाल के कहीं बंदूक हाथ में आ गई तो वही शुरुआत कर देते हैं, उनको मालूम नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। ऐसे ही अभी एक जो हुआ कि किसी धर्म के प्रति ये धर्म हमारा अच्छा है ये धर्म खराब है, तो ये विषय था अभी बहुत चर्चा में और उस बच्चों को धर्मांतरण हो गया, वो न जाने मस्जिदों में जाने लग गया और धर्मांतरण हो गया और पेरेंट्स को मालूम ही नहीं कि दिन में 4-5 बार कहाँ जाता है और कैसे कहाँ क्या करता है वगैरह, तो ये बहुत अंतर्राष्ट्रीय गिरोह था और उन्होंने वीडियो के माध्यम से बच्चों को ब्रेन वॉश कर दिया। तो
0: अच्छा
1: यहाँ तक कि जब पहले बहुत सी, हालांकि अपने कानून ऐसा बना हुआ है कि उनको बहुत सो को बैंड भी किया है, जैसे पहले एक पबजी करके गेम चलता था इस वीडियो गेम में, तो बच्चों को बहुत रुचि थी उसमें, तो रुचि जगती है।
0: बिल्कुल
1: आजकल
0: बिल्कुल
1: क्या हो गया
0: बिल्कुल
1: कि
0: इसी जगह
1: वीडियो गेम के कारण बच्चों में रुचि जगती है, दिन भर वो सोचा सोच भी यही, बच्चे खाना तक छोड़ देते हैं, खाने भी बैठे रहते हैं, लोग जबरदस्ती खिलाना पड़ता है, ये स्थिति हो गई है, बहुत मतलब दुखदायी स्थिति है ये।
0: हाँ
1: तो
0: ईश्वर जी, ये तो बात आपने बहुत अच्छी बात
1: जी,
0: बताया कि
1: तो
0: टेक्नोलॉजी
1: मैंने ये किया
0: जो
1: कि
0: है हमारे हैंड में हाथ में आ गया, तो उसका जो है अच्छे भी और बुरे भी परिणाम आ रहे हैं, दोनों चीजें हमें
1: आ
0: देखना
1: रहे
0: पड़ रहा है। और जो बच्चों
1: जी
0: पे
1: जी
0: जो ज्यादातर इस तरह की चीजें हो रही हैं, वो
1: हाँ
0: कहीं ना कहीं
1: पेरेंट्स को
0: उनकी
1: सतर्क रहना
0: लाइफ
1: चाहिए
0: स्पॉइल हो रहा है, इसके वजह से हमें सतर्क रहना है। और खास
1: जी।
0: करके माता पिता को जो है बच्चों पे पूरा ध्यान देना है। और जब स्कूल लिविंग स्कूल जाने वाला बच्चा है, तो उसका जो है आने जाने और वो क्या करता है, वो सारी चीजों पर आपको निगरानी रखनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज
1: बिल्कुल
0: हम अपने
1: जरूरी
0: बच्चों को खो देंगे। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। चलिए यशवंत जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके, और आपने अपना जर्नलिज्म के बारे में बताया, अपने बारे में बताया। और जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक जो है मैसेज क्या देना चाहेंगे युवाओं के लिए जो अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए।
1: बहुत बढ़िया। हम सब युवाओं को ये कहता हूं कि आप देश का भविष्य हो, आप भारत आपके ऊपर टिका हुआ है, जैसे अपने कहते हैं ना कि एक कदम आप बढ़ाओगे तो सभी एक एक कदम बढ़ाएगा तो देश कहां से कहां हो जाएगा। और अपना संकल्प क्या है, भारत को विश्व गुरु बनाना, यानी कि भारत पहले विश्व गुरु था, अब उसको पुनर्स्थापित करना है। तो मैं कहूंगा आज के युवा में जितना भी टैलेंट है उसको करते हुए भारत को एक बार दुनिया को ये बताना है कि भारत विश्व गुरु था और है और रहेगा। तो मैं सोचता हूँ कि आज के युवा बहुत इसको प्रयत्न कर सकते हैं और अपने देश के प्रति अपने को गर्व होना चाहिए कि अपना देश सनातन जो था, हमारा संस्कृति जो, उसके ऊपर अपने को गर्व होना चाहिए, अपना ऋषि मुनि परंपरा थी जो हमारा, यहाँ इस भारत भूमि पे देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो मैं आज की युवा को यही कहूंगा कि अपने भारत के प्रति अपना गर्व होना चाहिए, तो आज का यही संदेश है मेरा।
0: यशवंत जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया और खास करके युवाओं को आपने संबोधन किया। गर्व होना चाहिए भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, फिर से एक्चुअली में भारत विश्व गुरु था और फिर से उसे पुनर्स्थापना करने की बात आपने कही है। तो ये सब चीजें हो सकता है आप अपने करियर राइट वे में चूज करें, आप अपने करियर के प्रति जो है पूरे निष्ठा के साथ अपने करियर को बनाइए। जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, जिस जो फील्ड आपको अच्छा लगता है, उस फील्ड के लिए आप पूरे आत्मसात आत्मिक रूप से तैयार रहें, पूरी तरह से उसकी जानकारी हासिल करें और उसके ऊपर जो है निष्ठा से काम करें, तो आप अपना करियर पहले बनाएं जिससे आपका जीवन यापन अच्छी तरह से चल सके, फिर आप अपने परिवार के बारे में सोचिए और फिर आप अपने देश के बारे में सोचिए। ये बहुत ही अच्छा संदेश यशवंत जी आपने दिया और बहुत बहुत साधुवाद आपको कि हमारे साथ जुड़कर अपना अनुभव साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर, कुछ नए करियर के बारे में बात करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणेशा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति, संते रहो, नमस्कार, राते रहो।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: क्या आपके पास भी कोई ऐसा हुनर है जो रातों की नींद उड़ा दे?
1: क्या आपका दिल भी किसी पैशन के लिए धड़कता है?
0: वो पैशन जो आपको भीड़ से अलग करता है, वो जुनून जो आपको हर मुश्किल पार करने में ताकत देता है।
1: चाहे वो गिटार के सुर हों, कठपुतलियों से कहानी हो या फिर रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ा हो,
2: हम ला रहे हैं एक ऐसा शो जहां हम बात करेंगे उन जोशीले युवाओं से जिन्होंने अपने पैशन को ही अपना रास्ता बना लिया
3: और ये जुनून जबरदस्त था हम में। तो आज हम चाहे गुणंतर 70 साल के हो गए तो आज भी श्रमदान होता है और हमने हर गांव में 3-3 तालाब बना दिए आज भी।
4: तो सेवा को सर, ये वास्तव में आपने इस कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर नाम मधुबन रेडियो ने दिया है जुनून। ये वास्तव में जुनून है, ये चस्का है।
5: सुनिए उनकी कहानी, जानिए उनका सफर और महसूस कीजिए उस जुनून की आग को उन्हीं की जुबानी। पेश है रेडियो मधुबन पर एक अनोखा कार्यक्रम जुनून, हर शनिवार शाम 6 बजे सिर्फ आपके अपने रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
6: श्रोताओं, मेरे साथियों और मेरे रेडियो के दोस्तों, आपके लिए एक आवाज, मेरी आवाज शरद, और मैं आपके साथ जुड़ता हूँ हर बार रेडियो मधुबन के माध्यम। रेडियो मधुबन जो आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन है, आपका FM स्टेशन है, और माउंट आबू की वादियों में आप हमें सुन सकते हैं 107.8 FM पे, और इसके साथ दुनिया के अलग हिस्सों में आप पहुंच सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से। और आपका फेवरेट प्रोग्राम है जुनून, और उनमें हमारे साथ होती है हर बार एक शख्सियत, और शख्सियत ना केवल एक जुनून पाले हुए होती है अपने जिगर में, अपने दिल में, अपने मस्तिष्क में बहुत सालों से, बट कहते हैं ना कि हमारा मकसद जीवन का जो है वो इंसानियत की सेवा में होना चाहिए, और ऐसे ही इंसानियत के एक सैनिक, एक फौजी हमारे साथ है जो खेती, और ना कहे कि खेती ही ना कहे तो जैविक खेती और इसके पर्यावरण पे जो पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव, इसके अलावा कैसे हम अपने अपने ट्रेडिशनल बीज को संवर्धित कर सकते हैं और कैसे हम पर्यावरण और खेती के बीच में समन्वय बना सकते हैं और उसके अलग अलग स्तर हैं, इसके बारे में हम बातचीत करने के लिए हमारे बीच में है एक शानदार शख्सियत, वो है आकाश चौरसिया। तो आकाश जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम के बारे में।
7: जी नमस्कार, सभी को धन्यवाद आपका।
6: आकाश जी, मैंने छोटा सा परिचय आपका हमारे श्रोताओं को दिया और वो मुकम्मल परिचय हुआ कि नहीं हुआ वो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो आकाश जी, अपने आप को कैसे जानते हैं? मैं कहूंगी श्रोताओं को बताएं कि आकाश कौन है।
7: जी सबसे पहले नंबर तो मधुबन रेडियो का और इस प्रोग्राम का बहुत तहे दिल से अभिनंदन, और आपका जो आप इसको निरंतर युवाओं के लिए, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए निरंतर इस प्रयास को जारी रखे हैं, आपका भी हृदय बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन। मेरा नाम जैसा आपने बताया आकाश चौरसिया, सागर मध्य प्रदेश की धरती से हूँ और पिछले 18 वर्षों से प्राकृतिक जैविक तरीके से खेती के कार्य में संलग्न हूँ। मन में शुरू से था कि मैं डॉक्टर बन के बीमारी का इलाज करूँगा, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए और जैसे जैसे समझ तैयार हुई, अस्पतालों से जुड़ने का मौका मिला और वहाँ पर जो चीज़ें हमने रियलाइज़ करी उससे हमारी सोच में परिवर्तन आया। वहाँ पर हमने देखा लगातार अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है, लगातार बीमार लोगों की संख्या बढ़ रही है, लगातार बीमारियों की भी संख्या बढ़ रही है, और इन सब की बढ़ती हुई संख्या क्या हमारे डॉक्टर बनने से ठीक होगी, और अगर होगी तो पहले से जितने डॉक्टर बन चुके हैं उन्होंने अभी तक ये ठीक क्यों नहीं की। तो बस इसी विचार ने जो है ना कुछ ध्यान आकर्षित किया उन चीजों की तरफ जिन पर हम रोजमर्रा की जिंदगी से परिचित होते हैं लेकिन उन पर कभी गंभीरता से विचार नहीं करते, उन पर कभी काम नहीं करते। तो बुंदेलखंड की सुनी एक कहावत है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन वैसे होगा तन। तो हम सभी लोग जानते हैं कि भोजन का जो असर है वो मन पर, शरीर पर और हमारे विचारों पर निश्चित तौर पे पड़ता है। जैसे किसी भी गाड़ी में अच्छा हम फ्यूल डालते हैं तो वैसे ही हमारी गाड़ी वैसे माइलेज देती है, वैसे ही अगर हम शरीर को अच्छा सात्विक पोषण देंगे, सात्विक भोजन देंगे, विषमुक्त भोजन देंगे, तो निश्चित तौर पे हमारा शरीर तो माइलेज देगा ही देगा, बाकी हमारा मन और मस्तिष्क भी जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई हमारी आपकी बात नहीं है, ये प्रकृति का विज्ञान है जो हमने रियलाइज किया। तो ये जब बात हमें समझ में आई तो बस विचारों में परिवर्तन हुआ और ईश्वरीय प्रेरणा कह लीजिए कि हमारा ये मन बना कि मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, अभी किसान बन के अच्छा अन्न खिला के लोगों की सेहत पर काम करेंगे। तो 2007 में ये मन बनाया, फिर धीरे धीरे करके काम करना चालू किया कि हमारे पास जमीन नहीं थी तो किराए की जमीन लेके काम की हमने शुरुआत करी। आज वर्तमान में अभी हम 28 एकड़ में स्वयं खेती करते हैं और इस खेती के मॉडल को केवल हमने खेती के रूप में नहीं रखा है, आज वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए एक ऐसा रोल मॉडल बनाया है जिसको हमारे युवा साथी रिप्लिकेट करके अपना भविष्य भी सुरक्षित कर सकते हैं और एक अच्छी आर्थिक उन्नति भी अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो खेती करना एक अलग बात है, लेकिन वर्तमान की जो चुनौतियां हैं खेती में उनका प्रैक्टिकल समाधान निकालना, वो भी सस्टेनेबल तरीके से, और एक ऐसा मॉडल बनाना जो आज की आवश्यकता को पूर्ति करे और युवाओं के जो सपने हैं उनको भी पूरा करे या उनकी जरूरत को पूरा करे, ऐसे मॉडल को हमने यहाँ पर बनाया है और पिछले 18 सालों से इस पर हम कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि जग विदित है कि जो समस्या होती है वही आविष्कार का कारण बनती है, तो खेती में जो चुनौतियां हमने फेस की, जो परेशानियां फेस की, चाहे जमीन का ना होना, चाहे घटते जल स्तर का सामना करना, या किसानों की तरफ से बताए गए समस्याओं पर अध्ययन करना, या फिर बढ़ते कीड़ों की समस्या का सामना करना, खरपतवार की समस्या, बाजार में बिक्री की समस्या, या फिर मौसम परिवर्तन के बुरे असर का जो प्रभाव है उसकी समस्या, इन सारी समस्याओं ने खेती के काम को तो प्रभावित किया ही किया, बल्कि ये सोचने पे भी हमें मजबूर किया कि इनका प्रैक्टिकली और सस्टेनेबल समाधान क्या हो सकता है। तो हमारे पिताजी और हमारे परिवार की ये एक देन कह लीजिए या उनका आशीर्वाद कह लीजिए, हम बचपन से ही खेती से जुड़े थे, लेकिन इस तरफ कभी हमारा रुझान नहीं था कि हमारा अपना भविष्य और हम अपना पूरा जीवन खेती में लगाएंगे और समाज में परिवर्तन लाने के लिए काम करेंगे। तो बचपन से हम पिताजी के साथ जंगल जाया करते थे, क्योंकि हमारे पिताजी पान की खेती करते थे, अभी भी करते हैं। तो उसमें लेंटाना एक पौधा होता है जिसकी लकड़ी जो है ना पान की बेल को चढ़ाने के लिए यूज की जाती है, तो वो जंगल से लाके कलेक्ट करते थे, तो उनके साथ में हम भी जाते थे। तो वहां पर हमने प्रकृति को करीब से देखने का हमें मौका मिला और ये समझ तैयार हुई कि प्रकृति ने अपने आप को कैसे पूर्ण करके रखा हुआ है और बिना किसी के हस्तक्षेप के या बिना किसी की आवश्यकता से वो अपने आप में पूर्ण तो है ही है, बल्कि सस्टेनेबल भी है, माने कि उसको किसी भी अन्य आर्टिफिशियल या फिर इंटरनली किसी भी सपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है। जो स्टेबिलिटी का सिद्धांत है वो जंगलों से हमें सीखने को मिला और वहीं से हमें प्रेरणा भी मिली कि एक साथ वनस्पतियां जंगल में 4 से 5 उग सकती हैं तो हमारे खेतों में 1 से अधिक फसलें क्यों नहीं उग सकती हैं। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को हमने कई बार बनते हुए देखा, वहां से हमें प्रेरणा मिली कि एक साथ शहरों में लोगों के पास जमीन कम पड़ी तो एक के ऊपर एक लोग घर बनाने लगे और जंगलों में ऑलरेडी 4-5 वनस्पतियां एक साथ होती हैं, नीचे हमने घास उगते हुए देखा है जंगल में, ऊपर झाड़ियां उगते हुए देखी हैं, फिर उसके ऊपर बड़े पेड़ उगते हुए देखे हैं। और यहां से हमें इंस्पिरेशन मिला कि जंगल में बिना किसी खाद के, बिना किसी पानी के, बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के, बिना किसी कीड़ों की दवाई डालने पे, बिना बीज डालने पे, बिना पानी डालने पे, ये जंगल हरे भरे हैं और 1 से अधिक वनस्पतियों को मिट्टी की जो पूरी क्षमता है उस पूरी क्षमता के साथ में वहां पर ये पेड़ पौधे उग रहे हैं। तो क्या हम ऐसा नेचर का जो इंटेलिजेंसी है उसके साथ जुड़ के क्या हम अपनी फसलों के साथ में ऐसा कर सकते हैं? तो प्रयोग करना हमने चालू किया और जब आप किसी भी काम में लग जाते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता एक समय के बाद तो आपको मिलनी तय है, पर यह है कि मैदान छोड़ के आपको नहीं जाना चाहिए, वही हमने किया। तो 3-4 साल के लगातार एक्सपेरिमेंट के बाद में सबसे बड़ा और सबसे जरूरी भारत की कृषि के लिए जो चाहिए कि सस्टेनेबिलिटी, बायोडिस्पोजिबिलिटी और इकोनॉमिकल वायबिलिटी के प्रिंसिपल को पूरा करते हुए कैसे हम एक ऐसे मॉडल पे काम करें जो कम जमीन में ज्यादा उपज दे दे, बढ़ती आबादी का समाधान निकाल दे लोगों को सेहतमंद फूड दे दे। और जैसे जमीन का रकबा डे बाय डे कम होता चला जा रहा है, उस जमीन के कम रकबे में इतनी उपज दे दे कि किसान को खेत छोड़ के ना भागना पड़े और कम जमीन में वो अच्छी आर्थिक उन्नति तय कर पाए। ऐसा फार्मूला हमने तैयार किया, उसको हम नाम दिए मल्टीलेयर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। और इसकी मदद से हम एक ही जमीन पर एक साथ 4 से 5 फसलें उगाते हैं और इसमें खेती में आने वाली जो लागत है हमारी वो 3 से 4 गुना कम हो जाती है और उपज हमारी 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। और वर्तमान में जो खेती में तमाम चुनौतियां हैं उनका प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल समाधान भी मिलता है। जैसे इसमें पानी की बहुत कम जरूरत पड़ती है, आज हमारे देश में जिस तरीके से पानी का उपयोग और दुरुपयोग दोनों ही बढ़ रहे हैं, उस चीजों को देखते हुए हमें ये रिजल्ट हमारे सामने है कि डे बाय डे हमारा जल स्तर जमीन से नीचे चला जा रहा है और ये बहुत ही चिंतापूर्ण विषय है। तो हमें एक ऐसी तकनीक लेके आना पड़ेगी या ऐसे चीजों पर काम करना पड़ेगा जो पानी की डिमांड कम करे, यानी कि कम पानी में हो जाए और पानी का संरक्षण और संवर्धन भी हो। तो उस पर हमने उस दिशा में काम किया। तो ये मल्टीलेयर खेती का जो मॉडल है इसमें पानी 70 से 80% बचता है, जमीन आपकी 3 गुना कम लगती है, समय आपका 3 गुना बच जाता है, फिर इसके बाद बाकी के जो रिसोर्सेज हैं वो भी आपके 3 गुना कम लगते हैं, फिर इसके बाद आपका इसमें कीड़े बहुत कम लगते हैं, लगभग 70 से 80% कीड़े नहीं लगते हैं बाहर के मौसम के अनुसार, और इसमें खरपतवार भी लगभग 80% 90% तक कंट्रोल होता है। तो ये सारे समाधान भी आपको प्रैक्टिकली मिलते हैं जिसमें खेती में लागत बढ़ती है। तो ये समाधान मिलने के साथ साथ ये खर्चे को कम करता है, उपज को बढ़ाता है और किसान को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लेके जाता है। तो ये एक इनोवेशन है जिसके माध्यम से हम भारत के छोटे लघु सीमांत किसानों के लिए और ऐसे युवाओं के लिए जो खेती में कुछ बेहतर करना चाहते हैं और खुले आसमान के नीचे काम नहीं कर पाते हैं लेकिन एक ऐसे वातावरण के अंदर वो काम कर सकते हैं जैसे कि जहां पर उनको बहुत ज्यादा धूप का सामना ना करना पड़े, बहुत ज्यादा सर्दी का सामना ना करना पड़े, ऐसे एक कम्फर्ट जोन में हम फसलों को उगाते हैं और उसी में हमारे जब लोग काम करते हैं, किसान काम करते हैं, युवा काम करते हैं तो वो अपने आप को सहज फील करते हैं। तो ये मॉडल बेहद लाभपूर्ण है भारतीय कृषि के लिए और युवाओं के एक आकर्षण का केंद्र है।
6: इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि जो आकाश चौरसिया का जो खेत है वो कैसा दिखता है, उसका दृश्य कैसा है, हमारे रेडियो के साथियों को जो रेडियो के सुनने वाले हैं उनकी नजरों में एक दृश्य बनाए, इमेजिनेट करवाइए कि आकाश चौरसिया जिस खेत में काम करते हैं वो खेत कैसा दिखता है।
7: जी देखिए, हमने खेत को एक पूरा एक ऐसा रोल मॉडल बनाया है जिसमें हमारी पूरी बायोडाइवर्सिटी से लेके पूरा इकोसिस्टम से लेके पूरा टेम्परेचर से लेके हर चीज पर वर्कआउट करके हमने एक ऐसा डिजाइन बनाया है। तो अपने खेत पर हमारा 16 एकड़ का एक कैंपस है, एक 3 एकड़ का कैंपस है, एक 5 एकड़ का कैंपस है, तो 3 अलग अलग जगहों पर हमारे कैंपस है। तो 16 एकड़ के कैंपस में हमने खेत के चारों तरफ बॉर्डर पे बाम्बू का प्लांटेशन किया है जो हमारा वेटर का काम करता है और टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करता है और भी बहुत सारे सुरक्षा का भी काम करता है और हमें एक फिक्स इनकम भी देता है। बॉर्डर पे चारों तरफ बाम्बू लगाने के बाद हमने अंदर खेतों के कई सारे पार्ट बनाए हैं। तो लगभग 16 एकड़ के कैंपस में हमने 16 अलग अलग ब्लॉक बनाए हैं और हर एक ब्लॉक में अलग अलग तरह की हम चीजें को करते हैं। जैसे एक ब्लॉक में हम सब्जियां उगाते हैं तो एक ब्लॉक में हम फ्रूट ऑर्चर्ड बना के रखे हैं, फिर एक ब्लॉक में हम गौशाला और बाकी के काम करते हैं, फिर एक ब्लॉक में हम अपना अनाज वाली फसलें उगाते हैं, पल्सेस उगाते हैं, मिलेट्स उगाते हैं। तो ऐसे अलग अलग ब्लॉक्स में हम अलग अलग काम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और हर एक ब्लॉक को सेग्रीगेट करने के लिए हमने अंदर में भी मैंगो का प्लांटेशन, अमरूद का प्लांटेशन, चीकू का प्लांटेशन कर रखा है। और ऐसे पूरे 16 एकड़ के कैंपस में अगर आप मिला जुला के बॉर्डर और सब अंदर के पेड़ों को बात करें तो 7,500 पेड़ हमने 16 एकड़ के कैंपस में लगा के रखे हैं जो हमारी 4 से 5 लाख रुपए की साल भर की फिक्स आमदनी का जरिया भी बन के जाते हैं और हमारे फार्म का बाहर के तापमान से 8 डिग्री तापमान भी कम करके रखते हैं। साथ में इतने पत्ते गिरते हैं कि लगभग 8 से 10 ट्रक पत्ते हमारे इन पेड़ों के माध्यम से, पतझड़ के माध्यम से हमें मिलते हैं और इससे हमें टनों से खाद ऑटोमेटिकली कुदरती सिस्टम से बनके हमको मिट्टी को ऑटोमेटिकली मिल जाती है। और साथ ही साथ जो है ना इससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी हमारी बढ़ी है, कार्बन परसेंटेज भी सॉइल का बढ़ा हुआ है और भी छोटे मोटे बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। तो एक ऐसा वातावरण हमने फार्म के अंदर बनाया है कि फार्म पे आने के बाद, खेत पे आने के बाद आपको लगता ही नहीं है कि यहाँ पर खेती हो रही है या यहाँ पर जो है ना एक पूरा एक समन्वय कार्यक्रम तैयार किया, जहाँ पर शिक्षा से लेके, चिकित्सा से लेके और साथ में स्वास्थ्य से लेके और कृषि से लेके और उद्योग से लेके, ये सारी चीजें आपको एक जगह पर कहीं ना कहीं दिखने को मिलेंगी। और पर्यावरण को कैसे संरक्षित करना है, हमें कैसे पानी को बचाना है, हमें कैसे देसी बीजों को संरक्षित करना है, कैसे हमें बायोडायवर्सिटी क्रिएट करनी है, कैसे उन चिड़ियाओं को बुलाना है जो फसलों में लगने वाले कीड़ों को खाती हैं, कैसे हमें मधुमक्खियों को बुलाना है जो पॉलिनेशन का काम करती है और नेचुरली छत्ता लगा के शहद बनाने का काम करती हैं, हमें कैसे भौरे और तितलियों को बुलाना है जो कि हमारे फार्म की सुंदरता को मेंटेन करें और पौधों के मनोरंजन के लिए लाभकारी हों। तो ये पूरा एक बायोडायवर्सिटी, एक इकोसिस्टम हमने 16 एकड़ के कैंपस में बिठाया है और एक बहुत ही सुंदर वातावरण के साथ में हम फार्मिंग कर रहे हैं। फार्मिंग से जो उपज होती है उसको प्रोसेस करके उनके प्रोडक्ट बना रहे हैं और उन प्रोडक्ट को हम जो है ना बाहर फार्म के जो है सोसाइटी को दे रहे हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है और लोग काफी खुशहाल जीवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। निरंतरता इन सब चीजों में है। तो जो पूरा 16 एकड़ का कैंपस है, एक अपने आप में एक बड़ा प्रकृति का सुंदर कहना चाहिए दृश्य है जिसको आप महसूस कर सकते हैं। और लगभग 2000 वैरायटियों से सजा हुआ हमारा फार्म है। तो हमारे फार्म पे लगभग 2000 वैरायटी के हमने प्लांटेशन किया हुआ है, जिसमें चीकू बादाम से लेके हरड़ बहेड़ा आंवला से लेके खिन्नी खैर महुआ से लेके अचार से लेके वो सारे रेयर प्लांट आपको हमारे फार्म पे मिलेंगे, जो कहीं ना कहीं हमें जंगलों में भी अब देखने को नहीं मिलते।
6: बहुत ही बढ़िया दृश्य आपने हमारे रेडियो के साथियों के सामने पेश किया और आपने इस दृश्य के साथ साथ हमारे रेडियो के साथियों को बता दिया कि प्रकृति के साथ खेती संभव है और ये खेती सिर्फ संभव ही नहीं है, ये आर्थिक रूप से भी आपको संबल देती है। तो ये संबल देते हुए ये खेती संभव कैसे होती है, क्या इसके लिए आपकी तरह 16 एकड़ होना आवश्यक है या इसको 5 बीघा 10 बीघा 15 बीघा में किया जा सकता है, छोटा सीमांत किसान भी क्या इसको कर सकता है और वो कैसे इसको लाभकारी बना सकता है, इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा।
7: ये बिल्कुल भी जरूरी है कि आप इतने बड़े कैंपस के साथ ही काम करें, क्योंकि हम जिस ध्येय के साथ में काम कर रहे हैं, हमारा ध्येय है भारत के हर वर्ग के किसानों के लिए उनकी समस्याओं के समाधान देना। इसलिए हम बड़े एरिया में फार्मिंग को लेके आए हैं ताकि हम हर किसान के समस्याओं के समाधान पर प्रैक्टिकली काम कर सकें, रिसर्च कर सकें, शोध कर सकें और ऐसे अलग अलग मॉडल्स को बना पाए और उनको दिखा पाए कि अगर आप एक एकड़ की भूमि से ताल्लुकात रखते हैं तो ये वाले मॉडल आपके लिए सुटेबल है, अगर आप 2 से 5 एकड़ की जमीन रखते हैं तो ये वाला मॉडल आपको सूट करेगा, और अगर आप 5 एकड़ से बड़े किसान हैं, 10 एकड़ हैं, 25 एकड़ हैं या और बड़े स्केल में फार्मिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए ये मॉडल है। तो इसलिए हम बृहद अलग अलग मॉडल्स को लेकर काम करते हैं, लेकिन अगर कोई खेती में अपना भविष्य बनाना चाहता है, अपने लिए और अपने परिवार के लिए और समाज के लिए सेहतमंद अन्न पैदा करना चाहता है और अपनी आर्थिक उन्नति और अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी अगर सुनिश्चित करना चाहता है तो वो आधा एकड़ से भी काम कर सकता है। आधा एकड़ मतलब होता है 22,000 स्क्वायर फीट, 22,000 स्क्वायर फीट लैंड से भी वो अपनी आजीविका बहुत अच्छे से चला सकता है और एक अच्छी खासी इंजीनियरिंग की जो पेमेंट होती है, जो सैलरी होती है, वो आधा एकड़ से 1 एकड़ की जमीन में सुनिश्चित भी कर सकता है। तो ऐसे मॉडल भी हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं, उनका डेमोन्स्ट्रेशन है हमारे पास। तो कम से कम आधा एकड़ और अधिकतम से अधिकतम कितनी भी जमीन पे आप काम कर सकते हैं, मॉडल का, फसलों का चयन बस आपको करना पड़ेगा कि अगर आप बड़े स्केल में फार्मिंग कर रहे हैं तो अलग तरीके के मॉडल होंगे, अगर आप बहुत थोड़ी जमीन पे काम कर रहे हैं तो अलग तरीके के मॉडल होंगे। तो इस तरीके से इसके किसान, हर वर्ग के व्यक्ति इसके अंदर काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इतना ही एरिया हमको चाहिए।
6: आपकी इस खेती को आप क्या नाम देते हैं, अगर आप इसका भारतीय नाम हमको सोचे तो क्या नाम दिया जा सकता है इस खेती को, इसके मॉडल को?
7: देखिए, खेती का समग्र विकास का आत्मनिर्भर मॉडल, ये हमने इसका कंक्लूजन निकाला है, खेती का समग्र विकास का आत्मनिर्भर मॉडल। तो देखिए, समग्र विकास हमने इसलिए नाम लिया क्योंकि जब हम अपने जीवन में कार्य करते हैं तो जैसा कि हमारा ध्येय है, आपका ध्येय है, बाबा का जो ध्येय है कि हमारे मन के विचारों की शुद्धि हो और हम जो है ना अपनी खुद की उन्नति करें और फिर उसके बाद समाज की और परिवार की और पूरे समष्टि की उन्नति के बारे में सोचें, तो जब हम समग्र विकास की बात करते हैं तो इसमें समष्टि के विकास के प्रिंसिपल को हम शामिल करते हैं और इसमें समष्टि में जितने भी जीव कार्य करते हैं उनकी हिंसा हुए बगैर उनका विकास हो वो भी हम अपने मॉडल में शामिल करते हैं। तो हम अपने किसी भी मच्छर की भी हत्या नहीं होने देते हैं, मक्खी की भी हत्या नहीं होने देते हैं, चिड़िया की भी हत्या नहीं होने देते हैं, किसी भी कीट पतंगे की हत्या नहीं होने देते हैं, और मिट्टी के अंदर काम कर रहे केंचुए से लेके बहुत सारे बैक्टीरिया से लेके वायरस से लेके पशु से लेके पक्षी से लेके मच्छर मक्खी तितली भौंरे इत्यादि से लेके समष्टि के जितने भी इकोसिस्टम में हेल्प करने वाले जीव हैं उन सब का विकास करते हुए हमने ये मॉडल बनाया है। तो इस मॉडल के अंदर इन सब का तो विकास होता ही है, किसी की हिंसा नहीं होती है। साथ ही साथ जो भारत की वर्तमान कृषि की चुनौतियां हैं, या आप दूसरे पक्ष से इस बात को ये भी कह सकते हैं कि भारत की या भारतीय कृषि को करने के लिए जो साधनों की जरूरत होती है, जो बाहरी साधन है उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कि ट्रैक्टर हुआ, दवाइयां हुई, खाद हुआ, ये सब बाहरी साधन है जिसकी कृषि को कोई आवश्यकता नहीं है। कृषि अपने आप में संपन्न है और कृषि अपने आप में सस्टेनेबल है और समृद्ध है, बस हम उसके प्रिंसिपल पर काम नहीं कर रहे, हम अपने प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। इसलिए बाहरी संसाधनों से हमने खेती को जोड़ दिया और खेती में लागत भी बढ़ा दी और ढेर सारी बीमारियां और तमाम अस्पतालें हमने खड़ी कर दी और मानसिक विकृतियां भी हमने इसके कारण खड़ी कर दी। तो कुल मिला के खेती अपने आप में सस्टेन है। और अगर हम दूसरे पक्ष से, जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर हम बात करें तो इसमें पानी की हमें चिंता करना पड़ेगी, क्योंकि हमें इंटरनली जो साधन की जरूरत है वो मिट्टी, फिर उसके बाद पानी, फिर उसके बाद वातावरण, फिर उसके बाद मित्र जीव, फिर उसके बाद जो है ना इकोसिस्टम है ना, और उसके बाद देसी बीज। ये कुछ चीजें हैं जो इंटरनली खेती को समृद्ध बनाती हैं, इन पर काम होने की आवश्यकता है। तो हमारा जो मॉडल है इन सभी पर काम होता है, साथ साथ में हम खेती करते हैं, पर हम एक तरफ जो है ना प्रकृति के सारे जीवों की हिंसा किए बगैर उनके विकास के लिए काम करते हैं, और साथ ही साथ हम जो है ना पानी के मुद्दे पर भी काम करते हैं कि पानी भी हमारी खेत की गिरने वाली बूंद धरती के अंदर जाए, वाटर टेबल बढ़े और कम पानी में भी हम खेती के मॉडल को कर पाए। दूसरा, देसी बीजों को हम खोजें जो लुप्त हो गए हैं, या उन्हीं के साथ हम खेती करें ताकि वो पर्यावरण इंसान की सेहत के प्रति अनुकूल हो और हमारी खेती की लागत को भी वो कम करें। फिर साथ में हम बायोडाइवर्सिटी को भी संजो के इस मॉडल के साथ में काम करते हैं ताकि हमारे फार्म पे गाय से लेके मधुमक्खी चिड़िया भौंरे तितली से लेके ये सारे लोग हमारे फार्म पे हों और फसलों में लगने वाले कीड़े या खेतों में उगने वाली घास इन सब चीजों को कंट्रोल करें और हमें उसके लिए आउटपुट सोर्सेस कोई लागत की जरूरत ना पड़े। तो इस तरीके से चाहे खाद हो, चाहे कीट हो, चाहे दवाई हो, चाहे मिट्टी की हेल्थ हो या फिर पानी हो, ये सारे मुद्दों पर भी साथ साथ में काम होता है, इन सब का भी साथ साथ में विकास होता है। तो इसलिए दोनों पक्षों से इस मॉडल को हम समग्र विकास का मॉडल कहते हैं। अब इसके बाद हमने दूसरा शब्द जोड़ा है इसको, आत्मनिर्भर, क्योंकि प्रकृति को जब हम समझते हैं तो प्रकृति अपने आप में आत्मनिर्भर है, सस्टेनेबल है, उसको किसी को चलाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम सुबह उठेंगे जब धरती के सारे लोग बोलेंगे कि सूरज निकल तब निकलेगा, ऐसा नहीं है कि सारे लोग बोलेंगे कि हवा चल तो चलेगी, ऐसा कोई भी काम नहीं है नेचर का जो किसी इंसान के बोलने पर हो, ये अपने आप होता है, सस्टेनेबल है। तो ये सारी चीजें जो है ना, आप अगर हम अपने शरीर का अध्ययन करें और बहुत ही दूर तरीके से या अंतर मन से हम अपने शरीर को झांक के देखें तो इसमें होने वाली सारी प्रक्रियाएं भी स्वतः हो रही हैं, सब कुछ स्वतः हो रही है, सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। तो कुल मिला के हमारा शरीर भी सस्टेन है, वैसे ही हम इस पूरी प्रकृति की व्यवस्था के पार्ट हैं और ये प्रकृति भी पूरी तरह से सस्टेन है, आत्मनिर्भर है। तो खेती भी हमारी आत्मनिर्भर होना चाहिए क्योंकि खेती भी प्रकृति की व्यवस्था का एक पार्ट है। तो इसमें हर चीज जो है ना स्वयं से होना चाहिए, बाजारी व्यवस्था पर नहीं होना चाहिए। बाजारी व्यवस्था जब इंक्लूड होती है तो खेती में लागत भी बढ़ती है और नेसेसरी जो है ना प्रकृति का दोहन होता है और नुकसान पहुंचता है प्रकृति के उन सारे जीवों पर जो कहीं ना कहीं खेती की खुशहाली के लिए या खेती की समृद्धि के लिए काम करते हैं। तो इसलिए इस मॉडल को हम समग्र विकास आत्मनिर्भर का मॉडल बोलेंगे, जो खेती में एक आर्थिक आजादी तो देगा ही देगा, प्रकृति के साथ जुड़ने का सही मौका भी देगा और साथ ही साथ हमारे लिए आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता भी खोलेगा। तो इस तरीके से इस मॉडल पर हम काम कर रहे हैं और इसको इस तरीके से हमने नाम दिया है।
6: इस पूरे मॉडल में, इस पूरी प्रक्रिया में हमारे श्रोताओं के मन में एक सवाल अभी भी बने हुए हैं। वो सवाल है कि कैसे ये एक जल संरक्षण का मॉडल बन रहा है, कैसे हम अपने पुरातन हमारे प्राकृतिक बीजों को जो हमारे साथ सालों से हमारे साथ बने हुए हैं उनको हम कैसे अगली पीढ़ी को दे पाते हैं, ये पूरी प्रक्रिया जो है ये कैसे आगे बढ़ती है, ये किसान अभी भी जानना चाहोगे
7: जी। इसके लिए देखिए, जो पानी वाले जहाँ तक मुद्दे की बात है, तो इसमें हम क्या करते हैं, खेत पर गिरने वाली पानी की हर एक बूंद को वहीं पर रिचार्ज करने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए प्रकृति के दो सिस्टम काम करते हैं। हम गहराई से अध्ययन करें तो नेचर अपने आप में सस्टेन है। अब इसको जब हम समझने जाते हैं तो देखिए, धरती पर लाखों वर्षों से पानी की बूंदें गिर रही हैं। ये पानी की बूंदें जब धरती पर गिरती हैं तो प्रकृति ने ऑलरेडी इन बूंदों को, पानी को धरती के अंदर ले जाने की चिंता की है और ऐसे जीवों का निर्माण किया है, ऐसे बैक्टीरिया का निर्माण किया है जो धरती के अंदर दिन रात 24 घंटा जो नेचर ने उनको काम दिया है वो दिन रात काम करते हैं। और उसकी वजह से मिट्टी में पोरोसिटी डेवलप होती है, मिट्टी में रंधता बनती है और जब पानी की बूंद गिरती है तो वो अपने आप पानी धरती के अंदर नीचे जाता है। तो ये तो प्रकृति का सेटअप ऑलरेडी पहले से है, लेकिन हमने हरित क्रांति के बाद इस सेटअप को डैमेज किया। अनावश्यक रूप से धरती पर केमिकल फर्टिलाइजर और रासायनिक पेस्टिसाइड के स्प्रे से जो जमीन के अंदर कार्य कर रहे जीव हैं, जैसे कि केंचुआ है, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे जीव हैं, इन सबकी हत्या का निमित्त बने हम, इन सबकी हत्या का कारण बने। और जब ये लोग धरती के अंदर मर गए तो मिट्टी हार्ड होने लगी, धरती पर पानी की गिरने वाली बूंद बह के नालों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से समुद्र में जाने लगी और ये बाढ़ का भी कारण बने और भी कई तसाल। तो धरती के अंदर पानी जा ही नहीं रहा है लेकिन धरती पर पानी की बूंद गिर रही है। अब हमें करना यह है कि रासायनिक कारणों से जो ये प्रकृति के सारे जीवों की हत्या हुई है उनको हम रोक दें। हम अपने आप जो है ना, जब आप केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का प्रयोग बंद कर देंगे तो निश्चित तौर पे धरती के अंदर के जो जीवाणु हैं वो अपने आप जो है ना, जो एक्का दुक्का भी बचे हुए हैं तो वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा के मल्टीप्लाई करके और वो काम व्यवस्थित वैसे ही करने लगेंगे जैसे राम और रावण के जमाने में काम होता था। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात हमें ये समझना पड़ेगी कि जब धरती पर पानी की बूंद गिरती है और वो जमीन के अंदर कुदरती रूप से नीचे जाती है, पर वो तब जाती है जब वो पानी की बूंद वहां पर ठहरेगी। अगर वो पानी की बूंद ठहरेगी नहीं और वर्षा अगर गिरेगी, लगातार गिरेगी, तो पानी की बूंदें इकट्ठी होते हुए एक जगह प्रेशर बनाएंगी और प्रेशर बना के मिट्टी के कटाव के साथ में खेत से निकल के दूसरे के खेत में और दूसरे के खेत से नाले में और नाले से नदी में निश्चित तौर पर जाएंगी। और ऐसा होता है तो हमें क्या करना है कि पानी की बूंदों को खेत में ही रोकना है। तो हमने उसके लिए तीन विधियां तैयार की कि आप जो है ना, जहां पर खेत का जैसा भी ढाल है, अगर पूरब से पश्चिम की तरफ ढाल है तो उत्तर से दक्षिण की तरफ आप खेत में बुआई करें। इसके करने से खेत में गिरने वाले पानी का जो प्रेशर है वो एक साथ में इकट्ठा नहीं होगा और इकट्ठा ना होने से खेत के बाहर पानी नहीं जाएगा, क्योंकि आपने मेड़ा की जो डायरेक्शन है वो ढाल की विपरीत दिशा में बना दी है। तो मेड़े को क्रॉस करके पानी नहीं जा सकता क्योंकि बिकॉज वहां पर जो गिरने वाला पानी है वो एक साथ दूसरे मेड़े के पानी के साथ नहीं मिल रहा है, और जब दूसरे मेड़े के साथ नहीं मिलेगा तो प्रेशर नहीं बनेगा। तो हर एक मेड़े का पानी मेड़े के नीचे नाली में रहेगा और उसकी वजह से जब पानी नाली में रुकेगा तो निश्चित तौर पे धरती के जो जीव ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो नीचे लेके जाने का काम करेंगे। तो कितने भी वर्षा हो, खेत के अंदर पानी हम इस तरीके से पहली विधि के माध्यम से रोकते हैं। अगर पानी बहुत ज्यादा मात्रा में गिरा, नालियां ओवरफ्लो हो गई, खेत पूरे भर गए, भरने के बाद ये खेत के बाहर पानी जाएगा, तो हमने क्या किया, खेत के चारों तरफ हमने 2 फीट गहरी, 2 फीट चौड़ी और पूरे खेत को घेरते हुए नाली बना दी। ये नाली को हम ट्रेंच भी बोल सकते हैं अंग्रेजी भाषा में, और हिंदी भाषा में, अपनी भाषा में हम उसको नाली भी बोल सकते हैं। इसके माध्यम से पानी खेत के बाहर जाने से रुकता है और बेस कीमती हमारी जो मिट्टी का कटाव होता है वो भी इसमें रुकता है। अब इसके बाद एक लेबल आएगा, एक समय आएगा कि ये पानी उस नाली में भी भर के ओवरफ्लो होगा। तो हम क्या करते हैं, फिर खेत के अंत में जहाँ पर हमारे खेत का स्लोप है, ढाल है, कि अब यहां से ही पानी पूरा बाहर हमारे खेत की मेड़ से निकलेगा, तो हम वहां पर क्या करते हैं, एक 10x10 फीट का गड्ढा बनाते हैं और उस ओवरफ्लो हुए पानी को फिर गड्ढे में डालते हैं। तो पहले हमने खेत की ढाल की दिशा में, ढाल के विपरीत दिशा में मेड़ा बना के पानी रोका, ओवरफ्लो वहां से हुआ तो हमने खेत के चारों तरफ बनाई हुई नाली में पानी रोका, वहां से ओवरफ्लो हुआ तो हमने खेत के अंत में ढाल की डायरेक्शन में बनाए हुए 10x10 फीट के गड्ढे में रोका। ऐसे करके हम 3 अलग अलग विधियों के माध्यम से पानी को ठहराते हैं, रोकते हैं और फिर रुका हुआ पानी केंचुए के द्वारा बनाए हुए रास्तों के माध्यम से धरती के अंदर जाता है, बैक्टीरिया के माध्यम से मिट्टी में बनाई हुई पोरोसिटी के माध्यम से वो रुका हुआ पानी, वो ठहरा हुआ पानी धरती के अंदर जाता है और इस तरीके से धरती के अंदर जाके ये वाटर टेबल को अपने आप इम्प्रूव करता है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को जो लोग ये बातों को सुन रहे हैं। जिस फार्म पर हम काम कर रहे हैं 16 एकड़ के कैंपस में, वहां पर वो पूरा पत्थर युक्त पहाड़ जैसा खेत है और वहां पर 2 फीट के बाद में चट्टान है, लेकिन वहां पर जब हम काम शुरू किए थे तो लगभग आधा इंच का पानी लगभग 15 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए आता था और उसके बाद बंद हो जाता था टोटली। आज वहां पर ये स्थिति है कि हम 7,500 पेड़ मेंटेन कर रहे हैं, गौशाला मेंटेन कर रहे हैं, 40 से 50 लोगों की प्रतिदिन रसोई और उनका रेसिडेंस मेंटेन कर रहे हैं और गर्मी के टाइम पे 4 एकड़ में खेती मेंटेन कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल अनुभव मैंने खुद से इतने सालों के अध्ययन और अनुभव और इन प्रयोगात्मक विधियों के माध्यम से हमने अचीव किया है और मुझे लगता है कि अगर ये काम हम कर सकते हैं इतनी विपरीत परिस्थितियों में, तो भारत के अन्य युवा, भारत के अन्य किसान भाई जो इस बात को सुन रहे हैं, निश्चित तौर पे वो अपने खेतों में इन विधियों को अपनाएंगे, क्योंकि इनमें जो है ना कोई लागत नहीं लगती है। इसका एक डायग्राम है, एक ढांचा है जो हम आपको व्हाट्सएप पर शेयर भी कर सकते हैं और उसके माध्यम से अगर आप ये लेआउट बनाते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी खेती पर गिरने वाले पानी को धरती के अंदर ले जाएंगे और उससे आपका वाटर टेबल बढ़ेगा और वाटर टेबल बढ़ने से निश्चित तौर पर आप पानी जैसी बड़ी समस्या से छुटकारा पा पाएंगे और खेती को गर्मी में भी बहुत बेहतर तरीके से आर्थिक स्थिति को भी सुधार पाएंगे।
6: श्रोताओं, तो हमने जाना एक पूरी प्रक्रिया को, हमने जाना कि कैसे मेड़ का पानी मेड़ में, खेत का पानी खेत में और खेत अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट कैसे बन सकता है, पानी कैसे खेत में रह सकता है और हमारे खेत में ही हम अपने पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो अगला प्रश्न था मेरा चौरसिया जी से, वो था कि कैसे हम प्राकृतिक बीजों का संवर्धन कर पा रहे हैं, कैसे उनका संरक्षण कर पा रहे हैं, वो प्रक्रिया कैसे आपके इस मॉडल में संभव है?
7: जी देखिए, देसी बीज निरंतर हमारे लुप्त होते चले जा रहे हैं और उसकी वजह है कि हाइब्रिड बीज जो है ना किसानों को सहजता से दुकानों पर मिल जाते हैं और देसी बीज जो है ना किसान जो है ना भूलते जा रहे हैं उनको लगाना। लेकिन आज वर्तमान में अगर हम देखें तो हाइब्रिड फूड का खाना खा के हमारी जिस तरीके से सेहत कमजोर हो रही है और उम्र कम हो रही है, इन सब बातों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे जो देसी बीजों का अन्न हमारा खाया करते थे और उनकी उम्र 100-100 साल हुआ करती थी और वो बीमार हुए बगैर जो है ना अपना स्वस्थ जीवन जीते थे। आज की तारीख में ये स्वस्थ जीवन की कल्पना करना बहुत कठिन काम है। तो देसी बीजों के अंदर वो गुणवत्ता है, देसी बीजों के अंदर वो कुदरती ताकत है जो हमारे शरीर के लिए बेहद आवश्यक है। तो जिस तरीके से कुदरत ने हमको बनाया है उसी तरीके से हमारे लिए क्या आवश्यक है, क्या हमारा भोजन आवश्यक है, वो भी कुदरत ने वैसे ही बनाया। ऋतुओं के अनुसार फल बनाए, ऋतुओं के अनुसार सब्जियां बनाई, मौसम के अनुसार जो है ना अनाज बनाए, हर तरह की चीजें बनाई और उनको हम उगा के जब उनको जिस तरीके से हमारे पूर्वज पहले प्रोसेस करके खाया करते थे वैसे अगर हम खाते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे शरीर को बल मिलता है और हमारा शरीर भी हष्ट पुष्ट होता है। तो देसी बीजों के अंदर जो गुणवत्ता है वो कुदरती तौर पे बहुत ही लाभकारी है और ये देसी बीज ना केवल हमारी सेहत के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हमारी प्रकृति के वातावरण और मिट्टी की हेल्थ के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो देसी बीज जहाँ पर भी लुप्त हो चुके हैं, जो जो भी वैरायटियाँ हमें खोजने को मिली, जहाँ जहाँ से भी हमको मिली या कुछ हमारे पास थी, उनका संरक्षण और संवर्धन हमने देसी बीज बैंक सागर में बना के किया है और लगभग 200 से भी अधिक देसी बीजों की वैरायटियाँ हमारे पास हैं जो निरंतर हम किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। अभी तक लगभग 5 लाख से भी ज्यादा किसानों को देश भर में देसी बीज वितरण का कार्यक्रम कर चुके हैं और साथ ही साथ इन बीजों के अंदर सबसे अच्छी गुणवत्ता ये है कि इन बीजों को आप स्वयं फिर से आप बना सकते हैं जो कि हाइब्रिड बीजों के अंदर नहीं है। हाइब्रिड बीज जब आप बाजार से लेके आते हैं तो एक बार उन्हें लगाने के बाद जो फसल निकल जाती है फिर दोबारा उसी फसल को लगाने के लिए आपको फिर से दुकान से बीज खरीदने पड़ते हैं, परंतु अगर देसी बीजों का प्रयोग अगर हम करते हैं तो इनको एक बार लगाने के बाद दोबारा भी हम इन बीजों को बीज बना के इस्तेमाल कर सकते हैं और तीसरी बार भी और हमेशा के लिए बार बार इन बीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसमें किसानों के बीच में एक भ्रांति पैदा हुई है कि देसी बीज उतने ज्यादा नहीं फलते जितने ज्यादा हाइब्रिड बीज फलते हैं, तो ये एक मिथ्या भ्रम मात्र है। देसी बीजों के अंदर हाइब्रिड से भी ज्यादा फलने की पावर है, परंतु हमें थोड़ा सा टेक्निकल रूप से, तकनीकी रूप से बीज

0: मिलेंगे, लुप्त हो गए हैं तो कहाँ पे। तो ऐसे भारत में बहुत सारे विद्वान और बहुत सारे कर्मठ युवा, कहना चाहिए किसान कहना चाहिए, जो प्रकृति पर्यावरण और हमारी मानवता के अस्तित्व को बचाने के लिए निश्चित तौर पे एक मानवीय सेवा का कार्य कर रहे हैं, उन सभी भाइयों से मिलके आप वो देसी बीज ले सकते हैं। जैसे हमारे पास भी 200 से भी अधिक वेराइटियां कलेक्शन हैं, आप हमसे भी बीज ले सकते हैं और फिर उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे मैं भारत में 10 से 15 लोगों को जानता हूँ जो इससे ईश्वरीय कार्य में लगे हुए हैं, तो उन लोगों से भी जो बीज हमारे पास नहीं है वो उनसे लेके भी आप बीजों को मल्टीप्लाई करके ऐसे उनका विस्तार कर सकते हैं और उनको फैला सकते हैं। जब आपके पास बीज हो जाएं तो उन बीजों को भी अन्य किसानों तक साझा आप अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। तो इस तरीके से देसी बीजों का विस्तार भी होगा और हमें एक सेहतमंद, एक ताकतवर अन्न मिलेगा जिससे हम आजीवन स्वस्थ रहेंगे।
1: जी तो रस्तरी मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि इस पूरे मॉडल में, बीजी मॉडल को लेकर आपने जो अपनी प्रक्रिया से हमें अवगत कराया है, लेकिन अभी भी प्रश्न बने हुए हैं कि अगर यदि हम दक्षिण भारत में जाते हैं जहाँ पर भिन्न प्रकार की फसलें हैं, या नॉर्थ ईस्ट में हम जाते हैं जहाँ पर भिन्न प्रकार की फसलें हैं, और राजस्थान के मरुस्थलीय इलाके में भी भिन्न प्रकार की फसलें हमें देखने को मिलती हैं, तो वहाँ पर जो ये मॉडल है, ये जो हमारा अलग मल्टी लेयर जिसे आपने एक सिस्टम बनाया है, मॉडल बनाया है एग्रीकल्चर का, ये कैसा दिखता होगा?
0: देखिए, इसे दक्षिण भारत से लेके अपना उत्तर भारत और मध्य भारत सभी जगह इस मॉडल को जो है ना आप काम कर सकते हैं इस मॉडल के साथ में। इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होते हैं, जो फसलों के कॉम्बिनेशंस हैं जिनके साथ में हम एक साथ कई तरह की फसलें उगाते हैं, वो कॉम्बिनेशन भी परिवर्तित नहीं होंगे। इस मॉडल को करने के लिए जो हमें स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, ढांचे की जरूरत पड़ती है, वो भी चेंज नहीं होंगे, चेंज केवल होगा समय। तो जिस तरीके से अगर हम देखें तो दक्षिण भारत में जो है ना गर्मी थोड़ा जल्दी आ जाती है, उत्तर भारत में और मध्य भारत में गर्मी थोड़ा लेट आती है। तो अगर गर्मी वहां पर जल्दी आती है तो यहाँ पर गर्मी आने के टाइम पे जो हम फसल का कॉम्बिनेशन करते हैं जिस टाइम पे, वो उस टाइम पे नहीं होगा, वो वहां पे बदल जाएगा। तो जैसे हमने अगर मंथ ऑफ फरवरी का लिया महीना, तो फरवरी के महीने में जो हम उत्तर भारत या मध्य भारत में जो हम फसल लगाएंगे वो वहां पर दिसंबर के महीने में लग जाएगी, क्योंकि जो तापमान हमें जो वातावरण में मिलता है वो वहां पर दिसंबर में मिलता है। तो केवल टाइमिंग का अंतर होगा, फसल के कॉम्बिनेशन में कोई बदलाव नहीं होगा, फसल को उगाने के लिए जो ढांचा हम क्रिएट करते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और कॉम्बिनेशन में भी नहीं। तो इस तरीके से हम भारत के हर एक राज्य में, हर एक कोने में कर सकते हैं। इवन विदेशों में भी जाके हमने बहुत सारे वर्कशॉप लिए हैं, वहाँ के किसानों को भी प्रेरित किया है और वहाँ पर भी ये मॉडल लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो वहाँ की जलवायु, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का वातावरण सब कुछ अलग हो जाता है। तो बस केवल टाइमिंग का अंतर होता है, बाकी कॉम्बिनेशन और स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होता। पूरी दुनिया में इस मॉडल को कहीं पर भी किया जा सकता है।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8 FM और आपका फेवरेट प्रोग्राम जुनून। जुनून में हमारे साथ हैं एक स्मार्ट खेती करने वाले किसान, या कहें कि मॉडर्न किसान, या कहें कि प्राकृतिक खेती को देश में विकसित करने वाले खेती के जनक हमारे बीच में आकाश चौरसिया। आकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इस मॉडल को लेकर जब आगे बढ़ते हैं तो इस मॉडल में एक विशिष्ट बात है कि आपने बताया कि ये जल संरक्षण भी कर रहा है, ये हमारे देशी बीजों का संरक्षण भी कर रहा है, लेकिन फिर भी एक मन में बात रहती है कि सरकार जो है, या कहें कि गवर्नमेंट जो है, वो सपोर्ट करने के लिए कौन सी योजनाएं लेकर आई है जिसका लाभ किसान ले सकता है और वो इस मॉडल की तरफ आगे बढ़ सकता है, या जो किसान जिसके पास इतना इन्वेस्टमेंट करने की गुंजाइश शुरुआती रूप में नहीं है, तो वो कैसे इस मॉडल में एंटर हो सकता है, प्रवेश कर सकता है?
0: जी देखिए, सरकार की तरफ से अगर हम देखें तो तमाम तरह की योजनाएं हैं जो खेती को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और खेती को समृद्ध बनाने के लिए कार्य कर रही हैं। तो उन सभी योजनाओं का हम लाभ लेके खेती को बहुत अच्छे मुकाम पर ले जा सकते हैं। रही बात इस मॉडल में किस तरीके से गवर्नमेंट सहयोग करती है, तो देखिए, ये मॉडल को तो अभी सपोर्ट कम नहीं है, कई अलग अलग एजेंसियों ने, जैसे कि नाबार्ड हुआ और कई तरह के बड़े जो भारत में एनजीओ काम कर रहे हैं, उन लोगों ने तो फाइनेंशियली सपोर्ट देना किसानों को शुरू किया है, और हरियाणा गवर्नमेंट ने इस मॉडल पे कुछ कुछ सब्सिडियां दी हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी ये पूरे भारत में नहीं है, परंपरागत किसी विकास योजना में भी ये तकनीक शामिल है तो वहाँ पे भी ग्रांट सब्सिडीज है फार्मर्स के लिए, प्राकृतिक खेती और मल्टीलेयर खेती के लिए।

0: तो अभी फुल फ्लैश में सिर्फ इस मॉडल के लिए सब्सिडी का प्रावधान नहीं है, लेकिन अन्य अन्य विधियों के माध्यम से ये मॉडल को कई अलग अलग रूपों में सब्सिडाइज करके किया जा सकता है। तो जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना हुई, आप उसके थ्रू भी आप ये मॉडल पे काम कर सकते हैं, तो आपको सब्सिडाइजेशन हो जाएगा। और बाकी इसमें लगने वाले पेड़ हैं, पौधे हैं, तो उद्यानिकी विभाग की जो स्कीम चलती है प्लांटेशन के लिए, उसमें आप ये कर सकते हैं। फिर हमने जो बायोडाइवर्सिटी बनाने के लिए बताया कि हम खेत की मेड़ पर चारों तरफ बैम्बू और बाकी के पौधों का प्लांटेशन करते हैं, तो वो आप बैम्बू मिशन से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू आप ले सकते हैं। तो कुल मिला के 3-4 अलग अलग स्कीमों के माध्यम से इस मॉडल को आप पूरा कर सकते हैं। और इसके बाद जो आपका फार्म प्रोड्यूस होता है उसको वैल्यू एडिशन करने के लिए भारत सरकार की तमाम बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें काम कर रही हैं। जैसे उद्यान की विभाग के पास PMFI जो स्कीम है, जिसमें प्रधानमंत्री सृजन रोजगार कार्यक्रम, तो इसमें 10 लाख रुपए तक की सब्सिडीज का प्रावधान है और इसमें आप कोई भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी फसल का वैल्यू एडिशन करने के लिए एक अच्छी स्कीम का फायदा ले सकते हैं और सब्सिडी के माध्यम से जो है ना, आप इस वेंचर को वैल्यू एडिशन करके कई गुना और अधिक दामों में बेचने का बना सकते हैं। तो सब्सिडियां बहुत सारी हैं, जो किसान भाई आगे आके इसमें काम कर रहे हैं, जिनको जानकारियां हैं वो इनका लाभ ले रहे हैं, और जिनको जानकारियां नहीं हैं वो कृपया जानकारी लेके और आप इतनी योजनाओं का लाभ उठाइए और अपनी खेती को आर्थिक रूप से सशक्त करिए और आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करिए।
1: बहुत ही बढ़िया आकाश जी। बस चलते चलते मैं जानना चाहूँगा कि बदलते हुए मौसम और बदलते हुए क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को लेते हुए क्या इस खेती में किसान अभी भी लाभ महसूस कर रहे हैं या फिर एक कठिन परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं बदलते दौर में?
0: जी निश्चित तौर पे लाभ बहुत सारे भारत के किसान ले रहे हैं, परंतु एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जो कहीं ना कहीं छूट जाती है, जो हर युवा को ध्यान में रख के काम करना चाहिए, कि जैसे आप किसी भी एक अच्छी सैलरी के लिए 8 घंटे की मेहनत करते हैं पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी अपनी समझ के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ में आप किसी भी काम में जब हाथ डालते हैं तो निश्चित तौर पे आप एक अच्छी आय अर्जित कर पाते हैं। तो ठीक उसी तरह से अगर आपको इस खेती के वेंचर में एक बेहतरीन लाभ लेना है तो कम से कम 8 घंटे की प्रतिदिन आप इसमें ड्यूटी दीजिए, डेडिकेशन के साथ काम करिए, ऑनेस्टी के साथ में काम करिए और फुल नॉलेज के साथ में काम करिए, पूरे प्रबंधन के साथ में आप काम करिए, तो निश्चित तौर हमारा जो अनुभव है वो आपको एक अच्छा मतलब जो है रोल मॉडल के रूप में आपको लेके आएगा। तो हर वर्ग के युवा, हर वर्ग के किसान इस पद्धति को अपना के, इस मॉडल को अपना के आत्मनिर्भर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं।
1: आपका दिन कैसा गुजरता है, आप अपनी कौन कौन सी भूमिका देखते हैं अपने खेत?
0: जी हम सुबह से पहले तो दैनिक कार्यों में 4:30 बजे जो है दिनचर्या चालू होती है, 4:30 से 5 बजे के आसपास। तो दैनिक कार्यों को कंप्लीट करने के बाद सुबह 6 बजे जैसे ही सूरज धरती पे आता है, उजाला होता है और खेतों में काम शुरू हो जाता है, तो जो रूटीन का होता है दिन का वो सुबह से खेतों में होता है, जो प्राकृतिक वातावरण के साथ में, शुद्ध हवा के साथ में और प्रकृति की गोद में जो है ना सुबह का समय गुजरता है। और ये बहुत ही जबरदस्त होता है, जो एक जिम करने वाले को 8 घंटे में जो अचीव होगा वो खेती में सुबह 1 घंटा काम करने में अचीव हो जाता है। तो एक अच्छी हेल्थ और एक अच्छी मानसिक स्थिति और एक अच्छे वातावरण और एक अच्छी स्वस्थ सांस लेने का मौका जो है सुबह से चालू होता है। तो इस तरीके से सुबह 6 बजे दिनचर्या चालू होती है खेतों में काम करने की, और लगातार फिर अगर शिविर नहीं होता है तो दिन भर ये चलता है। शाम के समय जब हम फ्री हो पाते हैं, जब अंधेरा हो जाता है, तो फोन पे आए हुए सभी कॉलों को निपटाते हैं, जिसका टाइम 8 से 10 के बीच में होता है, और फिर उसके बाद जो है ना 10 के बाद में 12-1 बजे तक जो भी होता है समय, उसमें हम लोगों के आए हुए सवालों का रिप्लाई देते हैं व्हाट्सएप पे। तो लगभग 200 से लेके 600 तक व्हाट्सएप जो है ना प्रतिदिन लोगों के रिप्लाई करने में लगाते हैं, और सारे फोन कॉल जिन भाइयों को बात करनी होती है समझना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारी दिन भर की पूरी जो दिनचर्या है वो अलग अलग कार्यों में, कुल मिला के सभी तरह की जो काम है वो सब सेवा के कार्यों में ही पूरा दिन गुजरता है। और जब वर्कशॉप होती है 20 से 26 हमारे सागर में 7 दिन का एक फिक्स वर्कशॉप है, तो उस वर्कशॉप के दौरान जो है ना सुबह 9 बजे से क्लास चालू होती है और शाम को 6 बजे तक ही लगातार चलती है। तो उस दौरान तो वर्कशॉप में लोगों को सिखाने और इन सब चीजों में समय जाता है, परंतु जब नहीं होता है तो इस तरीके से हमारी पूरी दिनचर्या होती है।
1: बहुत ही बढ़िया, आपका आपने हमें इतना समय दिया आकाश जी, और अपना समय हमारे जुनून कार्यक्रम को निकाला, अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका जुनून क्या है?
0: हमारा जुनून एक ही है जिसको लेकर हमने अपनी पढ़ाई छोड़ी, MBBS करना छोड़ा, डॉक्टरी का सपना छोड़ा, वो यही है भारत के प्रत्येक नागरिक जो है ना स्वस्थ जीवन जिए, और उसके लिए चाहिए कि भारत के किसान प्राकृतिक खेती को अपनाएं और भारत के युवा खेती में आएं, क्योंकि आने वाला जो भारतीय कृषि का जो वजन है, जो बोझ है, वो हमारे युवाओं के कंधों पर जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर युवा अपनी खेती में अपना भविष्य तो बना ही सकते हैं, बल्कि जो है ना इसमें अपना क्रीम दिमाग डाल के खेती की एक नई परिभाषा को गढ़ते हुए खेती की पूरी डेफिनेशन को बदल सकते हैं, जो भारत की कृषि के लिए बड़े गौरव की बात होगी और पूरे विश्व में इसका एक जो विश्व गुरु होने का जो एक हमारा सपना है वो वापिस, हमारा गौरव जो है ना वापिस लौटेगा। तो हमारा जुनून केवल यही है कि हम कैसे जो है ज्यादा से ज्यादा भारत की मिट्टी को विषमुक्त बनाएं और भारत के युवाओं को खेती में लाएं, ताकि आने वाला जो समय है, आने वाली जो भारतीय कृषि का जो वक्त है, वो सुनहरे युवाओं के हाथ में और सुनहरे भविष्य के हाथ में हो, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन एक स्वस्थ वातावरण और एक स्वस्थ अन्न के साथ में अपना जीवन खुशहाल जिए।
1: श्रोताओं, आपने सुना एक महत्वपूर्ण आवाज को, एक देश के मध्य भारत से सागर से आने वाले आकाश चौरसिया को, जिन्होंने हमारी प्राकृतिक खेती, हमारी पुरातन खेती या हमारी पारंपरिक खेती को फिर से जीवित कर दिया है। और ऐसे हमारे साथ में काम करने वाले व्यक्ति, ऐसे यशस्वी शख्सियत के साथ जिनका मौका मिला, आपको सुनने का मौका मिला, हम सभी आज गदगद हैं उनके प्रयासों को देख के। तो हम फिर से आपसे ऐसे ही मुलाकात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के साथ। हमारे फेवरेट प्रोग्राम जुनून में सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आकाश जी, आपका आभार और धन्यवाद।
0: जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पुनीत कार्य में निश्चित तौर पर लगे रहें और ईश्वरीय प्रेरणा से ये निरंतर ये आवाजें लोगों तक पहुंचाते रहें, ताकि लोगों को लाभ हो और अपने मानवीय लाभ उठाते हुए समाज में इसी तरीके से परिवर्तन लाने के आप निमित्त बने। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, साधुवाद।
1: श्रोताओं, आपने सुना एक आवाज, तो जानी पहचानी आवाज है आकाश चौरसिया जी की। आकाश जी ने अपना एक समय हमें दिया और इस कार्यक्रम के बाद हमारी जो समझ बनी है, तो निश्चित रूप से हम अपने खेतों में लेकर जाएंगे और हमारे युवा अपनी खेती को वापस तैयार करेंगे और वे बनेंगे एक स्मार्ट किसान या कहेंगे स्मार्ट फार्म। तो जुनून में हमारे साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होती है हमारे अगले कार्यक्रम में। तो यहाँ पर शरद, आपका फेवरेट होस्ट दोस्त, आपको करता है सलाम, नमस्कार।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, इसे कहते लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। ओके, बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? पर्पस ऑफ लाइफ इज कैन आई एंजॉय द प्रोसेस ऑफ जर्नी। कैन आई एंजॉय द प्रोसेस ऑफ जर्नी? सपोज हमको कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है। सपोज इफ आई वॉन्ट टू कम फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब हम दिल्ली पहुंचेंगे तो ही हम बहुत खुशी में रहेंगे। लेकिन कहा जाता है कि हर एक स्टेप ऑफ यात्रा में क्या उस यात्रा के प्रोसेस को आप एंजॉय कर सकते हो क्या? एंड दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप में से कितनों ने हवाई यात्रा की है, हाथ उठाइए। अरे वेरी गुड। अच्छा, व्हेन यू गो इन एन एरोप्लेन फायदा क्या होता है? बहुत वंडरफुल अनुभव होते हैं। एक, अगर हमें किसी मंजिल पर जल्दी पहुंचना होता है, वी ऑलवेज यूज एन एयरक्राफ्ट मोड, यू नो, जो आपको 24 घंटे लगती है दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में, वहां पे अगर हम एरोप्लेन में बैठेंगे तो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। नंबर टू, जब आप एरोप्लेन में बैठते हो, धीरे से आप ऊंचाई में पहुंचते हो, वहां से अगर आप नीचे देखोगे ना, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी आपको बहुत छोटी दिखाई देगी, राइट? नंबर थ्री, जब आप ट्रैवल करते हो, आप बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल करते हो, लेकिन आपको फील होता है जैसे आप एक जगह आराम से बैठे हुए हो, आपको बिल्कुल जर्क फील नहीं होगा, यू विल फील एज इफ यू आर स्टेशनरी, लेकिन एक्चुअली यू आर ट्रैवलिंग एट अ वेरी हाई वेलोसिटी। जब ये एरोप्लेन नीचे उतरती है और जैसे जमीन को टच करती है ना, तब वो बहुत जर्क होता है, तब हमको महसूस होता है माई गॉड इट वॉज एक्चुअली ट्रैवलिंग एट अ वेरी हाई वेलोसिटी, जबकि उस समय उसकी वेलोसिटी काफी कम हो गई है। उसी तरह फ्रेंड्स, यात्रा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो सभी लोग यात्रा करते हैं वो स्थूल यात्रा होती है। आप हो सके ना तो आप ये 3-dimensional वर्ल्ड से अपने आप को ऊपर लेकर जाने की कोशिश कीजिए और वो यात्रा करिए अवे फ्रॉम दिस 3-dimensional वर्ल्ड। और जब आप वो यात्रा ट्रैवल करेंगे तो आप देखेंगे एक्चुअली आप बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल करेंगे, लेकिन आपको फील भी नहीं होगा। एंड दैट जर्नी इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ स्पिरिचुअल जर्नी। स्थूल यात्रा तो हम सभी करते हैं, लेकिन जब आप उस स्पिरिचुअल जर्नी में ट्रैवल करना आरंभ करेंगे, जहां पे आप अपनी स्थिति को बहुत धीरे धीरे ऊंचा उठाने लगते हो, जब वो ऊंचा उठाते हो, बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल कर रहे हो, नंबर वन। नंबर टू, हमारी अवस्था इतनी श्रेष्ठ हो जाती है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हमको बहुत छोटी लगेगी। And it's a very, very comfortable journey. और जैसे ही वो spiritual journey से आप नीचे उतरते हो, तब आप jerk feel करते हो। So one of the purpose of life is, can I enjoy this spiritual journey? And that is what is very, very important.

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया। इस कार्यक्रम के तहत हमें बहुत खुशी है क्योंकि राजकीय विद्यालय और ईश्वरीय विद्यालय दोनों विद्यालय का सहयोग से विद्यार्थी विकास में बच्चों का टैलेंट को प्रतिभा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज हम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धमसरा में पहुंचे। बहुत खुशी लग रहा है। हर दिन की तरफ आज भी विद्यालय का आवाज बच्चों का आवाज सुनने को मिलेगा। बच्चों का अंदर में जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, जो भाव है, भावना है, कविता का माध्यम से, गीत का माध्यम से, प्रार्थना का माध्यम से और भाषण का माध्यम से जन जन तक पहुंचाएंगे क्योंकि सरकार का जो मंशा है, आसपास जो गतिविधि हो रही सब तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच एक स्टेज देती है जिसका चलते बच्चे आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और इस तरह मौका जब उनको मिलता है तब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो उनके पास जो छुपी हुई प्रतिभा है जन जन तक पहुंचाते हैं। रेडियो मधुबन इस तरह पुनित काम करने के लिए सभी सहयोग देते हैं और सरकार भी और प्रशासन लोकल प्रशासन भी सहयोग देते हैं और विद्यालय के स्टाफ और प्रभारी इस कार्यक्रम को सहयोग देते। तो देर किस बात की, शुरुआत करते हैं पहला प्रस्तुति और इस कार्यक्रम को साक्षी दृष्टा रूप में हमारा मैम भी देख रहे हैं, सबको कोऑर्डिनेट किए। मैम अपना परिचय देंगे। मैम का आवाज सुनकर बच्चे भी थोड़ा वार्म अप हो जाएंगे, बच्चे को बोलने के लिए उमंग उत्साह है। छोटे छोटे बच्चे उनका तोतल तोतल आवाज में सुनने को मिलेगा लेकिन पहले मैम को स्वागत करते। मैम अपना परिचय देंगे।
1: मैं श्रीमती हसुक धायल, सब्जेक्ट इंग्लिश से
0: जी मैम,
1: और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धामसरा
0: जी,
1: और रहने वाले सीकर डिस्ट्रिक्ट से हूँ।
0: मैम आज सीकर जिला से आप रोड में आए हैं तो आपको कैसे महसूस होता है, यहाँ का और वहाँ का बच्चों का डिफरेंस देखे होंगे सीकर का और आप रोड के?
1: यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगता है। सीकर में एजुकेशन का काफी फर्क है, बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते भी हैं, बच्चों को कुछ कहा जाता है ध्यान से सुनते भी हैं और काम भी करते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चों को कितना भी बोल दो कितना भी कह दो ये बच्चे बहुत ध्यान देने में बहुत कमी रखते हैं और हमारे चिल्लाते रहो लेकिन इनके कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ये पढ़ाई में ध्यान देते हैं, जो पढ़ना होता है स्कूल में पढ़ते, घर पे कुछ भी पढ़ के नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम पूरे स्टाफ इनके साथ कोशिश करते रहते हैं। 7-8 घंटे स्कूल रहते हैं, इन्हीं के लगे रहते हैं कि कैसे भी बच्चे पढ़े कैसे भी आगे आए, पूरी मेहनत रात दिन इनमें लगे रहते हैं। जी
0: सही बात, कितना सुंदर भाव से आपने बताया और खासकर जैसे आपने बताया आप भी कभी बच्चे होकर पढ़ रहे थे उस समय भी बच्चे जब पढ़ते थे आप भी
1: जब
0: पढ़े
1: ये हुए? बच्चे 1 से 8 तक की क्लासों में पढ़ते हैं तब हमारा कहना भी मानते हैं और जितना कहते हैं उतना पढ़ते भी हैं, लेकिन जैसे बच्चे 9 से 12 तक पहुंच जाते हैं बच्चे एक भी सुनते नहीं है सर।
0: ओ, तो इसका राज क्या, क्यों सुनते नहीं बच्चे?
1: क्यों नहीं सुनते, इनके दिमाग से सारी बातें ऊपर से जाती है, न टाइम से स्कूल आना पसंद करते हैं, न ही ये कोई काम करना चाहते हैं।
0: ये तो शिकायत बहुत बड़ी बात से,
1: इतनी बड़ी बात ही नहीं है सर, ये हम परेशान हो जाते हैं इनको। आप ही नहीं देखा, हम एक गाने के लिए सबको इनको हाँ हाँ करके आगे लेकिन एक गाना नहीं सुना पाए,
0: तो
1: सबको आता है इनको गाना लेकिन आगे नहीं आना चाहते,
0: इसे पीछे थोड़े रहेंगे आगे तो बढ़ना, इसलिए तो सरकार भी आपका पीछे कितना मेहनत करते हैं। और मैम
1: और हमारी स्कूल की तो प्रिंसिपल मैडम इतनी एक्टिव है, इतना समझाती है इनको, सर हम एक चोटी के लिए इतने परेशान हो गए लेकिन ये इतनी लड़कियां हैं 2 चोटी नहीं बना के आ सकती।
0: लेकिन अभी तो देखिए दीदी बहुत सुंदर,
1: ये तो पूछो इनको हम कितना चिल्ला रहे हैं कितना कर रहे हैं फिर भी हमारे ये परेशान करने में लगी रहती है,
0: लेकिन अभी तो मुझे तो दिखाई दे रहा सबका
1: ये सुबह सुबह इनसे करवाते आते स्कूल में आने के बाद ये मैडम करवाती है इनसे,
0: देखो कितना उसका दिल में कितना लगा होगा मैम को, इतना दूर से आए तो उनका जो जिसके लिए आए वो नहीं दिखाई देगा तो उनको तो गुस्सा आएगा
1: सर,
0: ना?
1: मुझे तो बहुत दुख होता है ये बच्चों को जब मैं इतना पढ़ाती हूँ, मैं इनको 5 मीनिंग याद करने के लिए देती हूँ कि रोज तुम 5 मीनिंग याद करके सुना दिया करो, रोज 5 मिनिंग ज्यादा नहीं डिमांड करती हूँ इनसे, फिर भी इनसे 5 या 1 मीनिंग मेरे को सुनाने के लिए राजी नहीं होती।
0: जैसे अपना बच्चे कुछ शैतान करेंगे तो माँ बाप कितना दुखी होते, तो विद्यालय का जो शिक्षक गण मैम बस प्रिंसिपल जो सभी स्टाफ है आपके लिए कितना जी जान लगा कर देते, उनका जीवन आपके लिए सैक्रिफाइस किए और इतना मेहनत किए उनका समय में आपको देने के लिए, आप लेने के लिए जब पीछा नहीं करेंगे और उसको आत्मसात नहीं करेंगे, उसको प्रैक्टिकल बात नहीं मानेंगे बड़ों का तो जाकर क्या करेंगे, इसलिए अभी समय मैम इसलिए अपना बात पूरा करें। हर स्कूल में ऐसे मैम होना चाहिए क्योंकि बच्चे मित्र अपना बच्चे खराब होंगे तो हमें दुख होगा,
1: बहुत दुख होता है सर, हमारे बच्चे जब हमारी नहीं सुनते, हम क्लास में आते हैं तब इनके कोई पढ़ी नहीं है कि मैडम आई है तो हम कुछ बैठे हैं शांति से,
0: जो हुआ हुआ है जो हो गया आज से ऐसे संकल्प करेंगे, सही बच्चे संकल्प करेंगे ना, हम आज से जरूर
2: बड़ों का बात मानेंगे, वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो हमारा भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है। अभी से हम मानेंगे, माँ बाप का बात भी मानेंगे, हमको कोई बोलने का पहले हम खुद करेंगे, जो पहले करते हैं उसको देवी देवता कहते हैं, बोलने के बाद भी जो नहीं करते हैं, बोलने के बाद भी नहीं करते उसको क्या बोलते हैं, अलग नाम है उसका, उसको बोलना नहीं चाहते हम। जो बोलने के बाद करते हैं वो तो मनुष्य है, बोलते हैं तो करते हैं, लेकिन बोलने का पहले जो करेंगे ना उसके लिए शाबाश वो चाहिए हमें। इसलिए धर्मशाला स्कूल के आगे जब आएंगे रेडियो प्रोग्राम के लिए, उस समय जरूर मैं आप सबको, मैंने चेहरा देख रहा हूँ, और जरूर बोलने का पहले ऐसे रेडी रहेंगे, मैम को बोलना नहीं पड़ेगा, मैम को मेहनत करने के लिए नहीं देंगे, आप खुद मेहनत करेंगे, मैम को पूछना मैम हम क्या कर सकते और क्या कर सकते और क्या कर, इसे पूछो, वो देने के लिए तैयार है, आपको टिप्स देंगे, आगे भी आगे जा पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम को, अपना परिवार सोचकर अपना बात को बताया, लेकिन ऐसे होना चाहिए। और आप सब बच्चे हमारा सच्चे है और बहुत अच्छे बच्चे परियां है सभी, और आपका पास वो भाग्य है, लेखा आपका पास लिखा हुआ है, लेकिन उसको थोड़ा उजागर करना है, बस हो जाएगा। सबका अंदर में विशेषता है, जैसे मैम बोल लेते सबका पास विशेषता है, लेकिन क्या है थोड़ा सा आगे हमें आना है। चले बहुत बहुत धन्यवाद सबको, उमंग उत्साह दिला दिए, और एक वार्म अप हो गया, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बच्चों का आवाज सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहिए, मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। ये था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धमसरा का, खासकर मैम का अपना दिल का बात।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति हमारा साथ प्रार्थना के रूप में शुरू करेंगे, क्योंकि हर विद्यालय में प्रार्थना सत्र में कोई भी कार्य शुरू करते तो माँ सरस्वती को व भगवान को अल्लाह को खुदा को याद करते। तीन छात्र उपस्थित है तो उनको भी स्वागत करते हैं। अपना नाम बताएंगे और कौन सा फल से आते हैं।
2: मेरा नाम वर्षा है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दामसरा।
1: क्या बात है वर्षा, हमारा कितना नाम सुंदर है। वर्षा का दिन में वर्षा, बारिश तो हो रहा है और वर्षा हमारा इस कार्यक्रम को सजा रहे और उसका दो दोस्त भी है। हेलो, नाम बताइए प्लीज।
3: मेरा नाम है अंजलि, मैं कक्षा 9 से हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दामसरा।
1: गुड, ऐसे होना चाहिए। आवाज में दम है, भले अनेक तारा है लेकिन एक चांद पूरा रात का उजला दे देता है। तो हमारा तीन छात्र जो पूजा और वर्षा और एक,
4: मेरा नाम दुर्गा है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दामसरा।
1: क्या बात, कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं। कौन बोलता भाई बच्चे नहीं आते, लेकिन मैम का उमंग उत्साह देखकर बच्चे भी अपना उमंग उत्साह को बढ़ाए और डांट खाए तो आगे बढ़ गए। तो पूजा एंड टीम को एक प्रार्थना का गीत गाने के लिए रेडी।
4: यस।

0: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और शुरुआत जब अच्छा होता है तो अंतिम भी अच्छा होगा, ये हमें विश्वास है, क्योंकि बच्चे का अंदर में जो हुनर है, जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, अभी उनका आवाज जब सुन रहे थे कितना सुंदर आवाज, और कंठ में माँ सरस्वती जैसे विराजमान है ऐसे उनको लग रहा था। और बड़े होकर तो अच्छा अच्छा आशा रखते हैं, तो बड़े होकर क्या बनेगी वर्षा, बड़े होकर मैम जैसे कितना उमंग उत्साह से सीकर जिला से आकर आपको देने के लिए आए, उनका जो शिक्षा है आपको भी शिक्षित बनाने के लिए दिए, तो बड़े होकर क्या बनेगी वर्षा?
1: मैं बड़े होकर टीचर बनूंगी।
0: वाह, टीचर के लिए ताली बजाओ, हमारा बहुत अच्छा बच्ची हमारा टीचर बनेगी। टीचर होते तो बहुत अच्छे से मैम कितना दिल से अपना पढ़ाई को आप तक पहुंचाते हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए उनका कदम पर चल लेंगे तो आप भी बड़े बनेंगे, है ना वर्षा? बड़े होकर तो टीचर बनेगी। और घर में कौन कौन है?
1: माँ है, बहन है, पापा है, भाई
0: कौन
1: है।
0: सबसे अच्छा कौन लगते हैं?
1: पापा।
0: पापा, वाह, पापा तो पापा होते हैं, माँ तो माँ होते हैं, उनका बिना अधूरा है। जिसका माँ बाप है तो सब कुछ है, भगवान तुल्य, है ना? बाप को हम भगवान कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं, है ना? तुम्हें वो माता सब पिता तुम्हें वो कहते हैं, हमारा माँ बाप हमारा भगवान तुल्य है ना वर्षा?
1: है।
0: हाँ, तुम बड़े होकर क्या बनेगी?
1: टीचर।
0: टीचर ही टीचर, तो जिसको आवश्यकता है तो सीकर जिला को हम याद नहीं करेंगे, अपरोड में टीचर मिल जाएंगे। मैम आपका टीचर का पोस्ट को सभी लोग लाइक करते पसंद करते हैं, क्या विशेषता है जो टीचर बनने के लिए आप भी टीचर बने, क्या मेहनत की मैम आप? ऐसे बच्चों का समय में आपका उमंग था जिसे हम टीचर बने का भी सोचा था, मैम आप कैसे टीचर बने? बच्चों को एक प्रेरणा मिलेगा, आप कितना मेहनत किए?
2: मैंने तो बहुत मेहनत करी थी, लेकिन ये नहीं पता था कि घर से 600 किलोमीटर दूरी पे मुझे स्कूल मिलेगा, जो बहुत कुछ खो दिया इस जॉब के चक्कर में, ना परिवार के साथ रह पाई, ना बच्चों की देखरेख कर पाई, ना अपना भविष्य कहीं संभाल पाई मैं। हकीकत पूछा जाए ना सर, तो मैं मेरे जॉब से बहुत दुखी हूँ कि जहाँ हूँ वहाँ मैं संतुष्ट भी नहीं हूँ, और जिस पोस्ट को लेके यहाँ बैठी हुई उससे भी खुश नहीं हूँ मैं।
0: देखिए मैम, ये तो आपने जो बताया, मैंने और कल लेकर स्कूल में भी वो भी दूसरा
2: टीचर बनने के लिए बहुत मेहनत करी थी, ऐसे ही नहीं पहुंचे थे आरपीएससी से टेस्ट पास करके, इतनी रातों दिन रात दिन एक करके, लेकिन जहां पहुंचे वहां बहुत परेशान हुए।
0: देखिए आपका लेखा यहां पर लिखा हुआ है तो आपको यहां पर ही पालन करना पड़ेगा, कुछ समय बाद ये चेंज हो सकता, हमेशा नहीं रहता।
2: नहीं है सर, ये हम 5 साल का टाइम पीरियड दिया गया था, फिर 10 साल बढ़ा दिया, 15 साल कर दिया, आज 20 साल हो गए यहाँ इतनी दूर बैठे हुए।
0: अच्छा,
2: अब तो हमारे भी तो घर परिवार वाले भूल गए हमें कि हमारे कोई बहू भी है, एक बेटी भी है, कोई जानते ही नहीं है हम लोगों को।
0: लेकिन अच्छा लग रहा है,
2: हम लोग यही इन बच्चों के लिए समर्पित है सारे दिन।
0: जी जी,
2: जो पैसे कमाते हैं वो भी हम सारा यहीं खर्च कर देते हैं, इन्हीं बच्चों के लिए खर्च कर देते हैं। स्कूल है तो ऐसे आर्थिक तंगियों से जूझ रहे हैं कि एक एक चीज के लिए हमें खुद ही अपने पेमेंट से बच्चों की व्यवस्था करनी पड़ती है।
0: जी जी,
2: जब उत्सव होते हैं तब भी हम अपने ही पैसों से लाकर स्कूल की व्यवस्था करते हैं, सरकार की तरफ से हम ऐसी गिनी चुनी चीजें मिलती है जो हम बच्चों को दे ही नहीं पाते हैं बिल्कुल भी।
0: तो सभी बातें दिल का बात रखें कि हमारा प्रशासन तक ये पहुंचे, क्योंकि जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे प्रशासन हो चाहे भामाशाह हो, क्योंकि कोई भी जो चीज होता है उसको दिल से इस माध्यम से, ये तो कम्युनिटी रेडियो है, अपना रेडियो है, रेडियो का माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना दुख हो चाहे सुख हो सब तक पहुंचे, जो निवारण हो, कोई दुखी नहीं रहे, ये हमारा भावना है। हम दुख रहेंगे तो हमारा बच्चे कैसे रहेंगे सुखी, इसलिए दुख और सुख, हम दुख रहेंगे तो बच्चे भी दुखी रहेंगे, हम सुखी रहेंगे तो बच्चे भी सुखी रहेंगे, इसलिए सभी स्टाफ हो चाहे हमारा बच्चे सुखी रहे, ये हमारा भावना है। हाँ, हिसाब किताब किसका कहाँ पर जो होता है, कुछ कार्मिक अकाउंट भी होता है, जैसे हम कर्म को देखेंगे तो जरूर हिसाब किताब जब चुक्त हो जाएगा वो तुरंत वहां से किस हिसाब बच्चों का साथ आपका किसी जन्म में लगाव झुकाव है, इसलिए आज आप बच्चों का साथ हम रूबरू हो रहे, नहीं तो आप कहाँ और हम कहाँ, ये तो हमारे हाथ में नहीं कि आपका हाथ में, आप कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रहा, इसका मतलब और कुछ दिन थोड़ा इतना सहन किया तो और कुछ दिन सहन करना पड़ेगा लगता मुझे, और हो सकता कल भी आपका प्रमोशन होकर जा सकते आप जहाँ चाहते, क्योंकि ये तो अपना संकल्प का ही पावर है, तो ये अपना अपना जगह में है, लेकिन हमारा कहने का मतलब जहां भी रहे जो भी वो परिस्थिति आएगा हर जगह में, तो वो परिस्थिति को अपना स्वस्थिति में टिका रहना चाहिए, स्वस्थिति मतलब खुद को कंट्रोल करना, जो भी परिस्थिति है उसको मुकाबला करना सीखना चाहिए, क्योंकि कभी किसका पास क्या भी आता, हर इंसान का पास अलग अलग आता है ट्रबल, बच्चों का पास भी आज रिकॉर्डिंग करने के लिए तो उनका समस्या आ गया है, बोला हम तो नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन समय आया तो बच्चे तो बच्चे तो
2: अभी ये आप आए हो तो ये बस हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि देखे मैडम क्या कर ले वे, सर क्या कर ले वे। ऐसे तो खूब गाने गाते हैं, ये कोई कमी थोड़ी छोड़ते हैं।
0: देखिए अभी पहला प्रस्तुत में कितना सुंदर सा आवाज में दिए वर्षा और उनका टीम। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हमारा छोटे छोटे परियां भी बैठे तो उनको कौन भूल पाएंगे। और राकेश सर और मैम को भी धन्यवाद देते हैं बच्चों को लेकर आए रेडियो प्रोग्राम में, क्योंकि आकाशवाणी में जब आते हैं बच्चे तो उनका परिवार जब सुने गा रहे मेरा बच्चा पढ़ाई का साथ साथ ऐसे रेडियो में आते हैं ये कम बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए जाने के लिए बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है। सरकार तो बच्चों के लिए ग्रामांचल बच्चों को एक रेडियो स्टेशन दिया है, ऑल इंडिया रेडियो तो बच्चे नहीं जा पाते हैं कि कमर्शियल रेडियो में जा नहीं पाती, ये सामुदायिक रेडियो कम्युनिटी रेडियो में कम्युनिटी का आवाज के लिए बच्चों को एक मंच मिलेगा। और हमारा छोटी छोटी नन्हियां परियां तो उपस्थित है तो उनको भी लेंगे, लेकिन अल्प विराम का बात सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: रेडियो मधुबन सुनने वालों को सुरेश ओबरॉय का नमस्कार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: चलिए कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए हमारा साथ नन्हिया परिवार आए, छोटे छोटे बच्चे टोटल टोटल आबाद में, पहली क्लास के, दूसरी क्लास के, तीसरी क्लास के सब बच्चे हैं। सभी अपना अपना नाम बताएंगे खुशी से जब सुनेंगे रेडियो में आहा क्या आवाज है। हेलो, नाम बताइए।
2: मेरा नाम मीना है, मैं कक्षा चौथी में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दामिश्रा।
1: अरे क्या बात, मैम जो कंप्लेन कर रहे थे बच्चे, अब पूरा उमंग उत्साह आ गया भाई। मैम का इज्जत को हमको रखना, मैम हमको इस स्कूल से नाराज थे लेकिन हमारा बच्चे आज नाराज नहीं करेंगे, मैम को नहीं करेंगे, है ना। मैम जो चाहते हैं वो करना है। ओके, हमारा बहुत अच्छा बच्ची है, ऐसे बुलंद आवाज में बोलना है, डरना नहीं है, झिझक नहीं।
2: मेरा नाम है दुर्गा, मैं चौथी कक्षा पढ़ती हूं। मेरा विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दामिश्रा।
1: फिर क्या बात, एक्सप्रेस पूरा दुर्गा काली सब यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट।
3: मेरा नाम है गुड़िया, मैं कक्षा पांचवी में पढ़ती हूँ। मेरा नाम है सीमा, मैं कक्षा पांचवी में पढ़ती हूँ, विद्यालय का उच्च माध्यमिक विद्यालय दामिश्रा।
4: मेरा नाम है रमिता, मैं कक्षा चौथी में पढ़ती हूँ।
1: कौन बोलता है भाई, ग्रामांचल वाले आदिवासी बच्चे बोल नहीं पाते, झिझक करते, लेकिन बड़े बच्चे शर्माते हैं, लेकिन छोटे बच्चे से सीखो। नाइन्थ क्लास का बच्चे, तीसरी क्लास, दूसरी क्लास का बच्चे कैसे आवाज से बोलते हैं, मैम सही बोल लेते। पहली क्लास से आठवीं तक मानते, नाइन्थ हो गया बस पढ़ाई हो गया, ऐसे नहीं करना। हाँ,
5: मेरा नाम है भावना, मैं कक्षा पांचवी में पढ़ती हूँ।
6: वेरी गुड।
7: मेरा नाम है सिंजल, मैं कक्षा चौथी में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दामिश्रा।
1: हो गया, सभी का हो गया। देखो ये आवाज जब सुन रहे श्रोता मित्र, हो सकता है उनका माँ बाप भी सुन रहे होंगे, उनका बड़ी बहन बा बड़ा भाई बा छोटे काका दादा दादी सुन रहे होंगे, तो सुनेंगे जब इनका आवाज को, तो वो आवाज ही उनका पहचान होगा। इनको रेडियो का माध्यम से, चाहे इंटरनेट का माध्यम से, चाहे FM का माध्यम से, लिंक का माध्यम से, एप्लीकेशन का माध्यम से सुन रहे, जहां पर भी भारत का कोई भी कोने में हम सुन सकते इस कार्यक्रम को, क्योंकि शाम को 7 से 8 बजे हमारा श्रोता सुनते हैं और ये सामुदायिक आवाज। चलिए एक प्रस्तुति सुनाएंगे, सब रेडी बच्चे हैं, शुरू।

0: सरे कह रहे।
1: और एक गीत, अरे वाह क्या, ऐसे होना चाहिए। और वाज मोर खुद बोले सर और एक गीत गाओ, मैं हाँ गाओ गाओ क्यों नहीं भाई, किंतु एक गीत में हमें बहुत खुशी मिल रहा है क्योंकि स्कूल बहुत दूर है हमारा घर से, घने दूर है, बहुत दूर है, तब फिर हम कैसे जाओ। सरकार सुन रहा है, जहाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए जैसे आंगनबाड़ी जल्दी जल्दी अपना आस पास रख दीजिए, और आज प्राइमरी स्कूल भी साथ में रहेगा पास पास, तो बच्चे पढ़ने के लिए भरवाने के लिए आ जाएंगे, इसलिए वैसे ज्यादा दूर में बच्चे दिक्कत होता है, बारिश का सीजन में दिक्कत होता है, गर्मी के टाइम में भी दिक्कत होता है, इसलिए जितना नजदीक स्कूल मिलेगा बच्चे तुरंत जाएंगे, और सीसी रोड मिलेगा तो अच्छा है, कीचड़ नहीं, आराम से जा पाएंगे। ठीक है चलिए, और एक प्रस्तुति हमारा वर्षा सुनाएगी सभी टीम के साथ, फिर और एक गीत, कौन सा गीत गाएंगे वर्षा?
0: हम सब बच्चों को गिनती सिखा।
1: अरे वाह बहुत अच्छा, सुनाओ।
0: हाँ।

0: तुम भी नाच होंगे।
1: क्या बात, ताली बजा भाई बच्चों के लिए। बस ताली में कोई कंफ्यूज नहीं है। और बच्चे, छोटे बच्चे देखो उनके पास कितना उमंग है। वो खुद बोले सर और एक गीत गाओ। मतलब गाओ गाओ क्यों भाई? हाँ, हमारे वर्षा के लिए बहुत अच्छा उमंग उत्साह है। घर में कौन कौन है ना?
0: मेरा दादा है, मम्मी है, पापा है, बहन है, भाई है।
1: रोटा कौन बनाता है? रोटा
0: मम्मी।
1: अब तुम बनाती कभी?
0: नहीं।
1: तुम आती नहीं? क्या आती तुमको बताओ देखिए।
0: हमको कविता आता है।
1: और मगरा जाते हैं? मगरा में मगरा में क्या मिलता है? बकरी चराने के लिए जाते। देखो हमारा बच्चे माँ बाप का हेल्प करते हैं, बकरा बकरी को मगरा में जाते, घास वगैरह लेकर आते हैं। बहुत अच्छा सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बड़ों का भी प्रस्तुति सुनेंगे। वर्षा वर्षा नाम ले रहे, वर्षा रेडी रहे और एक प्रस्तुति के लिए। मैम फिर उमंग उत्साह से आपको फिर दिलाएंगे डोज। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी मिल रहा है, क्योंकि बच्चे का पास थोड़ा सा जब उमंग उत्साह होता है, एक बार गाड़ी स्टार्ट हो जाता है ना तो पिकअप पकड़ता है। तो बच्चे पहले पहले मना कर रहे थे, लेकिन जब मैम का डोज पड़ा तो सभी ने बच्चे रेडी हो गए और वंस मोर करके प्रोग्राम रेडी हो रहा है। सभी को धन्यवाद देते हुए अगला प्रस्तुति के लिए रेडी हमारा साथ वर्षा एंड पार्टी आए हैं, तो सुनाएंगे।

बहुत अच्छा सुंदर प्रस्तुति के लिए और लय और ताल का साथ गाते हैं। बच्चों का बल गीत को नहीं देखना, उनका जो भाव और भावना, उनका जो शब्द में गला में सरस्वती का जैसे बैठा हुई ऐसे लग रहा है, क्योंकि उनका सुर लय और ताल का साथ जो गीत गाते हैं तो खुशी लगता है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद।

0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ और एक छात्रा उपस्थित है, तो अपना हम बात को रखेंगे। पहले आप।
1: मेरा नाम पांडरी कुमार, एक कक्षा 9th में।
0: चलिए एक प्रस्तुति सुनाएंगे। सब रेडी बच्चे, शुरू।

0: रही।
1: चल इस कार्यक्रम को और साथ देने के लिए और एक प्रस्तुति सुनाओ।
0: मेरा नाम है अंजलि कुमारी, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तामसरा। मैं एक आपको कहानी सुनाना चाहती हूँ, गलती हो तो क्षमा करना। एक दिन बोले मुझे नानी, मैं कहती तुम सुनो कहानी। एक खेत में जूता पड़ा था, उबड़ खाबड़ बहुत बड़ा था। कोई चिड़िया बीज उड़ाती, उड़ती उड़ती गई डाल पर। हवा डरा की धूप चलाती, मिट्टी उसको खूब दबाती। मिट्टी की गोदी में रहकर, सूरज को किरणों में जलकर। कहा बीज ने हाय अकेला, पर नडर भले अकेला।
1: अंजलि बड़ा होकर क्या बनेगी? अंजलि
0: मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ।
1: और घर में डॉक्टर है कोई?
0: नहीं नहीं, थोड़े गांव में है।
1: गांव में है डॉक्टर? डॉक्टर का काम क्या होता है? मरीज को
0: सुई लगाना।
1: सुई लगाते हैं, इलाज करते हैं। और तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन है?
0: मेरा दोस्त सीमा।
1: सीमा, सीमा अच्छा दोस्त है। कौन सा क्लास के सीमा?
0: 9th
1: क्लास। और कौन सा गांव से आप आते हैं?
0: तामसरा गांव से।
1: चलिए हमारा साथ अब छोटी सी परी भी है, तो वो भी अपना गीत गाएगी, है ना? गाओ
2: ला ला।

0: यहाँ से कलश निकाल देते सब, कहाँ से सीखते? मोबाइल से ना, घर में कहाँ से सीखते?
1: दुर्गा
0: कहाँ से सीखते?
2: स्कूल में।
0: स्कूल में सब होता है? हाँ, कब?
2: झंडे पे।
0: झंडे पे होता है। और कहाँ से आती तुम? कौन सा फल है? भामरिया फल। और कौन कौन है भामरिया फल का? दो चार लोग का नाम बताओ, काका काकी का नाम बताओ।
2: गोवा राम जी।
1: और तुम बताओ?
2: विक्रम।
0: विक्रम जी। और तुम बताओ?
2: धर्मी देवी जी।
0: धर्मी देवी। और तुम बताओ?
2: गीता देवी।
0: गीता देवी। और पापा का नाम?
2: रमेश कुमार जी।
0: क्या करते रमेश जी?
2: खेती।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा, धन्यवाद, आभार।

रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज एक और जो आपका पसंदीदा कार्यक्रम है मन की आंखों से, आज मन की आंखों से कार्यक्रम लेकर के हाजिर हूं। और मन की आंखों से, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस कार्यक्रम में हम

0: ऐसे साथियों से आप सबको रूबरू करवाते हैं जिन्होंने आंखों संबंधित समस्या होने के बावजूद भी अपने जीवन को बहुत ही आसानी से जिया है और न सिर्फ जिया है बल्कि सफलता के नए नए आयाम स्थापित किए हैं विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए, और कहीं ना कहीं समाज को भी रास्ता दिखाने का काम किया है। तो ऐसे ही एक मेहमान आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं कोमल अग्रवाल मैम का। स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद, बहुत नमस्कार आप सभी को और रेडियो मधुबन के हमारे तमाम श्रोताओं को भी मेरी तरफ से सादर अभिवादन।
0: श्रोताओं मैं बताऊं आपको, कोमल मैम दृष्टिबाधित हैं और कोमल मैम बहुत ही अच्छी लेखिका हैं जितना मैं इनके बारे में जानता हूं। इसके अलावा वो क्या क्या हैं, उन्होंने कौन कौन से संघर्षों से किस किस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया है और वर्तमान में वो क्या कर रही हैं, ये सब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज मन की आंखों से के इस अनोखे सफर पर। तो कोमल मैम बताइए जरा अपने बारे में, बिल्कुल शुरुआत से जरा बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी जरूर सर्वप्रथम तो संदीप सर पहले आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है, आप जिस तरह से पूछ रहे हैं बहुत कंफर्टेबल है। और मैं अपने बारे में बताऊं तो एक लेखिका होने से पहले मैं एक स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर और एक लाइफ कोच रही हूँ। ये जो सफर शुरू हुआ ये आफ्टर ब्लाइंडनेस शुरू हुआ।
0: अच्छा।
1: वो सब कहते हैं ब्लाइंडनेस इज अ कर्स, मैं कहती हूँ ब्लाइंडनेस इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। ब्लाइंडनेस मेरे लिए एक वरदान साबित हुई क्योंकि अगर ये नेत्रहीनता नहीं होती तो हम अपने पैरों पर खड़े नहीं होते ना। ऐसा होता है ना कि फैमिली में औरतें जो होती हैं या तो पति पर डिपेंड है, पहले पिता पर डिपेंड, फिर पति के ऊपर डिपेंड, उसके बाद बच्चों के ऊपर डिपेंड। यस, तो ये चीज मेरे साथ नहीं हुई। ये मैं इसके लिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ईश्वर ने कुछ ऐसा किया मेरे जीवन में कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई, अपना आत्मनिर्भर होना सीखा। जब हम आत्मनिर्भर नहीं थे, ब्लाइंडनेस नहीं था, तब हम दूसरों से सहारे की उम्मीद करते थे। अब हम स्वयं आत्मनिर्भर हो गए हैं तो मुझे लगता है ब्लाइंडनेस इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। तो ये बात है। और मैं बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं हूं सर।
0: अच्छा।
1: तो ये एक बहुत मतलब बड़ी विकराल समस्या है उन लोगों के लिए जो लेट ब्लाइंड होते हैं।
0: निश्चित रूप से,
1: क्योंकि जैसा ये बिल्कुल वैसा ही है संदीप सर, जैसा कि आपने ट्रेन की टिकट कटाई है मुंबई के लिए और आपको रास्ते में उतार दिया गया हो। बिल्कुल
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं जी।
1: तो हाँ, जो और फिर ना ऐसे वक्त पर हो जाती है कि जहाँ पर हमारे करियर का एक मोड़ होता है ना, जहाँ से हमारे करियर की जर्नी शुरू होती है वहीं पर जाकर ये ब्लाइंडनेस होती है। और दिस इज रेटिनाइज पिगमेंटोसा व्हाटएवर आई एम सफरिंग। और ये जो डिजीज है जैसे कि लोग कहते हैं जेनेटिक है। ओके, तो बचपन से ही कम दिखता था, तो क्लास 7 तक आते आते मुझे कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था कि मुझे बाकी लोगों की तरह दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे मेरे फ्रेंड्स लोगों अच्छा। देख पा रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड इतना अच्छा से दिखाई नहीं देता, फर्स्ट रो से भी ब्लैक बोर्ड इतना क्लियरली मतलब देख नहीं पाती थी। तो मैथमेटिक्स में इसलिए कमजोर है, बाकी तो देखिए थ्योरेटिकल होते हैं सब सब्जेक्ट, तो वो सारे सब मैं आसानी से कर लेती थी, लेकिन जहाँ मैथमेटिक्स की एल्जेब्रा ज्योमेट्री की बात आती थी तो वहां पर मैं बिल्कुल मतलब निराश हो जाती थी और अपने फ्रेंड्स की कॉपी से चीटिंग मार मार के लिखती थी आंसर। यस, तो क्या होता था कि 7th में आते आते जैसे कुछ नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, पूरा तो नहीं लेकिन काफी हद तक नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, तो जिसकी वजह से कभी किसी ड्रेन में गिर जा रहे हैं, चलते चलते ठोकर लग जा रही है ना, थाली परोस रहे हैं, तो ट्यूबुलर विजन की वजह से क्या हो रहा है कि भाई राइट साइड का आपको लेफ्ट साइड का नहीं दिख रहा है, सेंट्रल आपका विजन है, राइट लेफ्ट का विजन नहीं है, तो ये चीजें ऊपर नीचे की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो ये सारी चीजें और स्क्विंट भी आई मेरा। हाँ, तो इसकी वजह से लोग थोड़ा सा ना कि भाई अब चेहरे की सुंदरता खत्म हो गई, बेसिकली स्क्विंट आ गया आई में कि एक आंख से तिरछा देख रहे हो और एक आंख सही दिख रही है, तो लोग इसके लिए हमको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने लगे, ताने मारने लगे कि
0: परिवार में।
1: हाँ, मतलब परिवार में भी और जैसे कुछ भी मतलब नॉट इन माय फैमिली, जिसमें जो रिलेटिव होते हैं जैसे चाचा ताऊ में मामा ऐसे होते हैं ना लोग, हमारे रिलेटिव होते हैं तो होता है, तो वो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, वो भीतर कहीं ना कहीं बस गया। ठीक है, बस गया ना इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स, ये कुछ बोलने के लिए आगे नहीं दिया। और चूंकि मेरा जीवन बहुत अभावों में गुजरा, पिता बहुत ही कह सकते हैं बहुत सामान्य, मतलब मध्यम वर्गीय भी नहीं करेंगे, लोअर मिडिल क्लास बोलेंगे, कि उस तरह से रहे, बिजनेस बिजनेस पापा का पहले शुरू में अच्छा चलता था, लेकिन जैसे जैसे हम क्लास 7-8 तक पास किए तब तक पापा का बिजनेस है ना ठप हो गया, किसी पर्सनल कुछ कुछ रीजंस की वजह से। तो बिजनेस ठप हो गया, दुकान वगैरह बंद करनी पड़ी, तो इस वजह से पापा भी बहुत परेशान रहे। तो हम लोग का जीवन अभाव में गुजरा, तो क्या बोलेंगे कि हमको डॉक्टर के पास दिखाओ, है ना। तो ऐसे करके 10th आ गया। 10th में जब स्कूल में मेडिकल चेकअप के लिए आते हैं, जैसे कुछ कैंप वगैरह लगते हैं, तो वहां पर डॉक्टर ने मुझे सीरियसली बोला कि आप जाकर के अपने घर में बोलो कि आपको कोई मतलब एकदम कोई सीरियस मेजर प्रॉब्लम है, ओके, और आप जाके घर में ये बात बोलो, ओके। तो आई वेंट ओके, और मैं पापा के पास जाके बोली कि ऐसे ऐसे डॉक्टर बोले हैं। तो फिर उन्होंने मुझे एक डॉक्टर को दिखाया, तो वहां पर इन डॉक्टर ने कहा देखो कि ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम है और आप लोग कहीं बाहर दिखाइए, मैं इसमें कुछ समाधान नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो चूंकि बाहर जाने के लिए ना तो फाइनेंशियल है ना दशाएं ऐसी थी, ठीक है, तो ये सब चीजें रही, तो कहीं बाहर दिखा नहीं पाए, ये रही, ये चलता रहा चलता रहा, चश्मा का पावर बढ़ते जा रहा है लेकिन फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये समस्याएं चलती रही सर। क्लास 10 में मैथ्स में मैं फेल हो गई इसी वजह से, और उसी दौरान मुझे टाइफाइड हो गया, तो उसमें पेंसिलिन इंजेक्शन लगते थे और उसका साइड इफेक्ट हुआ या क्या हुआ, तो क्या हुआ कि जब ये इंजेक्शन लगते थे उसके मैं काफी बीमार हो गई। तो उस समय ब्लाइंडनेस काफी बढ़ी, मतलब काफी मतलब जो दिखता था वो विजन भी काफी लॉस हो गया, लेकिन तब तक ये पता नहीं था कि ये बीमारी है। तो आगे इस तरह से चलता रहा, प्लस टू में फिर भी मैंने जैसे तैसे पढ़ाई करके पूरे हमारे जिले में टॉप किया। तो
0: क्या बात है,
1: हाँ जी, तो क्योंकि पढ़ना बहुत मतलब पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा एक क्रेज था, तो एक सर से इंग्लिश भी सीखी उस दौरान, वो बहुत अच्छा गाइड किए।
0: प्लस टू का बता रहे हैं आप, 12th का बता रहे हैं जिसमें आपने टॉप किया ना? 12th
1: का बता रही हूँ जी, 12th में मैंने
0: क्या सब्जेक्ट उस समय, 12th में सब्जेक्ट क्या रहे आपके?
1: जैसे पॉलिटिकल साइंस था और हिस्ट्री लाइक था, ओके, तो और हिंदी जो इंग्लिश मीडियम। 10th तक देखिए मैं, 7th तक हिंदी मीडियम में पढ़ी, फिर हमारी तरफ इंग्लिश मीडियम का इतना चलन नहीं था, पैसे बहुत लगते थे, तो मैं ओडिया मीडियम में गई, 10th तक ओडिया मीडियम में पढ़ाई की, उसके बाद डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम, एक वुमेन्स कॉलेज था वहां पे मैंने प्लस टू किया, प्राइवेट कॉलेज था, तो वहां पर मैं जितने कॉलेजेस थे हमारे जिले में, उस समय दो ही कॉलेज थे, तो उस समय दोनों कॉलेज में मैंने टॉप किया उस समय। तो उसके बाद जो अब आई प्लस थ्री के बाद, तो प्लस थ्री में हिंदी ऑनर्स को एज अ सब्जेक्ट चुना, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने की सिचुएशन नहीं थी, पैसे नहीं थे फीस भरने के, फिर एक गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन कर लिया, गवर्नमेंट कॉलेज था शहर से बहुत दूर और कोएड भी था, तो पिता थोड़ा सा मतलब कंजर्वेटिव भी फैमिली से हम लोग रहे, मारवाड़ी फैमिली है ना, और तो वो इसलिए फिर अकेले जाने का सुविधा भी नहीं था इतना दूर कॉलेज, तो क्या किए प्राइवेट में पढ़ाई की। अब घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, क्या करें, प्राइवेट कितना पढ़ेंगे, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि व्हाई डोंट आई टेक अ जॉब, ओके, सो आई गेव इंटरव्यूज इन मेनी स्कूल्स, लेकिन सभी स्कूल वालों ने कहा कि यू आर नॉट बीए, ग्रेजुएशन नहीं है आपका, बीएड नहीं, कुछ नहीं है, आई कैन नॉट टेक। फिर एक स्कूल वाले ने मेरे स्पीकिंग को देखते हुए और जो भी हमारे पढ़ाने का तरीका है, एक उन्होंने मेरा क्लास भी लिया बच्चों के साथ में, एंड दे वर सेटिस्फाइड और उन्होंने मुझे रख लिया फाइनली, यस। तो उसके बाद फिर वहां पर एक साल का मेरा ये चला, प्लस थ्री फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैंने प्राइवेट पढ़ते पढ़ते वो स्कूल में नौकरी की, और उसके बाद वो कहते हैं ना कि नियति एक को चक्र चलाती है, तो वो भी नहीं था कि भाई जिसको इंसान दुख देता है ना उसको हर तरीके से देता है, इधर से भी दे रहा है उधर से भी दे रहा है, पहले अभाव में गुजरा, फिर ब्लाइंडनेस हो गई, ब्लाइंडनेस हुआ, जॉब लगी, पहली सैलरी 900 रुपए मिली सर, दैट वाज द फर्स्ट सैलरी ऑफ माय लाइफ, ओके, ये जो कि इंग्लिश मीडियम में मैंने पाया, तो आई वाज सो हैप्पी। लेकिन सेकेंड ईयर जब फाइनल एग्जाम हुआ, तो मेरी जो ग्रैंड मदर थी जिनका पापा के ऊपर काफी दबदबा था, तो वो कहने लगे कि भाई आपके इनके शादी कर दो, क्योंकि मेरे जीते जी कर दो, तुम्हारे पास तो पैसे है नहीं, तो हाँ जी समझ आया। तब तक आंखों का स्क्विंट काफी हद तक अपने आप ही ठीक हो चुका था, एंड आई वाज लुकिंग यू नो कि चलो भाई पढ़ी लिखी लड़की है, सुंदर लड़की है, इसकी शादी कर दो और क्या चाहिए, है ना। हमारा
0: आंखों का क्या ठीक हो गया, तो वापस बताएं आंखों का क्या ठीक हो गया था?
1: आंखों का जो तिरछापन है वो काफी हद तक अपने आप ठीक हो गया था।
0: अच्छा, मतलब आपकी रोशनी वापस से ठीक होने लग गई थी?
1: नहीं रोशनी नहीं हो रही थी, जो स्क्विंट था, तिरछापन जो था, पुतलियां, वो
0: टेढ़ा
1: अपनी सही जगह
0: टेढ़ापन
1: पे
0: था।
1: था।
0: ओके
1: हाँ, वो
0: अच्छा
1: सही हो रहा था। तो बस वो प्लस थ्री सेकेंड ईयर में फिर एंगेजमेंट कर दी गई एंड आई वॉज फोर्स टू मैरी के।
0: ओके। तो
1: तो
0: आपकी
1: इन द ईयर,
0: एंगेजमेंट आपके जैसे
1: जी
0: व्यक्ति से हुई थी या
1: नहीं
0: सामान्य
1: नहीं
0: व्यक्ति से? साइटेड
1: साइटेड, क्योंकि तब तक तो सर
0: व्यक्ति
1: रेटिनाइज पिगमेंटोसा क्या होता है उसका आर नहीं पता था हमें,
0: आप
1: कहीं
0: इस
1: लिखा
0: स्थिति
1: होता
0: में
1: था
0: नहीं
1: सर।
0: रहे कि आप कुछ कह सकें, अपनी बात रख सकें
1: हाँ
0: परिवार
1: बिल्कुल
0: में।
1: बिल्कुल। तो इवन आई वॉज अनेबल टू, मैं लोगों को ये भी नहीं बता पाई कि मुझे ये, मैं बोल रही हूँ कि मुझे 20-30% दिख रहा है, आई एम नॉट एबल टू सी राइट। जैसे तैसे जितना भी दिख रहा था आई वॉज मतलब बीइंग मैरिड। ओके, तो 99 में हमारी शादी हो गई जून के समय में, इस वजह से जो ग्रेजुएशन का एग्जाम है वो धराकटा रह गया, वो हम दे नहीं पाए। ठीक, तो ये चीजें रही। फिर उसके बाद सर लाइफ होनी चाहिए थी भाई कि आप सपनों की जिंदगी शुरू हो गई है, यही अरमान लेकर के, है ना, हर कोई मैरिज करता है।
0: हर कोई यही सोचता
1: हाँ
0: है
1: जी,
0: बिल्कुल।
1: कि चलो आप जो जितना दुख झेले हो गया, अब सुख के दिन आए रे भैया, वो कहते हैं ना।
0: हाँ,
1: तो यहाँ भी मैं
0: दुख
1: बहुत
0: भरे
1: अनलकी
0: दिन भी
1: रही
0: तेरे भैया।
1: जी। हाँ, लेकिन कहते हैं ना कार्मिक अकाउंट से, मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि ये सब हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं उसका फल होता है। तो मैं इन सब बातों को अभी समझती हूँ। उस समय तो हम लोग भगवान को, तकदीर को बड़ा दोष देते थे और कहते थे कि मैं ही क्यों विक्टिम हूँ, मतलब वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे भाई बहन मेरे सब लोग फैमिली मेंबर एवरीवन इज हैप्पी, वाई आई एम नॉट। तो ये क्वेश्चन बहुत आता था और बहुत मतलब शिकायत करते थे भगवान से। तो मैरिड लाइफ भी कोई सुखी नहीं रही। फ्रॉम द फर्स्ट डे आई वॉज द विक्टिम ऑफ डाउरी,
0: ओहो
1: दहेज, ये बहुत बड़ी समस्या रही। पहले तो जैसे होता है ना कि भाई लड़की सुंदर है, पढ़ी लिखी है, चलो शादी कर दो, है ना, हो गया। उसके बाद दहेज प्रताड़ना शुरू हो गई। ठीक है, वहां जाके पता चला कि द पर्सन इज ऑल्सो नॉट, मतलब डिजर्विंग पर्सन नहीं था, थोड़ा एंटी सोशल क्रिमिनल माइंडेड,
0: जॉब वगैरह थी
1: कुछ नहीं था सर, अपने
0: कुछ भी नहीं
1: फैमिली के
0: था?
1: टुकड़ों पर, हाँ अपने भाइयों के थे ना वो चल रहा था। तो खैर उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, देखिए इतना बस,
0: नहीं, कोई
1: क्योंकि
0: बात नहीं,
1: यहाँ
0: कोई
1: पे,
0: बात
1: हाँ जी हाँ,
0: नहीं।
1: क्योंकि अब वो बीत गई है तो
0: वो
1: जो
0: वैसे
1: भी
0: भी
1: भाग
0: पर्सनल,
1: गए।
0: हाँ वो वैसे भी
1: जी
0: पर्सनल लाइफ है,
1: हाँ
0: रही है
1: जी,
0: आपकी, तो कोई बात
1: तो
0: नहीं।
1: हाँ जी, तो फिर वो चल नहीं पाया। ठीक है, देन माय सन वाज बोर्न इन द ईयर 2000। यस, तो 2000 में उसका बर्थ था। तो उसके बाद फिर जिंदगी कुछ यूं गुजरी कि 6 महीने मायके में पैर रहा, 6 महीने ससुराल में, है ना। तो
0: ओहो ओहो
1: 2004 में जा करके मेरे पापा मम्मी ने जब मेरी आईज का ट्रीटमेंट कहीं करवाने का थोड़ा बहुत पैसे वैसे अरेंज किए और दिखाने के लिए किया, तो हम लोग को विशाखापट्टनम, है ना, यहाँ पर मैक्सी विजन और विशाखा आई हॉस्पिटल वगैरह वहां पर हमको ले गए। तो यहाँ पर जो मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ सर, कि इतना ट्रेजिकल होता है कि सडन आपको, ऑल ऑफ अ सडन आपको पता चल रहा है कि यू हैव अ डिजीज एंड दैट कैनॉट बी क्योर्ड, वो क्योर नहीं हो सकता, आप
0: एक
1: इतनी
0: ऐसी
1: मुश्किल से बचा
0: परेशानी
1: रहे
0: से
1: हो
0: आप
1: कई
0: जूझ रहे हैं जो ठीक
1: सालों
0: नहीं हो
1: से,
0: सकता।
1: कई सालों से मतलब, है ना, पिछले 10-15 सालों से आप ये बीमारी से जूझ रहे हैं, आपको पता ही नहीं। और डॉक्टर साहब जो थे विशाखा, मैं छोड़िए नाम लेना तो सही नहीं है, तो डॉक्टर साहब जो थे उन्होंने फाइल बिल्कुल मतलब ऐसे फेंक दिया, मेडिकल फाइल जो
0: अच्छा।
1: थी, एक्सरे जो रिपोर्ट आई थी जितनी, सब ऐसे फाइल को मेरे तरफ इधर फेंक करके बोल रहे हैं कि यू मतलब वो यहाँ कुछ नहीं हो सकता आपका, यू कैन गो। यस, आई सेड टू हिम कि ठीक है कुछ नहीं हो सकता, बट आप पोलाइटली बोल सकते हैं इसको, है ना, थोड़ा सिंपथाइज कर सकते हैं।
0: डॉक्टर तो नॉर्मली मतलब ऐसा करते नहीं है, न जाने क्या
1: हाँ, तो
0: हुआ
1: बोले
0: है जो।
1: कि हाँ, वो कहते हैं ना यू कैन गो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मतलब वेरी रूडली। यस, फिर उसके बाद एक और आई हॉस्पिटल में उन डॉक्टर्स ने काफी कोऑपरेट किया और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे एक्सप्लेन किया कि देखो तुम्हारा ट्यूबुलर विजन है और अब तुम घर में ही रह सकती हो, यू शुड नॉट गो टू मतलब लाइक रोड पे मत जाना, अब रोड पे जाने की तुम्हारी स्थिति नहीं है कि तुम सड़क खुद से सोचोगे मैं क्रॉस कर लूँ और मैं आराम से खाना पका लूँ या कुछ भी ड्राइविंग मैं कर लूँ, इस तरह का स्विमिंग, इस तरह का काम तुमको नहीं करना, यू शुड स्टे एट होम, है ना। तो उन्होंने कुछ कुछ मेरे को गाइड किया कि आप इस तरह से अब आप घर पे रहो एंड यू कांट डू एनीथिंग लाइक, है ना। ओके, फिर उन्होंने मेरे थोड़ा सा यू नो कंसोल करने के लिए, भाई सेटिस्फेक्शन के लिए दे दिया कुछ मेडिसिन, खाते रहो, अगर ठीक हो गया तो ठीक हो गया, है ना, विजन जितना है शायद इतना रुक जाए, जो थोड़ा बहुत 10% विजन बचा है वो शायद रुक जाए, लेकिन जो 10-15% बचा था ना विजन सर, वो माइंड की ऐसी प्रोग्रामिंग हुई कि वो उसी साल चला गया।
0: तो
1: आई वॉज इन यू नो डिप्रेशन, पूरा होता है ना एक आदमी का, पूरा डिप्रेशन में मैं चली गई कि अब क्या जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, एवरीवेयर इट इज डार्कनेस एंड
0: और उन्हें बेटे की हाँ. बेटे का लालन पालन भी साथ में चल
1: वो
0: रहा है
1: सब तो मैं हाँ वो सब तो देखिए, सिंस आई एम अ क्विक लर्नर, तो शायद एक पहले से एक काफी होता है ना कि भाई हम लोग सुनते हैं कि एक भगवान कुछ और देता है हम लोग को और शक्तियां दे देता है, तो उन शक्तियों की वजह से मैं सारे काम खुद करने लगी, खाना बनाना है, कपड़े धोना है, एवरीथिंग, मतलब बच्चे का लालन पालन सब कुछ अपने आप चलता गया. यस, और आई वॉज हैबिचुएटेड टू सर्वाइव विद ब्लाइंडनेस. ब्लाइंडनेस के साथ ही मैं जिंदगी को आसानी से जीने के लिए अपने आप को तैयार करने लगी. फिर भुवनेश्वर में मैंने 3 दिनों की ट्रेनिंग की, वहाँ पर भुवनेश्वर में 3 दिनों की ट्रेनिंग की, मेरे पापा मेरे को लेके गए, तो वहाँ पर जैसे वाइट केन चलाना थोड़ा सीखा, कंप्यूटर में जैसे आपको थोड़ा दिख रहा है तो उन लोग जूम करते थे स्क्रीन को, और जॉज वगैरह के बारे में पता चला, सॉफ्टवेयर के बारे में. फिर उसके बाद में वहीं से मेरे को सक्षम ट्रस्ट के बारे में भी पता चला, जो कि दिल्ली में है, और आई एम सो थैंकफुल टू सक्षम ट्रस्ट कि उन्होंने मुझे काफी गाइड किया, सक्षम ट्रस्ट वालों ने.
0: और आपने ब्रेल लिपि भी सीखी मैडम?
1: जी, मैंने ब्रेल भी ट्राई किया सर. एक हमारे नोन में मेरे एक दूर के अंकल है, उनको भी यही आती है, तो मैंने उनसे थोड़ा ब्रेल भी बेसिक सीखा, और लेकिन मैं उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाई, मैं झूठ नहीं कहूंगी, मैंने उसको प्रैक्टिस ही नहीं किया, बिकॉज मैं फिर कंप्यूटर सीखने लगी अपने आप, है ना. कंप्यूटर मैंने लोन लिया सक्षम से, और फॉर्चुनेटली उन लोगों ने लोन दिया मुझे, और धीरे धीरे करके लैपटॉप एक बाय किया उसी लोन के पैसों से, देन कंप्यूटर में जो NVDA सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्टॉल करके साइबर कैफे वालों से करवा लिया. फिर धीरे धीरे करके हम समझने लगे कंप्यूटर की चीज़ें, और क्योंकि मैं 2008 में मेरा डिवोर्स भी हो गया था, और इट वॉज अ डोमेस्टिक वायलेंस केस भी मैंने फाइल किया था, तो उस तहत आउट ऑफ द कोर्ट एक सेटलमेंट हुआ, और मैंने सन की कस्टडी और डिवोर्स ये दोनों चीज़ें मांगी थी, जो मुझे मिल गई. थोड़े बहुत मेरे पापा ने जो पैसे दिए थे, कुछ 2-3 लाख रुपए, वो मुझे मिल गए, दैट्स इट. और उसके बाद लाइफ चलो कि भाई अब अपनी जिंदगी है ना, तो मतलब अकेले की जिंदगी, आपके कोई तलवार नहीं लटक रही है सर पर, तो ये चीज जब दूर हो गई ना, तो हम थोड़ा शांति से जीवन जीने लगे. यस, तो बस 2008 में मैंने एक कोचिंग शुरू की, जो कि मेरी विनर्स एजुकेशन है कोटा में एक, तो उन सर से कॉन्टेक्ट किया, वहां से मैंने फ्रेंचाइजी बाय की, सर से ट्रेनिंग ली ऑनलाइन, मतलब ऐसे क्योंकि जाना तो पॉसिबल नहीं था, तो ऑनलाइन ही सीखा उनसे, जो भी नोट्स वगैरह सब सर ने मुझे दिए, गाइड किया कैसे पढ़ाते हैं स्पोकन इंग्लिश, तो मैं खुद भी, मतलब खुद भी अपना रिसर्चर है कि खुद ही भी पढ़ रही है, कि दूसरों पर डिपेंड नहीं करना है. सक्षम वालों ने मुझे इतना बताया, मैंने इतना सीखा, लाइक है ना, उन्होंने चीटी बताया, मैंने हाथ में सीखा, कहते हैं है ना, तो खुद ही एक्सप्लोर कर कि कंप्यूटर में क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है सब कुछ ऐसे. और मेरे पिताजी इस मामले में मुझे बहुत उन्होंने सहयोग किया, मतलब ही वॉज लाइक कह सकते हैं कि आज मैं कहूँ कि जो भी कुछ पिताजी की वजह से हूँ, वो मुझे किताबें पढ़ पढ़ के सुनाते थे, इंग्लिश की ग्रामर की किताबें पढ़ते थे, पूरी रेनन मार्टिन किताब उन्होंने मेरे लिए पढ़ी, और भी जितनी की किताबें होती थी सब मुझे बैठते थे पढ़ के पढ़ते रहते थे, मैं सुनते रहती थी, ही वॉज लाइक डूइंग दैट. तो मेरे को हर जगह पे ले जाना, जैसे उनके पास एक एक्टिवा थी, तो हर जगह पे मुझे ले जाना, झारसुगुड़ा में जैसे इनवाइट करते थे कि कहीं पे आइए पोइट्री पढ़िए, कहीं पर कुछ के लिए बुला रहे हैं, तो हर एक इवेंट में मुझे ले जाना, हर एक फंक्शन में हाथ पकड़ के ले जाना, ही वॉज डूइंग एवरीथिंग फॉर मी. मेरे मैंने जो डोमेस्टिक वायलेंस केस दिया था, मुझे कोर्ट ले जाना, सब कुछ उन्होंने किया. तो आज वो नहीं है, बट व्हाटएवर आई एम, मैं उनके लिए क्रेडिट देती हूँ पिताजी को.
0: आपके जीवन में आपके पिताजी का बहुत बड़ा रोल रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है.
1: बड़ा रोल रहा है जी, पढ़ाई लिखाई में भी, पूरे कोचिंग की स्थापना में, उसके पूरे पैम्फलेट छपाना, बैनर सब जगह लगवाना, पूरी कोचिंग की पब्लिसिटी करना, सारा कुछ सब कुछ मेरे पिताजी ने किया. अगर वो नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाती.
0: हम समझ रहे हैं कि आप भावुक भी हो रहे हैं उनको याद करते हुए. निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत ये जो दौर था वो, मतलब उनके सपोर्ट के बिना आप बिल्कुल नहीं निकाल पाते.
1: तो ही वाज अ बैकबोन टू मी, एंड मेरे हीरो भी रहे हैं सच कहूं तो. तो बस पिताजी की सहायता से, सहयोग से, वो कहते थे यू नो, मतलब जैसे कोई उनको कहता था ना, सर मैं आपको एक सेंटेंस बोलती हूँ कि बेटी आपके पास रह रही है, कितना बड़ा बात है आप लोग बेटी को रखे हैं, तो मेरे पिताजी कहते थे कि मैं तो पैसे कमाता नहीं हूँ, मेरी बेटी पैसे कमाती है, तो सच में मायने में कहा जाए ना, तो बेटी हमको रखती है. हम बेटी को नहीं रखेंगे।
0: वाह, क्या
1: समझते
0: बात
1: हैं, मतलब इतनी बड़ी बात, मतलब वो कहते थे लोगों को कि बेटी
0: है।
1: हमको रखी है, हम बेटी को नहीं रखे हैं, ऐसे कहते थे डैड। तो
0: जी
1: उन लोगों का मुंह बंद कर देते थे जो लोग ये कहते थे कि अरे ये ब्लाइंड है, इसको कहाँ, मतलब तुम लोग इसको बोझा ढो रहे हो, ऐसे कहते थे, है ना। ऐसे
0: जी
1: भी लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो कहते हैं कि आप ब्लाइंड पर्सन खाना नहीं खा सकता, आप ब्लाइंड पर्सन पानी कैसे पीते हो तुम, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं सर, अजीबो गरीब।
0: जी
1: मैं
0: बिल्कुल
1: आपको
0: मैम,
1: बताऊं, हमारी सोसाइटी में ब्लाइंड लोगों के प्रति दो रुख है। मैंने क्योंकि मैं साइटेड के बीच में ही रही हूँ, मैं कभी कोई ब्लाइंड इंस्टीट्यूट में रही नहीं हूँ, तो मुझे सिर्फ साइटेड का रुख पता है कि या तो नकारात्मक है, पूरा नकारात्मक है आपके प्रति, या फिर
0: जी
1: आपके प्रति बिल्कुल, मतलब कह सकते हैं कि सहानुभूति वाला, कि मतलब एकदम सहानुभूति, अपने से लो देखेंगे कि या छूट टाइप है ना, सहानुभूति दिखा रहे हैं बस, कि हाँ दया दिखा रहे हैं, तरस खा रहे हैं, वैसा एक ये रुख है लोगों का। और दूसरा रुख है कि भाई ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ये लोग तो मतलब बिल्कुल कोई काम के नहीं है, यूजलेस पीपल है, इनका होना नहीं होना समाज में नहीं होते तो ज्यादा बेटर होता हमारी सोसाइटी, ऐसा भी इन लोगों का रुख है। यस, तो ये नेत्रहीनों के साथ सिर्फ नहीं है सर, अदर दृष्टि दिव्यांगों के साथ भी है, अदर दिव्यांग जो जन है उनके साथ भी है ना। लाइक मतलब वी कैन बी बैगर्स और वी कैन बी सिंगर्स, राइट। मैं कड़वे शब्दों में यही कहूंगी कि वो लोग यही समझते हैं सर,
0: ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं
1: जी है ना। तो ये बात है। तो जब कोचिंग चलने लगी, और बहुत नाम तो मैं है सर, मैं छोटा मुंह बड़ी बात कह रही हूँ शायद, क्योंकि कोई मेरे बिहाफ में यहाँ बोलने वाला नहीं है,
0: जी।
1: बट मैंने बहुत नाम कमाया। स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट जो मैंने स्थापना की, वन एंड ओनली बेस्ट कोचिंग सेंटर ऑफ आवर सिटी रहा, और
0: वाह, क्या
1: भगवान
0: बात है,
1: ने बहुत बहुत तरक्की दी। मोर देन 4 to 5 thousand स्टूडेंट्स को मैंने टीच किया, और सब साइटेड, और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स को, मेरे ज्यादा स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज, हाउसवाइफ, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, जॉब सीकर, अच्छे अच्छे प्रोफाइल पे हैं। टीचर्स
0: क्या
1: ट्रेनिंग दी
0: बात
1: है मैंने लोगों को, प्रिंसिपल्स तक को पढ़ाया है स्कूल के, तो बहुत टीचर्स, पूरा
0: बहुत
1: स्टाफ पढ़ाया है कि बहुत सारे हमारी, जैसे झारचूड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है तो यहाँ पर कई इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि वेदांत, आदित्य बिरला, भूषण, ऐसे बहुत से हमारे तो इंडस्ट्रियल जो है उसमें ट्रेनिंग वगैरह होती है, तो ट्रेनिंग के लिए भी मुझे बुलाया जाता था, तो उसमें भी मैं जाती थी, पिताजी लेके जाते थे, तो ये सब भी है। इसके अलावा उसके बाद टाइप किया, टाइप भी हुआ, कई लोगों ने अप्रोच किया अदर कोचिंग सेंटर्स ने, तो दो कोचिंग सेंटर से मेरा टाई अप हुआ, विद्या गुरुकुल है ना, एंड शिक्षा कोचिंग सेंटर, ऐसे अपर्णा एक है, इसमें उन लोगों ने टाई अप किया, तो
0: जी
1: इन सब में भी मैंने उनके यहाँ भी जा रखे, मैं सैटरडे संडे पढ़ाती थी, जैसे अपना मंडे टू फ्राइडे अपना कोचिंग चला रहे हैं, और बाकी दिन के सैटरडे संडे इनके यहाँ जा करके पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह से भी ट्रेनिंग दी लोगों को, तो पूरा फुल बिजी, लाइफ वॉज फुल बिजी, मतलब सिंस 9 o'clock
0: उस समय
1: टू,
0: मतलब आपने यही लक्ष्य बना
1: हाँ
0: लिया
1: नाइन
0: कि
1: टू
0: बस अब
1: टेन
0: तो मुझे।
1: यस हाँ, पूरा 9 बजे से सुबह रात के 9 बजे तक, मतलब मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, इतनी बैचेस, मतलब 9 से 10 बैचेस में पढ़ाती थी सर, 1 घंटे की हमारी एक बैच होती थी दैट। तो बहुत बहुत सक्सेस मिला कोचिंग बिजनेस में, और फिनेंशियली भी बहुत अच्छी सिचुएशन हो गई, और उसके बाद में बुक्स लिखना शुरू किया सर, बाकी टाइम पे फिर किताबें लिखना शुरू किया, तो स्पोकन इंग्लिश के ऊपर मैंने 4 किताबें लिखी हैं, और एक ग्रामर की बुक लिखी है, तो दो मैंने
0: अरे वाह,
1: कोर्स बुक लिखी सर, और दो लिखी वर्क बुक हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और ये हमारे जो विनर्स एजुकेशन के सर रहे डॉक्टर आनंद पियाहुजा, उनके गाइडेंस में मैंने लिखी, तो उन्होंने भी काफी इसमें करेक्शन मुझे बताए, तो ये जो दो कोर्स बुक है और जिससे मैं पढ़ाती हूँ जिसके, और दो हमारी वर्क बुक है जो हम स्टूडेंट्स को देते हैं, तो ये चीजें
0: अच्छा
1: हैं। और मैं आपको अच्छी बात एक और बताती हूँ सर, आप खुश हो जाएंगे सुन के, तो
0: जी
1: मैंने जितने भी डिजेबल स्टूडेंट्स हमारे रहे, मैं उनको फ्री
0: जी
1: ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी हूँ शुरू से, ये मेरा
0: क्या
1: एक
0: बात है,
1: रहा था
0: वाह
1: जी।
0: वाह,
1: और
0: बहुत खूब,
1: कई लड़कियां आती थी जैसे बहुत पुअर बैकग्राउंड से, किसी के जैसे फादर नहीं है तो मामा क्या रह रही है नहीं है, तो उन लड़कियों को भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया है, जिसका कहते हैं ना उनका आशीर्वाद होता है, तो उस आशीर्वाद से हम इतना फले फूले, तो ये मैंने किया, कोशिश की, लेकिन चूंकि वो जो हमारे एरिया था ना, वहां पे कोई ब्लाइंड स्टूडेंट था ही नहीं, तो क्या किया जाए। तो भाई हम कोशिश करते थे कि कहीं से कोई मतलब इस तरह के लोगों की हेल्प मिले, तो कुछ गरीब लड़कियों को भी जैसे पढ़ाया जो मिले सो मिले, है इस तरह के। तो ये चीजें हमने की, उसके बाद इस तरह से सिलसिला चलता गया और किताबें लिखी। और चूंकि किताबें भी लिखी और कोचिंग भी पॉपुलर हो रही थी और उड़ीसा में काफी नाम हो गया था कि भाई ऐसे ऐसे एक ब्लाइंड लड़की है और पढ़ाती है और किताब भी लिख डाली है, तो एक अजूबा होता है सर कि सब देखने आते हैं। तो काफी इंटरव्यूज हुए उस दौरान। जैसे हमारे उड़ीसा में एक ओटीवी है, ये उड़ीसा का सबसे बड़ा चैनल है, तो उसमें इंटरव्यू हुआ और उसको 4 लाख लोगों ने देखा था उस इंटरव्यू को तो उस समय पे। और तो
0: क्या बात।
1: काफी मतलब बहुत बहुत फोन आते थे। और अच्छा इसमें सर मैं आपको एक बताती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा कई लोग ना शादी का प्रस्ताव रखते थे। अच्छा जी,
0: आपने कहा
1: ये
0: होगा
1: भी
0: भाई ये गलती
1: हुआ।
0: दोबारा नहीं करनी है।
1: नहीं, सर देखिए, एक तो मारवाड़ी फैमिली और हमारा इस तरह का अपब्रिंगिंग नहीं है ना। हमारे समाज में हम
0: ठीक
1: जिस
0: बात
1: तरह
0: है।
1: के माहौल में
0: और फिर क्या
1: रहे,
0: होता है
1: परिवेश
0: ना
1: में,
0: कोमल जी, जब जीवन का एक लक्ष्य मिल जाता है तो फिर इन सब बातों के बारे में
1: जी
0: फिर सोचने का कोई मतलब भी
1: नहीं
0: नहीं है।
1: सोचता इंसान, है ना, नहीं सोचता बस, है ना। क्योंकि उस समय हमारे सर पे देखिए पहले फिनेंशियल जो कंडीशन है वो सुधरे, वो सही हुई, है ना। उसके बाद देखिए बेटे की जिम्मेदारी रही एज अ सिंगल पेरेंट, उसमें भी मैंने बहुत से चैलेंजेस फेस किए, है ना। और ईश्वर की दया से और पेरेंट्स के आशीर्वाद से देखिए आज बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। 25 ईयर्स का है और अपना पार्ट टाइम कुछ कुछ कर रहा है, अपने कंप्यूटर का भी बिजनेस स्टार्ट करने वाला है धीरे से करके, शॉप भी एक ओपन करेगा अभी और
0: बहुत
1: स्टार्टअप है
0: बढ़िया,
1: उसका अभी। हाँ
0: वेरी
1: जी,
0: गुड।
1: तो अब जब वो मुझे कहता है कि मम्मी यू नीड नॉट टू वरी अबाउट फाइनेंशियल कंडीशन, यस आपको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर यू, लेकिन
0: क्या बात
1: मैं फिर भी सोचती हूँ नहीं, मैं जब तक मैं मेरी सांस है तब तक मैं काम करना है मुझे, दैट्स। तो ये मेरे जीवन का लक्ष्य रहा था। भगवान की दया से देखिए पापा ने, बेटे ने, इवन मेरी मदर के बारे में जरा बात करूंगी कि मेरी मदर शुरू से मतलब कोई काम नहीं घर का करना है। देखिए अगर हम घर का कुकिंग करने लगे, सब करने लगे तो बड़ा फिर कुछ का काम नहीं कर सकते। तो मदर ने बहुत सपोर्ट किया कि घर का कोई काम तुमको करना नहीं है, तुम अपना सेटल, तुम अपना काम करो, तुम अपना लिखो पढ़ो। तो अध्ययन, अध्यापन, लेखन, ये तीनों चीजें मेरी मदर के सपोर्ट की वजह से चलता रहा, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो हम ये सारे काम एक साथ नहीं कर सकते थे जी। तो ये बात हुई। लेकिन कहते हैं कि सब प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती है। तो क्या हुआ कि
0: जी
1: 2017 में पिताजी को कैंसर हो गया, इट
0: अच्छा
1: वॉज ओरल कैंसर जी। तो ओरल कैंसर हो गया और ओरल कैंसर की वजह से फिर वो काफी सफर किए और मेरे मदर फादर जैसे ट्रीटमेंट के लिए फिर बाहर रहे, भोपाल में रहे काफी समय तक, वहाँ इलाज चलते रहा। तो मैं यहाँ पे बेटे के साथ मैं अकेले रहती थी, अपना लाइफ इंडिपेंडेंट थोड़ा ठीक है, अपना काम भी कर रहे हैं, कुकिंग भी कर रहे हैं, सब काम भी कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। सर्जरी भी हुई पिताजी की, है ना। लेकिन बस ये समस्या हुई कि 2018 में फिर उनका देहांत हो गया। वो सफर नहीं, वो कीमोथेरेपी वगैरह बर्दाश्त नहीं कर सके। तो इन द ईयर 2018 ही वाज एक्सपायर्ड। तो दैट वाज अ ग्रेट लॉस टू आवर फैमिली। तो बहुत ग्रेट लॉस हुआ। और सर मेरी ऐसे लैब पे उन्होंने से रखा हुआ था व्हेन ही गॉट एक्सपायर्ड, इट वाज द लास्ट उनका था। एंड उनका मेरा बहुत हार्ट एक फुल कनेक्शन है ना, वो रहा। तो पिताजी के जाने के बाद काफी हम लोगों ने मदर को बहुत संभाला और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि देखिए क्योंकि अगर हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। तो मदर को संभाला, मदर संभल भी गई, वो भी समझी बातों को कि नहीं उसको लेकर के नहीं बैठना है, आगे बढ़ना है जीवन में। तो फिर उसके बाद में पिताजी की डेथ के बाद इन द ईयर 2022, 2022 में हमने शहर छोड़ दिया क्योंकि थोड़ा पापा की प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट था भाई से, है ना। तो फिर उसके बाद में उसको सेल आउट करके हम लोगों का जो भी बंटवारा होता है दैट इज वो के। फिर उसके बाद में हम छत्तीसगढ़ आ गए और यहाँ से फिर कहते हैं अभी तो मैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस कर रही हूँ दैट इज। तो ये
0: छत्तीसगढ़ में
1: रहा।
0: कौन से
1: और
0: शहर में आप?
1: छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के थोड़ा पास में सर, इट्स अ कस्बा टाइप एक जगह है, बिलाईगढ़ एक प्लेस है, वहां
0: अच्छा
1: से
0: अच्छा
1: मैं
0: अच्छा
1: वहां
0: हाँ
1: जी।
0: तो आपने छत्तीसगढ़ ही आने का कैसे सोचा?
1: जी हाँ, क्योंकि मेरे मामा जी यहाँ रहते हैं और उन्होंने हमको सपोर्ट किया
0: ओके
1: एंड उन्होंने
0: ओके
1: ही
0: ओके
1: हमको यहाँ पर ला करके कि भाई अब मैं हूँ, है ना, एज अ फादर तुम्हारे यहाँ पर फिर जमीन वगैरह
0: 2008 से लेके 2022 तक पूरा आपने ओडिशा में ही अपने आप को
1: बचपन से ही पूरा
0: सर्वाइव भी किया, फ्लरिश भी किया और सारे मतलब अच्छे बुरे दौर वहीं देखे आपने।
1: सब सब
0: एक बात बताइए मैम, आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि भाई ब्लाइंडनेस को लेकर के यानी दृष्टि बाधित लोगों को लेकर के जानकारी का बहुत अभाव था और जागरूकता भी नहीं थी लोगों में
1: जी,
0: तो ये बात समझ में आती है और ऐसा है भी, लेकिन जब आपने कोचिंग शुरू की
1: जी
0: तब लोगों के मन में नहीं आया कि एक ब्लाइंड टीचर हमें क्या पढ़ाएगी, कैसे पढ़ाएगी, हम कैसे इसके इनके पास जाएं पढ़ने के लिए और फिर आपको इतने सारे स्टूडेंट्स कैसे मिलने लगे?
1: जी जी जी मैं वही बताती हूँ। देखिए एक तो रेटिनाइज पिगमेंटोजा जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें आपकी आईज की बनावट वगैरह सब कुछ अच्छी है तो नोबडी कैन जज बाय सीइंग यू कि आप ब्लाइंड है, पहली बात तो ये, तो हम अच्छे खासे दिख रहे हैं, स्मार्ट दिख रहे हैं और फिर प्रेजेंटेबल भी हैं, तो ये भी चीजें रही है ना जिसने एक प्लस ऐड ऑन किया।
0: यानी किसी ने नोटिस नहीं किया कि उनको पढ़ाने वाला टीचर जो है वो शायद ब्लाइंड है।
1: लेकिन क्या हुआ, लेकिन देखिए क्योंकि चूंकि मैं हमेशा ऑनेस्ट रही हूँ सब चीजों के प्रति, तो मैं हमेशा कोई भी पर्सन मेरे पास एडमिशन करता था तो मैं उसको पहले बताती थी है ना, ताकि आप शिकायत ना करो कल को। ओके, और वो लोग वैसे भी देखिए सर मेरी जो पब्लिसिटी हुई ना वो ओरल रही, माउथ टू माउथ रही कि भाई एक ने किसी को बताया ये अच्छा पढ़ाती है इनके पास जाओ, सबको पता था मैं ब्लाइंड, मैक्सिमम सबको पता था कि मैं ब्लाइंड, जो भी आता था और जिसको दो चार इक्के दुक्के को नहीं पता होता था तो वो पता चल जाता था एक दूसरे से, और कई कई तो सर ऐसे भी थे कि 6 महीना पूरा कोर्स कर डाला उनको पता नहीं चला कि मैं ब्लाइंड हूँ। एक एक ऐसा भी इंसिडेंट मेरे साथ रहा, ऐसे भी रहे मेरे साथ में है ना, तो क्योंकि मैं आई कांटेक्ट भी करती हूँ बहुत अच्छे तरह से कर लेती हूँ, आवाज को रिस्पॉन्ड भी मैं बहुत तरीके से।
0: आपने रेंटल जो बिल्डिंग है वो रेंटेड ले रखी थी, अपना कुछ खुद का ही खरीद लिया था, कैसे कर रहे थे आप?
1: जी नहीं, पहले तो मेरे पिताजी का जो थोड़ा छोटा हाउस था, एक थोड़े अबंडेंट हाउस भी कह सकते हैं उसको, फिर तो वो बहुत काफी दुर्दशा हो गई उसकी, खराब हो गया हाउस, तो फिर रिपेयर कराने की स्थिति नहीं थी, तो फिर हमने रेंट पे हाउस लिया, वहीं पर एक कोचिंग सेटअप डाला, जैसे एक बड़ा सा हॉल
0: उसी पर ही करते रहे थ्रू आउट।
1: हाँ बस एक हॉल जैसे था तो उस पर कोचिंग सेटअप डाली, अंदर में अपने रूम्स वगैरह है क्योंकि अब जाने आने की तो सर सुविधा नहीं है, देखिए रोज कौन जाएगा, फिर उसको मेंटेन भी करो, स्टाफ भी रखो, ये सब मैं नहीं सक सकती थी, तो मैंने सोचा जो अपनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए, तो घर पे ही एक हॉल में सेटअप डाला कोचिंग का, वहीं पर डेस्क वगैरह बेंच वगैरह लगा के सेटअप कर लिया और बस इस तरह से कोचिंग चलने लगी हमारी, और बाकी फिर जहाँ भी जाती थी पिताजी के साथ जाती थी और वहाँ पे जो स्टाफ रहते थे वो सब लोग कोऑपरेट करते थे। तो
0: ये ओडिशा में कौन सा शहर बता रहे हैं आप? जादू
1: झारसुगुड़ा जी, झारसुगुड़ा सर, JHAR झारसुगुड़ा। हाँ ये बिल्कुल राउर किला के नजदीक है सर, और ये वेस्टर्न उड़ीसा में आता है और इंडस्ट्रियल सिटी है, बहुत फेमस है।
0: तो एक बात बताइए, जब आपकी कोचिंग चल निकली और जब कहना चाहिए कि आपके अच्छे दिन आ गए
1: जी,
0: तो आपके हस्बैंड की साइड से लोगों ने दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की आपसे कभी या नेवर?
1: सर कोशिश किया था बट वी डिड नॉट, हम लोगों ने कभी पलट के नहीं देखा।
0: ये क्योंकि मेरे मन में एक बात आ रही थी कि शायद ऐसा हुआ हो कि मन में थोड़ा उनके भी आया हो कि यार चलो
1: वो थोड़ा सन का थोड़ा था सर, तो सन के प्रति थोड़ा रुझान रहा होगा, तो लेकिन सन ने फिर नहीं देखा कि जिसने मतलब हमको पहले नहीं अपनाया है ना, एक बार जो ठुकरा दे सर उसके तरफ पलट के देखने का कोई सेंस नहीं है, तो ये बात बेटे को भी पता है बहुत अच्छी तरह से जी।
0: बिल्कुल ठीक बात है, बहुत जबरदस्त मतलब संघर्षों से आपने आज एक तरह से मुझे लगता है कि कहना चाहिए ब्लाइंड जगत की नीतू मैम है आप, दिल्ली में है एक नीतू सिंह मैम है, इंग्लिश की कोच हैं शायद, उनका भी ऐसे ही कोचिंग सेंटर चलता है। तो दुनिया मतलब वही बात है कि आपके संघर्ष की कहानी मेन स्ट्रीम में मुझे लगता है जानी चाहिए, वो उनके बारे में लोग बातें करते हैं, उनकी कहानी आती है, लेकिन आपका संघर्ष किसी भी मायने में उनसे कम नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि एक कदम ज्यादा ही है। खैर सबका अपना अपना संघर्ष होता है,
1: अब
0: कार्यक्रम के माध्यम से जो लोग आपको सुनेंगे उन्हें पता चलेगा डेफिनेटली, और लोग इस बारे में आगे भी चर्चाएं करेंगे। और श्रोताओं आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, कार्यक्रम है मन की आंखों से, और आज क्या कहना चाहिए, बहुत सारे आयाम हैं, अभी तो हमने इनके लेखन कार्य के बारे में तो चर्चा ही नहीं की है, बात कर रहे हैं कोमल अग्रवाल मैडम से जो कि अपना कोचिंग सेंटर चला चुके हैं, लाइफ कोच रह चुके हैं, लेखिका तो वो हैं ही, बहुत अच्छी और दृष्टिबाधित यानी ब्लाइंड होने के बावजूद उन्होंने ये सब काम किए हैं, और वो भी तब जब समाज ने उनके

0: आयाम दिखे हैं, आपकी लाइफ के इतने शेड्स हैं, तो कहीं ना कहीं लेखन के फील्ड में तो मतलब जाना लगता है कुदरत भी चाहती थी कि आप जाएं
1: जी
0: उस और
1: बिल्कुल
0: तो
1: जी। और मेरे
0: अरे
1: पिताजी भी शायर थे, वो भी लिखते थे कविता वगैरह और शायरी लिखते थे, तो मैं
0: वाह,
1: उनसे भी कहीं ना कहीं एक जीन आता है जो
0: बिल्कुल
1: रहता
0: बिल्कुल
1: है कि,
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल,
1: वो भी
0: डेफिनेटली
1: रहा
0: डेफिनेटली जी, आप
1: जी।
0: बताइए अब
1: और
0: आप।
1: क्लास 10 में सर मेरी पहली जो कविता जिसकी है मुझे तलाश, ये संवेद शिखर एक अखबार में प्रकाशित हुई, जिसकी मेरे पिताजी जिसको बेचते थे हॉकर जैसे, मतलब यू नो जैसे कई डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना न्यूज़पेपर के, तो वो
0: हाँ
1: काम
0: जी
1: कर
0: हाँ
1: रहे
0: जी
1: थे
0: हाँ
1: उस
0: जी,
1: समय पे, तो काफी अखबारों के वो मतलब सेलिंग करते थे और लड़कों को
0: आपको
1: रखते
0: याद हो तो मैम
1: थे।
0: दो लाइनें हो जाए
1: जी जी बिल्कुल सर, होती है। तो
0: जी
1: वो पहली कविता थी सर जिसकी मतलब इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं सुनाती हूँ।
0: बिल्कुल।
1: तो सोचती हूँ आखिर वह क्या है, सोचती हूँ आखिर वह क्या है जिसकी मुझे तलाश है वह मंजिल यही कहीं या पूरा आकाश है, सपनों
0: वाह
1: का वह नीड़ कहाँ, कागज की वह नाव कहाँ, मेरे बचपन के वो साथी अब तक मन के पास हैं, मन मेरा बेचैन है अधरों पर भी प्यास है,
0: वाह वाह वाह
1: अस्तित्व खोजती मैं अपना, कहो किसी ने देखा क्या, मेरी मंजिल मेरा आकाश जिसकी है मुझे
0: वाह,
1: तलाश।
0: बहुत खूब, बहुत जबरदस्त, बहुत
1: तो ये
0: जबरदस्त,
1: सर प्रथम कविता जब पब्लिश हुई ना, तो मैं हवा में उड़ने लगी, अब मुझे लिखना आ गया,
0: लो
1: है
0: अरे
1: ना,
0: वाह क्या
1: काफी
0: बात
1: मतलब
0: है।
1: बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद सर जो यू नो ब्लाइंड लोग आप जानते हैं बहुत इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स से शिकार होते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, कोई बात भी नहीं करता है उनसे, इतना दोस्त नहीं कुछ नहीं, तो मेरी डायरी मेरी दोस्त बनी। सिर्फ डायरी नहीं, सिर्फ लिखना लिखना अपनी पर्सनल लाइफ की चीजें, कहीं पढ़ रहे, पढ़ना और लिखना बहुत शौक रहा। और चूंकि मेरे ताऊजी की किताब की दुकान थी, तो मैं वहां से किताबें लाती थी, बहुत राइटर्स को पढ़े सर, एक से बढ़कर एक राइटर जिनका नाम कहाँ कहाँ सुनते थे, कोर्स की किताबों के साथ जनरल रीडिंग बहुत किया, रामधारी सिंह दिनकर, निराला,
0: जबकि
1: महादेवी
0: आंखों की
1: वर्मा,
0: रोशनी भी धीरे धीरे कम
1: सत्यमानंद
0: हो रही थी,
1: सेन
0: तो तब
1: जी,
0: यह हाल
1: हाँ
0: है ना।
1: तब किताब ऐसे घुस घुस के पढ़ रहे हैं सर, इतना शौक है मतलब आंखें खराब हो रही है तो हो रही है, लेकिन पढ़ना है तो
0: मैं श्रोताओं को
1: पढ़ना
0: बताना चाहता
1: लिखना।
0: हूं कि श्रोताओं देखिए, पढ़ने का कोई विकल्प ही नहीं होता है
1: जी,
0: जी।
1: तो मैं
0: जी
1: किताब
0: मैम
1: लाती उनसे, है ना, और पढ़ के वापस एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे से रख के कि किताब खराब नहीं होनी चाहिए, तो किताब ला करके वापस पढ़ करके वापस लौटा दी थी, ऐसे कर करके सर किताबें पढ़ती रही। तो ये एक बहुत एक अच्छी चीज रही। और उसके बाद पहला उपन्यास मैंने शुरू किया था जिसका नाम था खामोशी से आवाज तक, लेकिन वो जला दी गई थोड़ा सा, है ना, लॉस के यहाँ, तो अब मेरे पास वो उपन्यास नहीं है जिसका मैंने आधा से भी ज्यादा उपन्यास लिख चुकी थी मैं, है ना। तो हाँ, तो वो कहते थे कागज काले करती हैं, तो है ना, लिखने मतलब 5-5 6-6 डायरी ऐसे भरी हुई रहती थी, खाली लिख रहे हैं लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, ये काम चलता रहा, मतलब डेली रूटीन जो चल रहा है कि भाई खाना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं घर का, इसके अलावा जितना भी समय मिलता था ना वो पठन पाठन अध्यापन ये सब में, स्टूडेंट्स को भी जैसे कुछ बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं शाम को, इससे अपनी जीविका भी चला रहे हैं, ये सब चलता रहा सर, और रात रात भर पढ़ती थी। उसके बाद सर जब पढ़ने का आया कि भाई अब ब्लाइंड हो गए अब कैसे पढ़े, तो सक्षम प्रेस ने मुझे बहुत हेल्प किया सर, मतलब मैं आपको बताऊं मैंने सैकड़ों किताबें वहां से सीडी में मंगाई, मैं उन लोग को बोलती थी
0: जी
1: मेरे को इतनी भेज दो, उन लोग मेरे को बोलते थे नहीं इतने अलाउड नहीं है, आप लिमिट में मंगवाइए 10 रुपए सर एक का, एक सीडी का लेते थे। और मैं बहुत जनरल रीडिंग बहुत किया, चूंकि मुझे फिक्शन पढ़ने का बहुत शौक रहा और नॉन फिक्शन मैं बहुत कम पढ़ी हूँ मैं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा उसका नॉलेज नहीं है, तो कल्पनावादी संसार होता है ना उसमें बस उड़ रहे थे कि
0: उसमें
1: कल्पनाओं की
0: बस
1: उड़ान, तो बस
0: घुस, एक
1: हाँ
0: बार जब घुस गए तो निकलने का कोई
1: घुस
0: मतलब
1: गए।
0: नहीं।
1: तो फिक्शन बहुत पढ़ा, शिवानी को पढ़ा, महादेवी वर्मा को पढ़ा, डॉक्टर सूर्य बाला सिन्हा, ये सब मेरी फेवरेट राइटर रही हैं, प्रेमचंद जी रहे, है ना, विमल मित्र है, तो इन सब लोगों को मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा है। एक जैसे राइटर की पसंद आती तो उनके और मंगाती, और कोई बुक है क्या, उसको खोजती बैठ के, तो इस तरह से सक्षम ने काफी हेल्प की। एनईबी से भी मैंने किताबें मंगवाई जो जो यहाँ नहीं मिलती थी, उधर बुक शेयर का भी मेंबरशिप लिया और इस तरह से पढ़ते रहे, तो ये रहा। और 2020 में सर आ गया अपना कोरोना, तो अब रहा कि भाई ऑफलाइन कोचिंग, ये एक बड़ा डिजास्टर लाइफ में आएगा कि भाई कोचिंग अब बंद हो गई, अब क्या किया जाए। तो आपको पता है मेरे बेटे ने मेरे को गूगल मीट वगैरह चलाना सिखाया और बोला मम्मी आप इसमें
0: सिखाया।
1: क्लास करो, हाँ, तो ये एक बहुत अच्छी बात रही, बोलते कोरोना लोगों के लिए समस्या लेके, बहुत समस्याएं लेके आया, लेकिन उसने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया,

0: कि हम जो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे थे, और सिर्फ मैं वहाँ के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, इवन मेरे पास उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के या मध्य प्रदेश के और लोग भी आते थे, और दो दो महीना, जैसे यू नो औरतें अपने मायके में रहती हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, तो मेरे पास क्लास करवाने के लिए दो दो महीना रहते थे और पढ़ते थे। लेकिन सब बाहर के लोग पढ़ नहीं पाते थे, तो लोग पूछते थे कोई प्लेटफॉर्म है क्या पढ़ने का आपके पास में, तो मेरे पास तो नहीं है भाई पढ़ने का, वीडियो ऑडियो दे दो बोलते थे, मैं बोली नहीं नहीं मैं वो नहीं दे पाऊंगी। तो कोरोना के समय में जब गूगल मीट से स्टार्ट किया पढ़ाना, तो बहुत लोग जुड़े, जो लोग चाहते थे, और सब लोग मेरे को अप्रोच करते थे कि भाई हम कैसे पढ़ सकते हैं, दोस्त भी, मेरी सहेलियां भी बोलती थी कि कोमल मुझे पढ़ा दे, तो सब मेरे फ्रेंड्स ने ग्रुप बनाया, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, फिर और लोग जुड़ते गए, फिर उसके बाद डिजिटल थोड़ा मार्केटिंग किया बेटे ने, और उसके बाद हमको कोविड के समय में भी इवन हमारे पड़ोसी तक हमसे ऑनलाइन पढ़ने लगे। तो जी, तो इस तरह की चीजें हुई, तो कोविड ने मुझे और स्टूडेंट्स दिलाए जो स्टूडेंट्स हमारे ऑफलाइन में नहीं थे, बहुत बहुत किया क्लासेस। और इसी दौरान तब जो क्लब हाउस एक ऐप से जुड़ी मैं, और वहां
1: बिल्कुल
0: पर हमने अपना एक क्लब स्थापित किया, उससे मैं स्टार्ट की कि भाई विजुअली चैलेंज्ड लोग सब एक जगह पे इकट्ठा होकर के अपने टैलेंट को कैसे शोकेस कर सकते हैं। तो क्लब हाउस से मैंने ये अभियान शुरू किया, और यहाँ से उसके बाद हम लोग देखे कि जैसे मेरे को लोग क्या बोलते थे कि देखो कि हम लोग वीडियो बना नहीं पाते, इसलिए हमारे यूट्यूब में चैनल पॉपुलराइज नहीं है, ये हुआ। तो मैं उस समय लिख भी रही थी, और पहली जो मैंने कहानी लिखी, पहली कहानी तो नहीं जो मतलब जिसको लोग बहुत पढ़ रहे, कहानी तो बहुत सी लिखी, क्योंकि मेरी काफी मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई कहानियां। और मैं आपको बताऊं सर, 2002 में, 3 में मैंने नवभारत में भी लिखा हुआ है, उसमें एक
1: अरे वाह,
0: आर्टिकल
1: क्या
0: आता
1: बात
0: था
1: है
0: पर्सनालिटी ऑफ द वीक, उस समय मैंने
1: जी।
0: वहां पे भी लिखा हुआ है, मैं महिला समिति की सेक्रेटरी थी जिस जगह पे मेरी शादी हुई थी वहां पर, तो वहां पर भी मैं काम कर रही थी लेखन का, और वहां पे सचिव का काम कर रही थी, चूंकि लेखन का ही काम है ये सब। तो मेरी बहुत सी, इवन राजस्थान के भी कई, भरतपुर से एक मैगजीन निकलती थी महावैश्य सम्मेलन, उसमें भी कविताएं कहानी पब्लिश हुआ करती थी छोटी छोटी, तो ये सारी चीज हुआ करती थी। तो उसके बाद में एक कहानी मैंने लिखी, का नाम था कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। तो ये विधवा पुनर्विवाह पर एक 10 पेज की कहानी थी, इसको मैंने सब ग्रुप में जब भेजा तो मुझे बहुत से फोन आए, बहुत लोग फोन करने लगे वीआई कम्युनिटी से कि आप बहुत अच्छी कहानी लिखते हो, आप साइटेड हो क्या, क्योंकि आपने जो नायिका है उसकी साड़ी के फूलों का वर्णन किया है, उसके केश कैसे है वर्णन किया है, वो किस कलर की बिंदी लगाती है आप बताते हो, तो क्या आप साइटेड हो, है ना। और चूंकि मेरी फोटो भी जैसे कोई देख रहे हैं जो लोगों ने, है ना, जो लो विजन वाले भी, देखने से
1: जी
0: पता ही नहीं चल रहा है कि ब्लाइंड है कि क्या है, तो फिर ये भी एक रीजन रहा कि सब पूछते थे नहीं नहीं आप साइटेड ही होगे जरूर, है ना। तो ये मिथ बना रहा काफी समय तक, तो लोगों को ये समझने में देर लगी कि मैं ब्लाइंड हूँ। ओके, ये बात है, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता था कि नहीं मैं सच में ब्लाइंड हूँ,
1: बिल्कुल
0: मुझे नहीं दिखता है। ओके, तो ये रही, तो उस पे मेरे को कई लोगों ने बोला कि इस पे एक ड्रामा बनाना चाहिए, प्ले बनाना चाहिए, तो प्ले बनाना चाहिए, तो चलो प्ले बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। तो मेरे एक फ्रेंड थे नहीं है, विकास शर्मा जी हैं, ये साइटेड है मुंबई से, और
1: जी
0: ये मेरे को मिले टीम विजन, एक मुंबई में एक संस्था है जो कि विजुअली इम्पैक्ट लोगों के लिए काम करती है, उसमें ये एंकर वगैरह का काम करते हैं और मेंबर है टीम के। तो
1: जी
0: मैंने इनके एक पोइट्री कंपटीशन में हिस्सा लिया था ऑनलाइन कोविड के समय में, और मुझे इसमें इन्होंने अवार्ड किया था। तो
1: अच्छा
0: वो जब ब्लाइंड लोगों के लिए काम करने लगे, तो उनके साथ में मेरी बातचीत होने लगी, तो मेरे को पता चला कि ये पर्सन बहुत अच्छा पर्सन है, और मतलब बहुत कोऑपरेट करते हैं ब्लाइंड लोगों के साथ में, तो उनके साथ में हमारा एक कहते हैं ना एक कनेक्शन बरकरार रहा। तो ये कनेक्शन मेरे को काम आया कनेक्टिंग विम्स की स्थापना करने के लिए।
1: जी,
0: जी, तो
1: यानी अब आपने अपना खुद का एक तरह से एक
0: जी
1: कहना चाहिए कि सोशल वेंचर शुरू कर दिया है
0: एक सोशल
1: कनेक्टिंग
0: वेंचर
1: विम्स
0: शुरू
1: के नाम।
0: किया जिसका नाम कनेक्टिंग विम्स दिया, और ये हमारी वीआई कम्युनिटी के लोगों और साइटेड लोगों के बीच का एक वीआई भी नहीं, अदर दिव्यांगता भी इसमें है, सब लोग हैं, तो एक इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है, एक पहल है जिसमें हम लोग हमारे जो वीआईज हैं, अदर डिजेबल पीपल हैं और साइटेड भी हैं, उन सभी के टैलेंट को शोकेस करने के लिए, उनके भीतरी गुणों, उनकी जो प्रतिभा है उसको सामने लाने के लिए एक प्रयास है, तो एक मंच हुआ। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप पहले बना, उसके बाद हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया, जिसमें हमारे सभी जो भाई बहन हैं दृष्टिबाधित, मैक्सिमम दृष्टिबाधित हैं, तो इन सभी के किसी की कविता, किसी का भजन, किसी का गीत, किसी की कहानी, ये सब कुछ इसके अंदर आती है। तो हमने पहली ऑडियो सीरीज 19 एपिसोड की बनाई, कैन आई होल्ड योर हैंड, खूबसूरत एहसास। पहले मुझे एडिटिंग नहीं आती थी। मैं एक और नाम लेना चाहूंगी, योगेश गोयल, ये आगरा से हैं और इन्होंने मुझे एडिटिंग के लिए बहुत सहयोग किया और मुझे गोल्ड वेव की एडिटिंग सिखाई, तो मैं उनके प्रति बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये भी एक ब्लाइंड पर्सन है और एक्सेसिबिलिटी टेस्टर है, तो इन्होंने मुझे सिखाया। उसके बाद मैं खुद भी ट्यूटोरियल सबसे देख के सीख गई, तो एडिटिंग भी आ गई। तो लिख रहे हैं, हमारे सभी ब्लाइंड लोगों को जोड़ा सबसे फोन पे बात करके, व्हाट्सएप चैटिंग कर करके कि भाई आप आओ जूम पे, हम रिकॉर्डिंग करेंगे कहानी। स्क्रिप्ट लिखी गई पूरी और सब सब लोग बोलते थे, कोमल नहीं, हम लोग कभी डायलॉग नहीं बोले हैं। मैंने बोला इसीलिए आप लोग बोलो, क्योंकि अंदर का डिप्रेशन निकलेगा, हीन भावना निकलेगी, कम्युनिकेशन स्किल आपकी स्ट्रांग होगी। तो मैंने उन लोगों से काम करवाया जो लोग कभी एक लाइन नहीं बोले थे किसी प्लेटफॉर्म पर। तो सब लोग, हमने किसी पॉलिश्ड किसी आर्टिस्ट के साथ काम नहीं किया संदीप सर, ये मैं आपको सबसे पहली बार बताती हूँ। 0% इन्वेस्टमेंट पे काम किया, किसी को एक रुपए नहीं दिए, ना म्यूजिक के लिए नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। खुद म्यूजिक बनाया, आयशाला से बनाए, फ्री ऐप से बनाए, है ना, आयशाला से किए, तानपुरा में चला रहे हैं और गाना सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारी टीम में लोग जुड़ते गए। मैं इसमें नाम लेना चाहूंगी आपके जयपुर से, श्री ओम वेनावरिया, जो बीएड अभी कंप्लीट किए हैं और ये संपूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है, ये हमारे चैनल से जुड़े। इन्होंने हमारे चैनल के लिए बहुत काम किया है और अभी भी कर रही है। तो ये लड़का मतलब बहुत अच्छा लिरिसिस्ट, पोएट, राइटर सब है। तो इन्होंने भी कनेक्टिंग ड्रीम्स के एज अ लाइक कोर मेंबर की तरह से, और सचिव भी कहते हैं, सचिव की भूमिका में भी ये हैं अभी। और विकास शर्मा जी को फाउंडर है, और इन्होंने जो भी वीडियो एडिटिंग हमारे चैनल पे होती है, अपलोड का जो सिस्टम है, टेक्निकल जो भी इश्यूज होते हैं सारे यही डील करते हैं, और जो साउंड से रिलेटेड काम है, ऑडियो से रिलेटेड, वो सारा कुछ मैं करती हूँ। और ओम बिनावरिया भी इसमें ऑडियो लैब से करते हैं, मैं गोल्ड वेव सेट करती हूँ। तो ये कनेक्टिंग टीम्स हमने बनाया, इसमें हमारे चार कोर मेंबर और हैं, जिनका नाम क्रमशः सुदेश शर्मा, अभय गोयल, सुधांशु कुलश्रेष्ठ और रजनी गर्ग है। तो ये हमारी टीम के कोर मेंबर हैं, और बाकी हमारी टीम में 100 से भी ज्यादा मेंबर हैं, जो कि भारत के अलग अलग शहरों से हैं। तो इसमें 1/4 लोग जो हैं वो साइटेड हैं, और बाकी जितने भी लोग हैं 80% लोग अराउंड सभी दिव्यांगजन हैं। तो कोई लोग ऐसा नहीं, कोई कम्प्लीटली ब्लाइंड है। तो लिखने का ये रहा, तो ऑडियो सीरीज बनाई, स्क्रिप्ट लिखी, कहानी लिखी पहले, फिर उसी पर स्क्रिप्ट लिखी, फिर कहानी लिखने का सिलसिला चलता चला गया। के बाद हमने और ऑडियो सीरीज बनाई, एक अनबुझी प्यास, अ स्केच ऑफ लाइफ, ये 8 एपिसोड की हमने बनाई। इसमें हमारे 30 से ज्यादा भाई बहनों ने काम किया, ब्लाइंड भाई बहनों ने, और कैन आई होल्ड योर हैंड में तो 60 से ज्यादा लोगों ने काम किया। और उसके बाद हमने एक दहेज एक कुप्रथा, क्योंकि आप कनेक्ट कर पाएंगे कि दहेज क्यों बनाई, तो दहेज एक कुप्रथा, ये मैंने एक
1: बिल्कुल समझ गया मैं, वो वही कहा ना कि जो जिया है वही लिखा है।
0: तो विधवा पुनर्विवाह पर कैन आई होल्ड योर हैंड बनाया, एक अनबुझी प्यास जो है वो समाज की दोहरी मानसिकता पर कुठाराघात करती हुई एक सशक्त कहानी है, जिसमें एक वुमेन की कहानी है कि एक अनाथ बच्चे को गोद लेने का एक डिसीजन वो रहा उसमें। तो ये 3 हमने बनाई, और इसके अलावा हमने ब्लाइंड लोगों के ऊपर एक मूवी बनाई जिसका नाम है यस आई एम 40। सर आप देखते हैं कि हम लोग आवाजों से जज करते हैं ना कौन कितना एज का है
1: जी,
0: तो हमने इस पर एक बहुत ही लाइट हार्टेड एक मूवी बनाई है, यस आई एम 40। आपको जरूर देखनी चाहिए और सभी को देखनी चाहिए, बहुत ही सुंदर। हमारे सभी ब्लाइंड आर्टिस्ट ने इसमें काम किया, 12 लोगों ने तकरीबन इसमें काम किया है, बहुत सुंदर। इसमें ब्लाइंड लोगों की एक्सेसिबिलिटी को लेकर के कि वो लोग कितने एफिशिएंट है वो भी हमने दिखाया है इसमें, वो किस तरह से जॉब्स को यूज करते हैं, और जॉब में है, बैंक में एक जन जॉब कर रहा है, जो लड़की है वो एक और ऑफिस में है। तो ये हमने एक तरह से, हम साइटेड लोग सब हमारी जब देखते हैं इन ऑडियो सीरीज को सुनते हैं तो बोलते हैं कि हाँ मतलब कर सकते हैं, तो हमने साइटेड तक पहुंचाने का एक सफल प्रयास किया है। हाँ ये हो सकता है कि हम बहुत बहुत रीच नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर
1: हो जाएगी,
0: आज कल
1: बिल्कुल, आज नहीं तो कल, जो सोचा है वो तो होना ही वाला है जी।
0: अगर हम आज 4-5 हजार लोगों तक पहुँच पा रहे हैं तो हो सकता है कल ये संख्या में 0 और लग जाए, तो ऐसा हो सकता है। हम पॉजिटिव कहते हैं, कीप योर फेस टू द सन,
1: एक के आने एक जीरो लग जाएंगे,
0: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: अनेक जीरो लग जाएंगे और अनेक हीरो मिल जाएंगे, अनेक हीरो बन जाएंगे आपकी इस मुहिम के माध्यम से, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अभी तक कौन कौन से नॉवेल्स और कहानियां और कविताएं आपने लिखी हैं या ड्रामास लिखे हैं, कुछ याद आ रहा हो? कितने मतलब टोटल, ऐसे एक संख्या में कभी नोटिस हो? जी
0: जी हाँ, संख्या में अगर मैं बताऊं तो 3 ऑडियो सीरीज हमने बनाई जिसकी कहानी स्क्रिप्ट लिखी गई, उसके बाद 3 हमने मूवी बनाई। इसके अलावा मेरी जो कहानियां हैं वो सर अभी तक अगर जोश पब्लिश नहीं हुई है, मैं उनके बारे में बताऊं कि 50 से भी अधिक मैंने लिखा हुआ है कंटेंट कहानियां कविताएं, तो सर भरमार है, 100-200 भरमार है कविताएं, तो ऐसी है कि मतलब
1: उपन्यास
0: करने का समय नहीं है। उपन्यास सर ऑफिशियली मैंने एक उपन्यास रिलीज किया है, का नाम क्या नहीं हो गया और हैंड है, जो उपन्यास की शक्ल में भी है। इसके 3 सीजन है सर, 3 वॉल्यूम में है। तो पहला सीजन मेरे ही चैनल पर अपलोडेड है, मेरी आवाज में रिकॉर्डेड है, और 115 भाग हम इसके रिलीज कर चुके हैं। और ये उपन्यास हम अभिव्यंजना प्रकाशन के अंदर के तहत हम लोग इसको पब्लिश करने जा रहे हैं, अगले साल तक में भी ये पब्लिश हो जाएगा। और मैं अभिव्यंजना प्रकाशन के बारे में थोड़ा सा आऊंगी, डॉक्टर किशोर कुमार दास पथिक का ये प्रकाशन है जी।
1: तो बहुत अच्छी बात है, एक मेरे मन में, अच्छा वो भी ब्लाइंड पर्सन है?
0: जी बिल्कुल, टोटली ब्लाइंड है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो जाकिर हुसैन कॉलेज है उसमें सीनियर प्रोफेसर है।
1: वाह बहुत खूब बहुत खूब, तो कभी अगर
0: इनका हमारे साथ अवसर है, कोलैबोरेशन
1: अवसर मिला तो उनके साथ भी हम मन की आंखों से कार्यक्रम जरूर
0: बिल्कुल
1: करने की कोशिश करेंगे।
0: हाँ, वो बहुत,
1: और ये अभिव्यंजना प्रकाशन उन्हीं का ही है ना?
0: जी अभिव्यंजना प्रकाशन उन्हीं का है और सर ने हमारे साथ कोलैबोरेशन करने के योग्य हमको समझा और हमने उनका भावोन्मेष, उन्होंने किताब लिखी है तो उसका लॉन्च भी था दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, तो उसके प्रोग्राम को मैंने ऑनलाइन पूरा ऑल इंडिया एंकरिंग किया है और पूरे कंपटीशन को ऑर्गेनाइज भी किया, ये भी मैंने किया है। और गोष्ठी, कुछ काव्य गोष्ठियां हमने की हैं कनेक्टिव ड्रीम्स के बैनर में, और मुंबई के रेक्सार्ट एक साइटेड पोएट्स का प्लेटफॉर्म है तो उसके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है, और इसमें हमने डोर बनावट भावों की ये प्रोग्राम किया है, और विकास शर्मा डोर ये जो है ये इसमें है, और रक्षिता मंगलानी जी एक इंटरनेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच है, तो इनके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है। तो ये सब चीज़ें कनेक्टिंग ड्रीम्स, हम लोग समय समय पर इवेंट कॉम्पिटिशन सेलिब्रेशन गेट टुगेदर छोटे मोटे ऑनलाइन, ऑफलाइन अभी तक हम कोई कार्यक्रम नहीं कर पाए हैं तो ये बात है, तो हम करते आ रहे हैं। तो कहानियां लिखने का सर ऐसा है कि कहानियां बहुत सी लिखी हैं, जिसमें रिसेंटली हमने अभी एक रिलीज किया जिसका नाम है राजदंड। रिकॉर्ड मैं ही करती हूँ, अपनी कहानियां लिखती हूँ, खुद पढ़ती हूँ, खुद साउंड एडिटिंग करती हूँ, वो नहीं था कोई अपना सा छतरी बदल गई, ये सारी कहानियां मेरी रिलीज हो चुकी है चैनल पर।
1: सारे काम मैडम लेखन के कंप्यूटर आने के बाद ही आपने किए या लेखन के कार्य के लिए आपने किसी को रखा हुआ था या आप खुद ही लिखते थे, कैसे करते थे, क्योंकि ब्रेल लिपि तो आपने बहुत ज्यादा सीखी नहीं?
0: नहीं सीखी, लेखन का काम जो भी हुआ सर कंप्यूटर के आने के बाद ही हुआ जो भी।
1: ओके अच्छा, यानी हिंदी टाइपिंग वगैरह बहुत अच्छे से आपने सीखा और उसी का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल भी किया।
0: तो आपका गूगल इनपुट टूल है सर वो वाला, ट्रेडिशनल हिंदी मुझे अभी भी परफेक्टली नहीं आती, सीख रही हूँ, ट्रेडिशनल हिंदी अभी भी पूरी अच्छी तरह से नहीं आती।
1: बहुत जबरदस्त आज इस कार्यक्रम की यात्रा रही मैम आपके साथ, और बात करते करते अब बिल्कुल अंत की ओर हैं हम लोग आज के इस कार्यक्रम में, लेकिन आपके इस लेखन कार्य का, आपके इस सामाजिक समावेशन की जो मुहिम है इसका, और सबसे बड़ी बात आपका जो जुझारूपन है, इसका कभी अंत ना हो, हम यही आज दुआ करते हैं, यही कामना करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा आज रेडियो मधुबन के साथ जुड़ करके। तो मैं मतलब आपकी बातों में हर एक बात में इतनी सारी बातें छुपी हुई हैं कि अगर 10 प्रोग्राम भी करें तो कम पड़ जाएंगे आपके साथ, लेकिन अब चूंकि समय की अपनी मर्यादा है अब ज्यादा मैं क्वेश्चन तो नहीं पूछ पाऊंगा, लेकिन ये जरूर चाहूंगा कि चलते चलते अब अपनी जिंदगी से जो कुछ आपने सीखा है, जो कुछ जिया है, जो कुछ अनुभव लिया है, उसके आधार पर हमारे सभी सुनने वालों को, चूंकि रेडियो मधुबन एक कम्युनिटी रेडियो भी है, ऑनलाइन रेडियो भी है, 140 देशों में सुना जाता है, और मेन स्ट्रीम के साथ साथ दृष्टिबाधित समाज के भी बहुत लोग सुनते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कार्यक्रम के अंत में?
0: जी मैं इसमें 4 पंक्तियां सर सुनाती हूँ। अपनी उलझनों में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, अपनी उलझनों में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, खुशियों की अभिलाषा में मुझको आंसू तरल मिले। मगर मैं रोई नहीं, मैं रोई नहीं जिंदगी की नाकामियों पर, जो अंधेरों में डूबे आज और प्रतीक्षा के कल मिले, जो अंधेरों में डूबे आज और प्रतीक्षा के कल मिले। तो मैं रेडियो मधुबन के तमाम श्रोताओं को ये संदेश देना चाहूंगी कि अपनी समस्याओं से घबरा कर रोना नहीं है, हारना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। आप उठिए, चलिए, क्योंकि कोई आपका हाथ पकड़ के आपको नहीं चलाएगा। एक स्टेप आपको मंजिल की तरफ ले जाएगा। और हम संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष सब साइटेड के जीवन में भी होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ वीआईस के जीवन में होता है। तो मैं अपने सभी वीआई भाई बहनों से, दोस्तों से यही कहना चाहूंगी कि अगर आप ब्लाइंड हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके अन्य अंग चल रहे हैं, तो आप उन पर भरोसा रखिए। और एक कविता की लाइन, एक गजल की लाइन है कि एक अनबुझी प्यास है जिंदगी, इसे किसकी तलाश है जिंदगी, मेरा खोया साजिश खून है या वो तेरे पास है जिंदगी। तो जिंदगी ऐसी परीक्षाएं लेती है, तो सुकून भी जिंदगी के पास है। आप जिंदगी से जुड़िए, जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। जो लोग सुसाइड कमिट करते हैं या जिनके मन में सुसाइडल टेंडेंसी होती है, जैसे कि मेरे भी मन में रही और हमारे लगभग ब्लाइंड भाई बहनों के मन में रहती है, तो इनसे हट करके जिंदगी से बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं है, कोई वरदान नहीं है। इसको जिए और बहुत डिग्निफाइड एक तरीके से जिए, यही आपको सब कुछ देगी। इसी के साथ निवाणी को विराम देती हूँ। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद कोमल मैम आपका, कि आज समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें, अपने जिंदगी का पूरा अनुभव इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने श्रोताओं के सम्मुख रख दिया। तो निसंदेह बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा ये सब देख करके। तो श्रोताओं, उम्मीद है आप सबको भी कार्यक्रम पसंद आया होगा। कोमल अग्रवाल मैडम के साथ आज की जो बातचीत रही, ये निश्चित रूप से आप सबको भी कुछ न कुछ सिखाएगी, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। और आप सब क्या करेंगे, रेडियो मधुबन सुनते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे, लेकिन अपनी प्रतिक्रियाएं भी हम तक पहुंचाते रहेंगे। आपके पास भी कोई प्रतिभा है, किसी तरह की उपलब्धि है, तो आपका भी मन की आंखों से कार्यक्रम में इंतजार रहेगा। अब मुझे यानी संदीप त्रिवेदी को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, किसी और कार्यक्रम के साथ, किसी और समय पर। एक बार फिर कोमल मैम धन्यवाद, बहुत बहुत
0: जी, बहुत शुक्रिया।

0: थी न कोई बात, याद न तुमको आ सके। तुमने हमें भुला दिया, हम न तुम्हें भुला सके। अगर भूलनी ही है तो किसी की पुरानी ऐसी बात को भूल जाएं जो आपको पसंद नहीं आई, जो आपको जख्म दे गई। ऑन द ईव ऑफ फ्रेंडशिप डे एक अपील है, एक सभी से गुजारिश है, खुद से भी। बरसों से सजाए हुए बाग कभी न उजाड़े, बरसों से बनाए रिश्तों से मुंह न मोड़े, बल्कि शिकवे शिकायतों को मिटा कर मिलाए हाथ, कुछ भूल कर कुछ भुला कर मिल जाए एक दूसरे के साथ। फ्रेंड्स, कल है फ्रेंडशिप डे और आज हम सब फिर से इकट्ठा हो गए हैं एक दूसरे के साथ ऑन एयर, यस रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, जो हम सब का सदा बहार मनमोहक साथी है, हमें एक दूसरे के साथ मिलाता है। यही वो जरिया है जो हमें एक दूसरे के करीब लेकर आता है, दिल से मन से। जुड़े रहिए पूरे 10 बजे तक स्वर्ण लता के साथ, कार्यक्रम है गुलदस्ता।
1: Hi, this is Ravina Tandon and I take this opportunity to wish Brahma Kumaris with all the success in their love that they've been giving to the world and the social service that they have been spreading all over our planet. I wish you all the best and I wish that more and more people become aware and follow this true path of what Brahma Kumari teaches of only love and peace. God bless humanity. God bless the Brahma Kumaris.

0: यूं ही दोस्ती को सजाना। तेरे संग खुशी हर पल लगे जैसे नई जिंदगी। एक दोस्त ही तो दोस्त को समझ सकता है। वैसे दोस्त है कौन? हम सोचते हैं कि स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो हमारे साथ पढ़ते हैं, जिनके साथ हमारा मन मैच हो जाता है, वही सिर्फ दोस्त हैं। हाँ, ये तो सही है कि जिसके साथ भी हमारा वेवलेंथ या मन मैच कर जाता है, दिल जुड़ जाता है, वही हमारा दोस्त है। तो यहीं से तो हम अपने पॉइंट को सिद्ध कर सकते हैं कि किसी के साथ अगर आपका मन मैच हो जाता है, जुड़ जाता है, वेवलेंथ मैच कर जाता है, वही हमारा दोस्त या साथी बन जाता है। दोस्त माना दो हस्ती जिनके तकदीर जुड़ जाते हैं, जिनकी तकदीर एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए ही बनी होती है। एक दूसरे के मूड को अपलिफ्ट तो करते ही हैं, एक दूसरे के सुख दुख के वो साथी होते हैं, एक दूसरे को रास्ता दिखाते हैं, एक दूसरे को इशारा भी देते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं। वैरायटी वैरायटी वैरायटी बातें हम कर सकते हैं। दोस्त सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा है जो दो दिलों को फिर से जोड़ देते हैं, है ना? तो बने रहिए स्वर्णलता के साथ कार्यक्रम गुलदस्ता में। आज सिर्फ दोस्ती पर ही बात नहीं होगी, आइए देखते हैं आगे और क्या क्या होता जाता है इस कार्यक्रम।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो मधुबन।
2: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है, उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

बहार आई, करके सिंगार आई, खाबों के हार लाई, आया खुशी का जमाना, उल्फत ने छेड़ा तराना। 1954 में इस गीत को बनाया गया था। फ्रेंड्स, पिछले सप्ताह आपको याद होगा कि हमने आपके लिए प्ले किया था टाइमलेस क्लासिकल, और आज भी हम टाइमलेस म्यूजिक ही प्ले करेंगे। टाइमलेस गीतों को स्मृति में हम रखते हुए, जिनके बहाने बहुत कुछ याद करने वाले हैं। यादों के झरोखे में आज क्या है, कल आज और कल के फसाने यादों के झरोखों में। वैसे आज हम दो महान हस्तियों को भी याद कर रहे हैं। उनकी आवाजें ऐसी खास हैं कि इन दोनों आवाजों को अगर हम एक ही गीत में सुन लें तो आपको और भी मालूम पड़ जाएगा कि

बाल संसार सुनिए हर शनिवार दोपहर 12:30 पर। कल्पना कीजिए एक ऐसा कार्यक्रम जहां बच्चे, शिक्षक और माता पिता एक साथ जुड़कर सीखें और खेलें। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम बाल संसार की। तो फिर इंतजार किस बात का? हर शनिवार दोपहर 12:30 पर रेडियो मधुबन 107.8 FM पर बाल संसार सुने और अपने परिवार के साथ एक यादगार पल बिताएं। सुनिए, मुस्कुराइए और सीखिए बाल संसार।

0: बिन जाऊं कहां दुनिया में आगे। एक ही गीत में हमने दो महान हस्तियों की आवाजों को सुना और इन दोनों कलाकारों को हम अच्छी रीति भली भांति जानते हैं, किशोरदा रफी साहब। इन दोनों की आवाजों को एक ही गीत में सुनकर हम सब बहुत खुश हो रहे थे। और साथियों, आपको बता दें कि बीते कल रफी साहब की स्मृति दिवस थी और 4 अगस्त को जन्म तिथि है किशोरदा का। ये दोनों ही हमारे साथ अभी नहीं है, हमारे बीच नहीं है, पर इन दोनों की आवाजों को हम सुनते हैं और उनकी प्रेजेंस को फील करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम इन दोनों की जो दोस्ती थी, आवाजों में जो दोस्ती थी, इसको हम देखेंगे गीतों में और एंजॉय भी करेंगे और इनके किए हुए कार्यों को याद भी करेंगे और साथ में हम इस बहाने मना भी रहे हैं फ्रेंडशिप डे। दोस्तों, दो कलाकार जब एक ही मंच पर आ जाते हैं तो क्या खूबसूरत महफिल सज जाती है ना? रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: चल शुरू हो जा।

0: बस बस बस सांप ही रुक गया, आगे बढ़।
1: रे
0: रे के आगे क्या है? अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह वा, क्या गले में तासीर है।
1: ये बात है तो
0: चल वापस आजा फिर से अपनी जगह पे।

0: Saregama, 1, 2, 3, 4.
1: Saregama, ma saregama, sarema, magaresa. Saregama, ma saregama, sarema, magaresa. Magaresa, magaresa, magaresa, magaresa, magaresa, magaresa.
2: प्यार के तराने हम सब सुन रहे हैं फ्रेंडशिप डे के बहाने, ओल्ड मेलोडीज के बहाने और इन दो महान कलाकारों की जो स्पेशल तिथि है उसके बहाने भी। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम गुलदस्ता और मैं हूँ स्वर्णलता। दोस्तों, आज के प्रोग्राम को हम बहुत सारे कारणों से पेश कर रहे हैं और इसमें विशेष हम सुनेंगे इन दोनों महान कलाकारों की आवाजों को। तो सबसे पहले अगर हम रफी साहब की बात करें, वो किशोरदास से सीनियर रहे और उन्होंने ऑन स्क्रीन बहुत कम एक्टिंग की, रेदर वो दो फिल्मों में गेस्ट के तौर पर अपीयर हुए थे, आए थे, दिखाई दिए थे। और किशोरदास जो हैं वो एक्टिंग में भी अपने आप को साबित किए और सिंगिंग में तो वो कमाल दिखाते ही थे। तो आइए ना अब रफी साहब की आवाज में एक गीत हम आपको सुनवाते हैं जो हमारा बहुत फेवरेट है।
3: अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: रफी साहब ने बहुत सारे गीत गाए हैं और उस कलेक्शन से एक गीत चुनना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल काम हो गया था। तो हमने सोचा कि इस गीत को प्ले किया जाए जिसके बोल कितने खूबसूरत हैं कि जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, और हम कहेंगे जो बात आपकी आवाज में है, क्या बात है, क्या बात है, क्या और एक झलक मेरी तकदीर में नहीं। दुनिया में कोई चीज नहीं है तेरी तरह, फिर एक बार सामने आ जा किसी तरह, क्या और एक झलक मेरी तकदीर में नहीं। वैसे हमारे जो फैंस हैं रफी साहब के, जो ऑडियंस है, वो रफी साहब की एक झलक पाने के लिए तरस रहे हैं, है ना। तो लेकिन कहते हैं ना, जो चले जाते हैं दोबारा आते जरूर हैं, पर वो अपने अलग किरदार में होते हैं। तो रेडियो मधुबन पर आप सब सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता, और आज हम गुलदस्ता कार्यक्रम में दो महान कलाकारों को एक साथ सुन रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं कि रफी साहब ने एक बार किशोर दा के लिए प्लेबैक किया था। हम सबको मालूम है कि किशोर दा स्वयं एक गायक कलाकार रहे हैं, तो उनके लिए भी रफी साहब ने प्लेबैक किया था और फिल्म का नाम रागिनी। आइए सुनते हैं उस गीत को, और भी बातें होंगी इस सुंदर मन भावन रंगारंग मंच पर।
1: मैं हूं जगत गुरु शंकराचार्य, स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी, परमात्मा मठ प्रयागपीठ से आप सभी सुन रहे श्रोताओं को ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन से रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा शुभ प्रेम, ओम शांति।

0: निस दिन गाए गीत मिलन के मन मोरा बांवरा। रफी साहब ने इस गीत को गाया था किशोरदा के लिए, माना प्लेबैक किया था। 1958 में बनी थी फिल्म रागिनी और इस फिल्म के संगीतकार थे ओपी नैयर साहब। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर हमने देखा कि कैसे ये दो आवाजें जो हैं हमारे दिलों में घर कर गई हैं। बरसों से हम इन दोनों आवाजों को सुनते आ रहे हैं और आगे भी सुनते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे दिलों में अमिट छाप छोड़ी है। तो आइए ना किशोर दा को भी याद कर लेते हैं, उनके दो गीतों को सुनते हैं बैक टू बैक। पहला गीत है किशोर दा और लता का और उसके बाद हम सबका एक फेवरेट सॉन्ग बजेगा। दोस्तों आज का जो यह डुएट सॉन्ग है यह स्पेशल है, क्योंकि यह गीत कभी नहीं प्ले हुआ है इस मंच पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
2: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे which will not be according to the way I want them to be. Aaj sara din, awareness and checking. Kaun zyada powerful hai? Baatein, situations or me? Kiska prabhav kis par padta hai? आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आज हम फ्रेंडशिप डे और ओल्ड मेलोडीज के बहाने दो कलाकारों को भी सुन लिए फिर से। दोस्तों, ये दो महान कलाकार जो हैं आज भी हम सबके दिलों में बसे हैं, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन जो है सुर के नाम, साधना के नाम, संगीत के नाम कर दिया था। तभी तो हम इनको याद कर रहे हैं, क्योंकि इनके द्वारा गाए हुए गीत हमें मोटिवेट करते हैं, है ना। इनके द्वारा गाए हुए गीत इनकी आवाजों को बार बार सुनने के लिए हमें प्रेरित भी करते हैं। तो इसलिए किशोरदा की आवाज में भी हमने दो गीत सुने और ये दोनों ही गीत बहुत स्पेशल है। तो अभी हम आपसे इजाजत चाहेंगे, फिर से मिलेंगे अगले सप्ताह एक नए बेहतरीन विषय के साथ। और जाते जाते रफी साहब की आवाज में फ्रेंडशिप का एक गीत एक अलग तरीके से आइए सुनते हैं। वैसे तो कुछ गीत जो हैं फ्रेंडशिप सॉन्ग के रूप में वो बनाए जाते हैं, पर कुछ गीतों में फ्रेंडशिप की भावना आती है। युगों युगों की फ्रेंडशिप, जन्म जन्म की फ्रेंडशिप, जो मिटाए नहीं मिटते। तो आप और हम भी एक बार नहीं मिले, बार बार मिले और आगे भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि बारंबार हम मिलते रहें, उस स्मृति को उजागर करती है यह धुन, इस गीत के बोल। तो फिर मिलेंगे अगले सप्ताह बेहतरीन विषय के साथ, नगमों के साथ, तरानों के साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर।
1: ओए रुक, कोई रुक रुक रुक, पीछे पीछे पीछे चल। स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
2: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
1: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
3: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM और मैं हूँ आरजे शुभा। स्वागत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम नई दुनिया में, जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जो अपने कार्यों से समाज में सकारात्मक बदलाव लेकर आते हैं। दोस्तों, कहते हैं प्रकृति हमारी जरूरत पूरी कर सकती है लेकिन हमारा लालच नहीं। आज के दौरे में जब मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है, तो ऐसे समय में कुछ लोग अपने साहस, सेवा और संवेदनशीलता से प्रकृति और वन्य जीवों के लिए आशा की नई किरण बनकर सामने आते हैं। तो आज नई दुनिया नया जमाना इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गौरव चौधरी जी। आप एक सफल होम्योपैथिक चिकित्सक होने के साथ साथ पिछले 15 वर्षों से वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय है, और इसके साथ साथ वर्ष 2010 से अब तक 3000 से अधिक सांपों, मगरमच्छों और लकड़बगों और अन्य वन्य जीवों का सफल रेस्क्यू कर चुके हैं। साथ ही आपने इको रेस्क्यूअर्स फाउंडेशन की स्थापना कर पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव जागरूकता, प्रशिक्षण और सामुदायिक सहभागिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। डॉक्टर गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन पर।
1: धन्यवाद मैम
0: जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप एक सफल होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, लेकिन वन्य जीव संरक्षक बनने तक आपका जो सफर है, ये प्रेरणादायक सफर के बारे में हमें बताइए कि कैसे स्टार्ट हुआ इसका।
1: एक्चुअली मैम, मेरा बचपन से ही मुझे है ना नेचर से बहुत प्यार रहा है, और मैं जयपुर में जिस जगह पे रहता हूँ उसके पास में यहाँ पे जंगल है, जयपुर का झराना और बहुत फेमस है।

0: मैं बचपन से मेरे पेरेंट्स मुझे वहाँ लेकर जाते रहे हैं और फिर मैं खुद वहाँ जाता रहा हूँ। और फिर मेरी स्टडीज जो हुई है वो अलवर से हुई है, मेडिकल की स्टडी। तो मेरे अलवर भी चारों तरफ से प्रकृति से घिरा हुआ है, तो मैं रेगुलर प्रकृति में विजिट करता रहता था और मुझे प्रकृति अपनी ओर बहुत खींचती थी। और मेरा बचपन से ही मन था कि मैं प्रकृति के लिए कुछ करूं। डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक जैसे चैनल तो देखते ही थे कि जानवरों की दुनिया टीवी में ही देखने को मिलती थी, बट पास जाकर उसको देखना था कि इस दुनिया में प्रैक्टिकली कैसा होता है। तो बहुत मुझे ये चुंबक की तरह खींचती थी। तो वहाँ
1: जी
0: मैंने जंगलों में जाना स्टार्ट किया और इसी तरीके से मेरा सफर स्टार्ट हुआ। फिर कोई मुझे एक गुरु मिला जिसके अंदर मैंने चीजें सीखी, रेस्क्यू सीखे और ट्रेनिंग्स लिए, आगे इसकी स्टडी की। तो ऐसे में मेरा सफर चलता रहा और आज 15-16 साल हो गए इस सफर को करते हुए।
1: जी सर, जानना चाहेंगे आपके गुरुजी के बारे में, कौन गुरुजी थे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, सिखाया?
0: मैम अलवर सी थे, एक चिन्मय मकमसी नाम के थे। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी सन 2010 में अगस्त में, मुझे आज भी ध्यान है, अगस्त में मेरी मुलाकात हुई थी और मेरा सफर वहीं से स्टार्ट हुआ था। और उससे पहले अगर मैं बात करूँ तो इस लाइन में लाने के लिए जो मेरे को जिन्होंने प्रेरणा दी, क्योंकि ये नहीं पता था कि इस लाइन में जाना कैसे है, बस मन था कि जाना है, कुछ करना है। बट जिन्होंने प्रेरणा दी कि इस लाइन में जाना है वो डॉक्टर स्वरूपानंद सरकार है, जो मेरे कॉलेज सीनियर ही हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि चैनलाइज तरीके से तू कैसे जा सकता है, आगे बढ़ सकता है, किन किन लोगों से कांटेक्ट कर सकता है। और आज भी वो मेरे को बहुत गाइडेंस देते हैं, मेरे जो सीनियर है डॉक्टर सरकार, काम करने के लिए इस लाइन के अंदर।
1: जी, तो डॉक्टर सरकार जी को हम यहाँ से सलाम करना चाहेंगे कि जिन्होंने आपको इंस्पायर किया और चैनलाइज तरीका बताया, तो उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे जानना चाहेंगे कि इको रेस्क्यूर्स फाउंडेशन की स्थापना भी आपने किया, तो इसके पीछे क्या प्रेरणा थी, इसका विजन और मिशन भी हमारे साथ शेयर करें।
0: हम इको रेस्क्यू फाउंडेशन की स्थापना 2018 से हुई। इससे पहले मैं कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने वर्क किया, बट मेरा ये था कि जो मुझे करना था तो वो मैं नहीं कर पा रहा था दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्योंकि उनके भी अपने विजन मिशन थे।
1: जी
0: तो अब इतना साल हो गए थे, लोगों से कांटेक्ट हो गए थे, लोगों से जान पहचान होने लग गई थी। काफी लोग यही कहते थे कि गौरव तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करो। और फिर धीरे धीरे यही आया कि अब अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करके जो अपने विजन है उसको लेके चले। 2018 में हम लोगों ने इसकी स्थापना की और आज 2026 में हम दो सिटीज में वर्क कर रहे हैं, जयपुर और अलवर के अंदर हम वर्क कर रहे हैं। और हमारा मिशन और विजन वही है, हम प्रकृति को बचाना है और सबका साथ, प्रकृति का विकास हमारा एक मिशन है कि सब लोग सब साथ आएंगे तभी प्रकृति बच पाएगी। अदरवाइज एक गौरव, एक इको रेस्क्यू फाउंडेशन कुछ नहीं कर सकती है। ये तो एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है लोगों को लाने के लिए कि आप सब आए साथ में और प्रकृति के लिए कुछ करें।
1: जी सर, सर जब आपने शुरुआत की, आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आया होगा, तो उसमें से सबसे पसंदीदा तो नहीं कहूंगी, लेकिन सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मोमेंट आपके लिए क्या था?
0: चैलेंजिंग मूवमेंट की बात तो आपने बहुत गहराई वाली कर दी है। तो हिंदुस्तान की अगर बात करूँ तो चैलेंजेस यहाँ ये आते हैं कि आज भी वाइल्ड लाइफ तो, और एक वाइल्ड लाइफ तो जल्दी से सोसाइटी में, फैमिली में एक्सेप्टेंस बहुत इजीली नहीं मिलती है, क्योंकि एक थोड़ा सा खतरनाक काम है क्रोकोडाइल सांप ये पकड़ना। और एक डॉक्टर हो के, कि जब तू एक डॉक्टर बन चुका है, तुझे अपना क्लिनिक देखना है, तुझे कमाना है, तू यहाँ पे कहाँ जा रहा है, तो वो फाइट सोसाइटी के अंदर, फैमिली के अंदर, मतलब फैमिली का मैं फिर भी कहूंगा तो बहुत लंबी फाइट नहीं करनी पड़ी। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि इसको प्रकृति के लिए ही कुछ करना है। और आज की डेट में मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं उनका धन्यवाद भी देता हूँ कि मैं उनकी वजह से आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो ये मैम कुछ हमारे चैलेंजेस रहते हैं और काफी सारी चीजें होती है सोसाइटी में। कुछ लोग सपेरा भी बोल देते हैं हम लोगों को, कि उनको ये नहीं पता कि सांपों की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी प्रकृति के अंदर। अगर वो नहीं बचेंगे तो हमारी मेडिसन्स, हमारे जंगल, मतलब सब कुछ रिलेटेड है एक दूसरे से, ये नेचर से, ये इंसान से रिलेटेड कुछ नहीं है। इंसान नहीं है तो प्रकृति को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर जानवर नहीं है तो प्रकृति के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
1: बिल्कुल। तो अभी जैसे सर, जैसे जानवर है और मनुष्य है, तो हम आए दिन सुनते हैं कि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट के बारे में, तो इससे सरल तरीके से आप हमारे श्रोताओं को कैसे समझाएंगे? आज डॉक्टर आप इसे बेहतर समझ पाए होंगे, और क्योंकि आपने साइंस में पढ़ाई की है, और इसलिए हम
0: तो
1: आपसे पूछना चाहते हैं ये सवाल।
0: अगर एक सिंपल लाइन में बोलो तो यही बोलूंगा कि जियो और जीने दो। हम भी जीना चाहते हैं, वो भी जीना चाहते हैं, वो हमसे कोई लड़ना नहीं चाहते हैं। उनका कोई हमारे से कोई पैर नहीं है कि वो हमसे लड़ना है। वो तो इतना डरते हैं कि अगर हम उनके पास भी चले जाएं तो, आप कभी आपने जंगल विजिट किया होगा तो देखिएगा कि हम जैसे उनके क्लोज जाएंगे इतना डरते हैं कि वो तो खुद भाग जाते हैं अंदर इंटीरियर की तरफ। वैसे
1: जी
0: हमारे घरों में सांप निकलते हैं तो लोग डरते हैं, मार देते हैं, वो खुद छुपना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, क्योंकि हमने उनके घरों में अपने घर बना लिए, इसलिए वो हमारे घरों में आ रहे हैं। अदरवाइज उनका हमारे से कोई ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है कि जियो और जीने दो, हम भी जिये उनको भी जीने दे।
1: राइट सर जी, आगे आपसे जानते जाएंगे कि कैसे हम जिए और उनको जीने दें। उससे पहले एक सवाल कि 2010 से अब तक आपने 3,000 से ज्यादा वन्य जीवों का रेस्क्यू किया है, तो उस दौरान कभी आपकी जान भी खतरे में पड़ी या कौन से ऐसे रेस्क्यू है जो आपकी स्मृतियों में आज भी है?
0: मैम जान मेरी कभी भी है ना प्रॉब्लम में नहीं आई, क्योंकि जिन जो मेरे टीचर थे उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से सिखाया था कि पहले अपनी जान है, अगर अपनी जान बचेगी तो जानवर की जान बच पाएगी। हाँ बाकी हमने रिस्क बहुत लिए हैं बट कभी जान का ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। अगर थोड़ा सा, अगर जैसे आपने कहा है कि आपकी स्मृति में, तो मेरे लाइफ का फर्स्ट रेस्क्यू जो था वो क्रोकोडाइल रेस्क्यू था, माउंट आबू में नक्की लेक में था। तो जब हम रात में रेस्क्यू कर रहे थे, क्योंकि क्रोकोडाइल का जो रेस्क्यू होना था नाइट में होना था, क्योंकि पानी में था और पानी में डे में दिखता नहीं है, और नाइट में टॉर्च डालते हैं तो उसकी आईज चमकती है, तो वो शिफ्ट करना था एक जगह से दूसरी जगह पर। तो हम जब रेस्क्यू करने के लिए, वो एक कॉर्नर पे आ गया था, तो हम उसको रेस्क्यू करने के लिए बहुत स्लोली स्लोली बोट से उसके क्लोज जा रहे थे। तो हम जैसे उसके पास में पहुंचे तो तीन चार भालू, क्योंकि माउंट आबू में क्या इश्यू है कि भालू नाइट में बहुत एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन वेस्ट वहां पे बहुत मिलता है आउटस्कर्ट्स में या फिर होटल्स के बाहर, तो उनको खाने के लिए बहुत आते हैं। तो हमें दूर से दिखे नहीं, क्योंकि उनका रंग भी काला होता है, रात भी काली थी। तो हम जैसे ही पास में पहुंचे तो हमें तीन चार भालू खाते हुए मिल गए, तो हमने क्रोकोडाइल को तो छोड़ा और बहुत जल्दी अपनी बोट को भगाना स्टार्ट किया, और वो पैडल बोट थी, हमने बहुत स्पीड से भगाई, और जब हम रुके भागते भागते भी तो हमने देखा तो 15-20 फट ही दूर गई थी। तो ये एक हमारा थोड़ा सा डर भी था और एक थ्रिलिंग भी था, बट ऐसा कोई रिस्क नहीं लगा उसमें।
1: जी, मतलब सबसे पहला रेस्क्यू हमारे ही अंचल में हुआ है, माउंट आबू में। तो
0: हाँ
1: हमारे
0: बिल्कुल मैम,
1: श्रोताओं को ये सुन के इंस्पिरेशन भी मिल रही होगी और अच्छा भी लग रहा है कि माउंट आबू में सबसे मजेदार और डेंजरस अनुभव रहा होगा आपका ये, लेकिन
0: हाँ
1: क्योंकि नेक इरादे हैं तो फिर सफलता मिलती है और कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को बचा पाते हैं, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल मैम।
1: जी सर, तो आपसे पूछना चाहेंगे कि आप सांपों के बारे में बात कर रहे थे, तो ये बरसात का मौसम है तो अक्सर सांप घरों में निकल आते हैं, तो ऐसे समय पर लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए?
0: सबसे पहले तो मैम डरे नहीं, क्योंकि हमारा डर ही है जो हमारे को प्रॉब्लम में लेकर आता है। हम लोग रेगुलर इस सीजन के अंदर है ना लोगों को अवेयर करते हैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, कि आपके घर में कभी भी कोई भी जंगली जानवर आता है बारिशों के मौसम में, क्योंकि सांप, गोर्रे और नेवले जैसे जानवर काफी एक्टिव रहते हैं। तो आप डरे नहीं, उसको मारे नहीं, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करें। हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेल्पलाइन नंबर है, या फिर आपको कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं मिल रहा है तो सबसे इजी हेल्पलाइन नंबर है पुलिस का। पुलिस के थ्रू सारी हेल्पलाइंस पे कॉल चले जाएंगे, और हमारे पास जब कॉल पहुंचेगा तो हमारा रेस्क्यू आएगा और रेस्क्यू करके रिलीज कर देगा जंगल के अंदर।
1: बिल्कुल, ओके। और सबसे पहले तो डरे नहीं, ओके।
0: डरे
1: तो
0: नहीं
1: और
0: मैम,
1: क्या कर सकते हैं, मतलब जो नहीं करना चाहिए सबसे पहले, मतलब
0: प्रॉब्लम
1: सांपों के लिए?
0: एक तो पब्लिक की क्या है ना, उनकी हीरो बनने की भी आदत कुछ ज्यादा रहती है। एक भीड़ के अंदर दो चार हीरो जरूर होते हैं जो एनकाउंटर करने जाते हैं एनिमल के पास में, तब उनको यही कहते हैं कि आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि आप जब वो जानवर ऑलरेडी आप लोगों से डरा हुआ है कि इतनी भीड़ आ गई कि आज कुछ ना कुछ मेरे साथ होगा, तो वो ऑलरेडी डरा हुआ तो डर में आपको अटैक करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। आपके घर में, आपके कमरे में कहीं भी आपको कोई भी सांप दिखाए, तुरंत आप लोग सब जल्दी से कमरे से बाहर आ जाए, उस कमरे का कुंडा लगा दें। अगर गेट के नीचे कोई ओपनिंग है तो वहाँ चादर या कुछ भी आप लगा सकते हैं, लगा दीजिए, और हमारे को हेल्पलाइन पे, वन विभाग की हेल्पलाइन पे या कहीं पे भी आप कॉल करिए, आपकी हेल्प जरूर होगी। और मारने की कोशिश, छेड़ने की कोशिश और वीडियोस बनाने के लिए, फोटोज बनाने की कोशिश नहीं करें, वीडियो बनाने की उतना ही कोशिश करें जो आगे आप ट्रांसफर कर सके कि ये जानवर हमारे घर में घुसा। तो ऐसे क्लोज जाने का कोई जरूरत नहीं है, वीडियो नहीं भी बन रहा तो भी चलेगा, क्योंकि जितना आप क्लोज जाएंगे वो भी अपने बचाव में ही काटता है, ऐसे कभी कोई जानवर नहीं काटता।
1: राइट, जी सर, तो ये सारी बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए।
0: बिल्कुल मैम,
1: और सांप, मगरमच्छ के बारे में और लकड़बग जैसे जीव हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, ये थोड़ा सा हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करें।
0: ये सभी फूड चेन का पार्ट है। अगर एक भी इसमें से जाता है तो फूड चेन पूरी डिस्टर्ब हो गया। आज आप देखेंगे फूड चेन बहुत बड़े लेवल पर डिस्टर्ब हो चुकी है, क्योंकि ह्यूमन एनक्रोचमेंट जितना बढ़ता जा रहा है, कॉन्क्रीट का जंगल बढ़ता जा रहा है, फूड चेन बहुत डिस्टर्ब होती जा रही है। जैसे कि हमारे चूहे बहुत बढ़ते जा रहे हैं, कि चूहों को खाने के लिए मेजर इनके शिकारी हैं सांप, हम सांपों
1: जी
0: को मारते जा रहे हैं, चूहे बढ़ते जा रहे हैं। वैसे ही पानी की बात करें तो मगरमच्छ एक पानी का जानवर है, पानी से अगर हम मगरमच्छ निकालते जाएंगे तो पानी की गंदगी कौन क्लीन करेगा, जो भी उसमें जानवर मर रहे हैं उनको कौन खाएगा, वो सड़ते जा रहे हैं, पानी गंदा और सड़ जा रहा है। ऐसे अगर लकड़ बग्गा बात है जिसको हम हाइना भी कहते हैं, तो ये एक स्कैवेंजर होते हैं, मोस्टली स्कैवेंजर्स होते हैं जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, जंगल को क्लीन करते हैं, क्लीनर्स होता है ये सारे, तो वो
1: ओके
0: कम होते जा रहे हैं। तो इनका जंगलों के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है कि मरे हुए जानवरों को कौन खाएगा, तो ये पूरा फूड चेन को हम डिस्टर्ब करते जा रहे हैं।
1: ओके तो मनुष्य इन सभी जानवरों के साथ तालमेल बना के कैसे रख सकता है, आपको क्या लगता है?
0: मैं अगर प्रैक्टिकली बात करूँ तो मनुष्य इन जानवरों का कभी तालमेल बना के नहीं रह सकता है,
1: जी
0: क्योंकि तालमेल बनाएगा कैसे, क्योंकि उसकी इच्छाएं इतनी ज्यादा है कि वो तालमेल बना ही नहीं सकता। उसको घर चाहिए, उसको सड़क चाहिए, उसको लाइट पानी बिजली सारी सुविधाएं चाहिए, तो तालमेल कैसे बनाएगा इनके साथ।
1: तो फिर क्या कदम हम उठाए कि पारिस्थितिक तंत्र भी हार्म न हो और हमें भी सुख सुविधाएं मिले?
0: देखो जीना तो दोनों को एक साथ ही है, तो इसके लिए सोचना भी जरूरी है, और सोचने के साथ साथ उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट भी करना है, तभी जाके कुछ होगा। सोचते तो हमने बहुत कुछ है, बट इम्प्लीमेंटेशन हमारे बहुत कम है। अगर आज भी हम चाहते हैं कि हम कुछ बचा सके, तो हमें जमीनी लेवल पे काम करना पड़ेगा। जितना हम अर्बनाइजेशन करते जा रहे हैं, शहरीकरण जो हमारा हो रहा है, हमारी खेती हमारे जंगल खत्म होते जा रहे हैं, अगर ऐसी स्पीड से ही चलते रहे तो फिर पारिस्थितिक तंत्र खराब होता रहेगा। इसलिए ही जरूरी है कि हमारा जो शहरीकरण है इसको हम, इसकी स्पीड को बहुत कम करें, और जो जंगलों की जमीनें हैं, जंगलों के एरिया है, उनको वैसे ही रहने दें, वहां पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं करें, तो भी हम जाके इनके साथ रह पाएंगे। और कोई ये कि जियो और जीरो तो इनको परेशान नहीं करें, हर लेवल पे जाके जैसे इनके फोटोज खींचना, इनके क्लोज जाना, इनको खिलाना। बहुत सारे लोग जंगलों में जाके जानवरों को खाना पीना खिलाते हैं, जो कि बहुत नुकसानदायक चीज है। आप तो खुद माउंट आबू से वहां पे अपने भालू को, बंदरों को खिलाते हुए देखा होगा, तो ऐसे
1: जी
0: डॉक्टर भी बताना चाहूंगा कि जो इनको काफी सारी बीमारियां लाते हैं ऐसा भोजन, जो हमें बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि ये इनको पूरी प्रकृति पे छोड़ देना चाहिए, प्रकृति अपने आप इनको भोजन दे रही है। ये डॉक्टर जब हमें ही मना करता है कि आपको तला भुना और रोटी नहीं खानी, तो जब हमारे लिए नुकसानदायक है, तो इनके लिए तो कितने ज्यादा नुकसानदायक चीज है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सर, जो श्रोता मित्र अभी सुन रहे हैं खुद तो जागरूक होंगे ही, और साथ साथ जो टूरिस्ट आते हैं उन्हें भी जागरूक करने में मदद करेंगे कि हम रास्ते में बंदरों को खाना ना खिलाए स्पेशली, और फिर बाकी जानवरों को भी हम तले हुए भुने हुए या फिर मिर्च मसाला नमक और जो मीठा है वो ना खिलाएं स्पेशली। जी सर। सर आपकी जो संस्था है वो सिर्फ रेस्क्यू ही नहीं लेकिन नेचर गाइड ट्रेनिंग, वन्य जीव गणना, पर्यावरण शिक्षा और क्षमता विकास आदि पर भी काम करती है, तो क्या कार्य होता है और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हमारे सरकार को, हमारे समाज को इससे क्या लाभ मिल रहा है?
0: मैम, हमारी संस्था जो है अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पे काम कर रही है। जैसे कि आपने बताया, रेस्क्यूज है, रिहैबिलिटेशन है, हमारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर है जयपुर में। जो भी घायल पक्षी या जानवर हमारे को मिलता है, वहाँ पे उसको लेके जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और ठीक होने का पुनः उसको खुले आसमान में या फिर जो जंगल का जानवर है, मैमल्स हैं, तो वहाँ पे रिलीज कर दिया जाता है। और ऐसे ही हम कई एक्टिविटीज करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे रहते हैं। अभी कल ही संडे को ही हमारा एक नेशनल लेवल का रेपेल अवेयरनेस वर्कशॉप हुआ है जयपुर के अंदर, जहाँ पे पूरे इंडिया से काफी सारे लोग आए थे, उसको ज्वाइन किया, जहाँ उनको नॉलेज मिली स्नेक रेस्क्यूज की, कॉमन स्नेक्स और मॉडल लिजर्ड राजस्थान के कौन कौन से हैं, रेस्क्यू टेक्निक्स के बारे में बताया, और स्नेक बाइट, मॉडल लिजर्ड बाइट और स्कॉर्पियन बाइट में आपको प्राइमरी मैनेजमेंट क्या करना है, और जंगल में आप लोग कभी काम कर रहे हो या इंटीरियर्स में हो तो किसी को हार्ट अटैक जैसी एक मेजर कहूँ या इम्पोर्टेंट चीज का भी कुछ हो जाए, तो आपको कैसे उनको बचाना है, सारी ट्रेनिंग हम लोगों ने दी है। तो ऐसी रेगुलर काफी सारी हम एक्टिविटीज करते हैं, और उस डिपार्टमेंट को, सरकार को हम सपोर्ट करते हैं रेस्क्यूज के अंदर, उनको ट्रेनिंग देते हैं, इसलिए स्किल डेवलपमेंट में हम लोग काम करते हैं, कि जो फॉरेस्ट का फ्रंट लाइन स्टाफ है उनको हम लोग इन्वाइट करते हैं अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर, कि जो सबसे आगे रहता है रेस्क्यू के अंदर, जिनकी जान सबसे ज्यादा है ना डेंजर में रहती है, कि आपको सेफ रेस्क्यूज कैसे करने हैं, क्योंकि आप बचोगे तो आप जानवर को बचा पाओगे। तो ऐसे रेगुलर ट्रेनिंग हम डिपार्टमेंट में जाके भी देते हैं, अपने प्रोग्राम से भी इनवाइट करते हैं, ये सरकार को ऑर्गेनाइजेशन से काफी बेनिफिट होता है।
1: बिल्कुल, तो ये कोई भी चाहे तो वे ट्रेनिंग ले सकते हैं, युवा चाहे तो रजिस्टर करके फिर ट्रेनिंग ले सकते हैं।
0: हाँ मैम, कोई युवा चाहे तो ट्रेनिंग ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद।
1: ओके जी सर। सर जैसे आपने बोला नेचर गाइड ट्रेनिंग, तो ये क्या होता है, थोड़ा डिटेल्स में बताएं हमें।
0: मैम इसमें गवर्नमेंट ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमें इनवाइट करता है नेचर गाइड ट्रेनिंग, जिससे हमारे सरिस्का हो गया है और रणथंबोर हो गए, तो यहाँ पे गाइड्स हैं हमारे, जो टूरिस्ट आता है हमको गाइड करने के लिए नेचर गाइड्स हैं, तो उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारे को डिपार्टमेंट इनवाइट करता है। उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं कि आपको टूरिस्ट के साथ कैसे बिहेव करना है, आपको क्या क्या स्किल्स अपने डेवलप करने हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए हैं, और वही जस्ट लाइक किसी को अगर टूरिस्ट को कोई बाइट हो जाए तो आपको क्या इमरजेंसी स्टेप उठाने हैं, और सीपीआर जैसी चीजें, तो इस ट्रेनिंग का बहुत उनको लाभ मिलता है वहाँ पे हमें जाने पे, उनको सिखाने पे। ऐसे प्रोग्राम हम लोग करते रहते डिपार्टमेंट के साथ।
1: ओके सर। सर आपने घायल वन्य जीवों के उपचार में होम्योपैथी का सफल प्रयोग किया है, तो ये विचार कैसे आया कि और इसका क्या रिजल्ट रहा, इसके बारे में जानना चाहेंगे।
0: मैम सन 2010 की बात है, बस कुछ टाइम बाद मैं डॉक्टर बनने ही वाला था, और 2010 में मैंने वाइल्ड लाइफ ज्वाइन ही किया था जो मेरा इंटरेस्ट था, और मुझे इसी फील्ड में जाना था। तो मेरे अंदर एक विचार आया एक बार कि मैं एक बार एक डॉग रोड से एक डॉग को बच्चे को अपने है ना, जहाँ मैं अलबर में रूम में रहता था, वहां लेकर आया ट्रीटमेंट के लिए। उसको कुछ इंजेक्शन दिलवाया, ट्रीटमेंट करवाया मैंने, वो ठीक हो गया था, फिर उसको रिलीज कर दिया। तो ऐसे ही मेरे विचार आया कि जब होम्योपैथिक से इंसान ठीक हो सकते हैं तो जानवर क्यों नहीं हो सकते, तो ट्राई करके देखते हैं। तो एज ए डॉक्टर मेरे पास कभी कभी लोग आते थे, पूछ रहे थे अपने एनिमल के लिए, तो मैंने देना स्टार्ट किया, मुझे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुए, मैंने डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर दिया उस चीज को, और आज बहुत सारे जानवरों का ट्रीटमेंट किया और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो मेरे इंटरनेशनल आर्टिकल्स भी आ चुके हैं इसको लेके,
1: जी
0: और होम्योपैथिक वेटनरी से मैम पेट पेरेंट्स को कहूँ या एनिमल लोगों से बहुत बेनिफिट्स मिले हैं इस लेके।
1: जी तो सर अभी तक लोगों को लगता था कि हम अगर प्रकृति के लिए काम कर रहे हैं तो इसे हम करियर नहीं बना सकते, लेकिन अगर युवा चाहे तो प्रकृति के लिए भी काम कर सकते हैं और करियर भी बना सकता है।
0: बिल्कुल मैम, प्रकृति में सब कुछ है।
1: जी, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। होम्योपैथी के बारे में आपने रिसर्च भी किया एज ए डॉक्टर कि कैसे हैं जानवरों के ऊपर हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आप सफल भी रहे। तो अगर कोई चाहे
0: बिल्कुल
1: तो इसके लिए भी गाइडेंस आपसे ले सकता है, मार्गदर्शन ले सकता है।
0: मैम,
1: जी तो सर आपकी जैसे सबका साथ प्रकृति का विकास है, इको रेस्क्यूअर्स फाउंडेशन, तो सिर्फ वाइल्ड लाइफ में जो जानवर है उन्हें नहीं बचाता, लेकिन कई अभियानों के साथ भी आप लोग जुड़े हुए हैं, जैसे सीड बॉल है, वृक्षारोपण है और बर्ड रेस्क्यू भी है, तो इन कार्यक्रमों के बारे में भी हमें बताएं।
0: हम लोग सन 2019 से सीड बॉल्स डालने का काम कर रहे हैं जयपुर के जंगलों में, जयपुर झालाना आमागढ़ रिजर्व हो गया, और सरिस्का पेरिफेरी भी पूरा जयपुर तक लगता है, तो हम लोग वहाँ पे डाल रहे हैं। तो ये मेरा एक मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन नहीं खुली थी, एक ड्रीम चाहिए था कि यार ये जो बैरन लैंड सी है, यहाँ पे कोई पेड़ नहीं है, तो इस पर कैसे काम किया जाए, कैसे किया जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन हमने ओपन किया था, हमारे टीम के बोर्ड मेंबर हैं, रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर हैं महेश सर, तो उन्होंने हमारे को सीड बॉल्स बनाना सिखाया है कि गौरव अपन सीड बॉल्स के थ्रू यहाँ पे जो भी बैरन लैंड से हो रही है, जहाँ पे कोई भी प्लांटेशन नहीं है और यहाँ डालेंगे तो यहाँ पे अपन जंगल उगा सकते हैं। तो हमने इसे बनाना स्टार्ट किया, हमने डालना स्टार्ट किया, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट किए हुए, और आज की डेट में हम एक बहुत लार्ज लेवल पे ये सीड बॉल्स वाला काम करते हैं, और जयपुर के झालाना जैसे जंगल, नामागढ़ जैसे जंगल में हर साल हम लोग ग्रास लैंड पे वर्क कर रहे हैं, और काफी बड़े ग्रास लैंड हमने यहाँ पे उगा चुके हैं, जिससे जानवर को छुपने की और खाने की जगह मिलती है। अगर छुपने और खाने के लिए व्यवस्था जंगल में नहीं होगी तो बाहर शहरों की तरफ आते हैं, इसी रीजन से हम इन चीजों पर काम कर रहे हैं, जिसमें हम फिर साथ साथ प्लांटेशन पर भी वर्क करते हैं, जैसे कि नेटिव प्लांट्स जो भी हो गए हमारे यहाँ के, तो वो भी हम लोग काफी लार्ज लेवल पर हर साल बारिशों के टाइम पे करते हैं, जिसमें काफी वॉलंटियर्स हमारे साथ वर्क करते हैं।
1: जी सर, सीड बॉल्स बनाना आसान है या थोड़ा डिफिकल्ट है।
0: बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं, सीड बॉल्स बनाने के लिए आराम से कोई बना सकता है, जिसमें कि मिट्टी आती है अलग सी इनकी, और गाय का गोबर होता है जिसके थ्रू ये सीड बॉल्स बनाई जाती है, और एक साथ आप बहुत सारी सीड बॉल्स बना सकते हैं, और बहुत सारे लोग आजकल सीड बॉल्स पे काम कर रहे हैं, बना रहे हैं। बट
1: बिल्कुल
0: इसको मैम बनाना सीखने के साथ साथ मतलब ये नहीं कि आप जो भी इसमें काम करेंगे वो सक्सेस होगा, वो एक टेक्निकल चीज है सारी की सारी, कि आपको सीड कौन सा डालना है, कहाँ पे कौन से सीड का नीड है, क्योंकि हमारे यहाँ रेनफॉल बहुत कम है, तो जर्मिनेशन तो हो जाएगा आपने सीड बॉल डाल ली, पर रेगुलर पानी नहीं मिलेगा तो वो आपका जो अंकुरित होगा ना जो सीड, वो कुछ टाइम बाद खराब हो जाएगा। तो हमें इसलिए यही देखना है कि कौन सा सीड कम पानी में उग सकता है उसको डालने के लिए आप।
1: जी, तो राजस्थान में कौन सा सीड कम पानी में उग सकता है, आप अगर बताना चाहें तो?
0: जैसे मैम हम लोग यहाँ पे दामन ग्रास पे काफी काम कर रहे हैं, दामन ग्रास जो है ग्रासलैंड के लिए काम आती है, वो बहुत कम पानी में बहुत इजीली सर्वाइव करती है और अच्छा ग्रासलैंड डेवलप करती है। और यहाँ के जो नेटिव है बबूल है रोहिड़ा है, तो इनके सीड बॉल्स हम लोग डालते हैं जंगलों के अंदर जो कम पानी के अंदर उग जाते हैं, अच्छा सर्वाइव कर।
1: जी, तो रोहिड़ा को हम ले सकते हैं
0: रॉन्च है
1: जी। ओके, तो ये सब सीड बॉल्स दोस्तों हम बना के डाल सकते हैं। अगर आप ये कार्य कर रहे हैं, हमारे आबू रोड के आसपास, माउंट आबू के आसपास भी बहुत सारे कार्यकर्ता ये कार्य कर रहे हैं, तो अगर आप ये सुन रहे हैं तो ये टिप्स आप ले सकते हैं। सर, अगर कोई युवा वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहता है, जैसे आपको डॉक्टर सरकार जी ने गाइड किया था, तो वैसे आप उन्हें कैसे गाइड करना चाहेंगे कि शुरुआत कहाँ से करें?
0: तो वन्य जीवों के करियर के लिए आजकल काफी सारे कोर्सेज हो रहे हैं। ये आपको अगर साइंस बैकग्राउंड से है तो आपके लिए काफी इजी रहता है, बायोलॉजी बैकग्राउंड से अगर आप हैं तो 12th के बाद आप BSc और अदरवाइज तो आप गवर्नमेंट जॉब में भी आप ट्राई कर सकते हैं, फॉरेस्टर, रेंजर, IFS, ACF, फॉरेस्ट गार्ड्स। तो ये मल्टीपल एरियाज है जहाँ पे आप इसमें वर्क कर सकते हैं और आपको अच्छी जॉब इसमें प्रोवाइड हो जाएंगी।
1: जी, ओके, तो इस प्रकार से आप अपने करियर चुन सकते हैं। और आम नागरिक अपने
0: बिल्कुल
1: दैनिक जीवन में ऐसे कौन से छोटे छोटे कदम अपना सकते हैं, एटलीस्ट 5 छोटे छोटे कदम, जिनसे वन्य जीवों और पर्यावरण संरक्षण में वास्तविक योगदान दिया जा सके?
0: तो सबसे पहला तो मैं सभी लोगों से एक निवेदन करूंगा कि जीवन में हो सके तो सिंगल यूज प्लास्टिक को आप यूज करना बंद करें, क्योंकि तो सिंगल यूज प्लास्टिक हम उससे बोलते हैं जो तो एक बार यूज किया और फेंक दिया, जैसे कि पॉलिथिन हो गई, प्लास्टिक प्लेट, चम्मच, ग्लासेस हो गए, क्योंकि तो ये हमारी नालियों में जाकर अटक जाता है, उसके बाद हमारे ड्रेनेज को खराब करता है। अगर ये हमारी मिट्टी में जाता है तो मिट्टी में एक लेयर बना देता है जिससे पानी जो है ग्राउंड लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं हो पाता है, वो भी पानी ऊपर के ऊपर ही सतह पर रह जाता है, वो उड़ जाता है और ये बहुत खतरनाक जहर है जो हमारी धरती में मिलता जा रहा है, हमारे पानी में मिलता जा रहा है, जहां भी मिलता जा रहा है वहां पे उसको खराब कर रहा है और इसको खत्म होने में भी बहुत साल लग जाते हैं। एक तो ये करें और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अगर आप आसपास का काम करने जा रहे हैं तो या तो पैदल जाएं या फिर आप साइकिल रख सकते हैं, जिससे हम अपने फिजिकली भी फिट रहेंगे और पॉल्यूशन भी हमारा बहुत कम होगा, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों के लिए गाड़ी का यूज बहुत करते हैं जिससे पॉल्यूशन भी हमारे इंक्रीज होते जा रहे हैं। और आप पानी का यूज, जो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अब हमारी धरती पे पीने का पानी की कमी होती जा रही है क्योंकि बारिश इस साल रेनफॉल बहुत कम होना बताया जा रहा है, और इसलिए अब महीना भर निकल रहा है जुलाई का, इस बार बारिश बहुत कम हुई है, तो हम पानी को हमारे बचाएं, जितना नीड हो उतना यूज करें, गाड़ियों को धोने में उसको वेस्ट नहीं करें या फिर अदर बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हम लोग पानी को वेस्ट नहीं करें। और दैनिक जीवन में हमारे हमारे घर के अंदर हम बिजली का यूज जो करते हैं वो अननेसेसरी बिजली का यूज नहीं करें, अगर आपको एसी का नीड है तो ही आप एसी चलाएं, अदरवाइज अगर आपका काम पंखे से चल सकता है तो पंखे से ही आप करें, क्योंकि मैं आपको ये वो चीजें बता रहा हूँ जो अपनी लाइफ के अंदर मैं करता हूँ
1: जी
0: लोगों को जगाने के लिए डेली के डेली बेसिस।
1: बिल्कुल, तो सिंगल यूज प्लास्टिक आप यूज कम करें, फिर आपने कहा कि अगर आप कहीं दूर नहीं कहीं पास जा रहे हो तो आप साइकिल का यूज कर सकते हो, पैदल जा सकते हो आप। पानी यूज करने के समय ध्यान रखें, गाड़ियों को धोने के लिए पानी का इस्तेमाल जितना हो सके कम करें, और इलेक्ट्रिसिटी का भी ध्यान रखें। तो इन सब बातों के बारे में अगर हम ध्यान देते हैं तो हम पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में योगदान दे सकते हैं। जी सर, जैसे आपकी संस्था वृक्षारोपण के बारे में तो आप काम करते ही हैं, लेकिन आप प्राकृतिक जो आवास है उसके सुधार के क्षेत्र में भी कार्य करते हैं, तो ये प्राकृतिक आवास सुधार में क्या मनुष्य योगदान दे सकता है, हम दे सकते हैं कैसे?
0: प्रकृति की आवाज के लिए बिल्कुल आप हम लोग योगदान दे सकते हैं, जैसे कि नेटिव प्लांटेशन करना, तो मैंने अभी पहले ही बताया था कि हमारे यहाँ के जानवर का भोजन क्या है वो हमें देखना पड़ेगा, तो वो पहले चीजें हमारे को सीखनी पड़ेगी, उसकी आवाज के लिए हमें जाके कोई भी पेड़ लगा देना वो प्राकृतिक आवाज को बचाना नहीं होगा, उल्टा जो आवाज है वो और खराब होगा जाके। तो हमारे को बुक्स पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारे यहाँ के नेटिव ट्रीज कौन से हैं, ग्रासलैंड कौन सा है, और बचाने के लिए मैंने बताया कि अगर आप जानवरों के लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो उनको केले और ये पूड़ियाँ जो खिला रहे हैं वो ना खिला के आप उनके लिए उनका जो आवास है उसको संरक्षित करें, जैसे कि उनके पेड़ लगाए, उनके ग्रास डेवलप करें, उनकी जो चीजें हैं वो करें, उनके लिए पीने का पानी, आप पीने का पानी बिल्कुल रख सकते हैं जो रेगुलर सोर्स नहीं है हमारे जंगलों के अंदर अगर आप जा रहे हैं, अदरवाइज जिस रूट पे आप जा रहे हैं, जैसे हम लोग धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं तो वहाँ पानी आप रखना चाहे तो रख सकते हैं उनके पीने के लिए, बाकी आप खाने पीने की चीजें नहीं रखते उनके लिए, वो प्राकृतिक आवास को डिस्टर्ब करती।
1: ओके जी, क्योंकि प्रकृति उनके लिए खाना बनाती ही है तो उन्हें छोड़

0: हैं कि उस खाने का प्रयोग वो करें अपनी डे टू डे लाइफ में।
1: मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि कई लोगों को लगता है कि बंदर केले खाते हैं, बंदर फ्रूट्स खाते हैं, बट मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जंगलों में, राजस्थान के जंगलों में केले नहीं उगते हैं, तो यहाँ के
0: जी
1: बंदर केले नहीं खाते थे, हमने खिलाना स्टार्ट किया उनको। अगर हम जंगल जाते तो कभी देखेंगे यहाँ तो केला यहाँ उगता ही नहीं, यहाँ से आता ही नहीं है। तो यहाँ का उनका जो फूड है, यहाँ की लीव्स है, जो पत्तियां हैं, मोस्टली उस पर डिपेंडेंसी उनकी ज्यादा रहती है।
0: जी राइट राइट बिल्कुल। तो जो दोस्त इस वक्त सुन रहे हैं जरूर इस बात का ध्यान रखें, और जो टूरिस्ट इस वक्त सुन रहे हैं तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप बंदरों को खाना नहीं खिलाएं जब आप माउंट के रास्ते ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं या नीचे आ रहे हैं। जहां पर भी आपको बंदर मिल रहे हैं तो आप इन्हें खाना नहीं खिलाएं।
1: तो आपने कोविड टाइम देखा होगा, तो कोविड में सारे इंसान के घरों में बंद थे, तो जंगलों
0: जी
1: की तरफ या बाहर की तरफ कोई जा नहीं रहा था इनको कुछ भी खिलाने के लिए, क्योंकि अब ये आदतन हो चुके हैं हमारे पे। तो ये बंदर क्या हो रहा है, शहरों की तरफ ज्यादा मूव करने लग गए, वो केले पूड़ियाँ रोटियां खाने के लिए। तो बहुत परेशानी इंसानों को भी देखनी पड़ी और जानवरों को भी देखनी पड़ी। अगर यही हम चीज समझ जाए कि इनको खिलाए नहीं जा सके अपना अननेचुरल फूड, तो ये हमारे शहरों की तरफ नहीं आए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर सर। वैसे कई बार कुत्तों को भी हम पार्ले जी बिस्किट खिला देते हैं, रोटियां खिला देते हैं जिसमें नमक, और कई बार यहाँ गुजरात और राजस्थान साइड में हम थोड़ा मीठा भी डालते हैं, तो ये भी नहीं खिलाना चाहिए।
1: आप रोटी खिला सकते हैं बिना नमक की, बट मीठा नहीं खिलाए रोटी के, तो यूज होते हैं कि बॉडी को, जो हमारे स्ट्रे डॉग है उनको कोई इश्यू नहीं हो सकता। आप रोटी खिलाएं, अगर आप बिस्किट भी डाल रहे तो आटे वाले बिस्किट खिलाएं, और बहुत
0: जी
1: कम मीठे वाले जो बिस्किट होते हैं आप उसको वो दे सकते हैं उनके इन डॉग्स
0: ओके
1: को आप।
0: जी। थैंक यू सर। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप घायल पक्षियों का भी उपचार करते हैं, तो इसका सही तरीका क्या है? क्योंकि कई बार यहाँ जो लोकल कार्यकर्ता हैं वो घायल पक्षियों का भी उपचार करते हैं, वो सांपों को भी बचाते हैं, लेकिन सही तरीका क्या होता है?
1: मैम, हर साल जनवरी के अंदर जयपुर में काइट फ्लाइंग फेस्टिवल होता है, जिसको मकर संक्रांति कहते हैं। तो काफी बड़े लेवल पे राजस्थान में, जयपुर में पतंगबाजी होती है। तो हर साल हमारा जनवरी में फ्री बर्ड ट्रीटमेंट कैंप हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से वॉलंटियर्स और डॉक्टर, मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर्स इसमें काम करने के लिए आते हैं। पूरा ऐसा ऑपरेशन थिएटर बनाया जाता है जहाँ से इंसानों के लिए एक सुविधा मिलती है, वैसे ही जानवरों को सुविधा हम लोग देते हैं कि कोई पक्षी घायल हो, हमारा वॉलंटियर जाता है उसको लेकर आता है, तो उसका विंग कट गया है, पंख कट गया है, तो पूरा सूचरिंग जैसे कि टाके लगते हैं पूरा वैसे लगता है, उनको ऑक्सीजन दिया जाता है, मेडिसिन दी जाती है, ये सब वेटनरी डॉक्टर के अंडर में होता है। तो मैं उसे ये कहूँगा कि अगर आप लोग किसी को भी इस तरह की ट्रेनिंग देनी है, सीखना है, क्योंकि तो बिना सीखे आप किसी को अगर कुछ करने जाएंगे तो हो सकता है आप उसको बचाने तो जा रहे हैं पर वो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है, कि उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको पकड़ना है। अगर आपने
0: राइट
1: पक्षी, एक बहुत छोटा सा जानवर होता है, अगर आपने उसको सही हैंडलिंग नहीं किया वो तो भी मर जाएगा स्ट्रेस में आके। तो ये सारी ट्रेनिंग हम अपने कैंप में देते हैं कि कैसे रेस्क्यूज करने हैं, आपको हैंडल कैसे करना है, फर्स्ट एड कैसे कर देना है, उसके बाद का प्रोसेस, रिहेबिलिटेशन, वापस जंगल में छोड़ना, रिलीज करना। तो आप ट्रेनिंग लेके आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं उसके बाद।
0: जी सर। सर आपकी संस्था कॉरपोरेट एनवायरमेंटल एंगेजमेंट ट्रेनिंग्स भी देती है, तो कोई भी चाहे तो वेबसाइट में जाकर के इंफॉर्मेशन ले सकता है।
1: बिल्कुल मैम, बिल्कुल ले सकते हैं। हम रेगुलर कॉर्पोरेट से वर्क करते हैं, उनको ट्रेनिंग देना, तो बहुत सारी चीजें हम लोग उनको अंडरस्टैंड कराते हैं, नेचर से रिलेटेड कैपेसिटी बिल्डिंग सब कुछ रहता है।
0: जी सर बहुत खूब। तो अभी समय है रैपिड फायर राउंड का, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं
1: हाँ
0: जी। सबसे चैलेंजिंग रेस्क्यू आपके लिए क्या है, सांप, मगरमच्छ या फिर लकड़बग्घा?
1: मगरमच्छ,
0: ओके। आपका सबसे प्रिय वन्य जीव?
1: मगरमच्छ
0: एक ऐसी आदत जिसे हर व्यक्ति को प्रकृति के लिए अपनाना चाहिए।
1: सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़ देना चाहिए।
0: ओके। एक शब्द में प्रकृति।
1: भगवान
0: ग्रेट। आपका जीवन मंत्र?
1: सबका साथ, प्रकृति का विकास,
0: ओके। जंगल या शहर?
1: जंगल।
0: सूर्योदय या सूर्यास्त? दोनों
1: वैसे तो दोनों ही कहूंगा मैं, दोनों का इंपॉर्टेंस है।
0: का इम्पोर्टेंस है। ओके। होम्योपैथी या वाइल्ड लाइफ?
1: बोथ्स।
0: ओके। तो अगर वन्य जीव बोल पाते हैं तो वो इंसानों से क्या कहते सर?
1: जी और जीने दो।
0: जी और जीने दो। ओके ठीक है सर। अगर पांच एलिमेंट्स है सबसे पहले बचाना चाहते हैं आप, तो किसको बचाएंगे?
1: हम पांचों एलिमेंट्स की बात करें तो एक भी एलिमेंट अगर नहीं बचा पाए तो चारों बाकी जो बचे चार एलिमेंट्स है ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ,
0: सबसे पहले किसको बचाएंगे? पानी बचाएंगे, हवा बचाएंगे, मिट्टी को, या फिर एयर, किसको बचाएंगे?
1: हवा को ही बचाएंगे जिससे हमारा जीवन है। सबसे पहला, सबसे जल्दी हवा के बिना हम मरेंगे।
0: ओके, सबसे पहले हवा को बचाएंगे। ओके सर, अभी तो इस कार्यक्रम से अलविदा कहने का वक्त है। आप क्या और ऐड करना चाहते हैं, कुछ और सूचनाएं हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहते हैं?
1: मैं यही ऐड करना चाहूंगा कि सारे श्रोताओं से यही निवेदन करना चाहूंगी, हमारे पास बहुत कम समय बचा है इस प्रकृति के लिए। प्रकृति नहीं कह रही कि मुझे बचाओ, उसको कोई जरूरत नहीं है। हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति को बचाना है। अगर अभी भी नहीं जागे तो हम कभी नहीं जाग पाए। मेरा एक मैसेज है।
0: जी, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद है कि आज भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे और
1: थैंक यू, थैंक
0: आपके एक्सपीरियंसेस साझा करते रहेंगे।
1: यू, थैंक यू वेरी मच।
0: शुक्रिया। तो दोस्तों, डॉक्टर गौरव जी ने अपने अनुभवों और विचारों के माध्यम से न केवल वन्य जीव संरक्षण की महत्व समझाई, बल्कि ये भी बताया कि प्रकृति की रक्षा केवल सरकार या किसी संस्था की नहीं, हमने जाना उनकी बातों से, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी भी है। जब हम प्रकृति की रक्षा करते हैं तो वास्तव में हम अपने आप की रक्षा करते हैं, अपने भविष्य की रक्षा करते हैं। तो हम डॉक्टर गौरव जी को और इको रेस्क्यूअर्स के फाउंडेशन के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं। वो सिर्फ राजस्थान और अलवर में ही, जयपुर में और अलवर में ही कामना करें, पूरे भारत वर्ष में आप अपने सेवाओं को ऐसे आगे बढ़ाते रहें, और आशा करते हैं कि आपका ये सेवा अभियान यूं ही निरंतर आगे बढ़ता रहे। तो प्रिय श्रोताओं, यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 94-14-15-14-15 पर, और इस कार्यक्रम को आप शेयर भी कर सकते हैं। डॉक्टर गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
1: थैंक यू वेरी मच मैम, आपने मुझे इनवाइट किया और मेरी आवाज पब्लिक तक पहुंचाई। धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप और नई दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी दुनिया बनाने का हम सब सपना देखते हैं जहां प्रकृति और मानव दोनों हाथ में हाथ लिए एक साथ आगे बढ़ें, दोहन ना हो लेकिन खुशी भरपूर हो। और आज हम बहुत लकी हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री गोपाल भाई सतारिया जी जो कि फाउंडर हैं बंसी गिर गौशाला के। और उनके बारे में बता दें आपको कि वो मेंबर हैं नेशनल एडवाइजरी कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साथ साथ केंद्रीय प्रशिक्षण प्रमुख भारतीय गौवंश रक्षण संवर्धन परिषद के एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हैं, श्री श्री इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इनवाइटी मेंबर हैं, गुजरात एसोसिएशन फॉर एग्रीकल्चर साइंसेज इनवाइटी ट्रस्टी हैं शिवानंद आश्रम अहमदाबाद के, एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हैं ग्लोबल विकास ट्रस्ट महाराष्ट्र के, साथ साथ मेंबर हैं गुजरात आयुर्वेद अनुषद मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि गौशाला में उनके सारे काम एक आधुनिक तरीके से भी किए जाते हैं लेकिन वो पालन करते हैं बहुत ही प्रेम से। और उनकी अगर आप तस्वीरों को देखेंगे इंटरनेट पे तो आपको ये महसूसता होगी। और उनकी गौशाला को भारत की श्रेष्ठ गौशाला का अवार्ड भी मिल चुका है। कई विशेषताएं हैं, आपको धीरे धीरे कार्यक्रम के माध्यम से मैं उनके बारे में बताती रहूंगी, लेकिन पहले स्वागत करते हैं गोपाल भाई, आपको बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद बहन।
0: सबसे पहले एक बार हमारे श्रोताओं के लिए अगर आप कुछ आपके जीवन की जो शुरुआत हुई और जो ये आपने नया, क्योंकि एक बिजनेस भी आप करते थे और एक बहुत बड़ा, उसे छोड़कर आपने इस रास्ते को चुना, तो कुछ अपने जीवन के बारे में बताएं।
1: जी बिल्कुल। बहुत पहले तो मैं बहुत धन्यवाद कहूंगा कि आपने मुझे मौका दिया किसानों के साथ में ये वार्तालाप का। तो बचपन से मैं जब 8वीं कक्षा में था, मेरे गुरु महाराज जी ने बोला था कि गौ माता और किसान दुखी रहेंगे तो देश खुश नहीं रहेगा। तो उस समय के वो शब्द हमारे हृदय में बसते हैं और उनको साक्षी मान के हमने प्रयत्न किए। तो FYJC करने के बाद 10 साल डायमंड का बिजनेस किया
0: जी।
1: 17 साल पहले मुंबई छोड़ के अहमदाबाद आके प्रयोग शुरू किए। प्रयोग करके किसी को बोल सकते हैं, तो हमने आकर के प्रयोग किए। कोई भी प्रयोग में वैज्ञानिक पक्ष, आयुर्वेदिक पक्ष, आर्थिक पक्ष और प्राकृतिक पक्ष, वो सारा अभ्यास करके जब ठीक लगता है तब प्रचार करते हैं। तो 17 साल पहले मुंबई छोड़ के अहमदाबाद गौशाला शुरू करी, लेकिन सबसे पक्ष था कि किसी का शोषण ना करके प्रगति जो करना वो सही है, उसी हिसाब से हमने सारे प्रयोग किए
0: जी। आपने जैसा बताया प्रकृति के और नजदीक आप गए, लेकिन इतने बड़े बिजनेस को जब आपने छोड़ा या फिर आपने सोचा कि नहीं अभी मुझे अपने जीवन को ही पूरा बदल देना है, तो लोगों ने आपको कुछ कहा तो होगा या चैलेंजेस तो आए होंगे उस वक्त?
1: देखिए, हमेशा लोग तो कहते ही है, चैलेंजेस भी बहुत आते हैं
0: जी,
1: आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सभी प्रकार से
0: जी।
1: लेकिन उसको हम एक हमारी परीक्षा ही समझते हैं
0: जी।
1: और परीक्षा का सबसे अच्छा उत्तर हम मानते हैं कि हमारा कार्य बोलेगा
0: जी।
1: तो किसी को नम्रता पूर्वक हम उत्तर देते थे कि हम ये प्रयत्न करने जा रहे
0: जी,
1: ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करे, ऐसा प्रार्थना कीजिए
0: जी, जी।
1: और हम करते रहे और फिर जैसे परिणाम मिलता है तो वही लोग हम फिर प्यार से हमसे वापस जुड़ते भी
0: जी। आपने जो प्राकृतिक और आयुर्वेदिक और साथ साथ संगीत का भी आपने वो चयन किया, सब माध्यमों का इस्तेमाल किया, तो कुछ आप बताएं कि किस प्रकार से पालना होती है गाय की?
1: जैसे वहां पे मैं किसान मित्रों को और सभी मित्रों को बताना चाहता हूँ कि हमने गाय और किसान को एक दूसरे के साथ जोड़ा है
0: जी।
1: तो खाली किसानी करेंगे तो भी फेल हो जाएंगे, खाली गाय रखेंगे किसानी नहीं करेंगे तो भी फेल हो जाएंगे। लेकिन गाय रखना था तब हमने ऐसे जोड़ा कि कोई गाय को बांधा नहीं जाएगा, वो अपनी मर्जी से खाना खाती है, अपनी मर्जी से पानी पीती है। फिर दोहने के समय जिसको नाम बोलते हैं वो दूध देने के लिए बाहर आ जाती है, 10 दिन का बच्चा भी नाम सुन के वही बाहर आता है।
0: अच्छा,
1: तो ये ईश्वरी तत्व है, 10 दिन के बच्चे को हम क्या ट्रेनिंग देंगे
0: जी।
1: तो

0: आधा दूध ही हम लेते हैं, आधा बच्चे को पिलाते हैं, तो उसका शोषण नहीं करना है। जो हमारे यहाँ पे कार्य करते हैं उनका भी शोषण नहीं करना, और धरती माता का भी। फिर जो आया वो प्रसाद है
1: जी।
0: और 18 पेडिग्री की गौ माता है हमारे पास, भावनगर राजा, मोरबी राजा, जूनागढ़ नवाब, तो 18 बच्चे देने के बाद भी 25 लीटर तक जाने वाली कुछ गौ माताएं हैं। तो ऐसी अच्छी गौ माताओं के बछड़े जिस गांव में 100 गाय होती हम निःशुल्क देते हैं, ताकि अगली पीढ़ी गांव में ऐसी पैदा हो कि लोग रख पाए
1: जी।
0: उनके घर पे तंदुरुस्त गाय हो, अच्छा दूध की क्षमता वाली हो। और फिर भी हमने दूध को बाय प्रोडक्ट बनाया, क्योंकि दूध ऊंचा नीचा होगा सबकी नजर ऊंची नीची होगी। हमने गोबर और गौमूत्र को मुख्य प्रोडक्ट खेत के अंदर बनाया।
1: अच्छा।
0: और वो उसको अवेलेबल फॉर्म करने के लिए हमने एक बैक्टीरिया तैयार किया है, वो पंचगव्य में से आइसोलेट किया है। तो मैं आपके माध्यम से सबको कहूंगा कि वो बैक्टीरिया डालने से 7 दिन में ही यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड बंद हो जाएगा, और उत्पादन केमिकल जितना उससे डबल और 3 गुना भी हमने लिया है
1: जी।
0: तो बिल्कुल यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज में माननीय चंद्रेश भाई और यहाँ की जो भी टीम है और हमारी गौशाला में, दोनों जगह पे आकर के इस चीज का निःशुल्क प्रशिक्षण पा सकते हैं कि वो कैसे कर सकता है किसान। जैसे आप किसान भाइयों को मैं ही बात बोलूंगा, बहनों को, कि आप अगर 10 एकड़ भूमि है तो पहले 20x20 या 50x50 फीट में करके देखिए, और परिणाम मिले तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि गौ माता क्या है। तो देशी गाय के गोबर का एनालिसिस हमने करा है तो 1200 कंपाउंड निकले, जो पूरे विश्व में किसी के मल में नहीं है। देशी गाय के मूत्र में हमने एनालिसिस कराए, 5100 कंपाउंड निकले, जो किसी के भी मूत्र में नहीं है। महा औषधि है वो
1: जी।
0: लेकिन वो अवेलेबल फॉर्म में जब हमने पौधे को दिया
1: जी।
0: तो पौधा अनमैच रिस्पॉन्ड कर रहा है, अतुलनीय परिणाम मिल रहा है। खाली उसको पाच्य स्वरूप में देना जरूरी था, वो हमने पद्धति तैयार करी है गौ कृपा अमृत माध्यम से। तो बिल्कुल बहन, मैं आपके माध्यम से बात कहूंगा कि किसान मित्रों, ये मैं जो बोल रहा हूँ वो महसूस करने के लिए आप यहाँ पे आइए, ब्रह्मा कुमारीज में भी और हमारी गौशालाज में। तो दोनों जगह से मिलके हम लोग टीम वर्क करके आपके घर पे वो सुखाकारी कैसे आए, क्योंकि आप जो किसानी काम कर रहे हो दुनिया का श्रेष्ठ कर रहे हैं। शहर जितना आर्थिक व्यवस्था आपके खेत में कैसे हो जाए, ये वो पद्धति है
1: जी। आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं या वो ट्रेनिंग की प्रक्रिया अगर आप कुछ और बताएं जो किसान सुन रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, किसान मित्रों बिल्कुल आसान प्रक्रिया है, 1 दिन का ही प्रशिक्षण है। 1 दिन में तो आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। एक कल्चर आता है उसके अंदर 100 बैक्टीरिया होते हैं, वो कोई 24 है जो नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, डायरेक्ट हवा में से नाइट्रोजन दे देंगे तो मतलब यूरिया आपको मिल गया, फॉस्फोरस देने वाले अलग है। यही बैक्टीरिया आपको स्प्रे करना है तो पेस्टिसाइड का काम करेगा, अपने शरीर में से रस छोड़ता है कि नए काम के कीटक दूर रहेंगे। तो ये सारा प्रशिक्षण हमारा, आप एक वीडियो चैनल है यूट्यूब गोपाल भाई सुतरिया उस पे देख सकते हैं, और एक मॉड्यूल यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज में चंद्रेश भाई और यहाँ की जो कृषि की जो टीम है, बहन और भाई जो संभालते हैं, उनसे आकर के वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और अहमदाबाद में हमारी बंसी गिर गौशाला है, वहां पर भी आप नोंदणी करके या फोन नंबर प्राप्त करके वहां पे फोन करके, पूरा निःशुल्क योजना है, इसमें किसी भी प्रकार के पैसे का कोई व्यवहार ही नहीं है। तो सिखाते भी फ्री है, वो कल्चर भी हम निःशुल्क देते हैं। तो बिल्कुल किसान मित्रों इसका जरूर लाभ लीजिएगा, आपकी जमीन में बिकनी चाहिए, आपकी गाय बिकनी नहीं चाहिए, और स्वाभिमान से आप कैसे खड़े हो जाए और वापिस शहर से ज्यादा आमदनी आप कृषि के द्वारा कैसे कर पाए। आने वाला समय कृषि का है, तो बिल्कुल मेरी दो हाथ जोड़ के विनती है, इसको समझिए और थोड़ा सा प्रयोग करिए, आपका पौधा और आपकी मिट्टी आपसे बात करेंगे
1: जी। क्या बात है नहीं जी, आपकी दिनचर्या क्या होती है
0: जी? जब से ये कार्य लिए तो दिनचर्या का आता पता लगभग रहा नहीं है
1: जी।
0: लेकिन सवेरे लगभग 4-5 बजे उठना
1: जी।
0: और गुरु जी को याद करना, ईश्वर को याद करना, और नित्य क्रम करके जो 28 साल से गुरु जी ने जो दिया है वो पूजा अर्चन करके फिर बस यही गाय का कार्य में लगे जाते हैं। तो पिछले 5 सालों में तो लगभग हमने 22 राज्यों में 500 शिविर करी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो कभी कभी तो हफ्ते में 2-2 घंटा ही एवरेज सोने को मिलता है, तो कभी आगे पीछे जो होता है। लेकिन गौ माता आधारित जो औषधि है
1: जी।
0: वो पा करके ये कार्य अभी भी कर पा रहे हैं, नहीं तो शरीर खराब हो जाए
1: जी।
0: तो 10 रोग है जिन्होंने हम मतलब नी रिप्लेसमेंट बोला हो, हेयर फॉल हो, पेट की समस्या, पेट में से सभी रोग खड़े होते हैं
1: जी।
0: स्किन डिजीज हो, चमड़ी का रोग हो, रेस्पिरेटिव, तो ये सारे रोगों में लगभग 90% सक्सेस रेशियो। हमने गौ आधारित पूरी जीएमपी लाइसेंस के साथ फार्मेसी बनाई है
1: जी, क्या
0: उसी का उपयोग हम करके
1: जी।
0: तो गाय का उपयोग, जैसे मैं किसान मित्रों एक ही बोलूंगा, जैसे दूध आपके घर पे वो अमृत है, आप दूध को खाने का सही तरीका भूल चुके हैं। दूध को किसी सब्जी के साथ नहीं जमता है, विरुद्धार हो जाएगा, खाली परवल वो भी घी में बनाए तो। दूध को कोई फल के साथ नहीं जमता है, सिर्फ मीठा आम, तो हम खाते हैं गलत तरीके से और फिर हमें सोचा उतना परिणाम नहीं मिलेगा। तो तंदुरुस्त गाय का कच्चा दूध जैसा दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो खाना कैसे, वो भी हम जब संजोग मिलेगा तो और भी डिटेल में आपको बताएंगे। पर आप आपके घर पे ही स्वर्ग कैसे बना सकते गौ आधारित, वही परंपरा को वापस हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं।
1: जी, बहुत बड़ा प्रयत्न है और एक तरीके से हमारी जो भारतीय पद्धति आयुर्वेद का भी आपने प्रयोग किया, कुछ उसके बारे में बता सकते हैं?
0: बिल्कुल, जैसे गौमूत्र का एनालिसिस कराया, 5100 कंपाउंड निकले
1: जी,
0: उसके अंदर आज तक जितनी एलोपैथी दवाएं निकली, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, स्टीरोइड, वो सारा कुदरती स्वरूप में निकला। उसका पीएच 8 से ज्यादा है तो अल्कलाइन रखता है बॉडी को, और उसी प्रकार उसके अंदर नेचुरल फॉर्म में स्टीरोइड भी निकले, गोल्ड के पार्टिकल्स निकले, जो सुवर्ण धातु बताते सुवर्ण भस्म आयुर्वेद में, वो भी निकला, और नैनो पम्य और पाच्य स्वरूप में। घी, जैसे मैं घी हर महीने 2 किलो खाता हूँ अकेला, हर रोज मिठाई खाता हूँ, लेकिन ये बाहर का खाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे, बट घी खाने की परंपरा, घी बनाने की परंपरा
1: जी,
0: तो वो जो सारा सिस्टम समझ लिया ना तो कभी दिक्कत नहीं आएगा। किसान मित्रों, 25,000 रुपए लीटर ओमेगा 3 ओमेगा 6 की कैप्सूल मछली के तेल से मार्केट में बिकती है, वो 2 चम्मच देशी गाय के बिलोने के घी में है। 1,00,000 रुपए बिटारेट बिकता है पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, 2 चम्मच देसी गाय के घी में है, बट वो खाना कैसे
1: जी?
0: तो बहुत सिंपल तरीके हमने तैयार करे हैं, और बहुत कम बजट में हमने कुछ औषधियां निकाली है, उसका भी आप अगर आप किसी को लाभ लेना चाहते हैं तो निशुल्क निदान होता है, तो भी आप कभी भी हमारी गौशाला में आ सकते हैं, और हम कैसे आपके घर पे ही आप काफी चीजों से अच्छे रह सकते हैं। जैसे मैं महिलाओं के लिए, बहनों के लिए एक बात बताऊंगा कि मासिक धर्म के आपको कोई भी इश्यू, हार्मोन इम्बेलेंस हो, तो दुर्वा जो श्री गणेश भगवान को माथे चढ़ती है, वो 200 ग्राम लीजिए, पानी में मिक्सी बना के चटनी बनाइए, कपड़ा छान कीजिए, और सवेरे खाली पेट पी लीजिए, और 2 घंटा उसके बाद खाना नहीं, है ना, इसको करिए, 2 महीने में आपको ठीक होना ही होना है। तो ऐसी बहुत सरल चीजें जो खेत किनारे और आपके रसोई घर में है और गौ आधारित, वो कैसे आप श्रेष्ठतम जीवन जी सकते हैं, अगर आपने ठान लिया तो पूरा घर परिवार आपका तंदुरुस्त रह सकता है।
1: जी, क्या बात,
0: धन्यवाद
1: जी। आपके पास समय कम है, 2 सवाल और थे कि अगर अभी किसानों को कुछ बदलाव करना है, पहला स्टेप क्या होता है?
0: पहला स्टेप किसानों को एक ही है कि जो भी करे ठीक करे। जैसे आपके पास भले 10 एकड़ भूमि हो, हमारे पास आएंगे तो हम बोलेंगे 50x50 फीट, लेकिन एग्जैक्ट प्रोटोकॉल फॉलो करना जरूरी है। आधा अधूरा किसान मित्र मत कीजिएगा, नहीं तो अच्छी चीज का बाल मृत्यु हो सकता है। तो एकदम भरोसा रखिए, समझिए, पहली एक ही सीजन में आपको पता चल जाएगा, 7 दिन में आपका पौधा आपसे बात करना शुरू कर देगा। तो जितना करे सही करे, और उसको विश्वास और श्रद्धा पूर्वक करिए, और एग्जैक्ट प्रोटोकॉल के साथ करिए, बस वही मेरी विनती रहेगी।
1: ये नंदीगिर योजना के बारे में हमने पढ़ा था, वो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं?
0: जी, नंदीगिर ऐसा है कि देखिए, अच्छा नंदी बहुत कीमत बढ़ा दी है ब्रीडर्स ने
1: जी।
0: तो हम लोग ने क्या किया कि जिस गांव में 100 गाय है उधर हमारा 1 नंदी निशुल्क जाता है।
1: अच्छा।
0: और 25 सेंटर में उसका खाने पीने का खर्चा भी कभी कभी हमारे यहाँ से जाता है
1: जी।
0: तो 1 नंदी 100 गाय को फॉलो कर सकते, और नंदी के ऊपर आधार रहता है, 80-90% गुण नंदी खींचता है। तो अगली जनरेशन कि तंदुरुस्त कैसे होना, नंदी का गुण क्या होना, लक्षण क्या होना, गाय के लक्षण क्या होना, तो हमारे यूट्यूब के ऊपर वीडियो है गोपाल भाई सुतरिया, नंदी के लक्षण, वो आप जरूर देखना किसान मित्रों। तो बिल्कुल वो नंदी कैसे चयन करें और नंदी के द्वारा पूरी अगली जनरेशन कैसे बदल सकती है। दूसरा, जो भी स्थानीय नस्ल है उसी को सम्मान पूर्वक कैसे तुरंत एक ही साल में दूध बढ़ाया जा सकता है। हमें 2x-3x तक लेके गए हैं, तो 1.5 लीटर वाली डांगी को भी 4 लीटर पे लेके गए, वो कैसे करना वो इम्पोर्टेंट है। किसान मित्रों, आपको गोबर देख के पता चलना चाहिए कि आज गाय माता का पाचन कैसा है। तो बस ठीक तरीके से रखना सीखिए, अपने आप सब ठीक होने लगेगा।
1: जी, क्या बात है, तरीका सीख जाए तो बहुत बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं
0: जी।
1: कोई और संदेश जो आप गांव में जो भी है, बच्चे भी रहते हैं, बहुत से बच्चे हैं और बकरी चराने भी जाते हैं और बचपन से ही प्रकृति के बहुत नजदीक रहते हैं, तो उनके लिए कुछ संदेश या आप लोगों के लिए?
0: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया। उत्तम खेती मध्यम व्यापार कनिष्ठ नौकरी कहा गया है, क्योंकि सच में किसान सबको खिलाता है और गौ माता सबको बाद में 100 साल दूध पिलाती सगी माँ के बाद में। तो किसान मित्रों, आप सही में प्रोडक्टिव काम कर, तो आपको सम्मान मिलना चाहिए, और सभी को मैं कहूंगा कि किसान जहां मिले उसको 2 हाथ जोड़ के धन्यवाद कहना चाहिए। और सभी भाई बंधुओं को और बहनों को मेरी विनती है कि माता पिता और आचार्य हर रोज अपने बच्चों को संस्कार डालने का एक प्रैक्टिस शुरू कीजिए, उसके मन में आदर्श उनके हीरोज बदलिए, उनका कर्म निष्ठा और धर्म निष्ठा बढ़ाइए। वो जहां पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई डिग्री मायने नहीं रखता है, कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ आपने बच्चा बना दिया, और पल पल ईश्वर जो भी आप पंथ में मानते हैं पल पल अपने हृदय में महसूस करने का प्रयत्न कीजिए, और सच में हृदय पूर्वक काम करेंगे, ईश्वर देने के लिए बैठा है, बस आप उसके पात्रतावान बनाइए अपने बच्चों को, ईश्वर दे देगा। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपने मुझे जिस प्रकार मौका दिया किसानों के साथ बात करने
1: जी,
0: और सबको मैं आमंत्रित करता हूँ एक बार पधारिए गौशाला
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल भाई जी आपका, और बहुत बहुत हृदय से आभार, आपने जो शेयर किया वो एक एक जो शब्द है वो हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकता है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत, आपको कोई सवाल है आप हमें रेडियो मधुबन पर मैसेज कीजिए 94 14 15 14 15 पर। सुनते रहिए मुस्कुराते।

0: नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम सा। और शनिवार की सुप्रभाता हूँ। आज तो मन कह रहा है कि गीत गाए, सावन का महीना पावन करे शोर, जेरर झूमे ऐसन जैसे बन माना चेमो। सावन का महीना आ गया है, आप सबको श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आज 1 अगस्त नया महीना शुरू हो रहा है, तो देखे भाई सबको हम श्रावण मास की, श्रावण मास में आने वाले सभी त्योहारों की एडवांस में बहुत बहुत दिल से बधाई देते हैं। और शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। कल दोस्त दिवस रहा, उसके बारे में भी बताएंगे, सुनाएंगे, लेकिन पहले शुरू करते हैं एक कहानी से, बुढ़ापे की लाठी। रामलाल जी 75 वर्ष की आयु के हो चुके थे। अब तक उनका शरीर काम कर रहा था, तो छुटपुट बाहर के काम कर लिया करते थे, पर अब उनका शरीर बिल्कुल ही चलना बंद हो गया रहा, अतः वो घर पर ही रहा करते थे। रामलाल जी के कमरे से लगातार खांसने की आवाज़ आ रही थी। बाहर से बेटे वो बहू दोनों आपस में धीरे धीरे बतिया रहे थे। बहू बोली, अलका का करें, पिताजी तो दिन भर खांसते ही रहते हैं, सारा काम करके बैठती हूँ, उसके बाद उनकी सेवा में लगे रहो। तुम कोई वृद्धाश्रम क्यों नहीं छोड़ाते? मेरी सहेली विभा ने भी अपने ससुर को वृद्धाश्रम भेज दिया, तब से वो दोनों बहुत सुखी हो गए। बेटा रमेश बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना कि नहीं, बिना सोचे कुछ भी बोलती रहती हो। बहू बोली, इसमें मेरा दिमाग काहे खराब है? तुम तो दिन भर काम पर चले जाते हो, मुझे दिक्कत होती है। कल भी विभा के यहाँ किटी में जाना सकी, और मेरी माँ 2 दिन से मुझे बुला रही है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बेचारी बूढ़ी है तो अपनी बेटी का इंतज़ार करती है। बेटा बोला, क्यों नहीं जा पा रही हो? कोई बाबूजी रोकते थोड़े हैं? उनका काम करके चली जाओ, फिर घर में बबलू भी तो है, वो देख लेगा। बहू बोली, बबलू अभी 12 साल का है, और उसकी कोई ये उम्र है नहीं है कि वो बुढ़े लोगों की सेवा करता रहे। उसके पढ़ाई भी रहती है, फिर यार दोस्तों में खेलता भी है, उसका बचपन छीन लूँ का? बेटा बोला, ज़्यादा परेशानी है तो सारा सामान बाबूजी के कमरे में रख जाया करो, फिर तुम आराम से चली जाया करो, कोई प्रॉब्लम आएगी तो बाबूजी मुझे फ़ोन कर देंगे। बहू बोली, तुम्हें साई याद नहीं है, पिछली बार जब मैं बाजार घर का सामान लेने गई थी तब बाबूजी को पलंग से गिर पड़े थे, और तुमने ही आकर मुझे कहा था कि उनको अकेला छोड़कर जाना नहीं है। बेटा बोला, तो बताओ क्या करूँ? जौन दिन तुम्हें जाना हो मैं दुकान की छुट्टी ले लूँगा, पर बाबूजी जब तक हैं तब तक तो हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। रामलाल जी बेटे और बहू दोनों की बात सुन रहे थे। उन्हें लगा कि चलो बहू तो बुढ़ापे में सेवा नहीं करना चाहती, पर बेटा मेरा अपना है, उसे मेरे लिए बुरा लग रहा है। वो बहू बेटे की पुनः बातचीत रामलाल जी सुनने लगे। बहू बोली, हाँ हाँ, तुम्हारी दुकान तो बहुत करोड़पतियों की दुकान है, कि एक दिन बंद कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़े। एक दिन दुकान बंद करने का मतलब है 1,000 रुपये की कमाई जाना। इसका तो एक ही उपाय है कि बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज दो। मैं भी विभा की तरह स्वतंत्र होकर जी लूँगी। बेटा बोला, अलका तुम बिल्कुल समझदार नहीं हो, बाबूजी और विभा के ससुर में कोई तो अंतर है। विभा के ससुर की कोई पेंशन थोड़ी थी, उनके तो प्राइवेट नौकरी थी, उन्हें जो रिटायरमेंट के बाद पैसा मिला वो उन्होंने अपने बेटे और बेटी को बांट दिया, इसलिए विभा ने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया। फिर रमेश बेटा बोला, थोड़ा ठहर कर अपनी पत्नी अलका से कहता है, अलका मेरे पिताजी की तो पेंशन से हमारा घर चलता है, मेरी छोटी सी दुकान से का होता है? देखो उससे जो कमाई होती है वो तो सारी बबलू के भविष्य के लिए रख रहे हैं। बबलू जब कॉलेज जाएगा तब उसके लिए भारी भरकम डोनेशन देना होगा, जब जाकर कॉलेज में एडमिशन लेगा। अब जब तक पिताजी हैं थोड़ा निभा लो, अगर हम पिताजी का वृद्धाश्रम छोड़ आए तो बैंक वाले हमें पेंशन नहीं देंगे, हम यही सोचकर पिताजी की थोड़ी सेवा कर लेते हैं कि उनकी सेवा के बदले हमें उनकी पेंशन घर के लिए मिल रही है। पिताजी अंदर बैठे सब सुन रहे थे। उनके दिल को गहरा धक्का लगा। वो सोच रहे थे कि उनका बेटा उनके लिए बहू से लड़ाई कर रहा है, पर वो तो बहू से भी बड़ा स्वार्थी निकला। उसे पिता से ज़्यादा उनके पेंशन प्यारी है। आजकल दुनिया में यही सब तो हो रहा है कि नहीं? तो उनको लगा कि पिताजी समझ गए कि इसको हमसे ज़्यादा प्यारा हमारी पेंशन है। देखिए भाई, बात तो हम करते हैं छोटी सी कोई भी, लेकिन उसमें बहुत गहरा राज होता है। वो गहरा राज कैसा होता है आप समझ गए होंगे कि आज की दुनिया में लोग माँ बाप का संबंध नहीं देखते, लेकिन देखते हैं कि उनका पैसा आ रहा है। कहीं ना कहीं दिल से पिता के प्रति, माता के प्रति भावनाएं ख़त्म होती जा रही है, और क्या होते जा रहा है? स्वार्थ। इस स्वार्थ अगर अपनों के साथ भी किया तो ऊपर वाला ही जिम्मेदार है। आप सोच सकते हैं कि क्या बीती होंगी वो पिता के ऊपर, जो समझ गया कि बेटा मेरे को इसलिए नहीं रख रहा, इसलिए नहीं वृद्धाश्रम भेज रहा कि वो मुझसे प्यार करता है, बल्कि वो तो मेरी पेंशन के लिए रख रहा है। आज कहीं ना कहीं घर घर की ही कहानी है। कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? अपने आप से पूछिए, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो सोच लीजिए कभी हम भी बूढ़े होंगे, कभी हमारे बच्चे भी हमारे लिए कुछ न कुछ ऐसा ही करेंगे, तब हम पर क्या बीतेगी? कहीं ना कहीं आज भावनाएं सूख रही हैं, कहीं ना कहीं दिल का प्रेम खत्म हो रहा है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को समझें कि जिन्होंने पाला पोसा, हमको इस दुनिया में लाया, उनके लिए अगर हम उनके नहीं हो सके तो हम किसी के भी नहीं हो सकते। कहने का मतलब यही है कि आज की जनरेशन कहीं ना कहीं बुज़ुर्गों को, बड़ों को बोझ समझ रही। अगर उनसे कुछ मिल रहा है तो हाँ भाई देखभाल कर लेंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो वो बोझ हो जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के ऊपर बहुत बड़ी चोट है। काहे कि हमारी संस्कृति तो दूसरे को भी संभालने वाली थी। दूसरे के घर में भी कुछ हो जाए तो उनको कहते थे कोई बात नहीं, आप हमारे यहाँ आके रह जाओ। लेकिन आज तो आपको बताया, आपने सुना कि क्या हालत हो रही है। आज आवश्यकता है ये सोचने की कि बड़े बूढ़े हैं, भले ही वो कमा नहीं रहे हैं, लेकिन आपके बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं। वो एक ऐसी झाड़ है जो आपको कहीं ना कहीं छांव दे रही है, वो है तो आपको उनकी दुआएं मिल रही है। और अगर ये बात पर हमने जोर नहीं दिया तो आने वाली जनरेशन इससे बुरा हमारे साथ करेगी, तब हम पे काबीतेगी। हम तो ऐसे ही कह देते हैं, सबके लिए नहीं, हम तो बहुत सारे हमारे सुनने वाले श्रोताओं में से भाई बहन ऐसे हैं जो बहुत अपने माता पिता की देखभाल करते हैं और उनको बहुत प्यार से रखते हैं, लेकिन हम उन लोगों को कह रहे हैं जो इस बात को नहीं समझते। अद्भुत कलाकारी मेरा अहंकार ही मेरा बोझ है। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य समझ आ गया, उस दिन के बाद किसी की प्रशंसा या निंदा तुम्हें हिला नहीं पाएगी। मन का झुकना बहुत जरूरी है, मात्र सर झुकाने से परब्रह्म परमेश्वर नहीं मिलते। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। सही कार्य वो नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, सही कार्य वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। मन ही संसार है, जब मन शांत होता है संसार भी शांत हो जाता है। खुशी पाने का सबसे सरल तरीका है दूसरों को खुशी देना। परमात्मा कहते हैं मेरे लाडले बच्चों, जिंदगी का पहिया लगातार घूमता रहता है। न तो कोई खुशियों को हमेशा पकड़ कर रख सकता है और न ही दुख हमेशा के लिए ठहर सकता है, क्योंकि ये सब परिवर्तनशील है हमेशा। इसलिए हमेशा बेफिक्र रहो। समझ गए होंगे हम का कहना चाहते हैं, समझदार तो हैं। सफल वही होता है जो हार मानने के बजाय सीखना चुनता है। जब भगवान पर भरोसा बढ़ता है तो चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि फिर मन को मालूम है अब जो होगा अच्छा ही होगा। कभी भी उम्मीद मत खोना अच्छे इरादे के साथ। अगर आप लगातार कोशिश करते रहेंगे तो ईश्वरी शक्ति और ब्रह्मांड।
1: गुड मॉर्निंग दीदी।
0: गुड मॉर्निंग भैया, कैसे हो?
1: बहुत ही बढ़िया हूँ दीदी, बहुत खुशी से प्रोग्राम सुन रहा हूँ, दिल गदगद हो रहा है। और आपको रेडियो मधुबन परिवार और सभी श्रोते भाई बहनों को सुभाष भाई का नमस्कार। और दीदी सावन का गीत बहुत ही अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा लगा। इधर भी आपके गीतों की बार छा गई। और सभी को नमस्कार। ओम शांति दीदी।
0: शांति। सुभाष भाई को भी पूरा रेडियो मधुबन की टीम की तरफ से नमस्कार। तो देखो भाई, महाराज से भैया बात करते हैं, तबीयत ठीक नहीं है, ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हर बार प्रोग्राम करके ज़रूर बता देते हैं कि सुन रहे हैं। कभी भी उम्मीद मत खोना अच्छे इरादे के साथ। अगर आप लगातार कोशिश करते रहेंगे तो ईश्वरीय शक्ति और ब्रह्मांड की शक्तियाँ मिलकर आपके उद्देश्य को पूरा करेगी। खुद को ऊंचा उठाने के लिए दूसरों को नीचे गिराने की जरूरत नहीं है, ये असली नेतृत्व है। शांत मन में ही समस्याओं का हल जन्म लेता है। अपनी खराब आदतों पर विजय हासिल करने से ज्यादा आनंद इस जीवन में और कुछ नहीं होता। हर एक को मालूम होता है हमारी कमी का है, हमारी विशेषता का है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास है। जब स्वयं पर विश्वास होता है तो कठिन से कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। विश्वास सफलता का पहला कदम है। चलिए ये बात पर एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बतियाएंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, सुनिएगा ये गीत।

देखिए भाई, आज शनिवार का दिन है और शनिवार का दिन किसका माना जाता है? हनुमान जी का। तो चलिए एक बहुत सुंदर घटना, एक बहुत सुंदर हनुमान जी के बारे में बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो सुना रहे हैं। महादेव जी ने क्यों लिया हनुमान जी का अवतार? दुनिया मानती है कि पवन पुत्र हनुमान का अवतार केवल रावण के वध में भगवान श्री राम की सहायता करने के लिए हुआ था, लेकिन का वास्तव में यही उनके जन्म का एकमात्र उद्देश्य रहा? यदि हनुमान जी चाहते तो अपनी अपार शक्ति से अकेले ही लंका को धूल में मिला सकते थे, वो पर्वत उठा सकते थे, समुद्र लांग सकते थे, काल को भी चुनौती दे सकते थे, फिर उन्होंने स्वयं रावण का वध क्यों नहीं किया? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य रहा जिसे केवल भगवान शिव और माता पार्वती ही जानते थे? कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर स्वयं कैलाश पर्वत पर एक दिव्य संवाद में प्रकट हुआ था, जहां महादेव ने माता पार्वती को उस रहस्य से अवगत कराया जिसने आगे चलकर पूरी रामकथा की दिशा ही बदल दी। ये कथा उस समय की है जब रावण अपने पराक्रम, ज्ञान और तपस्या के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया रहा। वो वेदों का ज्ञाता था, संगीत का महान विद्वान था और भगवान शिव का अनन्य उपासक भी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने उनको अनेक दिव्य वरदान प्रदान किए थे, लेकिन समय के साथ उनके भीतर का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने धर्म और अधर्म का अंतर ही मिटा दिया। उनको अपनी शक्ति पर इतना अभिमान हो गया कि उस स्वयं को अजय समझने लगा। उसके लिए स्त्री, ऋषि, देवता और साधारण प्रजा सब केवल उसकी इच्छा के अधून वस्तुएं बनकर रह गए। एक दिन स्वर्ग लोक में अप्सरा रंभा अपने पति से मिलने जा रही थी। वो अत्यंत पवित्र उद्देश्य से निकली थी, लेकिन मार्ग में रावण की दृष्टि उस पर पड़ गई। रंभा ने हाथ जोड़कर कहा, लंकेश्वर, मैं आपके ही कुल की पुत्र वधु सम्मान हूँ, मुझे अपनी पुत्री या बहू समझकर जाने दीजिए। लेकिन अहंकार में अंधे रावण ने उसके शब्दों का सम्मान नहीं किया, उसने उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया। ये घटना केवल एक स्त्री का अपमान नहीं थी, बल्कि धर्म की मर्यादा पर सीधा आघात था। उस दिन से रावण के पापों का घड़ा और भी भरे लगा। समय बीतता गया, रावण की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि उसने केवल स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार करने का ही नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव की दिव्य शक्ति को भी प्राप्त करने का विचार कर लिया। उसने हिमालय की गुफाओं में बैठकर कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उसने अपनी भक्ति से महादेव को प्रसन्न किया। जब भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा, तब रावण ने ऐसी इच्छा प्रकट की जिसे सुनकर स्वयं देवता भी स्तब्ध रह गए। उसने महादेव से माता पार्वती को ही अपने साथ ले जाने का वर मांग लिया। क्षण भर के लिए कैलाश का वातावरण मौन हो गया। माता पार्वती का तेज प्रचंड हो उठा, उनके नेत्रों में क्रोध की अग्नि जलने लगी। उन्होंने महाकाली का स्वरूप धारण कर लिया। ऐसा प्रतीत होने लगा कि अगले ही क्षण रावण का अंत निश्चित है, लेकिन तभी भगवान शिव ने उन्हें शांत कर दिया। उन्होंने कहा, देवी, समय आने दो, इस अधर्मी का अंत केवल उसके शरीर का विनाश नहीं होगा, बल्कि उसके अहंकार का भी पूर्ण अंत होगा। उसका दंड ऐसा होगा जिसे युगों तक संसार याद रखेगा। माता पार्वती ने शांत होकर महादेव की ओर देखा, तब भगवान शिव बोले, मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना में सहभागी बनूंगा। जब समय आएगा तब मेरा अंत एक ऐसे दिव्य रूप में जन्म लेगा, जो शक्ति, भक्ति और सेवा का सर्वोच्च प्रतीक होगा। यही वो क्षण था जब भविष्य में हनुमान अवतार का संकल्प लिया गया। कुछ समय बाद धरती पर माता अंजना ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपना रुद्रांश उन्हें प्रदान किया। पवनदेव उस दिव्य तेज को माता अंजना तक लेकर पहुँचे और उसी दिव्य शक्ति से
पवन पुत्र हनुमान का जन्म हुआ। उनके जन्म के साथ ही देवताओं ने अनुभव कर लिया ये कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं रुद्र का अंश है। उनके भीतर अपार बल था लेकिन उससे भी अधिक विनम्रता थी। वो जितने पराक्रमी थे उतने ही महान भक्त भी थे। समय आने पर भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। महादेव का अंश हनुमान उनके चरणों में पहुंच गया। यहीं से उस दिव्य योजना का दूसरा अध्याय प्रारंभ हुआ। हनुमान जी जानते थे कि यदि वे चाहें तो अकेले ही रावण और पूरी लंका का अंत कर सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल रावण का वध नहीं था। उनका उद्देश्य था श्री राम की मर्यादा, धर्म और आदर्श को पूरे संसार में स्थापित करना। यदि वो स्वयं सब कुछ कर देते तो राम अवतार का उद्देश्य अधूरा रह जाता। इसलिए उन्होंने हर स्थान पर स्वयं को सेवक बनाकर रखा और अपने प्रभु के ही विजय को श्रेय दिलाया। जब माता सीता का हरण हुआ और हनुमान पहली बार लंका पहुंचे, तब उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को प्रभु का संदेश दिया। उसके बाद उन्होंने अकेले ही पूरी लंका की सेना को चुनौती दी। असंख्य राक्षस उनके सामने टिक नहीं सके। अंततः उन्हें बांध कर रावण की सभा में लाया गया। रावण ने क्रोध में उनकी पूंछ में अग्नि लगाने का आदेश दिया। उससे का पता रहा कि यही निर्णय उसकी स्वर्ग नगरी के विनाश का कारण बनने वाला है। कहा जाता है कि उसी समय माता पार्वती ने अदृश्य रूप से हनुमान की पूंछ में अपनी दिव्य शक्ति का संचार किया। अग्नि उनके लिए दाहक नहीं बल्कि धर्म का अस्त्र बन गई। हनुमान ने एक ही छलांग में महलों से महलों तक उड़ान भरी और देखते ही देखते पूरी लंका अग्नि की लपटों में घिर गई। स्वर्ण से बनी वो नगरी जिस पर रावण को सबसे अधिक गर्व था उसी के सामने जले लगी। केवल एक नगर का दहन नहीं था बल्कि अधर्म और अहंकार के अंत की घोषणा थी। इसके बाद रामायण का महान युद्ध हुआ। श्री राम ने धर्म की स्थापना के लिए रावण का वध किया और संसार को यह संदेश दिया कि चाहे अधर्म कितना भी शक्तिशाली काहे ना हो उसका अंत निश्चित है। हनुमान जी हर क्षण अपने प्रभु के साथ रहे लेकिन उन्होंने कभी स्वयं को नायक नहीं बनाया। उनका सबसे बड़ा गौरव यही रहा कि वो स्वयं को केवल श्री राम का सेवक कहते रहे। इसलिए हनुमान जी का अवतार केवल युद्ध करे के लिए नहीं रहा। उनका जन्म भक्ति, सेवा, विनम्रता, शक्ति और धर्म की रक्षा का शाश्वत संदेश दे के लिए हुआ रहा। उन्होंने संसार को सिखाया कि सबसे बड़ा बल वही है जो अपने अहंकार के लिए नहीं बल्कि धर्म और प्रभु की सेवा के लिए समर्पित हो। यही कारण है कि आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से जय श्री राम और जय हनुमान का स्मरण करता है तो विश्वास किया जाता है कि पवन पुत्र अदृश्य रूप से उसकी रक्षा के लिए उपस्थित हो जाते हैं। हम समझते हैं आप ये कहानी पहले नहीं सुने होंगे, हमें लगा कि आपको ये बता दें। कहा कि किसी भी महान पुरुष का या किसी भी दिव्य शक्ति का अवतरण होता है कोई एक कारण से नहीं, वो कई कारण होते हैं उसके लिए और वो कहीं ना कहीं परमात्मा की सेवा के लिए और वो अभिमान से नहीं, अभिमान को तोड़ने के लिए होता है। आशा करते हैं आप इस बात से सहमत होंगे और अच्छा लगा होगा। नई बार सुनी है तो है कि नहीं, नई बात सुने तो अच्छा लगता है ना, फिर आप दूसरे को भी सुनाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, उन लोग का भी ज्ञान वर्धन होगा। यही तो अपने प्रोग्राम का कहीं ना कहीं लक्ष्य है कि अच्छी बातें सुनाएं, अच्छे ऐसे जिससे जीवन आगे बढ़े। अगर आप कोशिश करके असफल भी हो जाएं तो वो गलती नहीं है, लेकिन अगर आप कोई कोशिश ही नहीं करते तो वही सबसे बड़ी गलती। जीवन में कुछ ना कुछ तो करते रहिए। घमंड किस बात का है जनाब, ऊपर से लेमिनेशन हटा दो तो अंदर से सब इतने ही खूबसूरत है। जो देखते हैं ना पिंजरा हड्डियों का वही है। तो घमंड किस बात का है जनाब, ऊपर से लेमिनेशन हटा दो तो अंदर से सब इतने ही खूबसूरत है। सब कुछ खत्म हो गया ऐसा सोचकर कभी निराश मत होइए। इंसान की सीमाओं से परे कई चीज़ें ईश्वर के नियंत्रण में हैं, उस पर पूरा भरोसा रखिए।
हर दिन को एक नई शुरुआत समझिए, बीती हुई गलतियों से सीख लीजिए, लेकिन उन्हें अपने आज पर हावी मत होने दीजिए। सुनहरा भविष्य आज के कर्मों से बनता है। अगर आप कोशिश करके असफल भी हो जाएं तो गलती नहीं है, लेकिन अगर आप कोई कोशिश ही नहीं करते तो वही सबसे बड़ी गलती है। चलिए भाई, ये बात पर और एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बताएंगे। सुनिएगा ये फोन, आप सब तो समझ ही गए होंगे, फोनवा भी सुने कि हम लाइव कर रहे हैं, तो सुनिएगा गीत।

चल जिंदगी आज थोड़ी बात करते हैं, चल जिंदगी आज थोड़ी बात करते हैं, जो भी छूट गया है पीछे अब उसी से मुलाकात करते हैं, जो भी छूट गया है पीछे अब उसी से मुलाकात करते हैं। ख्वाहिशों का जो सिरा पल्लू में बांध लिया था, ख्वाहिशों का जो सिरा पल्लू में बांध लिया था, अब खोल गांठ उसकी उन्हें आबाद करते हैं, अब खोल गांठ उसकी उन्हें आबाद करते हैं। सब कुछ तो बटोर नहीं पाएंगे इन कांपते हाथों में, सब कुछ तो बटोर नहीं पाएंगे इन कांपते हाथों में अब, मगर चंद खुशियों को थामने की शुरुआत करते हैं। माना ढलती हुई उम्र और याददाश्त के झड़ते हुए पत्ते हैं, माना ढलती हुई उम्र और याददाश्त के झड़ते हुए पत्ते हैं, चलो इन्हीं के संग अपनी तमन्नाओं से मुलाकात करते हैं, अपनी तमन्नाओं से मुलाकात करते हैं। देखिए भाई, कहा है ना कि कई बार कुछ चीज़ें हम बोल नहीं पाते, कर नहीं पाते, जीवन में वो रहती है कि अगर ये कर लेते वो कर लेते, नहीं कर पाए तो कोनो बात नहीं ना भाई, अपने आप को सांत्वना दे दीजिए, बस ये आपकी लिमिट है और इससे ज़्यादा अपेक्षा कहीं से नहीं करना। और कल दोस्ती दिवस रहा, हम कहे ना सुनाएंगे, तो दोस्ती दिवस के आप सबको शुभकामनाएं। जिसके साथ खून का संबंध नहीं होता फिर भी प्रिय लगे वो है दोस्त, जिसके साथ खून का संबंध नहीं होता फिर भी लगे प्रिय वो है दोस्त, जिसके साथ दुनिया भर की बातें

कहाँ ना जाए वो है दोस्त, जिसके साथ कोई भूमिका बनाए बिना खुलकर बात करें और वो स्वीकार करे, वो है दोस्त। एक अरसे के बाद भी जिसको मिलते ही दिल झूम उठे, वो है दोस्त। दूर रहते हुए भी जिसके साथ दिल के तार जुड़े हो, वो है दोस्त। दोस्ती तो वो है मेरे दोस्त, जो बेजान जिंदगी में भी जान डाल दे, वो है दोस्त। संक्षेप में दोस्त वो है जो हर मुसीबत में हर तरह से साथ निभाए। मित्रता दिवस की शुभकामनाएं। दूसरा, जो आपको आत्मा समझ कर देखे वही सच्चा मित्र है। जो आपकी कमजोरियां पर नहीं विशेषताओं पर दृष्टि रखे वही सच्चा मित्र है। जो गिरने पर आलोचना नहीं हिम्मत दे वही सच्चा मित्र है। जो आपको बाबा की याद दिलाए वही सच्चा मित्र है। जो स्वयं भी श्रेय मार्ग पर चले और आपको भी साथ चलाए वही सच्चा मित्र है। सच्ची मित्रता स्वार्थ से नहीं, शुभ भावना, रहम दिल और निस्वार्थ प्रेम से निपटती है। और सबसे बड़ा सौभाग्य जब परम पिता शिव बाबा स्वयं हमारे सदा के सच्चे मित्र बन जाए, यही है सच्ची और अविनाशी मित्रता। तो देखिए भाई, हम दोनों हिसाब से बता दिए कि मित्रता का होती है। आप अपने आप से पूछे कि आपकी जिससे मित्रता है उससे का ये सब है, ये सब मिलता है? अगर नहीं तो भाई कोनो बात नहीं, जिंदगी है, सभी प्रकार के लोग मिलेंगे, हम जैसा चाहते वैसे ही हो, ये तो हो ही नहीं सकता ना, है कि नहीं? हर इंसान अपने अपने ही हिसाब से, अपने अपने स्वभाव से निभाता है अपने साथ जो संबंध होते हैं। लेकिन हम अपेक्षा ज़्यादा ना रखें। अपेक्षा जब टूटती है तो बहुत तकलीफ होती है। कल का क्या भरोसा? किसी की ज़िंदगी छोटी तो किसी की बड़ी होती है, किसी की ज़िंदगी छोटी तो किसी की बड़ी होती है। मौत किसी के दरवाजे पर तो किसी के सिर पर खड़ी होती है। कौन जाने किसी के हिस्से में कल का सूरज आएगा कि नहीं। जिससे मुंह फुलाकर बैठे हो आज, वो क्या पता कल मिल पाएगा कि नहीं। दिल से जुड़े रिश्तों को यूँ ना गलत फहमियों का शिकार बनाइए। दिल से जुड़े रिश्तों को यूँ ना गलत फहमियों का शिकार बनाइए। मन मुटाव की इस गांठ को इतना कस करना लगाइए। ये वक्त की रेत हाथों में, ये वक्त की रेत हाथों से पल में फिसल जाएगी। तुम आवाज़ लगाते रहोगे और वो बहुत दूर निकल जाएगी, वो बहुत दूर निकल जाएगी। है सही की बात नहीं? छोटी छोटी बात में घमंड हो जाता, छोटी छोटी बात में रिश्तों को हम तोड़ देते हैं। लेकिन सही में सही इंसान वही है जो सिर्फ स्वार्थ से नहीं लेकिन ईश्वरीय शक्ति और आत्मिक दृष्टि से देखे। एक गुरुकुल में गुरुजी ने अपने दो शिष्यों को बुलाकर गुरुजी ने कहा, पहाड़ की चोटी पर मेरे मित्र का आश्रम है, तुम दोनों वहाँ जाओ और उनका हालचाल लेकर वापस आओ। जाते समय ये दो बैग भी साथ ले जाओ। चालक शिष्य ने तुरंत खाली बैग उठा लिया, जबकि दूसरे सरल स्वभाव के शिष्य ने भरा हुआ बैग उठा लिया। गुरुजी ने भरे हुए बैग वाले शिष्य से कहा, रास्ते में जो भी ज़रूरतमंद मिले उन्हें इस बैग का सामान बांटते जाना। खाली बैग वाले शिष्य बोले, रास्ते में जो भी अच्छी वस्तु मिले उसे अपने बैग में रख लेना। यात्रा शुरू हुई। पहला शुरू शिष्य जरूरतमंदों की मदद करता गया। सामान बांटते बांटते उसका बैग हल्का होता गया और वो आसानी से आश्रम पहुंच गया। दूसरी ओर लालच में पड़े शिष्य ने रास्ते में मिले चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के और सोने की ईंटें अपने बैग में भर ली। बैग इतना भारी हो गया कि वो रास्ते में ही गिरकर बेहोश हो गया। लौटते समय पहले शिष्य ने उसे संभाला और आश्रम ले आया। गुरुजी ने समझाया, जो दूसरों के साथ बांटता है उसका जीवन हल्का और सुखी रहता है, लेकिन जो केवल जमा करता है वो अपने ही बोझ से दब जाता है। सीख का मिली, सच्ची खुशी संग्रह में नहीं बल्कि बांटने और दूसरों के काम आने में है।
उस सोचा कि हल्का बैग हम उठा लें, वजन नहीं करना पड़ेगा।

उठा के लेके भी जाना था और ले के भी आना था। और इस भाई सोचा जो गुरु की आज्ञा तो ठीक है, बैग भारी है तो भारी है, लेकिन बांटते बांटते वो खाली हो गया, वो हल्का हो गया, चढ़ भी गया और खाली हाथ खाली बैग लेके नीचे भी आ गया। कई बार जब हम चालाकी करते हैं तो वो चालाकी हमारे ही सामने आ जाती है। हम सोचेंगे ये जली रोटी है इसको दे दे, नहीं, घूम फिर के वो आपकी थाली में आ जाएगी। इस दुनिया की रीत है भाई, जैसा आप सोचते हैं उही प्रकार से बात आपके हिस्से में आ जाती है। आप अच्छा सोचते हैं तो आपके पास अच्छी अच्छी चीज़ें आती है, अगर आप गलत सोचते हैं तो ऑब्वियसली बात तो यही है कि वही आएगी, जो आपने दिया है वही आपके पास रिटर्न आएगा। तो क्या करिएगा, आप तो समझदार है कि नहीं, जो कुछ है बांटते जाइए, अपेक्षा किसी से मत रखिए। अपेक्षा रखने से जब अपेक्षा टूटती है तो बहुत दुख होता है। आपको बताया, किसी की ज़िंदगी छोटी तो किसी की बड़ी होती है, मौत किसी के दरवाजे पर तो किसी के सिर पर खड़ी होती है। तो ये बात को समझिएगा, ऐसे ही नहीं बात करते हैं, वो बात में बहुत गहराई होती है। अगर उन गहराइयों को आप समझिएगा तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छा होगा। मौन होकर एकाग्रता के साथ पढ़े, हे प्रभु जब सब साथ छोड़ देते हैं, जब कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, तब आपकी उपस्थिति ही मुझे संभालती है, क्योंकि आपके बिना जीवन की राहें अधूरी और डरावनी लगती है। आप ही मेरी शक्ति हैं, आप ही मेरा विश्वास हैं, आपके बिना ये जीवन कुछ भी नहीं है। जब मन थक जाता है और लोगों पर से भरोसा उठने लगता है, तब आपकी एक झलक ही नया साहस दे जाती है। अगर सच्चे दिल से आप भी भगवान पर भरोसा करते तो इस बात को औरों के साथ जरूर शेयर करिए, किसी अपने तक जरूर पहुंचाइए। प्रभु आपकी हर परेशानी सहन कर देंगे। अगर आप विश्वास रखते हैं तो अपने जीवन में उतारिए, दूसरों के जीवन में भी उतारिए, नहीं तो बाकी तो सब जानते ही करते हैं कि भाई हर इंसान अपने हिसाब से जिएगा, अपने हिसाब से ही करेगा। लेकिन जीवन का मतलब बांटना है, ना कि हर चीज़ इकट्ठा करें। अरे करके भी क्या करिएगा, कितना बार कहें और आप सब भी जानते हैं, हमारे हाथ से तो इस दुनिया से उस दुनिया में एक सुई भी नहीं जाएगी। जब कुछ नहीं जाएगा तो इतना जोड़ जोड़ के काहे अपने आप को बोझिल करते हैं, और फिर उसमें मोह हो जाएगा, बुद्धि उसी में भटका करेगी, और जब प्राण निकलेंगे तो उस चीज़ में बुद्धि जाएगी, अरे ये रह गया, अरे वो रह गया। कहने का मतलब, जीवन में जितने सरल रहें उतना अच्छा। चलिए भाई, ये बात पर एक गीत सुन लेते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, सुनिएगा।

0: आप हो रे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो
1: देखिए भाई आपको कहा कि कल दोस्ती दिवस रहा लेकिन दोस्ती दिवस के साथ साथ दोस्ती कैसी हुई ये भी सुनाया जैसे कि कृष्ण सुदामा की ये नहीं कि भाई जब मतलब पड़े तब दोस्त कहते ना गालों में गोश्त तो गली गली दोस्त अगर आपके जेब में पैसा रुपया है आप खिला पिला रहे हैं तो आपके बहुत दोस्त हैं नहीं तो कोई नहीं ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए जीवन में सच्चा दोस्त एक भी हो वो भी बहुत है दस ऐसे हो जो कि मन के काले हो ठीक हेलो
2: जी नमस्कार मदन भाई बोल रहा हूँ
1: नमस्कार मदन भाई जी कैसे हैं
2: बहुत बढ़िया से बढ़िया हूँ मस्त मजे में हूँ और बस याद की यात्रा बढ़ा रहा हूँ और आप सबको याद कर रहा हूँ रेडियो मदन को आज सुबह फोन नहीं किया था
1: जी
2: बारिश के हिसाब से और चारों तरफ
1: जी
2: थोड़ी बारिश आई थी इतनी नहीं आई है
1: जी
2: इतनी आ गई है इतनी नहीं आई है
1: जी जी
2: और इस तरफ पड़ी है बड़ोदरा है इस तरफ सूरत है
1: हाँ उधर गुजरात में बहुत ज्यादा है
2: हाँ हमारे मेहसाना तरफ इतनी भी नहीं है
1: हाँ,
2: शाम को आई थी
1: हाँ,
2: और बस रात को थोड़े आए थे फिर इसके बाद में नहीं आई अभी तो गर्मी पड़ रही है और चारों तरफ बादल छाए हैं ठंडा मौसम है और बस आपको नमस्कार करते हैं और हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार करते हैं और बस अभी समय भी कम है और चलते हैं फिर कल करेंगे रविवार को नमस्कार
1: नमस्कार ओम शांति थैंक यू देखिए भाई मदन भाई भले रेडियो नहीं सुनते काहे कि इस समय उनकी ड्यूटी रहती है लेकिन रात को 11 बजे सुनते हैं और फुनवा तो जरूर करते हैं ये प्रेम है सच्चा प्रेम कहते हैं आत्मी प्रेम जीवन में हर चीज तेज दौड़ने से नहीं मिलती बहुत पते की बात है जीवन में हर चीज तेज दौड़ने से नहीं मिलती कुछ अनमोल चीजें ठहर कर भी हासिल होती है जैसे सुख शांति और सुकून है कि नहीं सही बात धर्म चाहे जो भी हो अच्छे इंसान बनो हिसाब हमारे कर्म का होगा धर्म का नहीं इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है दया सेवा और प्रेम यही सच्चा धर्म है सच्चे साथ देने वालों की बस एक ही निशानी है कि वो जिक्र नहीं करते हमेशा फिक्र किया करते हैं ऐसे दोस्त मिल जाए तो जीवन संवर जाए जब दिल साफ होता है तो दुआएं खुद ब खुद साथ चली हैं जब दिल साफ होता है तो दुआएं खुद ब खुद साथ चली हैं किसी के लिए अच्छा सोचिए क्योंकि वही अच्छाई किसी दिन लौट कर आपके पास आती है ये तो कितनी बार हम आप लोगों को सुना चुके कि जो हम देंगे वही हमारे पास लौटेगा तो काहे ना हम अच्छा अच्छा सोचे अच्छा अच्छा दे सच्चे लोगों पर उतना ही भरोसा रखिए जितना दवाइयों पर रखते हैं वे भले ही थोड़े कड़वे लगे लेकिन जीवन में सबसे अधिक फायदेमंद वही साबित होते हैं सबसे कठिन आसन है आश्वासन सबसे लंबा श्वास है विश्वास सबसे कठिन योग है वियोग और सबसे अच्छा योग है सहयोग अपने आप से पूछिए हम क्या करते हैं सहयोग करते हैं विश्वास रखते हैं और अगर ये सब करते हैं तो आप सच्चे इंसान हैं जीवन में हमेशा सीखते रहिए क्योंकि सर्टिफिकेट से नहीं स्किल से जिंदगी चलती है डिग्री दीवारों पर लगती है हुनर दिलों पर राज करता है काहे कि आपके व्यवहार से ही आप समझे जाते हैं कि आप कैसे हैं तो क्या करिएगा ये तो आप जानते हैं बाकी माँ की वो प्यारी बीमारी नानी मैं कुल्फी और ले लूँ प्लीज चीकू ने फ्रिज खोलते हुए पूछा चीकू तुम खा चुके हो ना गलत बात है वो कुल्फी नानी की है हटो वहां से मैंने अपने 6 साल के बेटे को आंखें तरे ली लेकिन तब तक चीकू की नानी कुल्फी उसके हाथ में थमा चुकी थी कहा माँ मैं खास आपके लिए रघुरजी वाली कुल्फी लाई थी ये तो खा चुका था ना अरे बेटा जब से घुटनों में दर्द बढ़ गया है ना डॉक्टर ने ठंडी चीज़ें खाने से मना कर दिया है मैंने सिर पकड़ लिया। माँ की वही पुरानी बीमारी झूठ बोले कि बचपन से ही ऐसा होता आया है। बस माँ को ये पता चल जाए कि हमें कहाँ अच्छा लगा तो अपने हिस्से की चीज़ देने के लिए कोई ना कोई बहाना निकाल लेती थी, अपने हिस्से की चीज़ देने के लिए कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती थी। इतना बुरा बता देती है कि सामने वाला मजबूर होकर वही चीज़ ले ले। माँ मटर पनीर और है का बहुत अच्छी बनी, हाँ मेरी कटोरी से ले लो, मुझसे तो खाई नहीं जा रही, मिर्च बहुत है। एक बार पापा कितने मन से गुलाबी कढ़ाई वाला शॉल लाए थे, बड़ी बुआ को बहुत भा गया और माँ का फिर वही नाटक, अरे रख लो जीजी, मुझे तो ये का रंग ही बहुत खराब लग रहा है। उसके बाद दो दिनों तक मैंने माँ से बात नहीं की थी। पापा ने समझाया था, बेटा तुम्हारी माँ ने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, ऐसी ही है वो। चीकू की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी, एक दो दिन में वापस जाना था, मन अजीब सा हो रहा था। शाम को कुछ साड़ियां खरीदी, उनमें से हरी बंदेज की साड़ी माँ को बहुत पसंद आई, बार बार उलट पलट कर देखती रही। माँ ये आप रख लीजिए, मैं दूसरी ले लूँगी। अरे नहीं रे, ये हरा रंग ना बाबा, बहुत चटक है। सुबह निकलना था, सारी पैकिंग हो चुकी थी, मैं परेशान थी। कहाँ हुआ बेटा, कहाँ ढूंढ रही हो, माँ ने पूछा। कुछ नहीं माँ, वो रसीद नहीं मिल रही, बिना रसीद साड़ी वापस नहीं होगी, मैंने पर्स रटोलते हुए कहा। लेकिन वापस काहे करनी है, तुम तो अपनी पसंद से लाई थी। हाँ माँ, लेकिन चीकू के पापा को हरी वाली बिल्कुल पसंद नहीं आई, फोटो भेजी थी, बोले तुरंत वापस करो, लेकिन बिना रसीद। अगर वापस ही करनी है तो मैं रख लेती हूँ। माँ साड़ी लेकर अंदर चली गई, दरवाजे पर पापा खड़े मुस्कुरा रहे थे, मेरी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। लग गई माँ की बीमारी तुम्हें भी, पापा ने सिर पर हाथ फेरा, सदा खुश रहो। मैं भी यही सोच रही थी, माँ को उनकी पसंद की चीज़ देने के लिए मुझे उन्हीं का तरीका अपनाना पड़ा और वो कारगर भी हुआ। आज ये भी समझ में आया कि माँ ऐसा क्यों करती है, जब कोई अपना हमारी चीज़ लेता है तो जो सुकून मिलता है वो ऐसा होता है जैसे वो चीज़ हम खुद ही इस्तेमाल कर रहे हों, बल्कि उससे भी ज़्यादा। अब मुझे बस इंतज़ार था माँ को वो साड़ी पहन भी देखने का। देखिए भाई कितना प्रेम होता है, माँ के गुण बेटी अपना ही लेती है, ये है प्रेम। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, समय हो गया है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।
3: अभी बजे हैं दोपहर के 12, एक मिनट का हो आत्मचिंतन।
4: शांति की शक्ति से शांति जग में ला।
3: अभी बजे हैं रात के 12, एक मिनट का हो आत्मचिंतन।

नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया। इस कार्यक्रम के तहत हमें बहुत खुशी है क्योंकि राजकीय विद्यालय और ईश्वरीय विद्यालय दोनों विद्यालय का सहयोग से विद्यार्थी विकास में बच्चों का टैलेंट को प्रतिभा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज हम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धमसरा में पहुंचे। बहुत खुशी लग रहा है। हर दिन की तरफ आज भी विद्यालय का आवाज, बच्चों का आवाज सुनने को मिलेगा। बच्चों के अंदर में जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, जो भाव है, भावना है, कविता का माध्यम से, गीत का माध्यम से, प्रार्थना का माध्यम से और भाषण का माध्यम से जन जन तक पहुंचाएंगे। क्योंकि सरकार का जो मंशा है, आसपास जो गतिविधि हो रही सब तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच, एक स्टेज देती है जिसका चलते बच्चे आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और इस तरह मौका जब उनको मिलता है तब बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो उनके पास जो छुपी हुई प्रतिभा है जन जन तक पहुंचाते हैं। रेडियो मधुबन इस तरह पुनित काम करने के लिए सभी सहयोग देते हैं और सरकार भी और प्रशासन, लोकल प्रशासन भी सहयोग देते हैं और विद्यालय के स्टाफ और प्रभारी इस कार्यक्रम को सहयोग देते हैं। तो देर किस बात की, शुरुआत करते हैं पहला प्रस्तुति और इस कार्यक्रम को साक्षी दृष्टा रूप में हमारा मैम भी देख रहे हैं, सबको कोऑर्डिनेट किए। मैम अपना परिचय देंगे, मैम का आवाज सुनकर बच्चे भी थोड़ा

0: समाप्त हो जाएंगे बच्चे को बोलने के लिए उमंग उत्साह, छोटे छोटे बच्चे उनका तोतल तो आवाज में सुनने को मिलेगा, लेकिन पहले मैम को स्वागत करते, मैम अपना परिचय देंगे।
1: मैं श्रीमती अशोक धायल, सब्जेक्ट इंग्लिश है
0: जी मैम,
1: और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धामसरा
0: जी,
1: और रहने वाले सीकर डिस्ट्रिक्ट से हूँ।
0: मैम आज सीकर जिला से आप रोड में आए हैं, तो आपको कैसे महसूस होता है यहाँ का और वहाँ का, बच्चों का डिफरेंस देखे होंगे सीकर का और आप रोड के?
1: यहाँ पे थोड़ा सर मुझे ठीक नहीं लगता है, सीकर में एजुकेशन का काफी फर्क है, बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते भी हैं, बच्चों को कुछ कहा जाता है ध्यान से सुनते भी हैं और काम भी करते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चों को कितना भी बोल दो कितना भी कह दो ये बच्चे बहुत ध्यान देने में बहुत कमी रखते हैं, और हमारे चिल्लाते रहो लेकिन इनके कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ये पढ़ाई में ध्यान देते हैं, जो पढ़ना होता है स्कूल में पढ़ते, घर पे कुछ भी पढ़ के नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम पूरे स्टाफ इनके साथ कोशिश करते रहते हैं, 7-8 घंटे स्कूल रहते हैं इन्हीं के लगे रहते हैं कि कैसे भी बच्चे पढ़े कैसे भी आगे आए, पूरी मेहनत रात दिन इनमें लगे रहते हैं। जी
0: सही बात, कितना सुंदर भाव से आपने बताया, और खास कर जैसे आपने बताया आप भी कभी बच्चे होकर पढ़ रहे थे, उस समय भी बच्चे जब पढ़ते थे आप भी
1: जब
0: पढ़े
1: ये हुए? बच्चे 1 से 8 तक की क्लासों में पढ़ते हैं तब हमारा कहना भी मानते हैं और जितना कहते हैं उतना पढ़ते भी हैं, लेकिन जैसे बच्चे 9 से 12 तक पहुंच जाते हैं बच्चे एक भी सुनते नहीं है सर।
0: तो इसका राज क्या, क्यों सुनते नहीं बच्चे?
1: क्यों नहीं सुनते, इनके दिमाग से सारी बातें ऊपर से जाती है, न टाइम से स्कूल आना पसंद करते हैं, न ही ये कोई काम करना चाहते हैं।
0: ये तो शिकायत बहुत बड़ी बात से,
1: इतनी बड़ी बात ही नहीं है सर, ये हम परेशान हो जाते हैं इनको, आप ही नहीं देखा हम एक गाने के लिए सबको इनको हाँ हाँ करके आगे, लेकिन एक गाना नहीं सुना पाए
0: तो,
1: और सबको आता है इनको गाना लेकिन आगे नहीं आना चाहते,
0: इसे पीछे थोड़े रहेंगे आगे तो बढ़ना, इसलिए तो सरकार भी आपका पीछे कितना मेहनत करते हैं। और मैम
1: और हमारी स्कूल की तो प्रिंसिपल मैडम इतनी एक्टिव है, इतना समझाती है इनको, सर हम एक चोटी के लिए इतने परेशान हो गए लेकिन ये इतनी लड़कियां हैं कि 2 चोटी नहीं बना के आ सकती,
0: लेकिन अभी तो देखिए दीदी बहुत सुंदर,
1: ये तो पूछो इनको हम कितना चिल्ला रहे हैं कितना कर रहे हैं फिर भी हमारे ये परेशान करने में लगी रहती है,
0: लेकिन अभी तो मुझे तो दिखाई दे रहा सबका
1: ये सुबह सुबह इनसे करवाते आते स्कूल में आने के बाद ये मैडम करवाती है इनसे,
0: देखो कितना उसका दिल में कितना लगा होगा मैम को, इतना दूर से आए तो उनका जो जिसके लिए आए वो नहीं दिखाई देगा तो उनको तो गुस्सा आएगा
1: सर,
0: ना?
1: मुझे तो बहुत दुख होता है ये बच्चों को जब मैं इतना पढ़ाती हूँ, मैं इनको 5 मीनिंग याद करने के लिए देती हूँ कि रोज तुम 5 मीनिंग याद करके सुना दिया करो, रोज 5 मिनिंग ज्यादा नहीं डिमांड करती हूँ इनसे, फिर भी इनसे 5 या 1 मीनिंग मेरे को सुनाने के लिए राजी नहीं होती।
0: जैसे अपना बच्चे कुछ शैतान करेंगे तो माँ बाप कितना दुखी होते, तो विद्यालय का जो शिक्षक गण मैम बस प्रिंसिपल जो सभी स्टाफ है आपके लिए कितना जी जान लगा कर देते, उनका जीवन आपके लिए सैक्रिफाइस किए और इतना मेहनत किए उनका समय में आपको देने के लिए, आप लेने के लिए जब पीछा नहीं करेंगे और उसको आत्मसात नहीं करेंगे, उसको प्रैक्टिकल बात नहीं मानेंगे बड़ों का, तो जाकर क्या करेंगे, इसलिए अभी समय मैम इसलिए अपना बात पूरा करें, हर स्कूल में ऐसे मैम होना चाहिए, क्योंकि बच्चे मित्र अपना बच्चे खराब होंगे तो हमें दुख होगा,
1: बहुत दुख होता है सर, हमारे बच्चे जब हमारी नहीं सुनते, हम क्लास में आते हैं तब इनके कोई पढ़ी नहीं है कि मैडम आई है तो हम कुछ बैठे
0: हैं शांति से, जो हुआ हुआ है जो हो गया आज से ऐसे संकल्प करेंगे, सही बच्चे संकल्प करेंगे ना, हम आज से जरूर बड़ों का बात मानेंगे, वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो हमारा भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है, अभी से हम मानेंगे, माँ बाप का बात भी मानेंगे, हमको कोई बोलने का पहले हम खुद करेंगे, जो पहले करते हैं उसको देवी देवता कहते हैं, बोलने के बाद भी जो नहीं करते हैं, बोलने के बाद भी नहीं करते उसको क्या बोलते हैं, अलग नाम है उसका, उसको बोलना नहीं चाहते हम, जो बोलने के बाद करते हैं वो तो मनुष्य है, बोलते हैं तो करते हैं लेकिन बोलने का पहले जो करेंगे ना उसके लिए शाबाश वो चाहिए हमें, इसलिए धर्मसरा स्कूल के आगे जब आएंगे रेडियो प्रोग्राम के लिए उस समय जरूर मैं आप सबको मैंने चेहरा देख रहा हूँ और जरूर बोलने का पहले ऐसे रेडी रहेंगे, मैम को बोलना नहीं पड़ेगा, मैम को मेहनत करने के लिए नहीं देंगे, आप खुद मेहनत करेंगे, मैम को पूछना मैम हम क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते और क्या कर, इसे पूछो वो देने के लिए तैयार है, आपको टिप्स देंगे आगे भी आगे जा पाएंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम को, अपना परिवार सोचकर अपना बात को बताया, लेकिन ऐसे होना चाहिए। और आप सब बच्चे हमारा सच्चे है और बहुत अच्छे बच्चे परियां है सभी, और आपका पास वो भाग्य है, लेखा आपका पास लिखा हुआ है, लेकिन उसको थोड़ा उजागर करना है, बस हो जाएगा। सबका अंदर में विशेषता है, जैसे मैम बोल लेते सबका पास विशेषता है, लेकिन क्या है थोड़ा सा आगे हमें आना है। चले बहुत बहुत धन्यवाद सबको, उमंग उत्साह दिला दिए और एक वार्म अप हो गया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बच्चों का आवाज सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। यह था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धमसरा का, खासकर मैम का अपना दिल का बात।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति हमारा साथ प्रार्थना के रूप में शुरू करेंगे। कि हर विद्यालय में प्रार्थना सत्र में कोई भी कार्य शुरू करते तो माँ सरस्वती को व भगवान को अल्लाह को खुदा को याद करते तीन छात्र उपस्थित है तो उनको भी स्वागत करते हैं। अपना नाम बताएंगे और कौन सा फल चाहते हैं।
2: मेरा नाम वर्षा है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दामसरा।
1: क्या बात है वर्षा, हमारा कितना नाम सुंदर है। वर्षा का दिन में वर्षा, बारिश तो हो रहा है और वर्षा हमारा इस कार्यक्रम को सजा रहे और उसका दो दोस्त भी है। हेलो, नाम बताइए प्लीज।
3: मेरा नाम है अंजलि, मैं कक्षा 9 से हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दामसरा।
1: गुड, ऐसे होना चाहिए आवाज में, दम है। भले अनेक तारा है लेकिन एक चांद पूरा रात का उजाला दे देता है। तो हमारा तीन छात्र जो पूजा और वर्षा और एक,
4: मेरा नाम दुर्गा है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दामसरा।
1: क्या बात, कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं। कौन बोलता भाई बच्चे नहीं आते, लेकिन मैम का उमंग उत्साह देखकर बच्चे भी अपना उमंग उत्साह को बढ़ाए और डांट खाए तो आगे बढ़ गए। तो पूजा एंड टीम को एक प्रार्थना का गीत गाने के लिए रेडी।

0: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और शुरुआत जब अच्छा होता है तो अंतिम भी अच्छा होगा, ये हमें विश्वास है, क्योंकि बच्चे का अंदर में जो हुनर है, जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, अभी उनका आवाज जब सुन रहे थे कितना सुंदर आवाज, और कंठ में माँ सरस्वती जैसे विराजमान है, ऐसे उनको लग रहा था। और बड़े होकर तो अच्छा अच्छा आशा रखते हैं, तो बड़े होकर क्या बनेगी वर्षा, बड़े होकर मैम जैसे कितना उमंग उत्साह से सीकर जिला से आकर आपको देने के लिए आए, उनका जो शिक्षा है आपको भी शिक्षित बनाने के लिए दिए, तो बड़े होकर क्या बनेगी वर्षा?
1: मैं बड़े होकर टीचर बनूंगी।
0: वाह, टीचर के लिए ताली बजाओ, हमारा बहुत अच्छा बच्ची हमारा टीचर बनेगी। टीचर होते तो बहुत अच्छे से मैम कितना दिल से अपना पढ़ाई को आप तक पहुंचाते हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए उनका कदम पर चल लेंगे तो आप भी बड़े बनेंगे, है ना वर्षा? बड़े होकर तो टीचर बनेगी। और घर में कौन कौन है?
1: माँ है, बहन है, पापा है,
0: कौन लग,
1: है।
0: सबसे अच्छा कौन लगते हैं?
1: पापा।
0: पापा, वाह, पापा तो पापा होते हैं, माँ तो माँ होते हैं, उनका बिना अधूरा है, जिसका माँ बाप है तो सब कुछ है, भगवान तुल्य, है ना? बाप को हम भगवान कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं, है ना? तुम्हें वो माता सब पिता तुम्हें वो कहते हैं, हमारा माँ बाप हमारा भगवान तुल्य है ना वर्षा?
1: है।
0: हाँ, तुम बड़े कर क्या बनेगी?
1: टीचर।
0: टीचर ही टीचर, तो जिसको आवश्यकता है तो सीकर जिला को हम याद नहीं करेंगे, अपरोड में टीचर मिल जाएंगे। मैम आपका टीचर का पोस्ट को सभी लोग लाइक करते पसंद करते हैं, क्या विशेषता है जो टीचर बनने के लिए आप भी टीचर बने, क्या मेहनत की मैम आप? ऐसे बच्चों का समय में आपका उमंग था जिसे हम टीचर बने का भी सोचा था, मैम आप कैसे टीचर बने, बच्चों को एक प्रेरणा मिलेगा, आप कितना मेहनत किए?
2: मैंने तो बहुत मेहनत करी थी, लेकिन ये नहीं पता था कि घर से 600 किलोमीटर दूरी पे मुझे स्कूल मिलेगा, जो बहुत कुछ खो दिया इस जॉब के चक्कर में, ना परिवार के साथ रह पाई, ना बच्चों की देखरेख कर पाई, ना अपना भविष्य कहीं संभाल पाई मैं। हकीकत पूछा जाए ना सर, तो मैं मेरे जॉब से बहुत दुखी हूँ कि जहाँ हूँ वहाँ मैं संतुष्ट भी नहीं हूँ, और जिस पोस्ट को लेके यहाँ बैठी हुई उससे भी खुश नहीं हूँ मैं।
0: देखिए मैम, ये तो आपने जो बताया, मैंने और कल लेकर स्कूल में भी वो भी दूसरा
2: टीचर बनने के लिए बहुत मेहनत करी थी, ऐसे ही नहीं पहुंचे थे आरपीएससी से टेस्ट पास करके, इतनी रातों दिन रात दिन एक करके, लेकिन जहां पहुंचे वहां बहुत परेशान हुए।
0: देखिए आपका लेखा यहां पर लिखा हुआ है तो आपको यहां पर ही पालन करना पड़ेगा, कुछ समय बाद ये चेंज हो सकता, हमेशा नहीं रहता।
2: नहीं है सर, ये हम 5 साल का टाइम पीरियड दिया गया था, फिर 10 साल बढ़ा दिया, 15 साल कर दिया, आज 20 साल हो गए यहाँ इतने दूर बैठे हुए।
0: अच्छा,
2: अब तो हमारे भी तो घर परिवार वाले भूल गए हमें कि हमारे कोई बहू भी है, बेटी भी है, कोई जानते ही नहीं है हम लोगों को।
0: लेकिन अच्छा लग रहा है,
2: हम लोग यही इन बच्चों के लिए समर्पित है सारे दिन।
0: जी जी,
2: जो पैसे कमाते हैं वो भी हम सारा यहीं खर्च कर देते हैं, इन्हीं बच्चों के लिए खर्च कर देते हैं, स्कूल है तो ऐसे आर्थिक तंगियों से जूझ रहे हैं कि एक एक चीज के लिए हमें खुद ही अपने पेमेंट से बच्चों की व्यवस्था करनी पड़ती है।
0: जी जी,
2: जब उत्सव होते हैं तब भी हम अपने ही पैसों से लाकर स्कूल की व्यवस्था करते हैं, सरकार की तरफ से हम ऐसी गिनी चुनी चीजें मिलती है जो हम बच्चों को दे ही नहीं पाते हैं बिल्कुल भी।
0: तो सभी बातें दिल का बात रखें कि हमारा प्रशासन तक ये पहुंचे, क्योंकि जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे प्रशासन हो चाहे भामाशाह हो, क्योंकि कोई भी जो चीज होता है उसको दिल से इस माध्यम से, ये तो कम्युनिटी रेडियो है, अपना रेडियो है, रेडियो का माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए, अपना दुख हो चाहे सुख हो सब तक पहुंचे, जो निवारण हो, कोई दुखी नहीं रहे, ये हमारा भावना है। हम दुख रहेंगे तो हमारा बच्चे कैसे रहेंगे सुखी, इसलिए दुख और सुख, हम दुखी रहेंगे तो बच्चे भी दुखी रहेंगे, हम सुखी रहेंगे तो बच्चे भी सुखी रहेंगे, इसलिए सभी स्टाफ हो चाहे हमारा बच्चे सुखी रहे, ये हमारा भावना है। हाँ, हिसाब किताब किसका कहाँ पर जो भी होता है, कुछ कार्मिक अकाउंट भी होता है, जैसे हम कर्म को देखेंगे तो जरूर हिसाब किताब जब चुक्त हो जाएगा वो तुरंत वहां से किस हिसाब बच्चों का साथ आपका किसी जन्म में लगाव झुकाव है, इसलिए आज आपका बच्चों का साथ हम रूबरू हो रहे, नहीं तो आप कहाँ और हम कहाँ, ये तो हमारे हाथ में नहीं कि आपका हाथ में, आप कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रहा, इसका मतलब और कुछ दिन थोड़ा इतना सहन किए तो और कुछ दिन सहन करना पड़ेगा लगता मुझे, और हो सकता कल भी आपका प्रमोशन होकर जा सकता आप जहाँ चाहते, क्योंकि ये तो अपना संकल्प का ही पावर है, तो ये अपना अपना जगह में है, लेकिन हमारा कहने का मतलब जहाँ भी रहे जो भी वो परिस्थिति तो आएगा हर जगह में, तो वो परिस्थिति को अपना स्वस्थिति में टीका रहना चाहिए, स्वस्थिति मतलब खुद को कंट्रोल करना, जो भी परिस्थिति है उसको मुकाबला करना सीखना चाहिए, क्योंकि कभी किसका पास क्या भी आता, हर इंसान का पास अलग अलग आता है ट्रबल, बच्चों का पास भी आज रिकॉर्डिंग करने के लिए तो उनका समस्या आ गया है, बोला हम तो नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन समय आया तो बच्चे
2: तो बच्चे तो अभी ये आप आए हो तो ये बस हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि देखे मैडम क्या कर लेवे, सर क्या कर लेवे। ऐसे तो खूब गाने गाते हैं, ये कोई कमी थोड़ी छोड़ते हैं।
0: देखिए अभी पहला प्रस्तुत में कितना सुंदर सा आवाज में दिए वर्षा और उनका टीम। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हमारा छोटे छोटे परियां भी बैठे तो उनको कौन भूल पाएंगे। और राकेश सर और मैम को भी धन्यवाद देते हैं बच्चों को लेकर आए रेडियो प्रोग्राम में, क्योंकि आकाशवाणी में जब आते हैं बच्चे तो उनका परिवार जब सुनेगा अरे मेरा बच्चा पढ़ाई का साथ साथ ऐसे रेडियो में आते हैं, ये कम बात नहीं है। क्योंकि उसके लिए जाने के लिए बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है। सरकार तो बच्चों के लिए ग्रामांचल बच्चों को एक रेडियो स्टेशन दिया है, ऑल इंडिया रेडियो, तो बच्चे नहीं जा पाते हैं कि कमर्शियल रेडियो में जा नहीं पाते। ये सामुदायिक रेडियो कम्युनिटी रेडियो में कम्युनिटी का आवाज के लिए बच्चों को मंच मिलेगा। और हमारा छोटी छोटी नन्हियां परियां तो उपस्थित है तो उनको भी लेंगे, लेकिन अल्प विराम का बात सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: रेडियो मधुबन सुनने वालों को सुरेश ओबेरॉय का नमस्कार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: चलिए कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए हमारा साथ नन्हिया परिवार आए, छोटे छोटे बच्चे टोतल टोतले आवाज में, पहली क्लास के, दूसरी क्लास के, तीसरी क्लास के सब बच्चे आए। सभी अपना अपना नाम बताएंगे खुशी से जब सुनेंगे रेडियो में आहा की आवाज है। हेलो, नाम बताइए।
2: मेरा नाम हीना है, मैं कक्षा चौथी में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दामिश्रा।
1: अरे क्या बात, मैम जो कंप्लेन कर रहे थे बच्चे, अब पूरा उम्मीद गुस्सा आ गया भाई। मैम का इज्जत को हमको रखना, मैम हमको इस स्कूल से नाराज थे, लेकिन हमारा बच्चे आज नाराज नहीं करेंगे मैम को, नहीं करेंगे, है ना मैम? जो चाहते हैं वो करना है। ओके, हमारा बहुत अच्छा बच्ची है, ऐसे बुलंद आवाज में बोलना है, डरना नहीं, हाँ झिझक नहीं।
2: मेरा नाम है दुर्गा, मैं चौथी कक्षा पढ़ती हूँ। मेरा विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दामिश्रा।
1: क्या बात, एक्सप्रेस पूरा, दुर्गा काली सब यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट।
3: मेरा नाम है गुड़िया, मैं कक्षा पांचवी में पढ़ती हूँ। मेरा नाम है सीमा, मैं कक्षा पांचवी में पढ़ती हूँ। विद्यालय का उच्च माध्यमिक विद्यालय दामिश्रा।
1: वाह।
4: मेरा नाम है रमिता, मैं कक्षा चौथी में पढ़ती हूँ।
1: कौन बोलता है भाई, ग्रामांचल वाले आदिवासी बच्चे बोल नहीं पाते, झिझक करते, लेकिन बड़े बच्चे शर्माते, लेकिन छोटे बच्चे से सीखो। नाइन्थ क्लास का बच्चे, तीसरी क्लास, दूसरी क्लास का बच्चे कैसे आवाज से बोलते हैं, मैम सही बोल रहे थे। पहले क्लास से आठवीं तक मानते, नाइन्थ हो गया बस पढ़ाई हो गया, ऐसे नहीं करना। हाँ।
5: मेरा नाम है भावना, मैं कक्षा पांचवी में पढ़ती हूँ।
6: वेरी गुड।
7: मेरा नाम है सिंजल, मैं कक्षा चौथी में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दामिश्रा।
1: हो गया, सभी का हो गया। देखो ये आवाज जब सुन रहे श्रोता मित्र, हो सकता है उनका माँ बाप भी सुन रहे होंगे, उनका बड़ी बहन बा, बड़ा भाई बा, छोटे काका दादा दादी सुन रहे होंगे, तो सुनेंगे जब उनका आवाज को, तो वो आवाज ही उनका पहचान होगा। क्योंकि रेडियो का माध्यम से, चाहे इंटरनेट का माध्यम से, चाहे FM का माध्यम से, लिंक का माध्यम से, एप्लीकेशन का माध्यम से सुन रहे, जहां पर भी भारत का कोई भी कोने में हम सुन सकते इस कार्यक्रम को, क्योंकि शाम को 7 से 8 बजे हमारा श्रोता सुनते हैं, और ये सामुदायिक आवाज। चलिए एक प्रस्तुति सुनाएंगे, सब रेडी बच्चे हैं, शुरू।

0: और एक गीत। अरे वाह क्या ऐसे होना चाहिए। और वहां मोर खुद बोले सर और एक गीत गाओ। मैं गाओ गाओ क्यों नहीं भाई, किंतु एक गीत में हमें बहुत खुशी मिल रहा है क्योंकि स्कूल बहुत दूर है हमारा घर से, घने दूर है, बहुत दूर है, तब फिर हम कैसे जाओ। सरकार सुन रहा है, जहाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए जैसे आंगनबाड़ी जल्दी जल्दी अपना आसपास रख दीजिए, और आज प्राइमरी स्कूल भी साथ में रहेगा आसपास, तो बच्चे पढ़ने के लिए भरवाने के लिए आ जाएंगे। इसलिए वैसे ज्यादा दूर में बच्चे दिक्कत होता है, बारिश का सीजन में दिक्कत होता है, गर्मी के टाइम में भी दिक्कत होता है। इसलिए जितना नजदीक स्कूल मिलेगा बच्चे तुरंत जाएंगे, और सीसी रोड मिलेगा तो अच्छा है, कीचड़ नहीं, आराम से जा पाएंगे। ठीक है चलिए, और एक प्रस्तुति हमारा वर्षा सुनाएगी सभी टीम के साथ, फिर और एक गीत। कौन सा गीत गाएंगे वर्षा?
1: हम सब बच्चों को गिनती सिखाएंगे।
0: अरे वाह बहुत अच्छा, सुनाओ।
1: हाँ।

0: बच्चे बोलो पास, हमने लाया नाच, थोड़ा हम भी नाचेंगे, थोड़ा तुम भी नाचोगे, थोड़ा हम भी नाचेंगे, थोड़ा तुम भी नाचोगे।
1: क्या बात, ताली बजा भाई बच्चों के लिए। बस ताली में कोई कंफ्यूज नहीं है, और बच्चे छोटे बच्चे देखो उनके पास कितना उमंग है। वो खुद बोले सर और एक गीत गाओ, मतलब गाओ गाओ क्यों भाई। हाँ हमारे वर्षा के लिए बहुत अच्छा उमंग उत्साह है। घर में कौन कौन है ना?
0: मेरा दादा है, मम्मी है, पापा है, बहन है, भाई है।
1: रोटा कौन बनाता है? रोटा
0: मम्मी।
1: अब तुम बनाती कभी?
0: नहीं।
1: तुम आती नहीं? क्या आती तुमको बताओ देखिए।
0: हमको कविता आता है।
1: और मगरा जाते हैं? मगरा में मगरा में क्या मिलता है? बकरी चराने के लिए जाते। देखो हमारा बच्चे माँ बाप का हेल्प करते हैं, बकरा बकरी को मगरा में जाते, घास वगैरह लेकर आते हैं। बहुत अच्छा सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बड़ों का भी प्रस्तुति सुनेंगे। वर्षा वर्षा नाम ले रहे, वर्षा रेडी रहे और एक प्रस्तुति के लिए मैम, फिर उमंग उत्साह से आपको फिर दिलाएंगे डोज। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी मिल रहा है, क्योंकि बच्चे का पास थोड़ा सा जब उमंग उत्साह होता है, एक बार गाड़ी स्टार्ट हो जाता है ना तो पिकअप पकड़ता है। तो बच्चे पहले पहले मना कर रहे थे, लेकिन जब मैम का डोज पड़ा तो सभी ने बच्चे रेडी हो गए और वांस मोर करके प्रोग्राम रेडी हो रहा है। सभी को धन्यवाद देते हुए अगला प्रस्तुति के लिए रेडी हमारे साथ वर्षा एंड पार्टी आए हैं, तो सुनाएंगे।

बहुत अच्छा सुंदर प्रस्तुति के लिए, और लय और ताल का साथ गाते हैं। बच्चों का बल गीत को नहीं देखना, उनका जो भाव और भावना, उनका जो शब्द में गला में सरस्वती का जैसे बैठा हुई ऐसे लग रहा है, क्योंकि उनका सुर लय और ताल का साथ जो गीत गाते हैं तो खुशी लगता है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद।

0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ और एक छात्रा उपस्थित है, तो अपना हम बात को रखेंगे। पहले आप,
1: मेरा नाम पांडरी कुमार, एक कक्षा 9 में।
0: चलिए एक प्रस्तुति सुनाएंगे, सब रेडी बच्चे, शुरू।

0: रही।
1: चल इस कार्यक्रम को और साथ देने के लिए और एक प्रस्तुति सुनाओ।
2: मेरा नाम है अंजलि कुमारी, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तामसरा। मैं एक आपको कहानी सुनाना चाहती हूँ, गलती हो तो क्षमा करना। एक दिन बोले मुझे नानी, मैं कहती तुम सुनो कहानी। एक खेत में जूता पड़ा था, उबड़ खाबड़ बहुत बड़ा था। कोई चिड़िया बीज उड़ाती, उड़ती उड़ती गई डाल पर। हवा डरा की धूप चलाती, मिट्टी उसको खूब दबाती। मिट्टी की गोदी में रहकर सूरज को किरणों में जलकर। कहा बीज ने हाय अकेला, पर नडर भले अकेला।
1: अंजलि बड़ा कर क्या बनेगी अंजलि?
2: मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ।
1: और घर में डॉक्टर है कोई?
2: नहीं नहीं, थोड़े गांव में है।
1: गांव में है डॉक्टर? डॉक्टर का काम क्या होता है? मरीज को
2: सुई लगाना।
1: सुई लगाते हैं, इलाज करते हैं। और तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन है?
2: मेरा दोस्त सीमा।
1: सीमा, सीमा अच्छा दोस्त है। कौन सा क्लास के सीमा?
2: 9th
1: क्लास। और कौन सा गाँव से आप आते हैं?
2: तामसरा गांव से।
1: चलिए हमारा साथ अब छोटी सी परी भी है, तो वो भी अपना गीत गाएगी, है ना? गाओ
3: ला ला।

0: यार
1: ये कहाँ से कॉलेज निकाल देते, सब कहाँ से सीखते, मोबाइल से ना, घर में कहाँ से सीखते, कहाँ से सीखते,
0: स्कूल में,
1: स्कूल में सब होता है। हाँ, कब?
0: झंडे पे,
1: झंडा पे होता है। और कहाँ से आती तुम, कौन सा फली? भमरिया फल। और कौन कौन है भमरिया फल का, दो चार लोग का नाम बताओ, काका काकी का नाम बताओ।
0: गोवा राम जी।
1: और तुम बताओ?
0: विक्रम,
1: विक्रम जी। और तुम बताओ?
0: धर्मी देवी जी।
1: धर्मी देवी। और तुम बताओ?
0: गीता देवी।
1: गीता देवी। और पापा का नाम?
0: रमेश कुमार जी।
1: क्या करते रमेश जी?
0: खेती।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा, धन्यवाद, आभार।

0: बरसत झर जत सावन आयो रे।
1: का बात है रतन, तू तो सावन का गीत गाए रही है।
0: कंचन आओ भाई आओ, राम राम
1: राम राम राम राम, राम, राम थने ही राम राम है।
0: हाँ भाई देख, सावन महीनो लाग गयो है। और सावन महीना लाग्या नहीं अत्रा दन वे गयो, मैं तो सावन को पूरा ही आनंद ले रही हूँ, अपना श्रोता बंधु भी लेता भी।
1: हाँ।
0: तो अपना श्रोता बंधु को स्वागत करा हाँ घावरी बातें कार्यक्रम में।
1: सुनता रहो
0: मुस्कुराता रहो,
1: रेडियो मधुबन
0: 107.8 FM। तो कंचन, सावन महीना की मजा तो पड़ रही ना?
1: हाँ खूब मजा पड़ रही है, मजो आ रही है। सोमवार चालू वेरिया है हमें, तू सोमवार करेगा कोनी?
0: हाँ सोमवार करा ना, सोमवार ने तो मंदिरा में मेलो लागे, आराम दर्शन करवाई जावा, और आरती सत्संग कीर्तन सब कर रहे हो। जिस तो मने तो गीत याद आ रहा, और मने एक गीत और याद आ गयो, जो वो शायद पिक्चर को है पर याद आ गयो तो सुना दूं।
1: हाँ सुना दे सुना दे।
0: सावन के झूले ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापिस आया, मैं परदेसी घर वापिस आया। तो देख भाई, सावन महीनो तो एड़ो त्योहार है कि लोग बाने ग्योड़ाई अपना घरे पधारे है।
1: सही बात कह रही है, सावन आए हुए जोने हरियाली हरियाली वे गई है एक तरफ हर पर, हर सोमवार ने मनक व्रत राके चामके, तो 5 सोमवार है नहीं?
0: हाँ शायद 5 सोमवार आ रहा,
1: 5 सोमवार है। हर सोमवार ने मनक मंदिर जाए, जल्दी उठे, जल चढ़ावे, काचो दूध चढ़ावे, छोटा छोटा बच्चों ने शौक आवे व्रत करवा रो, मैं ही व्रत करा, मैं ही व्रत करा। तो सोमवार रो ने श्रावण रो खूब अच्छो, श्रावण ती हर त्योहार चालू हुई है पर आज ओपरे श्रावण ती। हाँ रक्षाबंधन आवी, रक्षाबंधन ती पहला तन दियो ने वे दशा मारा व्रत चालू वे जाई।
0: हाँ दशा माँ का व्रत ही चालू हुई। और सावन महीना तो आखो ही तू समझ ले त्योहार को ही है,
1: त्योहार को ही है,
0: हर सावन का सोमवार त्योहार है। हरियाली अमावस्या, लोहड़ी तीज, रक्षाबंधन, 15 अगस्त।
1: 15 अगस्त सही बात कह रही है, मतलब खुशियाली खुशियाली हर जगह,
0: हरियाली और खुशियाली। जटा हरियाली है बटे खुशियाली है।
1: हाँ जरिश तो तू कटाई सोमवार ने कोई अच्छा मंदिर, मतलब बड़ा मंदिर में कोई जावारो होशी है के?
0: देख आपने सावन महीना में शिव भोलेनाथ की पूजा भक्तजन खूब करे, शिव जी का मंदिर में खूब ठाट बाट रहे, बाकी तो हर एक मंदिर में रहे क्योंकि झूला तो लाग ही गया।
1: हाँ।
0: तो ठाकुर जी ने झूलावे, पर शिव जी का मंदिर में तो तू पूछ मत कंचन, कतरी भीड़ रहे।
1: हाँ।
0: और मैं तो हर सोमवार जाऊँ।
1: सही बात है, पर मारी ओ है कि ओ पे पाड़े मु तो देखो कटई दूर नहीं जाती, पाड़े मंदिर भी है वटेस परी जाऊं। हाँ कदी कण यू भी है के सब प्रोग्राम करे के हाँ बार दूर मंदिर जानो तो जाओ, बाकी रोज तो श्रावण में पाड़े मंदिर वे वटे जल पर चढ़ाऊं।
0: सही बात है, सुबह तो देखो आपने जो घर का पास में पड़ता है वटे ही जानो पड़े।
1: हाँ।
0: सुबह तो काम अतरो भागदौड़ भागदौड़, पर शाम का समय में पछे अपनी इच्छा वे जटे जावा।
1: सही बात है, सही बात
0: शाम
1: है।
0: का समय में दूर दूर भी जावा, क्योंकि हर सोमवार मेला की न्यान भीड़ पड़े,
1: भीड़ पड़े
0: भक्ता की। तो शाम को थोड़ा दूर दूर जावा, कभी ऋषिकेश जावा,
1: तो ऋषिकेश झरना चाले ना,
0: कभी गुप्तेश्वर जावा, कभी कुंडेश्वर, कुंडेश्वर महादेव देखे गड़ो मस्त स्थान है।
1: तो वही तो हर सोमवार अलग अलग जगह जावन मले, वन टाइम कोई रोके ही नहीं, घर वालों ने के हको के सोमवार चले रही है, घर वाला ही कोई नहीं केवे, घर वाला ही के मोने ही लेन जाओ हाथे
0: आने, सब साथ में ही जावा। सही है, टाबर टोली सब ने अड़ोस पड़ोस सब साथ में जावा, मजा आवे,
1: मजा आवे।
0: आपा एक समय हो बचपन में आपा साथ में जाता है।
1: सोमवार ने हर मतलब हर इंसान हर महिला रे मूर्ति वही सोबलू, सोमवार आ रही है जर सोमवार चालू वेवा वाला था श्रावण महीना रा जर लोगों रे मुड़ाती वही सोबलती, हमें सोमवार चालू वही हमें सब, कोई कोई तो श्रावण पाले तो बाली कटावना दाढ़ी भी कटावनी बंद करे पूरा सावन।
0: हाँ हाँ पूरा सावन महीना जो व्रत रखे ना।
1: हाँ।
0: वे बस सावन लागवा का पहली जो करावे जो करा
1: करावे,
0: पछे आख सावन महीना में बाल भी नहीं कटावे, सेविंग भी नहीं करावे, भले बढ़ जावे,
1: कोई कोई तो चप्पल ही नहीं पहरे
0: भाई, वो कहवे का आप आपकी आस्था वे जैसे।
1: हाँ, हाँ
0: नहीं मन्नत ही नहीं, आस्था श्रद्धा सही भक्ति। तो कोई कसान करे, कोई अभी आख महीना चप्पल नहीं पहने, कोई आखा महीना हरी सब्जी नहीं खावे।
1: हाँ, और मन्ने टायर रतन एक चीज देखो यू वीए हसनो भी आवे ने एक तरफ ती यू वीए की मनक यू तो दारू मांस पूरा वर्ष खाई श्रावण महीनो आवी जर के मोरे श्रावण महीना में नहीं चालतो ओ तरीको कतरो अलग लागे नहीं।
0: पर श्रावण महीना में भी शराब जो पीवा वाला है वे कटे छोड़े,
1: वे तो नहीं छोड़ता, पर तो भी मैं ऐड़ा लोगों ने देखिया है जो यू कही श्रावण श्रावण तो छोड़ दी दो, श्रावण आयो है तो श्रावण महीना रो तो पूरा वर्ष ही छोड़ो ने।
0: हाँ, तामसिक खान पीन श्रावण महीनो के अदक मास वही तो कही कही भाई नहीं अबानु काम नहीं आवे।
1: हाँ, अबानु काम नहीं आवे तो वही चीज
0: तो पछे क्या काम आवे भाई, जो अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वो तो जिंदगी भर छोड़ना चाहिए।
1: पर मैं आ चीज खूब देखी है श्रावण श्रावण ना हमें अबे नशो नहीं करो, श्रावण महीनो लागो है तो छोड़ो ने जिंदगी भर रे लिए छोड़ो, छो हष्ट पुष्ट खानो खाओ, खावारी अतरी अच्छी अच्छी चीजो है, तामसिक चीजो नहीं खानी जो जी अच्छू है, फ्रूट वगैरह ये खाओ।
0: अरे ये तो देखो भाई फ्रूट दूध आपा कतरी बार बात करा तो सोचा ये कि भाई अणी का पाछे पैसा बर्बाद करो तामसिक चीजा का पाछे अणी करता तो या का ऊपर पैसा खर्चो, स्वास्थ्य भी बढ़िया रही और फल फ्रूट।
1: आप रतन थारे बच्चे में बात करूं वो तू कह रही है कि शराब पीवा वाला शराब पिए तो वे तो बोले नात्रा भक्त है, मैं तो ये के बोले नाती तो बोले नशा करता तो मैं ही तो करे ही हूँ।
0: ये वाकई गलत फहमी है, खुद की बात ने ढाकवा का लिए एडे तर्क करे।
1: हाँ,
0: एडा तर्क करे, अगर आप माने समझता वो ने के भगवान ने समझना चाहो तो अध्यात्म में उतरनो पड़े।
1: सही बात है
0: के भगवान कोई शराब गांजा भांग धतूरा या के पाछे नहीं पड़िया, वे इको अर्थ है विकार ने हरवा वाला।
1: सही बात,
0: जैसे समुद्र मंथन व्यो समुद्र मंथन में यदि विष निकलो
1: तो विष बने...
0: हाँ तो विष ने कुण पी दो, वेस पी दो ने क्योंकि सब मना कर दी दो, नहीं भाई मैं तो नहीं पी सका, सांप के मैं थोड़ो ले सकू तो वो थोड़ो ले दो, बिच्छू के मारा डंक में दे दो मैं थोड़ो ले सकू, पर बचोड़ो कुण ले वे
1: जयंती
0: तो बचे भोलेनाथ क्यों चलो मने दे दो। तो एक अर्थ यो है कि वे विकार रूपी जो विष है विने हरे नहीं कि वे भांग धतूरा खावे।
1: पर हमें अन मानव जीवन में अनो इंसानों ने कुण समझावे, अनो ने तो जो वे करे वो सही।
0: देख कंचन, अगर मैं गलत रास्ते जाऊं ठीक है, थाने ठा पड़ गई मैं गलत काम कर रही हूँ, अबे तू मैंने कह दी दो तू यो गलत काम कर रही तो मारी बात ने ढाकवा कर लिए मैं 10 झूठ बोलू मैं उदाहरण दे वो भी।

0: खाना समझदार का लिए इशारों ही काफी है।
1: सही बात कह रही, चल जावा दे ओपे तो ओपे सावन रा सोमवार रा आनंद ले यो, मस्त भजन कीर्तन करे यो, मंदिरों में जाइयो, घूमबा जाइयो, हरियाला बगीचा में घूमे यो, तो तू चाल जे हमके मारे हाथे। हाँ
0: हाँ हाँ बिल्कुल चाला ना आप, तो देखो सोमवार सोमवार तो जावा ही जाओ, आको सावन महीनो जावा तो तू जटे ले जाए बेटे, मैं आवा तैयार हूँ, मैं ले जाऊँ बेटे तू भी आ जाए।
1: हाँ जरूर आवो, मैं सुबह
0: वो के आखो संगठन बना जावा तो ही मजा आवे,
1: मजा आवे। सही बात के,
0: एकला दोखला का ही मजा आवे
1: ना ना, सब बच्चा बच्चा सब हाते वे तो हाँ नहीं अच्छो लागे,
0: अच्छो लागे। और देखो भाई आपा बच्चा नहीं हो के वा, अरे वाके धोग लाग वाके धोग लाग, पर वे बच्चा यदि प्रैक्टिकल में देखे माना माँ बाप ही लाग रहा
1: तो बच्चे सीखे।
0: हाँ वे सीखे और वे लागे पचे माने केवा की जरूरत नहीं पड़े।
1: सही बात है,
0: आने वास्ते मंदिर महादेव सत्संग कीर्तन में बच्चा ने भी ले जानो छावा।
1: सही है,
0: तो वे बच्चा में संस्कार उतरेगा, अच्छा सत्संग अच्छा वे यूं करनो, पचे माने केनो नहीं पड़ी तू मंदिर जा, अरे तू सत्संग में जा,
1: वे देखी तो अपने आप करी
0: अपने आप सीखी। पर कंचन चलो सत्संग भी कह रहा सब कह रहा, पर मैं गर्मा गर्म नाश्ता बना रखे वो तो खाला ठंडो वे जाए।
1: हाँ चल चल खा लेता है।
0: तो एक आछू गीत भी सुना था अपना श्रोता बंधु ने।
1: हाँ सुना दे।
0: सुनता रहो
1: मुस्कुराता रहो,
0: रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM।

0: सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: सावन सुरंगो आयो साहिबो नहीं आयो, सावन सुरंगो आयो साहिबो नहीं आयो, तीजरड़ी मन लू भायो बादरड़ी बरसो बरसो, पिया जीरा देश बिजरड़ी चमको चमको, पिया जीरा देश आ ओ, ओ, ओ, ओ। तो आ भाई कंचन पाछा आप गावरी बाते कार्यक्रम में सगला श्रोता बंधुरो स्वागत करा। हाँ, और देख भाई सावन महीना में एड़ा एड़ा गीत बोले के मन तो अपने आप ही याद आवे, एड़ा एड़ा गीत भी गावे।
2: जरिस मुई हो सो रही हूं के रतन हर बार कठाती गीत एक ती एक लेन आवे।
1: पर सावन में एड़ा गीत गावे तो याद हो जावे, क्योंकि तीज त्योहार तो अभी है। तीज त्योहार पे अपने जमाई भाई है, बेटिया की शादी कराया बाद पहली तीज वेवे तो जमाई भाई ने भी बुलानो पड़े, बेटिया अपना घरे हुए।
2: हाँ।
1: तो अपने आप ही पचे वहां के लिए कई बोला तो गीत याद आई जावे। आपने भी देखो भाई राजस्थान रा माई ने एडी एडी परंपरा है कंचन कि आपने जमाई भाई आवे पहली बार त्योहार पे तो एक अतरो सम्मान करा।
2: हाँ, पहली बार तो खूब सम्मान हुई है।
1: मन तो परंपरा अच्छी लागे,
2: अच्छी लागे। हाँ। सही बात है।
1: और आपने सावन महीना की बात चल रही, सावन में त्योहार भी खूब आवे तो सावन महीना में सत्संग भी खूब आवे। आप सत्संग की भी बात कर रहे हैं। देख भाई थंठाए, आपने ये 16 सोमवार जो करा ना मनसा महादेव का, वे भी चतुर्थी चालू हो जावे।
2: हाँ,
1: हाँ, जो ठेठ कार्तिक महीना तक रहे, दीपावली का बाद जो चौथ आवे ने, पर 4 महीना को चौमासो के वहाँ।
2: हाँ।
1: चौमासा का स्टार्टिंग में या चतुर्थी आवे यदि मनसा महादेव का व्रत चालू हुए वो पाछे चौमासो खत्म वेवा आवे, यदि चौथ आवे ने यदि पाछे संपन्न वेवे। अवैणी में भी देखो भक्ति कड़क है हो। सुबह वेगा उठ नाप स्नान ध्यान करो, ठेठ माता का केसु लगा नेड़ी तक कहीं भी आपको धुलिया बगैर बाकी नहीं रहना छावे, माथो धोनो पड़े
2: रोज। हर सोमवार,
1: हर सोमवार पहली चतुर्थी आपा चालू कर दा, ठीक है। तो चौथ का दिन आपने सब पूजा की सामग्री ले जानी पड़े, चूरमो बनावे ही में हर सोमवार चूरमो बनावे। चौथ का दिन आपा स्टार्ट करा तो चौथ का दिन नू ये चालू हो जावे चूरमो। तो अब इमें अलग अलग भाई मान्यता है, 2.5 किलो बनावे चूरमा जी का 4 भाग करे। एक भाग पहली तो ठाकुर जी के सारो भोग लगाई, पचे भी को 4 भाग करी, एक भाग गाय के, एक भाग बहन बेटी के, एक भाग खुद व्रत करा जो खावा को, और एक प्रसाद वितरण करवा को। 4 भाग करे तो कोई 1.25 शेर को करे तो कोई 2.5 किलो को करे और असान 4 भाग करन बाटे। और सुबह पहले स्नान ध्यान करन स्वच्छ कपड़ा, जो कपड़ा धुलिया सका वेना छावे के पचे कोरा कपड़ा
2: आउट द कपड़ा।
1: हाँ, पर इमें यू है के आपके कोरा कपड़ा तो कोई भारी वेसन ये पेरवा की जरूरत नहीं है,
2: सिंपल।
1: हाँ, सिंपल अनिवार्य धुलुड़ा होना चाहिए। और सुबह पहले आप स्नान ध्यान करते हैं तुरंत ही आप पूजा के लिए निकल जाओ। कहवे भाई अठिनो उठिने बैठा पाछे कपड़ा पे दाग लागे, पाछे अपन नाया ने गणे घेप पे जाओ तो वॉशरूम भी जानो पड़े,
2: वॉशरूम भी जाना। हाँ,
1: तो कहवे के पूरी स्वच्छता का साथ में पूजा हुए तो आप नाते ही बस पचे कपड़ा पहनते ही माँ तो पूछता ही आप निकल जाओ पूजा करवा का लिए, ताकि बनी टाइम पे तो पाछे न तो बाथरूम को प्रेशर बने न आप अठिनो उठिने बैठा थाल अपने सजाई पूजा की रवाना हो जाओ।
2: सही है।
1: और चूरमो तो बनानो ही पड़े तो चूरमो पहली बना दो, पछे इमें 2 बार स्नान वेवे, पहली नहा लो पछे आप चूरमो बनाओ पछे पाछो नहाओ। पर हाँ, ये चतुर्थी शुरू हुए जो चतुर्थी का दिन खत्म वेवे पहले और लास्ट में, बीच में सोमवार ने तो आप पूजा पाठ करो और पूजा करने आप कहीं भी प्रसाद चढ़ाओ, फ्रूट भी मिले केला लाओ आप इच्छा वे जो फ्रूट लान चढ़ाओ तो चाले। पर चौथ शुरू हुए चौथ का दिन ही समाप्ति हुए दो ही चौथ पे चूरमो छाई जाए।
2: अच्छा, तो थे का की दोड़ा है सोमवार।
1: हाँ, मैं की दोड़ा।
2: जरे इस तन पूरो ध्यान है। चलो तो, जन्ने करना भी बनो नहीं ठाबो पड़ी के वो सोमवार की गण करना है।
1: हाँ,
2: सही बात है ने?
1: सही बात है। तो ये मनसा महादेव के वे जहाँ मैं 16 सोमवार वे सोलह सोमवार जैसे 16 शुक्रवार करा ना वैसे 16 सोमवार
2: सही
1: हाँ गुजरात में भी खूब करे तो राजस्थान में भी खूब करे और भी अन्य राज्य में भी करता भी भाई बहन क्योंकि शिव जी की पूजा ही सब ज्यादा हो सावन महीना और झटी ने भी देखा सब शिवमय हो जावे
2: शिव जी रा तो सब भक्त है बोले बाबा सब भगत भगत सबरा मोबाइल माते स्टेटस ही देखो तो सबरा शिवजी रा इस लागोड़ा वे
1: शिवजी का इस लागोड़ा वे मैं एक बच्चा हूँ बात वेरी ही तो बच्चा भगवान का सामने भोलेनाथ की मंदिर में भोलेनाथ का सामने कह रहे आख्या बंद करन भगवान को प्रार्थना कर रहे हे भगवान अनी बार तो मारे 90% तो मनाना ही पड़ी हो अगर 90% मन जाए तो मैं एक नारियल चढ़ाऊ मैं क्या अच्छा मैं सुन रही है मैंने हंसी आई छोटो बच्चो 7-8 साल को वो असान कह रहे पछे दी वो भक्ति कर काढ़ी निकलो लागे तो मैं लाला हटा तो क्या हाँ कही के वो आप तो मैं क्यों अच्छा ये प्रार्थना की क्यों कर रहे हो कि भगवान ने कह रहे हो ठाकुर जी ने मारे 90% छावे क्योंकि भोलेनाथ के लिए सुनियो सको भोलेनाथ हर प्रार्थना पूरी करे मैं क्यों कठे सुने तू तो क्या हमारे दादाजी कहानी सुनावे ना तो भोलेनाथ की सुनावे भोलेनाथ वरदान देवे पछे मुश्किल पड़ जावे तो वहां में श्री विष्णु जी मदद करे तो मैं भोलेनाथ ने कह दी तो 90% बना दीजो अबे वहां को नहीं बनानी आई तो वे विष्णु जी बात कर रही
2: देखो बच्चा ही केड़ी केड़ी बात करे है
1: तो मन अतरी हंसी आई वे क्या देखो बच्चा भी बुद्धि में बिठा रह गयो
2: देखो बच्चो नहीं पर वो दादाजी बतायू दादाजी माते विश्वास तो दादाजी झूठ नहीं बोले तो सही में मतलब बच्चों तो यूज भी
1: हाँ क्योंकि दादाजी कहानी क्यों जदी तो सही है
2: सही है
1: वे क्यों बच्चा भगवान तो अपना साथ में है पर मेहनत तो कर जाए तो 90% भी बन जाए पर मेहनत सही जाए
2: मेहनत तो करनी पड़ी
1: हाँ यू है कि देखो कतरा भाव शुद्ध हो जावे बच्चा का भी भाव केड़ा शुद्ध हो गया आने वास्ते वो कहे आपने अध्यात्म का प्रति तो रुझान वेणो ही चाहिए आपने भले छोटा वो बड़ा वो बच्चा ने ले जाओ आप तो यहाँ का मैं संस्कार आई
2: बच्चों तो देखी फेस सीखी बच्चों हाँ। ने आप मंदिर ले जाइयो सुबह आप अगरबत्ती दिया धूप करे यो सबरा आदर करे यो भगवान ने मंदिर जाओ तो बच्चा ही सीखे
1: सही है
2: नितर बच्चों ने कोई अनुभव नहीं रहता
1: बिल्कुल और सावन महीना को देखो खाली जरूरी नहीं कि कोई चार महीना व्रत करे घना जना चौमासो नावे तो 4 महीना का व्रत करे और झाको नी नानी आवे तो वे सावन महीना का व्रत करे
2: सही है
1: आको सावन महीना का तो कोई नियम करे तो हरी सब्जियां नहीं खावे हाँ। पचे दाल भाजी बेसन सूखी सागा चना कठोर ये ऐसी चीजा खावे पर हरी सब्जी नहीं खावे
2: तो सब अलग अलग तरह की करे
1: हाँ और घना झना आजकल मैं तो देखियो हूँ कंचन के महिला सब ग्रुप बना अन अभी ये स्नान पे जावे कोई पुष्कर का स्नान लेवे कोई हरिद्वार का स्नान लेवे हरिद्वार हर पूनम के हर अमावस्या
2: तू बोले रही है तो मने धीरे धीरे याद आवे रही हाँ मैं देखी हुए
1: मारे फोन आयो मारी एक और सहेली है जिको हर अमावस्या पे स्नान करवा जहाँ तू आवे गई मैं क्यों यार हर अमावस्या में बंधू नहीं मैंने टाइम मिली तो मैं आऊ नहीं तो नहीं आऊ अगर हाँ कर दू मैं बंद जाऊँ तो हर अमावस्या जरूरी नहीं है मारो वाणी आवे बोले ठीक है जत्रा करने आप उतरे कर जे मैं क्यों हाँ ठीक है मैं पचे मैंने पूछो भाई तू डिटेल बता था क्या करो तो बोले कि मैं तो 4 महीना चौमासा का मतलब हर अमावस्या पूरा साल भर का हर अमावस्या पे स्नान करवा जानो
2: अच्छा
1: कोई कह मां पूनम पे जावा हर पूनम और कोई पुष्कर जी जावे कोई कोई तो हरिद्वार जावे तो क्या हरिद्वार और अच्छा मतलब पूरा ग्रुप पे जावे तो आराम हो आप जाओ आओ एंजॉय भी चलो अनी बहाने एक नारी शक्ति बहाने तो निकले घर का बहाने
2: सही बात है
1: नहीं तो आखो दन घर का काम कर कर वाणी कमटाना ऊंची नहीं आवे
2: टालो तो ऊंची नहीं आवे सही बात है अन बहाने बाहर जावन मले
1: हां बहाने जावा पचार जने मिला माइंड भी फ्रेश वे तो घर में भी वा पाछा आवा तो आराम आपन एक चेंज वे ना आवे तो एक अच्छो मूड वे जावे
2: सबरे सबरे साथ घूमे सबरे साथ मिले बारे मलवाती एक माइंड फ्रेश वे
1: माहौल चेंज वे जावे कि चलो और छूट भी देने चाहिए परिवार वाला ने और क्योंकि घना परिवार वाला बांधन रहा के हाँ नहीं नहीं नहीं नहीं था चले जाओ घर को काम कौन करी अरे भाई घर को काम आकी जिंदगी करी से रहा ने अरे 2-4 दिन की छुट्टी लेने जा रहे तो आपको परमिशन लेने जा रहे बहुत बढ़िया बात है तो वहां छूट देनी चाहिए क्योंकि अमन भाई लोग आके जाना हुए तो फोन कर दे भाई मैं आज नहीं आऊं,
2: दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूं। हाँ, तो बस सही बात है।
1: हाँ, घरे भी केवा की जरूरत नहीं है, फोन करे नहीं कह दे भाई हमारे तो बनो आवा को टाइम नहीं है, मैं जा रही हूं
2: बनोरी जिंदगी अच्छी वे बनो के बार टेंशन कने नहीं।
1: ओए तो पछे एक महिला कई बिगाड़ियो, महिलाओं महिला साथ में जा रहे तो अच्छी बात है, मैंने भी बढ़िया लागियो, पर मैं क्यों हर अमावस्या नहीं बंधु आऊ जरूर
2: जानो जो जे कदी कदार जाओ, महिला यू ही बारे नहीं जाती वे ऐड़ा फन मौका मातिस बारे जाए।
1: और ये देखो एक धार्मिक प्रवृत्ति कई महिलाओं ने लागे भाई हरिद्वार जावा हर अमावस्या अमावस्या या पुनम उपनम, तो परमात्मा मानी इच्छा पूरी करी घर परिवार में सुख शांति रही। भाई महिला सोचे तो पूरा परिवार के लिए,
2: परिवार के लिए वह मन्नत मांगी तो पूरा परिवार के लिए,
1: पूरा परिवार के लिए टाबर के लिए मांगे। तो चलो भाई कंचन टाइम भी हो गया अपना जावा को मन्नत तो मांग ले वहाँ, पर पाजो टाइम पे तू जाए तो जीजा सा तन पाचा आवा दे।
2: हाँ, सही बात कह रही है, मन तो द्योनी नहीं पड़ी हो समय वेगियो है। चल बाय मुझ जाऊँ। हाँ
1: आओ जाऊँगा।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, सफलता का आधार मूल्य शिक्षा। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आज फिर से हम लोग जुड़े हैं एक नए विषय को लेकर। जैसे कल हमने संस्कार बनाने की विधि को समझने की कोशिश की थी, तो आज एक और थोड़ा सा हम लोग अपने आप को अपग्रेड करेंगे। एक ऐसे विषय को लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं जिसमें खास हम लोग बात करेंगे अपने और दूसरों के संस्कारों की समझ। तो ये पूरा जो विषय है ये बहुत ही गहरा विषय है, अगर आप इसको ठीक से समझ लें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप जीवन जीने का जो कला है वो समझ जाएंगे। क्योंकि जब तक आपको अपने संस्कार और दूसरों के संस्कारों का या स्वभाव का पता नहीं होगा तो आप डील ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप बिजनेस डील करना चाहते हैं या किसी से रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं या फिर आप किसी के साथ चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो व्यक्ति के संस्कार, आपके खुद के भी और दूसरों के भी। तो इन दोनों की अगर गहरी समझ हो जाए आपको तो आप प्रॉपरली हर चीज़ को कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं इस बात को। तो हमेशा की तरह आज हमारे साथ फिर से राजेश सर जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है राजेश भाई।
1: बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया, शुक्रिया।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए आज इस विषय पर, जैसे कि संस्कारों की बात चल रही थी, तो अपने और दूसरों के संस्कारों की समझ, ये विषय क्यों चुना आपने? आपको क्या लगता है इस विषय पर क्यों बोलना चाहिए?
1: हाँ, इस विषय पर हमें इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य जो है वो अकेला नहीं रहता, वो समाज में रहता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: चाहे हम परिवार में हैं, समाज में हैं, और जब हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं तो हमारा व्यवहार जो है, हमारा जो बिहेवियर है, वो हमारे संस्कारों से, हमारी आदतों के ऊपर निर्भर करता है। और अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमारे आपसी संबंध भी बहुत अच्छे होने चाहिए। लेकिन टकराव वहाँ पैदा होता है जब हमारी एक दूसरे से आते नहीं मिलती हैं, या जिसे हम भारतीय कल्चर के अकॉर्डिंग कहें, गुण नहीं मिलते एक दूसरे से। क्योंकि इंडिया में कल्चर है, अगर शादी भी करानी हो तो पहले पंडित जी को टेवा दिखाया जाता है और कहते हैं कि दो लोगों को सारी उम्र साथ में रहना है ताकि उनका जीवन जो है वो शांतमय हो, खुशमय हो, एक दूसरे को समझ कर साथ में चल सके। लेकिन उन कहते हैं इनके टेवे को या उनकी कुंडली को, कहते हैं हॉरोस्कोप को मिलाया जाना चाहिए ताकि अगर इनके गुण मिलते हों और ये जीवन जो है इनका अच्छा बीते, कल को जाके तलाक ना हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो, और जिस काम के लिए वो दो आत्माएं इकट्ठी रहना शुरू कर रही थी जीवन को खुशी खुशी व्यतीत करने के लिए, उसके लिए उल्टा ना हो जाए, इसके लिए बहुत बहुत बहुत ज़रूरी विषय है।
0: राजेश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आज के समय में क्यों ज़रूरी है इस विषय पर आपने बोलना चाहा। तो मैं चाहूँगा कि अब कैसे समझे कि दूसरे का स्वभाव और संस्कारों को कैसे समझें?
1: दूसरे के स्वभाव संस्कार को समझने से पहले मैं समझता हूँ पहले हम ये समझें कि कौन से संस्कार अच्छे हैं या कौन से संस्कार बुरे हैं। इसके ऊपर ही बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, एक बहुत बड़ी बहस हो सकती है। तो उसके कुछ हमने खुद ही चिंतन कर करके, अगर आपको पसंद आए तो भई ये कह सकते हैं कि ठीक है ये संस्कार अच्छा है या ये संस्कार या ये आदत जो है वो अच्छी है, ये आदत जो है वो अच्छी नहीं है, इसको हमें बदलने की आवश्यकता है। कैसे कहेंगे? तो पहला मापदंड तो ये है कि अगर मुझे वो पसंद है, आई लाइक इट, और मुझे उससे फ़ायदा हो रहा है, और दूसरा न केवल मुझे फ़ायदा हो रहा है बल्कि मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोग, मेरे परिवार में रहने वाले लोग, जो मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे समाज में रहने वाले लोग हैं, मेरे संबंधी हैं, उनको भी उनसे लाभ हो रहा है। और दूसरा मापदंड कहेंगे कि जिनको बुद्धिजीवी ये कहें कि हाँ ये सही है, क्योंकि कई बार समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जैसे मान लीजिए समाज में 100 में से 90% लोग हैं शराब पीने वाले हैं, और अगर वो 90% लोग ये कहें कि हाँ शराब पीना अच्छा है तो सही बात नहीं है, क्योंकि बुद्धिजीवी जो लोग हैं इसको वो नकार देंगे, वो कहेंगे शराब हमारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसको समझा है, पढ़ा है, पढ़े लिखे लोग हैं। तो जब बुद्धिजीवी लोग इसको मानते हैं हम कहेंगे ये संस्कार अच्छे हैं। और तीसरे संस्कार हमारी आदतें ऐसी होनी चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी हों, हमारी सेहत के लिए भी अच्छी हों, और वो हमारी सेहत को अच्छा करें। जैसे हमने अभी बताया कि शराब पीना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, लेकिन डेमोक्रेसी जहाँ बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा लोग पीते होंगे, तो वो कहेंगे तो बहुत अच्छी है, इसको तो पीना चाहिए, बल्कि सबको ही क्या होना चाहिए, पिलाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये मापदंड लेकर के हम चल सकते हैं कि ये वाले संस्कार जो हैं ये अच्छे हैं और ये वाले संस्कार जो हैं वो बुरे हैं। और जहाँ तक बात है कि हम कैसे समझें, तो इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं संस्कारों को समझने के लिए। जैसे हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में बात की कि कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो हमें बचपन से ही बाय बर्थ हमें मिले होते हैं, वो हमें किसी ने सिखाए नहीं या किसी ने बताए नहीं, लेकिन बचपन में से ही हमारे में आ जाते हैं। ऐसे भी संस्कार जैसे हमारी, हम कहेंगे हमारी बुद्धिमत्ता, जिसको हम इंग्लिश में हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं, कि हमारे सीखने की विधि क्या है या हम कैसे लोग हैं। जैसे हम बताते हैं कि आठ तरह की मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है, आठ तरह की बुद्धिमत्ता होती है। जैसे कई लोग होते हैं उनमें वर्बल इंटेलिजेंस होती है, कि वो पढ़ने से सीखते हैं, सुनने से सीखते हैं, और उनको सुनना या पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। दूसरे लोग होते हैं उनमें विजुअल इंटेलिजेंस होती है, ऐसे लोग जो होते हैं उनको देखना बहुत अच्छा लगता है, जैसे हम आजकल मूवीज़ देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, या अगर वो क्लास में बैठे होंगे स्टूडेंट तो उनको टीचर को देखना बड़ा अच्छा लगता है कि टीचर कैसा लग रहा है, और वो कोई डायग्राम बना रहा है तो वो डायग्राम बनाने से समझ जाएंगे। और ऐसे लोग जो हैं इस विधि से सीखते हैं, और ऐसे ही अगर वो अपने प्रोफेशन में जाएंगे, जैसे वो फोटोग्राफी में चले जाएं या पेंटर बन जाएं या ग्राफिक्स में चले जाएं, तो ऐसे लोग जो हैं वो जिस विधि से सीखते हैं उसी प्रोफेशन में जाना उनको जो है अच्छा लगता है, और ये बाय बर्थ होता है। ऐसे कोई लॉजिक लोग होते हैं, वो हर एक चीज़ में कारण ढूंढते हैं कि ये अगर अच्छी है या बुरी है तो क्यों है, मुझे इसको सीखना है या नहीं सीखना है तो क्यों है। मतलब हर एक किसी चीज़ को स्वीकार करने से पहले उनके मन में एक प्रश्न होता है। ऐसे लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं, इंजीनियर्स बन जाते हैं, डॉक्टर्स बन जाते हैं। इस तरह इंट्रापर्सनल पर्सनैलिटीज़ होती है, बड़े शांत रहते हैं। जैसे देखा होगा कई स्टूडेंट्स क्लास में, चाहे आगे बैठी हूँ पीछे बैठी हूँ, हमेशा शांत रहते, चुप रहते, किससे ज़्यादा बात नहीं करते। ऐसे लोग जो हैं उनमें स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होता है, और वो भी साइंटिस्ट बन जाते हैं, और वो साधु संत बन जाते हैं, महान आत्माएं बन जाती हैं। कुछ होते हैं जिनको हम कहते हैं इंटरपर्सनल पर्सनैलिटीज़, ऐसे लोग वो होते हैं जिनको बातें करना बहुत अच्छा लगता है। आप उनको जो भी कहो वो एक जगह बैठ नहीं सकते हैं। जैसे कई क्लास में स्टूडेंट्स हो गए, चाहे उनको आप आगे वाले टेबल पे बिठाओ चाहे पीछे बिठाओ, वो हमेशा बातें करते रहेंगे। ऐसे लोग जो हैं लीडर्स बन जाते हैं, वो समाज सेवी बन जाते हैं, वो काउंसलर्स बन जाते हैं। और उनको अगर हमने कुछ सिखाना है तो उनसे बातें करके, उनसे बातचीत करके हम उनको बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। लेकिन जो इंट्रापर्सनल पर्सनैलिटी होती है वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, वो खुद का खुद ही सीखते हैं, खुद ही पढ़ेंगे, खुद ही कोशिश करेंगे। और ऐसे सिक्स तरह की पर्सनैलिटी होती है जिनको हम कहते हैं वो म्यूज़िक इंटेलिजेंस होती है, उनको गाना बजाना बहुत अच्छा लगता है, गीत गाएंगे, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे, और उनका ये शौक होता है। आप उनको नहीं भी सिखाएं तो भी वो उनको कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अपने आप सीख जाएंगे, ज़्यादा उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे कई लोग बचपन से गीत गाते हैं, उनको आपको ज़्यादा कैसे हम गीत गाते हैं सिखाना नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा रिफॉर्म करना पड़ता है ताकि वो बहुत प्रोफेशनल जो है वो सिंगर बन जाए ना। तो ऐसे कई तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं। ऐसे हमारे पास एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी होती है कि ये लोग बचपन से आध्यात्मिक होते हैं, और सत्संग में जाना, ध्यान करना, मंदिर में जाना, गुरुद्वारे में जाना, चर्च में जाना, मस्जिद में जाना उनको बहुत अच्छा लगता है, और आध्यात्मिक किताबें पढ़ना, ना, और भगवान को याद करना, पूजा पाठ करना उनको बचपन से ही अच्छा लगता है, उनको सिखाना नहीं पड़ता कि आपको जो है ये करना पड़ता है। और एक और पर्सनैलिटी जिसको हम काइनेस्थेटिक कहते हैं, ये लोग करने से सीखते हैं। अच्छा, इसलिए स्कूल में कॉलेजेस में जो है वो लैब्स बनी होती हैं, लेबॉरेटरीज बनी होती हैं, जैसे थ्योरी तो पढ़ाते हैं लेकिन ये लोग थ्योरी से नहीं सीखते, लेकिन जो वर्बल पर्सनैलिटी होती है वो थ्योरी से सीख जाती है, विजुअल पर्सनैलिटी देखने से सीख जाती है। उनको आप करके बताओ, उनको उनसे कोई मतलब, लेकिन काइनेस्थेटिक पर्सनैलिटी कोई भी चीज़ अगर सीखना चाहती है तो हाथों से करना चाहती है, जिसको हम कहते हैं हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, वो प्रैक्टिकल से सीखती हैं। जब लेबॉरेटरी में जाएंगे एक्सपेरिमेंट करेंगे तब उन्हें समझ लगेगी हाँ ऐसे करना पड़ता है। आपने देखा होगा कई बच्चे होते हैं वो खिलौनों से खेलते नहीं हैं, लेकिन उनको तोड़ेंगे मरोड़ेंगे फिर उनको जोड़ देंगे। जैसे हमारे एक्टर्स हैं वो अपनी बॉडी से जो है एक्शंस करते हैं, हमारे डांसर्स जो हैं, प्लेयर्स जो हैं हमारे, सारे ये काइनेस्थेटिक पर्सनैलिटी में आते हैं, जिसमें कि बॉडी की मूवमेंट ज़रूरी है, जिसमें कि कोई ना कोई कार्य करना, ये लोग कार्य करने से जो है वो सीखते हैं। ऐसी हमारे पास जो है ये अलग अलग तरह की वैरायटीज़ होती हैं, लोग होते हैं, हम उनको समझ पाते हैं। कई बार हमें लगता है कि ये व्यक्ति गाना ही क्यों गाता है, जैसे माँ बाप समझते हैं कि ये मेरा बच्चा ये गाना ही क्यों गाता है, इसको मैथ पढ़ना क्यों नहीं अच्छा लगता, मैं चाहता हूँ ये इंजीनियर बने लेकिन ये सिंगर बनना चाहता है। माँ बाप को समझ नहीं लगती कि दूसरों के बच्चे जो हैं वो साइंस में क्यों होशियार और मेरा बच्चा क्यों नहीं, उनको लगता है शायद ये पढ़ता ही नहीं। लेकिन उनको ये समझ नहीं आती इनके ये जो गुण हैं, ये जो संस्कार हैं, ये जो आत्मी ये बाई बर्थ उनमें होती हैं, और अगर वो उनको उस फील्ड में जाने में सपोर्ट करें जो बाई बर्थ उनमें संस्कार या आदत होती है, तो ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन केवल केवल उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। तो ये एक तरह की क्लासिफिकेशन है किसी व्यक्ति के संस्कारों को समझने की। दूसरा होता है जैसे रिश्तों में, जैसे पति पत्नी का रिश्ता है, या घर में एक परिवार में कुछ लोग रहते हैं, एक दूसरे के संस्कारों को समझना। कई लोग होते हैं वो बाई बर्थ बहुत इमोशनल होते हैं, इमोशनल माना कि जिनका जो है वो राइट ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, माना कि उनका माइंड बहुत इमोशनल होता है, और अगर कोई व्यक्ति उनसे अच्छी तरह बात नहीं करे तो जैसे छुई मुई होता है ना, पत्ते को हाथ लगाएंगे तो मुरझा जाते हैं। तो अगर आप उनसे प्यार से बात नहीं करेंगे, अच्छे शब्दों में बात नहीं करेंगे, उन्हें अच्छी तरह अटेंड नहीं करेंगे तो उनका चेहरा उतर जाता है, बहुत उदास हो जाते हैं। भले आप उनका काम नहीं करो, फॉर एग्जांपल वो किसी ऑफिस में जाएंगे, किसी ऑफिसर से मिलते हैं, ऑफिसर कहता है कि नहीं भैया आपका काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो रूड से बोलेगा तो भले काम नहीं किया रूडली भी बोला तो उदास हो जाएंगे, दो दो तीन तीन दिन उदास रहेंगे, किससे बात नहीं करेंगे, अपसेट हो जाएंगे। लेकिन अगर वही ऑफिसर उसको बड़े प्यार से अटेंड करता है, उनको चाय पिलाता है, पानी पिलाता है, बड़े प्यार से बोलता है कि मजबूरी है मैं ऐसा, तो वो समझते हैं उस व्यक्ति को, उदास नहीं होंगे, और इसलिए भी उदास नहीं होंगे कि उस व्यक्ति ने उसका काम नहीं किया, लेकिन वो चाहते हैं कि हर कोई उनसे प्यार से बात करे। और ऐसे लोग प्यार से ही बात करते हैं, बहुत केयर करते हैं, संभाल करते हैं। आपने देखा होगा आपके परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे एक माँ में ये नेचुरल गुण होता है अपने बच्चे की केयर करने का, वो तो बात अलग है कि माँ में नेचुरल गुण होता ही है, लेकिन बहुत सारे जैसे बड़े भाई बहन होते हैं, कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं अपने छोटे भाई बहनों का बड़ा अच्छे तरह ध्यान रखते हैं, या फादर जो है वो हर एक बच्चे का पूछेगा, अपने रिश्तेदारों को भी पूछेंगे, न केवल अपने परिवार को बल्कि दूसरों को भी पूछेंगे, और उनका ध्यान देंगे, उनकी केयर करेंगे, कोई बीमार हो जाएगा तो उनको पानी ला के देंगे, खाना खिलाएंगे, उनके लिए दवाई लेके आएंगे। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं इमोशनल पर्सनैलिटीज़। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट एक और पर्सनैलिटी होती है जिसको हम कहते हैं काइनेस्थेटिक पर्सनैलिटी। ये लोग होते हैं, इनको काम से मतलब होता है, ये शब्द अच्छे नहीं बोलेंगे लेकिन अगर इनका काम हो गया तो ये कहेंगे सब ठीक है, और इनको काम से मतलब होता है, और ये अपने प्यार को कैसे जाहिर करते हैं, शब्दों से जाहिर नहीं करते, किसी को छुएंगे नहीं, टच नहीं करेंगे, हाथ से हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन उनके प्यार जाहिर करने का तरीका होता है वो दूसरे व्यक्ति का काम कर देंगे। और खुद भी वो वर्क ओरिएंटेड पर्सनैलिटीज होती हैं, और अगर एक ही परिवार में जो वाइफ एंड हस्बैंड है उन दोनों की पर्सनैलिटीज अलग अलग हैं तो उन दोनों को एक दूसरे की समझ नहीं आती। एक व्यक्ति चाहता है काम होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति कहता नहीं अच्छे शब्द बोलो।
2: उसको अच्छे शब्दों से मतलब है, उसको काम से मतलब है, तो दोनों को ये समझ नहीं आती है अगर उनके कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो क्या कारण है। तो ये पर्सनैलिटीज भी बाय बर्थ होती हैं, तो एक दूसरे को समझना कि ये जो गुण हैं, ये जो आते हैं, ये जो संस्कार हैं, उनसे बचपन में ही हैं। और भी बहुत सारे मापदंड हैं, जैसे हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, उन्होंने दवाई के हिसाब से व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डिफाइन किया होता है। वो कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम आर्सेनिक पर्सनैलिटी बोलते हैं, इसको हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो टाइप ए पर्सनैलिटी भी बोलते हैं, इसको कहते हैं पर्सनैलिटी विद ए गोल्डन स्टिक इन दी हैंड। ये वो लोग होते हैं जो अपने, जिनको काम भी पसंद होता है, लेकिन वो लोग होते हैं जिनको हर एक चीज़ टाइम पर होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं हरी वरी एंड करी। अपने काम से बहुत ज़्यादा मतलब रखेंगे, टाइम से उनको पहुंचना अच्छा रहता है, और बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं कि हर काम उनका जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। अगर परफेक्ट नहीं होगा तो वो थोड़ा सा उनका मूड ऑफ हो जाता है, और दूसरों से भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे भी ऐसे ही हों। उनको हम कहते हैं आर्सेनिक पर्सनैलिटीज़ या टाइप ए पर्सनैलिटीज़। इसके अपोजिट होता है होम्योपैथी में, उनको कहते हैं सल्फर पर्सनैलिटी। ये वो लोग होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं होता कि हम टाइम से पहुँचें या हमारा काम परफेक्शन से हो, कहते हैं जैसा है चलता है, चलते रहने दो। और जो आर्सेनिक पर्सनैलिटी होती है, बड़ी सफाई पसंद होती हैं, बचपन में उन्हें सफाई का गुण होता है, लेकिन सल्फर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैले हैं, कुचैले हैं, कमरे में गंद पड़ा है, उनके लिए सब ठीक है, आराम से चल रहा है, उनको ये पता नहीं लगता कि दूसरा व्यक्ति ऐसा क्यों बोल रहा है, क्यों उसने मुझे ऐसे बोल दिया, अरे सब कुछ ठीक ही तो है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसको सफाई पसंद है, उसको ये समझ नहीं आता कि ये व्यक्ति रह कैसे रहा है, इतने गंद में कैसे रह रहा है, इसको खिन नहीं आती, इसको बुरा नहीं लगता। वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। तो ये बहुत सारी विधियाँ हैं, बहुत सारे तरीके हैं एक दूसरे को समझने के, तो ऐसे हम एक दूसरे को समझ सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत ही अच्छा विस्तार से आपने बताया कि कैसे हम एक दूसरे के नेचर को समझ सकते हैं, और अलग अलग पर्सनालिटी के बारे में आपने जिक्र किया, और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन आपने दिया, बहुत ही अच्छा आपने विस्तार से बताया। तो चलिए, मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को समझ में आ गया होगा, अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग पर्सनालिटी होती है। किसी को देखने से सीखना अच्छा लगता है, किसी को सुनने से समझ जाते हैं, किसी को बोलने से अच्छा लगता है, और किसी को करके दिखाने से अच्छा लगता है। तो वैरायटी ऑफ चीज़ें हैं, वैरायटी ऑफ अलग अलग पैरामीटर्स हैं, अलग अलग व्यक्ति की क्षमता है, तो उन सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा स्टडी करते रहना चाहिए, और जिस व्यक्ति को जिस तरह से अच्छा लगता है, जिस भाषा में वो समझ पाता है, जिस भावना से वो समझ पाता है, जिस तरीके से, जिस स्टाइल से वो, जिस स्टाइल को वो पसंद करता है, उन्हीं चीज़ों को आपको उसी तरह से लोगों के साथ डील करना आना चाहिए। अभी बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, सबको सब एक्टर्स पसंद नहीं आएंगे, किसका फेवरेट को ये है, किसका फेवरेट को ये है, तो ये भी हमारी जो है चॉइसेस भी अलग है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हर व्यक्ति की हॉबीज़, उसके नेचर, उसके स्वभाव, संस्कारों को थोड़ा सा ज़रूर समझ ले, और फिर उसके अनुसार आप डील करते हैं तो उन्हें बेहद खुशी होती है, और आपको दोस्ती करना या उनके साथ कुछ भी कार्य को करना होगा या सामाजिक सेवा करना होगा तो काफ़ी आसान हो जाता है। चलिए राजेश जी, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा विस्तार से आपने बताया संस्कारों के बारे में, और बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या कोट करना चाहेंगे,
2: मैसेज फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना चाहेंगे कि हम सबको स्वीकार करना सीखें। क्योंकि जैसे आपने अभी समझा कि हर एक की आदतें, हर एक के संस्कार अलग हैं,
0: बिल्कुल,
2: और बाय बर्थ ही होते हैं, जैसे वैरायटी होती है नेचर में, नेचर में एक तरह के फूल नहीं होते हैं,
0: बिल्कुल,
2: एक तरह के फल नहीं होते हैं, एक तरह के पेड़ पौधे नहीं होते हैं, नेचर में वैरायटी है। इस तरह इंसान भी जो हैं, जैसे उनकी शक्लें एक जैसी नहीं होती, बल्कि वो एक ही परिवार में जन्मे होते हैं, इस तरह की कई जुड़वा बच्चे भी होते हैं, लेकिन उनकी शक्लें अलग अलग हैं, इस तरह हमारे संस्कार अलग हैं, लेकिन हमें क्षमता डेवलप करनी चाहिए, अपने में आदत डेवलप करनी चाहिए कि हम एक दूसरे को स्वीकार करना सीख लें, कि दूसरों के आदतों को, दूसरों को संस्कारों को हम रिस्पेक्ट करें। जब हम उनको स्वीकार कर पाएंगे, उनकी रिस्पेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि नॉर्मली हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है जैसा मैं हूँ वैसा अगला बन जाए, लेकिन बदलना बड़ा मुश्किल। अगर मैं आपको कहूं कि आप अपनी आदतों को बदल लीजिए, आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि दूसरा भी मेरे जैसा बन जाए, जैसा मैं हूं सामने वाला भी वैसा ही होना चाहिए, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो वैरायटी हो सकती है, अलग हो सकता है और अलग चीज़ भी अच्छी हो सकती है। जैसे रंग जो हैं, सात रंग कुदरत में बने हैं, किसी को ब्लैक कलर अच्छा लगता है तो किसी को वाइट अच्छा लगता है, जिसको वाइट अच्छा लगता है उसको समझ नहीं आती इसको ब्लैक क्यों अच्छा लगता है और जिसको ब्लैक अच्छा लगता है उसको ये समझ नहीं आती इसको वाइट क्यों अच्छा लगता है, कि रंग तो सारे ही अच्छे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और आशा करूँगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को अच्छा लग रहा है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, और अपनों का ख्याल रखें इन्हीं शुभ आशाओं के साथ। फिर मिलते हैं, सलाम नमस्ते खम्मा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो मुस्कराते रहो।

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

ओम शांति, मैं हूँ ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: I am light।

brilliance. It is home. It is pure.

ओम शांति। आज है 2 अगस्त 2026 और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 17 फरवरी 2011 को सुनाए थे। आज बाप दादा का जो स्वरूप है मुरली में, वो स्नेह का सागर और साथ में बहुत रहम दिल का स्वरूप है, और इसलिए आज बाबा बच्चों को भी यही प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, आज स्नेह का सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों ने याद किया, मेरे बाबा आ जाओ, और बाप कहते हैं, ये मेरे बाबा इसमें इतना स्नेह समाया हुआ है, जो हर बच्चे ने बाप को अपना बनाया और बाबा ने भी मेरा बच्चा कह करके अपने में समा लिया। फिर आज विशेष बाबा, जैसे कहा रहम दिल स्वरूप, तो आरंभ में ही बाबा ने ड्रिल कराई, और बाबा कहते हैं कि दुनिया की आत्माएं बहुत दुखी अशांत है, पुकार रहे हैं अपने पूर्वजों को, शांति दो, सुख की अंचली दो, बचाओ बचाओ। तो बाबा कहते हैं, यहां बैठे हुए उनको इमर्ज करो और ऐसी आत्माओं को अपने मनसा शक्ति द्वारा सुख शांति की किरणें पहुंचाओ। फिर बाबा कहते हैं, बीच बीच में मनसा सेवा का ऐसा अभ्यास करते चलो, उसमें आपका भी फायदा है, क्योंकि अगर मन बिजी रहा तो आपके पास जो बीच बीच में माया फालतू संकल्प व्यर्थ संकल्प ले आती है, उससे बच जाएंगे। फिर बाबा कई बार पूछते हैं बच्चों को, कैसे हो? तो बच्चे क्या कहते हैं, बाबा पुरुषार्थ है लेकिन कभी कभी, सदा का पुरुषार्थ नहीं चल रहा है। तो बाबा कहते हैं, अभी ये कभी कभी का शब्द समाप्त करो, और अभी एवर रेडी बन सकते हो? पूछते हैं बाबा, एवर रेडी क्यों कहते हैं बाबा रहने के लिए? बाबा कहते हैं, एवर रेडी का अभ्यास माया जीत, मन जीत, जगत जीत का संस्कार जो बहुत समय से बनाएंगे, तब अंत समय भी ये बहुत काल का अभ्यास विजयी बनाकर आपको विशेष माला का मंका बनाएगा, पास विथ ऑनर बनेंगे। पास नहीं, पास विथ ऑनर। तो बाबा कहते हैं, हिम्मत है ऐसे? फिर बाबा कहते, बाप दादा तो रोज अमृत वेले अपने माला के मणकों को देखते हैं और विशेष मिलन मनाते हैं। आज भी बाप दादा उन मणकों को देख रहे थे, क्योंकि बाबा कहे ब्रह्मा बाप के साथ विशेष राज्य अधिकारी साथी वही बनते हैं, अब के तीव्र पुरुषार्थी और भविष्य के राज्य अधिकारी। तो इसीलिए बाबा कहते, उन्होंने की ये पहली माला है, बाप दादा के साथ तो चलेंगे, क्योंकि अभी आप सबकी रिटर्न जर्नी है। साथ जाने वाले नजदीक के मन के कौन होंगे? जो बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी होंगे, बहुत काल के बाप समान ही राज्य अधिकारी वही बनेंगे। फिर बाबा ने कहा, मेजॉरिटी तीव्र पुरुषार्थी भी है, लेकिन कभी कभी का शब्द भी साथ में लगा देते हैं। इसलिए आज बाबा ऑफिशियल होकर कहते हैं, अटेंशन प्लीज, सूक्ष्म संकल्प में भी हलचल ना हो, अचल अडोल शुद्ध संकल्पधारी बहुत समय से बनना ही है। कई बच्चे बाबा से रूरिहान करते हैं, क्या कहते हैं, बाबा हम तैयार हो जाएंगे, क्योंकि समय जितना नजदीक आएगा, हालात हलचल में आएगी, तो वैराग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो बाबा कहते, फिर आपका टीचर कौन हुआ, समय या बाप? बाप अभी इशारा दे रहे हैं कि बहुत समय का तीव्र पुरुषार्थ अंत में पास विद ऑनर बनाएगा। बाप दादा ने यह भी कहा है कि स्नेह मेजॉरिटी बच्चों का है और रहेगा, लेकिन सिर्फ स्नेह नहीं, शक्ति भी चाहिए,
और तीव्र पुरुषार्थ भी चाहिए। बाबा का तो बच्चों में फेथ है कि आपकी हिम्मत और बाप की मदद तो होगी ही। जो अपने मन को बिजी रखने के लिए, जैसे पहले भी बाप ने कहा, सेकंड में स्टॉप, बिंदु हूं, बिंदु लगाना है और सबको बिंदु रूप में देखना है। जब देखेंगे ही बिंदु रूप में तो और कोई भी संकल्प चलेगा ही नहीं। तो मनसा सेवा का अटेंशन रखना, क्योंकि मनसा सेवा बहुत श्रेष्ठ सेवा है। तभी मन से विशेष आत्माओं को अंजलि देने की सेवा भी करते रहो, मन को फ्री नहीं छोड़ो। बाबा कहे कोई ना कोई सेवा में उसको बिजी रखो, मन से शक्ति देने की, मुख से वाणी की सेवा, कर्म से गुणों की सेवा, संबंध संपर्क से खुशी देने की सेवा, इन विभिन्न सेवाओं में मन को बिजी रखो। हर खजाने से सेवा करो, खजानों को जितना सेवा में लगाएंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहते जैसे स्व के प्रति अटेंशन देते हो, वैसे मनसा सेवा के प्रति कितना समय दिया कि देखना है। रहम दिल होना, तो अपना भी फायदा करो, मन को बिजी रखो और दुखियों का दुख हरण करो। बाप दादा तो सुनते हैं, तो बच्चों को याद करते हैं, वो मेरे लाडले बच्चे, सिकिलते बच्चे, अब रहम दिल रूप धारण करो। अपने ब्राह्मणों में भी एक दो के सहयोगी बनो, चाहे कैसा भी संस्कार है, किसी का कैसा भी संस्कार है, आपका काम क्या है, संस्कार से टक्कर खाना या उनको भी संस्कार के टक्कर से छुड़ाना, आपका टाइटल क्या है। बाबा पूछते हैं दुखहर्ता सुखकर्ता है बाप के साथ ही होना, तो इस विश्व को दुख अशांति से बदल सुख शांति की स्थापना करनी ही है। उन्हों को भी वाणी और मनसा संकल्प द्वारा परिवर्तन करो। जिम्मेवार बाप दादा और उनके साथी मुरब्बी बच्चे, निमित्त बने हुए बच्चे हैं, तो सदा अपने मन को व्यर्थ संकल्पों के बजाय अब दुखी आत्माओं को, चाहे ब्राह्मण है या कोई भी है, डिस्टर्ब आत्मा को सहयोग दो, सहयोगी बनो। फिर बाबा ने नए नए बच्चों को देख करके भी कहा, आपको भी बहुत तीव्र पुरुषार्थ करना है, इतना अटेंशन देना है कि समय जरा भी व्यर्थ नहीं करना। एक सेकंड में 10 मिनट का काम करना है, क्योंकि ये तीव्र पुरुषार्थ कर जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हैं। फिर पिछले संडे की तरह इस बार भी बाबा मुरली के ऊपर विशेष अटेंशन खिंचवाते हैं, कि बाबा कहते मुरली कभी भी एक दिन भी मिस नहीं करना, मिस करेंगे तो अपना बाप दादा का दिल तख्त छूट जाएगा। इसलिए जो भी मुरली मिस करते हैं वह समझे हम 3 तख्त के मालिक नहीं, 2 तख्त के मालिक भी यथाशक्ति बनेंगे। इसलिए मुरली मुरली मुरली, क्योंकि मुरली में रोज के डायरेक्शन होते हैं, चारों ही सब्जेक्ट के डायरेक्शन होते हैं, तो इसीलिए बाबा कहते हैं मुरली कभी मिस नहीं करनी है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज के मुरली का टाइटल है, मनसा सेवा द्वारा आत्माओं को अंजलि देने की सेवा करते, बहुत काल से तीव्र पुरुषार्थ कर एवर रेडी रहो, तो माला का मणका बन जाएंगे। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों ने याद किया, मेरा बाबा आ जाओ, तो बाप कहते हैं मेरे स्नेही बच्चे, स्नेह में ऐसा आकर्षण है जो हर बच्चे ने बाप को अपना बनाया, और बाप ने हर बच्चे को मेरे बच्चे कहते अपने में समाया। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही कि बच्चों ने कहा मेरे बाबा आ जाओ, तो बाबा कहते स्नेह में ऐसी आकर्षण है जो बच्चों ने बाप को अपना बना दिया,
और बाबा ने हर बच्चे को मेरे बच्चे कहते अपने में समाया। कमाल है, बच्चों ने कहा मेरे बाबा, तो मेरे शब्द में इतना स्नेह भरा हुआ है जो बाप ने भी कहा मेरे बच्चे। बच्चों ने कहा मेरे बाबा, तो इस मेरे में कितना स्नेह भरा हुआ है, और बाप ने भी कहा मेरे बच्चे। स्नेह क्या से क्या बना देता है, हर बच्चे के मस्तक में आज स्नेह की लहरें लहरा रही है। बाबा क्या देख रहे हैं, हर बच्चे के मस्तक में जैसे स्नेह की लहरें लहरा रही है, यह देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। स्नेह ही दिल को अपना बनाने वाला साधन है। एक स्नेह ही ऐसा है जो कैसे भी इंसान के दिल को अपना बना देने का, अपना बनाने का साधन है। तो हर एक बच्चे के अंदर आज स्नेह की लहरें लहराती हुई देख देख बाप दादा भी खुश हो रहे हैं। अभी अभी 5 मिनट के लिए एक ड्रिल बाप दादा सबको करा रहे हैं। बाबा ने जैसे मुरली आरंभ करते ही एक ड्रिल बच्चों को कराई, और किस बात की ड्रिल है, तो बाबा कहते अपने मनसा शक्ति से सृष्टि में जो भी आपके भक्त व अनेक दुखी अशांत आत्माएं आपको याद कर रही है, क्या याद कर रही है, हे हमारे पूर्वज, हमें थोड़े समय के लिए भी शांति दे दो, जरा सा सुख की अंजलि दे दो, बचाओ ऐसी आत्माओं को यहां बैठे हुए, इमर्ज करो। आवाज सुनने आ रही है, पूछते बाबा, आवाज सुनने आ रही है, बचाओ बचाओ। तो ऐसी आत्माओं को अपने मनसा शक्ति द्वारा सुख शांति की किरणें पहुंचाओ। तो चलिए थोड़े समय के लिए इमर्ज करते हैं उन आत्माओं को जो याद कर रही है, और अपनी मनसा शक्ति से उन्हें सुख शांति की किरणें पहुंचाते हैं।

फिर बाबा कहते, ये मनसा सेवा सारे दिन में बार बार करते रहो, क्योंकि बाप के साथ आप बच्चे भी विश्व सेवक हो। सारा दिन वाणी द्वारा जैसे सेवा के निमित्त बनते हो, ऐसे ही बीच बीच में मनसा सेवा का भी अभ्यास करते चलो। इसमें आपका अपना भी फायदा है, क्योंकि अगर आपका मन सदा सेवा में बिजी रहेगा तो आपके पास जो बीच बीच में माया फालतू संकल्प व व्यर्थ संकल्प करती है उससे बच जाएंगे। मनसा सेवा करने का सबसे बड़ा फायदा बाबा ने बताया कि जो माया बीच बीच में फालतू संकल्प व्यर्थ संकल्प ले आती है उससे आप बच जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी बाप दादा पूछते हैं, कैसे हो? बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे कैसे हो? तो क्या जवाब देते हो? पुरुषार्थ है लेकिन कभी कभी, सदा का पुरुषार्थ नहीं चल रहा है। बाप दादा जब बच्चों को पूछते हैं कैसे हो, तो बच्चे कहते हैं, बाबा पुरुषार्थ है कभी कभी, सदा का पुरुषार्थ नहीं चल रहा है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों का यह रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। कौन सा रिकॉर्ड देखना चाहते हैं? ये कभी कभी का शब्द समाप्त हो जाए। क्या ये हो सकता है? पूछते बाबा, ये कभी कभी का शब्द समाप्त हो सकता है? कभी कभी समाप्त हो जाए, समय पर तैयार हो जाएंगे। हो रहे हैं, होना ही है, इसके बजाय अभी एवर रेडी बन सकते हो? पूछते बाबा कि जो कहते हैं कि बाबा ये कभी कभी शब्द समाप्त हो जाएगा और समय पर हम तैयार हो जाएंगे, हो रहे हैं और होना ही है, बाबा कहे अभी एवर रेडी बन सकते हो? क्यों? क्यों बाबा ने ये पूछा? एवर रेडी रहने का अभ्यास माया जीत, मन जीत, जगत जीत, ये संस्कार भी बहुत समय से बनाएंगे, तब अंत समय भी ये बहुत काल का अभ्यास विजयी बनाकर आपको विशेष माला का मणका बनाएगा। बाबा कहते हैं एवर रेडी रहने का अभ्यास होगा तो माया जीत, मन जीत, जगत जीत, ये संस्कार बहुत समय से बनाएंगे, तब जाकर के अंत समय में ये बहुत काल का अभ्यास हमें विजयी बनाकर विशेष माला का मणका बनाएगा, पास विथ ऑनर बनेंगे। पास नहीं, पास विथ ऑनर। तो बोलो यह हिम्मत है ना? पास विद ऑनर तो होना है ना? जो द्वापर से लेकर अब तक पूज्य बनते हैं अर्थात माला के मणके बनते हैं, तो अपने को माला के मणके बनाने का शुद्ध संकल्प है ना? बाबा पूछते हैं बच्चों को कि अपने को माला के मणके बनाने का शुद्ध संकल्प है ना? बाप दादा भी रोज अमृत वेले अपने माला के मणकों को देखते और विशेष मिलन मनाते हैं। तो आप सभी अपने को माला के मणकों में समझते हो? है तो दूसरी माला भी 16,000 की, लेकिन फिर भी सेकंड माला हो गई ना? तो बाबा पूछते, फर्स्ट माला में आना है या सेकंड माला में आना है? वो तो सेकंड हो गई ना। विशेष माला जो गायन और पूजनीय योग्य बनती है वह पहली माला, अष्ट की माला। तो आज बाप दादा उन मणकों को देख रहे थे जो पहली माला में पास विथ ऑनर विजय रत्नों को बाबा देख रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ विशेष राज्य अधिकारी साथी वही बनते हैं। तो आज ब्रह्मा बाप
अपने अब के तीव्र पुरुषार्थी और भविष्य के राज्य अधिकारी तख्त पर तो दो ही बैठते हैं, लेकिन राज्य के साथी उन्हों की पहली माला है। तो अपने को चेक किया है, बाप दादा के साथ तो चलेंगे, क्योंकि अभी आप सबकी रिटर्न जर्नी है। जब जाना ही है, बाप के साथ जाना है, अकेला नहीं जाना है, तो साथ जाने वाले नजदीक के मणके कौन होंगे? साथ जाने वाले नजदीक के मणके कौन होंगे? जो बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी होंगे। पुरुषार्थी नहीं, कब कब वाले नहीं, बहुत काल के बाप समान ही राज्य अधिकारी बनेंगे। तो क्या समझते हो? पूछते बाबा, अपने को क्या समझते हो? तीव्र पुरुषार्थी है? जो समझते हैं मैं तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में हूं, वह हाथ उठाएंगे। तीव्र पुरुषार्थी, फिर बाबा अंडरलाइन कराते, जो समझते हैं मैं तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में हूं, वह हाथ उठाएंगे। बड़ा हाथ उठाओ, छोटा हाथ उठाते हैं। अच्छा, बहुत उठा रहे हैं, फिर लंबा हाथ उठाओ। बाबा दिखाते हैं, ऐसे छोटा नहीं, छोटा उठाते हैं कोई कोई, तो बाबा कहे ऐसे छोटा नहीं, लंबा उठाओ। अच्छा, बाप दादा तो रोज बच्चों का चार्ट देखते हैं, मेजॉरिटी तीव्र पुरुषार्थी भी है, लेकिन कभी कभी का शब्द भी साथ में लगा देते हैं। लेकिन बाप क्यों कह रहे हैं, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए बाबा क्यों कह रहे हैं? अटेंशन प्लीज, बाबा जैसे एकदम ऑफिशियल सावधान होकर कहते, अटेंशन प्लीज। सूक्ष्म संकल्प में भी हलचल नहीं, अचल अडोल शुद्ध संकल्पधारी बहुत समय से बनना ही है। कई बच्चे बहुत मीठी मीठी रूरिहान करते हैं, कहते हैं बाबा हम तैयार हो ही जाएंगे, क्योंकि समय जितना नजदीक आएगा, हालतें हलचल में आएगी, तो वैराग्य तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो बाबा क्या पूछते हैं, जब बच्चे ऐसे कहते हैं बाबा समय जितना नजदीक आएगा, हालातें हलचल में आएगी, तो वैराग्य तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, तो बाबा क्या कहते हैं, लेकिन आपका टीचर कौन हुआ, समय या बाप? समय तो आपकी रचना है ना, तो बाप अभी इशारा दे रहा है कि बहुत समय का तीव्र पुरुषार्थ अंत में पास विथ ऑनर बनाएगा। पास तो सभी होंगे, लेकिन पास विथ ऑनर बनने वाला बहुत समय का लगातार तीव्र पुरुषार्थ करने वाला आवश्यक है। इसीलिए आज की तारीख नोट कर दो, अब भी कभी कभी समथिंग हो जाएंगे, कर ही लेंगे, ये शब्द आगे भी चलते न रहे। ये शब्द को बाबा कहे मिटा दो। बाप का प्यार तो सदा ही है, लास्ट दाने पर भी बाप का प्यार है, माला का अंतिम दाने पर भी बाबा का प्यार तो है। क्यों? दिल से मेरा बाबा तो कहा, आज की बड़ी बड़ी आत्माएं मेरा बाबा नहीं कहती, लेकिन वह मेरा बाबा तो मानता है, लेकिन वह मेरा बाबा तो मानता है, इसलिए बाप का प्यार तो उससे भी है, भले कहे नहीं, लेकिन बाबा कहे वह आत्माएं मेरा बाबा मानते तो है अंदर से, इसीलिए बाप का प्यार तो उससे भी है। बच्चों से प्यार तो बाप का सदा ही है, कितना बाबा प्यार करते हैं बच्चों को, कि बच्चों से बाबा का प्यार तो सदा ही है, लास्ट तक भी है, लास्ट वाले तक भी है,
स्नेह ने ही आपको बाप का बनाया है, स्नेह ने ही तो बाबा का बनाया है। बाप दादा ने यह भी कहा है कि स्नेह मेजॉरिटी बच्चों का है और रहेगा, लेकिन सिर्फ स्नेह नहीं, शक्ति भी चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ भी चाहिए। स्नेह तो चाहिए लेकिन स्नेह के साथ शक्ति भी चाहिए और तीव्र पुरुषार्थ भी चाहिए। बाप दादा का तो बच्चों में फेथ है ना, तो अभी से ही पदम पदम गुना ऐसे बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाबा का कितना बच्चों में फेथ है, जो अभी से बाबा पदम पदम गुना ऐसे बच्चे जो पास विथ ऑनर होने वाले हैं उनको मुबारक दे रहे हैं। और क्या कहते हैं, वाह बच्चे वाह, हिम्मत वाले हैं, आपकी हिम्मत और बाप की मदद तो होगी ही। अभी एक बात करना, आपकी हिम्मत और बाबा की मदद तो है ही, लेकिन अभी एक बात और करना। क्या करना है, जो अपने मन को बिजी रखने के लिए, जैसे पहले बाप ने कहा सेकंड में स्टॉप, पिछले संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा था सेकंड में स्टॉप, बिंदु हूं, बिंदु लगाना है और सबको बिंदु रूप में देखना है। जब देखेंगे ही बिंदु तो और कोई भी संकल्प नहीं चलेगा। मनसा सेवा का अटेंशन रखना, तो बाबा ने इसीलिए बच्चों को कहा कि मनसा सेवा में बुद्धि को बिजी रखना, मन को बिजी रखना, और क्या करना है, सेकंड में स्टॉप, बिंदु लगाना, बिंदु हूं और बिंदु रूप में सबको देखना है, तो और कोई संकल्प चलेगा ही नहीं। इतनी दुखी आत्माएं जो चिल्ला रही है, आरंभ में ही इसीलिए बाबा ने मनसा सेवा कराई, क्योंकि दुखी आत्माओं की पुकार बाबा अभी सुन नहीं सकते हैं। इतनी दुखी आत्माएं जो चिल्ला रही है, उन्हों को किरणें देने की सेवा में एक्स्ट्रा मन को लगाना, मनसा सेवा बहुत श्रेष्ठ सेवा है। बाबा बच्चों को कहते हैं मनसा सेवा बहुत श्रेष्ठ सेवा है, दुखियों का भी फायदा और आपका अपना भी फायदा, डबल फायदा है। जैसे वाचा से सेवा करते हो और सेवा बढ़ती भी जाती है, दिल से करते हो संख्या भी बढ़ती जाती है, सेंटर भी बढ़ते जाते हैं। वाचा की सेवा मेजॉरिटी की ठीक है, सभी की नहीं लेकिन मेजॉरिटी की वाचा की सेवा ठीक है। तो बाबा कहते सभी की नहीं, मेजॉरिटी की। ऐसे अभी मन से विशेष आत्माओं को अंजलि देने की सेवा भी करते रहो, मन को फ्री नहीं छोड़ो, कोई ना कोई सेवा में मन से शक्तियां देने की, मुख से वाणी की सेवा, कर्म से गुणों की सेवा, संबंध संपर्क में खुशी देने की सेवा, इन भिन्न भिन्न सेवाओं में मन को बिजी रखो। हाँ, तो बाबा ने इसीलिए कहा मन को सदा बिजी रखने के लिए कोई ना कोई सेवा में उसको बिजी कर दो, मन से शक्ति देने की सेवा में, मुख से वाणी की सेवा में, कर्म से गुणों की सेवा में और संबंध संपर्क से खुशी देने की सेवा में। क्योंकि सारे विश्व में richest आत्माएं कौन सी है, आप ही हो ना। कितने खजाने मिले हैं, richest बाबा कहते हैं कितने सूक्ष्म खजाने बाबा से प्राप्त किया है, तो हर खजाने से सेवा करो। खजाने को जितना सेवा में लगाएंगे उतने खजाने बढ़ते जाएंगे। इसीलिए अभी जैसे स्व की सेवा का अटेंशन देते हो, ऐसे दुखी आत्माओं की, अपने भक्तों की मनसा द्वारा किरणे देने की सेवा भी अटेंशन देकर सारे दिन में करो। बाबा कहते हैं जैसे स्व की सेवा का अटेंशन देते हैं, ऐसे दुखी आत्माओं की, भक्तों की,
मनसा द्वारा किरणें देने की सेवा अटेंशन देकर सारे दिन में करो। बहुत चिल्लाते हैं, आपको सुनने नहीं आता है, पूछते बाबा बच्चों से, आपको सुनने नहीं आता है। मेजॉरिटी हर घर में कोई ना कोई दुख का कारण है, ऐसे दुखियों को सुख देने वाला कौन, बोलो कौन है? आप ही तो हो। तो इस मनसा सेवा को सारे दिन में चेक करो, कितना समय की, जैसे स्व के प्रति देते हो, जैसे स्व के प्रति समय देते हो, वैसे मनसा सेवा के प्रति कितना समय दिया। रहम दिल हो ना, तो दुखियों पर रहम करो। आपका गीत भी है ना, ओ माँ बाप दुखियों पर रहम करो। बाप दादा को बहुत आवाज सुनने पड़ते हैं, आप लोगों को कम सुनाई देते हैं, लेकिन अभी सुनो, कहाँ जाएंगे वह? आज बाबा को बहुत रहम आ रहा है, बाबा कहते वो कहाँ जाएंगे, आपके ही तो भाई बहन है। तो अपना भी फायदा करो, मन को बिजी रखो और दुखियों का दुख हरण करो। चिल्लाते हैं, दिल चिल्लाती है, उनकी दिल चिल्लाती है, बाप दादा तो सुनते हैं, तो बच्चों को याद करते हैं, ओ मेरे लाडले बच्चे, सिकिलधे बच्चे, अब रहम दिल रूप धारण करो। अपने ब्राह्मणों में भी एक दो के सहयोगी बनो, चाहे कैसा भी संस्कार है, लेकिन आपका काम क्या है, संस्कार से टक्कर खाना या उनको भी संस्कार से टक्कर से छुड़ाना। बाबा कहते संस्कार से टक्कर खाना या